एक सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है। ऐसे कंबाइंड रूप की स्मृति से अपने आसुरी संस्कार व अपवित्रता के संकल्प को सेकंड में संहार करो। अच्छा, ओम शांति।

ओम शांति। अमृत वेले का समय, प्रभु मिलन का सुंदर समय है। इसको अमृत वेला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम अपने मन को सवेरे सवेरे ज्ञान अमृत से भर लेते हैं। दूसरा इसका नाम ब्रह्म मुहूर्त है। ये ऐसा मुहूर्त है, ये ऐसा काल है जब हम ब्रह्म लोक में अपनी बुद्धि को परम पिता शिवबाबा पर स्थिर कर सकते हैं, वहां विचरण कर सकते हैं, तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। तो जो आत्माएं अमृत वेले को पूरा महत्व देते हैं, बाबा उन पर प्रसन्न रहता है। और जो अमृत वेले को संपूर्ण सुखदायी और आनंदकारी बना देते हैं, उनके तो कहने ही क्या। तो सवेरे उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करके और उसने हमें जो कुछ दिया, उन प्राप्तियों के लिए उसको सच्चे मन से, खुले मन से थैंक्स करें, आनंदित कर लें, अपने मन को खुशियों से भर लें। ओ प्राणेश्वर, तूने आकर हमें जीवन दान दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आकर हमें ज्ञान रतन प्रदान किए, सत्य ज्ञान दिया, हमारी जन्म जन्म की सत्य की खोज समाप्त कर दी, आपको बारंबार शुक्रिया। हे सर्वशक्तिवान परम सद्गुरु बनकर आप हमारे सहारे बन गए, हमारी जीवन नैया के खिवैया बन गए। आपने हमें वरदान दिए, शक्तियों से हमारा श्रृंगार किया, आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद। हम आपको पाकर बहुत सुखी हो गए। इस तरह बाबा को सवेरे सवेरे शुक्रिया करेंगे, मन प्यार से भरपूर हो जाएगा और बाबा की समीपता का सुंदर अनुभव होगा। साथ ही साथ तीन बिंदियों की स्मृति दिलाए अपने को। बाबा बिंदु स्वरूपति सूक्ष्म, मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप। और ये ड्रामा का ज्ञान इतना सुंदर बाबा ने दिया कि उसको स्मरण करके हम अपने चित्त को शांत कर देते हैं, अर्थात संकल्पों को बिंदु लगा देते हैं। ये तीनों बिंदु रोज सवेरे हम स्वयं को स्मृति में दिलाएं। आत्मिक स्थिति में स्थित होने से भी हमारे सभी संकल्प शांत हो जाते हैं। और शिव बाबा जो महाज्योति है, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उन पर अपनी बुद्धि को स्थिर करने से मन पूरी तरह शांत होने लगता है। तो रोज सवेरे स्वयं को स्मृति दिलाएं। स्मृति स्वरूप होना श्रेष्ठ स्थिति बनाने का सर्वोत्तम उपाय है। जो आत्माएं अपनी स्थिति को श्रेष्ठ नहीं बना पा रहे हैं, वो स्मृति स्वरूप बने, अर्थात अपने को स्मृति दिलाएं रोज सवेरे। और उसका सरलतम तरीका है अपने पांचों स्वरूपों की स्मृति स्वयं को दिलाना। पांच बार रोज सवेरे दिलाएं ये याद स्वयं को, मैं चमकती हुई आत्मा, मेरा देव स्वरूप, भविष्य में मैं क्या बनने जा रही हूँ, क्या बनने जा रहा हूँ, मेरा परम पूज्य स्वरूप, मैं कितना परम पवित्र, भक्ति में मेरी मूर्तियों के दर्शन करने से ही सब सुखी हो गए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, अब मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, स्वमानों को याद करें, बाबा ने मुझे क्या बना दिया, और अब बनना है मुझे फरिश्ता, अपने फरिश्ते स्वरूप को देखें। मैं चमकती हुई आत्मा, प्रकाश के शरीर में विराजमान, कमलासन पर हूँ। ये पांचों स्वरूपों की स्मृति,
हमारे चित्त को रोज सवेरे शांत करेगी, ज्ञान के बल से, स्वमन के बल से भरपूर करेगी। जितना हम श्रेष्ठ स्मृति में रहते हैं उतना ही हमें समर्थ ही आती है। तो आज सारा दिन इन पांचों स्वरूपों की स्मृति स्वयं को दिलाएंगे, घंटे में एक बार, एक मिनट के लिए, और स्वयं को आनंद से भरपूर करेंगे। ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सबका। अमृत धारा प्रोग्राम में मैं भक्ति दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागतम सुस्वागतम। सुबह के सुंदर समय पर सुंदर शुरुआत की भी जरूरत होती है और हम उसके लिए हमेशा सुविचारों की बात करते हैं ताकि वो सुविचार हमारे बुद्धि में अच्छी तरह से रह जाए और हम अपने दिन को भाग्यशाली, सुंदर, संतुष्टता से गुजार सकें। दोस्तों आज एक समय के बारे में बहुत सुंदर सुविचार है। कोई कहते हैं कि समय ऐसा सिक्का है जो पलटता जरूर है, आपको बस सिक्का उछालने का हौसला रखने की जरूरत है, अर्थात अपनी मेहनत पर विश्वास रखना और फिर देखना चमत्कार। कहते हैं कि व्यक्ति को अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए गलत काम रूपी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान में रहे कि एक सत्यनिष्ठ इंसान को सत्य की जीत के लिए सच को अपना सच्चा धर्म मानते हुए उस रास्ते पर ही चलते रहना चाहिए। इसीलिए किसी के सामने अपनी बात सच साबित करने के लिए चिल्लाना, जोर जोर से बोलना, जिद करना, ये सब करने की आवश्यकता ही क्या है। सबसे शक्तिशाली बात है मौन। मौन एक शक्ति है और इसी शक्ति से हम सच्चाई को साबित कर सकते हैं। कितनी सुंदर बात है दोस्तों। फिर आप कहेंगे कि पूरे दिन में अगर हम मौन करें तो व्यवहार कैसे चलेंगे, कार्य कैसे चलेंगे। लेकिन यहाँ मन के मौन की बात है, मुख के मौन की बात नहीं है। मुख का मौन कर नहीं सकते क्योंकि हम सब कार्य व्यवहार में आने वाले लोग हैं, लेकिन मन का मौन ये बहुत शक्तिशाली होता है। मन में जो अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, मन में जो कश्मकश होती है, जिसके कारण हम हमारे ही मन को दुखी करते हैं या कभी खुश करते हैं, लेकिन उसके बदले कुछ समय के लिए अगर मन को भगवान के पास रख दो, उसको सौंप दो, मन का मौन करो, तो सचमुच ही बहुत ही सुंदर रीति से हम अपने जीवन को भी बिता पाते हैं और हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले स्टूडियो में उपस्थित ज्ञानेश्वर जी का स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, बहुत सुंदर सुविचार है, और ये टॉस उछालना, ये जो है सिक्का उछालना, ये कल्पना मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे याद आया वो क्रिकेट का गेम, दो कैप्टन होते हैं, फील्ड में आ जाते हैं, एक कहता है हेड और टेल पूछा जाता है, तो वो अपनी कामना रखता है हेड, कभी वो जीतता है कभी हारता है। उसने खुद ने उछाला है तो भी वो कभी जीतता है कभी हारता है, लेकिन जीतने के बाद वो कभी कभी खुश भी होता है, लेकिन हारने के बाद मायूस नहीं होता। हारने के बाद वो गेम न खेलने का, खेल न खेलने का फैसला नहीं करता, और टॉस जीतने के बाद ये भी मन में नहीं लाता कि मैंने टॉस जीत लिया तो मैंने गेम खेल जीत लिया या गेम जीत लिया। गेम गेम है, टॉस करने के लिए कभी हार कभी जीत ये भी होता है टॉस में, लेकिन जो अच्छा कैप्टन होता है, जो अच्छा खिलाड़ी होता है, वो टॉस हारने के बाद भी गेम जीतता है, और कभी कभी टॉस जीतने के बाद भी गेम हार जाता है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हौसले बड़े होने चाहिए। वो कभी मायूस नहीं होता कि मैं तो टॉस हार गया, अभी मैं तो क्या गेम खेलूंगा। गेम छोड़ता नहीं है, वो खेलता है। भले गेम में वो हार जाए लेकिन गेम छोड़ता नहीं है। ऐसे बहुत बार होता है कि बहुत सारी विकेट चली गई, 5 आउट हो गए, 6 आउट हो गए, लेकिन जो भी बचे हुए हैं वो भी हिम्मत नहीं हारते और वो लड़ाई अपनी लड़ते रहते हैं। ये खेल है, ये गेम है। ऐसे ही जिंदगी भी हमारी एक गेम है, खेल है। जिंदगी में भी हम कभी कभी टॉस उछालते हैं, लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है कि जो मैं इच्छा रखता हूँ वो मेरी पूरी हो जाए। अगर नहीं भी पूरी हुई तो भी हम अगर हिम्मत नहीं हारते और अपना खेल खेलते रहते हैं तो हम तख्ता को पलट सकते हैं, खेल को पलट सकते हैं, और जो हारती हुई बाजी है उसे जीत में पलट सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, उसके लिए हौसला चाहिए। यह हौसले जब बुलंद होते हैं तब सब कुछ आसान होता है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, वैसे भी देखा जाए तो हर दिन सुबह हम टॉस ही करते हैं और उसमें हमें ये पता नहीं है कि आज का दिन किस प्रकार से जाने वाला है। लेकिन जब हमारा इतना अपने पर विश्वास होता है तो ये निश्चित है कि हमारा दिन शुभ जाता है, न केवल हमारे लिए लेकिन औरों का दिन भी किस प्रकार से शुभ हो ये भी हम सोचते हैं, इस प्रकार के कर्म हमसे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं एक सुंदर कहानी जो छोटी होते हुए भी सीख बहुत बड़ी देती है। दोस्तों क्या है ये कहानी? एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसको धनी राम कहते थे और जैसा नाम वैसे ही वो था। बहुत प्रचुर मात्रा में उसके पास धन संपत्ति थी जिसके कारण सदा ही उसके घर में सगे संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन सब आते रहते थे। और न केवल आते लेकिन वो उन्हीं के राग आलापते रहते थे कि सचमुच ये सेठ जी कितने अच्छे हैं, सचमुच ये सेठ जी जैसा भाई मिले, ये सेठ जी जैसा रिश्तेदार मिले, इस सेठ जी जैसे संबंधी मिले। अर्थात हर प्रकार से सेठ जी की प्रशंसा करते रहते। सेठ जी भी कैसे थे, सब लोगों को बहुत मदद करते थे। दोस्तों तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग। सुनते हैं आगे सेठ जो है उसको जीवन में किस प्रकार का अनुभव हुआ। लेकिन दोस्तों समय हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जरूर सुनेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: नमस्ते, मैं हूं आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखें 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: परंपरा जनहित में जारी।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कहानी हम सुन रहे हैं सेठ धनीराम की, जो बहुत दानी था, उदार था। मित्र संबंधियों का उसके घर में आना जाना सदा ही रहता था और वो सबकी मदद भी करता था। लेकिन वो बीमार हो गया। बीमारी बड़ी भयंकर थी। सेठ जी के पास बहुत धन होने के कारण हर प्रकार से उसने उस बीमारी का उपचार करवाया, लेकिन उसका कोई इलाज ही नहीं है। ये बात डॉक्टर से जब सुनी, तब सेठ जी जैसे कि हार गए जीवन में और एक दिन सेठ जी की मृत्यु हो गई। यमदूत आए सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए। जैसे ही यमदूत सेठ जी को साथ ले जाने लगे, सेठ जी ने हाथ जोड़कर यमदूतों से बहुत प्यार से प्रार्थना की, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौट कर तुरंत आता हूँ। सेठ जी की याचना को देखते हुए यमदूतों ने उन्हें अनुमति दी। सेठ जी को कहा, लेकिन जल्दी लौट के आना। सेठ जी ने भी हाँ कहा और सेठ जी चले गए। बस कुछ पल में ही वो लौट कर आए और चारों ओर नजर घुमाई तथा यमदूतों के पास आकर बोले, चलिए, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर बहुत चकित रह गए। उनको लगा था कि सेठ जी कुछ समय लेंगे, लेकिन सेठ जी तो कुछ सेकंड में वापस आ गए। तो उन्होंने उत्सुकतावश सेठ जी को पूछा, आप इतने जल्दी कैसे वापस आए? तो सेठ जी ने बताया, जिनके स्वर में निराशा थी, उन्होंने कहा कि मैंने अपार धन एकत्रित तो जरूर किया, कभी कभी हेरा फेरी भी की, लोगों को भी खूब खिलाया पिलाया, उनकी बहुत सारी मदद की। सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जबकि इस दुनिया से मैं सदा के लिए जा रहा हूँ, वो बदल गए हैं। मेरे कारण दुखी होने के बजाय वो अभी से ही मेरी संपत्ति की बांटने की योजना बना रहे हैं। उन्हें तो किसी बात के लिए जरा भी अफसोस भी नहीं दिखाई दे रहा है। सेठ जी की ये बात सुनने के बाद यमदूत कहने लगे, अरे भाई, इस संसार में प्राणी अकेला आता है, अकेला जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसका ही परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। और हर प्राणी को ये सत्य समय पर समझा तो ही वो अच्छे कर्म करता है। जिसे देरी से समझता है, वो बस हाथ मलते रह जाता। दोस्तों, हमने क्या इससे सीखा? हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जो है, जीवन के सत्य को भूलकर मानव के द्वारा बनाए गए जाल, जैसे रुपए, पैसे, बुराई, इसके तले दबे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप जो भोजन ग्रहण करते हो, वो पेट में 4 घंटा रहता है। जो वस्त्र पहनते हो, वह 4 महीने से 4 साल तक रह सकता है। लेकिन आप जिंदगी में जो ज्ञान हासिल करते हो, वो आपके अंतिम श्वासों तक चलता रहता है और संस्कार बनकर अगली पीढ़ी तक भी पहुंचता है। इसीलिए ज्ञान का जो बीज है, वो व्यर्थ कभी नहीं जाता। जो है, जितना है, सफल करते चलो, और सफल करने से ही सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। ज्ञानेश्वर जी, सचमुच कितनी सुंदर कहानी है। इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है और मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने कहा है कि खाना कितना समय रहता है, वस्त्र कितना समय रहता है, और अच्छे कर्म, पुण्य कर्म

0: किस प्रकार से सदा साथ रहते हैं, यही बात श्रीमद् भागवत भी हमें बताता है।
1: बिल्कुल भक्ति जी, बहुत ही सुंदर कथा है। जिंदगी का सच क्या है यह बताने वाली कथा है। यह सुनने के बाद मुझे याद आया कि ऐसे कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी मुट्ठी बंद होती है, लेकिन जब इंसान शरीर छोड़ के चला जाता है तब उसकी मुट्ठी जो है वो खुली रहती है। आते समय वो कुछ ना कुछ मुट्ठी भर के लेके आता है, और वो जो लेके आता है वो है संस्कार। और जाते समय वो जो मुट्ठी खुली करके, हाथ खुले करके जाता है, इसका मतलब यह है कि जो कुछ मैंने कमाया है, धन दौलत मान शानो शौकत, वो सब मैं यहाँ ही छोड़ता हूँ और मैं चला जाता हूँ। लेकिन जाते समय हमें मुट्ठी भर के जाना है, और ये मुट्ठी है अच्छे संस्कारों की। अच्छे संस्कार कब होंगे? जब हम अच्छा विचार करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि हर जो कर्म होता है उसका इम्प्रेशन होता है, और ये इम्प्रेशन है वो संस्कार के रूप में हमारे मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि ये जो संस्कार है आप बोलते हो, संस्कार है संस्कार है, उसके इम्प्रेशन जो है वो दिखते कैसे नहीं है। इसके ऊपर जब मैं सोच रहा था तो बहुत अच्छी मिसाल मेरे मन में आई कि देखिए, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, अभी देखिए ये कार्यक्रम जो है वो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर उसका प्रसारण होता है, क्या वो दिखता है? हम जो बोल रहे हैं वो किसी दूसरी भाषा में, भाषा का मतलब किसी दूसरे रूप में, दूसरे प्रारूप में वो रिकॉर्ड हो रहा है। वो रिकॉर्ड जो हुआ है वो हम स्पीकर के द्वारा सुन तो सकते हैं, लेकिन जैसे हुआ है, जिस रूप में हुआ है, वो तो हम देख नहीं सकते। और इसलिए मुझे लगता है ये संस्कारों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए।
0: बिल्कुल दोस्तों, कितनी सुंदर बात है। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है, लेकिन हर पल हर समय नहीं लगती है, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें बुद्धि से निकल जाती है। दोस्तों, इन्हीं के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति, मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, आइए, अमृतधारा में आपका फिर से स्वागत है। और बहुत ही सुंदर हम दशम स्कंध, जिसमें बहुत सारी श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भागवतकारों ने किया है, उस पर चर्चा कर रहे, चिंतन कर रहे हैं। उसके अनेक पहलुओं को हम समझ रहे हैं एक नए तरीके से। तो ये जो अध्याय है, 24वां अध्याय, उसमें यज्ञ के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। ज्ञानेश्वर जी और शुकदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं हो रही थी, श्री कृष्ण और बलराम जी कर रहे थे। और एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सब गो इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, तो वैसे तो देखा जाए तो उनकी उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, सब जानते थे वो। फिर भी उन्होंने विनम्रता से अपने पिताजी को और वहां जो उपस्थित थे उन बड़े बूढ़े गोपों से पूछा कि आप सब लोग ये जो कर रहे हैं, बहुत भारी उत्सव आ रहा है, क्या क्या कर रहे हैं आप, कौन सा ये काम है और इसका फल क्या है, उद्देश्य क्या है, कौन लोग हैं, किन साधनों के द्वारा आप ये यज्ञ कर रहे हो, ये हमें बताइए। देखिए, जैसे कि एक अबोध बालक के रूप में श्री कृष्ण जी बताते हैं और ये जताते हैं कि जैसे हम बड़ों को सम्मान भी दे रहे हैं, इसके बाद ये भी कहते हैं वो कि संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता रहता है। उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं। दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न एक आम आदमी के मन में जरूर पैदा होगा, वो ये कि यज्ञ, जप, तप, अनुष्ठान, हवन करना, ये हमारे पूर्वजों ने भी किया था और हम ये करना एक अच्छा कार्य मानते हैं, जिससे एक अच्छे वाइब्रेशन तैयार होते हैं, जिसको एक मन को शांति मिलती है, वातावरण में भी शांति आती है। लेकिन यहाँ संसारी मनुष्यों के लिए ही, अर्थात हम सबके लिए ही एक बहुत अच्छा संदेश कहो या कुछ ऐसी बात कहो बताई गई है स्वयं भागवतकारों ने कि समझे बेसमझे अनेक प्रकार के कर्मों के अनुष्ठान हम करते हैं, लेकिन समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म सफल होते हैं और बेसमझ के नहीं। अब समझ क्या बात है और समझ कर कर्म करना, ये पहले ही कैसे समझेगा ज्ञानेश्वर जी?
1: भक्ति जी, मुझे तो लगता है श्रीमद् भागवत जो है सचमुच ही अथांग सागर है। उसमें बहुत सारी लहरें आती है, उसमें जैसे खजाना है, रतन है, वैसे बहुत सारी और चीजें हैं जिसके ऊपर हमें गौर करना है। देखिए, यज्ञ तप अनुष्ठान भारतीय संस्कृति में उसका बड़ा महत्व है और वो करना भी चाहिए, ऐसे नहीं कि नहीं करना चाहिए। भागवतकारों ने ये नहीं कहा कि इसे करना नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि उसे सोच समझ के करना है,
0: समझ कर करना है।
1: क्यों कर रहे हैं इसका पता होना चाहिए, क्या कर रहे हैं इसका पता होना चाहिए। देखिए, जैसे पूजा पाठ होते हैं, हवन होता है, हवन होते समय कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है, लेकिन वो मंत्र अगर हम ठीक तरह से नहीं पढ़े, ठीक तरह से उच्चारण ना करें, तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हो जाती है,
0: या तो मंत्र का अर्थ ही पता नहीं चला,
1: बिल्कुल,
0: तो भी कुछ फायदा नहीं।
1: एक तो मंत्र का अर्थ पता नहीं चलता और दूसरी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग हो जाती है। मिसाल के तौर पर अभी देखिए, हमारा रेडियो मधुबन का जो कार्यक्रम है वो 107.8 FM पे चलता है। अभी किसी ने उसको ट्यून करने के लिए कोशिश की या अमृत धारा कार्यक्रम सुनने की कोशिश की, लेकिन ट्यूनिंग करते समय उसने 107.8 FM के बजाय 106.7 किया या 106.8 किया, थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रम सुन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का महत्व है। यहाँ जैसे रेडियो में फ्रीक्वेंसी का महत्व है, वैसे मंत्रोच्चारण जो करते हैं उसका उच्चारण जो करते हैं वो भी फ्रीक्वेंसी का महत्व है, एक। और दूसरा, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। समझ क्या है? समझ जो है वो हर कार्य के पीछे का कार्य कारण भाव जो है वो समझ। ये समझ क्या है इसके बारे में भी कुछ कथाएं हैं, इसका जिक्र हम अगली कड़ी में करेंगे।
0: ज्ञानेश्वर जी, बात तो सही है और मुझे लगता है कि उसमें वो भावना भी चाहिए, वो श्रद्धा भी चाहिए। अगर और कर रहे हैं मैं भी करूं, या जैसे आपने इसके पहले भी बताया था कि अगर मैं नहीं करूं तो फिर भगवान का मेरे ऊपर कोप हो जाएगा, ऐसी कुछ प्रकार की अगर समझ है जो बेसमझ है, उस रीति से अगर करे तो मुझे लगता है उसके करने से जो फायदा है वो नहीं मिल सकता। और इसीलिए आगे नंद कहते हैं श्री कृष्ण जी को कि बेटा, भगवान इंद्र जो है वो वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी है और मेघ उन्हीं के अपने रूप है। समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवदान देने वाला जल वो बरसाते हैं, तो मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा हम बहुत समय से ही पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती है। तो इसीलिए बहुत सुंदर बात वो कहते हैं जिस पर हमें चर्चा करना आवश्यक है। वो कहते हैं कि मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले भी इंद्र ही तो है। हमारा जीवन निर्वाह केवल और केवल उनके ही कारण चल रहा है, तो यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम क्रोध लोभ भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता, यह हमने सुना है। देखिए दोस्तों, कुल और परंपरा बहुत बड़ा शब्द है। आज हम देखते हैं कि कई लोग जो है जिनके घर में बहुत बड़ा एक मंदिर होता है कहो, या कुछ ऐसे त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं जो वो अपने पूर्वजों ने बताया है इसलिए करते हैं, उनके पीछे का भाव उन्हें मालूम नहीं, वह समय क्या था वो मालूम नहीं, और केवल उनको खुश करने के लिए या किसी न किसी अंदर स्पष्टता न होने के कारण और भय होने के कारण करते हैं। इसीलिए यहाँ भागवतकार हमें इन सब बातों का भी बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है इन बातों में हमें विस्तृत चर्चा भी करनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: दोस्तों, चलिए इस बात को लेके और भी थोड़ा हम चिंतन आपके सामने रखते हैं। आप भी हमारा चिंतन हमेशा की तरह हमें बताइएगा। चलिए लेकिन अभी समय हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: आवश्यक सूचना। 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबू राज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है, ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, आइए, अमृतधारा में आपका फिर से स्वागत है। बहुत सुंदर चर्चा हो रही है। हर एक के घर में कोई ना कोई इष्ट देव, कुलदेव, कुलदेवता होती है। घर की कुछ मर्यादाएं, परंपराएं भी होती है, और समय के हिसाब से आज अगर देखा जाए, पहले ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे उनके पास काफ़ी समय था, उनके पास वो शक्तियाँ भी थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उनके पास वो समझ थी कि वो किस लिए कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो हमारा जीवन बड़ा ही फास्ट हो गया है। हमारे पास बहुत सारी समझ बेसमझ में परिवर्तित हो गई है, जिसको हम समझ समझते हैं। और दोस्तों, अगर और भी दूसरी बात कहे तो हमारे पास वो भावनाएं भी नहीं है जो पूर्वजों के पास थी। और ऐसे समय में जो यहाँ बताया गया है कि हमारा धर्म है कि परंपरा से जो चला आया है उसको फॉलो करना, उसको करना, तो ऐसे समय हमारी जो अभी की युवा जनरेशन है वो ज़रूर ये सवाल करती है कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, नहीं किया तो क्या होगा। बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछते रहते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी, उनकी भी बात सही है ना, आपको क्या लगता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भक्ति जी, यहाँ भागवतकारों ने जो शब्द का प्रयोग किया है, कुल परंपरा, पूर्वज करते थे इसलिए हमें करना है, और इसलिए यहाँ बहुत बार गलती होती है ऐसा मुझे लगता है। अगर पूर्वज क्यों करते थे इसका हमने, इसके ऊपर अगर हमने गौर किया, ध्यान दिया, तो बहुत सारी बातें जो है वो सुलझ जाती है, आसान हो जाती है। पूर्वजों ने जो पूजा पाठ कर्मकांड जो बनाया था इसके पीछे का कुछ भाव था। जैसे अभी देखिए, वृक्षों की पूजा करना, वट सावित्री जो पूजा होती है, बरगद के पेड़ होते हैं और उनकी पूजा होती है। अभी वो पूजा करने के लिए उसके पीछे का भाव ये था कि वो जमाने में जो लड़कियां थी, कन्याएं थी, वो छोटी छोटी थी, और वो छोटी छोटी कन्याएं दिन भर अगर घर के कामकाज में व्यस्त रहती है, कहीं उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, तो क्या है, अगर कुछ धर्म से जोड़े, रिलीजन से जोड़े जो भी कार्य है, तो उसका क्या होगा, सेहत के ऊपर भी अच्छा असर होगा और उसके साथ साथ मन को भी शांति मिलेगी। तो देखिए, अगर बरगद के पेड़ की पूजा करनी है तो क्या होगा, बरगद के पेड़ के पास वो जाएंगे, वहाँ कुछ समय बिताएंगे, वहाँ जो ऑक्सीजन है वो बहुत अच्छा ऑक्सीजन है, उसमें कहते हैं कि ओजोन का भी कंटेंट बहुत है। तो ऐसी कुछ पर्यावरण को विशेष रूप से ध्यान में रख के उन्होंने कुछ कथाएं बनाई, कुछ परंपराएं बनाई। तो क्या होगा, अगर वृक्ष संवर्धन करना है, वो मेरी देवता है, वो भगवान जैसे है, ये भावना मेरे मन में है, तो उसे हम काटेंगे नहीं, उसको हम बढ़ाएंगे। तो क्या होगा, जितने बरगद के पेड़ होंगे बारिश अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी आएगी, और जो भूमि है, जमीन है, वो भी उपजाऊ हो जाएगी। इसलिए गायों का भी महत्व है। हर कथा के पीछे या हर कृति के पीछे, कर्म के पीछे कुछ ना कुछ कार्य कारण भाव था। लेकिन अगर हमने ये नहीं समझा और फिर हम फॉलो करते रहेंगे तो फिर उसे हम अंधश्रद्धा कह सकते हैं, कई लोग कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, ऐसे कहते हैं कि श्राद्ध कर्म जो होते हैं वो तो हर साल लोग करते हैं, वर्ष श्राद्ध करते हैं, एक साल पूरा हो गया तो फिर श्राद्ध करते हैं, जो हमारे पूर्वज चले जाते हैं उनके लिए। तो फिर एक बार परिवार था और वो श्राद्ध कर्म कर रहा था, पूजा पाठ कर रहे थे, और फिर क्या हो गया, उन्होंने एक बिल्ली पाल के रखी थी। अभी ये जो बिल्ली है, बिल्ली बार बार यज्ञ के बीच में, पूजा पाठ जो चल रहा था उसके बीच में आके विघ्न डालती थी। अभी क्या करना है, बिल्ली तो पाली हुई है, उसको मार भी नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, बिल्ली के ऊपर एक टोकरी रख दी। टोकरी रखने के बाद उनकी पूजा सफल हो गई, पूजा पूरी हो गई। पूरी होने के बाद उन्होंने टोकरी उठाई, बिल्ली का बच्चा घूमने लगा। अभी धीरे धीरे क्या हो गया, बिल्ली का बच्चा जो है वो चला गया, और दूसरे साल श्राद्ध कर्म था। अभी बच्चे ने सोचा कि हमारी पूर्वापार परंपरा चलती आ रही है और जब भी श्राद्ध कर्म होता है बिल्ली का बच्चा रखना चाहिए, लेकिन बिल्ली का बच्चा था ही नहीं, तो क्या करे। तो उन्होंने सिर्फ खाली टोकरी रख दी। टोकरी रखने के बाद धीरे धीरे टोकरी भी निकल गई और फिर उन्होंने उसका फोटो बनाया और फोटो रख दिया, अंदर बिल्ली है और उसके ऊपर टोकरी है। कहने का भाव यह है, लोगों ने सोचा यह परंपरा है, लेकिन परंपरा वो नहीं है कि बिल्ली के ऊपर टोकरी रखे, परंपरा वो है कि ये पूजा जो कर रहे हैं, वो श्राद्ध कर्म जो कर रहे हैं, उनके प्रति हमारी आस्था जता रहे हैं, पूर्वजों के प्रति, वो महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुछ मंत्र है। आत्मशक्ति जो है सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म शरीर से आत्मा आती है, ये जो मान्यता है इसका महत्व है। और फिर जिंदा जब बाप रहता है, जिंदा जब माँ रहती है, हमारे पूर्वज जो रहते माँ बाप पति जो कोई है, वो जब जिंदा रहता है तब उसका हम ख्याल रखें तो और अच्छा है। अगर वो नहीं करते हैं और मरने के बाद हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो वो खराब है। और मेरे ख्याल से संत कबीर जी जो है उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की थी। वो कहते हैं कि जिंदे बाप को रोटी न देवे, जिंदे बाप को रोटी न देवे मरे बाद पछतायो, लेकिन मुठ भर चावल छत पे डाला कौआ बाप बनायो, अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो। ये अंधेरी दुनिया कहते हैं, लेकिन वो प्रकाशमय हो सकती है अगर हम हर चीज जो है वो सोच समझ के करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो कर्म कर रहे हैं इसके ऊपर हम टीका टिप्पणी कर रहे हैं, करना नहीं करना हर एक की चॉइस है, लेकिन अगर हम सोच समझ के करेंगे, समझ के करेंगे तो उसका फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, कितनी सही बात है। कोई भी बात हम समझ के करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हमारे बहनों के लिए कोई किचन की बात हो, जो बात हम समझ के करते हैं उसके दो फायदे। एक तो हमारे मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है, समाधान प्राप्त होता है, और दूसरी बात जो है वो कार्य भी सफल होता है। दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा नहीं लगता कि सचमुच भागवतकारों ने एक बहुत सुंदर अंधेरे में चिराग जैसे जलाया है, या कहो हमें एक बहुत सुंदर गुहिया हो लेकिन स्पष्ट रूप से ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान को अपनाना, उस ज्ञान को फॉलो करना, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, यही सबसे बड़ी श्रीमद् भागवत कथा की सीख है। चलिए दोस्तों, आपकी राय जो है, आपका चिंतन जो है, वो उसकी भी हम राह देख रहे हैं हमेशा की तरह। इन्हीं बातों के साथ समय को देखते हुए अपने वाणी को मैं देती हूँ विराम। फिर से मिलेंगे अमृत धारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, मेरे हाथ में एक सिक्का है जिसे आप देख रहे हैं। इस सिक्के के दो पहलू हैं, चित भी है तो पेट भी है, हेड भी है तो टेल भी है। यदि मैं इसे उछालूं तो कभी हेड होगा तो कभी टेल होगा। जीवन भी ठीक ऐसा ही है, कभी जय तो कभी पराजय, कभी निंदा तो कभी स्तुति, कभी समस्या तो कभी समाधान। जिस प्रकार सागर में लहरें उठती रहती हैं और गिरती रहती हैं, वैसे ही जीवन भी है। लेकिन यदि जीवन के लिए एक सुंदर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो हम ये महसूस करते हैं कि चलो आज समस्या है तो कल समाधान अवश्य होगा, आज यदि रात है तो कल दिन अवश्य होगा। जब इस प्रकार का एक सुंदर एटीट्यूड हमारे पास होता है तो जीवन का सुंदर और सचमुच कहें तो एक आनंद आता है जीने का। उसी आनंद को आप तक लेकर हम आते हैं समाधान कार्यक्रम के माध्यम से, और ये समाधान हमें हमेशा प्रदान करते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। दादा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू
0: दादा जी। जब कभी हम जीवन के दोनों पहलुओं के बारे में विचार करते हैं, कोशिश तो ये रहती है कि हमेशा सुख ही सुख हो, दुख के दिन ना आए। लेकिन एक बहुत सुंदर कवि ने कहा हुआ है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब दुख के दिन आते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस परमेश्वर को याद करते हैं, तो दुख के दिन भी अच्छे हो जाते हैं हमारे लिए,
1: क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है ना, उसकी मूल नेचर सुख है। इसलिए दुख उसे जैसे स्वीकार नहीं है, पर बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण मनुष्य को दुख भी देखना पड़ता है। और आज तो दुखों की अति होती जा रही है। सचमुच जब संसार का हाल देखते हैं, हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी पास आता है तो वर्णन करता। आज भी एक बहुत अच्छे कपिल से हम मिल रहे थे
0: जी।
1: ये थे हैदराबाद के बहुत अच्छे साहूकार घर के, ज्वेलरी का इनका धंधा, युवक बिल्कुल 25 साल के होंगे। कहा, मुझे एक वंडरफुल अनुभव होता है कि दुख आता है तो लंबा समय ठहर जाता है, जाता नहीं, और सुख आता है तो ठहरता नहीं, फटाफट चला जाता है। क्या इसके पीछे रहस्य है, ये प्रश्न पूछने वाला उल्टा चाहिए ये प्रश्न पूछने वाला भी एक ऐसा युवक मैं उसको देखने लगा। मैंने कहा कि देखिए, संसार में दुख बढ़ गया है, अब कलयुग का अंत आ गया है, मनुष्य के कर्मों का भी हिसाब किताब पूर्ण हो रहा है, उसने कुछ गलती भी कर ली है, दुखों को जैसे उसने निमंत्रण दे दिया, आह्वान कर लिया है उसका। अब जरूरत है हम अपने सुख स्वरूप में फिर से स्थित हो जाएं, और फिर से निश्चित रूप से अगर हम बहुत अच्छा अपना स्पिरिचुअल लेवल ऊंचा उठाएं, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अपने विचारों को जरा ब्रॉड करें, छोटी-छोटी बातों के लिए हम सेंसिटिव ना हो जाएं, तो फिर सुख ठहरने लगेगा, दुख खत्म हो जाएगा। मैंने अपना अनुभव सुनाया, देखो हमारे लिए ऐसा है कि सुख आता है, आता क्या है, रहता है बहुत समय, ठहरा रहता है। दुख कभी कभी आता है, पानी पर लकीर की तरह लोप हो जाता है। तो ये तो अपने अपने चिंतन पर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति है, छोटी बात में भी दुखी होता रहता है, जरा सी बात हुई सारा दिन दुखी हो रहा है। दूसरा व्यक्ति है, बड़ी बात भी हो गई, छोड़ो, जो हो गया आगे बढ़ो, दुख को अपने पास नहीं आने देता। तो ये हमारे अपने ऊपर है कि हम दुखों में जीवन व्यतीत करें या दुखों को जल्दी जल्दी विदाई दे दें।
0: बिल्कुल जी, आपने जो बात कही एक ठीक हमारे पास प्रश्न आया था, और ये प्रश्न हमारे पास मुंबई से कामिनी जी ने फोन के द्वारा किया था, और ये कहती हैं, जैसे हमारी चर्चा चल रही है जी, ये कहती हैं कि बचपन से ही लाइफ में दुख ही दुख मैंने देखा है, नेगेटिविटी बहुत है, प्रॉब्लम्स बचपन से ही चलती आ रही हैं, और हर बात में मुझे स्ट्रगल करना पड़ा है, तो मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है, मुझे बिल्कुल एबनॉर्मल लगती है, मैं डर में जीती हूँ कि पता नहीं कल क्या होगा, मेरी तबीयत भी खराब रहती है, बच्चे भी नहीं सुनते हैं, और रिश्तेदार भी हमें इस दशा में देख करके खुश होते हैं बनिस्पत इसके कि वो हमारी मदद करें, तो जीवन दुख में रहा है, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, हम करते करना

0: चाहते भी हैं तो भी नहीं हो पाता। तो जब ऐसी कंडीशन करते, कामिनी जी मुंबई से,
1: देखिए ये कहानी कामिनी बहन की नहीं, ये कहानी तो लाखों नारियों की है, पुरुषों की है, कि बचपन से ही परेशानियों में जीवन जिया, जैसे कि जन्म ही लिया इन सब चीजों के लिए, उनको जैसे जीवन में सुख देखना भाग्य में नहीं था, परेशानियों में, टेंशन में, फिर बीमारियां आ गई, फिर शादी हुई तो घर ऐसा ही मिला, फिर बच्चे आए तो बच्चे भी वैसे ही मिले, तो चारों ओर से मनुष्य अपने को घिरा हुआ महसूस करता है
0: जी।
1: कहीं ना कहीं मनुष्य के कर्म ही इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए इसका बहुत अच्छा समाधान है हमारे पास, ऐसे बहुतों के अनुभव हैं कि चित्त को शांत कर दिया, मन को खुशी से भरपूर किया, अपने विचारों को थोड़ा बदल दिया, थोड़ी ब्रॉडनेस लाए, संसार के लिए अपने दृष्टिकोण को बदला, तो सब कुछ बदलने लगा। तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ हम जन्म से लेकर आए हैं वो अंत तक चलता रहेगा, और इनको भयभीत होने की भी जरूरत नहीं। इनका भय तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कल पता नहीं क्या हो जाए, कल कौन सी नई चीज सामने आ रही है, कल पता नहीं किसका फेस करना पड़ेगा, किसका मुंह देखना पड़ेगा कल, तो भय इससे इनका बढ़ता जाता है। इसलिए इनको मैं राय दूंगा, इनके लिए ईश्वरीय ज्ञान लेना बहुत बहुत आवश्यक है। ये परम पिता से जुड़े और आत्मा के सच्चे स्वरूप को रियलाइज करें। आत्मा तो है ही सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप है हम। अपने इन स्वरूपों को इसका रियलाइजेशन होगा, इसके जीवन में खुशी लौटेगी, और बस उस क्षण की इंतजार है कि जिस क्षण इनके जीवन में खुशी लौटाए, उस क्षण से इनका जीवन पूरा बदलता रहेगा। तो ये राजयोग मेडिटेशन भी अवश्य सीखें। जीवन की दुविधाएं, परेशानियां इन्होंने देख ली हैं, लेकिन उससे निकलने का मार्ग भी है। ये समस्याओं से भयभीत हैं और समस्याएं इनके मानस पटल पर, इनके सबकॉन्शियस माइंड पर हावी हो गई हैं। उसके अलावा इनको कुछ नहीं दिखता और हर चीज इनको परेशान करती है, फिर मनुष्य की परेशान होने की आदत भी हो जाती है। तो राजयोग के माध्यम से ये अपना सब कुछ बदल सकती हैं, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग मैं इनके सामने रखना चाहूंगा। ये थोड़ा जल्दी उठें सवेरे, प्रकृति के सौंदर्य को निहारें, हो सके तो अपनी छत पर जाएं अगर संभव हो, अगर इनके पास कोई छोटा मोटा बगीचा हो, वह भी ना हो, तो ये उसमें टहले और प्रकृति की सुंदरता को निहारें। कितना सुंदर है ये संसार, कितना सुंदर होगा इसको बनाने वाला, कैसी सुंदर क्रिएशन है। समय पर सूरज निकल रहा है, चांद की कलाएं घट पड़ रही हैं, धरती घूम रही है, कैसा ये साइकिल चल रहा है, सर्किल चल रहा है इस यूनिवर्स का, इस अंतरिक्ष का, कितनी सुंदर रचना है, किसने प्लानिंग किया होगा इसका, है देखिए ऋतुएं बदल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, कैसी वंडरफुल रचना है। अगर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, जीव जंतु हैं, शोभा है इस संसार की, रात होती है तो आसमान में तारे चमकने लगते हैं, कभी बादल आते हैं, निहारे जरा इस संसार की सुंदरता को, तो इसके मन पर जो गम के काले बादल आ गए हैं वो हटेंगे, और सवेरे उठते ही पहले 10 मिनट में ये सुंदर विचार अपने मन में क्रिएट करेंगे, और पहला विचार करें, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। बड़े खुले दिल से कई कई बार सोचें, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं अपने जीवन से, अपने इस पार्ट से बहुत संतुष्ट हूँ, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है। यद्यपि इसको ये सोचने में भारी लगेगा क्योंकि सब कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये कोशिश करें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। दूसरे लोगों को देखो, उनको वो देखे जिसको पैर नहीं है, उनको वो देखे जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, विकलांग बने बैठे हैं, भिखारी बने बैठे हैं, याचना कर रहे हैं, उनकी भेंट में ये विचार करे, मुझे भगवान ने कितना अच्छा जीवन दिया, अच्छा शरीर दिया है, पैसा मेरे पास है, घर भी अच्छा है, बच्चे भी हैं। उन लोगों को देखे जिनको बच्चे नहीं है, उनको कैसी एक अंदर में अभाव रहता है, एक मिसिंग फीलिंग रहती है, अपने को वो दुर्भाग्यशाली महसूस करते हैं, दूसरों के बच्चों को देखते हैं तो कैसा लगता है, मेरे पास बच्चे हैं, परिवार है, अच्छा काम धंधा है। अपने जीवन को कंपेयर करें जरा, तो लगेगा सचमुच हम तो बहुत अच्छे हैं, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो सवेरे सवेरे ये सुंदर विचार किया करें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, तो इसका भाग्य बदलने लगेगा, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं आत्मा तो सुख स्वरूप हूँ, तो दुखों के काले बादल छंटने लगेंगे, मैं तो बिल्कुल शांत हूँ, तो शांति नष्ट होने लगेगी। स्वमान का अभ्यास कर ले, राजयोग सीखे और स्वमान को सीख ले बहुत अच्छी तरह, मैं तो देव कुल की महान आत्मा हूँ। तो इसे अपने चित्त के इस अंधकार को मिटाना है, क्योंकि इन पर पास्ट का बैड इफेक्ट है, इनके साथ ऐसी घटनाएं संभव है हुई हो पूर्व जन्मों में, पिछले 200-250 साल में, जिनका गहरा इफेक्ट इनके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ गया है। अब वो अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है, वो ब्रेन को इफेक्ट कर रही है और उसे बाहर नहीं निकल पा रही, इसलिए इन्हें एक तो थोड़ा सेवाओं में लग जाना पड़ेगा, थोड़ा खुला माहौल देना पड़ेगा अपने को, घर का जो एक परेशानियों का माहौल है उन्हें ही देखते हैं, परेशानी होती है, कुछ याद आता है, कुछ अपने को चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सेवाओं में लगेंगी। जब ये राजयोग सीखते हैं तो हमारे यहाँ सेवाओं के कार्यक्रम बहुत होते हैं, ज्ञान देने के कार्यक्रम बनाए जाते हैं, लोग आते हैं, उन्हें ज्ञान दिया जाता है, इससे खुशी बहुत बढ़ती है। तो इन्हें ऐसा कुछ करना है कि इनके जीवन में खुशी बढ़े। अभ्यास और साधना ऐसी चीज है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो वो चीजें इसे जरूर एक दिन इससे बाहर निकाल देंगे।
0: बिल्कुल, इस परिधि से थोड़ा सा बाहर निकले, जिस दायरे में ये जी रही हैं वहाँ कहीं ना कहीं उनको निराशा रहती ही रहती है, सब चीजों को देख करके विचारों में परिवर्तन लाए, थोड़े से इस दायरे से बाहर आए और कंटिन्यू।
1: मैं एक चीज और कहूंगा कि अपने बच्चों से खेले बहुत अच्छी तरह, 2-3 बच्चे हैं, एंजॉय करें आपस में थोड़ी देर, थोड़ा भूले, वो नहीं पढ़ रहे, वो मेरी बात नहीं मान रहे, वो ये कर रहे, वो कर, ये नहीं, बच्चों को बैठाए, मनोरंजन करे, कुछ ऐसा साधन बना ले जिससे सब आपस में एक घंटा अच्छा व्यतीत कर लें, तो बच्चों की ओर से इसको खुशी मिलने लगेगी। प्यार तो इसको देना चाहिए बच्चों को, पर उनकी ओर से इसको बहुत कुछ मिलने लगेगा और इस तरह ये इस परिधि से बाहर आ जाएंगे।
0: कई बार जैसे इन्होंने तब भी कहा था कि जब ब्रह्मा कुमारी कर्मों की बात करती है कि भाई ये कर्मों का परिणाम है, पिछले जन्म में शायद आपने कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जिसके कारण ऐसी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो कई बार ये बात भी हमें डिप्रेशन की ओर ले जाती है, कई बार हमें बहुत ज्यादा निराश और दुखी कर देती है, तो क्या इसकी चर्चा की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए?
1: देखिए, इसकी चर्चा तो केवल इसलिए की जाती है कि हम अपने कर्मों को सुधार लें। भाई हमने पीछे कुछ गलती कर दी है, एक समझदार मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि वो गलती अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं बताया जाता तो मनुष्य ये सोच सोच कर दुखी रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत लोग तो सुखी हैं, सब तो एंजॉय कर रहे हैं, सबके परिवार तो बहुत अच्छे, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसकी जस्ट एक अवेयरनेस दी जाती है और ये बताया जाता है कि अब तुम ऐसे पाप करो ही नहीं जिससे तुम्हारा भविष्य फिर कष्ट में हो जाए। तो केवल ये लक्ष्य है, क्योंकि ज्ञान देना तो परम आवश्यक है ना, नहीं तो मनुष्य फिर वही करता रहेगा। अब मान लो इनके केस आप देखो कामिनी का, ये थोड़ी परेशान रहती है, तो जो व्यक्ति परेशान रहता है वो दूसरे को परेशान जरूर करेगा, जो व्यक्ति परेशान रहता है उसके मुख से अच्छे शब्द निकलेंगे नहीं, वो अपनी परेशानी के कारण दूसरों की इंसल्ट करेगा, उसे कुछ बोलेगा, दूसरों का सुख उससे सहन नहीं होगा, तो ये नए पाप बनेंगे, इसमें वृद्धि हो जाएगी। इसलिए कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान देना, पुण्य क्या है पाप क्या है, ये ज्ञान देना मनुष्य को परम आवश्यक है।
0: बिल्कुल दत्त जी, हम उम्मीद करते हैं कि कामिनी जी का जो प्रश्न था और बचपन से ही लेकर के अब तक जो समस्याओं में जी रही हैं, निश्चित रूप से जल्दी इन अभ्यास
1: बिल्कुल हो जाएंगे, ये हमारी शुभ भावनाएं हैं, ये परमात्म छाया में आ जाए, उसका प्यार इसको मिलेगा और ये अपनी सारी ये मन की दुविधाएं और परेशानियां अपने परम पिता को अर्पित भी कर दें, ये भी एक विधि होती है, तो उसका अटेंशन इनके ओर आ जाएगा और उनकी मदद इनको मिलने लगेगी, उनकी ओर से खुशी के वाइब्रेशंस इनको प्राप्त होने लगेंगे, ये एक यूनिक प्राप्ति और होती है राजयोग के फील्ड में। तो बाबा शिव बाबा इनको इस दुविधा से निकालने में भरपूर मदद करेंगे, क्योंकि उसके बच्चे हैं और जो उससे अपना नाता जोड़ते हैं, जो उसको अपनी बातें रखते हैं उसके सामने, भाई हम उसको कुछ सुनाएंगे ही नहीं तो वहां सुनवाई कैसे होगी। तो हम उसको कुछ सुनाते हैं, अपने को उसके आगे अर्पित कर देते हैं, तो वो भी अपनी खुशी, बहुत सारी चीजें

0: भावना है, हम सोचे वो भी है हमारे साथ, हम क्या उसको पूरे भुला बैठे हैं, अपने चक्र व्यूह में उलझ गए हैं, लेकिन हम ये ना बोलेंगे वो भी हमारे साथ है और वो हमारी केयर करने के लिए तैयार है, हम केवल उसके पास पहुंचे, उससे अपना नाता जोड़े और फिर देखें कि बड़ी बड़ी समस्याएं कैसे पलक झपकते ही हल होती है।
1: आपके पास सैकड़ों लोग, हजारों लोग आते हैं, मिलते हैं, फोन करते हैं, ईमेल करते हैं, कमली जी के लिए कोई ऐसा अनुभव कि किसी का जीवन ऐसे ही बहुत ज्यादा परेशानियों से भरा रहा हुआ, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कह लीजिए, जवानी तक कह लीजिए, और उन्होंने अपनी ये सारी समस्याएं उस परम पिता को अर्पित की हो और उसका जीवन बहुत सुखमय हो गया हो।
0: मैं विशेष रूप से लोगों को सिखाता हूँ, और शिव बाबा ने भी अपने महावाक्यों में वो बात सिखाई है, वहीं से मैंने सीखी है कि रात को रोज बाबा के नाम, भगवान के नाम, उसको अपना मित्र बनाकर खुदा दोस्त के नाम एक पत्र लिखने लगो आप, छोटा सा 5-10 लाइन का, बिल्कुल जैसे हम अपने किसी हितैषी को, अपने परम मित्र को जिससे हमारा बहुत प्यार है, जिससे हम बहुत समीप हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो ऐसे ही अपने खुदा दोस्त को लिखकर लिख देने लगो सब चीजें, और इसका चमत्कार देखें, ये बहुतों के जीवन में हो चुका है। मैं बिजनेसमैन को बताता हूँ ये बात कि आपके बिजनेस में दुविधाएं आती हैं, आप एक नियम बना लोगे, सोने से पहले मुझे अपने खुदा दोस्त के साथ 10 लाइनें लिखनी है पत्र में, तो उससे जुड़ भी जाएंगे, उसको अपनी बात कहने की एक आदत पड़ जाएगी, लोग बिल्कुल रिलैक्स होने लगते हैं, महसूस होता है, बहुतों को तो ये पता चलता है, अनुभव होता है कि समस्या हमने लिख दी अपने खुदा दोस्त को, अगले दिन सवेरे ऊपर से आने लगी कुछ इंट्यूशन, उस समस्या का समाधान। तो ऐसा बहुतों का जीवन बदला है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोगों के हैं, लेकिन उन सब का नाम तो नहीं लिया जा सकता, पर ऐसे अनुभव हजारों हैं।
1: बिल्कुल, तो रात को ये पत्र लिख करके भी अपनी सारी समस्याओं को अर्पित कर सकती है, हल्कापन से महसूस करेंगे और साथ ही परमात्मा की ओर से कुछ बहुत अच्छे इंट्यूशन भी इन्हें प्राप्त होंगे। दादा जी, जो हमारे पास एक मेल आया है, ये नम्रता भूटानी जी का है और ये कहती है, ओम शांति, आई हैव बीन वॉचिंग योर शो ऑन पीस टीवी एंड रियली लाइक इट। आई हैव अ क्वेश्चन, माय यंगर सिस्टर इज अ डेंटल स्टूडेंट एंड इज स्टडीइंग इन कर्नाटका। सिंस लास्ट 2 इयर्स ही हैज नॉट बीन एबल टू क्लियर हर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड इज दस नॉट प्रमोटेड। सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल एंड वी आर सरप्राइज्ड to see why an intelligent girl can't pass her exams. She has also become irritated and short-tempered. She sleeps excessively due to low mood. We are very concerned. Please advise what should we do. Om Shanti. Namrata ji.
0: हाँ, देखिए, ये बात तो किसी की भी समझ में नहीं आएगी कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्यों फेल हो रहा है
1: जी।
0: और इसका डिप्रेस्ड होना भी बिल्कुल नेचुरल है,
1: और टेंपर्ड हो गई है,
0: गुस्सा भी आएगा, सोएगी भी ज्यादा
1: फेल,
0: क्योंकि वो मन खुश नहीं रहेगा तो सोचेगी सो जाए। ऐसा ही एक केस मेरे पास भी आया, एक माता आई, मेडिकल में उसका बच्चा पढ़ता है और फाइनल ईयर में सब कुछ क्लियर होने के बाद एक एग्जाम में कोई इंटरनल एग्जाम होता है, उसको क्लियर नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल डिप्रेशन में, 5 बार उसने दिया है, उसका प्रोफेसर कहता है क्या करें हम, इसे नहीं हो रहा है अच्छा, तो वो हमसे मिलता नहीं है, उसको ईगो बहुत है, लेकिन उसकी माँ ने कहा ईगो तो उसमें है ही नहीं, वो तो बहुत नम्र है, लेकिन वो बहुत इंट्रोवर्ट है। कहीं कहीं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्जन जो हमारी अंतर्मुखता है, ये मनुष्य को हीन भावनाओं में ले जाती है। तो मैं उसकी बात सुन के समझा कि इसको बहुत हीन भावनाएं हो गई है, तो ये बात इनके केस में भी है, तो इनमें हीन भावना हो गई है, ये अपने में कॉन्फिडेंस खोती जाती है, लेकिन मैं इनके लिए एक छोटी सी बात कहूंगा, ये फिर से जगे जरा, अधीन न हो जाए इन चीजों के, निश्चित रूप से ये बुरी बात है कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट इस तरह असफल हो रहा हो, सब भी सोचते हैं, उसका भी, उसको ये डर भी होता है कि मेरी बदनामी हो रही है चारों ओर, समाज मुझे क्या कहेगा,
1: परिवार वाले
0: परेशान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई अवश्य है, उसको उस गलती को भी करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आजकल लड़कों में हो रहा है ना कहीं मन भटक जाता है, किसी के भी प्रेम में फंस कर लड़के लड़कियां अपनी एकाग्रता को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बार बार वो अच्छा लिख रही हो और एग्जामिनर उसको नंबर ना दे रहा हो, ऐसा तो बार बार नहीं होगा, एक आध बार हो सकता है। तो उस चीज को भी उसे करेक्ट करना चाहिए कि जिसके कारण इसको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, लेकिन ये थोड़ा जल्दी उठें, थोड़ा सा अपने को चार्ज करें और सवेरे उठकर ये 3 संकल्पों का अभ्यास करेंगे।

0: एक है मैं भगवान की संतान मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, दूसरा है मैं विघ्न विनाशक हूँ, और तीसरा है सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पांच बार करें इसी क्रम से, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया किसी भी कारण से मनुष्य के जीवन में कोई विघ्न आने लगते हैं, उनका कभी कभी कारण भी नहीं समझ में आता मनुष्य को, अननेसेसरीली, जैसे इनका केस
1: एक तो
0: ऐसा व्यक्ति होता है जो सेकेंड क्लास हो, लेकिन जो फर्स्ट क्लास है उसको असफलता मिल रही है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बैड चीज काम कर रही है, बैड एनर्जी काम कर रही है। तो ये इस अभ्यास से उसके ये जो विघ्न है वो नष्ट हो जाएंगे और लाइन क्लियर हो सकती है। और अगर इसके घर में कोई राजयोग मेडिटेशन करता हो, इसकी बहन, इसकी माँ, इसका कोई भाई, तो वो इसको आधा घंटा योगदान भी करें। ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है कि हम दूसरों के लिए योग अभ्यास कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं अपने योग को दूसरों के लिए, ताकि उसके जीवन में जो एक दीवार आ गई है, एक बैरियर आ गया है, वो हट जाए।
1: बिल्कुल राधा जी, क्या ये भी किया जा सकता है कि उस बच्ची के साथ बैठें पेरेंट्स या इनके जो भी एल्डर्स हैं वो, और बैठ करके थोड़ी चर्चा भी करें कि आखिर में क्या प्रॉब्लम हो रही है। कहीं हो सकता है कई बार रैगिंग आदि की कई बार प्रॉब्लम होती है या कोई इस प्रकार की समस्या होती है, तो क्या पेरेंट्स को ऐसे बैठ करके थोड़ा सा
0: पेरेंट्स कभी कभी बच्चे नहीं भी खुलते हैं, या तो माँ या उसकी बहन या भाई या कोई भी जो उसके बहुत क्लोज है जिससे वो खुल सके। ये बहुत जरूरी है कि वो खुल के बात करे, अपने मन की सारी बात बताए। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है अवश्य, और वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक वो अपने दिल को खोलेगी नहीं। मुझे तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कारण बन रहा है, रैगिंग का हुआ हो, कहीं अफेयर हो गया हो, कोई और चीज हो गई हो, क्योंकि बार बार ये होना ये किसी विशेष कारण से ही होता है। एक बार हो गया तो ऑल ऑफ ए सडन भी मनुष्य मान लेता है भाई कोई बुरा समय आ गया।
1: हम उम्मीद करते हैं कि नम्रता जी की जो बहन है बिल्कुल अब सफल होती चले और अपने जो भी है मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा नाम रोशन करे अपने पेरेंट्स का। दादा जी, हमारे पास एक केस में आया था, इसमें इन्होंने रक्षाबंधन की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं, कहती हैं हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को, पूरे समाधान परिवार को। और इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि समाधान का समय पूरे एक घंटे का हो जाए, क्योंकि समाधान की लोगों को ज्यादा जरूरत है, जिनसे उनकी जो उलझन है वो सुलझती है। सो प्लीज, ये हमारे लिए सौगात है, आपने उपहार दिया था, तो इन्होंने ये उपहार मांगा है कि समाधान का समय एक घंटे कर दिया जाए।
0: ठीक है, इनकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी, लेकिन रोज क्योंकि प्रोग्राम देना है और इतना समय तो होता भी नहीं, और भी प्रोग्राम बहुत होते हैं। खैर, इसी प्रोग्राम को डबल टाइम भी कर दिया जाएगा सवेरे से हम, ताकि सभी को इसका फायदा हो सके।
1: कई हमारे व्यूअर्स हैं राधा जी, उन्होंने भी ये बात कही है कि कई कई लोगों को, जैसे जो दफ्तर जाने वाले होते हैं वो कहते हैं कि सुबह में जल्दी निकलना होता है, स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी जाना होता है, तो हम या तो दो बार इसे दें या फिर शाम का कोई ऐसा समय रखें जिसमें सभी लोग इसे देख सकें।
0: देखिए, एक ही समय तो सब लोग लाभ नहीं उठा पाते, हर एक की अपनी अपनी दिनचर्या है, लेकिन दो टाइम अगर ये प्रोग्राम आने लगे तो बहुतों को फायदा होगा। जैसे विद्यार्थियों के लिए हमने बहुत सारे एपिसोड तैयार किए प्रारंभ में, तो एग्जाम से पहले एक मास पहले से अगर वो दिखाए जाएंगे तो निश्चित रूप से सारे देश के और जहां जहां भी ये चैनल जाएगा विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनका एग्जाम फियर खत्म होगा, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जहां जहां कुछ गड़बड़ होती है वो ठीक करने का उन्हें मौका मिल जाएगा। तो हमारी भी यही संभावना है, हम तो बल्कि ये सोचते हैं कि हर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख ले, जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं कि हर समस्या का समाधान होता ही है, लेकिन मनुष्य अपनी समस्याओं में इतना उलझ न जाए कि वो समाधान के बारे में कुछ सोच ही ना पाए, और वो यही सोचता रहे कि आखिर ये समस्या कब खत्म होगी, आखिर इससे हम कब निजात पाएंगे, ये तो बहुत बुरी चीज हमारे सामने आ गई, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है उसको अप्लाई करे, उसको यूज करे, तो जरूर वो इससे बाहर निकल आएगा और हर मनुष्य अपनी अपनी अंदर की शक्तियों को भी पहचाने, उन्हें बढ़ाए, अपने को पॉजिटिव करे, अपने में कुछ सच्चे गुण धारण करे, अपने व्यवहार में बदलाव लाए, बहुत सॉफ्ट बने, स्वीट बने, ईगोलेस बने, एंगरलेस बने, तो समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी और फिर जो आएगी वो राजयोग के माध्यम से नष्ट हो जाएंगी।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदा जी, आपने बहुत सुंदर प्रकाश आज भी हमारे दर्शकों को प्रदान किया है, आपका ढेर सारा धन्यवाद। मित्रों, जैसे भरता जी कह रहे थे कि समाधान का लक्ष्य केवल ये नहीं है कि हम आपकी समस्याओं को दूर करें, बल्कि इसका एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है कि आप इतने शक्तिशाली बन जाएं, आप इतने गुणवान बन जाएं कि समस्याएं यदि आए भी तो वो समस्याएं आपको बिल्कुल चींटी की तरह प्रतीत हों, हल्की प्रतीत हों। तो आप ऐसे ही अपने आप को शक्तिशाली बनाते चलें राजयोग के अभ्यास के माध्यम से, सुंदर चिंतन के माध्यम से और साथ ही साथ अच्छे अध्ययन के माध्यम से। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन सभी समस्याओं से मुक्त हो और यदि यदा कदा समस्याएं आ भी जाएं तो आप सहज ही उन पर विजय श्री हासिल करें।
2: रन रन रन,
3: दौड़ो दौड़ो दौड़ो।
4: आओ दोस्तों, दौड़ लगाते हैं 9 अगस्त को
3: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन।
4: जी हाँ, इसका थीम है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। संडे अगस्त 9 को ये मैराथन शुरू होने वाला है
3: सुबह 5 बजे।
4: तो आप सभी का इस मैराथन में भरपूर स्वागत है और आप सभी इस मैराथन में भाग लेकर रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जरूर बढ़ाइए। जी हाँ, इस भाईचारे को दुनिया भर में जरूर फैलाइए। इस मैराथन में भाग लीजिए और खुशियाँ दुनिया भर में बांटिए।
3: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन।
5: आवश्यक सूचना, 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबूराज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वो पहाड़ देख रहे हो?
1: हाँ, कितना सुंदर है।
0: और उनको देख रहे हो?
1: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
0: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
2: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

राम राम सुप्रभात सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे ज़रूर। और कल हम मैराथन के शुरुआत के दौरे में आपके साथ रहेंगे और मैराथन एंडिंग के दौरे में भी आप सभी के समक्ष रहेंगे, यानी कि कल हम सब लोग मिल करके मैराथन दौड़ेंगे। आज शनिवार है, हनुमान जी को याद करते हैं और इसके साथ साथ शनिवार के इस सुबह सुबह आप सभी के साथ बात करने के लिए गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम के अंतर्गत पधारी है। तो वंस अगेन राम राम सुप्रभात सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम वेदर रिपोर्ट्स के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात भी सुनेंगे और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के बातों के ऊपर नज़र डालेंगे, आसपास के खबरों के ऊपर भी नज़र डालेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। जी हाँ, रियल इन्फॉर्मेशन भी आप तक हम पहुँचाएंगे।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आइए चलते हैं हम आज के दिन के पंचांग के बारे में जानते हैं। आज के पंचांग के बारे में सक्षमद 1948 श्रवण कृष्ण दशमी शनिवार विक्रम संवत 2083 है। अंग्रेजी तारीख 8 अगस्त सन 2026। सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु है। राहुकाल सुबह 9:01 पर शुरू है और 10:30 तक। दशमी तिथि दोपहर 1:59 तक उपरांत एकादशी तिथि का आरंभ है। रोहिणी नक्षत्र शाम को 4:51 तक उपरांत मूर्गशिरा नक्षत्र का आरंभ है। ध्रुव योग प्रातः 9:02 तक उपरांत व्याघ्यात योग का आरंभ है। विष्टिकरण दोपहर 1:59 तक उपरांत भवकरण का आरंभ है। चंद्रमा अगले दिन तड़के 3:48 तक फिर वृषभ राशि पर उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगा। सूर्यदेव कर्क राशि में स्थित हैं और चंद्रदेव वृषभ राशि में अगले दिन तड़के 3:48 तक 9 अगस्त तक फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त 3:55 से 4:41 तक था। अभिजीत मुहूर्त 12:00 से लेकर 12:53 तक है। अमृतकाल दोपहर 1:54 से दोपहर 3:22 तक है। तो ये कुछ पंचांग के अनुसार बातें थी। इस्लामी हिजरी के अनुसार 1447 से आज 13 सफर जुम्मा बलदा आज के दिन है। आज वर लक्ष्मी व्रत है आज के दिन। वर लक्ष्मी व्रत भारत में धार्मिक व्रतों में से एक है। श्रावण पूर्णिमा पर जब शुक्र पूर्व में स्थित रहते हैं तब वर लक्ष्मी व्रत किया जाता है। घर के उत्तर पूर्व में एक मंडप का निर्माण जहां पर कलश स्थापना और जिस पर वरलक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है और श्री सूक्त के साथ पूजा की जाती है आज के दिन। तो ये आज के दिन विशेष के साथ जुड़ी हुई थी बातें। आइए सुनते हैं ये भजन।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आइए चलते हैं वेदर रिपोर्ट्स की ओर। और सबसे पहले राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पर 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 25 डिग्री तक जा सकता है। और बिजली के लिए यहाँ पर येलो निगरानी, यानी कि पीली निगरानी जो है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। उदयपुर में 33 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 24 डिग्री तक जा सकता है। दिन के समय बारिश होने की संभावना नहीं है, रात्रि के समय जोरदार बारिश होने की संभावना है। आबूरोड में 24 डिग्री न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है। और रात्रि के समय बारिश होने की संभावना है, दिन के समय बहुत कम ड्रिजलिंग होने की संभावना है। माउंट आबू में 24 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 19 डिग्री, रात्रि के समय बारिश होने की 90% तक संभावना है, दिन के समय सिर्फ 55% तक संभावना है। पाली जिले में 32 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 27 डिग्री तक, रात्रि के समय बारिश होने की संभावना है, दिन के समय नहीं है। जोधपुर में 32 डिग्री और अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और यहाँ पर बारिश होने की संभावना दिन के समय थोड़ा कम है, रात्रि के समय 87% से ज़्यादा है। बाकी वेदर रिपोर्ट्स की वेदर जानकारी यहाँ हम आप तक पहुँचाएंगे। अभी बज चुके हैं रेडियो मधुबन की घड़ी पर 8। आइए शांति में कुछ पल ठहरते हैं। दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन में आने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए शुभभावना शुभकामना करें और प्रकृति का भी धन्यवाद करें खुशनुमा मौसम के लिए।
1: अभी बजे हैं सुबह के 8। स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: वेलकम बैक। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू, 8:02 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। आज 8 अगस्त 2026 शनिवार। आइए चलते हैं फिर से वेदर रिपोर्ट की ओर। सूरत में 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। दिन के समय यहाँ पर वर्षा की संभावना 56% तक है। रात्रि के समय में भी वही 56%, यानी कि 50-50 संभावना है। यहाँ पर एक हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
3: नमस्ते नमस्ते दीदी जी, मदन भाई बोल रहा हूँ।
2: जी मदन भाई, कैसे हैं आप?
3: बहुत बढ़िया हूँ, और आपके समाचार सुन रहे हैं। और बस आज हमारी दादी का पुण्यतिथि है तो हम उनको नमन करते हैं।
2: दादी जी की पुण्यतिथि आज नहीं है।
3: अच्छा अच्छा,
2: दादी जी की पुण्यतिथि है 25 अगस्त को। मैराथन के उपलक्ष्य पर जो आए हैं दौड़ने के लिए धावक, उनके लिए शुभकामनाएं कर रहे थे। और ये दादी जी के निमित्त मैराथन होने वाली है कल।
3: जी, तो हम तो दादी जी का वो सुनी दीदी सुन के हमारा तो रोंगटा खड़े हो गए, कोई हम पहले से ही शुभकामना दे देते। तो हम आपको नमस्कार करते हैं रेडियो मधुबन को, और गुड मॉर्निंग आबू को, और हमारे शिवा दीदी को, और हमारे सभी शो को
2: नमस्कार। धन्यवाद आपका, आप याद करके कॉल करते हैं इसलिए आपको भी नमस्ते, धन्यवाद।
3: जी जी जी,
2: ना इतने खुश तो रहते रेडियो मधु,
3: हाँ हम रह नहीं सकते आपकी आवाज वगैरह और रेडियो मधुबन की वगैरह, और हमारे सभी दोस्तों की। या हमारे तो यही घर पे सुनते हैं तो फिर फोन करते ही रहते हैं, और कब बाजार में निकलने के बाद में धंधे में फिर वो बिल्कुल थोड़ा देखते हैं ना, जिस टाइम में हम याद करते हैं और फिर काम आ जाता है तो फिर कार्य करते हैं, फिर ईश्वर के साथ लग जाते हैं, कभी धंधे पे लग जाते हैं, यही हमारा है। तो आपको नमस्कार करते हैं, और बढ़िया सा आज के दिन का गाना लगा दिए। अब गाने तो हमारे मधुबन में सब हमारी पसंद का ही है, आप लगाएंगे वो सब बच्चे ही होंगे। नमस्कार दीदी जी,
2: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।
3: जी जी जी,
2: तो ये हमारे मदन लाल भाई जी, और जिन्होंने दादी की बात सुनकर के उन्हें लगा कि आज पुण्यतिथि है, लेकिन दादी जी की पुण्यतिथि 25 अगस्त को है। दादी जी के निमित्त कल मैराथन का आयोजन किया जा रहा है आबू में, तो इसीलिए बहुत सारे धावक भी आए हुए हैं इस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हम सब भी कल दौड़ेंगे मन से, रेडियो के साथ साथ सबको सपोर्ट करेंगे, शुभावना शुभकामना भेजेंगे। आइए फिर से लौटते हैं हम वेदर रिपोर्ट की ओर। सूरत के बाद अब चलते हैं मेहसाना की ओर। मेहसाना में 36 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 26 डिग्री, बारिश होने की संभावना दिन के समय रात्रि के समय 60-60% तक है। राजकोट में 32 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 26 डिग्री, दिन के समय 87% तक संभावना बारिश होने की, और रात्रि के समय सिर्फ 17% तक है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर। गांधीनगर और अहमदाबाद में 26 डिग्री न्यूनतम तापमान, और अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है, और 60% से ज़्यादा संभावनाएं बारिश होने की। बात करें अगर राजधानी दिल्ली के बारे में, राजधानी दिल्ली में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकते हैं, यहाँ पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। फिलहाल कोलकाता में बारिश होने की संभावना 96% से ज़्यादा है, 32 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है। और बेंगलुरु में 29 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक जा सकता है, यहाँ पर 55% तक संभावना है बारिश होने की। बात करें अगर हम मुंबई के बारे में, तो मुंबई में 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है, 60% तक दिन के समय और रात्रि के समय बारिश होने की संभावना है। वहीं पर चेन्नई में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। जिला सिरोही के बारे में बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना यहाँ पर रात्रि के समय 93% तक है और दिन के समय 64% तक है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे वेदर रिपोर्ट्स के साथ। आइए लेते हैं यहाँ पर एक अल्प विराम।

0: अष्ट भंजन देवनी जय।
1: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आइए चलते हैं हम आबू रोड रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां।

गाड़ी संख्या है 1, 2, 5, 4, 7 8:25 पर पहुंचने वाली है आगरा कांड साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अरावली एक्सप्रेस 1, 4, 7, 2, 7, 0, 2 8:30 पर आबरूड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। 8:45 पर ट्रेन ऑन डिमांड 04174 संख्या वाली गाड़ी आबूरोड रेलवे स्टेशन पर 8:45 पर पहुंचेगी। ये गाड़ी वेरावल से निकलती है और प्रयागराज तक जाती है। वंदे भारत एक्सप्रेस 1, 2, 4, 6, 1 5 देरी से पहुंचेगी। 9:10 पर संभावित प्लेटफॉर्म 2 है। जम्मू तवी से साबरमती तक जाने वाली एक्सप्रेस 1, 9, 2, 2, 4 9:45 पर पहुंचेगी। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जोधपुर बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20693 10:10 पर पहुंचने वाली है। अजमेर एक्सप्रेस 1620 10:15 पर 1:05 देरी से चलती हुई पहुंचने वाली है। वहीं पर पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 1, 9, 2, 6, 9 10:27 पर 3:17 देरी से चलती हुई पहुँचने वाली है। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20496 10:30 पर पहुंचेगी। बांद्रा टर्मिनस से भगत की कोठी तक जाने वाली एक्सप्रेस 22965 11:05 पर पहुंचने वाली है। दौलतपुर गांधीनगर एक्सप्रेस 1942 11:30 पर पहुंचेगी। साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस 1482 11:40 पर पहुंचने वाली है। योगा एक्सप्रेस 19032 1:10 देरी से चलती हुई 12:00 को पहुंचने वाली है आबूरोड रेलवे स्टेशन पर। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे रेलवे ट्रेन्स के साथ, रेलवे इन्फॉर्मेशंस के साथ, जो आबूरोड रेलवे स्टेशन पर अब से 4 तक आने वाली है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो माधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। दादी प्रकाशमणि आबू मैराथन हाफ मैराथन, इसका टोटल डिस्टेंस 21.0975 है, जो स्टार्टिंग इसकी जो है मनमोहिनी वन के गेट नंबर 1 से होकर के और माउंट आबू के रास्ते से टोल टैक्स ओम शांति भवन के पास जाने के लिए टोल टैक्स, उसके बाद में अम्बेडकर चौराहा, फिर रोटरी चौराहा, फिर नक्की लेक, नक्की लेक से होते हुए भारत माता मंदिर से दादी प्रकाशमणि चौराहा और वहाँ से ओम शांति भवन तक रहेगी। ओम शांति भवन में इसका फिनिशिंग है और जितने भी रनर्स हैं, ये ट्रेल मैराथन है इसलिए इसका 4 घंटे का टाइम होता है, कट ऑफ टाइम 4 घंटा है। 4 घंटे तक जितने भी रनर्स आएंगे उन सबको हम मेडल्स देंगे। मेडल्स इस बार प्राइज सेरेमनी के बाद मिलेगा सबको। प्राइज सेरेमनी जो है प्रोग्राम 10 बजे से 11 बजे तक ओम शांति भवन में चलेगा। 11 बजे के बाद सारे रनर्स को मेडल दिया जाएगा, उसके बाद सारे रनर्स को

0: शांतियों में वापस आनंद सरोवर पहुंचने के लिए हमने बसेस की व्यवस्था भी की गई है। इस सारे आयोजन में हमारे साथ में माउंट आबू के काफी सारे संगठन जैसे कि टैक्सी यूनियन है, होटल एसोसिएशन है, भारत विकास परिषद है, अर्बुद ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, ऐसे काफी जो भी लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, जो अलग अलग समाज सेवी संगठन है वो भी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ CRPF, आर्मी, एयरफोर्स, इन सब का भी सहयोग है। CRPF से हमें 28 जवान बख्तरबंद हथियार के साथ मिलते हैं जो रूट पर पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी करते हैं। साथ में उनकी तरफ से हमें एम्बुलेंस भी मिलती है, सेम हमको एयरफोर्स से भी एम्बुलेंस मिलती है और उनके काफी सारे पार्टिसिपेंट और इस बार उनके CO साहब भी हमारे साथ मैराथन में भाग ले रहे हैं, वो खुद दौड़ रहे हैं। फिर उसके बाद आर्मी से भी हमारे को एम्बुलेंस मिल रही है और उनके काफी सारे क्रॉस कंट्री जो रनर्स होते हैं वो भी इस मैराथन में भाग ले रहे हैं। तो इस तरह से विशेष ये मैराथन है जो एम्स सर्टिफाइड है, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रेसेस की ये सर्टिफाइड मैराथन है और ऐसी मैराथन पूरे वर्ल्ड में ये पहले मैराथन है जो निःशुल्क की जाती है, जिसमें हम एक रुपया भी किसी से कॉस्ट या नहीं लेते हैं। इन मैराथन के रनर्स को हम 2 दिन से 3 दिन का स्टे हमारे पास देते हैं, बाद में उनको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारी व्यवस्थाएं होती है। साथ साथ में इनको शारीरिक तौर पर तो फिट ये रहते ही रहते हैं, लेकिन इनको हम मानसिक तौर पर फिट करने के लिए मेडिटेशन का सेशन भी अरेंज किया है, जिसको हम 3M रिट्रीट बोलते हैं, माइंड मेडिटेशन एंड मैराथन। ये रिट्रीट भी आज शाम को 7 बजे से लेकर के शुरू होगी और 2 दिन की ये रिट्रीट रहेगी, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट है जिसका शेड्यूल हम आपको शेयर कर देंगे। इसके साथ ही इस मैराथन में BMC बृहन मुंबई महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर आए हुए हैं, वो खुद भाग ले रहे हैं। इसके बाद जयपुर से रेलवे के हमारा जो GM है, GM साहब, वो भी हमारे पास पहुंचने वाले हैं, उनका भी मैराथन में रजिस्ट्रेशन है, वो दौड़ेंगे। साथ में राजस्थान के SBI के पूरे जोनल हेड डायरेक्टर जो है वो भी, अरूप सर हमारे बीच में आने वाले हैं, वो भी दौड़ेंगे। ये 2 जगह के मेयर है, जो मेयर भी है और मैराथन भी रन करते हैं, गोंदिया के मेयर है सचिन शेंटे सर, वो भी हमारे साथ मैराथन में है, वो भी दौड़ेंगे। इस तरह से अलग अलग नामी चंद व्यक्ति जो है वो मैराथन में है। इसमें खास प्रोफेशनल रनर्स भी है और ज्यादातर मेडिकल फील्ड से डॉक्टर लोग हैं जो मैराथन रन कर रहे हैं, और डॉक्टरों के साथ इंजीनियर और स्टूडेंट्स और काफी कुछ एथलेटिक्स भी इसके साथ में है। और इसकी जो प्राइज कैटेगरी हमने इस बार की है, विनिंग कैटेगरी, उसमें 3 है, एक ओपन कैटेगरी 18 से 40 साल के लिए, एक 41 से 60 साल मास्टर कैटेगरी और 61 to above वेटरन कैटेगरी। ये तीनों कैटेगरी में मेल फीमेल के हमने 71, 61 और 51,000 ऐसे प्राइस डिसाइड किए हैं। तो प्राइस अमाउंट भी काफी अच्छा है, साथ साथ इनको एक ट्रॉफी दी जाएगी और एम्स का सर्टिफिकेट इन सबको मिलेगा। और ऐसा ये बहुत भव्य दिव्य आयोजन हमारे दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति में हर साल हम आयोजित करते हैं। ये हमारी 8वीं मैराथन है। मैराथन का उद्देश्य ये है कि रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व के लिए दौड़ हम अरेंज करते हैं, जिससे पूरे विश्व में आपसी भाईचारा की भावना सबके अंदर प्रेरित हो, ये मैराथन का मेन उद्देश्य है।
1: रन रन रन, दौड़ो
2: आओ दोस्तों, दौड़ लगाते हैं 9 अगस्त को
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन।
2: जी हाँ, इसका थीम है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। संडे अगस्त 9 को ये मैराथन शुरू होने वाला है
1: सुबह 5 बजे।
2: तो आप सभी का इस मैराथन में भरपूर स्वागत है और आप सभी इस मैराथन में भाग लेकर रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जरूर बढ़ाइए। जी हाँ, इस भाईचारे को दुनिया भर में जरूर फैलाइए। इस मैराथन में भाग लीजिए और खुशियाँ दुनिया भर में बांटिए।
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन।

0: प्रणव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया। इतना तो
2: बिल्कुल इतना तो हम कर सकते ही हैं, कई बार हम भूल जाते हैं इतना करने, लेकिन अगर आप भूल जाए या कोई और भूल जाए तो हम आपस में एक दूसरे को याद दिलाएं। आजकल टेक्नोलॉजी भी चेंज हो चुकी है, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग अलग आप रखें, गीला कचरा और सूखा कचरा, और सूखे कचरे को आप रिसाइकलिंग के लिए भी दे सकते हैं। आइए चलते हैं, हम हमारे आसपास के घटनाक्रम और सूचनाओं के ऊपर नज़र डालते हैं। बात करें स्वाधीनता दिवस तैयारी उनको लेकर के, तो बैठक है 10 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा के लिए कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर जी के अध्यक्षता में 10 अगस्त को शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित होगी। वहीं पर जिले भर में जन कल्याण शिविर के अंतर्गत पंचायत समिति वार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कलेक्टर रोहिताश्व तोमर जी ने बताया 10 अगस्त को पंचायत काछोली में तथा पंचायत भटाना में, 11 अगस्त को पंचायत वाटेरा में तथा पंचायत समिति रेवदर की ग्राम पंचायत मकावल में शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये बातें हम आपको दैनिक भास्कर के जरिए पहुंचा रहे हैं। राजकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई सिरोही में राज्य स्तरीय केंद्रीकृत प्रथम सीट आवंटन से वंचित रहे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विकल्प संशोधन का मौका मिला है। नए आवेदन का अवसर भी दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 9 से 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल आदि में आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राहत मिली है। बारिश से भवन निर्माण मरम्मत काम प्रभावित हो रहे थे, इसके बारे में आगे जानते रहेंगे। और इस मोड़ पर एक हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
3: हेलो गुड मॉर्निंग आबू, नमस्कार, ओम शांति हमारी प्यारी मुना बहन जी।
2: नमस्ते,
3: सुबह सुबह सुबह बहन जी, सॉरी।
2: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, कोई बात नहीं जी। कैसे हैं आप दयाराम जी?
3: मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, हमारी दादियों की, बहनों की, भाइयों की, हमारे प्यारे श्रोता मित्रों की। और मैं कार्यक्रम आज सुन रहा हूँ, जो इंटरनेशनल बॉर्डर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर के एरिया के पास ही मैं 1 किलोमीटर दूरी पे हूँ अभी
2: जी। कैसे तो सुन रहे हैं आप, एप्लीकेशन के थ्रू?
3: जी बिल्कुल, मैं एप्लीकेशन के माध्यम से ही सुनता हूँ यहाँ पे। बहुत ही क्लियर आवाज आ रही है,
2: क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी तो नहीं पकड़ता है। हाँ जी,
3: दिया जा रहा है
2: जी।
3: और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो भारत के जो अंतिम छोर तक हमारे रेडियो मधुबन की आवाज आती है, हम सुनते हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है
2: जी।
3: और
2: जी, जी।
3: मैं बहुत दिनों के बाद हमारे रेडियो मधुबन परिवार के इस कार्यक्रम में जुड़ा हूं, तो मेरे प्यारे सभी श्रोता मित्रों को मेरी आवाज सुनने को मिलेगी, और वो भी कहीं तरस रहे होंगे कि दयाराम जी कहाँ गए, दयाराम जी कहाँ गए, जुड़ते नहीं है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और आज मैं जुड़ गया हूँ और जुड़ता ही रहूंगा, और सभी मित्रों को प्यार।
2: कौन से गाँव से बात कर रहे हैं आप
3: जी? दीदी
2: कौन से गाँव से बात कर रहे हैं आप?
3: मेरा गांव रामपुरा राजस्थान में है, जो हमारा जिला बाड़मेर है।
2: रामपुरा राजस्थान, वर्तमान समय आप रामपुरा से ही बात कर रहे हैं?
3: जी रामपुरा से मैं बात कर रहा हूँ, हमारा रामपुरा गांव बाड़मेर जिले में पड़ता है।
2: बाड़मेर में जी।
3: जी जी जी
2: ठीक है। और
3: आपको और सुनने वाले सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आज हनुमान जी का वार है, तो एक दीदी आपकी पसंद का हनुमान जी का भजन सुना देना।
2: जी बिल्कुल, सुना तो चुके हैं हम ऑलरेडी, और अभी मुझे लगता है समय नहीं इजाज़त देगा, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात भी सुनेंगे, लेकिन आगे के कार्यक्रम में आप सुनेंगे, ठीक है? हनुमान जी के भजन
3: बिल्कुल आगे कार्यक्रम
2: आशियाना है उसमें सुन सकते हैं।
3: धन्यवाद,
2: धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये है हमारे दयाराम जी फ्रॉम लाखनी से, और बहुत समय के बाद उन्होंने कॉल किया। आइए कुछ बातें जो जुड़ी हुई है हमारे आसपास के क्षेत्र के सूचनाओं के साथ वो जान लेते हैं। इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राहत मिली है, और 30 से सितंबर तक बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया जी ने निर्माण सामग्री परिवहन अनुमति टोकने की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं, और इससे सैकड़ों स्थानीय परिवारों को राहत मिलेगी। बारिश के कारण कई घरों के निर्माण मरम्मत काम अधूरे रह गए थे। आदेश के अनुसार अप्रैल और मई 2026 में जारी सामग्री परिवहन अनुमति पत्र और इसी अवधि में मिले आवेदनों के आधार पर जारी होने वाले टोकन अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में 9 से 17 अगस्त तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इसी क्रम में 9 अगस्त को कल तिरंगा प्रभात फेरी निकाली जाएगी। कलेक्टर रोहिताशु सिंह तोमर जी ने बताया कि प्रभात फेरी 9 अगस्त को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। सिरोही शहर में ये अहिंसा सर्कल से सुभाष पार्क तक निकाली जाएगी। अबुरुन शहर में उमस और बारिश के बीच सांप निकलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से घर, दुकान, बगीचे, अन्य जगहों पर सांप निकलने की घटनाएं बढ़ रही है। शुक्रवार को सर्प रेस्क्यू टीम को दिन भर अलग अलग जगहों से 13 सांपों का रेस्क्यू करना पड़ा, और टीम ने सभी सांपों को जंगल में छोड़ा। रेस्क्यू टीम के चिंटू यादव ने बताया कि शुक्रवार को उमरनी, मानपुर सहित अन्य इलाकों में लगातार सांप निकलने की सूचना मिली उनको। सुबह से शाम तक चिंटू यादव जी ने टीम सदस्य रणवीर सिंह के साथ अलग अलग जगह में सांपों को रेस्क्यू किया। उन्होंने उमरनी से कोबरा और एक अजगर, मईखेड़ा से अजगर और चंद्रावती से रेड स्नैक, अकराबटा से रेड स्नैक, तलहटी से भी रेड स्नैक का रेस्क्यू किया। चिंटू यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद, और उनकी टीम को भी, इतने प्रयास कर रहे हैं, सांपों को रेस्क्यू कर रहे हैं और साथ साथ जंगल में टेक्निक्स के साथ छोड़ भी रहे। डाकघरों में कैशलेस सेवाएं अब यूपीआई और क्यूआर कोड से सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी। सभी आधार केंद्रों पर डिजिटल पेमेंट सुविधा शुरू, नकदी और खुले पैसों की झंझट खत्म है। भारतीय डाक विभाग ने आधार सेवाओं के अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए सिरोही एवं झालर मंडल के सभी डाकघरों में संचालित आधार सेवा केंद्रों पर डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू कर दी है। अब आधार नामांकन और अपडेट से जुड़ी शुल्क सेवाओं का UPI, QR कोड और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सहित अन्य डिजिटल माध्यमों से जमा कराया जा सकेगा। डाक अधीक्षक अखाराम जी ने दैनिक भास्कर को बताया कि नई व्यवस्था से नागरिकों को नकदी रखने और खुले पैसे की समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही प्रत्येक भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, जिससे भुगतान संबंधी विवाद की संभावना भी कम होगी। उन्होंने बताया कि व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए मंडल के सभी संबंधित डाक कर्मचारियों को डिजिटल भुगतान प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाएगा। डिजिटल भुगतान से होंगे फायदा, UPI, QR कोड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से तुरंत भुगतान कर सकते हैं हम। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई है हमारे आसपास के साथ, और कल जैसे दादी प्रकाश मणि जी के पुण्य स्मृति को याद करते हुए 25 अगस्त को उनके पुण्य स्मृति है, लेकिन उनके पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य पर खास मैराथन का आयोजन किया जा रहा है 9 अगस्त कल। यहीं पर मैं रुकना चाहूँगी, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। अभी आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभ। शुभकामनाएं। नमस्ते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
2: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
0: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
3: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक एफसीआरए पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
4: We have seen the comments. हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
5: Regulate the flow of foreign funds.
0: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
5: While we are coordinated.
4: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
0: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
7: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
8: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
9: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
10: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान क्यूआर कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर ओपीडी रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
11: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही तीन विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के तीन विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर जल भराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा। कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, कान के रोग से बचना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर उपाय बताएंगे आपको। और आज सिखाने वाली हूँ कुल्फी, परंतु कौन कौन सी वाली वो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही जल्दी पूछने जा रही हूँ, बहुत ही सरल और सुंदर है। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: पुनः आशियाना में आप सभी का स्वागत है। आइए अब आज के विचार की तरफ बढ़ते हैं। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, जो आप ध्यान से सुनेंगे, कि कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। तो ये आज का विचार है, जिसका विश्लेषण हम इस प्रकार करेंगे एक दृष्टांत के साथ, कि एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता, एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर अपने घर वापस आ रहा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन थी। कुछ शरारती लड़कों ने जब उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उस पर व्यंग बाण छोड़ने लगे। अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है, अंधे को लालटेन का भला क्या काम। उनकी बात सुनकर के अंधा व्यक्ति थोड़ा ठिठक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा रहा है, मुझे लालटेन का भला क्या काम। मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है, लेकिन आप जैसे आंख वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती ना। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है, कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधे से कहीं टकरा न जाओ, कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाए और धक्का दे दे, तो मुझ बेचारे का क्या होगा सोचो। इसलिए ये लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ, ताकि अंधेरे में आप लोग मुझ अंधे को देख सको। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वे लड़के शर्मसार हो गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने के पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: अष्ट भंजन देवनी जय।
1: आवश्यक सूचना 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबूराज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबूराज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुँचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर उपाय कान के रोगों से कैसे बचाव करेंगे अपना। तो बहुत ही सुंदर उपाय आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि देखिए, सप्ताह में एक बार भोजन करने से पहले कान में हल्का सुहाता गरम सरसों के तेल की 2-4 बूंदें डाल करके फिर आप भोजन करिए, कान में कभी तकलीफ नहीं होगी। फायदा क्या होता है इसका, जो बता रही हूँ आपको कि कान में कभी तकलीफ नहीं होगी, कानों में तेल डालने से अंदर का मेल उगल करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, यदि सप्ताह 15 दिन में एक बार 2-4 बूंद तेल डाला जाए तो बहरेपन का भय नहीं रहेगा, दांत भी मजबूत होंगे। तो कितने अच्छे उपाय है, एक पंथ कितने सारे काज। तो फिर से सुना रही हूँ इस नुस्खे को, ध्यान से सुन।

आप हल्का सुहाता सुहाता गरम सरसों का तेल, बहुत गरम नहीं हो, सुहाता सुहाता, ठीक है, तेल लीजिए सरसों का और इसकी दो चार बूंदे डालिए कान में। इससे क्या है कि कान में कोई भी तकलीफ अगर हो रही होगी तो वो ठीक हो जाएगी, और नहीं हो रही होगी तो कोई बात नहीं, तकलीफ होगी ही नहीं। और फिर कानों में तेल डालने से अंदर का मैल निकल करके बाहर आ जाएगा। यदि सप्ताह 15 दिन में एक बार आप दो चार बूंद तेल डालें तो बहरेपन का भय नहीं रहेगा, और साथ ही साथ दांत भी मजबूत होंगे। और भी सुनेंगे आप उपाय कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कानों में गुनगुना सरसों का तेल डाल करके कुछ विश्राम करता है तो उसके शरीर पर वृद्धावस्था के लक्षण जल्दी प्रतीत नहीं होंगे, ठीक है ना। देखिए बुढ़ापा तो आएगा लेकिन समय से पहले नहीं आएगा, कुछ समय और भी टल जाएगा। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि 50-60 की एज में ऐसे लगते हैं कि जैसे 40-42 साल के हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर रोज ही कानों में गुनगुना सहता सहता सरसों का तेल अगर डालते हैं कान में तो इससे वृद्धावस्था के लक्षण शीघ्र प्रतीत नहीं होंगे, गर्दन का जो अकड़ जाने का रोग है वो उत्पन्न नहीं होगा और न ही बहरापन आएगा, नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी और आंखें दुखती होगी तो ठीक हो जाएगी आंखें भी नहीं दुखेगी। कितना सारा फायदा है कि देखिए आंखों की ज्योति बढ़ेगी, आंखों जो दुखती होगी वो दुखना भी बंद हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आजमा सकते हो। और देखिए कान और नाक के छिद्रों में उंगलियां तिनकर डालने से उनमें घाव होने या संक्रमण पहुंचने का भय रहता है, इसलिए कान व नाक रोगों से बचाव के लिए उनमें आप उंगली या तिनका नहीं डालिए, ठीक है। तो इनसे आपको बचाव करनी है। तिनका डालते हैं, मान लीजिए डालते डालते किसी का टल्ला लग गया और वो तिनका अंदर ज़्यादा चला गया तो बोलिए क्या हालत होगी। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आपको ये कार्य करना है, उंगली और तिनका डालना नहीं है, ठीक है। इस तरह आप सरसों का तेल डालिए, कान की भी सफाई हो जाएगी, बहरापन कभी नहीं आएगा, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, दांत मजबूत होंगे, ये सारे फायदे ही फायदे हैं जिसका आप उठा सकते हो सिर्फ कान में सरसों का सहता सहता गुनगुना तेल डालने से, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर उपाय आपको सुनाए हैं, तो इनको आप आजमा सकते हो और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हो। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है? राजस्थान में जो रोडवेज बस चलती है ना उसमें महिलाओं का कितना किराया लगता है? जवाब देने के लिए नंबर हमारे हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो, ठीक है। आइए अब एक गीत सुनने के बाद पुनः हम आशियाना में आगे बढ़ेंगे, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का. तो आज मैं व्यंजन तो नहीं सिखा रही हूँ, आप जानते हो, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि आज हम कुल्फी बनाना सिखाएंगे, लजीज कुल्फी. बहुत ही देखिए भाई, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और कहते हैं ना कि मौसम के अनुसार चीज़ें खाने की अपने आप ही इच्छा हो जाती है, भले न चाहते हुए भी. जैसे सर्दी का मौसम है तो ऐसा मन होता है गर्म गर्म चीज़ें खाए, और गर्मी का मौसम होता है तो लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. इसलिए सोचा कि चलिए आज आपको कुल्फ़ी सिखा देती हूँ, ताकि कुल्फ़ी आप बना करके घर में इसका आनंद लीजिए. हमेशा तो नहीं खरीद सकते ना, कभी कभी तो खरीदना भी चाहिए, बेचारे जो ठेले वाले उनको भी कमाई दीजिएगा. लेकिन जैसे क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो फिर आप घर पर बनाइए, ताकि सस्ती भी पड़ेगी, स्वादिष्ट भी रहेगी, स्वच्छता भी रहेगी. तो मैं आपको सामग्री जरूर लिखवाऊंगी लजीज कुल्फी का. परंतु आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा. आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट मिली हुई है राजस्थान में. ठीक है, जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो. आइए अब मैं आपको कुल्फी लजीज की सामग्री लिखवा रही हूँ. आप पेन और डायरी ले लीजिएगा और लिखिएगा. हाँ, मैं सामग्री आपको 12 कुल्फी की सिखा रही हूँ. ठीक है, कि अगर आप एक डजन कुल्फी बनाना चाहते हैं तो 5 कप दूध लीजिएगा और एक टिन लेना है मिल्क मेड. अब आप लीजिए कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच, कतरे हुए बादाम ले लीजिए 2 बड़े चम्मच और पीसी हुई छोटी इलायची 1/2 चम्मच. फिर आप लीजिए 6 बूंद केवड़ा जल की और कुछ धागे लेना है आपको केसर का. बस सामग्री इसमें ज़्यादा नहीं है, फिर से दोहरा रही हूँ. अगर आप एक डजन कुल्फी बनाना चाहते हैं तो 5 कप लीजिएगा दूध, एक टिन लेना है मिल्क मेड, फिर आप लीजिए 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के और कतरे हुए बादाम 2 बड़े चम्मच लेना है, पीसी हुई छोटी इलायची आप ले लीजिए 1/2 छोटा चम्मच और 6 बूंद केवड़ा जल की, केसर के कुछ धागे भी लेना है, भले 2-3 ले लीजिए. तो ये हो गई कुल्फी लजीज की सामग्री. अब मैं आपको बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ. सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है. ध्यान से सुनेंगे कि दूध और मिल्क मेड को मिला करके आप उबालने के लिए रख दीजिए. ठीक है, और बीच बीच में आप अच्छी तरह हिलाते रहिए, चिपकना नहीं चाहिए भाई. दूध गर्म करते समय बस यही ध्यान रखना है कि चिपके नहीं. चिपकेंगे तो फिर वो ओजी ओजी स्मेल आएगी, तो फिर कुल्फी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा. इसलिए कुछ भी, भले हम खीर बनाते हो, चाहे रबड़ी बनाते हो, चाहे कुल्फी बनाते हो, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. और हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं तो हम उनसे बात करके पुनः आपको कुल्फी बनाना सिखाएंगे. हेलो, हाँ जी नमस्कार.
2: नमस्कार जी.
1: नमस्कार कमलेश बहन, ओम शांति. कैसे आपकी तबीयत है? जी जी जी, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप. ठीक है,
2: बस आपकी दुआ थी है. मैं तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: आज के प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ
1: जी.
2: 30% मिलता है महिलाओं को.
1: 30%? ठीक है,
2: 30% मिलता है और अब 50 होने वाला है, सुना है.
1: अच्छा ठीक है कमलेश बहन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने जवाब दिया है, हम जरूर सुनाएंगे. ठीक है,
2: ठीक है
1: जी जी, आभार. तो ये थे कमलेश बहन माउंट आबू डुंडई गांव से, और मैं आपको सिखा रही थी कुल्फी लजीज. फिर से ध्यान दीजिएगा, दूध और मिल्क मेड को मिला करके उबालने के लिए रखिए, बीच बीच में आप अच्छी तरह हिलाते रहिए. फिर कॉर्नफ्लोर में आप 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका अलग से घोल तैयार करिए और उबलते हुए दूध में 2-3 मिनट तक इसको भी डाल करके पकाइए. जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो आप गैस बंद कर दीजिए और इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, बादाम की गिरी और केवड़े की बूंदे भी डाल दीजिएगा. ठीक है, केवड़ा जल. फिर ठंडा होने दीजिए इसको. ठंडा होने पर कुल्फी के सांचों में डाल करके आप फ्रिज में 7-8 घंटे तक के लिए जमने के लिए रख दीजिए. तो सरल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कुल्फी बनाने के कोई मुश्किल काम नहीं है. दूध और मिल्क मेड को मिला करके अच्छी तरह गर्म करना है, ठीक है, हिलाते रहना है साथ ही साथ। फिर जो कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें आप दो बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका अलग से घोल तैयार करिए, और इसका अलग से घोल तैयार करके फिर आप उबलते दूध में इसको भी डालिए और पकाइए। बस ध्यान रखना है गुठली नहीं पड़नी चाहिए। अब जब ये दूध गाढ़ा हो जाए तो आप गैस बंद कर दीजिए या भले भगोने को नीचे उतार दीजिए, और इसमें आप इलायची पाउडर, बादाम की गिरी, केवड़ा ये सब डाल करके एक बार हिला करके आप इसको ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर कुल्फी जमाने के सांचे आते हैं, उन सांचों में आप भर दीजिए। ठीक है, लंबे लंबे सांचे आता है, आपने देखा होगा, उसमें भर करके आप फ्रिज में रख दीजिए। बस 7-8 घंटे तक इसको रहने दीजिए, 8 घंटे के बाद निकालिए आपको खाना हो तो। ठीक है, तो ये बन गए हमारे कुल्फी लजीज। तो आप जब भी इच्छा हो जाए कि भाई मेहमान आए हैं और क्या करें, कुल्फी घर पर बनाए, तो फिर आप इस तरह बना सकते हो। या फिर आजकल तो मेहमान भी फ़ोन किए बिना आते ही नहीं, अचानक कोई किसी के घर पर नहीं जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोई कहीं बाहर होगा तो हमारा समय वेस्ट हो जाएगा, इसलिए फ़ोन करके ही आते हैं कि हम आ रहे हैं, फलाने दिन आ रहे हैं, टिकड़े दिन आ रहे हैं। तो आपकी प्लानिंग पहले से ही बन जाती है कि वो आ रहे हैं तो क्या बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे। तो इस तरह प्लानिंग के साथ आप कुल्फी भी बना करके दिन में जब वही भोजन वोजन से फ्री हो जाओ, सो करके उठ जाओ, तब आप इस तरह कुल्फी बना करके इसका आनंद ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको और भी कुछ सिखाऊंगी, परंतु गीत सुनने के बाद। तो आज के प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना % छूट है। जवाब देने के लिए नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे लजीज कुल्फी। आइए अब आपको सिखाते हैं तिरंगी कुल्फी। ठीक है, तीन रंग वाली कुल्फी आप कैसे बनाएंगे वो आपको सिखाएंगे। परंतु आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है, जो फिर से दोहरा रही हूँ। आप जुड़ सकते हो रेडियो मधुबन से और प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। तो आज का प्रश्न है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है, महिलाओं का कितना टिकट लिया जाता है राजस्थान की रोडवेज बसों में। ठीक है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। और देखिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना भी चाहते हैं रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो
2: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ और आशा करता हूँ बाबा से सभी मधुबन रेडियो के आरजे और सभी ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार अच्छे और बढ़िया है, और हमारे रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार है, और आपको दीदी प्रणाम है। और
1: आपको भी नमस्कार।
2: बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, जी अच्छा कार्यक्रम रहा सुबह से, और जो नुस्खे भी अच्छे बताए, गुल्फी बनाने की जो विधि बताई वो भी बहुत अच्छी है, हम भी बना पाएंगे
1: बिल्कुल।
2: और आज का प्रश्न भी सुंदर है, जो राजस्थान सरकार रोडवेज बस में महिलाओं के लिए कितनी छूट दी गई है, तो आज से पहले 30% थी, उसको बजट में मुख्यमंत्री बजट में बढ़ाकर 50% अभी कर दी है।
1: चलिए देखते हैं आपके प्रश्न का जवाब सही है नहीं है। आप बने रहिएगा आशियाना में, हम जरूर सुनाएंगे जवाब आपका। ठीक है
2: जी, दीदी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार। तो ये थे दयाराम जी लाखनी से, और अब आइए आशियाना के किचन में फिर से पधारिएगा। लजीज कुल्फी तो आप सभी ने सीख ली है, तिरंगी कुल्फी बनाते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा फोन के लिए धैर्यता रखिएगा, हम आपका फोन जरूर उठाएंगे, लेकिन ये कुल्फी आप पूरी सीख लीजिए, उसके बाद आप फोन कॉल्स करिएगा। ठीक है, तो तिरंगी कुल्फी के लिए सामग्री वो ही लेना है, थोड़ा सा ऐड ज़्यादा करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि 5 कप दूध ले लीजिए जो हमने लजीज कुल्फी के लिए भी लिया है, फिर आप 1 टिन लीजिएगा मिल्क मेड, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है और 4 बड़े चम्मच कटे हुए मेवा लेना है, जिसमें आपको बादाम काजू और पिस्ता, ठीक है, ये ड्राई फ्रूट्स लेने हैं आपको थोड़ा थोड़ा सा। फिर आप लीजिएगा चिरौंजी 1 छोटा चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच वही आपको पीसी हुई इलायची लेनी है, और सुगंध के लिए थोड़ा सा केवड़ा, थोड़ा सा पीला और लाल रंग खाने वाला लेना है। ठीक है, जो हम खाने में यूज करते हैं पीला रंग और लाल रंग थोड़ा थोड़ा सा लेना है। तो ये हो गई तिरंगी कुल्फी की सामग्री, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आप अपनी डायरी में नजर डाल दीजिएगा, आपने अच्छी तरह लिखा है, कहीं छूट गया हो तो फिर से आप लिख सकते हो। 5 कप क्या लेना है, दूध, फिर मिल्क मेड लेना है 1 टिन, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 4 बड़े चम्मच कटे हुए मेवे, जिसमें आप बादाम काजू और पिस्ता ले सकते हो, 1 छोटा चम्मच लेना है चिरौंजी और इलायची पाउडर ले लीजिएगा 1/2 छोटा चम्मच, सुगंध के लिए लेना है थोड़ा सा केवड़ा और थोड़ा सा फिर आप लीजिएगा पीला रंग और लाल रंग खाने वाला। ठीक है, अब मैं आपको तिरंगी कुल्फी बनाने के विधि बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दूध में मिल्क मेड मिला लीजिए और कॉर्नफ्लोर में 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लीजिएगा, फिर आप ये गर्म करिए, गर्म करके इस कॉर्नफ्लोर वाले मिले हुए पानी को भी आपको डालना है और अच्छी तरह इसको पकाइए। अब आपको देखिए, दूध जो भी आप गर्म करते हिलाते हुए गरम करिए, ताकि नीचे चिपके नहीं। ठीक है, हिलाते रहिए, गरम करते रहिए, कम से कम 25-30 मिनट आप गरम करेंगे तभी ये गाढ़ा हो पाएगा। ठीक है, और फिर इसमें आप जब दूध गाढ़ा हो जाए तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इसको कुतर के आप डालिएगा, बारीक, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि इसको काटना है, काट करके आप डालिएगा। अब घोल को तीन हिस्सों में कर लेना है आपको, तीन जो भले आप बाउल में डालिए भले आप छोटी छोटी तपेली में डालिए, ठीक है, तीन हिस्से में करना है आपको। फिर एक में थोड़ा सा पीला रंग, एक में थोड़ा सा लाल रंग मिला देना है, एक को सफेदी रखना है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर बस वही आप कुल्फी का सांचा लीजिए और उसमें आप पहले थोड़ा सा जैसे पहले लाल डाल रहे हो लाल कलर वाला, फिर थोड़ा सा सफ़ेद डालिए, फिर पीला रंग वाला दूध डाल दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह सारे ही सांचों में आपको तीन तीन कलर के डालना है, थोड़ा लाल थोड़ा सफ़ेद थोड़ा पीला, और 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए फ्रीजर में, ठीक है। 8 घंटे के बाद निकालिए तो ये तिरंगी कुल्फी तैयार हो चुकी है, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी और देखने में भी अच्छी लगती है। और बच्चे तो क्या है, विशेष करके कलरिंग चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, अलग अलग कलर के होती है, अलग अलग फ्लेवर वाली होती है, तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कुल्फी में देखिए सामग्री थोड़ी सी ही बड़ी है लेकिन रूप ही उसका अलग हो गया है। तो फिर से विधि दोहरा रही हूँ कि आप दूध में मिल्क मेड मिला लीजिए, गर्म रखिए, फिर जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें थोड़ा सा पानी 2 बड़े चम्मच पानी मिलाना है, इसका घोल तैयार कर लेना है। और जब ये दूध गर्म हो रहा होता है ना तो इसको भी आप डालिए और अच्छी तरह गर्म करिए। डालते समय ये ध्यान रखना है गुठली नहीं पड़े, ठीक है, अच्छी तरह हिलाइए। हिलाते हुए आप 25-30 मिनट आपको इस तरह खदखदाना है दूध को। जब आपको लगे कि दूध गाढ़ा हो गया है तब आप जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कटे हुए ये भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर आप ये केवड़ा भी डाल दीजिए, इलायची पाउडर भी डाल दीजिएगा और अच्छी तरह हिला करके 3 पात्र में इसको भर दीजिए। और एक में पीला रंग मिलाना है, एक में लाल रंग मिलाना है और 1 पात्र को ऐसे ही रखना है सफ़ेद, ठीक है। जब ये ठंडे हो जाए तो फिर आप कुल्फी का सांचा में पहले लाल या भले पीला जो भी आपकी इच्छा हो एक कलर वाला डालिए, ठीक है। बीच में आप सफ़ेद डालिए, ऊपर आप फिर से दूसरा कलर वाला डालिए, जैसे नीचे पीला डाला है तो बीच में सफ़ेद ऊपर लाल, जैसे नीचे लाल डाला है तो बीच में सफ़ेद ऊपर पीला। तो इस तरह 8 घंटे के लिए आप फ्रीजर में रख दीजिए फिर संचय में भर के, ठीक है। और 8 घंटे के बाद आप निकालिएगा तो ये कुल्फी बन गई है तिरंगी कुल्फी। तो भाई कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट बन चुकी है, लजीज कुल्फी, तिरंगी कुल्फी। तो बस देर किस बात की, आप जो भी बनाते हैं बड़े भाव से बड़े प्यार से श्रद्धापूर्वक भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि एक तो क्या है कि भोग जब हम ईश्वर को लगाते हैं तो हमारा जो भाव होता है जो विचार होता है एकदम श्रेष्ठ हो जाता है, प्रभु के प्रति हमारा संकल्प चला जाता है तो हमारी भावनाएं और भी शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध भाव से जो हम स्वीकार करते हैं सचमुच में उसमें ताकत ईश्वर के शक्तियां भर जाती है, ताकत बढ़ जाती है हमारी, तो हमारे भी मन एकदम सकारात्मक हो जाता है। इसलिए भोग जरूर लगाइएगा और भोग लगाने के बाद ही आप जो भी चीज़ बनाते हैं उसको आप स्वीकार करिए, बच्चों को मेहमानों को भी आप पिरसिए, ठीक है। तो ये बन गई कुल्फी, तो कुल्फी का आनंद लीजिए। और साथ ही साथ मैं फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ कि राजस्थान की रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: होटल पंडित आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़े हुए हैं। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: आपका भी स्वागत है रेडियो मधुबन में आशियाना प्रोग्राम में।
1: जी तो मैं आज का विषय सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उसका स्पष्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है?
2: हाँ जी।
1: रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। क्या कहेंगे आप?
2: एक्चुअल में मैं बताना चाहूंगा, मेरे जिंदगी के अनुभव बताना चाहूंगा
1: जी,
2: कि रेस गाड़ियों की है मगर उस गाड़ी को कंट्रोल करना आना चाहिए, सबसे पहली बात तो वो है
1: जी,
2: ठीक है ना? क्योंकि जिंदगी की भी गाड़ी आप चला रहे हो मगर उसको एकदम कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो एक्सीडेंट जरूर होगा
1: जी।
2: और आपने जीत की बात की तो देखिए, जीत तो ऐसी है कि देखिए मतलब उसको अपने को मतलब जो ड्राइवर है उस गाड़ी का, जैसे कि गाड़ियों का है या अपने जिंदगी की गाड़ियों का अपन ड्राइवर है, तो अपन को ये भी नॉलेज होना चाहिए कि किस समय कौन सा गियर बदलना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका अनुभव नहीं होता है, तो लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कई दुर्घटना मतलब वहां पे मतलब कुछ लोग मतलब झगड़ रहे हैं तो वहाँ पे बीच में पड़ जाते हैं ना, तो वहाँ पे ज्यादा हो जाता है
1: जी,
2: तो संभालना जरूरी है उस गाड़ी को।
1: बिल्कुल,
2: ये अनुभव की गाड़ी है तो इसको संभालना जरूरी है
1: जी।
2: मैं तो यही कहना चाहूंगा और बस इस गाड़ी को संभाल के चलिए, क्योंकि आप बस ट्रेन या कोई भी गाड़ी चला रहे तो हेलमेट या सीट बेल्ट की जरूरत होती है, मगर जिंदगी की गाड़ी ऐसी है कि इसमें ना तो सीट बेल्ट लगती है ना कोई लगती है, बस आपको मन को मतलब शांत करके उस गाड़ी को चलाना है
1: जी,
2: तो बस आपकी गाड़ी में जरूर आपकी जीत होगी, बस यही कहना चाहता हूँ।
1: बहुत सुंदर, तो आभार आपका, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्पष्ट किया है इस विषय को। तो आज का विषय बहुत ही सुंदर है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, फिर से दोहरा रही हूँ कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, आइए उनसे बात करेंगे। हेलो।
3: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल
1: रहा हूं। हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
3: बस एकदम अच्छे हैं। और दूसरा के आज का प्रश्न का जवाब है, समझो के आदमी के 100 रुपए है तो महिलाओं के 50 रुपए है।
1: ठीक है, तो आप कार्यक्रम सुनिए, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। और आज का विषय भी बहुत अच्छा है कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। क्या कहेंगे आप?
3: सही बात है
1: जी।
3: वो क्या अपना देखो, ये जिंदगी समझो के जो अभी अभी चल रहा है उसी मुताबिक से चलना चाहिए, अभी जो टाइम है उसी मुताबिक से चलना चाहिए, मैं तो वही समझता हूँ, समय के मुताबिक चलना चाहिए।
1: समय के अनुसार क्या चलना चाहिए? समय के अनुसार देखिए, विषय आप ध्यान से सुनिएगा कि चाहे रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं।
3: हाँ सही बात है, सही बात है। तो समझो के अपने गाड़ी की हो तो समझो के आगे आ गया, बम्प आ गया
1: जी,
3: बराबर, तो ब्रेक मार दिया, वो भी ब्रेक कैसे मारना है, पीछे वाले को देखना है कि पीछे वाला अपने ऊपर चढ़ नहीं जावे, ठीक है, वो स्पीड में आ रहा है, ब्रेक एकदम मार दिया तो ऊपर चढ़ जावे अपने ऊपर
1: जी।
3: हाँ वो संभाल के वो अपने करना पड़ता है। ऐसे ये जिंदगी का भी जो है समझो के खान पान में भी इसका अपना ये देखना चाहिए, चलो भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे उस मुताबिक से खाओ तो जिंदगी अच्छी रहेगी।
1: चलिए ठीक है,
3: हाँ जी,
1: बहुत बहुत आभार फिरोज भाई
3: जी, जी,
1: जी, जी। तो देखिए विषय बहुत ही अच्छा है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि अगर हम समय पर गाड़ियों के गियर नहीं बदलेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। ऐसे ही जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। वो कहते हैं ना कि खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से बहस करेंगे तो और ही नए सवाल खड़े हो जाएंगे और हम क्या करते हैं, सोचने में लगे रहते हैं या फिर बहसबाजी में लगे रहते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ये कोई निवारण नहीं है। हेलो, हमारे श्रोता बंधु फिर से जुड़ना चाहते हैं, चलिए उनका कट गया है, फिर से कोशिश करिएगा तो आपसे बात हो पाएगी कि भाई हम दूसरों से बहस करते हैं लेकिन बहस करने से क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। लेकिन चलिए मैं अपनी बात को बीच में ही रखना चाहूंगी क्योंकि हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
4: हाँ जी, हम शांति, नमस्ते सुरेश भाई बोलता
1: हूं। हाँ जी नमस्ते, नमस्ते सुरेश भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
4: बहुत अच्छी बात हो रही है, अच्छा विषय भी दिया है, आज जिंदगी में यही तो हो रहा है
1: जी,
4: देश चाहे जिंदगी की हो या गाड़ियों की
1: जी,
4: सही समय पे गेर बदलना जरूर होता है, जरूर चाहिए।
1: हाँ जी,
4: देखो आज कई लोग गाड़ियों की, मैं बात बताऊँ बाद में बताऊँ जीवन की, तो गाड़ियों तो कई लोग चलाते हैं लेकिन गाड़ी सही तरह से चलाएंगे तो सही है, वरना आज कितनी गाड़ियों भी पलट जाती है
1: जी,
4: और कई गाड़ी सामने एक दूसरे के सामने भिड़ जाती है, तो ऐसा भी होता है
1: जी।
4: तो सही समय पे जिंदगी में भी ऐसी ऐसी बात है कि हम सही समय पे जो हम नहीं समझते तो कहीं ना कहीं जिंदगी में मुसीबत भी आती है, कई प्रॉब्लम भी आता है, जैसे गाड़ी पलट जाती है ऐसे जिंदगी भी पलट जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सही समय पे हमको इस्तेमाल कर देना चाहिए। डॉक्टर देखो चल, आज हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, अच्छा हमारे सभी अच्छा है, परिवार में सभी अच्छा है, हम अच्छी तरह से खुशी से जी रहे हैं, लेकिन खुशी से जीते हैं और हम ज्यादा कुछ ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हमको होगा, हमारे पास पैसा है तो हम सभी पैसे जो खर्च कर देंगे तो बाद में हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, सही समय पे पैसा भी बचाना है, सही समय पे सबको साथ भी देना है, एक दूसरे को जिंदगी में साथ भी रहना है, वही तो हम जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते हैं
1: जी,
4: वरना जैसे गेयर बदलना है, हम अच्छी है अच्छी तरह से जी रहे हैं और हम कुछ और कर देंगे, गेयर बदलना चाहे कि कुछ और कर देंगे तो कहीं ना कहीं मुसीबत तो हमारे ही आएगी,
1: बिल्कुल
4: ऐसा नहीं करना है दीदी, इसीलिए तो कहते हैं रेस्ट चाहे जिंदगी की हो चाहे गाड़ियों की है, सही समय पे हमको गेयर बदलना है, सही समय से अच्छी तरह से रहना है
1: जी,
4: सोच के रहना है, सोच के चलना है,
1: तभी
4: तो हम आसान से जिंदगी जी सकते हैं। दीदी नमस्ते
1: जी, नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका, और यहीं पर हम भी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।
5: अभी बजे हैं सुबह के 10, स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आवश्यक सूचना 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबूराज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबूराज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना कार्यक्रम में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि कैसे हम मतलब गाड़ियों की रेस हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। तो कैसे हम सही समय पर डिसीजन लेकर के अपने जीवन को खुशनुमा बनाएंगे या कैसे हम दुखी हो सकते हैं, देखिए दोनों ही पहलू हमारे हाथ में है। बस सही समय पर सही फैसला लेने की आवश्यकता है। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो,
2: ओम शांति सर, नमस्कार, मैं रामा भाई वासना गुंपा।
1: हाँ जी, ओम शांति, नमस्कार रामा भाई, कैसे हो आप?
2: बस मजे में, और रेडियो सुन रहा हूँ, अभी वो दिन चालू करवाया तो अभी फोन में सुन रहा हूँ।
1: जी जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, चालू हो गया ना आपका रेडियो मोबाइल पर?
2: चालू हो गया।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है,
2: बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, वो प्रश्न रखा था उसका।
1: जी प्रश्न आपने सुना है, फिर से दोहराऊं?
2: हाँ, और ये वो बस के लिए कहते हैं, महिला के लिए तो वो भी तो कितना 35 रुपए लेते हैं, तो उसमें 10 रुपए करते हैं, 35 जगह 25 रुपए लगता है किराया महिलाओं को।
1: कितने परसेंट छूट है ये बताइए आप तो, राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट है?
2: ये 30% हो गया शायद, अभी तो इतना है, अभी जो किराया बढ़ा है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन
1: ठीक है। चलिए आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
2: अभी वो सभी ने, मैं वो यही कहता हूँ कि ये जीवन अपना और सीधे जीना सीखो, और बस ऐसे ही, और सूरज भाई ने बोला है तो वो भी सही है। चलो,
1: हाँ जी हाँ जी, सुन रही हूँ मैं,
2: मेरा तो यही बस ये कहना है।
1: जी
2: ओम शांति, नमस्कार
1: जी,
2: सुनने वालों को, सुनाने वालों को, सभी को।
1: जी आपको भी नमस्कार, जी शुक्रिया रामा भाई। तो ये रामा भाई वासना से थे और प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया है, देखते हैं अभी बहुत जल्दी हम आप सभी को जवाब भी सुनाएंगे। अभी आप भी जुड़ सकते हो और प्रश्न का जवाब दे सकते हो कि राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने प्रतिशत की छूट है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि महिलाओं को कितना टिकट लगता है। तो जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो नमस्कार, आज के विषय बहुत ही सुंदर है, आप भी जरूर जुड़िएगा, आपके पास 2 मिनट है। रेस चाहे गाड़ियों की

0: डिसीजन की आवश्यकता रहती है ना। बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, घर परिवार में भी बहुत सारी बातें होती है कि कभी कभी ऑन द स्पॉट भी हमको फैसला लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन कभी कभी वो फैसला हम गलत ले लेते हैं तो ज़िंदगी भर हमें पछताना पड़ता है, और कभी कभी समय के अनुसार हम सही फैसला ले लेते हैं तो ज़िंदगी भर पछताने की बारी नहीं आती है। तो ऐसा ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं की, थोड़ा सा सोचिए, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचना है, लेकिन सोच समझ कर समय के अनुसार जो भी फैसला लेते हैं उसको ध्यान से लीजिएगा। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार जी मैडम जी।
0: हाँ जी नमस्कार, कमलेश बहन कैसे हो आप?
1: बस बढ़िया है मैडम जी, ठीक, आप कैसे हो?
0: हम एकदम अच्छे हैं, आप सभी की दुआओं से।
1: बस बाबा की दुआ है मैडम जी सबके साथ में।
0: वो तो है, ईश्वर की कृपा तो है,
1: बहनों भाइयों की दुआ है, बाबा की दुआ है, बस और क्या चाहिए।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: आज का विषय का मैडम जी थोड़ा कुछ बता रही थी मैं।
0: हाँ जी,
1: आज का विषय है कि जीवन एक गाड़ी है मैडम जी।
0: जी,
1: और आत्मा चलाने वाली है, और अपने को सोचना है किधर घुमाना है उसको, किस साइड अपने को घुमाना है, और किससे तुलना करनी है, अच्छे लोगों से करनी है या गलत लोगों से करनी है।
0: जी,
1: अगर गलत साइड जाओगे तो एक्सीडेंट होने वाला है, अपने को ये हैंडल अपने हाथ में है, कैसे चलाना उसको, बस मैडम जी इतनी है बस मैम।
0: जी, बहुत बहुत आभार कमलेश बहन, बहुत सुंदर आपने सुनाया है स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में कि किधर गाड़ी को ले जाना है वो अपने हाथ में है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि ध्यान रहे खुद का, यू खोकर विश्वास, जिंदगी को मायूस ना कर, मंजिलें चारों तरफ है, रास्ते की तलाश कर, यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए यहीं पर अब हम इस विषय को समाप्त करते हैं और एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: मैं हूं श्रवण राठौर, श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम, और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। आज का सुंदर सा विचार जो आपने जाना है, ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि बोलने से पहले 100 बार सोचना है, फिर किसी के सामने अपना मुख खोलना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं कि अगर कान के रोगों से बचाव करना चाहते तो क्या करेंगे, तो आपने जाने हैं उपाय, ज़रूर आजमा सकते हैं। और भाई रेसिपी में तो आज आपने कुल्फी बनाना सीखा है, तो ज़रूर बना करके खाइएगा, और ज़्यादा बना लो ना तो चिंता मत करना, भेज देना रेडियो मधुबन में, ठीक है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत अच्छी हुई, और आज का प्रश्न तो बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं फिर से सुना रही हूँ कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट है। जवाब दिया है सुरेश भाई जोटाना से, इनका जवाब सही है, लेकिन क्या जवाब है वो मैं बाद में दूंगी। कमलेश बहन, इन्होंने कहा है 30% की छूट है, तो अभी तक 30% की छूट थी, लेकिन अभी 1 अप्रैल से नियम बदल चुके हैं, मैं बहुत ही जल्दी जवाब दूंगी। दयाराम जी लाखनी से, इनका जवाब सही है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, इन्होंने कहा है 20%, गलत जवाब है। फिरोज भाई पालनपुर से, इनका जवाब भी सही है। और रामा भाई वासना से, इनका जवाब है 10%, ये गलत है। सही जवाब है 50%। 1 अप्रैल से पहले 30% की छूट थी महिलाओं को, और अब 50% की छूट है। तो सही जवाब देने वालों के लिए ढेर सारी तालियां। और आप सभी ने भी बहुत ही अच्छी कोशिश की, इसलिए भाई कोशिश की है तो तालियां भी बजनी ही चाहिए। आज का सुंदर सा विचार भी आपको सुना रही हूँ कि जब तक हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त होने की शिक्षा नहीं दिलाएंगे, तब तक हम असली शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हुआ आज का मीठा मोती। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खम्मा सा। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

समझ कुछ भी नहीं आता है, मुझे अपने ही रंग रंग कर बढ़ाने मान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं लताओं।

0: run, run, run.
1: दौड़ो दौड़ो दौड़ो.
0: आओ दोस्तों दौड़ लगाते हैं 9 अगस्त को.
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन.
0: जी हाँ, इसका थीम है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड. संडे अगस्त 9 को ये मैराथन शुरू होने वाला है
1: सुबह 5 बजे.
0: तो आप सभी का इस मैराथन में भरपूर स्वागत है और आप सभी इस मैराथन में भाग लेकर रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जरूर बढ़ाइए. जी हाँ, इस भाईचारे को दुनिया भर में जरूर फैलाइए. इस मैराथन में भाग लीजिए और खुशियाँ दुनिया भर में बांटिए.
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन.

0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: मार्च क्लोजिंग की गहमा गहमी ऑफिस में देखते ही बनती थी। सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक कस्टमर्स, एजेंट्स की आवाजाही और उनकी शिकायतों को दूर करते करते थकान से शरीर टूटने सा लगता है। और इस थकान को दूर करने का एक सस्ता सुलभ साधन है गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। शाम 4:15 बजे जब ऑफिस थोड़ा खाली सा हुआ तो श्रेया ने इंटरकॉम पर कैंटीन से 2 कप चाय ऑर्डर की और दूसरे डिपार्टमेंट में बैठी अपनी कलीग और अपनी फ्रेंड वनीता को आवाज लगाई। 5 मिनट में ही वनीता कुर्सी खींचकर श्रेया के पास आकर बैठ गई। उतने में ही 2 कप चाय श्रेया की टेबल पर भी आ गई थी। हाँ वनीता, कैसी है? आज कस्टमर का बहुत रश था ना तुम्हारे पास? बहुत थकी सी लग रही है, सब ठीक तो है? श्रेया ने पूछा। थकी तो हूं श्रेया, पर एक बात और है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, वनीता रुआंसे से स्वर में बोली। अरे पहले तो चाय का कप उठा वरना गर्मा गर्म चाय का मजा गिरकिरा हो जाएगा। हाँ अब बता क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? श्रेया ने पूछा। देख हम सभी तो ऑफिस में काम करने ही आते हैं ना, वनीता बोली। हाँ तो फिर? श्रेया ने पूछा। फिर क्या, मुझे यहां आए हुए तो 6 ही महीने हुए, मुझे आज ही पता चला कि मार्च क्लोजिंग के टाइम पर एक एक करके सभी फील्ड ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट वालों को उनके टारगेट पूरे होने पर पार्टी देते हैं, वो भी होटल में ले जाकर, क्योंकि हमने टाइम पर उनका काम किया, देर तक रुके, सपोर्ट किया वगैरह वगैरह। भाई क्लोजिंग है, हम सभी को अपना अपना काम तो करना ही है ना, फिर काम करने के लिए पार्टी की क्या जरूरत? वनीता सवालिया लहजे में बोली। यहां तो ऐसा ही होता है, तुम क्या पार्टी में नहीं जाना चाहती? श्रेया बोली। अरे श्रेया मैंने पुरानी फाइलें पलट कर देखी, मेरे आने के पहले यहां जो भी फॉर्म सबमिट होते थे उस ज्यादातर बिना केवाईसी के। मैं तो भाई नियम कायदे पर चलने वाली हूं, मैंने इन फील्ड ऑफिसर्स की भर्राशाही नहीं चलने दी और अब जिसके भी पेपर पूरे कंप्लीट होते हैं उनका ही काम आगे बढ़ता है। अरे हम नौकरी करने आए हैं, कोई नियम कायदे भी तो मानने चाहिए या नहीं? वनीता ने बात को आगे बढ़ाया। फिर तुम्हारे मन में क्या उधेड़बुन चल रही है? श्रेया ने पूछा। श्रेया मैं सोचती हूं कि अगर मैंने इनके साथ होटल में जाकर लंच किया तो कल को बेशक ये अपने खिलाए नमक के बदले में वाजिब गैर वाजिब काम करवाने के लिए मुझ पर जोर डाल सकते हैं, और जोर डालें या ना डालें इनकी पार्टी में शिरकत करने के बाद मुझे इनसे तेज आवाज में बात करने या फिर नियम कायदों की ताकीद देने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। सही सोच रही हूं ना मैं? वनीता बोली। हाँ ये बात तो तुम 16 आने सच कह रही हो वनीता, श्रेया ने भी सहमति जताई। बस मैं एक लंच के एवज में अपना जमीर नहीं बेच सकती और 2 टूक जाने से भी एकदम मना नहीं कर सकती, यही सोचकर परेशान हो रही हूं कि इन लोगों के साथ होटल में न जाने के लिए क्या बहाना बनाऊं, वनीता ने परेशानी जताई। अरे श्रेया इतनी जायकेदार गर्मा गर्म चाय पीकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, पर हाँ इसके लिए कल तुम मुझे चाय पिलाना। कहते हुए श्रेया हंस पड़ी। अरे बिल्कुल डियर, जल्दी बताना, वनीता बोली। सुन वैसे भी तुम पिछले 6 महीनों में ऑफिस वालों के साथ पार्टी में कहीं गई नहीं हो, लंच भी तुम अपने ही घर पर जाकर करती हो, और ऑफिस में मंगवाए समोसे कचौड़ी को तो तुम छूती भी नहीं, श्रेया बोली। वो तो ठीक है, फिर आगे? वनीता की क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। अरे फिर क्या, ये कहना कि मैं परहेज करती हूं और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाती, इसलिए मैं लंच पर आप लोगों के साथ होटल नहीं जा सकती, श्रेया ने सॉल्यूशन बताते हुए कहा। और मान लो ऑफिस वालों के यहां कभी किसी फंक्शन में जाना पड़े तब? वनीता के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ। अरे तो कौन सा कोई याद रखने वाला है, किसी को कोई लेना देना नहीं, रात गई बात गई मेरी जान, और फिर जब कभी जाना होगा तब का तब देखा जाएगा, साथ बैठकर चाय पियेंगे और उसका भी सलूशन निकाल ही लेंगे। अभी तो तुम यही बहाना बताओ, श्रेया बोली। वनिता के चेहरे पर से चिंता की लकीरें मिट चुकी थी। उसने श्रेया का हाथ अपने हाथों में लेकर अच्छी कड़क चाय और नेक सलाह के लिए धन्यवाद कहा और हल्के मन से अपने सीट की ओर चल पड़ी।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे टी टाइम स्टोरी मार्च क्लोजिंग। सच कहूं तो चाय या कॉफी एक बहाना ही होता है। वास्तव में इस बहाने के साथ में हम अपने साथ बैठ जाते हैं या अपने किसी करीबी के साथ बैठ जाते हैं और ऐसा करते ही हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और रिलैक्स माइंड होते ही हमारी उलझनों के हल खुद ब खुद हमारे सामने आने लगते हैं। पर हाँ, बहाना ये खूबसूरत है और खूबसूरत तब तक है जब तक ऐसे ही कुछ काम की बातें होती रहें। वरना आजकल तो चाय या कॉफी भी हम अपनों के साथ बैठकर कब गड़क कर जाते हैं पता ही नहीं चलता क्योंकि तन से तो शायद वहां होते हैं मगर मन कहीं और ही उलझा हुआ होता है। तो तन और मन जब एक साथ एक जगह पर होते हैं तभी इस बात को एकाग्रता कहा गया और इसी एकाग्रता की शक्ति से काम सहज ही हो जाते हैं। फिलहाल कैसी लगी आपको ये स्टोरी जरूर बताइएगा। चाय और कॉफी की इन्हीं कहानियों के बहाने कुछ काम की बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि ऑफिस के कई ऐसे नियम कायदे कानून बहुत सारे हमारे अपनों को नहीं पता होता, उन तक तो जरूर पहुंचाइए जो नियम कायदे कानून इन सब की परवाह करते हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक ले दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।
1: आवश्यक सूचना, 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबूराज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा। शनिवार के सुप्रभातम। सावन का महीना बहुत बहुत आपका जीवन में खुशी लाए, बहार लाए और आप गाए सावन का महीना पवन करे शोर। है कि नहीं, बहनों की मेहंदी रचेगी, झूले पड़ेंगे, का नहीं होता है। महीने में खुशियों ही खुशियों का त्यौहार है। तो भाई, आपकी प्रभा पंडिताइन, आपका प्रोग्राम पंडिताइन में आप सभी श्रोताओं का हृदय से एक बार फिर स्वागत करती है। और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। राहुल अपना एक रिश्तेदार के घर 2 दिनों के लिए गया रहा। घर में लगभग 65 वर्ष के दादाजी और 60 वर्ष की दादी जी रहते थे। सुबह से शाम तक दोनों की नोकझोंक सुनाई देती रहती। कभी दादी कहती इतनी उम्र हो गई फिर भी किसी की बात नहीं मानते, तो कभी दादाजी मुस्कुराते हुए कहते तुम्हें तो हर बात में शिकायत ही करनी है। राहुल को लगता कि दोनों हर समय लड़ते रहते हैं। एक सुबह वह नीचे आया तो देखा कि दादाजी हाथ में पोछा लेकर पूरे घर की सफाई कर रहे थे। तभी रसोई से दादी की आवाज आई, कितनी बार कहा है ये काम मत किया करो। राहुल ने दादाजी से पूछा, जब दादी मना करती है तो आप सफाई क्यों करते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा अगर मैं नहीं करूँगा तो तुम्हारी दादी खुद करेगी, उनके कमर में दर्द रहता है, इसलिए मैं पहले ही कर देता हूँ ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। कुछ देर बाद राहुल रसोई में गया। दादी सिल बट्टे पर धनिया और मिर्च पीस रही थी। उसने कहा, दादी मिक्सी तो है फिर इतनी मेहनत का है? दादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे दादाजी को सिल बट्टे की चटनी बहुत पसंद है, उनके चेहरे की खुशी देखने के लिए इतनी मेहनत क्या बड़ी बात है। नाश्ते के समय भी दोनों की नोकझोंक जारी रही। दादाजी बोले, मैं बाजार से सब्जी ले आता हूँ। दादी तुरंत बोली, आपसे 2 कदम चला नहीं जाता, अब फिर थैला उठा कर लाएंगे। राहुल को लगा कि दादी उन्हें रोक रही है, लेकिन बाद में दादी ने धीरे से कहा, इनके घुटनों में दर्द रहता है, कहीं रास्ते में तकलीफ हो गई तो। अगले दिन राहुल ने देखा कि दादाजी सुबह अकेले टहलने निकल गए। दादी नाराज़ थी कि उन्हें साथ नहीं ले गए। जब राहुल ने दादाजी से पूछा तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, रात भर इन्हें नींद नहीं आती, सुबह जरा आँख लगती है, मैं कैसे जगाऊँ। शाम को दादी ने दादाजी के स्कूटर की चाबी छिपा दी। दादाजी बोले, मेरी चाबी कहाँ रख दी? दादी ने कहा, जब इस उम्र में स्कूटर चलाकर गिर गए तो मेरी जान निकल जाएगी। राहुल ये सब देख कर भावुक सा हो गया। उसे समझ आ गया कि ये झगड़े असल में झगड़े नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की चिंता जताने का अनोखा तरीका था। जहाँ शब्दों में तकरार थी, वहीं दिलों में अतः प्रेम था। घर लौटते समय राहुल ने मन ही मन सोचा, रिश्ते मीठी बातों से नहीं बल्कि छोटी छोटी परवाह से मजबूत बनते हैं। सच्चा जीवन साथी वही होता है जो हर उम्र में आपका हाथ थामे रखे, चाहे प्यार जताने का तरीका थोड़ा अलग ही काहे ना हो। तो ये कहानी से क्या शिक्षा मिली भाई, कुछ बताइएगा कि हमें बता दें? सच्चा प्रेम दिखावे में नहीं बल्कि एक दूसरे की चिंता त्याग और जीवन भर निभाए साथ में छिपा होता है। समझ गए तो? अरे भाई, काहे नहीं समझेंगे, प्रभा पंडिताइन को 14 साल से जौन झेल रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, तो ये बात भी तो समझ में आ ही गई होगी। देखिए भाई, कोई भी बात कहानी कही जाती है अपने जीवन में उतारने के लिए। अगर आपके यहाँ पर भी बड़े बूढ़े हैं, वो आपको झिझकते हैं, करते हैं, तो इसका मतलब वो आपकी परवाह करते हैं। ये नहीं कि झगड़ा करने के लिए आपको बोलते हैं, बल्कि उनके मन में आपके लिए प्रेम होता है, तो कभी उस प्रेम को गलत नज़र से ना देखें। धैर्य और विश्वास, ये दो जीवन की बहुत बड़ी बात होती है, हम बता रहे हैं। जैसे कि उन दोनों के बीच में रहा, दादी के और दादा के बीच में, तो जीवन में कोशिश करिएगा
कि एक दूसरे की भावनाओं को समझकर रिश्तों को दृढ़ बनाइए। रिश्ते तभी दृढ़ बनते हैं जब दिल में उनके प्रति प्रेम होता है। सिर्फ दिखावा करने से नहीं ना होता है, है कि नहीं। धैर्य और विश्वास जीवन के दो ऐसे दीपक हैं जो अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाते हैं। आपका सकारात्मक चिंतन ही आपकी सफलता का मुख्य सूत्रधार है। सच्ची सफलता अपने संस्कारों की सुंदरता में है। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी को रास्ता दिखाने के लिए दीपक जगाते हो तो सबसे पहले उसकी रोशनी आपके सामने ही होती है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए ऊंची आवाज नहीं, ऊंचे विचारों की आवश्यकता होती है। आजमाइश कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सब्र से लिए गए फैसले हमेशा खूबसूरत ही होंगे। जो इन बातों को जीवन में उतारते हैं उनका जीवन सफल होता है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए आज वही कर्म करो जिसके लिए कल अफसोस ना हो। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए। कहे कि दुआ वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। सम्मान देने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है, यही रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, गलत तो गलत ही है, भले उसे सभी लोग कर रहे हो, और सही भी सही ही है, भले उसे कोई ना कर रहा हो, इसलिए हमेशा सही कर्म करते रहो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। वर्तमान क्षण की एकमात्र समय है, वर्तमान क्षण ही एकमात्र समय है जिसमें आपके लिए अवसर लाने की महान शक्ति है। वर्तमान में जिएं और बेजोड़ परिणाम प्राप्त करें। ये बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो पाएंगे कि नहीं, इनमें बहुत राज है। अंधेरे हालात बदलने के लिए बाहर दुनिया में रोशनी ढूंढने के बजाय थोड़ा अपने अंदर झांक कर देखो। हाँ, तुम एक आध्यात्मिक रोशनी और ऊर्जा से भरी आत्मा हो। जीवन के कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो किसी पद प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होते, वो स्नेह और विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं। कड़वा सच ये है कि पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे कि गुनाह होगा, और अब लोग सच बोलने से डरते हैं कि नुकसान होगा। जीवन में कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप ईश्वर की रची हुई एक सुंदर रचना हो। अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। जीवन कभी किसी से बंधा नहीं होता, बंधी होती है भावनाएं, आशाएं, उम्मीदें और भरोसा। बड़ा बनने के लिए ऊंचे पद की नहीं, ऊंचे विचार और अच्छे संस्कार की जरूरत होती है। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहें, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। आपका छोटा सा श्रेष्ठ कर्म किसी का जीवन बदल सकता है। बदलाव से मत डरिए, कई बार वही नई खुशियों का द्वार खोलता है। कर्म श्रेष्ठ रखिए, भाग्य स्वयं श्रेष्ठ बन जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, परेशान होने से मुश्किलें कभी दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून चला जाता है, इसलिए हमेशा खुश रहो। चलिए भाई, यही बात पे गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बताएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, समझ तो गए होंगे आप लोग, खनखना दीजिएगा। ठीक है, तो सुनिएगा गीत।

0: शांति, मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: बहुत समय पहले आर्यवर्त में राजा विक्रमसेन नाम के एक न्यायप्रिय और दयालु राजा का शासन रहा। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई रही। प्रजा उन्हें केवल राजा ही नहीं बल्कि अपना संरक्षक और पिता समान मानती थी। उनके महल के द्वार हर जरूरतमंद के लिए हमेशा खुले रहते थे। जो भी सहायता मांगने आता, राजा उसे निराश नहीं लौटाते। उनका विश्वास था कि प्रेम और विश्वास से सबसे कठोर हृदय भी बदला जा सकता है। उसी समय पड़ोसी राज्य की जेल से एक कुख्यात चोर काल केतु भाग निकला। उसके पीछे सैनिकों की टुकड़ियां लगी हुई थी। जंगलों और पहाड़ों से भागते भागते वो राजा विक्रमसेन के राज में पहुंच गया। रात गहरा चुकी थी। थका हारा काल केतु महल के पीछे बने अतिथि भवन में जा पहुंचा और संयोग से उसी समय राजा विक्रमसेन साधारण वेश में राज्य का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने उस अजनबी को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आओ अतिथि, तुम बहुत थके हुए लगते हो, पहले विश्राम करो, फिर अपनी बात कहना। काल केतु ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, यदि आज रात आश्रय मिल जाए तो आपका बड़ा उपकार होगा। राजा ने बिना कोई प्रश्न किए उसके लिए स्नान, भोजन और विश्राम की व्यवस्था कर दी। उन्होंने स्वयं अपने सेवकों से कहा, अतिथि देवो भाव, इसकी सेवा में कोनो कमी न रहे। इतना सम्मान और प्रेम पाकर भी काल केतु का लालच नहीं गया। आधी रात को उसने महल के खजाने से सोने का एक बहुमूल्य मुकुट और कुछ स्वर्ण आभूषण चुरा लिए और चुपके से भाग निकला। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सुबह होते ही सीमा पर तैनात सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। उसके पास से राजा का मुकुट और आभूषण बरामद हुए। सैनिक उसे दरबार में ले आए। मुख्य सेनापति ने कहा, महाराज, यही वो चोर है जिसने आपके महल से स्वर्ण चुराया। सभी दरबारी क्रोधित थे। उन्हें लगा कि अब चोर को कठोर दंड मिलेगा। लेकिन राजा विक्रमसेन शांत स्वर में बोले, नहीं, इस व्यक्ति ने चोरी नहीं की, मैंने ही ये स्वर्ण इसे दान में दिया था। ये मेरा अतिथि था और अतिथि को सम्मान देना मेरा धर्म है। राजा की शब्द सुनकर काल केतु स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं जन्म से चोर नहीं था, परिस्थितियों ने मुझे अपराधी बना दिया, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझ पर विश्वास किया है। आपने मेरे अपराध को क्षमा करके मुझे नया जीवन दे दिया। आज से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और ईमानदारी का मार्ग अपनाऊँगा। राजा ने उसे उठाकर गले लगा लिया और बोले, मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वही सच्चा वीर होता है। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। ये पत्थर जैसे कठोर हृदय को भी मोम बना देता है। उस दिन के बाद काल केतु ने अपराध का मार्ग छोड़ दिया। वो राजा का सच्चा सेवक बन गया और जीवन भर गरीबी की सेवा करता रहा। उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। इस कहानी से हम ही सीखते हैं कि विश्वास, दया और क्षमा में उस शक्ति होती है जो सबसे बड़े अपराधी का भी हृदय बदल सकती है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो उसके भीतर छिपी अच्छाई

0: जो मेरे समक्ष ना होते हुए भी मेरे हृदय के बहुत पास होने का एहसास दिलाते हैं। राम राम जी, सुप्रभात आप सब भाई बहनों को कह रही हूँ। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त काहे ना हो, निकलेगा ज़रूर रास्ता, निकलेगा ज़रूर रास्ता। यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध। आपको अच्छे दिन की मंगल कामनाओं के साथ प्रातःकालीन वंदन एवं अभिनंदन। मैं हूँ ना, आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द कौन से, मैं हूँ ना, किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं। हमारे तो परमात्मा जी ही हमें यही कहते हैं कि मैं हूँ ना। और सही में हमको बहुत अच्छा लगता है कि भगवान जब मेरी परवाह कर रहा है तो मुझे डरने की क्या बात है। भरोसा उसी पर करना जो वक्त बदलने पर भी न बदले। भरोसा उसी पर करना जो वक्त बदलने पर भी न बदले। दिल की बात उसी से कहना जो शब्दों से नहीं एहसासों से समझे। साथ उसी का चुनना जो मुश्किल राहों में भी हाथ न छोड़े, क्योंकि अपने वही होते हैं जो दूर होकर भी हर पल दिल के सबसे करीब होते हैं। है कि नहीं सही बात भाई। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके पास भरोसेमंद रिश्ते और मित्र होते हैं। हम समझते हैं आप सबके पास तो ज़रूर होंगे ये दो चीज़। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है, रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है। अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। आप तो समझ गए होंगे इसका बहुत गहरा अर्थ है। सारी दुनिया को नाराज रहने दीजिए जनाब। अगर आपका परिवार खुश है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहें, कोई आपका सम्मान करे या ना करे। आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और सभी दुखों से दूर रखे। यही प्रार्थना है मेरी भगवान से। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जेब, जुबान और जूता, ध्यान से सुनिएगा। जेब, जुबान और जूता एक ही राशि के हैं जनाब, मगर तीनों अलग अलग तापमान पर काम करते हैं। जेब गर्म हो जाए तो अक्सर दिमाग ठंडा नहीं रहता। जुबान गर्म हो जाए तो रिश्ते नहीं रहते और जूता गर्म हो जाए तो कदम नहीं चलते। है कि नहीं सही बात। अरे भाई हम तो गर्म बात करते नहीं है ना। तो देखिए भाई, इन बातों को जीवन में ध्यान रखिए और अपना जीवन को सफल बनाइए। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूँ निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा पर निश्चय रखिए, भरोसा रखिए और देखिए वो मदद कदम कदम पे करता है कि नहीं। हवाएं मौसम का रुख बदलती है तो दुआएं मुसीबत का। दुआ देते रहिए, आप पर दुआओं की बारिश होती रहेगी। चलिए ये बात पर एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बतियाएंगे। बहन जी कोनो निकवा सा गीतवा सुना दीजिए तो हमारे श्रोताओं को।
1: आवश्यक सूचना। 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबू राज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: शहर के सबसे सम्मानित और दयालु व्यक्ति सेठ मोहन चंद का अचानक निधन हो गया। इस समाचार पूरा शहर में आग की तरह फैल गया। जिसने भी सुना उनकी आँख नम हो गई। आखिर सेठ जी ने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद करने में बिताया रहा। किसी गरीब बेटी की शादी हो, किसी बीमार का इलाज, किसी विद्यार्थी की फीस या किसी भूखे को भोजन, सेठ जी ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। हेलो,
2: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी।
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग भैया। बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
2: दीदी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। खुशी से प्रोग्राम सुन रहा हूँ। सच्चे रिश्ते, सच्चा प्यार क्या होता है? बहुत ही अच्छा कहानी से आप हमें सुना रहे
1: भैया।
2: और विषय अनुसार हमारी दीदी सुभा जी, आज सुभा जी, उन्होंने भी दोनों गीत विषय अनुसार बहुत ही अच्छे सुनाए। तो आपका, सुभा जी का, रेडियो मधुबन परिवार, सभी श्रोते भाई बहनों को सुभाष भाई का नमस्कार। थैंक यू दीदी,
1: थैंक यू भैया, थैंक यू। आपने फोन किया उसके लिए थैंक यू। रेडियो मधुबन की टीम की तरफ से आपको भी नमस्कार। शहर के सबसे सम्मानित और दयालु व्यक्ति सेठ मोहनचंद का अचानक निधन हो गया। आपको सुना रहे थे। इस समाचार पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। जिसने भी सुना उसकी आँख नम हो गई। आखिर सेठ जी ने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद करने में बिताया था। किसी गरीब की बेटी की शादी हो, किसी बीमार का इलाज, किसी विद्यार्थी की फीस या किसी भूखे को भोजन, सेठ जी ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। उनके विशाल घर के बाहर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई कह रहा था ऐसा इंसान अब कहाँ मिलेगा। देखते ही देखते हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुँच गए। फूलों से सजी अर्थी तैयार थी। हर कोई उनके गुण गा रहा था। तभी आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की फुहार रही, फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। कुछ ही मिनटों में भीड़ छटने लगी। जो लोग थोड़ी देर पहले सेठ जी के गुणों के पुल बांध रहे थे, वो अपने कपड़े बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई दुकान की छत के नीचे खड़ा हो गया, कोई अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। करीब एक घंटे तक बारिश नहीं रुकी। आखिर परिवार ने निर्णय लिया कि जो लोग छाता लेकर आएंगे, वही अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। जब अर्थी दोबारा उठी तो दृश्य देखकर हर किसी का दिल भर आया। हजारों लोगों की भीड़ में अब केवल 10 लोग बचे थे। 4 लोग अर्थी को कंधा दे रहे थे और 6 लोग चुपचाप पीछे चल रहे थे। बाकी सब अपने अपने घर लौट चुके थे। ये दृश्य देखकर सेठ जी का सबसे छोटा बेटा रो पड़ा। तभी उसके दादाजी के पुराने मित्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोले, बेटा यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। जिन लोगों के लिए तुम्हारे पिता ने पूरी जिंदगी लगा दी, आज वो बारिश में एक छाता लेकर भी उनके साथ नहीं चल सके। लड़के ने आंसू पोंछते हुए पूछा, तो क्या लोगों के लिए अच्छा करना गलत है? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अच्छा करना कभी गलत नहीं होता, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी केवल इस डर में मत बिताना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोगों की खुशी के लिए अपना सुख, अपना समय और अपनी शांति मत खो देना, क्योंकि दुनिया जरूरत पड़ने पर साथ देती है, हर परिस्थिति में नहीं। उस दिन सेठ मोहनचंद की अंतिम यात्रा ने पूरे शहर को एक ऐसी सीख दी जिसे कोई कभी नहीं भूल पाया, मतलब दूसरों की मदद अवश्य करें, प्रेम और दया से जीवन जिए, लेकिन अपनी खुशियों का निर्णय दूसरों की सोच पर कभी मत छोड़िए। जो लोग आज आपकी प्रशंसा करते हैं वे हर मोड़ पर आपके साथ रहें ये जरूरी नहीं। इसलिए अपने जीवन को अपने सिद्धांतों और अपने आत्मसम्मान के साथ जिए, क्योंकि अंततः ये दुनिया कभी पूरी तरह आपकी नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हैं तो और आपके सगे संबंध भी, हम कहते हैं कि आपके हमेशा नहीं होगी ये दुनिया। ज़रूरत पड़ने पर ही साथ आती है, ज़रूरत पड़ने पर ही प्रेम दिखाती है। इसका मतलब हम ये नहीं कहते कि सभी स्वार्थी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं और हमें वो संभल के रहना। अपनी उपस्थिति का लोगों को आभास कराने की कोशिश से बेहतर है कि लोगों को आपकी अनुपस्थिति का एहसास हो। आप अपना किरदार मत छोड़िए। लोग तो आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कभी आम तो कभी खास बनाएंगे। ये दुनिया की रीत है भाई, क्या कर सकते हैं हम और आप, कोशिश करके देख लीजिए, चेंज नहीं कर सकते। कर्म कहता है जब तुम किसी की ज़िंदगी झूठ से बर्बाद करते हो तो इसे एक कर्ज समझो, ये ब्याज सहित तुम्हारे पास लौट कर आएगा। परमात्मा कहते हैं कोई हमें पानी का गिलास भी पिला दे उसका भी कर्ज हमें देना पड़ेगा। इसलिए किसी से भी कभी मुफ्त का ना खाएं। हमें अपना लेन देन बराबर रखना है, हमारा कोई ले जाए लेकिन हमें किसी का नहीं खाना, वरना हिसाब देने के लिए 84 तैयार है। कम से कम थोड़े से गुजारा कर लो, जितना है पास बस उसी में सब्र कर लो। आपको एक सच्चाई बताएं, बहुत हमको दुख लगा, हमारे पास मैसेज आया रहा इस पे, मुंबई के बड़ा कपड़ा व्यापारी रहे शिवचरण राम रतन गुप्ता, 74 वर्ष की, हरियाणा के सेरीपत स्थित एक वृद्धाश्रम में मौत हो गई। वो पिछले 3 साल से आश्रम में रह रहे थे। 2 साल पहले उनकी पत्नी का भी इसी आश्रम में निधन हुआ था। मंगलवार को आश्रम प्रबंधन ने उनकी मौत की सूचना उनकी तीनों टीचर बेटियों को दी। आश्रम संचालक आनंद कुमार के अनुसार बेटियों ने ऑनलाइन 5100 रुपये भेजकर अंतिम संस्कार सोनीपत में ही कराने के लिए कहा। जब मुखाग्नि देने की बात आश्रम के ही किसी व्यक्ति से करवा कर उसका वीडियो दिखाने के लिए कहा, और जब वो वीडियो देख रही थी तो कह रही थी जल्दी जल्दी करो, मुझे स्नान करने भी जाना है। आई तो नहीं पिता की अंतिम संस्कार में, लेकिन वीडियो कॉल पर देखा अंतिम संस्कार और बोली जल्दी करो हमें नहाना भी है। क्या जमाना आ गया, सोचिए तो कितनी इंसानियत और गिरेगी। अपने पिता के लिए भी समय नहीं, और वो भी शिक्षा की देवी बनी है, यानी लोगों को शिक्षा देती, क्या संस्कार देंगी वो अपने बच्चों को और दूसरे बच्चों को। खतरनाक लोग, इन 4 को माफ ना करें। जहर का घूंट पीना फिर भी आसान है, लेकिन इन 4 तरह के लोगों को दोबारा मौका देना अपनी मौत के वारंट पर खुद साइन करने जैसा है। बड़ापन वहीं दिखाओ जहां कवर हो, गद्दारों के सामने नहीं। बड़प्पन वहीं दिखाओ जहां कदर हो, गद्दारों के सामने नहीं। पहला वो इंसान जिसने आपकी आंखों में आंसू देखते हुए भी आपको और दर्द दिया उसे कभी मत भूलना। दूसरा वो जिसने आपकी सराफत को आपकी लाचारी समझा और आपकी पीठ पीछे वार किया। तीसरा वो जो गलत होकर भी सीना तान कर खड़ा रहता है और अपनी गलती कभी नहीं मानता, ऐसे अहंकारी से दूर रहना ही भलाई है। और चौथा जो आपके भरोसे को नींव पर अपना स्वार्थ की इमारत खड़ी करता है, इन्हें माफ़ करना खुद के साथ ना इंसाफी है। अपनी शांति, अपने सम्मान और अपने भविष्य के लिए सही लोगों का साथ चुने। सही लोग, बेहतर सोच, मजबूत कल। तो देखिए भाई, अच्छी अच्छी बातें बता दी। अभी कहेंगे मन में केवल वही विचार बनाएं जो आप होता देखना चाहते हैं। कहे कि विचार बीज है और घटनाएं इसके फल है। हमारा मन बहुत पावरफुल है, उसमें बहुत शक्ति है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है। कहे कि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है कि नहीं। हीरे की कीमत समय बता देता है और सच्चे दोस्त की अहमियत हालात। दूरी चाहे कितनी भी हो जाए, दिल से जुड़े रिश्ते हमेशा महकते रहते हैं। है सच्ची बात कि नहीं? अरे भाई, आप तो जानते हैं ना, हम कभी गलत नहीं बोलते। कर्मों की आवाज़ शब्दों से भी ऊंची होती है। कर्मों की आवाज़ शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मीठी नहीं बना सकता। केवल सीखना ही ज्ञान नहीं है, कभी कभी कुछ बातें नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। यदि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने की आदत डालते हैं तो आपको स्वयं के लिए प्रार्थना करने की कभी आवश्यकता नहीं होगी। इन बातों को याद रखिए, जीवन में बहुत काम आएंगी। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है और दूसरों से हारना होता है। विश्वास और आत्मविश्वास दोनों ऐसे शब्द हैं जिन्हें बोलने में सेकंड लगता है, लिखने में मिनट भर लगता है, लेकिन बनाने में जीवन भी कम पड़ता है। झूठे अहम और जिद की गांठ को यदि खोल दिया जाए तो उलझे हुए सभी रिश्ते आसानी से सुलझ जाते हैं। विपत्ति मनुष्य को गढ़ती है और समृद्धि उसे दानव बना देती है। याद रखिएगा इन बातों को। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बाग वफा में। अंधेरा वहाँ नहीं होता जहाँ तन गरीब, अंधेरा वहाँ है जहाँ मन गरीब है। न बुरा होगा न बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। हजार महफिल हो, लाख मेले हो, पर जब तक खुद से न मिलो अकेले हो। दूसरों की खुशी देखकर आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये बात तो आप मानते होंगे। चलिए भाई, ये बात पर एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे बताएंगे। सुनिएगा गीत।
3: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आने वाला युग कुंवारेपन का युग होगा। एक हालिया अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार अगले 6 वर्षों में विश्व की लगभग 45% लड़कियां अविवाहित रह जाएगी। ये रिपोर्ट 1 फरवरी 2025 को प्रकाशित लोकमत अखबार में छपी थी, जो मॉर्गन स्टैनली संस्था द्वारा किए गए एक विस्तृत अध्ययन पर आधारित है। सर्वेक्षण में पाए गए प्रमुख कारण, आज की लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और कैरियर को प्राथमिकता दे रही हैं। वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं और किसी पर निर्भर रहना नहीं चाहती। उन्हें स्वतंत्रता प्रिय है और वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेना चाहती हैं। विवाह, मातृत्व और पारिवारिक बंधनों को वो अक्सर अपनी प्रगति में बाधा मानने लगी हैं। यदि ये प्रवृत्ति बनी रही तो परिवार प्रणाली और सामाजिक संरचना बिगड़ सकती है। जनसंख्या में गिरावट, कुंवारे लड़कों की संख्या में वृद्धि और वृद्धावस्था में अकेलेपन की समस्याएं सामने आ सकती है। प्रश्न ये भी उठता है कि प्रगति, पद और पैसा कौन काम आएगा जब जीवन के अंत में साथ देने वाला कोई ना होगा। कई माता पिता लड़कियों के रिश्ते तो ढूंढ रहे हैं, पर स्वयं लड़की को विवाह में रुचि नहीं होती, जे के कारण हर रिश्ता नकारा जा रहा है। समाज के एक बड़े वर्ग को इस बदलाव की गंभीरता का भी मालूम नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम समय रहते चेते। लड़कियों के विवाह के लिए उपयुक्त आयु 23 से 26 वर्ष के बीच हो। यदि हो पाए तो और भी जल्दी। इसके लिए सामूहिक स्तर पर जागरूकता और पहल जरूरी है। ये विषय किसी के विरोध में नहीं, बल्कि भविष्य की स्थिरता और संतुलन की चिंता के तहत उठाया गया है। समाज, परिवार और व्यक्तिगत जीवन तीनों को संतुलित रखना ही सच्ची प्रगति है। हम सबको इस पर विचार करना अवश्य करना चाहिए। भविष्य की ज्वलंत समस्या, जब बच्चों का विवाह 20 साल में होता था तो 1 सदी में 5 पीढ़ियां होती थी। जब बच्चों का विवाह 25 साल में होता था तो 1 सदी में 4 पीढ़ियां होती थी। अब बच्चों का विवाह 30 साल में होता है तो 1 सदी में 3 पीढ़ियां होती हैं। सोचने वाली बात है, क्या हमारा समाज अगली सदी तक जीवित रहेगा? आज एक अजीब सा अंधेरा फैल रहा है। गली मोहल्ले वीरान है, आसपास के घर खाली है। आज घरों में बच्चों की आवाज़ कम और पति पत्नी की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती। लड़कियां 30-35 साल तक कुंवारी हैं, लड़के 35 साल के बाद भी कुंवारे घूम रहे हैं। देर से शादी, फिर संबंध विच्छेद, टूटते परिवार, दुखी माँ बाप, माता पिता के लिए पूरी पीढ़ी खालीपन अनुभव करती है। क्या हम इसे पढ़ा लिखा समाज कहें या स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाला समाज? ये तो जनसंख्या कम करने की एक खामोश साजिश है। अगर 50 जोड़ों में सिर्फ एक बच्चा हो तो अगली पीढ़ी में सिर्फ नाम मात्र के बच्चे होंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीसरी पीढ़ी लगभग गायब हो जाएगी। मोहल्ले, गलियां खाली पड़ी हैं, सब लोग रोड पर हैं। जीवन का आधा समय तो रोड पर ही बीत जाता है। गांव के गांव खत्म हो रहे हैं, शहरों में ऊंची इमारतें हैं, लेकिन संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो चुकी है। नई बहुएं सिर्फ एक ही बच्चा चाहती है। क्या यही समाज है? क्या यही हमारे पुरखों की विरासत है? सच तो ये है कि बच्चे अब प्यार की निशानी नहीं रहे, बल्कि बच्चे पैदा करना एक मजबूरी सी है। सबसे बड़ी गलती लड़की के पिता की है। वही पिता जिसने 20-22 साल की उम्र में विवाह करके परिवार बसाया था, अब वो पिता 30 साल की उम्र तक अपनी बेटी के विवाह ना करके बहादुरी दिखा रहे हैं। परिणाम, लड़के लड़कियां डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज बच्चों का सही समय पर विवाह नहीं हो रहा है और ना सही समय पर कोई नौकरी मिल रही है। समाज धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा। इसी कारण बच्चे समाज के साथ नहीं, अकेले रहना पसंद करते हैं, यानी एकल परिवार, यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं चाहिए। देर से शादी करना, देर से बच्चा करना, फिर एक बच्चे के बाद मेडिकल और लालन पालन का बहाना करना, ये आम बात हो गई है। हजारों जवान लड़के लड़कियां उम्र के कारण कुंवारे घूम रहे हैं। समाज के समझदार लोग चुप्पी साधे हुए विवाह परिवार बच्चे का इन सबको बोझ समझा जा रहा है। विवाह कोई दुनियावी बंधन नहीं, एक घर परिवार और समाज का स्तंभ है, प्रजाति सभ्यता और संस्कार को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। अब हम सबको समझने का समय आ गया है। बच्चों को हद से ज़्यादा आज़ादी देकर हम उनकी समझ छीन ली है। विवाह टलता रहा और जब हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, फिर वही अकेलापन। लड़के लड़कियों के लिए विवाह की सही उम्र लड़कों के लिए 25 साल से पहले और लड़कियों की 20 साल से पहले, वरना इतिहास लिखेगा वो हिंदू समाज जिसने चुपचाप स्वयं को ख़त्म कर लिया। सोचो और समझदारी दिखाओ, अपने बच्चों का विवाह समय पर कीजिए, क्योंकि परिवार नहीं बचा तो समाज को भी देर सवेर ध्वस्त होते देर नहीं लगनी है। यही कारण है डेविड सेलबर्न, सतीश बंसल और बिल वार्नर जैसे लेखक ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस्लाम के मजबूत फैमिली सिस्टम की वजह से देर सवेर

0: ¿Aló? ¿Aló?
1: जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ। दीदी जी,
0: हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार, आपको दुनिया भर की दुआएं हमारी तरफ से, अनेक अनेक दुआएं। आपका दुआ सच्चा रहे, आप खुश रहे, मस्त रहे, और हमें खुशी देने वाले आप ही हैं सब रेडियो
0: परमात्मा।
1: और जी, और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार, ढेर सारा प्यार। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।
0: और
1: अभी 6-7 मिनट बाकी है
0: जी,
1: और
0: जी।
1: जब तक अच्छा सुना दो, आप अच्छा ही सुनाते हैं। हाँ। और नमस्कार करते हैं बहुत सारा। ओम शांति।
0: नमस्कार। नमस्कार। सिंगल चाइल्ड फैमिली को उसका निर्णय तीसरी पीढ़ी यानी जिसके आप दादा दादी होंगे बुरी तरह प्रभावित करेगा। जिस दादा को मूल से अधिक ब्याज प्यार होता है उसका तो मूलधन भी समाप्त हो जाएगा। इसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी है। इसलिए दंपति को सिंगल चाइल्ड के निर्णय पर गंभीरता से विचार करना होगा। ये घटती आबादी के आंकड़े बोल रहे हैं, ये विश्लेषण सरकारी आंकड़ों के अध्ययन से आ रहा है। आपका पौत्र या प्रपौत्र इस संसार में अकेला खड़ा होगा, उसे अपने रक्त के रिश्ते आवश्यकता होगी, तो इस पूरे ब्रह्मांड में उसका अपना कोई नहीं होगा। यह अत्यंत सोचनीय विषय है। ये न केवल हमारे बच्चों को एकाकी जीवन जीने को मजबूर करेगा, बल्कि हमारे हिंदू परिवार सभ्यता को ही नष्ट कर देगा। हम जो हिंदू एकता की बात करते हैं, ये तो सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी, और इस सब के लिए हमारी वर्तमान पीढ़ी उत्तरदायी होगी। अगर आप इस विषय को गंभीर समझते हैं तो इस समस्या पर विचार करें। घर परिवार में, पति पत्नी के बीच, रिश्तेदारों में, दोस्तों में एवं विभिन्न बैठकों एवं आयोजकों में इस विषय पर मंथरना करें। अपनी सभ्यता, संस्कार और पीढ़ियों को बचाए बहुत गंभीर समय है। तो देखिए भाई, हम तो जो बड़ा जो रिपोर्ट आई है वो पढ़ी तो हमको भी लगा कि गंभीर विषय है, इसके लिए आपको सुना देते हैं। तो इस पर आपको विचार करना है। बात तो जो सही है वो तो हम आपको सुना ही दिए हैं, बाकी आप पर डिपेंड करता है आप इसको कितना मानते हैं, नहीं मानते हैं, ज़रूरी समझते हैं या नहीं समझते हैं। ये आपकी समझ पर हम छोड़ देते हैं, है कि नहीं? तो देखिए, अभी आपको और 2 मिनट सुना देते हैं कुछ, है कि नहीं? दो मजेदार छोटी कहानियाँ हैं जिनका गहरा अर्थ है। मैंने एक छोटे बच्चे को लिफ्ट में आइसक्रीम खाते देखा। चिंता के कारण मैंने यूं ही कहा, इतनी ठंड में आइसक्रीम खाओगे तो बीमार हो जाओगे। बच्चे ने जवाब दिया, मेरी दादी 103 साल तक जिंदा रही, यानी वो आइसक्रीम खाती थी और 103 साल तक जिंदा रही। मैंने पूछा, क्या वो भी आइसक्रीम खाती थी? बच्चे ने कहा, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो दूसरे के मामलों में दखल नहीं देती थी। कितना गहरा सबक। अब समझ आया कि मैं इतनी जल्दी क्यों बूढ़ा हो रहा हूँ। बहुत ज़्यादा फालतू की टांग अड़ा रहा हूँ, दूसरों की बातों में फालतू टांग ना अड़ाए। एक युवती ट्रेन में चढ़ी और देखा कि उसकी सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है। उसने विनम्रता से टिकट देखा और कहा, सर मुझे लगता है कि आप मेरी सीट पर बैठे। आदमी ने गुस्से में अपना टिकट निकाला और चिल्लाया, ध्यान से देखो, ये मेरी सीट है, तुम अंधी हो का? लड़की ने चुपचाप उसका टिकट ध्यान से देखा और बहस करना बंद कर दिया। वो शांति से उसके बगल में खड़ी हो गई। ट्रेन चलने के कुछ मिनट बाद लड़की ने हल्की आवाज़ में कहा, सर आप गलत सीट पर नहीं बैठे हैं, लेकिन गलत ट्रेन में बैठे हैं। ये ट्रेन कोलकाता जा रही है और आपकी टिकट मुंबई की है। कुछ संयम ऐसा होता है जो लोगों को उनके व्यवहार पर, पछताने पर मजबूर कर देता है। अगर चिल्लाने से सब कुछ हल हो जाता तो गधों का ही राज होता। ये दो मज़ेदार कहानियाँ इतनी बेहतरीन है कि इन्हें अपने तक सीमित रखना ठीक नहीं समझा, क्यों ना दूसरों के साथ भी ये हंसी बांटी जाए। टाइम हो गया है, आप सबसे नमस्कार करते हैं, अगले शनिवार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: कर कर जावे मन घणो अच्छो लागे यो सावण
1: मन घणो प्यारो लागे है यो सावण रा गीत गाय रही है का होय रियो है
0: अरे राम राम कंचन आओ भाई आओ राम राम और जीव राजी है
1: बस राजी थारो गीत सुने वरे जीव राजी वे गयो
0: तना तो ठाई है के गीत का तो मने घणो ही शौक है आवे के नहीं आवे आपने तो गुनगुनातो रहनो
1: ना ना तू गीत तो अच्छो गावे मन तो पसंद आयो गीत थारो
0: तो पहले तो आपा अपना सगला श्रोता बंधु को स्वागत करा हाँ गावरी बातें कार्यक्रम में सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM
0: आप सगला ने खम्मा गणिसा
1: आप सभी रो अभिनंदन है
0: कंचन थू कह रही कि भाई ये गीत क्यों गा रही सावन महीनो भाई लागवा वालो है सावन महीनो और सावन महीना का तो ठाट तू जाने ही है
1: हाँ वो तो है
0: तो
1: हरियाली री झू
0: हाँ चारों तरफ हरियाली होवे वशान मारो तो मन अबाणु हरियो भरियो हो गया है
1: हाँ सूखो छूको देखे देखे इन बोर वो जब में बरसात वरे जट हरियाली हरियाली हैंग जगह
0: हाँ वो कहवे कि प्रकृति ने देखा जतरे अपनो मन कतरो आनंदित वे जावे
1: वे वे सही बात कह रही है पेड़ पौधा हरा भरा वे वे जो पेड़ पौधा सूख जाए उन्होंने एक नवो जीवन मिले परो
0: नयो जीवन मिले पेड़ पौधा ने और आपने उमंग उत्साह मिले
1: हाँ
0: तो देख मैंने सावन महीना की भी याद आ रही कि सावन महीना की आपा पहली भी बात की दी ही अपन भी आपा करा कि भाई सावन महीना में तो मंदिरा में बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा झूला
1: झूला झूली
0: हाँ झूला चालू हो जावे भजन कीर्तन सत्संग फुल वेवे श्री कृष्ण जी के झूला का श्रृंगार होवे श्रीनाथ जी का मंदिर चले जाए ठाकुर जी का हर मंदिर में
1: हाँ ने श्रावण तीस हर त्योहार चालू हो जाए सबसे मोटी बात तो आए
0: हाँ, और मने थोड़ी ये बात भी याद आ गई कि देखो ये बारिश का मौसम है माँ का ये गेम खेलता है एक खेल बचपन में
1: हाँ
0: जिन्हें हग्गो कहता
1: हाँ मने याद आ गयो
0: है ना
1: हाँ
0: तो बरसात के मौसम में ही खेल सकता जटे गिली मिट्टी वेती मंटे भी खेल सकता
1: हाँ।
0: एक लोखंड को सलिया जैसे हुए वे भले मोटी खिल्ली समझ ले ऐसे
1: हाँ।
0: सलियो ले लेता
1: हाँ। पसे निशानो लगाता
0: हाँ। पछे जैसे आके भले दो भी खेल सका दस भी खेल सका
1: हाँ।
0: तो पछे कहता भाई अतरी दूरी पे मारनो बटे
1: हाँ।
0: गिलो बटे मार तो आपाने दूरी बताता 10 कदम दूर 15 कदम दूर वनी खिल्ली ने फेंकता हो निशान साधन
1: हाँ।
0: अगर वह धरती में घच जाती
1: हाँ।
0: तो आप जीत गया
1: जीत
0: और वह पड़ जाती
1: तो आउट हो गया
0: तो आउट हो गया
1: हाँ।
0: दूसरा को नंबर
1: नंबर ना गीली मिट्टी में तो निशानो तो लागवारो इसे
0: लाग जावे पर कतरी बार कहीं का आपा निशानो डालती टाइम पे चूक गया
1: हाँ।
0: तो आड़ी पड़ गई खिल्ली तो पछे वा क्या जाए
1: हाँ बातो बात सही है
0: तो वह रह जाते तो वे खेल याद आ गया कि आजकल तो टाबर के सब खेल बंद हो गया
1: सब मोबाइल स्मार्टफोन रे वजह थी सब बंद हो गया मैं बच्चा टावर बारे खेले ही कोनी नहीं आ पाए तो देख बारे इस पूरा दिन खेलता रहता स्कूल रो बस तो फेंकियो नहीं हाँ। खेल बारी मस्ती
0: बिल्कुल सब बच्चा बच्ची बाने जोर जोर चिल्लाता जाता खेल
1: तन याद है सितोलिया
0: अरे सितोलिया तो घना खेलता भाई याद आवे
1: अच्छो गेम तो वो
0: बहुत बढ़िया गेम आज भी यूं लागे खेला
1: हाँ बोलती एक दूसरा मारता पत्थर गिरावता जमावता कतरो अच्छो याद आवे जरे के पहला रो समय खूब अच्छा तो
0: सात पत्थर वेता भली तो चौरस भली गोल सब बड़ो पचे बेको छोटो पचे बेको छोटो एक दूसरा का ऊपर जमाता
1: सही है टीम बनाता टीम बनाया टीम वन साइड
0: पचे बोलू मारता वे पत्थर पड़ गया तो भाग जाता
1: भाग जाता जो जमावा आता उन्हें बॉल बॉल मारता
0: जो जमावा आता जैसे बॉल दूर पर हो गया तो फटाफट आप जमा लेता
1: हाँ।
0: और बॉल जो पास में है तो छेटी भाग जाता वे आपने बॉल मारता ना आपने टच नहीं वेता तो वे लेवा जाता जितने आप पत्थर ने
1: जमा देता ना ऊपर जीत जाता
0: जीत जाता
1: बहुत अच्छा गेम तो
0: आज भी एडी इच्छा होवे कि एडा गेम आप खेला पर अबे आप कठे जावा बालक के अत्र खुलो मैदान है ये नहीं खेल सक रहे और अबे आपा आनी उम्र में खेला तो सब हंसे
1: हंसे
0: पर मैं तो यही कहूं कंचन के खेलवा की और पढ़वा की
1: कोई
0: उम्र
1: नहीं, नहीं होती सही बात है
0: पर सब आपको ग्रुप होना चाहिए
1: ग्रुप पेड़ अपने सामने मनक वे तो ओपे खेलो ही खराम बच्चों हाथे ओपे कीकन खेलो तो शर्म आवे
0: बच्चा का साथ में तो अच्छो को नहीं लागे
1: पर रतन मु तो खेलो मो बारिश गाम गई बच्चा बच्चा देखिया हमें ओपरो घर है ओपन कान नहीं शर्म आवे ओपरे इस बच्चा खेलता

0: खो खो
1: हाँ
0: खेलता था वे हारवा लागा मु उन टीम में घुस गई न उन्होंने जीता दीदा।
1: अरे वाह वाह वाह भाई, तो तू तो होश जीता दीदा, तो तन तो
0: हाँ
1: बचपन याद आ गयो होई।
0: बचपन याद आ गयो ना आवा तंड वास्ते याद आई मने के थे कयो ने के हमें शर्म आवे तो खेलवारी कोई उम्र नहीं बहती।
1: नहीं यह सही बात है, पर तू क्यों ना कि भैया हर की कई साथ में नहीं खेल सका,
0: हाँ वो तो
1: अपना
0: है
1: गांव अपना टाबर वाह बात अलग
0: वाह
1: है।
0: बात अलग है पर बारे कटे जाओ तो थोड़ो सोचना पड़े और
1: हाँ
0: पे नहीं खेल सकता।
1: क्योंकि खो खो एडो गेम है कि मैं आपने दौड़नो पड़े और
0: हाँ
1: आखी नीचे टीम बैठी रहे,
0: हाँ
1: बच्चे वाने गोल गोल आपने राउंड मार मार
0: राउंड
1: करके किने
0: मान
1: आपने करना
0: सही
1: बटे
0: बात
1: बैठनो,
0: है। हाँ
1: इमें कम से कम 10-11 जना वे तो ही मजा आवे।
0: मजो आवे ज्यादा संख्या वे
1: हाँ
0: तो
1: ज्यादा
0: मजो।
1: संख्या वे तो ही मजा आवे। और कोई कोई गेम एडा है जो मैं आपा दो दो भी खेल सके, जैसे
0: दो दो
1: बैडमिंटन है,
0: बैडमिंटन।
1: ये आज भी खेला तो कोई शर्म को नहीं
0: ने
1: आवे,
0: बैडमिंटन तो आथन बात को हमें बरसात में खेलवा रो और मजो आवे
1: मजा आवे
0: मिट्टी
1: सही है।
0: एकदम जमे परी ने
1: हाँ
0: बैडमिंटन खेलो ने बरसात वेती वे तो और भी मजो आवे।
1: और ये मैं दो भी खेल सका,
0: दो भी खेल सका।
1: टेबल टेनिस है बैडमिंटन है, ये
0: हाँ
1: आप दो भी खेल सका।
0: हाँ
1: और टेबल टेनिस में तो घना सिस्टम है, टेबल वगैरह सब छावे, पर बैडमिंटन में का ये सिस्टम नहीं है,
0: नहीं
1: आपने
0: वो
1: जरूरी को ने नेट बंदी सकी वे तो ही आप खेल सका दूजे
0: यूं भी
1: पहला।
0: खेल सको ला,
1: हाँ
0: मैं तो थन टायर तन लाइन खोचो इन खेलो लाइन बाउंड्री बना दो
1: हाँ
0: अनपालम पड़े तो थारी अनपालम पड़े तो मारी
1: हाँ
0: वाह चीज।
1: बस, तो ये तो आज भी चालू है, पर एड़ा एड़ा गेम है जो भले स्कूल में नहीं चलता पर आपा खेल खेलन आनंद लेता,
0: आनंद
1: जैसे अन
0: लेता।
1: हगो क्यों, जैसे
0: हाँ
1: अन सितोलिया, और खबर है आपा मौसम भाई मौसम भी
0: हाँ
1: खेलता
0: मौसम भाई खेलता। हाँ वही गेम बहुत पुराना है।
1: सही है, आमने सामने दो जना खड़ा वे
0: लाइन
1: जाता हाथ
0: बनाता
1: पकड़,
0: नीचे वे
1: हाँ
0: निकलता।
1: हाथ
0: हाँ
1: पकड़, पचे
0: हाँ
1: पूरी टीम लाइन बना नीचे निकलता और
0: निकलता
1: एक में
0: पकड़
1: आपा
0: लेता
1: पकड़
0: पकड़
1: लेता,
0: लेता
1: जो निकल गया जो निकल गया, जो पकड़ा गया जो
0: निकल
1: पकड़ा
0: पकड़ा
1: गया।
0: गया। हाँ
1: हाँ
0: खूब अच्छा अच्छा गेम था पहला। हमें तो बच्चा है गेम खेलता ही नहीं है हम तो पूरा दिन फोन लेन बैठा रहे बाहर ही तो नहीं निकलता का खेले।
1: तो बात आप आनी वजह कर रहा कि जो आज का बच्चा मोबाइल में लाग गया सका है, ये पुराना गेम अगर ये भी खेले तो याने भी मजो आए।
0: मजो आवे सही बात है।
1: देखो भाई गेम खेलो शारीरिक विकास वेवे मानसिक विकास वेवे और अपना मन प्रफुल्लित रहे।
0: प्रफुल्लित जावे सही बात कह रही है रतन पर हमें का करो बच्चों ने कीकन समझाओ फोन लियो उन्होंने आत्माई थी तो चिल्लावा लागे थे तो देखियो उसे।
1: वो सही है पर अब कैक तो करना पड़ी ना, वो क्या वे 10 बार बोला 100 बार बोला कटेक तो तीर लागी।
0: कटक तो तीर लागी सही बात कह रही है पर आज
1: अब देखो मोबाइल में कई शारीरिक विकास रुक जावे मानसिक विकास रुक जावे, कई दर्द भरिया सीन वे तो और मन उदास हो
0: मन में
1: जावे।
0: उदास हो गए।
1: और आजकल तो देख भाई कंचन में थाने कई क्यों, मैं एक जगह पे घी ही जटे बच्चा वहां के तीन बच्चा हा तीन ही मोबाइल लेन बैठा, ठीक है अब एक बच्चा जो 5 साल को वॉशरूम जानो भी कह, तो भी के मम्मी ने कह रहे मम्मी सुसु करनो है, मम्मी सुसु करनो तू चाल और दिन को टाइम है बाथरूम वो रियो सामने ही दिख रहो,
0: हाँ
1: तो भी के माँ डांट रही वो रियो बाथरूम चले जा तू ही मैं
0: हाँ
1: तो नहीं आऊं,
0: हाँ
1: अरे मम्मी डर लागे मम्मी डर लागे, क्योंकि
0: हाँ
1: आजकल ये कहीं मोबाइल में भी भूत कान कहीं
0: भूत
1: का
0: ना।
1: कहीं देखे।
0: हाँ ने भूत तू सच कह रही है रतन मैं ही बच्चों ने देखूं यूं सर्च मारे भूत के वाली वीडियो दिखाओ तो वे भूत वाली वीडियो देखे पसे डरे
1: हाँ अच्छा डरे, अबे ये कौन कई फायदा है,
0: कोई फायदा
1: अबे
0: नहीं।
1: ये टाबर ने क्या समझावा जो मने भी ठानी पड़ रही, पर मैं तो यो क्यों एक दिन रोवे दो दिन रोवे एक दिन रोटियां नहीं खावे दो दिन रोटियां नहीं खावे मत खाओ कहीं
0: सही
1: नहीं
0: है
1: बिगड़े, पर याने फोन देनो इस नहीं
0: नहीं देना
1: कभी
0: सही
1: नहीं
0: बात।
1: मिले फोन, अरे 5 साल का बच्चा डरवो कहीं होवे वो भी
0: हाँ सही
1: नहीं
0: बात
1: आवे,
0: है
1: पहले आतो कहीं बच्चा
0: पहला
1: ने,
0: बच्चा लाइट वगैरह से रहता
1: हाँ
0: लाइट कटे थी पहला
1: कटे कटे घूम घूम अकेला ही आ जाता और
0: अकेले
1: आज
0: ही
1: एक
0: आ
1: बाथरूम में
0: जाता
1: जाता बच्चा ने डर
0: डर
1: लाग रियो,
0: लागे सही बात कह रही
1: तो
0: यार।
1: कई विकास हुआ।
0: और अतन आ चीज तो मैं भी खूब बच्चों रे देखी कि अतरा अतरा बच्चा आजकल एन गली थी वन गली जाना ही उन्होंने भी आवे एक रूम थी बीजा रूम में जाता ही डर लागे अंधेरा
1: हाँ
0: में नहीं जाए
1: अरे केरो हॉल में बैठा सका है जनरल बाथरूम है पास में ही है 2 कदम जानो,
0: तो ही डर
1: वो
0: लागे
1: बच्चा ने डर लाग रहे आखिरकार माँ ने जान भी ने सुसु कराना पड़ियो।
0: सही बात कह रही है। तू तो 5 साल का
1: हाँ
0: मैं तो 10 10 साल का बच्चा ने देखिया है जो डर है लाइट
1: डर
0: चालू
1: है,
0: करे माँ बाप बारे उबर है तो वॉशरूम करवा जाए
1: हाँ हाँ
0: वो डर तो है।
1: आज का बालक की एडी हालत है, तो थोड़ा विचार तो आवे ही है ना कि ये देश का भविष्य है,
0: भविष्य है सही बात कह रही है।
1: देश का भविष्य के आज वर्तमान में यह हालत है तो वे कई बार नहीं आगे जान, अनिवार्य से जरूरी है बालक को मोबाइल छुड़ावो। और ये जो खेलवा को शौक है तो आप खेलो, एड़ा एड़ा गेम खेलो।
0: हाँ वन बात ने माँ बाप ने ही थोड़ो बच्चों ने कहना जोजे, क्योंकि वे तो पुराना है, वने तो गेम खेलियोड़ा है, तो उन्होंने कहना जोजे बच्चों बाहर जाओ गेम खेलो, बाहर खेलवारा अच्छा अच्छा गेम है। हाँ आज रो टाइम थोड़ो एड़ो है कि माँ बाप बच्चों ने बाहर मिलता ही दरअप लागे वनो, पर फोन मत दो।
1: हाँ
0: फोन देने कोई सुझाव
1: नहीं,
0: नहीं
1: देवा तो घर में उछल कूद करी तो सही।
0: हाँ पर माँ बाप ही कैडा वे थोड़े देर रोवे तो के हाँ शांत वही तो फोन पास पकड़ावे।
1: तो भाई आगे शांति माली मने हाँ मैं आराम कर सकूं।
0: हाँ सही बात कह रही है तू,
1: ले ले तू फोन
0: यूज करे।
1: पर वाह भाई कंचन, चलो आप थोड़ा एक अच्छो गीत भी सुना ला और मैं मस्त घर में गरम नाश्ता बना लई हूं।
0: अच्छा
1: हां जो नाश्ता कर पाछा अपना श्रोता बंधु रूबरू वेवा।
0: ठीक है
1: तो सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो
1: रेडियो मधुबन
0: 107.8 एफएम।
2: अरे थारी कंचन सी का यारो भरोसो, कौन लोभी जीवड़ी ला, कौन पापी जीवड़ी ला।

0: run, run, run.
1: दौड़ो दौड़ो दौड़ो.
2: आओ दोस्तों दौड़ लगाते हैं 9 अगस्त को
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन.
2: जी हाँ, इसका थीम है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड. संडे अगस्त 9 को ये मैराथन शुरू होने वाला है
1: सुबह 5 बजे.
2: तो आप सभी का इस मैराथन में भरपूर स्वागत है और आप सभी इस मैराथन में भाग लेकर रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जरूर बढ़ाइए. जी हाँ, इस भाईचारे को दुनिया भर में जरूर फैलाइए. इस मैराथन में भाग लीजिए और खुशियाँ दुनिया भर में बांटिए.
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन.
3: आवश्यक सूचना: 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा. यदि किसी को इस दौरान आबू राज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं. सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे. आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं. रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी.
4: वाह भाई, नाश्तो केड़ो लाग्यो कंचन.
5: मस्त मस्त रहता मस्त रहो हमेशा. नाश्तो तो बढ़िया ही.
4: तो गावरी बाता कार्यक्रम में पाछा अपना सगला श्रोता बंधुओं को स्वागत करा हा. और आपा बात कर रहा हा गेम्स की. मैंने तो आज देख भाई गीत भी याद आयो तो मैंने गेम्स भी याद आ रहा. मैंने स्कूल लाइफ याद आ गई.
5: हाँ वह तो है, स्कूल टाइम बहुत अच्छो. तो पहला रा समय रा गेम वगैरह स्कूल जानो आनो पूरा दिन यू शाम बेती ने ओपे देखता के ओपरी सहेली बारे आई है तो बस खेलवा भाग जाता. हमें तो बच्चा डर पे लेट अंदर हो बेन ओपे तो लेट लेट तक खेलता, डरता ही नहीं था.
4: अरे कोई आपने तो आवाज भी नहीं देता कि भाई मोड़ो.
5: पहला रो समय अच्छो तो हमें समय एड़ो हुआ है कि माँ बाप 6 बजे बच्चों ने के घर में घुस जाओ.
4: अरे मैं तो क्यों 6 बजा 7 बजा तक बच्चा खेले तो भी बढ़िया ही है. और देख मैंने तो बचपन की बात याद आ रही कि रेत का मंदिर अतरा बना था.
5: रेत में पाऊ गाले बनना मंदिर पसे पाल बना फूलों ती सजाता है.
4: फूलों ती सजाता अंदर आपा बल्ब लगाता अगर बड़ो बनाता तो
5: खूब बच्चो.
4: और कोई बिगाड़ देता मंदिर ने
5: तो बननी आई बनी है.
4: रोन आपा परेशान हो जाता.
5: पर ज्यादा तक है ना मोरे तो मोरे टाइम में है ना मैं लड़का लड़की साथ में खेलता. मोने तो लड़का खूब परेशान करता. छोरा आता मोरा मंदिर यू पगती तोड़न चले जाता. घर बनावता पगती तोड़न चले जाता. पसे मैं चिल्लावता थारे मम्मी ने आवेन कहनो पड़ी तुम्हारा मंदिर तोड़े दी दो. पसे पास ही में छोरिया इकट्ठो में मंदिर बनाती. पर खूब आनंद आवतो. हाँ खूब अच्छो टाइम. तो वो
4: टाइम भी बढ़िया हो और आपने कहीं कहीं नया करवा की इच्छा रहती. अच्छा आज मंदिर यू बनाए तो काले क्या बना.
5: तो सीढ़िया बनाता. सीढ़िया
4: मंदिर में चढ़वा की सीढ़िया बनाता. बाउंड्री बनाता. गार्डन बनाता. आजू बाजू पूरी रेत ने फैलान रख देता. जिकी रेत वेते वे चिल्लाता रहता और आप रेत में खेला करता और ऊपर कुद का कतरा मारता.
5: तो पहला कहतो ही नहीं तो कहता टाबर है खेलवा दो
4: खेलवा दो बस यूज कहता छोरा छोरी रेत मत बिगाड़ो.
5: हाँ बस रेत मत बिगाड़ो. हाँ वही कहता.
4: यू कैन परा जाता पर यू स्ट्रिक्ट नहीं औरत हो क्यों बिगाड़ो भागो टू असन क्या वाला कोई नहीं
5: कोई नहीं. तो उन्होंने खुद ने ठाए बच्चा आए खेले रिया बस रेत

0: भी कर जो, बस हाँ। रेत मत भी कर जो, वो डायलॉग बोलता।
1: और मजा भी आता सब मिलन, क्योंकि आखिर रेत ने आप चोरी चोरी कर देता, सब खेला करता, कतरा जना मिलन खेलता, कोई केड़ो मंदिर बना रहा, कोई केड़ो मंदिर बना रहा, पछे एक दूसरा का देखता ने, एक दूसरा ने खिजोता
0: खिजोता, मारो अच्छो बणियो है, मारो अच्छो बणियो। हां पहला रो समय
1: ऊपर रेत का आपा आखा ऊंचा ऊंचा चून, पछे ऊपर कूदका भी मारता,
0: ऊपर थी कूदता,
1: ऊपर कूदता के भाई देखा कौन कतरा नीचे जा सके,
0: हाँ।
1: और कौन कूद सके, कूदन बताओ तो बताता अपन, मजो भी आता, कोई लागती नहीं करती,
0: कोई रेती में का लागती, गिरता तो ही हाल तो के, हाँ कपड़ा थोड़ा गंदा होता मिट्टी में भराता, घरे जाए मम्मी डांटती है रेती रा वे ना आया हो।
1: वो सही है, पर अब मम्मी भी डांटती, पर जाने के नहीं खेली तो जाई कटे है, कहीं खेली बच्चा बच्ची है तो की करे। जो अपना टाइम का मैंने खेल याद आ रहा, देखो कटा आपा तो मौसम बाबा मौसम आपा खेलता जिन्हें कई बोलता, मैं तो भूल गई या मैंने याद एक पोला जी की पोल खोलो पीछे देखे तो मार खाइयो, ऐसा बोलता हाँ लाइन बना इंजन की ना आता पचे माने पकड़ता, किने पकड़नो सामने ही सामने वाला ने पकड़नो के सामने तीसरा नंबर वाला ने पकड़नो,
0: जोर थी पकड़ता है
1: और पकड़ में नहीं आता तो एक मुक्को मारता,
0: मुक्को मारता। खूब अच्छा अच्छा गेम था।
1: जो मने याद आवे कि देखो आपा केड़ा केड़ा खेलता हा, और खेल खेल में आपा ने कतरो सीखो मिल जातो। अपना टाइम में बड़ा ने रिस्पेक्ट करवो, धोग लाग कटे भी जाता तो बड़ा बुजुर्ग का आपा धोग लाग जाता,
0: लोग लगा में जाता। सही बात है।
1: अब आज बालक कटे भी जाओ तो मोबाइल की बात ही वहां का दिमाग में बस उड़ी। अरे मैं देखे एक जगह पे वे वहां का बच्चा ने माँ बाप को कोई दोस्त को नहीं, माँ बाप कह रहा बच्चा आपा बहाने जा रहा तो दादा दादी के धोग लाग, तो बच्चा तो बस धोग ही नहीं लागे
0: वो मोबाइल में मस्त।
1: हाँ माँ बाप धोग लाग रहा गले मिल रहा, टाबर ने क्यों बेटा धोग लागो दादा के दादी जी के, तो कटी झुकवा की जरूरत ही कोई ना, बाय बाय दादू
0: बस मोबाइल सीख है।
1: हाँ अब मोबाइल बोले माँ बाप संस्कार डालो छावे, पर बच्चा पे हावी भी हो सको कही मोबाइल तो वे सीखो ही नहीं चाहे,
0: सीखवा ही नहीं चाहे। सही बात है।
1: माँ पराने अगर डांट डपटाई माता पिता माने झुकाओ छाए तो आधा झुकन लाग गया धो गया चल गया
0: अधूरा। हाँ तो पूरा झुके ही नहीं,
1: पूरा झुके ही कोनी, वो भी मजबूरी
0: मजबूरी में वो मम्मी पापा मारी नहीं झुकिया तो।
1: हाँ हाँ बाकी मोबाइल तो निकल ही जतरे वो गेम। अरे एक मिनट बेचारा माँ बाप कह, अरे भाई आपने टाइम हो रहा था रखो, एक मिनट कारण 10 मिनट अचान खींचे,
0: 10 मिनट ऐसा खींचे। सही बात कह रही है।
1: और मैं एक बार देखो मैं ध्यान रखियो ये टाबर कई खेले देखू तो सही, एडो कई हमें इंटरेस्ट है जो ये फोन का सिवा यानी दूसरों के जीवन ही नहीं दिखे।
0: गेम एक तो मैं होबलियो है रतन पबजी, एक तो बच्चा पबजी खेले, आज तू अगर पाडला घर में बैठी है मुंह हटाती और एक बिजोरी आवाज हबलाए, एड़ा एड़ा गेम खेल है, मुंह विचार करू कि एड़ा एड़ा फोन में बात करे के कई करे है, तो गेम खेले रही है, एड़ा एड़ा गेम
1: खेले। और मैं तो 4 साल की बच्ची ने देखे क्या कई कर रही, अरे मैं तो शॉर्ट्स देख रही, शॉर्ट्स में कई आ रहा है, मैंने वो कई ठाको नहीं और बस वो शॉर्ट्स देख रही, मैं क्यों इसमें क्या है मुझे नहीं पता, और शॉर्ट्स देख रही। अब बालक ने मतलब वाने कवर ही कोई नहीं कि मैं कई वेरो कई नहीं वेरो, पर बस वो देख रही है कि मोबाइल में कहीं कहीं चालनो छाले,
0: ओले देखो
1: वे हंसे जदी वही हंसे,
0: अरे
1: और वाको हंसो बंद तो विको भी हंसो बंद, तो मन आश्चर्य हो हो अनि मैं तो कहीं है ही कोई नहीं, शॉर्ट्स में तो कई का कई बताता रहे आपने कई मतलब है।
0: सही है।
1: पर अब बच्चा समझी कोई नहीं, शॉर्ट देख देख कर खुश है कहा कि माने 3 साल का 4 साल का बच्चा ने गेम्स कतरे तो ये खुद ही ओपन कर करे, कतरे यान डाउनलोड नहीं करता हुए तो बच्चे शॉर्ट्स दे क्या करे।
0: सही बात है। पहला टाइम अच्छो तो पहला तो बच्चों ने फोन रो ठाई नहीं तो कोई लेना ना देना कोई मतलब नहीं,
1: फोन छोड़न टीवी कटे
0: टीवी कटे में। हाँ टीवी बाद में भी थी पर टीवी देखवारो टाइम इच्छा ही नहीं रहती थी, बस बारे जाए गेम खेलना अच्छा अच्छा वन में पूरा दिन निकल जातो।
1: अरे मैंने याद आवेगा अपना पड़ोस में दादी जी को पियर बॉम्बे, तो वे बॉम्बे की बात आन करता छुट्टिया में तो जाता, और वे दादी जी कहता और बॉम्बे में तो एडी चीज चाली जिन्हें 100 जना बैठन भी देख सको, तो आश्चर्य वे तो केडी चीज है, अरे टीवी
0: टीवी
1: टीवी ने कतरा भी बैठन देख सको ना तो भी यू कहता तो मनो आश्चर्य है तो एडी कई चीज है एडी कई चीज है सो जना देख सके अरे अक्कल तो ही कोई ना तो पांचवी छठी में बना वाला कई अक्कल हो आश्चर्य हो तो एडी कई चीज है टीवी आई तो ठा बड़ी ओ इन्हें तो सो देखो पचास देखो
0: कतरा भी देखो
1: देख सको तो आश्चर्य भी तो हो विका बावजूद भी यदि टीवी घर में आई तो आपने हर चीज थोड़ देखवा देता
0: नहीं देखवा देता जिन्ने हाथ में रिमोट है वन्नो इक्को हाल है
1: और रिमोट देखो भाई पहले तो बड़ा बुजुर्ग भी कंट्रोल रखता
0: हाँ।
1: समाचार चालू कर देता पचे कटे पहले तो रामायण महाभारत ये सीरियल
0: हाँ। चलता
1: ये चालू और बस पचे बंद
0: पचे बंद बस ऐसी
1: पुरानी पिक्चर आती तो कनिक टाइम पे पुरानी
0: पिक्चर मैं तो एडू देखी है रतन मैं तो बीजो अरे घरे जाए टीवी देखता
1: अरे तो घर में नहीं ही जदी आप यूज करता ना आका मोला बच्चा खबर है अपने बाजू वाले मोहल्ला में आई ही टीवी सब जान माँ को दरवाजो खकड़ा माने परेशान कर देता
0: तो पहला मने गुस्सा भी नहीं रहता था ना हमें करने घरे जानो विचार करनो पड़े वो भी दंदरा जानो वो नींद आराम करतो वेन वरना हाँ। दरवाजो खटखटावनो
1: और अबे तो एक सुई मांगता भी यूं लागे अरे कौन मांगे
0: हाँ।
1: और पहला तो कतरी चीजा भी मांग लेता टीवी देखवा तो आगे घर पहुंच जाता बानू साकल ने बजा बजा करता कतरी बार तुम्हारी सहेली है वेकर दादी जी अतरा वे चिल्लाता सका आता ये छोरा छोरी माने तो नेम काम ही नहीं करवा देवे
0: टीवी आरू आई
1: है कहता वो पिक्चर के लिए जाता छे कदी बजे छह बजे के बजाऊ पांच बजे ही जान
0: वो अनाउंस रहता ना आज ये पिक्चर छह बजे आने वाली है तो टावर तो के आज पिक्चर शाम रे छह बजे आवे
1: तो पांच बजे आके घर का बाने सब उबा भेजा था माने याद आवे यार आज अपना घर का बाने से उबरे तो अपना अजीब लागे
0: अजीब लागे अब मैं ओपे विचार करो तो याद आवे ओपे सब बजे जैन बना दे दरवाजा में खड़ा है था
1: पांच बजे लाइन लाग जाता
0: तो
1: और वे परेशान भी जाता
0: तो
1: क्योंकि अबे अतरा जना उबर रहता तो दरवाजा खोलन बेटा देता पछे एडवर्टाइजमेंट जो आती टीवी में आप देखता
0: उठे नहीं कोई नहीं जाता तो
1: कोई नहीं जाता कबनु चालू हुई
0: चालू हुई जितने पिक्चर खत्म नहीं रहती तीन घंटा बैठे रहता बटे
1: आठ दिन में एक दिन पिक्चर देखवा जाता हुई मैं भी अपने अच्छा खुश हो जाता भाई देखी पिक्चर
0: देखी
1: पर तो ही अपना माँ बाप कहता बस अनी अठवाड़े देख ले अबे अगली बार नहीं देखना तो भी आपने मना करता क्योंकि अनी बात ने माँ बाप समझता हाँ ये टीवी देखी तो टीवी में रुचि जाए या कोई शारीरिक मानसिक विकास रुक जाए घर का काम में फर्क
0: पड़ जाए
1: तो आदत नहीं बगाड़ता
0: सही बात है
1: भाई औलाद किन्ने प्यारी को है ना सब नहीं प्यारी पर इको मतलब यो थोड़े बच्चा ने जनी रस्ते जावे झावा देवे
0: सही बात है
1: तो समय का साथ में परिवर्तन आयो कंचन कि आज बच्चा भी नहीं दर पे और माता पिता नहीं दरप लागेगा अरे ये तो रोई अरे ये तो
0: रोई सही बात है
1: बच्चा खानो नहीं खावे तो वाने मोबाइल बतावे तो ऐसी आदत पड़ जावे घना बच्चा मोबाइल देखता जावे खानो खावे
0: सही बात कह रही है फोन बंद तो खानो बंद
1: फोन
0: बंद खानो ही बंद ने मैं तो उदो सिस्टम देखी मैं तो मोर पास में एडो देखी मोबाइल वे जितने बच्चों खानो नहीं मांगे ने मोबाइल बंद हुआ मम्मी भूख लगी है ओ कैडो सिस्टम है मैं क्यूँ कोई तो बच्चों खानो खाए जर मोबाइल चालू है ना बच्चा रो एडो सिस्टम में के मोबाइल चालतो रही जितने बने भूख प्यास कोई लेना देना नहीं
1: वे केड़ा बच्चा जो दो तीन साल का भी ना वाके खानो खाते जानो मोबाइल देखते जानो
0: हाँ।
1: बड़ा बच्चा के खानो कहीं लेनो देनो वाके हाँ। तो मोबाइल मिल गया तो वही कहूँ
0: सब
1: को एहसास ही नहीं वे
0: को एहसास
1: मोबाइल बंद वे इन बच्चे तो भले रात के 11 भी बजे तो यहाँ भूख लगी सही है या तो सही कह रही है तो खैर जो भी है पर मैं तो यही कहो छाऊ आपका टाबर ने फोन कम देवो और नहीं वह तो समय निकालन आप थोड़ा खेलो आसपास का बच्चा ने भी भेला करो और वाने सीखो पहला का गेम एड़ा खेलता भाई थोड़े आप आठ दिन मेहनत करा ना कंचन
0: तो वे रेगुलर खेलता
1: अच्छा वे रेगुलर खेलता भी जाए भाई आप सेरा की बात करा बड़ा बड़ा अपार्टमेंट में भी नीचे तो खेल मैदान
0: होवे हाँ।
1: तो एक दूसरा माता पिता मिलनो बच्चा बच्ची का माता पिता हूँ कि देखो भाई अपना बच्चा एक घर की बात कोई ना कंचन घर घर में बच्चा सब एड़ा ही हो गया
0: सब रे एड़ा ऐसे
1: तो कहते भाई अपना बच्चा ने थोड़ा आपस में मिलन टाइम देवा या ने थोड़ा गेम सिखावा और या के मोबाइल की आदत छुड़ावा तो शायद इको कई निष्कर्ष आ सके तो आप तो अपनी उम्मीद में ही राम राम करा
0: सही बात है
1: क्योंकि टाइम भी हो गया है और बात तो वो करो जितनी ओछी है
0: अंत ही नहीं है
1: तो बस अपना श्रोता बंधु अबानो तो राम राम करा अगली बार मिला तो आप जब कंचन थोड़ी
0: राम राम।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, सफलता का आधार मूल्य शिक्षा। इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। सभी विद्यार्थी भी आज का ये विषय जो है आपके लिए बहुत खास होने वाला है और मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक प्रोग्राम सुनते सुनते एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा और आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में आप किसी भी टास्क को कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है अच्छा फील करेंगे आप और एक मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए आज के इस विषय, जो हमारा आज का सब टाइटल है वो है सफलता की वास्तविक सत्यता, इस विषय को लेकर करने वाले हैं। और आज के हमारे खास गेस्ट जिनसे हम लोग इस विषय को ठीक से समझने की कोशिश करने वाले हैं, तो हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप एक शिक्षाविद हैं और काफ़ी लंबे समय से आप जो है ब्रह्म कुमारीज की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं और उनका एक डिपार्टमेंट है वैल्यू एजुकेशन, वहाँ पर आप अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं, PhD के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और वैल्यू एजुकेशन के जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप शिरकत करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने इस मूल्य शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर उसका अनुभव ले चुके हैं और दूसरों को बांट रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। राजेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत के साथ साथ मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि आपका एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे आना हुआ?
1: एक्चुअली मेरे परिवार से मुझे ये गुण मिला है एजुकेशन का, क्योंकि मेरे मदर इस फील्ड से थे। और जब मैं यूनिवर्सिटी से मास्टर्स केमिस्ट्री किया तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाऊंगा, क्योंकि मैं अमीर बनना चाहता था। एक मेरा ड्रीम था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था, जहाँ के बच्चों का ड्रीम होता है कि बहुत अमीर बने, बहुत सारा पैसा कमाएं, या विदेश में जाकर कुछ काम करें ताकि बहुत सारा पैसा कमा सकें। लेकिन उस दौरान मैं ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय के कॉन्टेक्ट में आया। मैं योगा किया करता था, हठ योग, लेकिन मुझे वहां पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में राजयोग की शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला और मैंने जाना कि हमारे अंदर खुशी का खजाना है, आनंद का खजाना है, प्यार का खजाना है, हमारे अंदर सत्य ज्ञान है। क्योंकि DAV कॉलेज में जब मैं पढ़ता था और मैंने जब एक्टिंग में मेरे को कॉलेज का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो मुझे एक गिफ्ट मिली, एक बुक जो स्वामी दयानंद जी के द्वारा दी गई थी। तो उन्होंने उसमें सेल्फ रियलाइजेशन की बात की, हम विवेकानंद जी के द्वारा बहुत सारा उनके बारे में पढ़ा सुना, उन्होंने भी सेल्फ रियलाइजेशन के बात की, महात्मा बुद्ध को वृक्ष के नीचे मोक्ष प्राप्त हुआ, वो क्या है वो पता नहीं चला। मैं सिख फैमिली को भी बिलोंग करता हूं, तो गुरु नानक देव जी सब धर्मों में सब संतों ने कहा ध्यान करो, मेडिटेशन करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो। तो सुना बहुत कुछ था लेकिन अनुभव वहां जाकर हुआ।
0: बिल्कुल।
1: तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? अपने अंदर शांति है, प्यार है, आनंद है, खुशी है। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो डेफिनेशन दी थी
0: जी
1: कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन इस सेल्फ रियलाइजेशन, तो समझ नहीं आता था कि ये क्या इन्होंने शिक्षा की परिभाषा को सेल्फ रियलाइजेशन से कैसे जोड़ दिया। लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में गया तब समझ आई कि सेल्फ रियलाइजेशन माना अपने अंदर जो खुशी है, प्यार है, आनंद है, मजा है, उसको प्राप्त करना। और यूथ थे तो यूथ तो चाहते हैं जिंदगी में मजा करो, ऐश करो, इंजॉय करो, लेकिन जो रियल मज़ा है, इतना मज़ा कभी जिंदगी में आया नहीं जो मुझे फर्स्ट टाइम मेडिटेशन में जब मैं बैठा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो यही समझ लगी कि शिक्षा माना अपने अंदर आनंद, प्यार, खुशी को खोजना। तो इससे ही मेरी यात्रा शुरू हुई और मैंने सोचा कि मुझे एक शिक्षक बनकर इस शिक्षा को न केवल देश में बल्कि विदेश में फैलाना है। इसलिए मैंने अमेरिका में भी पढ़ाया, सऊदी अरब में भी पढ़ाया, दुबई में भी पढ़ाया।
0: अरे वाह।
1: और न केवल केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ मैं ये शिक्षा देता था बल्कि उनको मेडिटेशन के लिए बिठाता था एक एक दो दो मिनट, और उनको वहाँ इतनी अच्छी अनुभव हुए जो उन्होंने कभी जिंदगी में रियलाइज नहीं किया। तो इसलिए मैंने अपने जीवन का एम बना लिया कि न केवल भौतिक शिक्षा लेकिन ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा ये जो आध्यात्मिक शिक्षा दी जा रही, जिसको हम मूल्य शिक्षा के नाम से लोगों को बताते हैं, उसका भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान है, शायद समझता हूँ बहुत ज़्यादा स्थान है जिसको हम शायद निग्लेक्ट कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आपका शिक्षा के क्षेत्र में आना हुआ, और उसके बाद आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि स्वामी विवेकानंद खुद एक कोट जो उनका याद कराया आपने, एजुकेशन इज़ नथिंग बट सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बताया, और मुझे लगता है कि आज के हमारे युवा साथियों को इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए, ताकि वो राइट ट्रैक से अपना एजुकेशन को पूरा भी करें और उसमें बोर या परेशानी ना हो, उनको खुशी भी मिले। जिस तरह से आपने ऐसे ही कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन का जो सुकून है, जो आनंद है, वो हमारे जीवन में आते ही अब सारी चीज़ें जो है, सारी चाबियां खुलने लगती हैं। तो चलिए, अब आज का जो हमारा विषय है, सफलता की वास्तविक सत्यता क्या है, तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए, क्यों इस पर बोलना चाहते हैं आप।
1: मैं समझता हूँ फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
0: जी,
1: भारत के खासकर दृष्टिकोण से
0: जी,
1: क्योंकि
0: जी,
1: अभी कल ही मैं बल्कि इन मॉर्निंग मैं सुन रहा था कि बिहार की पॉपुलेशन शायद अराउंड 14 करोड़ के ऊपर है, और अगर हम बिहार और यूपी को जोड़ दें, मेरा ख्याल टोटल अमेरिका की पॉपुलेशन हो जाएगी। और मैं जब अमेरिका में पढ़ाता था तो वहाँ देश का जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए लोग वहाँ पे सुखी हैं, कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन भारतीयों की सबसे बड़ी जो व्यथा है, मैं कहूँगा जो दुख है शायद हमारी, ये पॉपुलेशन है, हमारी जनसंख्या है, जिसके कारण हम आपस में बहुत ज़्यादा कम्पीट करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और यही शायद शिक्षा का एक हम कहें आधार है हमारी भारतीय शिक्षा का, क्योंकि विदेशी शिक्षा में ऐसा इतना ज़्यादा कंपटीशन हमने नहीं देखा है।

0: वहाँ मैं फिनलैंड की अगर एजुकेशन सिस्टम को देखूँ तो फिनलैंड में सहयोग करना सिखाया जाता है कि भले आपके मार्क्स ज़्यादा ना आए, नंबर ज़्यादा ना आए, लेकिन एक फैमिली फीलिंग, एक दूसरे को सहयोग करना, मदद करना, वो उनकी शिक्षा का आधार है। इसीलिए फिनलैंड की एजुकेशन को वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। लेकिन भारत में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ कंपटीशन करना सिखाया जाता है कि दूसरे को कैसे बीट करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर एक ही नौकरी निकलती है तो आवेदन करने वाले 1 लाख लोग हैं, और उसके लिए कंपटीशन, लोग कहने कंपीट करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी।
1: बिल्कुल,
0: माना आप टॉप करेंगे किसी भी चीज में, नंबर वन आएंगे, चाहे आपने एक्टिंग के फील्ड में जाना है, आपने कोई जॉब करनी है,
1: जी,
0: कहीं भी आपको जाना है, तो आपको दूसरों को हरा करके ही जाना है। लेकिन दूसरों की मदद करके, दूसरों को आगे बढ़ा
1: आगे
0: करके
1: बढ़ा के आगे,
0: ये शायद हमारी शिक्षा में नहीं सिखाया जाता है। तो इसलिए वास्तविकता में सत्यता, शिक्षा की सत्यता क्या है उसको समझना, सफलता की सत्यता क्या है उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग इस विषय को ठीक से समझ लें और इस पर अगर काम करें तो शिक्षा माना एक जीवन है, एक्चुअली में ना जीवन जीने की एक कला सिखाती है। अगर हम उससे पढ़ने के बाद अगर हम अपने कुछ कार्य करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर अगर हम एक अच्छा नागरिक का प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं या कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है या हम खुद सेटिस्फाइड नहीं है उस कार्य को करते हुए, तो फिर शायद हमारी शिक्षा ही पूरी तरह से ठीक से नहीं हुई हो, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा और अच्छे से हमें बताइए कि सफलता का वास्तविक रहस्य या सत्यता क्या है जिसको हम लोग प्रमाणित करें कि हाँ ये सही है।
0: अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें सफलता की, वैसे क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो हर एक की सत्यता की अलग अलग होगी, लेकिन एक कॉमन डेफिनेशन सत्यता की कह देते हैं हम इंग्लिश में, अगर कहें कि इट इज द माइंडसेट ऑफ एन इंडिविजुअल टू अचीव द स्पेसिफिक गोल। ये उसका माइंडसेट है, ये एक व्यक्ति की या एक उस पर्सन का एक माइंडसेट है, उसकी मानसिकता है कि उसने जो अपना गोल, अपना लक्ष्य लिया है, अगर वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वो समझता है कि मैं सफल हो गया हूं। लेकिन अगर वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है तो वो अपने आप को असफल समझता है। ये हम कहेंगे सफलता की परिभाषा है। तो ये जो उसका जो लक्ष्य है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म माना लंबे समय के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो अपने कॉलेज में पढ़ता है या प्लस टू में पढ़ता है, उसका जो शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मुझे 12th में 90% मार्क्स लेने हैं।
1: जी, जी।
0: लेकिन उसका लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद मैंने लाइफ में करना क्या है? मैं इंजीनियर बनने के बाद क्या अपनी खुद की इंडस्ट्री खोलूंगा, मैं अपनी इंडस्ट्री बनाने वाला हूं, या मुझे जॉब करनी है, या मैं विदेश में जाकर कुछ इन्वेंट करना चाहता हूं, या आगे जाकर मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं। ये उसका लॉन्ग टर्म गोल है। इसी तरह हर एक व्यक्ति के जीवन में उनके शॉर्ट टर्म गोल भी होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल भी होते हैं। जैसे हम रोज सुबह उठते हैं, हम ये मन में धारणा लेके चलते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, ये मेरा रोज का जो है हम कहेंगे हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। अगर आप उस दिन पूरा आप कर लिया तो आपके मन में क्या आएगी? खुशी आएगी, शांति मिलेगी, आनंद आएगा। रात को सोने से पहले जब आप बेड पे जाएंगे तो आपको एक तरह का सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आप आराम से सो पाते हैं। लेकिन अगर आपने वो काम नहीं किया तो मन क्या हो जाता है? उदास हो जाता है, चिंतित हो जाता है, सोने से पहले मन में प्रश्न आएगा, अरे ये मैंने काम करना था, मैंने नहीं किया। लेकिन आप एक तरह की अशांति सी फील करते हैं, अनसेटिस्फाइड सा फील करते
1: जी,
0: हैं।
1: जी, जी, जी।
0: तो इसी तरह लॉन्ग टर्म गोल भी होता है, शॉर्ट टर्म गोल भी होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अगर आपने अचीव कर लिया तो पाते हैं सफलता, लेकिन सफलता के पीछे आप चाहते हैं क्या है? इसलिए हमने ये आज का टॉपिक रखा, सफलता की सत्यता। मैंने कहा मैंने ये काम करना था, मैंने ये काम शॉर्ट, अगर एक लेमैन की बात करते हैं, हम विद्यार्थी की बात नहीं करते, एक आम व्यक्ति की भी बात करते हैं, मान लीजिए मैंने कोई काम करना था, मैंने वो काम कर लिया, लेकिन काम करने के बाद आपको अंदर कैसा महसूस होता है?
1: हाँ, खुशी होगी।
0: जैसे मान लीजिए एक लेबर ही है, मान लो कोई व्यक्ति फ्रूट के या कोई छोटी सी दुकान लगाता है, उसने टारगेट रखा कि मैंने आज मंडी से इतना फ्रूट खरीदा, और अगर मैं फ्रूट बेचूंगा तो मेरे को शाम को 200 रुपया मिल जाएगा। अगर शाम को आपको 200 रुपया मिल गया तो आपको मन में कैसा महसूस होगा? हाउ वुड यू फील इनसाइड?
1: खुशी,
0: डेफिनेटली,
1: बिल्कुल।
0: तो अल्टीमेटली अगर सफलता का मतलब यह है कि अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए?
1: खुशी चाहिए।
0: खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, संतुष्टता मिलेगी। लेकिन अगर उसने 200 रुपए की जगह कितना कमा लिया, 100 रुपया कमा लिया, तो कमाया तो उसने कुछ, लेकिन मान लीजिए 200 की जगह उसने मान लेट अस सपोज 150 ही कमा लिया, लेकिन उसको खुशी मिलेगी?
1: नहीं मिलेगी।
0: तो ये हमारा माइंडसेट है, ये हमारा माइंडसेट है। एक दूसरा व्यक्ति है,
1: जी जी,
0: मान लीजिए उसने ये धारणा बना ली कि मुझे आपको आज 1000 रुपया कमाना है, लेकिन 1000 की जगह वो 800 रुपया कमाता है। अब दोनों व्यक्ति हैं, एक का माइंडसेट, एक की मानसिकता ये है कि मुझे 200 कमाना है, एक की मानसिकता ये है कि मुझे 1000 कमाना है। मान लीजिए कि 1000 वाले व्यक्ति ने कमाया 800 रुपया और जिसने 200 कमाना था, लेट अस सपोज उसने 200 की जगह 210 कमा लिए, है ना, तो जिसने 800 रुपए कमाया वो तो दुखी होगा ना, क्योंकि उसका माइंडसेट क्या, उसकी मानसिकता क्या है, मुझे 1000 कमाना है, लेकिन वो 1000 कमा नहीं पाया, 800 कमा पाया, शाम को दुखी हो जाएगा, दूसरों को बोलेगा आज कोई फायदा नहीं हुआ, आज कोई मार्केट थोड़ी डाउन लगती है, भले उसको फायदा हुआ है, उसको पता है मैंने 800 कमाया, लेकिन लोगों को क्या बताएगा, मार्केट कोई सही नहीं चल रही, आज मार्केट जो है वो डाउन चल रही है। लेकिन जिस व्यक्ति ने सोचा था मुझे 200 रुपया कमाना है, लेकिन उसने 210 कमा लिए, वो खुशी हो गया ना,
1: बिल्कुल,
0: भले उसने 800 रुपए कमाया, उसने ज्यादा पैसे कमाए। एक व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाकर भी दुखी है और एक व्यक्ति कम पैसे कमाकर भी सुखी है, और जिसने कम पैसे कमाए अपने आप को सफल समझ रहा है, और जिसने ज्यादा पैसे कमा लिए
1: वो दुखी हो रहा है,
0: सफल समझ रहा है। तो ये माइंड सेट है। तो माना कि सफलता और असफलता का वास्तविक सत्य ये है कि हमें चाहिए कि अल्टीमेटली, चाहे आप कोई काम करते हो, चाहे आप मार्क्स अटेन करते हो, चाहे आप टॉप करते हो, चाहे आप प्रोफेशन में जाते हो, अल्टीमेटली आज हर एक व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन उसको समझ नहीं आती कि सफलता का मतलब क्या है, क्योंकि वो दूसरों को देखकर अपनी सफलता को मापता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और खासकर जैसे हमने अभी बात की कि इंडियन एजुकेशन में कंपटीशन बहुत आ गया,
1: बिल्कुल,
0: वो अपने आप को सफल दूसरों से कंपैरिजन से मान रहे हैं,
1: मान रहे हैं।
0: ऐसे ही मार्क्स में, स्टूडेंट्स के मार्क्स में भी ऐसा ही है। एक स्टूडेंट के 90% मार्क्स आते हैं, उसने सोचा था मेरे 99 आएंगे, लेकिन उसने 90 स्कोर किए, और एक स्टूडेंट जो है उसका माइंडसेट ये है कि मुझे 50% लेने हैं, वो बहुत मेहनत करता है सारा साल, लेकिन 50 की जगह 55 आ गए। अब जिसके 90% वो दुखी हो रहा है, जिसके 50% है वो सुखी हो रहा है। तो हम ये समझते हैं हमारी सफलता ज्यादा नंबर लेने में, लेकिन आपने देखा कि जो व्यक्ति ज्यादा नंबर ले रहा है वो तो दुखी
1: हो रहा है,
0: और जो कम ले रहा है वो खुश हो रहा है, वो मजे ले रहा है उसको। तो ये वास्तविकता में हमारा माइंडसेट है।
1: जी जी जी।
0: सो सफलता कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारी मानसिकता है, तो ये सत्यता है इसकी।
1: जी जी जी। राजेश जी, काफी अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दिया। सफलता की वास्तविक सत्यता क्या है, ये हमारा माइंडसेट है, ये आपने बताया, और किस तरह के टारगेट्स आप रखते हैं, उसको अचीव करते हैं तो आपको खुशी होती है, अचीव नहीं करते हैं तो आपको दुख फील होता है। तो ये सारी चीजें आपने ही मापदंड तैयार किए थे और आपको ही उसका अनुभव होता है। तो अगर आप एक वास्तविक जो जीवन शैली है और एक सत्य की अगर सही खोज आप करना चाहते हैं, तो फिर से हम लोग उसी विषय को कराएंगे कि एजुकेशन इज नथिंग बट टू सेल्फ रियलाइजेशन, ये जो बात है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये कड़ी आज को यहीं पर पूरा करते हैं और आगे हम लोग और नए नए विषय को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि राजेश जी, जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे विद्यार्थी मित्रों को क्या बताना चाहेंगे आप?
0: मेरा मैसेज उनको यही रहेगा कि आप बीच बीच में सारे दिन में अगर कम से कम भी 10 बार अपने आप को ये थॉट दे सकें दैट आई एम ग्रेट, मैं एक महान हूँ, महान व्यक्ति हूँ, और मैंने महान कर्म करने के लिए इस धारा पर जन्म लिया है, कम से कम केवल थॉट्स करें। अगले सेशन में हम बात करेंगे और देखें कि इस विचार को करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, आपकी मनोस्थिति में क्या परिवर्तन आता है। आई एम ए ग्रेट बींग, मैं एक महान व्यक्ति हूँ।
1: जी जी। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही प्यारी सी बातें आपने बताई, सफलता की वास्तविक सत्यता क्या है, और इसके साथ में एक बहुत ही सुंदर आपने मैसेज दिया है आज विद्यार्थी मित्रों को कि आई एम अ ग्रेट सोल, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान व्यक्ति हूँ। इस तरह के जो पॉजिटिव अफर्मेशन है, खुद को बार बार याद दिलाते रहें, और देखिए एक हफ्ते में आपके माइंड सेट में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट कहा जाता है। तो इन शुभ आशाओं के साथ आप ग्रेट बने अपने लाइफ में, ऐसे शुभ आशा के साथ फिर मिलेंगे अगले कड़ी में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है बच्चों की दुनिया, जो कि होती है बहुत ही प्यारी, बहुत ही रंगीन और बहुत ही क्यूट, क्योंकि हमारे साथ हैं तीन बहुत प्यारे प्यारे बच्चे स्टूडियो में। तो एक बार आप लोग सब अपना अपना नाम और क्लास बता दीजिए। वहां से शुरू करते हैं, नील से।
1: मेरा नाम है नील, मैं 3rd क्लास पे गया हूँ।
2: मेरा नाम है मयंक वाधवानी, मैं 4th क्लास में हूँ।
3: मेरा नाम है देव।
0: कौन सी क्लास में हो आप?
3: KG1।
0: अच्छा, आप लोग कौन से गेम्स खेलते हो?
1: क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस।
3: टेनिस
0: आता है? टेनिस खेलना है?
2: हाँ। नहीं, हम लोग कई चीटिंग करके बोल रहे हैं।
0: हाँ,
3: मैं करता हूँ।
2: अच्छा, अच्छा से खेलता है।
0: छुपन छुपाई कौन खेलता है?
2: हम।
3: मैं
0: कहाँ छुपते हो?
2: पकड़ाई।
0: अच्छा, फेवरेट जगह छुपने की कहाँ? देव कहाँ जाके छुपते है पहले ये बताओ।
2: बाथरूम में।
3: हाँ,
2: जनरल वॉशरूम।
0: कहाँ छुपते हो?
3: टेबल के नीचे।
0: और आप नील कहाँ छुपते हो? हैं, सीक्रेट जगह कौन सी है?
2: पर्दे के पीछे।
1: और कोई रूम खाली होगा उधर कहीं छुप जाना, वॉशरूम पे छुप जाना।
0: जल्दी पकड़ में कौन आता है?
1: जल्दी पकड़ पे देव।
0: किसको सबसे जल्दी पकड़ लेना है बताओ?
3: मैं।
0: हाँ।
2: खुद पकड़ जाता है।
0: बाहर निकल जाता है।
3: दिला दिया। बोलो ना, बोलो ना, क्या किया?
0: अभी गाना बांट ले, पहले बात कर रहे हैं ना। सबसे पहले क्वेश्चंस का आंसर देंगे फिर गाना, ठीक है? सबसे लास्ट में कौन पकड़ में आता है?
1: सबसे लास्ट में हम दोनों।
0: और क्या क्या खेलते हो गर्मी की छुट्टियों में? क्या करते हो मुझे ये बताओ।
2: हम लोग घूमने आते हैं माउंट आबू।
0: और क्या करते हो गर्मी की छुट्टियों में? डांस करते हो, गाना गाते हो, क्या करते हो?
1: वाटर पार्क पे जाते।
0: वाटर पार्क में जाते हो?
1: हम गर्मियों की छुट्टियों पे मैं गया था दिल्ली में से वाटर पार्क।
3: मैं भी।
0: आप भी गए थे?
3: हाँ।
0: आप भी गए थे? तीनों गए थे?
1: अरे तू कैसे गया था? नहीं गया था।
0: मयंक नहीं गया था?
2: हाँ दीदी। हाँ। ये लोग तो अलग रहते हैं, मैं तो कटनी में रहता हूँ। ये लोग तो किसी और शहर में रहते हैं, तो इनको कैसे पता?
0: हाँ, वो दूसरे वाटर पार्क गया होगा, है ना? चलो बताओ, स्कूल को मिस नहीं करते? जब छुट्टी होती है तो स्कूल की याद नहीं आती?
2: नहीं,
0: बिल्कुल भी नहीं। अब दोस्त भी तो होते हैं स्कूल में, दोस्तों की याद नहीं आती?
2: नहीं।
3: जब मैंने ये तोला था ना, तो इसने झोल दिया था।
0: स्कूल की याद किस किस को बिल्कुल नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती?
2: नहीं।
0: दोस्तों को मिस नहीं करते?
2: नहीं।
0: नहीं, तो घर पे क्या करते? दिन भर तो खेल नहीं सकते, फिर क्या करोगे दिन भर?
2: हम दिन भर ही खेलते हैं।
0: दिन भर खेलते हो? घर के अंदर इतनी धूप होती है बाहर तो गर्मियों में, फिर
2: हम लोग बाहर खेलते हैं।
0: गर्मी नहीं लगती इतनी धूप में? नहीं, पसीना नहीं आता ऐसे बहुत सारा?
1: पसीना तो बहुत आता है हमारे को तो।
0: हाँ, तब भी थकते नहीं हो?
2: नहीं
1: नहीं,
0: दिन भर खेलते रहते हो? ऐसा तो नहीं है मम्मी बुलाती तो होगी कि अब घर आ जाओ, बहुत हो गया? नहीं,
1: हम खाना खाने ही बस आते।
0: बस खाना खाने जाते हो?
2: हाँ।
0: और खेलते रहते हो दिन भर?
1: रात भर खेलते ही।
0: रात भर खेलते हो?
1: हाँ। क्योंकि ट्यूशन भी नहीं रहती।
0: हाँ।
1: और स्कूल भी नहीं रहती।
3: हाँ।
0: हाँ, KG1 की ट्यूशन भी नहीं रहती होगी? नहीं देव।
3: हाँ। छुट्टी लग गई
0: इसलिए। लेकिन फिर नींद नहीं आती रात को?
2: नहीं।
0: अच्छा, एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हो?
2: नहीं।
0: भूत वाली स्टोरीज?
2: नहीं।
0: हैं? कोई सुनाता है?
2: नहीं।
0: फिल्में देखते हो आप लोग हॉरर वाली, भूत वाली?
2: हाँ, मैं भूतों की कहानियाँ देखता हूँ।
0: देखते हो?
1: मैं नहीं देखता, नहीं तो नींद नहीं आती।
0: नींद नहीं आती ना, डर लगता है ना? मुझे भी लगता है भूत वाली कहानी से तो मुझे।
1: और मुझे रोज ही भूत सपने पे दिखता है,
0: है ना?
1: फिर मैं स्वामान बोलता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ।
0: खुद को स्वमान अपना याद दिलाते ना कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मास्टर सर शक्तिवान हूँ. वेरी गुड. तो आपको नहीं मयंक डर लगता भूत वाली कहानियां देखते हो तो?
2: नहीं
0: नहीं बिल्कुल नहीं. कभी नहीं. तो सपने में भूत आता होगा.
2: हाँ.
0: फिर
2: कुछ नहीं होता.
0: कुछ नहीं होता
2: क्योंकि वो सब तो नकली होता है.
0: हाँ नकली तो होता है, ये बात तो सही कही.
1: डरावने दिखते हैं.
0: हाँ लेकिन वो देखने में कैसा डरावना सा होता है, ऐसे ऐसे टेढ़ा मुंह होता है, एक आंख होती है, ऐसे खून लगा होता है, तो कितना डरावना लगता है वो.
1: हाँ
0: तो डर नहीं लगता.
2: डर नहीं लगता.
0: नहीं
1: ऐसे बहुत खतरनाक खाने वाली होगी तो
0: तब भी नहीं लगता. नहीं मुझे तो लगता है भाई भूत से डर.
1: मुझे भी
0: है ना.
3: मुझे भी.
0: आपको भी लगता है? हाँ, थोड़ा लगता है कि बहुत लगता है?
1: बहुत.
0: अच्छा अगर डर लगता है तो किसको बताते हो घर में जाके सबसे पहले?
2: किसी को नहीं.
1: किसी को भी नहीं.
0: किसी को नहीं बताते? नील आपको तो डर लगता है तो फिर किसी को क्यों नहीं बताते?
1: मैं मम्मी को बताता.
0: मम्मी को बताते हो तो मम्मी क्या बोलती है फिर?
1: मम्मी बोलती है कि स्वामान बोलो, मैं मास्टर सरस्वतीमान आत्मा हूँ, तो फिर सपने नहीं आएगा डरावने. तो मैं बोलता हूँ तो सपने हट जाते हैं.
0: हट जाते हैं क्योंकि हम जब भगवान को याद करते हैं ना, और याद करते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूँ, तो सब डर के भाग जाते हैं, सारे भूत भाग जाते हैं, है ना. वेरी गुड. आप लोग तो बहुत ब्रेव हो यार, बहुत ब्रेव हो आप लोग तो दोनों ही. और फिर
3: मॉल में को भूत पकड़ता है तो मैं मास्टर सरस्वती बहनू वो बोलता.
0: आपको पकड़ता है भूत? हाँ कब पकड़ा आपको भूत ने? रात को पकड़ा कि सुबह पकड़ा?
1: सुबह. तो कैसे पकड़ेगा?
3: मैं रात में ट्रेन में सोया तो ट्रेन में मेरे को भूत दिखा.
0: ट्रेन में भूत दिखा?
3: हाँ,
0: फिर
3: जाला था.
0: हाँ,
3: ऐसे डरावना था. और व्हाइट कपड़े पहना था.
0: व्हाइट कपड़े पहना था.

0: था?
1: उसकी द्रावणी आइस थी।
0: द्रावणी आइस थी। हाँ। फिर क्या किया?
1: उसमें और लवेश मामा भी थे मेरे।
0: यश मामा भी थे।
1: लवेश मामा की दीदी।
0: फिर क्या किया आपने? भूत देखा तो?
1: मैंने लवेश मामा को बोला भूत देखो।
0: उनको दिखा दिया भूत? उनको देख के तो भूत भाग गया होगा, है ना? उसने बोला होगा ये तो बड़े बड़े लोग हैं साथ में इसके, तो भाग जाता हूँ मैं। भागा नहीं भागा भूत?
1: बजरंग बली को बुलाओ कि लाल पली शाह को बुलाओ?
0: आपने बोला ऐसा कि बजरंग बली को बुला लूंगा मैं अभी?
1: तो बोला था तो भूल गया।
0: भूल गए, भूत भाग गया होगा। आपने बोला ना मैं बजरंग बली को बुलाऊं तो भाग गया होगा फिर। अच्छा, मम्मी से डांट पड़ती है किसी को?
1: पड़ती है।
0: क्यों पड़ती है?
2: इसकी मम्मी से।
1: अब तूने बहुत हो गया।
0: हाँ, अब उसको थोड़ी देर दे दो।
2: अरे मुझे तो दे दो, मैंने तो किया ही नहीं हूँ।
0: अच्छा
2: मुझे दे दे।
0: अच्छा एक एक करके।
2: अरे मैं इसके बाद तो मुझे होना।
0: अच्छा, अब नील का चांस, फिर उसके बाद वापस देव का चांस। अच्छा उसको थोड़ी देर दे दो भाई। थोड़ी देर बाद नील भैया को दोगे? पक्का?
1: हाँ।
0: पक्का?
1: हाँ।
0: ठीक है चलो।
1: देर आ रही है।
0: हाँ बिच पिलाएंगे, पहले रुको, पहले बताओ देव, बताओ क्यों डांट पड़ती है मम्मी से? मैं बंद कर दूंगी अभी, आपको बोलना नहीं अभी आपको। क्यों डांट पड़ती है मम्मी से?
2: हम इधर उधर चले जाते हैं तो।
0: खेलने में? खेलते खेलते कहाँ चले जाते हो खेलते खेलते?
2: हमारी को पग्गी देखी तो हम ये कमर कुंच बोलता है तो हम कमर कुंच घूम के आते, तीन नंबर के ट्रांसपोर्ट तक जाते।
0: मतलब कहीं भी चले जाते हो बिना बताए मम्मी को तो डांट पड़ती है। और मयंक को पड़ती है डांट?
3: हाँ, इसकी मम्मी चिल्लाती है।
2: क्यों? तेरी मम्मी नहीं चिल्लाती क्या?
3: नहीं।
0: क्यों
3: नहीं।
0: आपकी मम्मी से डांट नहीं पड़ती आपको?
1: नहीं,
2: मार पड़ती है मगर।
0: मार पड़ती है?
1: मार पड़ती है।
2: पड़ती है।
0: लेकिन मम्मी को बता के जाना चाहिए ना, जहाँ भी जाना चाहिए। ये सही बात है या नहीं, पहले सब लोग बताओ? मम्मी को बता के जाना चाहिए या नहीं, है मयंक? मम्मी को बता के जाना चाहिए या नहीं सब जगह?
3: हाँ, मैं तो जाता हूँ।
1: मैं भी।
3: ये लोग बग्गी में, मैं तो जाता हूँ अपनी मम्मी को बता के। इन लोग की मम्मी अभी ना ब्रेड डिपार्टमेंट से भाग के आ गए, तो इसकी मम्मी ने मुझे डांटा। इन लोग को थोड़ी ना डांटा।
0: तो आप नील बता के नहीं जाते मम्मी को? तो बताओ फिर नील, आप बता के क्यों नहीं जाते मम्मी को जहाँ जाते हो?
2: क्योंकि हम आ जाते हैं।
0: टाइम से आ जाते हैं कि देर करते हो?
2: मगर मम्मी बॉस नहीं दे रहती। बॉस दे रहेगी तो मम्मी टाइम बोलेगी तो मैं टाइमिंग देख के आ जाऊंगा।
0: अच्छा, मतलब घड़ी चाहिए आपको, घड़ी देख के टाइम देख के। तो मम्मी को बोला आपने कि मम्मी मेरे को घड़ी चाहिए ताकि मैं टाइम से आ जाऊं?
2: मैं बोला था, फिर भी नहीं दिलाई।
0: फिर भी नहीं दिलाई? अच्छा कोई बात नहीं मम्मी, हो सकता है आपको बड़े हो जाओगे आप थोड़ा तब दिलाएंगी वॉच। बड़े लोग पहनते हैं ना वॉच, है ना? आप लोग छोटे
2: छोटे हो। नहीं
0: नहीं,
2: मम्मी इसीलिए नहीं बनाती है क्योंकि घूम कर देते हो। अभी घूम नहीं करूँगा, घूम नहीं करूँगा बोल रहा हूँ, फिर भी नहीं दिला रही।
0: तो आप अच्छे बच्चे बन के दिखाओगे ना उनको, सब चीजें जगह पे रखोगे, बता के जाओगे तो फिर मम्मी दिलाएंगे वॉच, है ना देव? चलो, तो हम सब इस गर्मी की छुट्टियों में अपनी अपनी मम्मी को प्रॉमिस करेंगे कि हम बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, उनको बता के जाएंगे जहाँ भी जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। पहले बोलो यस। सब लोग बोलो यस। हम प्रॉमिस करते हैं।
2: हम प्रॉमिस कर ले।
0: मयंक ने बोला ही नहीं।
2: हम प्रॉमिस करते हैं।
0: फिर से 1 2 3 यस
2: यस।
0: हम प्रॉमिस करते हैं।
2: हम प्रॉमिस करते हैं।
0: जहाँ भी जाएंगे मम्मी को बता के जाएंगे।
2: मम्मी को बता के जाएंगे
0: और टाइम से घर वापस जाएंगे।
2: टाइम से घर वापस जाएंगे।
0: ये वेरी गुड।
1: गाना बजाओ।
0: तो अब बजाएंगे हम गाना। अच्छा और लेते हैं इजाजत रेडियो मधुबन 107.8 FM से. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय बाय.
3: बाय बाय.
2: बाय बाय.
4: आवश्यक सूचना. 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा. यदि किसी को इस दौरान आबू राज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं. सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे. आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं. रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी.
5: नमस्ते, मैं हूं आरजे केवल. दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है. आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए. तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए. याद रखे 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: से क्यों नहीं हो? ज्योति चल यार, लोगों की बातों को इतना भी दिल पे नहीं लेना चाहिए।
1: ज्योति अपनी दोस्त की बात से खुश हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका फ्रेंड्स ग्रुप दोबारा देखता है और उसे देख जोर से हंसते हैं और ज्योति फिर से नाराज हो जाती है। ये समस्या सिर्फ ज्योति की नहीं है। जैसे ज्योति का स्किन टोन डार्क है, वैसे ही हम सब के शरीर में कोई ना कोई छोटी बड़ी समस्या होती है। किसी के कम उम्र में ही बाल सफेद हो गए हैं, या कोई गंजा है, कोई जरूरत से ज्यादा लंबा है, तो किसी की हाइट बहुत ही कम है, कोई अपने वेट से परेशान है, और इसके अलावा भी कई छोटी बड़ी बीमारियों से लोग परेशान होते हैं। देखा जाए तो आज के समय में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है।
2: You are precious just the way you are. It is more important how you see yourself than what others think. Har insaan ki apni khasiyat hoti hai. You have a lot that makes you special. Learn to accept and love yourself.
1: Kyunki ye hamara kaliyug ka shareer hai, jise humne apne pichle janmon ke karmon ke aadhar par paya hai. इसीलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर से अलग आत्मा है। इसे आत्मिक स्मृति या सोल कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। जब हम खुद को शरीर से अलग आत्मा महसूस करते हैं, तो हमारे शरीर को कोई भी कुछ भी कहे, हमें बुरा नहीं लगता। यहाँ तक कि शरीर की बीमारियां भी हमें दर्द का एहसास नहीं कराती। ये एक बहुत ऊंची अवस्था है जिससे हम शरीर के भान को भूल जाते हैं। आइए अब समझते हैं हाउ टू प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस। हमें खुद को चलते फिरते या दिन भर के काम करते समय बीच बीच में याद दिलाना होगा। क्या याद दिलाना होगा?
3: विजुअलाइज योर लिटिल पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड। ये लाइट मैं हूँ।
1: परमात्मा से मुझ आत्मा में शक्ति भर रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। इस तरह जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है और समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें हमेशा स्टेबल और पावरफुल बनाए रखेगी। चेंज योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम बॉडी टू सोल एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम सोल टू अनलॉक योर ट्रू स्ट्रेंथ एंड पावर।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी।

भाग चार। ससुराल में पहुंचकर रात्रि को मैं सो गई। करीब 2-2.5 बजे होंगे कि अचानक ही मैंने देखा कि बहुत तेज लाइट है और सामने बाबा खड़े हैं। मैं जाग गई। मैंने सोचा कि रात्रि को मैं बाबा से बात करके लौटी थी, शायद इसी कारण से बाबा मन के सामने आ रहे हैं। परंतु कुछ ही समय के बाद मुझे फिर वही साक्षात्कार होने लगा। मैं समझ ना सकी। मैं फिर सो गई। तीसरी बार मैंने देखा कि बाबा मेरे सामने खड़े हैं और उनके साथ ही श्री कृष्ण भी खड़े हैं। बाबा बहुत ही आकर्षणमय रूप से मधुर स्वर से कह रहे हैं, बेटी जागो, तुमको विश्व के कल्याण का कार्य करना है। बस ये महावाक्य एक दिव्य बाण की तरह थे जो मेरे मन को अच्छी तरह से लग गए। मैंने तुरंत ही बाबा की उंगली पकड़ी। उसी क्षण मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव हुआ और न चाहते हुए भी मेरे मुख से ये शब्द निकल पड़े, बाबा आप तो सचमुच भगवान हैं, हमने आपको पहचाना नहीं, अब से लेकर आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। प्रातः होते ही यह दृश्य बार बार मेरे सामने आने लगा और मेरे मन में यह ईश्वरीय आकर्षण बना रहा कि बाबा से जाकर मिलूं। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, परंतु मुझे शारीरिक कष्ट ऐसा हुआ कि मैं जाना चाहते हुए भी ना जा सकी। तब मुझे बाबा के ये शब्द याद आए, बेटी कल क्या होगा वह किसने देखा है। यह शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे और मैंने सोचा कि हम बाबा के साधारण रूप को देखकर उन्हें ठीक ठीक नहीं पहचान पाते हैं, उन द्वारा जो शक्ति कार्य कर रही है उसे हम नहीं जान पाते हैं। परंतु सायंकाल को बाबा स्वयं ही मेरे पास आए। बस उन्हें देखते ही मेरी आंखों से प्रेम के, पहचान के और पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उनसे गले मिलकर मैं बोल उठी, बाबा हमने आपको पहचाना नहीं, अब आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। बस उस दिन से मेरे जीवन को एक नया मोड़ मिला। इस प्रकार कईयों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद दादा एकांत के लिए कश्मीर चले गए। यह बात जुलाई सन 1936 की है। अपने लौकिक परिवार को भी वे साथ ले गए। जब बाबा कश्मीर में थे तो उनके कुछ मित्र संबंधी तथा अन्य माताएं कन्याएं जिनमें आत्म जागृति आई थी बाबा के उसी पुराने मकान में आते रहे और आपस में ज्ञान वार्तालाप भी करते रहे। वे बाबा के साथ पत्र व्यवहार भी करते रहे। उनमें से ध्यानी, किकनी, रुकमणि, गोपी और राधे के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। अब बाबा उनको कश्मीर से पत्रों के रूप में ज्ञान का अमूल्य खजाना भेजते रहते थे। बाबा एक दिन एक माता के नाम पत्र भेजते तो दूसरे दिन दूसरी माता के नाम। जिसके नाम पर पत्र आता था वह बहुत ही हर्षित होता था और दूसरों को भी वह पत्र सुना सुना कर अतिंद्रिय सुख देता था। वह उस पत्र को विशेष तौर पर अपने नाम आया समझ कर उसे एक अनमोल निधि मानता था और उसमें लिखित शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का भरसक प्रयत्न करता। उस समय उस वाणी या ज्ञान पत्र को सत्संग की हरेक बहन अपने पास कॉपी में नोट करती थी और उनको पढ़कर आनंद का अनुभव करती रहती थी। उन सभी को उस समय गोपियों जैसा सुख अपने जीवन में प्राप्त होता था। कभी ज्ञान की मुरली की याद, कभी प्रेम के आंसू, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से निराले अनुभव होने लगे। ऐसी अवस्था में उनको सांसारिक पदार्थों का सुख तुच्छ महसूस होने लगा और उनका नया जीवन शुरू हुआ। सबको ऐसा महसूस होता था कि जैसे वे निराली मस्ती में झूम रही हैं। कश्मीर में दादा एकांत में ईश्वरीय चिंतन में लवलीन रहते थे। वे कुछ समय ज्ञान युक्त पत्र लिखने में व्यतीत करते और कुछ समय वहां साथ रहे हुए संबंधियों को ईश्वरीय ज्ञान देते थे। अतः उनकी धारणा भी अब अधिकाधिक ऊंची उठ रही थी। वहां ज्ञान लाभ के बारे में ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता जी ने लिखा है, मैं कश्मीर में बाबा के साथ गई थी, वहां भी बाबा हमें ज्ञान सुनाते थे। उसे सुनकर मैंने निर्णय किया कि अब तो मुझे प्रभु की सच्ची गोपी बनना है और अपने जीवन को पवित्र बनाकर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना है। दिनों दिन मुझे ज्ञान की मस्ती चढ़ती गई। अब मेरी बुद्धि में ज्ञान ही समाया हुआ था। एक दिन की बात है,
कि मैं घर से बाहर कहीं जा रही थी कि वहां कश्मीर में आए हुए हमारे एक परिचित व्यक्ति जिनका नाम रिझुमल था, उन्होंने मुझसे एक पहाड़ी का रास्ता पूछा। मैंने ज्ञान की खुमारी में उनसे कहा, आप पहाड़ी का रास्ता पूछते हो या परमधाम का? मेरी ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और उस दिन से लेकर वे भी हमारे यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। उन्हीं दिनों मैं बाबा के साथ अमरनाथ भी गई थी। हम लोग घोड़ों पर सवार थे। हम रास्ते में ही थे कि बहुत बड़ा तूफान आया। बहुत से लोग तो रास्ते में ही लौटकर वापस चले गए थे, परंतु बाबा नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मंजिल पर जाना है। मैंने देखा कि बाबा की प्रतिज्ञा हमेशा दृढ़ हुआ करती थी। वे बहुत साहसी थे और मार्ग की कठिनाइयों से कभी नहीं घबराते थे। आखिर हम वहां पहुंचे। हालांकि उस दिन बाबा बहुत साधारण वेशभूषा में थे, तो भी पुजारी लोगों ने बाबा को देखकर समझा कि वे कोई राजा हैं। बाबा ने उनसे पूछा कि यह बर्फ का लिंग कैसे बनता है। पहले तो वे यह भेद बताने में आनाकानी करने लगे, परंतु उन्होंने दादा को कोई राजा समझकर आखिर सब भेद बता ही दिए। इधर हैदराबाद में दादा की अनुपस्थिति में उनके ही मकान में अपने आप ही सत्संग की स्थापना हो गई। उनके मित्र संबंधी और आने वाले कुछ नर नारी इस ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनके द्वारा घर घर में इस सत्संग की महिमा की आवाज पहुंच गई थी। शहर के लोगों ने देखा कि इस सत्संग में जो भी कोई आता है उसके जीवन में विशेष परिवर्तन आ जाता है। वह अशुद्ध खान पान को छोड़ देता है और उसकी अन्य बहुत सी गंदी आदतें भी मिट जाती हैं। जो माताएं घर में पहले झगड़ा करती थीं, अब वे शांतिपूर्ण व्यवहार करने लगी थीं। लोगों ने यह भी सुना कि यहां साक्षात्कार भी सहज ही होता है, इसलिए लोग इस सत्संग की ओर आकर्षित हुए। अतः दिनों दिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब लगभग 300 माताएं कन्याएं तथा भाई प्रतिदिन आने लगे। वहां प्रोग्राम यह चलता था कि दादा कश्मीर से जो ज्ञानयुक्त गीत बनाकर भेजते थे, पहले तो सभी मिलजुल कर वे गीत गाते थे। फिर दादाजी के ज्ञान पत्र जिस माता के नाम आए हुए होते थे, वह उनमें समाये हुए ज्ञान को बुद्धि में धारण करके आत्मा के स्वरूप में टिक कर उस ज्ञान के आधार पर इतना सुंदर भाषण किया करते थे कि सुनने वाले लोग चकित हो उठते थे। उनको लगता कि उनमें ज्ञान की ऐसी ऊंची बातें बोलने की इतनी शक्ति कहां से आ गई है, इतना ज्ञान इसने कैसे सुनाया। अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति है जो ऐसी अबला नारियों को ज्ञान बल देकर इतना योग्य बना रही है। शुरू से ही ज्ञान का कलश कन्याओं माताओं के सिर पर रखने से उनमें एक अलौकिक शक्ति आने लगी। जो कल तक अपने जीवन से असंतुष्ट थीं और बोलने में हिचकिचाती थीं, आज वे निसंकोच ज्ञान की गजगोर करती थीं। 12-14 वर्ष की छोटी छोटी कुमारियां भी बहुत सुंदर भाषण, विकारों को जीतने के विषय पर अथवा मन तथा इंद्रियों को वश करने के विषय पर किया करती थीं। उस सत्संग की यही विशेषता थी कि जब अशरीरी रूप में स्थित होकर वहां जाने वाले नर नारी ज्ञान सुनाते थे, तो वे शांति धाम का तथा बैकुंठ का अनुभव करते थे। दादा जब कश्मीर से लौटे तो उन्होंने देखा कि सत्संग में आने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। कन्याएं माताएं और पुरुष बहुत ही उमंग और उल्लास से ज्ञान अमृत पीकर अपना जीवन पवित्र और सुख शांतिमय बना रहे हैं। बहुत लोगों को तो घर बैठे ही दादा का साक्षात्कार हुआ था और उस अवस्था में अव्यक्त मूर्त प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं फलाने स्थान पर आकर ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूं, आप वहां मेरे पास आओ। इस साक्षात्कार से पहले उन लोगों को दादा का या ओम मंडली का किसी तरह का कोई भी परिचय नहीं था। इसी साक्षात्कार के आधार पर वे ओम मंडली के पास आ जाते थे। वे आते ही दादा से कहते, दादा आपने ही तो हमें दिव्य साक्षात्कार करा के यहां बुलाया है। दादा सोच में पड़ जाते। इन सभी बातों को देखकर दादा को अंत प्रेरणा हुई कि यह अव्यक्त एवं गुप्त परम पिता परमात्मा का कार्य चल रहा है। वही स्वयं उन द्वारा अर्थात दादा द्वारा और माताओं द्वारा यह कार्य करा रहे हैं और आगे चलकर मनुष्य मात्र के कल्याण का कोई विशेष कार्य कराना चाहते हैं। हम बता आए हैं कि सत्संग में आने वाले कई भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने दादाजी की अनुपस्थिति में आना शुरू किया था।
अतः जब दादा कश्मीर से लौटे तो उन भाई बहनों ने दादा को पहली बार देखा। आहा, प्रथम मिलन में ही उन सभी को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे वे दादा के अलौकिक बच्चे और बच्चियां हों। उन्होंने देखा कि बाबा का शरीर एकदम न्यारा शरीर है, उनके वस्त्र बिल्कुल सफेद हैं, मस्तक ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है, नयन तेजोमय दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उनसे ज्योति की किरणें निकल रही हों। बाबा की उपस्थिति से देखने वालों के मन पर शीतलता का प्रभाव पड़ रहा होता, मानो के दादा के मन में और उनकी कर्मेंद्रियों में अथाह शीतलता हो। दादा के शरीर की बनावट ऐसी थी कि जैसे कि श्री नारायण साधारण रूप में खड़े हों। अन्य पुरुषों की तुलना में उनकी कांति ऐसी दिखाई देती जैसे कि वे सितारों के बीच चांद हों। बाबा को देखकर अथवा उनकी अलौकिक दृष्टि पड़ने से कुछ ही क्षणों में कई भाई बहन दिव्य दृष्टि पाकर श्री कृष्ण तथा बैकुंठ का साक्षात्कार करते थे और उस वृद्ध शरीर में श्री कृष्ण को देखकर वे उन्हें जोर से पकड़ लेते। बहुत बार बाबा उन बच्चियों से छुटकारा पाने के लिए वहां से हट जाते और छिप जाते थे, परंतु जो बहनें अथवा भाई दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार कर रहे होते थे वे चर्म चक्षु बंद होने पर बाबा को दिव्य चक्षु द्वारा ढूंढ लेते और अतेंद्रिय सुख में फूले न समाकर श्री कृष्ण के अव्यक्त रूप को देखते, उनके साथ रास रचाते। आनंदमय अवस्था में वे कई बार ये सामूहिक गीत भी गाते थे। मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई, मोहे प्रेम के झूले झुलाए कोई, मेरो जाने जिगर है योगी सोई, मीरा समहू मैं प्रेम प्यासी, दीदार खातिर मैंने लोक लाज खोई, मैंने दीदार खातिर लोक लाज खोई, मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई। छोटी आयु के बच्चों को और बच्चियों को भी साक्षात्कार होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी, जो कि वर्तमान समय ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह मुख्य प्रशासिका हैं तथा दिल्ली जोन की इंचार्ज हैं और जिन्हें की अब भी दिव्य साक्षात्कार होते हैं, वह लिखती हैं। एक दिन की बात है, ओम बाबा को हमारे लौकिक मित्र संबंधियों ने अपने घर में सत्संग के लिए निमंत्रण देकर बुलाया था। कृपालु बाबा अपने बच्चों के कहने पर हमारे घर आ पधारे। रोज की सायकाल को सत्संग होता था, जहां कुछ ज्ञान युक्त गीत, ओम की ध्वनि और व्याख्यान चला करते थे। मेरी लौकिक माता जी, जिनका नाम ब्रह्मा कुमारी धैर्य पुष्पा, जो कि दिल्ली जोन की इंचार्ज थी, जिन्हें यज्ञ में ऑलराउंडर नाम से जाना जाता है, उनको ईश्वर प्राप्ति की बहुत ही तीव्र इच्छा थी। वे प्रतिदिन सत्संग में जाया करती थी। मैं तब लगभग 9 वर्ष की थी और घूमने फिरने तथा पढ़ने में ही मग्न रहती थी, इसलिए धर्म की बातों की ओर मेरा ध्यान नहीं गया था। मैं माँ के साथ ही 2-3 बार सत्संग में जाती रही, परंतु वहां भी खेल कूद में ही सत्संग का समय व्यतीत कर देती थी। परंतु एक दिन विचित्र सी बात हुई। मैं सत्संग के स्थान पर बैठे बैठे अचानक ही ध्यान अवस्था में चली गई। मेरे आसपास जो माताएं बैठी थी उन सबने यह सोचा कि शायद यह सो रही है, परंतु काफी समय से एक ही आसन पर स्थित बैठे देखकर कुछ एक का मेरी ओर ध्यान गया। जब मैं ध्यानावस्था से उतरी तब उन्होंने ऐसा मुझे बताया था। मैं तो इस संसार से परे दूसरे लोक का अनुभव कर रही थी। मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है जिसकी सजावट ऐसी सुंदर है कि इस कलयुगी संसार में वैसा मिलना असंभव है। ऐसे सुंदर हॉल में लगभग 10 वर्ष की आयु वाले सजे सजाए मोहिनी मूर्त श्री कृष्ण अपनी उंगली से मुझे इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आओ मेरे साथ रास करो। जब मैं ध्यानावस्था से उतरी और स्वयं को शरीर में महसूस करने लगी तो मैं अपने आसपास कुछ माताओं को बैठी देखकर घबरा गई और खूब रोने लगी। मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है जो ये सब मुझे देख रही है। मेरी लौकिक माता और अन्य संबंधियों ने बहुत प्यार से मुझसे पूछा, तुमने क्या देखा? मैंने कभी भी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था, अतः मुझे उनके बारे में यह ज्ञान ही नहीं था कि ये कौन है, इसलिए मैं यह वर्णन नहीं कर सकती थी कि मैंने किसको देखा। मैंने अनिश्चित सी भाषा में यही कहा कि कोई बहुत ही सुंदर और बहुत ही सजा हुआ था, वह बहुत ही अच्छा था और मुझे ऐसे ऐसे बुला रहा था। बचपन की अनजान सी अवस्था में मैंने कुछ इस तरह से वर्णन किया।
मेरी लौकिक माता गीता पाठी थीं। वे समझ गईं कि मुझे श्री कृष्ण या किसी देवता का ही साक्षात्कार हुआ है। इसी कारण श्री कृष्ण और श्री राम के चित्र लाकर मुझे दिखाने लगी और पूछने लगी, क्या यही थे? परंतु मेरे लिए कठिनाई यह थी कि चित्रकार इन देवताओं के जो चित्र बनाते हैं वे कोई वास्तविक चित्र तो नहीं होते। चित्रकार तो अपना भाव प्रकट करने के लिए जैसा बना सकते हैं वैसा बना देते हैं। उन चित्रकारों ने साक्षात्कार तो नहीं किया होता, इसलिए वे सच्चा चित्र तो बना ही नहीं सकते। अब मुझे दिव्य दृष्टि द्वारा वास्तविक रूप का जो साक्षात्कार हुआ था उसकी तुलना में तो वे चित्र बिल्कुल ही नीरस और कृत्रिम लगते थे। अतः उस दिन तो मेरे लिए यह कहना कठिन था कि यह श्री कृष्ण का चित्र है। हाँ, उसके पोज और उसकी मुरली तथा वस्त्रों में थोड़ा सा मेल था। मैंने कहा, हाँ मैंने ऐसा ही देखा था, परंतु वह इससे बहुत ही सुंदर था और सजा हुआ था और बहुत ही आकर्षण मूर्त था। उसकी तुलना में तो ये चित्र कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के साक्षात्कार और भी बहुत से बच्चों को और बड़ों को भी हुआ करते थे। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ यह अगले भाग में सुनिए।

0: दोस्तों, कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर मान लीजिए एक घर में आप रह रहे हो और घर की चारों दीवार जो है एकदम खाली है, उसमें कोई भी पेंटिंग नहीं है, कलरफुल कैलेंडर नहीं है, तो वो कैसा दिखेगा? बड़ा ही नीरस। जीवन भी ऐसा ही है दोस्तों। जीवन में भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, छोटे छोटे हुनर, छोटी छोटी कलाएं, जिनको हम तराशते हुए एक ऐसा नगीना बना सकते हैं जिससे न केवल अपनी ज़िंदगी लेकिन समाज को भी हम चमका सकते हैं। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के सफर में मैं शांतनु आपको ले चला हूँ बिहार की ओर। आप सुन रहे 107.8 FM रेडियो मधुबन और आपके पसंदीदा कार्यक्रम यशस्वी भारत के आज के एपिसोड में मैं और आप चल रहे हैं बिहार। बिहार से आ रहे हैं आज के हमारे मेहमान, जिन्होंने एक 800 साल पुरानी कला को न केवल जीवंत किया है लेकिन उसके माध्यम से हजारों, दोस्तों 100, 150, 200 नहीं, हजारों, तकरीबन 8 से 10 हजार महिलाओं को रोजगार दिया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। मैं बात कर रहा हूँ हमारे भारत के एक ऐसे अनोखे कोहिनूर हीरे की, जिनका नाम है अशोक कुमार बिस्वास, और जिस कला को इन्होंने जीवंत किया है उसका नाम है टिकुली कला। ये कला 800 साल पुरानी है और इन्होंने इसको जीवंत करते हुए कितने ही नए नए मुकाम हासिल किए हैं आज हम उन सबको जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अशोक कुमार बिस्वास जी का हमारे स्टूडियो में। अशोक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: समय निकाल करके आज आप हमारे बीच में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से।
2: नमस्कार सभी श्रोताओं को।
1: तो अशोक जी, आप पटना शहर में रह रहे हैं और पटना को हम कई बार केवल इस वजह से जानते हैं कि वो IAS ऑफिसर्स और आला अफसरों की वजह से बहुत फेमस है, लेकिन आज हमारे श्रोता साथी पटना शहर को आपके नाम से जानेंगे, आपकी कहानी से जानेंगे। तो हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी।
2: मेरा जन्म बिहार में ही हुआ। बिहार का एक छोटा सा जगह है डेहरी-ओन-सोन, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है ये डेहरी-ओन-सोन, और मेरा जन्म वही हुआ। मेरा बचपन वहीं बीता, पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुआ, कॉलेज भी वहीं किए हम। और बचपन में जो डेहरी-ओन-सोन का एरिया है वो बिल्कुल गांव जैसा रहा है, और गांव के एरिया में जो भी एक्टिविटी होता था, जैसे खेत में जाना या गाय का दूध निकाल रहे हैं वो देखना, या गोईठा बनाना, या फिर खेत में जाकर के खेलना, या फिर नदी के किनारे नाव पर चढ़ना या नदी में नहाना, या बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होता है जो हम करते रहे हैं और वहाँ पले बढ़े। और मेरा पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वहाँ मेरा मैट्रिक का एग्जाम भी दिया। चूंकि फिनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, चूंकि पिताजी मेरे कंपाउंडर थे और माँ सिलाई करती थी, हम लोग 7 भाई-बहन थे, और जिसके वजह से फिनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। मैट्रिक तो पिताजी पास करवा दिए, और बचपन चूंकि मेरा बीता है चूंकि गरीबी में, और क्लास 2 तक पैर में चप्पल तक नहीं था, और 2 के बाद हमको हवाई चप्पल मिला, वही चप्पल पहन करके हम बाहर जाते थे, पटना भी आए ट्रेनिंग लेने के लिए। लेकिन बचपन में जब हम पढ़ाई लिखाई करते थे तो जब दूसरे को देखते थे कुछ खर्चा करते हुए, कुछ खाते हुए, दुकान से खरीद करके, बड़ा मन होता था कि हमको भी अगर इस तरह का मौका मिलता। तो क्लास 6-7 में थे, मेरे बड़े भैया का एक पेंटिंग का दुकान था, साइन बोर्ड पेंट करते थे, हम उसमें काम करने लगे। थोड़ा बहुत खर्चा पॉकेट मनी मिलता था तो उससे हम अपना जो शौक होता था उसको पूरा करते थे। ऐसा करते करते मैट्रिक तक हम इधर उधर का काम करते हुए, पेंटिंग का काम करते हुए, साइन बोर्ड बैनर लिख करके थोड़ा बहुत आमदनी करते थे। उसके बाद मैट्रिक पास किए तो पिताजी का कहना था कि अब हम जितना पढ़ाना था, मेरा जो सामर्थ्य था उतना कर चुके हैं, अब आगे तुम लोग खुद से ही पढ़ाई लिखाई जारी रखना है। तो मेरा एक मौका मिल गया हमको पटना आकर के। मेरे दोस्त के जीजाजी थे, वो उपेंद्र महाते शिल्प अनुसंधान संस्थान जो आज है, उसका पहले नाम था शिल्प अनुसंधान संस्थान, बिहार सरकार का था, और उसमें डिजाइनर थे, वो उनका नजर मेरे ऊपर पड़ा और उनका कहना था कि इतना अच्छा पेंटिंग करते हैं आप, और आपको पैसा का भी जरूरत है, और बाहर जाकर के पढ़ाई लिखाई तो आप कर नहीं पाइएगा क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, शांति निकेतन और BHU से आपका कॉल भी आया लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप पटना चलिए, वहां जाकर के आप टिकुली पेंटिंग सीखिए। चूंकि पढ़ाई में हम बहुत अच्छे थे, क्लास में 1st डिवीजन आया था मेरा, मैट्रिक में 1st डिवीजन आया था, IAS में 1st डिवीजन आया था, लेकिन बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो पटना आकर के टिकुली पेंटिंग का हम ट्रेनिंग लेने लगे। ट्रेनिंग लेकर के जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे तो उसी वक्त मेरे गुरुजी लाल बाबू गुप्ता जो है वो, उनका कहना था कि आप बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं तो इसी संस्थान में काम दिया जाएगा आपको, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का बात था कि हमको तुरंत काम मिल गया। और वहां पर जब काम करना चालू किया तो 1973 में हमको पहला काम मिला, और वहां से जब काम करना चालू किए तो फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे ठीक हुआ और हम फिर वापस देहरियों से चले आए। वहां पर हम फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में फिर हम काम चालू रखे थे। मैं पेंटिंग का काम मेरा चालू था, अचानक चूंकि पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे तो कंपटीशन भी देते थे, तो अचानक हमको एक सरकारी नौकरी मिल गई, ESI कॉर्पोरेशन में नौकरी मिल गया। तो ये मेरे लिए सौभाग्य का बात था कि फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने का बड़ा अच्छा मौका मिला और नौकरी तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन कुछ दिन नौकरी करने के बाद लगा कि पेंटिंग ही मेरा एक्चुअल जो रास्ता है वो होना चाहिए, पेंटिंग में ज्यादा मन लगता है। तो नौकरी कर रहे थे, बहुत मन लगाकर नौकरी भी किए, लेकिन पेंटिंग भी करते रहे, पेंटिंग को नहीं छोड़े, पेंटिंग करते भी रहे, सिखाते भी, छुट्टी के दिन में पेंटिंग करते भी थे, क्लास लेते थे, सिखाते भी थे और इस कला को आगे बढ़ाते रहे। और जब धीरे धीरे इस कला को आगे बढ़ाए तो सरकार का नजर पड़ा, फिर उनका सपोर्ट मिला, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है कि अगर पेंटिंग आप करते हैं, कला में आपका रुचि है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। तो हमको बहुत सपोर्ट मिलता गया और इस कला को आगे बढ़ाने में सफल हुए। और कुछ दिन के बाद जब हम इस काम को बहुत आगे बढ़ा पाए तो मेरे जो डायरेक्टर थे उनका कहना था कि आप ऐसा कीजिए, नौकरी आप कर रहे हैं दोनों तरफ का आप अच्छी ढंग से संभाल नहीं पाइएगा, नौकरी छोड़कर अगर टिकुली पेंटिंग आप करते हैं तो बहुत तरक्की कीजिएगा। तो उनका कहना बिल्कुल सही था और हम नौकरी से रिजाइन कर दिए। रिजाइन करने के बाद टिकुली पेंटिंग में पूरा आ गए तो काफी आगे बढ़ने का मौका मिला। और पटना में रह करके बहुत सारा सेंटर में हम ट्रेनिंग देने लगे, ट्रेनिंग दे करके पूरे देश भर में हम 100 से ज्यादा एग्जीबिशन किए, विदेश में भी हम गए, कभी विदेश का सपना तक हम नहीं देखे थे कि विदेश हम जा पाएंगे। तो पहला मेरा एग्जीबिशन साउथ कोरिया था, दूसरा एग्जीबिशन मेरा सार्क कंट्री का एग्जीबिशन था भूटान में थिम्पू, वहाँ हुआ, तीसरा मेरा स्पेन में मैड्रिड में हुआ, चौथा मेरा मॉरिशस में हुआ, फिर उसके पहले लंदन में एक एग्जीबिशन हुआ था, उसके बाद हमको लास्ट ईयर हम जापान गए थे। तो ये मेरे लिए सौभाग्य का बात था कि टिकुली पेंटिंग के बदौलत, जो हम पैर में चप्पल तक नहीं पहन पाते थे, टिकुली पेंटिंग के बदौलत पूरा दुनिया हम घूम पाए हैं और दूसरे को भी रास्ता दिखा पा रहे हैं। मेरे अंडर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग लिए हमसे और ट्रेनिंग लेकर के अभी आज करीब करीब 10 लोगों को टिकुली पेंटिंग में स्टेट अवार्ड मिल चुका है और वो लोग अपने पैर पर खड़े हैं और वो लोग इस काम को कर रहे हैं। मेरे फैमिली मेंबर में बहुत सारे ऐसे जो हो गए, जो तपन कुमार विश्वास मेरा छोटा भाई है, शुरू से हम मेरा सपोर्ट किया है, अतुल कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं जिन जो साइनबोर्ड का पेंटिंग बनाते थे उनके साथ काम किए हैं, स्वपन कुमार विश्वास जो हमको मदद किए हैं टिकुली पेंटिंग को आगे बढ़ाने में, और साथ साथ बहुत सारे जो हमारे जो फ्रेंड सर्कल में जो बहुत सारे लोग हुए वो लोग भी टिकुली पेंटिंग को आगे बढ़ाने में मदद किए हैं और 10 करीब करीब स्टेट अवार्ड मिला है। सभी को इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मिल करके काम को कर रहे हैं। और सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार द्वारा 1 District 1 Product में टिकुली पेंटिंग का चयन किया गया है और टिकुली पेंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार का भी मदद मिल रहा है। और ज्यादातर पेंटिंगों को करने में 99

0: परसेंट महिलाएं इस काम को करते हैं, जिसकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट में भी टिकुली पेंटिंग का सहयोग है और साथ साथ मेक इन इंडिया में भी टिकुली पेंटिंग अपना हाथ बटा रही है, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं सब लोकल, जो हम लोग का मार्केट में जो भी रॉ मटेरियल मिलता है उसी से बनाते हैं और बिल्कुल मैनुअली सारा काम करते हैं और इसको पूरा दुनिया भर में हम लोग भेज चुके हैं। और अभी तक हम लोग का सौभाग्य है कि अभी तक 1.5 करोड़ पीस हम पूरे दुनिया में भेज चुके हैं इतना 53 साल में। ये मेरे लिए सौभाग्य का बात है कि हम और हमारे साथी लोग, हमारे जो स्टूडेंट है, सबको मिलकर इस काम को कर रहे हैं। इतने बड़े संख्या में टिकुली पेंटिंग पूरा दुनिया भर में भेज चुके हैं, इसका मतलब ये होता है कि टिकुली पेंटिंग के प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं, लोग इस कला को पसंद कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं नए लोग भी अगर इस काम से जुड़ते हैं तो उन लोग का आर्थिक जो स्थिति है बहुत अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अभी टिकुली पेंटिंग लोक कला के रूप में ही नहीं बल्कि पेंटिंग के रूप में भी आगे बढ़ा है, क्योंकि लोक कला में एक जो कला होता है वो काफी रिपीट होता है ताकि आमदनी हो सके। और पेंटिंग में जब पेंटिंग हम लोग बनाते हैं तो कोई एक थीम लेकर के कंटेम्प्रेरी आर्ट होगा उसके बराबर का हम लोग पेंटिंग करते हैं तो एक पेंटिंग कई लाख रुपया में भी सेल होता है और वो दुनिया के बहुत सारे जगह इसका एग्जीबिशन हो रहा है और उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो इसलिए टिकुली पेंटिंग का भविष्य काफी उज्जवल है, लोग इस काम को कर रहे हैं और नए लोग भी इस काम के साथ जुड़ रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस काम को करने का मौका मिल रहा है और हम इस काम को लोगों को बता भी पा रहे हैं।
1: जी, और मैं समझता हूँ आज के एपिसोड से जो श्रोता सुनेंगे इसके बारे में, जिन्हें शायद पहले पता नहीं था, वो इसके बारे में और शोध करेंगे और क्या पता वो भी इससे जुड़ जाएं और उनके भी जीवन में इस कला का रंग भरता जाए। अशोक जी, एक बात मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि जैसे रंग तो वही होते हैं, चाहे कोई भी कला देख ले आप, कोई भी विधा देख ले, चाहे राजस्थानी आर्ट है, मधुबनी आर्ट है, या कलमकारी है, या कोई भी आर्ट फॉर्म है, उसमें कलर्स तो वही होते हैं, रंग वही होते हैं, रेखाएं भी वही होती हैं। फिर क्या है जिससे टिकली जो है वो बाकियों से अलग हो जाता है, उसको अलग या यूनिक अनोखा बनाने का क्या कारण है, क्या इस पे आप थोड़ा सा अपना अनुभव बताएंगे? क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ एक जैसे लगता है और हो सकता है हमारे कई श्रोताओं को भी इन बारीकियों का अनुभव नहीं होगा, तो प्लीज आप जरा बताएं।
0: दोनों कोई को हम लोग को पद्मश्री मिला है और उनका काम था कि राजस्थानी पेंटिंग को आगे बढ़ाना, अब मेरा भी है कि बिहार का टिकुली पेंटिंग को आगे बढ़ाना। दोनों का काम एक ही है, आर्ट फील्ड में दोनों को अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, लेकिन दोनों का काम लेकिन अलग अलग है। हम भी आर्ट कर रहे हैं, आर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और वो भी आर्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो अपने आर्ट को, राजस्थानी पेंटिंग को बहुत खूबसूरत बना करके वो लोगों को दिखा रहे हैं, राजस्थानी पेंटिंग का दर्जा काफी ऊंचा कर रहे हैं। उनका काम है कि पेंटिंग को सुंदर बनाना और मेरा जो काम है टिकुली पेंटिंग का काम है कि पेंटिंग को सिंप्लीफाई करना, बिल्कुल सिंपल बनाना, सिंपल। एक बच्चा जो ड्रॉ करते हैं, पेंटिंग जब करते हैं बच्चा का ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल अलग है और बच्चे जो ड्रॉ करते हैं एक ओल्ड लेडी भी उसी ढंग से ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका से वो ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने का तरीका अगर बिल्कुल सिंपल रहेगा तो बहुत जल्दी वो लोग चीज को सीखना चाहेंगे और इसको जितना कोई भी चीज हम अगर बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि गांव की औरत लोग सुबह सुबह उठ करके कुआं से पानी भर रही है, इस चीज को अगर हम बिल्कुल सिंपल ढंग से, एक बच्चा जिस ढंग से ड्रॉ करता है उस ढंग से ड्रॉ करेंगे, लेकिन कलर के साथ उसको खूबसूरत भी तो दिखाना है, खूबसूरत दिखाएंगे, कलर को यूज करेंगे लेकिन इतना सिंपल बन, ड्रॉइंग बहुत अच्छे से नहीं सीखे हैं, ड्रॉइंग के प्रति इंटरेस्ट है लेकिन वो सीखना चाहेंगे और इजी वे में उसको बना भी लेंगे। उससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर वो इस काम को सीख लेते हैं तो खुद तो बनाते ही हैं, हमारे कल्चर को इस प्लेट के ऊपर बनाएंगे, पेंटिंग करेंगे और इसको पूरा दुनिया भर में बेचेंगे, हमारा कल्चर दुनिया भर में फैलेगा, साथ साथ उनको आमदनी भी मिलेगी, उनको रोजी रोटी भी मिलेगा, साथ साथ उनके साथ साथ उनको देख करके बहुत सारे ऐसे औरत लोग महिला के आ जाते हैं एरिया, उसी एरिया के उनके जान पहचान के फैमिली मेंबर्स हो या फ्रेंड सर्किल में है तो वो लोग आ जाते हैं, वो लोग भी सीखना चाहते हैं, तो वो लोग भी सीखना चाहते हैं। तो मेरा काम बिल्कुल अलग है, आर्ट को सिंपल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे करके उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, उनको रोजगार देना, और मेरा काम है। और गीताई जी का काम है कि आर्ट को जितना सुंदर बना सके, जितना बारीक बना सके कि उनको दूसरे लोगों से मतलब नहीं, उनको उस पेंटिंग को, उनका भी काम बहुत अच्छा है, दूसरे लोगों को जैसे इंस्पायर तो करते ही हैं, आर्टिस्ट लोगों को इंस्पायर तो करते ही हैं, लेकिन क्या है कि वो पेंटिंग को सुंदर बनाते हैं, पेंटिंग को बहुत बारीक बनाते हैं, लेकिन उस तरह का पेंटिंग वही बना पाएंगे जो कि काफी एक्सपर्ट है पेंटिंग में और पेंटिंग सीखे हैं। मेरे में क्या है कि पेंटिंग अगर नहीं भी सीखे हैं तो उस हालत में हम उनको सिखा देते हैं, इतना सिंपल बनाते हैं कि वो सीख लेते हैं। तब दोनों के काम में डिफरेंस ये है, सेम चीज है। अगर हम कोई भी, जैसे दुनिया में हर कंट्री में फोक आर्ट है, इंडिया में हर स्टेट में फोक आर्ट है, सब कोई अपना कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। धर्म एक ही है, जैसे कृष्ण जी का जीवनी, कृष्ण जी का जीवनी हम भी बनाते हैं, वर्ल्डली पेंटिंग भी बनाते हैं, या फिर राजस्थानी पेंटिंग में भी कृष्ण जी का जीवनी बनता है, पटचित्र उड़ीसा का है वहां पर भी बनाते हैं, लेकिन सबका स्टाइल अलग है। देखिएगा कि पेंटिंग का जो स्टाइल, राजस्थानी पेंटिंग बहुत बारीक होता है, वो कोई साधारण लोग नहीं बना पाएंगे, जो एक्सपर्ट है बहुत अच्छे ढंग से जो ट्रेनिंग लिए हैं वो बना सकेंगे। और हमारा पेंटिंग जो है बिल्कुल सिंपल ढंग से हम उसको बनाते हैं, अपने कल्चर को दिखाते हैं, अपना स्टाइल अलग है। पर्टिकुलरली पेंटिंग में खास बात यह है कि इसमें देखिए मधुबनी पेंटिंग भी बिहार का है, मंजूषा पेंटिंग भी बिहार का है और टिकुली पेंटिंग भी बिहार का है, लेकिन तीनों को अगर एक साथ रखेंगे तो देखिए तीनों में काफी डिफरेंस है, कोई सिमिलरिटी है ही नहीं। टिकुली पेंटिंग का खास बात यह है कि हम लोग जब ह्यूमन फिगर बनाते हैं तो ह्यूमन फिगर का रियल में जो ह्यूमन फिगर होता है, जो प्रोपोर्शन होता है, एक हेड के हिसाब से हाथ होता है, बॉडी होता है, पैर होता है, तो उस चीज को हम लोग फॉलो करते हैं। मधुबनी पेंटिंग में इसका कोई जरूरत नहीं है, मधुबनी पेंटिंग अपने आप में खूबसूरत है, उसमें हेड के हिसाब से बॉडी होना चाहिए या हाथ पैर होना चाहिए ऐसा कोई जरूरत नहीं है, उसका हेड बड़ा हो सकता है, बॉडी छोटा हो सकता है, लेकिन हमारे पेंटिंग में, टिकुली पेंटिंग में बॉडी का प्रोपोर्शन जो होगा हेड के हिसाब से ही होगा, जो फॉर्मूला होता है, जो रियल में जो फॉर्मूला होता है, जो एक डॉक्टर भी एनाटोमिकल स्टडी करते हैं, एक आर्टिस्ट भी एनाटोमिकल स्टडी करते हैं, जो एनाटोमी जानते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है इस तरह का ड्राइंग करना। तो एक खास डिफरेंस ये है कि टिकुली पेंटिंग बिल्कुल सिंपल होता है, कोई बच्चा भी उसको ड्रॉ कर लेगा, और उसको बनाने का तरीका है जो ह्यूमन फिगर का जो प्रोपोर्शन होता है उस चीज को मेंटेन करते हैं। टिकुली पेंटिंग का सबसे खास बात यह है कि एनामेल पेंट से ये काम होता है, पूरे दुनिया में एनामेल पेंट से बारीक पेंटिंग कोई नहीं करते हैं। हम कहीं भी इतना जगह हम गए हैं, लाखों लोगों से हम मिले हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा एग्जीबिशन हम इंडिया में कर चुके हैं और विदेश में 6 बार हम इंडिया रिपेंट किए हैं। बहुत सारे लोगों से सवाल किए हैं, आप कभी सुने हैं एनामेल पेंट से बारीक काम करते हुए, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं कभी नहीं सुने हैं। एनामेल पेंट से काम नहीं करने का कारण यह है कि एनामेल पेंट से काम करना बड़ा टफ होता है, बहुत मोटा पेंट होता है, अब बारीक काम नहीं, खिड़की दरवाजा पेंट होता है लेकिन बारीक पेंटिंग उससे नहीं हो पाता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि जैसे वाटर कलर, पोस्टर कलर, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर से बहुत बारीक काम किया जा सकता है, लेकिन एनामेल पेंट से नहीं करते हैं। हम लोग क्यों एनामेल पेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं टिकुली जो नाम पड़ा है इस कारण क्या है। टिकुली तो बिंदी नाम पर हो सकता था, दूसरा कुछ भी हो सकता था, लेकिन पहले मौर्य पीरियड का जो राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था, अभी पटना सिटी है, तो उसका नाम पहले पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र राजधानी था। मौर्य पीरियड में जो टिकुली बनता था, टिकुली बनाते थे लोग, कांच को पीक के सब बनाते थे, फिर उसका कटिंग करते थे, कटिंग करने के बाद में उस पर गोल्ड फॉइल चढ़ाते थे और चढ़ा करके उसको टिकुली के रूप में उसका प्रोडक्शन होता था, जिसमें मेल फीमेल हिंदू मुस्लिम सभी कोई समान रूप से काम करते थे। मुस्लिम मेल क्या करते थे कि कांच को पिघला करके बेलून जैसा बनाते थे, फिर उसका कटिंग करते थे, मुस्लिम मेल का काम ये था। उसके बाद मुस्लिम मेल हिंदू मेल को देते थे, हिंदू मेल उस पर जो गोल्ड फॉइल है, कांच के ऊपर गोल्ड फॉइल चढ़ाते थे हीट दे करके, और फिर उसको हिंदू फीमेल को दे देते थे, और हिंदू फीमेल उस पर बांस का बना हुआ नुकीला जो पेंसिल जैसा होता था उससे खरोच करके उस पर डिजाइन बनाते थे। तीनों का काम बटा हुआ था। पटना सिटी में करीब करीब 5,000 कारीगर थे जो इस काम को करते थे, सभी को मिल करके। तो ये काम बिल्कुल मौर्य पीरियड से, समझ लीजिए 2,500 साल पहले से ये चलता आया। लेकिन ये जो टिकुली पेंटिंग जो आज है, पहले टिकुली पेंटिंग नहीं था, टिकुली वर्क के नाम से जाना जाता था, और वो लघु उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री में डेवलप हुआ था। कॉटेज इंडस्ट्री के लोग उसको जानते थे, लेकिन पेंटिंग वाले पोर्शन में कोई भी उसको नहीं जानते थे। फिर भी इसमें कलाकारी था, आर्ट वर्क था, क्योंकि टिकुली के ऊपर में जो कलाकारी होता था बांस का नुकीला पेंसिल से, वो औरत लोग जो डिजाइन बनाती थी वो इसी तरह का डिजाइन बनता था, जो आज भी उस तरह का डिजाइन हमारे टिकुली में बनता है। तो आर्ट वर्क तो था ही, आर्ट तो कलाकारी तो था ही, लेकिन पेंटिंग वाला पोर्शन में नहीं था। अब है टिकुली का काम चलता है, सभी कोई जानते हैं कि औरत लोग माथे पर सजावट के लिए बिंदी का इस्तेमाल करते थे, ये सब कोई जानते हैं, इसको बताने का जरूरत नहीं है। खाली माथा पर टिकुली का ही नहीं, बल्कि कान का भी, नाक का हो गया, गला का, हाथ का, पैर का।

तो जो कलाकार लोग थे पटना सिटी के 5000 कलाकार, उनका रोजी रोटी खत्म होने लगा। तो रोजी रोटी जब खत्म होने लगा तब उनके दिमाग में आया कि हम लोग कलाकारी तो करते हैं, इस पर क्यों नहीं छोटा कांच का टुकड़ा लेकर के जो काम हम करते हैं गोल्ड फॉइल से, हम लोग छोटा कांच का टुकड़ा नहीं लेकर के बड़ा कांच का टुकड़ा ले लेते हैं और उस पर गोल्ड फॉइल चढ़ाते हैं और उस पर जो कलाकारी कर रहे हैं उसी कलाकारी को करते हैं, तो उससे क्या हो कि पेंटिंग के रूप में उभर कर आ जाएगा और पेंटिंग के रूप में उभर कर आएगा तो इसका डिमांड बढ़ेगा और हम लोग का रोजी रोटी भी बढ़ेगा। जब दिमाग में आया तो सेकेंड स्टेज में ये बदलाव आया। फर्स्ट स्टेज में छोटा टिकुली बनता था जिसका इस्तेमाल औरत लोग सजावट के लिए करते थे, श्रृंगार के लिए करते थे। दूसरा स्टेज में बड़ा कांच का टुकड़ा आया, उस पर कलाकारी किया गोल पल चढ़ा करके और वो पेंटिंग के रूप में बदल गए। जगह वही था, कारीगर वही थे, टेक्निक वही और मटेरियल भी वही, जिसकी वजह से वो लोग उस पेंटिंग का नाम टिकुली पेंटिंग रख दिए। लोग जानते थे, बाहर के लोग जानते थे टिकुली का काम हो रहा है, वो लोग खुद भी बोलते थे कि हम लोग टिकुली का काम कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पेंटिंग के रूप में कब बदल गया वो लोग को खुद भी पता नहीं चला, लेकिन नाम वो लोग रख दिए टिकुली पेंटिंग। टिकुली पेंटिंग में कहीं टिकुली साट करके या टिकुली लगा करके कोई कलाकारी नहीं किया जाता, चूंकि टिकुली बनाने वाले कलाकार लोग उसमें बदलाव लाए थे जिसकी वजह से उसका नाम टिकुली पेंटिंग हो गया। उसमें डॉट या टिकुली का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉट तो सजाने के लिए कोई भी पेंटिंग में देते हैं। दुनिया का हर पेंटिंग में कुछ ना कुछ सजाने के लिए डॉट दिया जाता है, तो उससे मतलब नहीं है इस पेंटिंग का। टिकुली बनाने वाले लोग इसमें बदलाव लाए जिसकी वजह से टिकुली पेंटिंग रह गया। इसी ढंग से इसमें बदलाव आया सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि गोल्ड को रिप्लेस करना था, गोल्ड कंट्रोल आ गया, गोल्ड का दाम बढ़ गया था, उसका दाम घटाना था, कम करना था प्राइस को, जिसकी वजह से वो लोग कांच को लिए। कांच तो रहा लेकिन कांच के ऊपर एनामेल पेंट से वो लोग पेंटिंग करने लगे, जो आज हम कर रहे हैं कांच के ऊपर एनामेल पेंट से। थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में कांच भी रिप्लेस कर दिया गया, कांच के बदले में लकड़ी आ गया, और पहले लकड़ी आया, लकड़ी के बाद हार्डबोर्ड आया, अभी एमडीएफ बोर्ड आया। इसमें भी बदलाव हुआ और लकड़ी आने का कारण क्या था कि जापान, हमारे जो गुरु जी है पद्मश्री उपेंद्र महाराज थे, 1954 में जापान गए थे, तो जापान में वो देख कर आए कि जापानीज लोग बहुत सुंदर कलाकारी कर रहे हैं एनामेल पेंट से लकड़ी के ऊपर में। तब उनके दिमाग में आया अगर इस टेक्निक को हम सीख लेते हैं तो अगर हम अपने यहाँ जो टिकुली पेंटिंग होता है कांच के ऊपर एनामेल पेंट से उसको रिप्लेस कर देते हैं तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बन जाएगा। जब इनके दिमाग में ये आया तो ये लकड़ी पर किस ढंग से पेंटिंग किया जाता है इसको सीख लिए। लकड़ी पर जो पेंटिंग किया जाता है, लकड़ी को जो बेस के रूप में तैयार किया जाता है, ये काफी टफ है। इतना सिंपल नहीं है कि लकड़ी को पेंट कर दिए और वो को जब हम लोग लेते हैं तब उसको पहले उसके ऊपर एनामेल पेंट किया जाता है, पेंट करके उसको 2 दिन धूप में सुखाते हैं, 2 दिन धूप में सूख जाने के बाद फिर उस पर चारकोल से रगड़ा जाता है, चारकोल से रगड़ने के बाद वो स्मूथ हो जाता है, कलर को नहीं उठाते हैं, कलर को रहने देते हैं, उसके ऊपर चारकोल से सॉफ्ट मतलब चारकोल लेते हैं, उसको रगड़ने से क्या होता है कि ऊपर का जो सरफेस होता है स्मूथ हो जाता है, कलर वही रह जाता है, कलर फेड हो जाता है लेकिन कलर रह जाता है। फिर उसको पेंट करते हैं, धूप में 2 दिन सुखाते हैं, फिर चारकोल से रगड़ते हैं। ऐसा करने के बाद, चार कोट करने के बाद फ्रंट उसका तैयार होता है और फिर बैक में भी 2 बार करते हैं, मतलब 6 कोट करने के बाद एक प्लेट तैयार होता है, जो प्लेट आप देख चुके थे और अगर हम यहाँ दिखाते हैं हो सकता है कि कभी बाद में काम में आ जाए। देखिए इस तरह का प्लेट जो है, ये प्लेट दोनों तरफ आप देख चुके हैं और ये भी हम दिखा रहे हैं। ये प्लेट बनाना इतना आसान नहीं, एक प्लेट बनाने में, एक प्लेट बनाए या 100 प्लेट ले हमको 15 दिन लगता है, क्योंकि 2 दिन सुखाना, रब करना, फिर करना, ऐसे करते करते 6 कोट करने में हमको 2 दिन सुखाना पड़ता है, तो हमको 15 दिन कुल मिलाकर लगता है। तो 15 दिन के बाद हम एक पीस करें या 100 पीस करें या 500 पीस करें, हमको समय उतना ही देना पड़ेगा। 15 दिन के बाद ही हम एक प्लेट तैयार कर पाते हैं, उसके बाद जाकर पेंटिंग स्टार्ट होता है। काफी लेंथी प्रोसेस है, लेकिन एनामेल पेंट क्यों यूज करते हैं, यही कारण था कि एनामेल पेंट हम लोग यूज करते हैं क्योंकि एनामेल पेंट से इसका बेस तैयार होता है। सबसे फायदा क्या है, एनामेल पेंट से काम करने का सबसे बड़ा फायदा, इतना टफ होते हुए भी हम लोग एनामेल पेंट को रिप्लेस नहीं किए, एनामेल पेंट से आज भी कर रहे हैं। कारण यह है कि दुनिया में कोई एनामेल पेंट से नहीं करते हैं पेंटिंग, हम लोग इसको यूनिक दिखाना चाहते हैं। हम लोग दिखाना चाहते थे कि दूसरे पेंटिंग से हमारा पेंटिंग कैसे अलग है, हमारा मटेरियल बिल्कुल अलग है, इससे कोई नहीं काम करते हैं, इससे बारीक पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग जैसा उतना बारीक काम नहीं होगा लेकिन खूबसूरत रहता है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के लोग इसको पसंद करते हैं। अभी तक 1.5 करोड़ पीस पूरे वर्ल्ड में हम भेज चुके हैं, तो लोग पसंद कर रहे हैं तभी।

0: नहीं बड़े संख्या में हम बाहर भेज पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा पेंटिंग करेंगे राजस्थानी पेंटिंग के साथ टिकोली पेंटिंग का, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, कंपेयर नहीं हो सकता है। राजस्थानी पेंटिंग का लेवल अलग है, वो अलग ढंग से करते हैं, और हम लोग का लेवल अलग है, हम लोग का तरीका बिल्कुल अलग है, इसका अलग ब्यूटी है, उसका अलग ब्यूटी है। तो इस ढंग से हम लोग पेंटिंग को करते हैं, इसका ब्राइटनेस की वजह से, और हम लोग इस पेंटिंग को और ज्यादा फैलाने के लिए बाद में, अब समझ ले 20 साल से ये चला आ रहा है, उसके पहले वो नहीं था, पहले पेंटिंग बनता था, लेकिन उसको और पॉपुलर करने का सबसे अच्छा उपाय हम लोग सोचे कि लोक कला। लोक कला फोक आर्ट मतलब हुआ कि रोजी रोटी से डायरेक्ट उसका संबंध होना चाहिए, तभी जाकर फोक आर्ट होगा, नहीं तो वो आर्ट में ही रह जाएगा। तो फोक आर्ट के लिए लोगों को आमदनी देना जरूरी है, आमदनी करने के लिए अगर हम डेली यूज का सामान तैयार करते हैं, यूटिलिटी आइटम बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसका डिमांड बहुत बढ़ जाता है, हर जगह डिमांड बढ़ जाता है, लोग चाहते हैं कि यूटिलिटी आइटम अगर बनाते हैं तो उसको खरीदना चाहते हैं। यही कारण है कि हम लोग यूटिलिटी आइटम में सबसे पहले टेबल मैट का बनाना चालू किए, टेबल मैट, कोस्टर सेट, उसके बाद बहुत सारा जैसे ट्रे हो गया, या बहुत सारा ऐसा चीज है जिस पर पानी पड़ सकता है और डेली यूज हो सकता है, उस तरह का चीज हम लोग बनाने लगे, तो उससे क्या डिमांड बहुत बढ़ गया, इसका 10 गुना डिमांड इसका बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, आमदनी होने लगा, तो गांव के लोग इसके साथ जुड़ गए, गांव के लोग जुड़ गए तो उनको आमदनी होने लगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे पास क्या था कि ये टिकुली पेंटिंग का शुरुआत तो उतना पुराना था, लेकिन 1950 के बाद उसमें बदलाव आ गया, बदलाव आने के बाद में गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा रहा, इसका मार्केटिंग सपोर्ट पूरा गवर्नमेंट देते थे, लेकिन 1984 के बाद गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी था जो कि चेंज हो गया, मार्केटिंग सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से सारे जो कलाकार थे, बहुत सारे कलाकार थे जो इस काम को छोड़ दिए, छोड़ करके दूसरे काम में चले गए, चूंकि हमको बचपन से लगाव था इस पेंटिंग से, इसी पेंटिंग से नहीं, पूरे सारा पेंटिंग से मुझे लगाव है, तो लगाव रहने के चलते हम इस काम को नहीं हमको करते रहे, और मेरे दिमाग में इसके लिए हम खुद मार्केटिंग करने का कोशिश तो किए, लेकिन हम अकेले कितना कर सकते थे, करते करते लोगों को ट्रेनिंग देने लगे, घर घर जाकर ग्रुप बना करके उनको ट्रेनिंग दिए, अपने घर से करीब 15 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेनिंग देना चालू किए, ऐसे करते करते अचानक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंडिया गवर्नमेंट का ऐसा है कि उनका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में एक विंग है डीसी हैंडीक्राफ्ट, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट को लोग काम डीसी हैंडीक्राफ्ट का है, उनका नजर पड़ा, उनका एक आर्टिस्ट थे, उनका नजर पड़ा, 82 में सबसे बड़ा एक्सपोजर मिला था टिकुली पेंटिंग को, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी अपने हाथों से, इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट एशियाड हुआ था, एशियाड में 5,000 एथलीट आए थे, सभी एथलीट को इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट करने के लिए इसी टिकुली पेंटिंग सिलेक्शन किए थे, और सभी को 4 पीस करके गिफ्ट, इतना अच्छा ब्रेक मिला, इतना अच्छा पेंटिंग इंडिया गवर्नमेंट को गिफ्ट किया गया, और ये पेंटिंग खत्म हो जाएगा, इसके लिए वो लोग जब देखे कि ये जिंदा है अभी भी, इस काम को हम कर रहे हैं, तो हमको फिर दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली जाकर कमिश्नर साहब से मिले, और मिल करके वो हमको एश्योर किए कि आप जितना भी एग्जीबिशन करना चाहते हैं, कहीं भी एग्जीबिशन करना चाहते हैं, इंडिया गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, आप सिर्फ इस कला को जीवित कीजिए। जब उनका एश्योरेंस मिल गया, तब हम पूरा पूरा जोर शोर से इस काम को करने लगे, और मेरे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलने लगा, जितना भी एम्पोरियम था, जितना भी जगह था, गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये सामान हमारा जाने लगा और सेल होने लगा। जब सेल होने लगा और जो कारीगर मेरे साथ में थे, जो स्टूडेंट लोग थे, वो लोग काम करने लगे, तो काम कर ये काम कर रहे हैं और इनको पैसा मिल रहा है, अर्न कर रहे हैं, घर में बैठकर अर्न कर रहे हैं, तो हजारों की संख्या में मेरे पास लोग आए। जैसे एक लड़की को सिखाए, वो 4 लड़की को ले आई, 4 लड़की को और 4 लड़के और फिर अपने अपने फ्रेंड को ले आए, उनके परिवार वाले आ गए, ऐसे करते करते करीब करीब 8,000 महिलाओं को अभी तक हम सिखा चुके हैं, और ये मेरा 52 साल से ऊपर 53 साल हो गया, 53 ईयर्स हो गया मेरा, तो ये काम को अभी कर रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि इस कला को कैसे जीवित किया जाए, कला को जिंदा रखने के लिए क्या उपाय हो सकता है, क्योंकि पटना बड़ा शहर है, पटना बड़ा शहर है, यहाँ मेरा हर साल 300 स्टूडेंट को हम लेते हैं सिखाने के लिए, 300 बच्चे से लेकर के बूढ़े तक 300 स्टूडेंट आते हैं, उससे ज्यादा चूंकि कैपेसिटी मेरा नहीं है, जो हम खुद क्लास लेते हैं, और 29 ब्रांच पूरे पटना में मेरा शुरू शुरू में रहा, कोविड के बाद थोड़ा कम कर दिए हैं, लेकिन 29 ब्रांच में हम पूरे सप्ताह में हम खुद जाकर ट्रेनिंग देते रहे हैं, तो इसलिए 300 स्टूडेंट ही लेते थे। लेकिन 300 स्टूडेंट मेरा पटना शहर के जो लोग होते हैं, अर्निंग इनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा रहता है, तो इनको सिखाते हैं, डिजाइन डेवलप होता है और कला को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन टिकुली पेंटिंग का प्रोडक्शन कैसे होगा, रेगुलर प्रोडक्शन हो और इस कला को आगे बढ़ाए, इसके लिए मेरे दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन रह गया था कि कैसे हम आगे बढ़ाए। तब मेरे दिमाग में आया कि अगर हम खुद गांव में जाते हैं, पटना से 20-25 किलोमीटर दूर बिल्कुल गांव है, अगर उस गांव में हम चले जाते हैं और वहां के महिलाओं को जो कम पढ़े लिखे हैं और फाइनेंशियली काफी कमजोर है, अगर हम उनको मोटिवेट करते हैं तो क्या होगा कि वो लोग काम करेंगे। और कम पढ़े लिखे हैं और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, गांव में रहते हैं तो उन लोगों को कभी नौकरी नहीं मिलेगा, घर द्वार ही चला सकते हैं, घर परिवार चला सकते हैं और नौकरी नहीं कर सकते हैं, अर्न भी नहीं कर सकते, ये उनको अच्छी तरह मालूम है और हमको भी मालूम है कि वो अर्न नहीं कर सकते अगर हम उनको गाइड नहीं करेंगे तो वो। लेकिन औरत लोगों में या लड़की लोगों में एक नेचुरल क्वालिटी रहता है कि ड्राइंग पेंटिंग की तरफ उनका लगाव रहता है। तो जब हम वहां गए, कुछ जान पहचान के लोग थे, उनको मालूम था कि हम टिकुली पेंटिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनका रिक्वेस्ट था कि आप आइए यहाँ पर बहुत सारे महिला लोग सीखना चाहते हैं आपसे। तो हम कोशिश किए, वहां गए तो देखे कि पहले पहला दिन 50 लोग आए, दूसरा दिन 100 लोग हो गए, और जब हम 2-3 दिन गए जाकर के सारा चीज हम बताए तो देखे कि बहुत सारे महिला लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम भी इस काम को करेंगे। कारण यह है कि उनको मालूम पड़ गया था कि घर में बैठकर काम करना है, और ट्रेनिंग जो हम दे रहे थे बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग दे रहे थे, अपने खर्चे पर जाते थे, हम ले आते थे और अपने साथ असिस्टेंट लोगों को ले जाते थे, लेकिन उनसे कोई पैसा कभी डिमांड नहीं किए। तो ये मेरा एक ये था कि बचपन बहुत गरीबी में बीता है। पटना आए, पटना आकर उपेंद्र महाते शिल्प अनुसंधान संस्थान जो बिहार सरकार का एक विंग है जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ आकर ट्रेनिंग लिए, और ट्रेनिंग लेने के बाद में जब पहला हमको पेमेंट मिला उससे हम एक जूता खरीदे और टेरिकॉट का शर्ट खरीदे थे और एक स्टील का ग्लास खरीदे थे। ये मेरा पहला मार्केटिंग था पहला पेमेंट से। समझ लीजिए कि फाइनेंशियल कंडीशन कितना वीक था मेरा। उसके बाद मेरे दिमाग में था कि अगर गांव के महिलाओं को थोड़ा सा भी आमदनी हम करवा देते हैं तो वो लोग बहुत मन लगाकर काम करेंगे और इस कला को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये जब मेरे दिमाग में आया तो हम गांव में जाने लगे और उन लोग को फ्री ट्रेनिंग देने लगे, और ट्रेनिंग देकर के इस काबिल हम बना दिए ताकि वो लोग खुद अर्न कर सके। गवर्नमेंट का सपोर्ट था, वो लोग 3 महीना ट्रेनिंग करने के बाद एक्सपर्ट हो गए, एक्सपर्ट होने के बाद काम करना चालू की, हर महीना पेमेंट मिलता गया। और पेमेंट देने के लिए पहले तो गवर्नमेंट से हम बैंक से लोन लिए थे, लेकिन लोन का इतना मुश्किल था, इतना फॉर्मेलिटीज था कि हम उसको पूरा करने में हमको बहुत दिक्कत हो रहा था। तब हम सोचे हम तो टाउन में क्लास लेते हैं, टाउन में हर साल हम 300 स्टूडेंट को लेंगे और टाउन में लोग शौक से सीखते हैं, इनको शौक से सीखते हैं, ड्रॉइंग पेंटिंग के एग्जाम भी दिलवाते हैं, टिकुली पेंटिंग भी सिखाते हैं, सारा चीज सिखाते हैं, इनसे एक नॉमिनल फी लेंगे। नॉमिनल फी लेकर के हर महीना में जो हमको फी मिलेगा उसी अमाउंट को सीधे जाकर के गांव में उन महिलाओं को दे देंगे। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि महिलाओं को हर महीना जैसे सैलरी मिलता है उसी ढंग से जितना भी महीना में काम किए हैं अगला महीना में उनको तुरंत का तुरंत सारा पेमेंट मिल गया जितना भी काम किए। और जो सामान रहता था अगर वो मार्केटिंग खुद कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते तो हमको दे देते हैं, मार्केटिंग फिर हम करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू।
1: मुझे यहाँ एक चीज पूछना है, जैसे हाँ। गांव में महिलाएं जो हैं वो बना रही हैं और आप जो हैं उनको छुट्टी देते हैं बनाए, हाँ। क्या इसमें ऐसा संभावना है कि हाँ। जो प्राण है उस कला का, जो उसकी न्यूएंसेस है, जैसे मान लीजिए पत्ता इसी तरीके से बनना चाहिए, फूल ऐसा ही होना चाहिए या इतनी रेखाएं होनी चाहिए, या कुछ ऐसा जो ग्रामर होगा, व्याकरण होगा इस कला का, क्या ऐसा हो सकता है कि ये महिलाएं अज्ञानता की वजह से उस व्याकरण को छेड़ दे या गलत कर दे और फिर वो टिकुली कला नहीं रहे और कुछ और बन जाए, तो ऐसे में नुकसान भी होता होगा, इसके बारे में क्या कहना है आपका?
0: ये बिल्कुल सही है, हम इसलिए पहले क्लास लेते हैं, वहाँ जा करके इस तरह का क्लास लेते हैं और ड्रॉ करते हैं, उनके कॉपी में ड्रॉ करते हैं, उनको बोलते हैं प्रैक्टिस करो और ये चीज होगा। हम पहले खुद डिजाइन बनाते हैं, जैसे डिजाइन डेवलप कैसे होता है, जो टाउन में हम क्लास लेते हैं, टाउन में कोई डिजाइन हम बनाए, टिकुली कला का जो ओरिजिनल जो डिजाइन है उस चीज को हम, वो एसेंस रहना चाहिए उसके अंदर में, तो उस चीज को डेवलप करते हैं, उसी चीज को जाकर उनको दिखाते हैं और फिर दिखा करके उनके कॉपी में ड्रॉ करते हैं ड्रॉ करके बताते हैं कि इसी ढंग से होना चाहिए। जो कलर कॉम्पोजिशन है, कलर कॉम्पोजिशन ऐसा रहना चाहिए, इसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए। जो दूसरा कुछ बना देंगे तो मान लीजिए कि दूसरा कोई स्टेट का वो कॉपी कर लेंगे, करने लगेंगे, तब तो सारा तो बेकार हो जाएगा। कि दूसरे पेंटिंग का, दूसरा लोक कला का कॉपी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, बिल्कुल अपना होना चाहिए। तो इसके लिए सारा जो ग्रामर है उस चीज को बताना पड़ता है, ह्यूमन फिगर के बारे में उनको बताना पड़ता है कि इतना होना चाहिए, सारा डिटेल्स में बता करके तब उनको देते हैं। ट्रेनिंग पीरियड में ही सब चीज बताया जाता है, कौन कलर का इस्तेमाल करना है। हम लोग कलर बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ बेसिक जो कलर है जैसे प्राइमरी कलर हो गया रेड येलो ब्लू, और फिर हम लोग साथ में ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं। ये चार कलर अगर मेरे पास आ जाता है तो सारा हम लोग पेंटिंग कर देते हैं। कहीं कहीं ब्राउन का जरूरत पड़ता है जैसे पेड़ बनाना हुआ, या कहीं डिजाइन अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए कहीं अगर ऑरेंज का जरूरत पड़े तो ऑरेंज हम बना लेते हैं दो कलर मिक्स करके रेड और येलो, और पिंक बना लेते हैं व्हाइट मिक्स करके रेड में। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा कलर, बहुत ज्यादा कलर नहीं देते हैं। कारण ये है कि गांव के महिलाओं को बहुत ज्यादा कलर अगर हम बता देंगे तो वो कर नहीं पाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी, और इसको बिल्कुल सिंपल ढंग से उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। ड्राइंग भी बिल्कुल सिंपल होगा, ड्राइंग हम करके दिखा देते हैं, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। जिस ढंग से हम बताते हैं ये बहुत जल्दी वो चीज को, उस चीज को पकड़ लेते हैं, पकड़ के बनाते हैं, और दो चार दिन में वो लोग सीख जाते हैं, ड्रॉ करना सीख जाते हैं। लेकिन टिकुली पेंटिंग में क्या होता है कि एनामेल पेंट का इस्तेमाल करते हैं। एनामेल पेंट 000 ब्रश, जो ब्रश का सबसे छोटा रूप है, उस 000 ब्रश का इस्तेमाल करके अगर हम कोई पेंटिंग करते हैं तो वो टफ होता है। तो इसमें क्या होता है कि हाथ पर थोड़ा कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। हाथ पर कंट्रोल लाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है, और प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। 2-3 महीना के अंदर जब वो सीख जाती हैं तो जिंदगी भर के लिए वो उनका अमानत हो जाता है, और फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, कंटिन्यूस काम कर। अभी भी मेरे साथ में ऐसे कई परिवार हैं जिनमें महिला लोग 20-20 साल से मेरे साथ में काम कर रहे हैं।
1: जी, जैसे ये आपने बताया कि कुछ महिलाएं जो हैं 20 वर्ष तक भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं और टिकुली पेंटिंग के जरिए अपने जीवन यापन का भी साधन निकाल चुकी हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा था कि कई लोग आर्ट जो है, कला है, उसको इसलिए भी उसमें जाते हैं क्योंकि वो उनको मानसिक शांति देता है या उनको किसी प्रकार के अवगुणों से बाहर निकालता है, जैसे आर्ट थेरेपी हो गया। तो लोग आर्ट के जरिए जो है अपने मन को संभालते हैं, डिप्रेशन से बाहर आते हैं, या कोई समस्या है या परेशानी है उससे बाहर निकलने के लिए भी कला को इस्तेमाल करते हैं। आपके अनुभव में आपने कभी टिकुली के जरिए अपने को इस तरीके से उभारा है, या किसी और की कहानी आपको पता हो जिसने इस कला के जरिए अपने जीवन को या अपने परेशानियों से बाहर निकलने के लिए इस कला का इस्तेमाल किया है? केवल मैं व्यावसायिक या केवल कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं, मैं इमोशनल एस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ कि भावनात्मक रूप से किसी का कहानी अगर आपको याद आता है जिसके जीवन में थोड़ा ज्यादा मुस्कान, ज्यादा लाइट आया हो इस कला की वजह से, तो कोई कहानी आपको याद आती हो तो?
0: अभी एक ये कहानी नहीं, सच्चाई है, और अभी भी एक लड़की मेरे साथ जुड़ी हुई है, बचपन में हमसे सीखी थी पेंटिंग। ऐसा कई लोग आए मेरे जीवन में जो गूंगी और बहरी, ठीक है, ऐसे कई लोग आए, ऑटिस्टिक लोग भी आए मेरे पास में। तो अभी एक लड़की मेरे साथ जुड़ी हुई है जो कि बचपन से बोलती नहीं है, सुनती नहीं है, लेकिन पेंटिंग बहुत अच्छा करती है, और अभी भी शादी हो गया है फिर भी वो इस काम को छोड़ी नहीं है, आज भी कर रही है उस काम को, और बहुत सुंदर करती है। उनका बनाया हुआ एक पेंटिंग नरेंद्र मोदी को गिफ्ट भी किया गया, और ये अलग ढंग से, मत समझ लीजिए कि उनको बुलाया गया था दिल्ली, जो गिफ्ट है वो लेकर गई थी इस तरह का। तो ये जो आप बात बता रहे हैं ये बिल्कुल सच है। मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए पेंटिंग को अगर कोई लेते हैं तो ये बहुत अच्छा दवा का काम करता है, और मेरे पास में कई लोग ऐसे हैं। अभी एक लेडी ऐसे हैं जिनका एक बेटा इंजीनियर है और बहुत ऊंचे पोस्ट पर है, अमेरिका में उनका पोस्टिंग है, अमेरिका में काम करते हैं, पैसा का कहीं अभाव नहीं है। ये दो बेटा है, एक बेटा पटना में डॉक्टर है, सोच लीजिए कि फाइनेंशियल कंडीशन कितना अच्छा रहा है उनका, लेकिन वो खुद पेंटिंग से उनको इतना लगाव है। दोनों बेटा अलग रहते हैं, उनका सारा परिवार अलग रहते हैं, लेकिन वो खुद पेंटिंग आज भी करती हैं। 72 साल, 72 ईयर्स हो गया उनका एज, फिर भी वो इस काम को करती है। ऐसे बहुत सारे महिला मेरे पास है, आज भी मेरे पास बहुत सारे महिला आते हैं और इस काम को करते हैं सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए वो लोग इस काम को करते हैं, और ये काम बिल्कुल सही है। और हम भी इस चीज को फील करते हैं जितना हम पेंटिंग करते हैं। अभी मेरा एज 71 हो गया और अभी भी हम जब काम करते हैं तो लगता है कि बिल्कुल मतलब मेंटल पीस जो होता है वो आ गया है, और काम करते हैं तो बड़ा एनर्जी मिलता है। और जब गांव के औरत लोग या जो लड़की लोग काम करती है इतना जोर शोर से इतना लगन से काम करती है तो मेरा जो उत्साह है वो दोगुना हो जाता है और काम में बड़ा मन लग। और ये बिल्कुल सही आप बोले हैं कि सिर्फ अर्न करने के लिए नहीं बल्कि मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए इसका जो पेंटिंग का यूज है बहुत लोग करते हैं और करना भी चाहिए।
1: जी, कला जो है वो मन को और दिल को जो है साफ रखने में बड़ा मदद करता है। आपके जीवन में, क्योंकि आपने बताया कि बचपन से आपको बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा और आपने बहुत कठिनाइयों को देखा, तो उस समय कला ने आपको बहुत साहस दिया लेकिन साथ में बहुत सुख भी दिया। आज के युग में जहाँ पर हर एक के हाथ में मोबाइल है और लोग AI की मदद से बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चित्रों का निर्माण कर लेते हैं कुछ पलों में, लोग कहीं ना कहीं इसको भूलते जा रहे हैं कि ये हाथ का जो काम है या जो कला है इसको करने से मुझे कितना सुकून मिलने वाला है। लोग जल्दबाजी में AI की मदद से कुछ ना कुछ बना लेते हैं, लेकिन इससे जो सुकून मिलेगा, जो एक हीलिंग होगा, जो मानसिक शांति मिलेगी, उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। इसके लिए आप क्या कहते हैं कि आज के पीढ़ी को या जो भी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसे आप इस समस्या का समाधान करेंगे?
0: ये अभी हम आपको बता रहे थे कि बचपन में जो मेरा फीलिंग था, गांव के एरिया में रहते थे, बहुत अच्छा अच्छा यादगार है मेरे पास में। अब उस चीज को जब हम ड्राइंग करते हैं, जब भी कुछ बनाते हैं, हम किसी AI का मदद नहीं लेते हैं उसका, ठीक है आप सुंदर दिखाने के लिए, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि किसी चीज का मदद अगर लेंगे तो अपना खुद का जो क्रिएशन है वो होगा ही नहीं। हम खुद जो जिस चीज को फील कर रहे हैं उसको ड्रॉ करेंगे तो उसका मजा अलग है, उसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग किस्म का वो फील करेंगे हम, और बहुत अच्छा लगता है वो फीलिंग। हम बचपन का जो याद है, सुनहरा जो याद है, उसको याद करते हैं, फिर उसी चीज को ड्रॉ करते हैं तो लगता है कि उसी जगह हम पहुंच गए हैं, वही बचपन में पहुंच गए। तो सोच लीजिए कितना मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता होगा हमको और कितना अच्छा लगता होगा, सारा चीज भूल जाते हैं उस वक्त और हम काम करते हैं। और मेरे साथ में हम जिस ढंग से अपने काम को करते हैं उसी ढंग से बाकी लोगों को ही बताते हैं, उनके बीच में भी जब हम बैठते हैं, 25 लड़की अगर एक जगह होती है तो हल्ला गुल्ला होता ही है, लेकिन जब हम ड्राइंग करना चालू करते हैं और हम बताना चालू करते थे, एक शब्द कोई नहीं बोलती। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, अगर लोग पसंद कर रहे हैं, लोग आनंद ले रहे हैं, तभी तो ऐसा होता है। तो उस चीज को
1: कहते हैं ना कि रियल सुख जो है, आनंद जो है, किसी को पता करना हो तो किसी गूंगे से पूछो जो मीठा खा रहा हो, क्योंकि वो इतने शांति में अपने आनंद का अनुभव करेगा जो सामने वाले को नहीं पता। और 25 लोग जो है बैठ करके काम कर रहे हैं लेकिन एकदम डीप साइलेंस है, शांति है, सब समझ में आ रहा है कि वो कितनी तन्मयता से कर रहे हैं, उनका मन एकदम रम चुका है उसमें। और जो कोलाहल है बाहर का, जो शोर शराबा है, चाहे संकल्पों का या बाहरी मुद्दों का, वो खत्म हो जाता है। लेकिन आपने जो एक बात कही कि जो मैं अपने मन से सोच करके बनाऊं उसमें मेरी आत्मनिर्भरता बढ़ती है, दूसरी चीजों पे जब हम निर्भर होते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो गया या कोई सॉफ्टवेयर हो गया, तो उससे हमारी रचनात्मकता में थोड़ी कमी आती है। लेकिन कई लोग जो हैं इससे डरते हैं कि भाई मेरे से गलती हो जाएगा, मुझे सुंदर ही बनाना है, इसलिए लोग मतलब आधार लेते हैं दूसरी चीजों का। ये डर को कैसे खत्म करें कि भले गलती हो करो, क्योंकि एक चीज मुझे जो समझ में आई आपके कहानी से समझ में आया कि लोक कला जो है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, आप थोड़ा बहुत गलती करते हैं, थोड़ा सिंपलर हैं स्ट्रक्चर्स, हाथ जो है हाथ जैसे नहीं बनना चाहिए, हाथ थोड़ा सिंपल बन सकता है तो गलती जो है वहां सुंदर लगता है। गलती करने से डर जो लग रहा है लोगों को, वो शुरू भी नहीं करना चाहते, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक शिक्षक भी हैं, शिक्षक के नाते और एक कलाकार के नाते, मैं समझ लीजिए मैं बिल्कुल नया हूं और मुझे ड्रॉइंग करने से बड़ा ही डर लगता है, मुझे लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे, तो आप मुझे क्या कहेंगे, कैसे आप मुझे इस डर से और इस हिचक से बाहर लाएंगे?
0: एकदम, यही तो कारण है जैसे मेरे साथ इतने लोग जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोग हम जो शिक्षा दे रहे हैं, जिस ढंग से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो लोग पसंद कर रहे हैं। उनके मन से सबसे पहला जो चीज होता है उनके मन से डर निकालना, मेरा सबसे पहला काम ये होता है। फोक आर्ट में कोई नियम नहीं है, मेरे अंदर जो है, हम अपना फीलिंग को जिस ढंग से बताना चाहते हैं बता सकते हैं। वो फॉर्मूला जो रियलिस्टिक पेंटिंग का जो फॉर्मूला है उसका, वो फॉर्मूला इस पर लागू नहीं होता है। रियलिस्टिक पेंटिंग में क्या होगा, कहीं उंगली जैसा रियल में होता है वैसा होना चाहिए, लेकिन फोक आर्ट में जरूरी नहीं। हमको पता चलना चाहिए हाथ है, हाथ में उंगली है और बॉडी ऐसा है। सिर्फ हमको बॉडी का, चूंकि टिकुली पेंटिंग में बॉडी का जो प्रोपोर्शन है उसको मेंटेन करते हैं, लेकिन वैसा नहीं जो फाइन आर्ट में होता है, बहुत बारीक काम में जो होता है लोग क्या कहेंगे ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जो आर्ट लवर है वो जानते हैं कि इसमें मेहनत है और जो हम बताना चाहते हैं उस क्लियर में फोटो में बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, बस उतना ही से वो लोग खुश होते हैं जो आर्ट लवर होते हैं। और इसलिए जो औरत लोग बनाती है निश्चिंत होकर बनाती है कि वो जानती है कि अगर हम गलत करेंगे तो भी इसमें गलती को नहीं काउंट किया जाएगा, और उनके मन से डर निकल जाता है तो और सुंदर बनाती है, और अपने मन से क्रिएट भी करते हैं वो लोग। बहुत अच्छा अच्छा चीज बनाते हैं जो हम सोचे भी नहीं थे, अचानक से हम देखते हैं अरे ये लड़की या ये औरत ये बनाकर लाई, बोले कि देखिए हमको ऐसा लगा हम ऐसा बनाए, देखते हैं बहुत सुंदर क्रिएट करते हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह गाइडेंस का जरूरत हो उनको, अगर हम गाइड नहीं भी करते हैं तो बाद में ऐसा होता है वो लोग खुद से इतना अच्छा बनाने लगती है। तो ये गजब का एक समझ लीजिए कि एक सफलता कहिए कि लोगों को हम इस ढंग से गाइड कर पाए कि सबसे पहला उनके मन से डर हटाएं, डर हटाने के बाद उनके हाथ पर कैसे कंट्रोल आएगा, कैसे अच्छा पेंटिंग जब बनाएंगे, यूटिलिटी आइटम जब बनाएंगे तो ऐसा भी होना चाहिए कि सेल हो मार्केट में, उसका खूबसूरती भी हमको बजाय रखना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि हमको ऐसा चीज बनाना होगा ताकि देखने में खराब नहीं हो और कस्टमर जब खरीदे तो सोचे कि हाँ कोई चीज हम अच्छा चीज लेकर जा रहे हैं। तो इस ढंग से हम उनको सिखाते हैं, और गांव के औरत लोगों को सिखाने में मजा इसलिए आता है कि पहले खूब डरती है, शुरू में खूब डरती है, बोलती है कि बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं लोग क्या कहेंगे। हम बोले कि आप बनाइए जो होगा देखा जाएगा, आप बना कर दीजिए हमको। और जब गलत करके ले आते हैं उनके सामने हम ठीक करते हैं, और उनको उनको हम ये भी बताते हैं कि बिल्कुल सही है आप जिस ढंग से किए हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और हाथ ठीक हो जाए। कभी किसी से गलती होता है तो कभी हम डांटते नहीं है, हम उनको समझाते हैं और समझा कर बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए तो और सुंदर हो जाएगा, सुंदर बनाएगा तो ज्यादा सेल होगा तो ज्यादा अर्न कर पाएगा। उनको मोटिवेट करना पड़ता है, मोटिवेट करने के बाद आराम से करने लगती है। हजारों महिला मेरे पास आए और बहुत खुश होकर वो लोग इस काम को कर रहे हैं, आज भी इस काम को कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, और साथ साथ खाली सिर्फ वो महिला ही नहीं, महिला के परिवार के सभी सदस्य, मेल जो मेंबर हैं, मेल मेंबर लोग जल्दी इस काम को नहीं करना चाहते क्योंकि उनका उनके पास अलग जिम्मेवारी है, अब उनका रोजी रोटी अलग है, अर्न करना पड़ता है। और अगर मान ली गाँव में कोई औरत घर में बैठकर काम कर रही है, गांव में औरत लोगों को बाहर निकलने का परमिशन नहीं रहता है, घर में बैठकर काम कर रही है, छोटा अमाउंट भी अगर अर्न कर रही है तो उनको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हम कुछ तो अर्न कर रहे हैं, घर में बैठकर के अपने बलबूते पर काम करके अर्न कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है हमको और उनको भी मिलता है जो इस काम को कर रहे हैं, और समाज में उनका लेवल कुछ अलग हो जाता है, उनको बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है।
1: इसी सम्मान की नजर से लोग आपको भी देखते हैं क्योंकि आप एक शिक्षक के रूप में नहीं सिखा रहे, आप एक पिता रूप में उनको पालना दे रहे हैं, क्योंकि जैसे एक गुड पेरेंट होता है, गुड पेरेंटिंग स्किल्स में गलत आपको बताना है लेकिन बहुत प्यार से बताना है, और आपने जैसे अभी समझाया कि गलत नहीं किया है आपने, बहुत अच्छा बनाया है इसमें थोड़ा और, तो मुझे दिखता है कि आप उनको एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और इस वजह से वो खुशी खुशी सीखते भी हैं। मुझे आपसे जानना है कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं, लेकिन आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जो आपने आज तक ड्रॉ किया है या ड्रॉ करना पसंद करते हैं?
0: अभी जैसे हम अभी राधा कृष्ण का जीवनी बनाए थे, कृष्ण जी का जीवनी बनाए थे, जो कि बिहार म्यूजियम में 12 फीट बाई 4 फीट का एक पेंटिंग है, वो बिहार म्यूजियम में लगा हुआ है, पूरे वर्ल्ड के लोग उसको देखते हैं, आकर देखते हैं, काफी अप्रिसिएट करते हैं। नीतीश कुमार हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी हमसे बोले कि मेरे चैम्बर के लिए एक पेंटिंग बनाइए, तो उसी पेंटिंग का जो बना हुआ है उसी का छोटा रूप उनके चैम्बर में बनाकर दिए, और ये बहुत अच्छा हमको लगता है कि कृष्ण जी का जीवनी को पहले स्टडी करना पड़ा, उसके बाद उनके जीवन का मेन घटना है वो हुआ। इसके अलावा हम अपना संस्कृति में जो भी चीज आता है बहुत अच्छा लगता है बनाने में, अभी गाँव का दृश्य हम जब बनाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, कारण ये है कि गाँव मेरा छूट गया है, बचपन में गांव के एरिया में रहते थे, जो भी एक्टिविटी होता था गांव के लोग जो काम करते थे उस चीज को हम छोड़ दिए हैं, शहर में आ गए, तो वो संभव नहीं है कि उस माहौल में फिर से जाएं। लेकिन जब हम पेंटिंग करते हैं तो लगता है कि उसी माहौल में हम चले गए हैं, उसी बचपन में हम जी रहे हैं, ऐसा फील होता है। तो बहुत अच्छा लगता है गाँव का सीन बनाना, हर एक्टिविटी को, गाँव का जितना भी एक्टिविटी है वो सारा चीज को बनाने में बहुत मजा आता है। साथ में हम लोग जो पर्व त्योहार मनाते थे, हमारे यहाँ छठ होता है, बिहार में छठ होता है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। इंडिया में दूसरा कोई स्टेट में इतना बड़ा पर्व नहीं मनाया जाता है जितना बड़ा पर्व छठ में मनाते हैं। हम खुद भी, हमारे घर में छठ मनाया जाता था और वाइफ करती थी, करीब 18 साल लगातार छठ की उपवास रहती थी, चूंकि डायबिटिक हो गई इसलिए छोड़ना पड़ा हम लोगों को, लेकिन अभी भी छठ पर्व जब होता है तो उसमें हम लोग जाते हैं और सारा चीज को मानते हैं। तो ये छठ का जो पर्व है उसको बनाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि हम खुद उस चीज में रहे हुए हैं और उसको इमेजिन करके जब हम बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा होली हो गया, होली में जिस ढंग से बचपन में हम लोग खेलते थे होली, उस चीज को हम बनाते हैं। और साथ साथ हमारा जो शादी भी, क्योंकि शादी ब्याह में हम लगातार रेगुलर जाते रहे हैं और कोई बुलाते हैं तो जाते हैं, तो शादी ब्याह किस ढंग से होता है, वहाँ हम लोग का जो रीति रिवाज जो है वो किस ढंग से होता है, ये सारा सामने देखते हैं और उसी चीज को हम बनाते हैं। और ये बनाने में बहुत मजा आता है, बहुत मतलब मन लगाकर हम बनाते हैं इस चीज को। और हमारा जो संस्कृति, हमारा संस्कृति में तो सारा चीज आ गया, डेली जीवन आ गया, हमारा पर्व त्योहार आ गया, हमारा रहन सहन हो गया, हमारा रीति रिवाज हो गया शादी ब्याह का, हमारा हमारा धर्म हो गया, कृष्ण का जीवन है ये, तो ये सारा चीज बनाने में बहुत बहुत मन लगता है हमको।
1: आपने लगभग सभी कुछ समेट लिया, लेकिन आपकी बातों से समझ में आता है कि कला जो है हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है, और वैसे ही रोजमर्रा का जीवन जो है वो भी कला को प्रभावित करता है। जैसे एक मंत्री रोज अपने चेंबर में एक कला को देख रहा है तो वो संस्कृति से आ रहा है, लेकिन वहीं पर जो रोज हम पूजा पाठ कर रहे हैं या बाजार जा रहे हैं या कोई भी जो दिनचर्या की बात है वो जब कला के रूप में आ जाती है तो वो भी कला को प्रभावित कर रही है। तो हम जिस तरीके से जीते हैं वो कला पर एक डायरेक्ट प्रभाव छोड़ता है। आज के समय में आपने लगभग 50 साल से भी ज्यादा इस कला के साथ आप जुड़े हुए हैं, और इस 50 साल में आपने बहुत सारा समाज में बदलाव देखा है, प्रत्येक स्तर पे जीवन का बदलाव देखा है, मूल्यों में उतार चढ़ाव देखा है। एक टाइम देखा जब फोन घुमाने वाला फोन हुआ करता था, उसके पहले का टाइम भी था जब फोन नहीं था, फिर अब मोबाइल आ गया और अभी क्या आ गया और क्या आ गया। तो ये जो चेंजेस आए, परिवर्तन आया, इस परिवर्तन के दौरान आपने टिकिलू कला में क्या क्या परिवर्तन देखा, या समाज का प्रभाव टिकिलू कला पे किस तरीके से पड़ा, कौन कौन से विषय नए आए इसमें?
0: सबसे पहला चीज है टिकुली पेंटिंग में, जैसे हम आज से 50 साल पहले जो पेंटिंग करते थे और उसमें काफी बदलाव आया है। पहले था कि टिकुली पेंटिंग का जो सब्जेक्ट था कुछ लिमिटेड था और फाइन आर्ट के तरफ ज्यादा लोग झुके हुए थे, उस तरह का काम ज्यादा करते थे, लेकिन हम फाइन आर्ट का जो काम था वो इसलिए हम नहीं करते हैं, इसलिए उसमें बदलाव लाए। शुरू शुरू जब हम फाइन आर्ट का काम लेकर जाते थे और फोक आर्ट का जो एक्चुअल जो एसेंस है जिस पेंटिंग में, उस पेंटिंग को लेकर जाते थे, तो आर्ट लवर जो मेरे आते थे जो एग्जीबिशन में देखने के लिए, उन लोगों का कहना था कि इस तरह का फाइन आर्ट का जो काम है बहुत बारीकी वाला काम है, ये काम तो सारा दुनिया में लोग कर ही रहे हैं, ये काम आप क्यों कर रहे हैं, आपका जो अपना स्टाइल है उसी को करिए, क्योंकि उसमें आपका खास टिकुली पेंटिंग का ही स्टाइल रहेगा, दूसरा कुछ उसमें नहीं रहेगा। तो हम सोचे कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, और हम क्या किए कि जो फाइन आर्ट का पोर्शन था वो हम हटाते गए, धीरे धीरे उसको हम हटाते गए और बिल्कुल फोक आर्ट का टच जिसमें है, जो टिकुली आर्ट का एक्चुअल जो स्टाइल है जिस चीज में था उसी चीज को कंटिन्यू रखे। और पहले था कि बड़ा एक पेंटिंग था, 1 फीट बाय 1 फीट का पेंटिंग जो होता था, पहले था कि 2 ही फिगर होता था, अभी उसमें करीब 12-13 फिगर हम डालते हैं। तो ये सारा चीज हमको सीखने को मिलता है जब एग्जीबिशन में जाते हैं, तो एग्जीबिशन में जाते हैं तो जो कस्टमर होते हैं हमको, चूंकि वो भी देखना जरूरी है, चूंकि रोजी रोटी देखना है, जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनका रोजी रोटी भी देखना है, और ये भी दिखाना है कि हमारा टिकुली पेंटिंग कितना खूबसूरत है, इसको आगे तक बढ़ाना है, इसके लिए सुंदर चीज बनाना भी पड़ेगा और साथ साथ सेल पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो डिजाइन हमको बनाना तभी पड़ेगा जैसा लोग पसंद करते हैं करने में।
1: मुझे ये जानने की उत्सुकता थी कि आप इस टिकुली कला के वजह से भारत के कई प्रांतों में गए हैं, केवल बिहार ही नहीं, आप कई प्रांतों में गए हैं, 6 देश 6 विदेश में 6 बार जा चुके हैं। तो 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जब आप विदेश जाते हैं और वहां की सभ्यता संस्कृति को देखते हैं और जब आप भारत में रहते हैं, तो ऐसा क्या आपको लगता है जो भारत को विशेष बनाता है बाकी देशों से?
0: देखिए, भारत का है कि हम अपने कला को इतना सिंपल वे में, बिल्कुल कला को जिस ढंग से हम लोग पेश करते हैं, हम लोग का रहन सहन भी वैसा ही है, बिल्कुल सिंपल। और एक दूसरे से हम लोग जिस ढंग से मिलते हैं है, और जिससे जो हम लोग मनोभाव रहता है एक दूसरे के प्रति, ये शायद हम शायद पता नहीं दूसरे जगह में कैसा है, और एक एक दूसरे के प्रति जो सिंपैथी जो रहता है, ये जो चीज है हम देखते हैं। हम अपने यहाँ बिहार में रह रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से देखते हैं लोग हमको सपोर्ट करते हैं, गांव में जाते हैं तो जिस हिसाब से हमको सम्मान देते हैं, ये हमको कहीं देखने को नहीं मिलता कि इतना सारा जो चीज है, इतना सबको मिल करके इतना जो सारा जो सम्मान हमको देते हैं और हमको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। भारत का सबसे खास बात यह है कि एक दूसरे के प्रति संवेदना और आगे बढ़ने में उसको मदद कर। देखिए, जब पद्मश्री मिला था तो मेरा भी यही कहना था कि पद्मश्री ये सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, मेरे पूरा टीम का है, पूरे गांव के लोगों के लिए पद्मश्री है, और ये कला जगत के लिए पद्मश्री है, ये सम्मान कला जगत के लिए है और हमारे सभी मेंबर के लिए सम्मान है। मेरा अकेला, हम तो अकेला हो गए, मेरा माध्यम मेरा रहा है, लेकिन ये सबका सम्मान।
1: जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि विदेश में जाकर के जो आप चीज भारत में देखते हैं वो ये है कि भारत का जो कला है उसके जीवन यापन के शैली को संबोधित करता है। भारत की कला में एक साधारणता है, एक सरलता है, वही सरलता आपको लोगों के जीवन में भी नजर आती है। साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने की जो भावना है, सद्भावना, संवेदना है, वो भारत को विशेष बनाती है। मेरा दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये था कि आप भारत में जब भ्रमण करते हैं और अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, बिहार से आप गुजरात गए, गुजरात से बंगाल गए, बंगाल से ओडिशा गए, ओडिशा से महाराष्ट्र गए, भारत के हर प्रांत की कहानी अलग है, हर प्रांत का भाव, स्वभाव, रंग, रूप, चाल ढाल थोड़ा थोड़ा अलग है और संस्कृति भी इतनी भिन्न भिन्न है, बट कोई एक चीज ऐसी जरूर है जो आपको हर जगह एक ही लगी, वो कौन सी चीज है? कौन सी वो एक चीज है जो भारत को जोड़े रखी है आपके अनुसार?
0: बिल्कुल एकदम सही बोले हैं, हम हर स्टेट में गए हैं, एक चीज एक जैसा लगा, इन लोगों का जो वेलकम करना, एक कलाकार को जो सम्मान देना, और जिस हिसाब से वो लोग आदर किए, सम्मान किए और हम लोगों का देखभाल किए, ये हर जगह हमको देखने को मिला है। जितना सम्मान हमको बिहार में मिला, कर्नाटक में भी वैसे मिला, बंगाल में गए वहां पर भी उतना ही सम्मान मिला, ये हम देखे कि इसमें कोई कमी नहीं। मेरा जो पोजीशन है, हर जगह हमको उतना सम्मान, उतना प्यार, उतना समझ लीजिए कि लोगों का जो कैसे मतलब को आगे बढ़ने दिया जाए, इनको आगे बढ़ने में कैसे मदद किया जाए, ये सारा चीज पूरे इंडिया में एक जैसा लग। वहाँ का भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, खान पीन अलग है, लेकिन अंदर का जो फीलिंग है वो एक जैसा है, कहीं पर कोई कमी नहीं लगा। पूरे इंडिया में हम गए हैं, हमको कहीं कोई कमी नहीं लगा। इंडिया का खासियत ये है, हमारे भारत का ये खासियत है कि जो भी जाते हैं अगर वो सम्मान करने लायक हैं तो उनको सम्मान करते हैं। कारण ये है कि उनके दिमाग में ये है कि इन्होंने समाज के लिए कुछ किया, गांव के लोगों के लिए कुछ किया, एम्प्लॉयमेंट जेनरेट किए। एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट देना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन आज भी हम गांव में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, ये चीज उनके दिमाग में रहता है। और हमको जैसा इज्जत मिलता है, हम शायद कभी इस बात को नहीं भूल पाएंगे कि कोई भी पर्टिकुलर कोई स्टेट में हमको इज्जत मिला, हर स्टेट में हमको समान ढंग से इज्जत किया जाता है, और ये हर आदमी के लिए वो इज्जत मिलता है जो अपने कर्तव्य का पालन किए हैं और अपना जो समाज के लिए कुछ किए हैं, तो उसको वो लोग सचमुच में इज्जत करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहता है।
1: ये आपने बहुत सुंदर बात बताई कि जो सम्मान है वो यथार्थ या उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाता है जिसने उसके लिए यथार्थ मेहनत की है, जो उसके लायक है, और ये सम्मान चाहे देश के आप किसी भी कोने में जाए बराबर मिलता ही है, और ये भारत को एक बनाता है कि एक कलाकार को और एक समाज सेवी को जिस तरीके से वो दिल से लगाते हैं वो हर प्रांत में हर जगह एक ही है। लेकिन आपने एक और बात कही कि कर्तव्य जो है वो हमारा बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे आपका काम, आप केवल खुद ही उस कला तक सीमित रख सकते थे, लेकिन आपने उसको और लोगों तक पहुंचाया, लोगों की आजीविका से जोड़ा, जाते जाते मैं आपसे एक रैपिड राउंड खेलना चाहूंगा, जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आपको एक शब्द में या एक वाक्य में देना होगा, ठीक है?
0: ठीक है
1: जी, तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, कला क्या है?
0: अपना फीलिंग है, अंदर का, दिल का जो फीलिंग है वही है।
1: बहुत सुंदर, अंदर की भावना ही कला है। दूसरा सवाल, कलाकार कौन है?
0: कलाकार जो क्रिएट करे, जो अपने नेचर का जो चीज है उसको क्रिएट करे, क्रिएट करके दूसरे के मन को शांति दे, यार वही।
1: सच्चा कलाकार वो जो अपने कृति से दूसरे के मन को शांति पहुंचा सके, बहुत सुंदर। देश क्या है?
0: हमारा देश तो समझ लीजिए कि कलाकारों का एक झुंड कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो दूसरे के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो ऑनेस्ट है और अपने काम के प्रति लगनशील है, और समाज के प्रति उनका जो जो उनका जो कर्तव्य है उसको पूरा पालन कर रहे हैं। तो हम अपने देश पर गर्व करते हैं, और हमारा जो कलाकार वर्ग है उनके प्रति मेरा गर्व है।
1: भारत क्या है आपके लिए?
0: सब कुछ है। अगर हमको कोई कहेगा कि विदेश में जाकर रहें तो हम नहीं रहेंगे, हम भारत में ही रहना चाहेंगे और यहीं अपने जन्म में रहना चाहेंगे।
1: जी, तो भारत आपके लिए सब कुछ है। आखिरी सवाल, अशोक विश्वास कौन है?
0: बस एक सेवक कही, एक समाज को जिनको आवश्यकता है, जिनको जरूरत है, उन लोगों को अगर सेवा करते हैं तो हम सबसे बड़ा हमको संतुष्टि मिलेगा, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही हम काम करते हैं जिससे लोगों को हम सेवा कर सके। हमको ये मौका मिला है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात रहा है कि टिपुली पेंटिंग को रिवाइव करने का मौका मिला, इसको आगे बढ़ाने का मौका मिला, इस कला के द्वारा लोगों को हम मदद कर पा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। यही हम अपना चाहते हैं कि मेरा पहचान है।
1: आप बहुत ही विनम्रता के साथ आपने जवाब दिया कि आप एक सेवक हैं, लेकिन हमारे श्रोता साथियों ने जरूर सुना है और आपकी कहानी से उन्होंने सीखा है कि आप एक सेवक के साथ साथ एक शिक्षक हैं, एक पिता के समान पालक भी हैं और एक कलाकार हैं। आपके बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन आपने जो चुना वो सेवक का चुना, ये आपकी नम्रता को दर्शाता है। लेकिन आपने कहा ये आपका सौभाग्य है कि आप सेवा कर पाते हैं समाज की, ये हमारा सौभाग्य है, रेडियो मधुबन का और रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं का सौभाग्य है कि आपने हमें समय दिया और आज आप हमारे स्टूडियो में आए। यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक एपिसोड को आपने अपनी कला से सजा दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको इस तरह का मौका दिए लोगों के बीच में अपना बात रखने का, तो इसके लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब आपका दौरा राजस्थान की तरफ हो तो आप जरूर माउंट आबू आए, और कभी हमारे यहाँ के जो रेडियो के श्रोता साथी हैं, जो हमारे गांव-गांव में दूर दूर में माताएं बहनें और भाई सभी हैं, उनको भी कभी आप टिकली कला सिखाएं और वो सीखे भी और आपसे सुख भी ले और आपको भी सेवा का मौका दे और आप भी हमें सेवा का मौका जरूर दे।
0: हम तो बहुत इंतजार करेंगे कि कभी आपको मौका मिले और वहां जाएं, बहुत मन है। अभी माउंट अभी गए नहीं है, हम घूमना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर कहीं मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे।
1: जी बिल्कुल, और हमारे श्रोता साथियों को भी इंतजार रहेगा। आज के एपिसोड के लिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से समाज की सेवा करते रहें और ईश्वर आपको स्वस्थ, सुखी और ऐसे संपन्न रखे कि आप औरों का भी सेवा करते रहें जैसा आप आज तक करते आए हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
1: दोस्तों, कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि रेडियो केवल सुन करके दिल बहलाने का जरिया नहीं, लेकिन अपने को बहुत भाग्यवान समझने का भी जरिया बना देता है। यशस्वी भारत के हमारे हर मेहमान से जब हम मिलते हैं तो हमें ऐसा ही महसूस होता है कि इनसे मिलकर के जैसे जीवन और ज़्यादा धनवान बन गया है, जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज के हमारे मेहमान अशोक कुमार बिस्वास जी से हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सीखी वो थी कि व्यक्ति को अपने ऊपर निश्चय होना चाहिए, अपने कला पर निश्चय होना चाहिए, और जो भी हुनर, चाहे कला हो, चाहे संगीत हो, चाहे खेल कूद व्यायाम पढ़ाई लिखाई, जो भी विधा में आपको लगता है कि आप उस विधा में बहुत अच्छे हैं या कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और फिर धीरे धीरे आपको मदद मिलती रहेगी। लेकिन जो मुझे सबसे खास बात लगी उनकी कहानी की वो ये थी कि उन्होंने उस कला को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा लेकिन आगे बढ़ाया। और वो हमेशा ये मानते हैं कि जिनकी वजह से इस कला को मान मिला है वो माताएं, बहनें, महिलाएं जिनकी वजह से इस कला को आज दुनिया जान रही है उनका वो सम्मान कभी नहीं भूलते। अपने साथ चल रहे लोगों को याद रखना हमारी महानता है और अपने साथ उन लोगों को लेकर के आगे बढ़ाना, अपने साथ साथ उनको भी आगे बढ़ाना, यही काबिलियत है इस रत्न में जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। दोस्तों ऐसे ही और रत्नों से हम मिलेंगे हमारे आने वाले कड़ियों में। आपका इंतज़ार रहेगा, आपको मेरे जैसे ही हमारे नए अतिथि का इंतज़ार रहेगा, मेरे जैसे आपको भी हमारे नए मेहमान का इंतज़ार रहेगा। जानेंगे अगले एपिसोड में कौन होंगे हमारे अगले मेहमान। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, रेडियो मधुबन के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।
2: आवश्यक सूचना। 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबू राज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: रन रन रन,
4: दौड़ो दौड़ो दौड़ो।
3: आओ दोस्तों दौड़ लगाते हैं 9 अगस्त को
4: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन।
3: जी हाँ, इसका थीम है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। संडे अगस्त 9 को ये मैराथन शुरू होने वाला है
4: सुबह 5 बजे।
3: तो आप सभी का इस मैराथन में भरपूर स्वागत है और आप सभी इस मैराथन में भाग लेकर रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जरूर बढ़ाइए। जी हाँ, इस भाईचारे को दुनिया भर में जरूर फैलाइए। इस मैराथन में भाग लीजिए और खुशियाँ दुनिया भर में बांटिए।
4: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन।
2: आवश्यक सूचना। 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबू राज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई।
1: नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। संगीत एक प्राथमिक रूप कला विद्या है। कोई भी शिक्षा मनुष्य को ऐसी जगह स्टेबल करती है जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। सभी कलाओं में संगीत शिक्षा का भी एक वैशिष्ट स्थान है, क्योंकि संगीत है ही नृत्य वाद्य गीत का सम्मिलित रूप, जिसमें कंठ संगीत की प्राधान्यता अधिक है। समस्त कलाओं में से निसंदेह हम कह सकते हैं कि संगीत ही सर्वश्रेष्ठ कला है। तो आइए, संगीत की महिमा के बारे में और जानने के लिए हर बार की तरह मौजूद है हमारे साथ श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं भी सबको नमस्कार करती हूँ।
0: श्यामली जी, आज आप कौन सा नया राग लेकर आए हैं?
1: हाँ, आपने अभी बताया कि संगीत ऐसे जगह ले लिया है, तो बहुत सुंदर एक राग मालकोस बहुत अच्छा। सुंदर, ये सुनने के बाद सबको पता लग जाएगा कि क्यों संगीत एक विशिष्ट स्थान है।
0: अच्छा,
1: पहले हम क्या करेंगे, मालकोस शुरू करने के पहले मैं थोड़ा इस बारे में दो लाइन लता जी का कंपोजिशन है,
0: अच्छा,
1: सुनाना चाहती हूँ।
0: मतलब दो लाइन सुना के फिर आप सिखाएंगे। हाँ, तो इसके पीछे क्या आप कहना चाहेंगे?
1: सुनने के बाद संगीत जो प्रेमी होता है, जो संगीत सीख रहे हैं, प्यार करते हैं
0: जी, तो संगीत को प्यार करने वाले
1: माल को सुनने के बाद तो जरूर करेंगे।
0: अच्छा, ऐसा राग है?
1: ऐसे राग है
0: जी।

0: अपने मालकोस की पहचान के लिए।
1: हाँ जी, इसमें इतना सुंदर मालकोस की जपी छवि जो है, ये जो राग वैरवी ठाट के अंतर्गत है, तो गा धानी कोमल है।
0: अच्छा,
1: सबसे बड़ी खूबसूरती है इसमें पा नहीं है।
0: ओके,
1: जैसे हर जगह में पा सहजता से यूज होता है, लेकिन कोई कोई राग में पा यूज नहीं होता है। उसमें क्या होता है, ज्यादा माँ की वाइटलिटी ज्यादा हो जाता है, इसलिए जब वो करते हैं तो माँ को पकड़ के करते हैं।
0: अच्छा,
1: सा मा सा, जैसे हम तानपुरा में लगाएंगे सा मा सा, ये स्वर लगाएंगे, पा नहीं लगाएंगे। तो पा बिना ये राग है।
0: ओके,
1: तो पा बिना राग तो और भी खूबसूरती है। ऐसे पा तो वाइटल स्वर है, लेकिन अगर पा नहीं है, माँ है, तो कुछ तो है ही बात है। तो पहले बताया कि ये जो ठाट है भैरवी ठाट है, गाधानी कोमल है, बाकी समस्त सर शुद्ध है, रे और पा वर्जित है। इसमें रे और पा नहीं होता है। जाति जो है औरब औरब, मतलब सा गा मा धा नी, खाली ये पांच स्वर की यूज होता है।
0: अच्छा,
1: बाकी रे और पा वर्जित है। वादी स्वर है मा, समवादी है सा, और समय जो है रात्रि तीसरा प्रहर है, मतलब 12 से 3 में।
0: अच्छा,
1: मध्य रात्रि का कोई कोई गीत होता है ना, शाम को राग होता है, लेकिन ये जो राग है मध्य रात्रि का है। इतना सुंदर कोई कोई है होता है ना कि नींद नहीं आ रहे हैं, अगर मालकोस या दरबारी का नरा ये राग सुनेंगे तो जरूर नींद आ जाएंगे। ये बीमारी की दवाई है,
0: स्लीपिंग पिल्स लेने की जरूरत
1: नहीं। ये संगीत भी एक दवाई जैसे है ना, तो मालकोस तो जरूर,
0: और साइड इफेक्ट भी नहीं होगी, क्योंकि ये सारी स्लीपिंग पिल्स का तो कोई भरोसा नहीं है, एलोपैथी जो दवाइयां होती है।
1: तो मैं क्या करती हूँ, इसको आरोहण अवरोहण और पकड़ सुनाती हूँ। ओके, ये जो राग है थोड़ा इसमें गुरुमुख विद्या है, शिक्षा तो जरूर लेना है, क्योंकि कैसे इसको, इसका जो चलन है, गुरु कैसे उसको उच्चारण करते हैं, होता है ना चलन होता है ना, सा गा मा धा नी, कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं
0: जी,
1: सुनना है सीखना है। ठीक है।

0: हमने क्या की, जो अगर नी होता है को सा को कण करके थोड़ा स्पर्श करके, धा बोल रहे है तो नी को थोड़ा स्पर्श करके, माँ बोल रहे है तो नी को स्पर्श करके हम बोल रहे हैं।
1: अच्छा,
0: ऐसे अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो इतना जल्दी तो नहीं होता है, इसलिए शिक्षा लेना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया। तो अभी क्या करेंगे, आज मालकस राग। मैं क्या करती हूँ, ये थोड़ा कठिन राग है, तो मैं सहजता से सिखाऊंगी,
1: क्योंकि जैसे आपने शुरू किया,
0: हाँ जी,
1: गीत भी शुरू किया उसके हाँ, पहले जो आपने सुर छेड़े,
0: हाँ हाँ,
1: वो थोड़ी फ्लक्चुएशन मेरे को ज्यादा लगी।
0: हाँ हाँ,
1: तो मेरे को पहले ही लगा कि ये राग तो, थोड़ा हाँ, डिफिकल्ट है,
0: इसलिए मैं एकदम सहजता से सिखाऊंगी।
1: जी जी,
0: जैसे लिसनर उठा सकते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: तो अगर स्वरलिपि है लिख लेते हैं तो अच्छा है। स्थाई अंतरा दे देती हूँ।
1: श्यामली जी, स्वरलिपि हम जरूर लिखेंगे भी सुनेंगे भी, मगर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हम सुनते हैं मालकोस राग से संबंधित एक मीठा सा गीत। हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हम शामली जी को स्वर लिपि लेते लेते ही रोक दिया और आपको बहुत प्यारा सा गीत भी सुनाया। अब हम आगे मालकोस राग की स्वर लिपि सुनेंगे।
1: इसमें याद रखना है कि गा धा नी कोमल है
0: जी,
1: ठीक है। तो पहले स्थाई शुरू करते हैं, एक तल की है, 48 मात्रा की है। जैसे हमने पहले बताया कि विलंबित बड़ा ख्याल जो होता है, ताल जो होता है, एक तल की होता है, 48 मात्रा की होता है। तो मुकरा जो है गा सा नी सा गा, इसमें नी जो है नीचे मंद्र स्वर की है, बाकी कोमलते है ये। गा सा नी सा गा मा, मा के ऊपर श्रम है। मा आ गा सा नी ई, ये जो नी है मंद्र स्वर की है। नी ई सा आ धा आ नी ई, ये जो है सब मंद्र स्वर की है। उसके बाद सा आ गा आ मा आ गा आ मा आ धा आ नी ई धा आ मा आ मा आ धा आ नी धा मा आ आ आ गा आ सा नी सा, ये जो नी है मंद्र स्वर की है। तो अंतरा भी दे देती हूँ, एक साथ कर दूंगी, ठीक है। अंतरा भी स्वलिपि है गा मा धा नी, सब मध्य स्वर की है। इसके पर सा, सा जो है उसमें सौम है, चार मात्रा मुकरा है। गा मा धा नी सा आ आ आ नी ई सा आ, ये जो सा है सब तार स्वर है। गा आ नी सा, गा है तार स्वर किया है। धा नी सा सा तार स्वर की है। गा मा आ मा तार स्वर की है। गा आ सा आ तार स्वर है। नी ई धा आ मा आ धा आ नी ई धा आ मा आ गा मा गा आ सा नी सा। मैं जैसे जैसे करके जाती हूँ, मैं तो फिर से करती हूँ, तो आगा लिसनर इसके साथ मिला लेते हैं, लिसनर जो किताब में लिखा है स्वर लिपि, तो अच्छा है। मैं करके सुनाती हूँ, ठीक है।

0: ये जी हमने सिखाया है
1: जी।
0: तो अगर लिसनर आसक्त करते हैं तो बहुत अच्छा है, तो उसके बाद जब हम बंदिश देंगे सहजता से वो अपना सकते हैं।
1: जी जी।
0: तो अगर ये गिनती करेंगे तो 48 मात्रा ही होंगे।
1: ओके।
0: स्थाई 48 मात्रा है, अंतरा भी 48 मात्रा है।
1: अच्छा श्यामली जी, आज आप जाते जाते हमको क्या सुनाने वाले हैं?
0: आज एक बहुत सुंदर फिल्म है, पुरानी फिल्म उस्तादों के उस्ताद रफी साहब ने ये गाए हैं।
1: अच्छा
0: मैं कोशिश कर सकती हूँ, थोड़ा मालकोस भी है, थोड़ा सा मिश्र है भी, लेकिन मालकोस के ऊपर ही है
1: मैक्सिमम। मालकोस?
0: हाँ, मालकोस के ऊपर है। सुनेंगे तो आप ही सोचोगे अरे ये गाना मालकोस के ऊपर है।
1: अच्छा।
0: बहुत सुंदर गाए। 100 बार जन्म लेंगे,

0: बहुत सुंदर। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे इस गीत का भी अर्थ है कि 100 बार हम जन्म लेंगे, ऐसे कितने ऐसे हमारे बहुत फेमस सिंगर्स,
1: हाँ जी,
0: संगीतकार या उस्ताद कहूँ, ये होकर गए हैं। आज भी उनकी याद हमारे दिलों में ताजा है, भले उन्होंने मैं बहुत वर्ष हो गए, मगर फिर भी आज उनका गीत संगीत सुनते ही वो यादें, वो बातें सब ताजा हो जाती हैं।
1: एकदम आपने सही बोला है कि रफी साहब जी अभी नहीं हैं, लेकिन मैं उनको याद अभी भी करती हूँ। इनका वॉइस इतना मीठा है
0: जी, जी।
1: उन्होंने इतना अच्छा निभाया, मैं तो कोशिश किया है
0: जी।
1: मैं सोचती हूँ कि अभी मैं अपने वॉइस में ये गाकर सुनाऊ, अर्पण करती हूँ
0: जी।
1: तो रफी साहब जी इतना अच्छा निभाया है मालकुस के ऊपर, बहुत सुंदर। ये बीच में जो आपने गीत सुना है मन तर पते हरि दर्शन, वो भी रफी साहब ने जी गाए हैं, वेजवाड़ा में इतना सुंदर निभाए हैं,
0: ब्रेक सॉन्ग जो हमने सुनाया वो सुना, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। श्यामली जी, इसी के साथ समय देता है हमको इजाजत, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत विषय में, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखें, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

0: अगर आप किसी से रास्ता पूछें और वो गलत बता दे तो कितना घूम जाते हैं, है ना? समझ ही नहीं आता कि थोड़ा और आगे देख लिया जाए या फिर पीछे से टर्न लिया जाए। बस राठौड़ परिवार में अभी कुछ वैसा ही माहौल है। सब ने कड़वी बातें बोल तो दी हैं और घर के बड़े यानी भगवत सिंह राठौड़ जी ने निर्देश दिया कि पहले होगी पेट पूजा, फिर होगा काम दूजा, यानी लड़ाई को टेम्पररी रूप से स्थगित कर दिया गया है। अब ब्रेक के बाद आग और भड़केगी या फिर शांत होगी, चलिए देखते हैं।
1: जमाई सा, नाश्ता शुरू कीजिए।
2: माँ साहब, मैं बस आता हूँ, आप लोग शुरू कीजिए।
1: लेकिन जमाई सा, आप कुछ तो खाइए फिर चले जाइएगा।
2: नहीं, मैं अभी बाद में लेता हूँ।
3: अरे आपके पास कौन सा काम है फला जमाई साहब?
4: इधर की बात उधर करने से तो अच्छा है इंसान कोई काम ना करे।
3: क्या कहा आपने, क्या कहा आपने? मैं क्या कुछ नहीं करती इस घर में? हाँ, आपको क्या पता, नाश्ता करके निकल जाएंगे अपने काम पे। इस घर में मैं ना हूँ तो कोई काम ना हो ठीक से। क्या हुआ देवर जी, कोई प्रॉब्लम है का?
5: नहीं तो बड़ी भाभी, बस गले की खराश थी।
3: तो पानी पी लीजिए, नहीं तो राजकुमारी से कह के काढ़ा बनवा दे।
6: हाँ हाँ देवर जी, अभी बना लाती हूँ मैं। थोड़ा सा करेला, थोड़ा सामने वाले पेड़ की छाल और हरे नीम के पत्ते के साथ बस दो बूंद गरम घी।
5: नहीं मतलब नहीं, जरूरत नहीं है भाभी, मैं एकदम ठीक हूँ। देखिए, गा के सुनो।
7: नहीं।
4: किशन, माना तुम कविता लिख लेते हो, पर तुमसे अच्छा मेरा पुराना टेप रिकॉर्डर गाता है।
5: क्या बड़े भैया, आप भी। वैसे आपका वो पुराना टेप रिकॉर्डर तो खराब हो गया था ना, उसमें तो एई एई की आवाज आ रही थी।
3: पुराना टेप रिकॉर्डर आपने तो उसे कबाड़ी वाले को दे दिया था ना, जिसका मोल बड़ा कम लगाया था उस नालायक ने।
4: वो मतलब, अरे क्या मेरी बात लेके बैठ गए? कोई जमाई साहब को तो देखो, अब तक आए नहीं। हम लोग नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं भाई।
8: शांति, जाओ जमाई साहब को लेकर आओ।
6: मैं नहीं जाऊंगी वीरेंद्र भैया, बच्चा थोड़ी है, खुद ही आ जाएगा।
1: हे राम, किस मुहूर्त में पैदा हुई थी तू? कोई अपने पति को ऐसे बोलता है क्या?
6: हाँ, आप भी मुझे ही बोलो, इस घर में मुझे कोई नहीं समझता है।
5: शांति दीदी, बस हाँ, ज्यादा फिल्मी हो रहे हैं आप। मैं जाता हूँ जीजा जी को बुलाने।
0: वैसे कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, पर ये बहस सालों से चली आ रही है कि फिल्मों में वही दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है, या फिर फिल्मों में जो देखते हैं वो समाज में होने लगता है। वैसे जो हम देखते हैं, सुनते हैं, भाई उसका असर मन पर तो पड़ता ही है। फिलहाल शांति जी अपने दर्द को सबसे बड़ा मान बैठी हैं। आखिर उनके पति बाकी पतियों की तरह कमा जो नहीं रहे, और उनके पति सूरजमल कुछ न कर पाने का दुख और जिल्लत के बोझ को झेलकर अपने गम छुपाए कमरे में बैठे हैं। किशन उन्हें बुलाने गया है, अब देखते हैं क्या वो कामयाब होगा। चलिए
5: जीजा जी, मैं अंदर आ जाऊं।
2: किशन, अब अभी जाऊं यहाँ से।
5: जीजा जी, आप रो रहे हैं।
2: नहीं, किसने कहा? जाओ जाओ, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है।
5: जीजा जी प्लीज, मुझे अंदर आना है, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं भी तो आपका भाई जैसा हूँ। जीजा जी, ये लीजिए, पानी पीजिए।
2: देखो किशन, मैं यहाँ जब से आया हूँ तब से कोई खुश नहीं है, ऊपर से शांति भी नाराज है। वो सही कहती है, मैं ही नकारा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया है।
5: जीजा जी, जो भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और आप इतना कुछ होने के बाद भी दोबारा कोशिश कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है।
2: क्या फायदा इस कोशिश का जो रंग ना लाए।
8: जमाई सा, मैं कुछ कहूं?
2: भैया, आपने तो मुझे शुरू से बहुत हौसला दिया है, लेकिन मैं
8: जमाई सा, आप रो लीजिए, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि हम आपको ससम्मान इस घर में जगह दे रहे हैं, और आपके काम करने या ना करने से ये कम ज्यादा नहीं होगा।
5: माफ कीजिएगा जीजा जी, शांति दीदी तो अशांति करके रखती है पूरे घर में। बचपन में एक बार उनको मार्केट नहीं लेके गए थे बड़े भैया, क्या हंगामा मचाया था, सारे घर के शीशे तोड़ दिए थे।
2: कोई रिफंड प्रोसेस है क्या इसका?
8: जमाई सा, आपको तो सिर्फ उल्टा सुनना पड़ता है, मुझे तो खाना भी पड़ता है, वो भी चुपचाप।
5: इसी बात पे अर्ज किया है।
8: बोल भाई बोल।
5: वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, उन्हें इल्म भी नहीं बस वही है हमारे ख्यालों में।
8: हाँ? ये किसकी बात करने लगा?
5: नाश्ते की भैया, भूख लगी जोरों से और कुछ नहीं सूझ रहा अब मुझे।
8: तू भी किशन, चल चलिए जमाई सा नाश्ता करते हैं।
6: जमाई सा अब तक आए नहीं, इतनी देर हो गई।
7: जमाई सा रो रहे होंगे, छोटी छोटी बातों पे औरतों से ज्यादा रोने लगते हैं।
6: मासा मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ।
9: माँ मैं जाती हूँ, मैं बताती हूँ उनको कि इस शांति की बात को ज्यादा सीरियसली ना लें, इसकी बातें इसको ही समझ नहीं आती है।
10: दीदी मैं चुप बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगी आप।
9: वाह शांति और शांत, वाह वाह ये तो चमत्कार है। अगर तूने उन्हें खरी खोटी ना सुनाई होती तो अभी सब अच्छे से बैठ करके नाश्ता कर रहे होते।
10: दीदी वैसे तो बड़ी फेमिनिस्ट बनकर घूमती हो आप, अभी मेरा साथ नहीं दे सकती आप?
9: शांति, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि लड़की की गलती हो तो भी उसका साथ दिया जाए।
11: शांति।
10: पर पापा ये।
11: बस बेटा अब बस कर, अगर गलती जमाईसा की भी होती ना तब भी ऐसे ताने कसने से नहीं हो जाती, और थोड़ा सा उनका दुख समझ, कितनी बड़ी परेशानी से निकले हैं वो, अभी तुझे तो उनका साथ देना चाहिए।
10: पापा सिर्फ अभी की बात नहीं है, वहाँ पर भी घर में यही होता है, इनको समझ में ही नहीं आती है दुनियादारी।
6: और तुझे आती है?
11: तुम लोग डिसाइड कर लो, समस्या का हल चाहिए या सिर्फ नाराजगी से पेट भर लोगे?
6: हल चाहिए।
11: तो बस हो गया अब।
4: शांति, रागिनी, नाश्ता ठंडा हो गया है, जाओ जाके राजकुमारी की मदद करो, गरम करके लेके आओ, जाओ।
12: लो आ गए जमाईसा। जमाईसा अब बैठिए, बस नाश्ता गरम ही हो रहा है।
5: माँ माहौल तो ठंडा है ना यहाँ का, वो गरम नहीं होना चाहिए।
3: अरे कोई जमाईसा के लिए गरम गरम दाल बाटी लेके आओ। जमाईसा आप खाइए, मेरी रेसिपी है, एकदम स्वादिष्ट।
5: इनको क्या हो गया, बड़े प्यार से बात कर रही।
4: अरे भूख लगी है ना, अभी गुस्सा दिखाने से फिर जमाईसा चले गए तो दाल बाटी नहीं मिलेगी।
6: चलिए चलिए सब लोग खाइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, ये लीजिए। हाँ बच्चों तुम लोग इधर आ जाओ।
3: अरे वाह, ला ला, मुंह में पानी आ गया मेरे तो।
1: वाह राजकुमारी, आज तो तूने कमाल कर दिया, बड़ी स्वादिष्ट दाल बाटी बनाई है।
6: थैंक यू मासा, आपसे ही तो सीखा है, इसमें मैंने अपना कुछ भी ऐड नहीं किया।
8: धन्यवाद भगवान का, बच गए।
1: चलो चलो सब लोग खाओ गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा। इस वक्त तो दूध वाला पेपर वाला कोई नहीं आता, अब कौन आ गया गेट पे?
8: शांति गेट खोलो।
6: अरे किशन जाओ ना गेट खोलो।
9: अरे गेट खोलो ना।
10: जाइए गेट खोलिए।
4: कोई तो जाओ।
9: अरे गेट खोलिए।
4: कोई तो जाओ।
8: शांति गेट खोल दो।
10: अरे गेट खोलो तो कोई।
9: हाँ, किसी को उठ गया तो जाना नहीं है, सभी को एक दूसरे को बोलते रहते, बस यही तो ऐसे ही
8: है। अरे कोई देखो, बाहर कोई है।
3: अरे कौन है गेट पे?
8: पुलिस।
11: पुलिस?
8: अरे
13: कौन पुलिस?
9: यहाँ तो कोई घरेलू हिंसा भी नहीं हुई, वैसे मेंटल हैरासमेंट तो किया है इसने, ये कहीं शांति को पकड़ने तो नहीं आए?
10: क्या दीदी, मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैं तो कितनी मासूम हूँ।
8: ये ना जरूर किशन की घटिया पोएट्री के लिए उसे पकड़ने आए होंगे।
5: भैया कहीं परेशान होकर जीजा जी ने तो पुलिस नहीं बुला ली?
14: मैंने नहीं बुलाई, मैं तो कमरे में था।
4: अरे तुम लोग चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ।
0: क्या लगता है आपको, पुलिस क्या करने आई होगी राठौड़ परिवार में? अब कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है इन घर वालों के जीवन में, भाई ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। वैसे कितना कुछ हो गया ना आज, सोचिए बचपन में जब एक दूसरे से रूठते थे तो कैसे फटाफट मान भी जाते थे, काश वो मासूमियत हमेशा रहती। आज हम एक दूसरे से ऐसे नाराज होते हैं कि उनका दुख भी दिखाई नहीं देता, ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि मेरी बात, मेरी परेशानी, मैं सही, बस मैं ही रह जाता है। बाद में जब ये मैंपन का नशा उतरता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कबीर दास जी ने तो कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। परिवार मतलब प्रेम, प्रेम मतलब मैं नहीं हम। खैर अब राठौड़ परिवार तो आनंद ले रहे हैं राजस्थानी पकवान का, मैं भी चलता हूँ क्योंकि मेरे पेट के चूहे भी अब मुझे और बातें नहीं करने देंगे, है ना? फिर मिलेंगे जल्दी। आखिर आपको बताना भी तो है ना कि पुलिस क्यों आई है राठौड़ परिवार के दरवाजे पर। फिलहाल के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, घड़ी गम्मा दोस्तों।
15: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आरजे शुभा, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नई दुनिया नया जमाना, जहाँ हम बात करते हैं एक ऐसे भविष्य की जो हो स्वच्छ, हरित और सतत। धरती केवल हमारे रहने की जगह नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर भी है। तो पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या फिर संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। तो जब एक व्यक्ति जागता है तो समाज बदलता है, और जब समाज जागता है तो एक नई दुनिया का निर्माण होता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे पर्यावरण योद्धा है जिन्होंने वर्षों से स्वच्छता, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, जिनके कार्यों को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं श्री खमू राम विश्नोई जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नई दुनिया इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: तो खमू राम जी, सबसे पहले तो आपके अनुभवों और संघर्षों के बारे में हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपके बारे में थोड़ा अधिक हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: मेरा नाम खमू राम विश्नोई है, मैं ओशिया तहसील के गांव एकलघोरी का रहने वाला हूं, और वर्तमान में मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार के पद से सेवानिवृत्त 28 फरवरी 2026 को हुआ हूं, और पिछले लगभग ढाई दशक से मैं सिंगल यूज प्लास्टिक और के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रहा हूं। बड़े बड़े मेले होते हैं, वहां हमारी टीम कचरा बीनती रहती है ताकि लोगों की मानसिकता में जो कचरा भरा हुआ है, जो लोगों की सोच में कचरा भरा हुआ है वो निकले। हमारी मकसद ये नहीं है कि हम जमीन से कचरा बीने, हमारा मकसद ये है कि जमीन पर कचरा आए उससे पहले ही मानसिकता ही बदल जाए कि मेरा धर्म नहीं बनता कि मैं जमीन पे कचरा फेंकूं। तो इस प्रकार लगभग ढाई दशक हो गए हैं। और दूसरा हमारा काम है शादी ब्याह, वहाँ भी हम फ्री सेवा देते हैं। उसके पीछे हम 3-4 शर्तें होती है, वो पहली शर्त होती है पूरा कार्यक्रम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रहना चाहिए, डिस्पोजल मुक्त रहना चाहिए, और दूसरा हमारी होती है झूठन मुक्त रहना चाहिए, तीसरा हमारा होता है नशा मुक्त रहना चाहिए, और चौथा होता है हमारा फटाका मुक्त समारोह हो। तो हम ऐसे सेवाएं देते हैं जैसे मेरी बहन की शादी हो, मेरी भतीजी की हो, भांजी की हो, सारे दिन हम तांबे के लोटे ले जाके मेहमानों को जलपान कराते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक को दरकिनार करते हैं, नशे को दरकिनार करते हैं, फटाकों को दरकिनार करते हैं, और झूठा भी नहीं छोड़ने के लिए मना करते हैं। क्योंकि धरती का, अगर मेरी भाषा में बोलूं तो धरती का सबसे बड़ा भगवान है वो भोजन है। भोजन से बड़ा भगवान मंदिरों में भी नहीं मिलता, मंदिर के भगवान को भी हमारे भोजन का, प्रसाद का ही भोग लगता है।
0: जी जी सर, बिल्कुल। तो सर, बहुत सारे कार्य आप कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में बीता, प्रकृति से जुड़ाव कैसे शुरू हुआ?
1: अब आपने बिल्कुल सुन रखा होगा कि विष्णुई समाज शुरू से ही, गुरु जम्बेश्वर भगवान 550 वर्ष पहले ही हमें विष्णुई समाज सभी कम्युनिटी में से चुन चुन के हमको अलग बैठा के और 29 नियमों की एक आचार संहिता दी, एक सिस्टम दिया कि प्रकृति के साथ समन्वय बैठा के तुम्हें जीना है। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 1485 ईस्वी में सभी कम्युनिटी, सभी समाज के लोगों में से विष्णुई समाज के लोगों को एक नियम देके, 29 नियम देके, और एक नया पंथ चलाया या एक नया सिस्टम बनाया, एक नई जीवन जीने की एक नई कला दी जो प्रकृति के साथ में समन्वय बैठा के जी सके।
0: जी सर। सर, सहायक रजिस्टर पद से आपने रिटायरमेंट लिया है, और मतलब पढ़ लिख करके आप अच्छा नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को आपने जीवन का मिशन क्यों बनाया? आप चाहते तो अकेला भी, जितना आपको प्रकृति से प्रेम है तो आप अपने प्रेम के साथ जीते, लेकिन इसको मिशन क्यों बनाया आपने?
1: ऐसी बात है कि पहली बात तो गुरु जम्बेश्वर भगवान जो 15वीं शताब्दी के सबसे पहले पर्यावरण वैज्ञानिक थे, वो उनके अनुयायी हुआ। दूसरे मेरे माता पिता के जो रगों में भी पर्यावरण और संस्कृति बचाओ का खून था, प्रकृति प्रेमी का खून था, और दूसरा विष्णु कम्युनिटी का रंग भी तो मेरे साथ, मेरे ऊपर शरीर में मेरे लगा हुआ था, चढ़ा हुआ था, मेरे खून में घुला हुआ था। तो जब ये इतनी सारी आबो हवाओं के बीच में मुझे जीने का मौका मिला तो स्वाभाविक है कि मैं प्रकृति की सेवा करूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जीवन ये बहुत ही कम समय के लिए मुझे भगवान ने दिया है और पर्टिकुलर एक टाइम बींग के लिए है, उसके बाद में भगवान मुझसे वापस छीन लेंगे और सांसें भी गिनी हुई है। अब मुझे रियलाइज नहीं है तो बात अलग है, लेकिन मुझे अगर रियलाइज है कि मेरे पास लिमिटेड सांसें हैं तो मैं बेहतरीन काम करने का प्रयास करता हूँ। और हर आदमी को जब ये मालूम चल जाता है कि मैं जीवन पृथ्वी धरती पे कोई विशेष प्रयोजन से आया हूँ तो वो कभी भी प्रकृति के खिलाफ काम नहीं करेगा, वो हमेशा प्रकृति की सेवा करने का ही प्रयास करेगा। मैंने ही वैसा ही किया।
0: जी सर बिल्कुल, जैसे कि ये संस्कार आपको आपकी संस्कृति से, आपके समाज से, आपके माता पिता से आपको मिली है और इसको ही आप आगे लेकर के जा रहे हैं और एक आपने समाज में क्रांति लाए हैं आपने। तो जब आपने शुरुआत की 2005 में, वर्ष 2005 में, हम सभी आई थिंक मेरे जनरेशन के जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त सभी स्कूल में होंगे, तो आपने अकेले स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो उस समय ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली 2005?
1: बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया और मैं इसकी रिप्लाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से देना चाहूंगा। मैंने एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें भारतीय संस्कृति की बहुत ही तारीफ की गई, जैसा कि हमारी 5000 पुरानी हमारी संस्कृति है और हमारे जो पर्यटन स्थल है, हमारे जो धार्मिक तो और प्रकृति से प्रतिष्ठित हम पीपल को पूजते हैं, हम गौ माता को माँ बोलते हैं और हम सभी अलग अलग देवताओं के अलग अलग जीव जंतु भी उनके सवारियों में, जीवों को भी उनकी सवारियां बनाई है, तो हम देवता को और जीवों को हमने समन्वय में बैठा के और उनको पोषण देने का प्रयास किया ताकि सभी जीव धरती पर रह सके और उनका सब अपने अधिकार पूर्वक रह सके, यही भारतीय संस्कृति थी। तो एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ अच्छा बताया है, सब कुछ गुणगान किया गया, लेकिन अंत में हमारे तीर्थ स्थान है, हमारे जो पूजा स्थली है, वहाँ अंदर तो आरतियाँ गा रही है, ओम जय जगदीश हरे या और भी देवी देवताओं की जो आरतियाँ हो रही है, और बाहर की तरफ कचरों का ढेर लगा हुआ बताया। तीर्थ स्थानों पर भी मेले में लोग इतने भीड़ कर देते हैं लेकिन भीड़ के बीच में पैरों में इतना कचरा पड़ा रहता है कि वो तीर्थ न होके कोई कचरा घर हो जाता है, तो मेरे को दर्द हुआ और मैंने तीर्थ स्थान को जाके देखा तो जैसी डॉक्यूमेंट्री में फोकस किया गया वैसा वैसा मैंने वहाँ तीर्थ स्थान पे देखा। तो फिर मेरे अंदर क्वेश्चन आया, पहले मैं हाईकोर्ट की सीक्रेसी में था, मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, मैंने छुट्टी मिली और मैं 2005 में कोई बड़े हमारे विष्णु समाज के बड़े तीर्थ स्थान पे गया तो मैंने विष्णु समाज के लोगों को बलिदान को याद कर 363 लोग 1730 में पेड़ों हरी पेड़ों के लिए अमृता देवी के तत्व में शहीद हो गए थे और वन्य जीवों के लिए भी शहीद हो गए थे। सलमान खान वाला भी उदाहरण हमारे सामने था कि काले हिरण का शिकार करने आए और फंस गए, अभी भी फंसे हुए हैं, कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है, फिर सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में इग्नोर क्यों कर रही है? तो समाज के लोगों ने मुझे थोड़ा कहा कि तेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हर चीज हमेशा अकेला करता ना वो आगे जरूर बढ़ता है।
0: जी, तो लोग जब आपका मजाक उड़ाते थे तो आपने हिम्मत कैसे बनाए रखी?
1: ऐसी बात है, शुरुआत में जब मैं गया तो वहाँ लोग कचरा फेंक रहे थे तो मैंने उनको समझाने का कोशिश किया तो कौन मानता है, एक आदमी की कोई नहीं सुनता है, बड़े बड़े आदमियों की नहीं सुनता, तो मैं एक साधारण आदमी था, मेरी कौन सुने? तो मैंने कहा अभी सुनने वाला तो है नहीं, तो मैंने वो जो मेलों में हमारे विष्णु समाज के लगभग अपनी आमदनी का 10% चुगा पक्षियों के लिए, गायों के लिए लाते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े चुगा घर बनते हैं, वहाँ वो चुगा घर के लिए बोरी कट्टा भर के लाते हैं बाजरा का या गेहूं का, जो भी धान उनके फसल होती है वो ला के वहाँ डालते हैं, तो वो उसका खाली कट्टा पड़ा था, मैंने देखा इस कट्टे का उपयोग तो मुझे करना चाहिए, मैंने वो कट्टा उठाया और वहाँ जितना भी बिखरा हुआ कचरा था वो उठाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा विष्णु समाज के लोग थोड़े मानते कम है, कुछ अलग टाइप के हैं, मानेंगे नहीं, वो नहीं, मैं कचरा बींद रहा हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को धक्का नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रहा हूं, आई एम वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ माय मदर प्लैनेट, मैं धरती माँ की स्वच्छता के लिए काम कर रहा हूं और इसमें भी मुझसे कोई धक्का मुक्की होगी तो मैं मेरे सहन करूंगा।
0: जी सर, सलाम है आपके कार्य को और आज भी वो कारवा जारी है और
1: बिल्कुल यह शुरुआत में ऐसा हुआ
0: जी,
1: फिर लोगों ने मेरे हंसी मजाक भी कौन चुके और फब्तियां कसने में कौन चुके, किसने कहा पागल हो गया, किसी ने कहा इसकी नौकरी चली गई, किसी ने ये कहा गया अब ये फटीचर हो गया, जो उनके मन में आता था वो कह रहे थे, लेकिन मेरा टारगेट था, मैंने मेरा लक्ष्य निर्धारित किया। जैसे मैं जयपुर जा रहा हूँ और रोड से जा रहा हूँ तो कहीं गोलाई भी आती है, कहीं पुल भी आता है, कहीं बाईपास भी आते हैं, कोई कुछ भी आता है, लेकिन मेरा टारगेट जयपुर जाने का होता है तो मैं हर हाल में उसी रोड को चुनता हूँ जहाँ जो जयपुर जाती है। भले बीच में रस्ते में कोई एक्सीडेंट भी हो गया तो भी मैं उससे बच के आगे यहन कैन में पहुँचता हूँ। वैसे मेरा टारगेट था, मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं इस फील्ड में धरती माँ की सेवा करने में मेरे जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैंने वैसे किया। हालांकि मेरे पास खूब सारे ऐसे भी अवसर आए, परिवार के लोगों ने भी मुझे शुरू शुरू में कहा कि ये हमारे समाज मेरे परिवार का हमारे खानदान का नाक कटा रहा है, गंदगी उठा रहा है। परिवार के श्रीमती जी भी थे वो शुरू शुरू में, उन्होंने उनकी सहेलियों ने और उनके लोगों ने उनके परिवार जो उनकी बहनें हैं उनके जो पीर की परिवार के लोग उनको भी थोड़ा ऐसे महसूस हुआ, तो उसने भी अपने आप में नाक में सर डाली और मेरे को भी कभी व्यंग्यात्मक रूप से कभी कभी बोल देती थी, लेकिन वो भी मैंने सहन किया क्योंकि मेरा लक्ष्य था, मुझे आगे बढ़ना था। लोग तो कहेंगे और लोगों का काम है कहना, लेकिन मेरा जीवन का लक्ष्य था तो मैंने भगवान की कृपा और प्रभु की कृपा से मैं मेरे उस रास्ते पे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मुझे समय मिलता मैं हाई कोर्ट से सर्विस से छुट्टी लेके परमिशन लेके मैं उस लक्ष्य पे काम करने लग गया।
0: जी सर, कभी ऐसा लगा नहीं कि अभियान छोड़ देना चाहिए?
1: नहीं, कई बार ऐसा लगा कि कभी कभी मैं अकेला जाता था, बिल्कुल अकेला, तो मेरा चेहरा भी उतरा हुआ था कि मैं अकेला जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ स्लोगन लिखी हुई तख्तियां होती थी, कुछ बैनर होते थे, कुछ पर्दे होते थे, कुछ अन्य सामग्रियां भी होती थी, मेरे खुद के कपड़े भी होते थे, ऐसे तीन चार बैग हो जाते थे। चार बैगों को उठा के किसी साथ वाले राही को मैं निवेदन करता था कि थोड़ा मेरे हेल्प कर दो, तो उस समय लगता था कि तुम करने क्या जा रहा है, अकेला क्या कर लेगा, लेकिन फिर प्रभु कहते थे कि अरे भाई जो अकेला करता है ना उसको किसी का इंतजार करना नहीं पड़ता, तो जब अकेला चलता है ना उसको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो लेट नहीं होता है, वो हमेशा सही टाइम पे पहुंचता। तो मैं अकेला था तो मुझे बड़ा ही खुशी हो रहा था कि मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है, मैं स्वयं ही डिसीजन ले रहा हूँ और स्वयं ही फाइनल डिसीजन और स्वयं ही मन बंद कर रहा हूँ और स्वयं ही खोल रहा हूँ। मेरा काम शुरू भी मैं श्री गणेश भी मैं कर रहा था और वाइंड अप भी मैं कर रहा था, तो मुझे कोई दर्द नहीं था। और धीरे धीरे लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आने लगा, लोग कुछ लोग हेल्प के लिए, कुछ हेल्प नहीं होती थी तारीफ करने लगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे दो जुड़े चार जुड़े, और शुरू में जो आज मेरे साथ में थे शुरू में थे वो अब एक भी नहीं है था, लेकिन मेरा कारोबार चल रहा है, नए लोग आते रहते हैं, पुराने छोड़ते रहते हैं, रोटेशन बन गए। तो अभी भी हमारे कब शादी ब्याह में जाते हैं तो 10-20-30 हो जाते हैं, मेलों में 50-100 हो जाते हैं और काम बेहद बेहतरीन तरीके से चल रहा है।
0: जी सर, तो सर धार्मिक मेलों में और जो पर्यटन स्थल है वहां पर प्लास्टिक रोकने के लिए विशेष प्रयास आप क्या कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो कैसे कर सकते?
1: बिल्कुल सही है, हर चीज शुरू से करना चाहिए। मैं एक मोस्टली मैं जहां भी जाता हूँ एग्जांपल देता हूँ, वॉशरूम और किचन का। अपने परिवार में ही बूढ़े हो जाते हैं 70-80 साल के और उनकी मानसिकता थोड़ी सी या सोचने की शक्ति या यादगार शक्ति कम हो जाती है तो वो भूल जाते हैं, और छोटा बच्चा होता है 1.5-2-3 साल का तो वो भी नहीं समझता है वॉशरूम क्या होता है और किचन क्या होता है, लेकिन उनकी इतनी मानसिकता विकसित हो जाती है कि किचन से भोजन लेके वॉशरूम में जाके कभी नहीं बैठता, चाहे बच्चा भी नहीं बैठता बूढ़े आदमी भी नहीं बैठते। और वॉशरूम का डब्बा या बाल्टी जो होती है जो विशेष रूप से हम वहाँ काम लेते हैं वो दूसरी जगह काम नहीं लेते, वो कभी लाके किचन में या दूसरी जगह नहीं रखते, या पानी के जो अपन जिसको परिंडा बोलते हैं वाला के कोई डब्बा या बाल्टी नहीं रखते, इतनी मानसिकता उनकी और बन जाती है। तो हम तो जागरूक है, इतनी मानसिकता तो हमारी होनी चाहिए कि जो चीज हम नहीं चाहते वो दूसरों को देंगे तो वापस हमें अच्छी कैसे मिलेगी। जैसे मैं आपको अभद्र सभ्य भाषा में बोलूंगा तो आप क्यों मेरे को सभ्य भाषा का प्रयोग करेगी, कैसे कर पाएगी, कर नहीं पाएगी, कौन से अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसे ही हम करते हैं, हम लोगों को बेहतरीन व्यवहार देते हैं तो लोग हमें शाबाशी देते हैं, ऐसे करते करते के लोगों को हम समझाते हैं कि तीर्थ स्थान ध्यान साधना तपस्या और पूजा की और आत्म बल को मजबूत करने की जगह है, ये कोई कचरा फेंकने की और मौज मस्ती करने की या पिकनिक स्पॉट नहीं है। तीर्थ स्थान तो संकल्प को मजबूत करने की, हे भगवान मैं आपके आया हूँ और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं मेरे मानवत्व को पहचानूं और अच्छा मानव जीवन जी के किस प्रकार मैं मेरी ये यात्रा पूरी करूँ। ये तीर्थ स्थान उसके लिए है, न कि कोई नगर पालिका मेला होता है जहाँ झूले लगते हैं, लोग आइसक्रीम खाते हैं, जो भी चीज जो मजा हो वैसे चीजें खाते हैं उसके लिए नहीं है, लेकिन लोग आजकल उसको तीर्थ स्थानों को भी सिर्फ एक वो कहानी में बेल घूमता ना वैसे, हर जो महीने एक फेरी दूंगा, अरे फेरी शरीर की नहीं लगानी है, फेरी विचार की लगानी है कि मैंने पिछले गुरु जो भी तीर्थ स्थान था वहां जाके आया, उसके बाद में मेरे भावना में, मेरे क्रियाक्रम में, मेरी सोच में क्या कुछ फर्क आया। अगर फर्क आया है तो मेरी यात्रा या मेरी जो वहां धोख देना या वहां साधना करना, वहां जाना सफल है, नहीं तो फालतू ही गोता है और भगवान को धोखा देना। भगवान तो क्यों धोखा खाएंगे, धोखा तो खुद को ही मिलता है, क्योंकि वो एक बिना मन के, बिना कोई संकल्प के वहां जाके आता है तो तेल जलता है और खुद की एनर्जी वेस्ट होती है, मिलना कुछ नहीं है। भगवान तो आत्म अनुभूति है, अपने आप के अंदर विराजमान है, पहचानने की जरूरत है। क्योंकि जो चीज हमारे अंदर है, पर एक मैं एक छोटी सी बात करके आपको बताऊंगा कि जब भगवान एक बार क्या हुआ, सभी लोगों ने अपनी इच्छाएं जताई और भगवान से पूछा कि हे भगवान हमें दो, वो दो, वो दो, वो दो, अपनी अपनी, मेरे परिवार में मेरी वाइफ नहीं मानती है, बेटा नहीं मानता, सासू नहीं मानती, तो भगवान परेशान हो गए कि जाऊं कहां, तो भगवान कहीं छिप गए, तो दूर पहाड़ में छिप गए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है, वहां भी जाके ढूंढ लिया, यहाँ आके छिप गए और हम तो दुखी है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं, तो हम मनुष्य के हृदय में आके बैठ गए। अब जिसको भी अगर भगवान को पहचानना है तो अपने हृदय के खुद को जानो, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ। तो खुद के अंदर जब हम सोच से अपने आप को अंदर झांकेंगे, अपने अंदर आत्मा को देखेंगे, तभी हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। बाहर कहीं किसी भवन, किसी बिल्डिंग या किसी मंदिर में भगवान नहीं विराजमान है, भगवान अपने अंदर ही। मनुष्य के अंदर दो लोग रहते हैं, एक राक्षस, एक भगवान। राक्षस इट मीन्स पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव एनर्जी, और भगवान इट मीन्स पॉजिटिव एनर्जी, देवत्व, देवत्व और राक्षसत्व, ये दो चीज मनुष्य के अंदर रहती है। अगर मैं लगातार लगातार लगातार मैं अच्छे आदमियों के साथ रहूंगा, अच्छी संगति के साथ करूंगा, तो मेरे अंदर देवत्व का परसेंटेज बढ़ जाएगा और राक्षसी परसेंटेज कम हो जाएगा। और मैं अच्छे विचारों को इग्नोर करता जाऊंगा तो मेरे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आएगी, हरीफ से झगड़ा कर लूंगा, पुलिस केस हो जाएंगे, जेल में भी जाऊंगा, वापस पेरोल पे आके भी मैं उल्टा काम करूंगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति बन जाती है। तो दो प्रवृत्तियों से ही मनुष्य का निर्माण होता है, और दूसरी एक प्रवृत्ति से निर्माण होता है, दूसरी प्रवृत्ति से मनुष्य का क्या विनाश होता है। ये मेरे विचार है, व्यक्तिगत विचार है।
0: बिल्कुल, तो अगर हम पॉजिटिव विचारों के साथ रहेंगे तो हम पर्यावरण के लिए भी सही काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही है। अगर हम प्रकृति का पेड़ है, पेड़ को काटेंगे फिर हमें छाया चाहिए, तो पेड़ को, जिस पेड़ को हमने काटा है वहाँ छाया कैसी रहेगी, वो तो जगह खाली हो जाएगी। अगर छाया है चाहिए तो पेड़ लगाए। अब आजकल क्या करते हैं, अपन पाश्चात्य संस्कृति का फॉलो करते हैं, और बड़ी बड़ी शादियों में देखा होगा गरीब तो हाथ में कांदा रोटी लेके खा लेते हैं, बड़ी शादियों में चाउमीन के लिए अलग प्याला प्लास्टिक का, आइसक्रीम के भी अलग अलग फ्लेवर, वो और उसके अलग प्याले, कितने ही प्रकार के, वो गोलगप्पे के लिए अलग प्याला। एक आदमी शादी ब्याह में, बड़ी शादी ब्याह में, रईस की शादी में 100 बर्तन काम में लेता है एक टाइम के भोजन के लिए। हम जा किधर रहे हैं, जा किधर रहे हैं, ये विचार भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो रईस होते हैं, वो देखा हमारा तो जन्म धरती को गंदा करने के लिए होता है, सफाई करने वाले तो कोई दूसरे हैं, हमारे लिए, हम कोई सफाई करने के लिए पैदा नहीं हुए। और चाहते हैं, हर आदमी चाहता है हमें अच्छा व्यवहार मिले, लेकिन हम देवे नहीं देवे, ये हमारी बात, तो ये कैसे हो सकता है, संभव हो सकता है? छोटा बच्चे को भी अगर हम थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलेंगे तो वो रूठ जाएगा या वापस ऐसा जवाब देगा कि हमारी बोलती बंद हो जाएगी।
0: जी जी। तो सर, आपने हजारों मेलों में और धार्मिक आयोजनों में सफाई अभियान चलाया है, कोई यादगार अनुभव साझा करें हमारे साथ।
1: बिल्कुल, मैं मेरे खुद के ही जो विष्णु समाज के मेले, वहाँ हम कचरा बीन रहा था, तो पेरिस से एक मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र आया फ्रैंक, वो जेल, तो उसने वो विष्णु समाज के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखना चाह रहा था, तो वो 2-3 मेलों में मुझे फॉलो किया और मेरे को कचरा बीनते हुए देखा, तो उन्होंने व्हाट आर यू डूइंग, मैं आई एम पिकअपिंग गार्बेज हियर टू मेक माई मदर प्लानेट नीट एंड क्लीन एंड आई वॉन्ट टू अवेयर द पीपल इन दिस रिगार्ड। तो उसने कहा आप इंग्लिश भी जानते हो, मैं थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी ऐसे, मैंने कहा मैं इतनी जानता हूँ, तो कहा ठीक है इतनी, इट्स एनफ, उसने कहा इतनी बहुत है मेरे लिए। मैंने जो मुझे आदमी चाहिए था उसको मैंने सर्च कर लिया, फिर एक मेले में वो मिला, मुझे दूसरे मेले मिला, तीसरे मेले मिला, हर मेले में मैं वही काम करता हुआ उसको पाया गया, उसने फोटोग्राफ खींचे, फिर पेरिस फ्रांस का था, वो पेरिस में जाके आर्टिकल छापा। 2008 में उसने वहाँ एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही थी, तो उसमें मुझे इनवाइट कर लिया, तो मैंने मना कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल टू कम देयर, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करने में मैं असहज महसूस कर रहा, तो मैंने मना कर दिया। तो उसने कहा कमू, इट्स नॉट ईजी टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर, सो यू डोंट से मी नो, after half an hour, one person called you or getting your consent. So don't say him, I don't want to come there. You should say him, I have no problem to come there. I wanna come there to participate in global conference organized by of you. तो ठीक है, उसने बात की और मैंने उसको कहा भाई ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूँ. आधे घंटे बाद मुझसे फोन किया, आर यू मिस्टर कमुराम बिश्नोई? मैंने कहा यस आई एम कमुराम बिश्नोई. वुड यू लाइक टू कम पेरिस टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एज ए कीनोट स्पीकर? मैंने उसने मना किया हुआ था कि मना मत करना. मैंने कहा यस आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल कम देयर कम व्हाट मे. फिर उसने बुलाया, मैं 2008 में गया, 11 में गया, 12 में गया, 13 में गया, 14 में गया, 15 में मेरी फ्लाइट मिस हो गई, टाइम मिस री कर लिया. और 18-20 में भी मेरे को इनवाइट किया था उन्होंने, लेकिन वहाँ कोरोना काल आ गया तो उसमें वो मिस हो गई. अब 2028-27 का भी वो कह रहे हैं कि वी वांट टू इनवाइट यू. देखो प्रभु क्या, मैं वहाँ जाने के लिए मेरा टारगेट नहीं है. मेरा का टारगेट तो है मेरी धरती माँ को स्वच्छ रखूँ, लेकिन अगर वो बुला लेते हैं तो मैं उनके यहाँ भी मना नहीं कर पाता.

0: यू कैन सी दिस फोटोग्राफ्स. मैंने देखा तो वास्तव में बहुत लंबी चौड़ी, जैसे बड़े बड़े होल्डिंग पे विज्ञापन होते हैं ना, वैसे वैसे मेरी फोटो लगी हुई थी. मैं अपने आप को भगवान को बार बार ही धन्यवाद दे रहा था, ये भगवान, में एक छोटे से कचरा बीनने वाले आदमी को आपने इस प्रकार प्रेजेंटेशन देने के लिए फोटोग्राफ्स में शामिल किया है. मैं आप ऋणी हूँ और वो ऋण उतारने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ. वास्तव में मैं धरती माँ का और प्रभु का ऋणी हूँ, क्योंकि एक मनुष्य होना, जन्म लेना ही अपने आप में कितने ही कर्मों के बाद में, कितने ही अच्छे कर्मों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है. मनुष्य जन्म इस यू आर नेक्स्ट गॉड, यू आर सेंजर ऑफ द गॉड, भगवान के ही रूप हो, भगवान ने ही आपको भेजा है. लेकिन हम आके यहाँ भूल जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हम तो सुई है. अरे तुम बहुत कुछ हो, कितने भी महान महान वैज्ञानिक हुए या नेता हुए, लोग हुए, या स्वामी विवेकानंद जी क्या थे, बहुत छोटी उम्र में गए लेकिन इतना कुछ दे के चले गए कि कितनी शताब्दियों तक वो अमर रहेंगे और उनका संदेश कोई मिटा नहीं सकता. वैसे ही जाम्बो जी महाराज, और भी घने ऐसे लोग हुए हैं, रामदेव जी हुए हैं, और भी ऐसे खूब लोग हुए हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन समाज को भी चाहिए कि वो स्वीकार करे.
1: जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो युवाओं का क्या रोल है पर्यावरण संरक्षण में, सर आप क्या कहना
0: मैं इस
1: चाहते?
0: समय में हमेशा कहता रहता हूँ मैडम के, द यूथ जनरेशन इज गार्जियन ऑफ द प्रेजेंट एरा. वर्तमान के युवा क्या है, संरक्षक है. जो सीनियर सिटीजन थे, जिनको अपन पूर्वज अपन बड़े रा कह दें या हमारे वरिष्ठ जन कह दें, जिन्होंने अपनी पारी खेल ली है, वो 70 के हो गए, 80 के हो गए या 60 से ऊपर हो गए, उन्होंने पारी खेली. जैसे जैसे उनका कर्तव्य था, उन्होंने अपन को साफ सुथरी एकदम नीट एंड क्लीन धरती दी. वर्तमान समय युवाओं का है, बच्चों को अभी समझ में नहीं है क्या करना क्या नहीं करना. तो अगर वर्तमान युवा जाग जाएंगे तो धरती को कोई गंदा नहीं कर सकता. युवा इग्नोर करेंगे तो धरती को कोई बचा नहीं सकता. धरती पर इतना कचरा हो गया, बड़े बड़े शहरों में तो 500-500 फीट ऊंचे पहाड़ बन गए. मैंने दिल्ली में देखे, पहले देखा मैं इस पहाड़ी पे चढ़ूंगा, फिर मैं पहाड़ी के पानीपत की ओर जा रहा था, पहाड़ी के नजदीक गया तो ऊपर आग दिखी. मैं वो पहाड़ी पे आग खींचने लगा, आग ये है, पहाड़ी की आग नहीं है क्या, ये कचरे के ऊपर आग लगाई हुई है. और फिर मैंने देखा एक बहुत बड़ा वो डंपर होता ना, वो ऊपर खाली होता, देखा माचिस की डिब्बी जितना दिख रहा था, इतने इतने कचरे के ढेर लग गए हैं. तो अब हम जा रहे हैं समुद्र को, हमने सही नहीं छोड़ा समुद्र का. मैं अभी जू बीच पे गया था, वो तो ज्वार आता है ना, तब जो कचरा समुद्र का देता है ना, वो पूरा का पूरा वापस लुटा के और उनके घरों के आसपास किनारों पे लाके फेंक देता है. तो जब तक मनुष्य धरती को देना नहीं सीखेगा, तब तक धरती दे नहीं पाएगी. लंबे समय धरती नहीं दे पाएगी, धरती अब इग्नोर करना बंद कर देगी और हम मरेंगे. और अब हम वैसे दिल्ली में, अपन बड़े शहरों में, आपने भी कहीं सुना होगा देखा होगा, वहाँ वो जीना कोई जीना नहीं है. अमिताभ बच्चन वाला वो डायलॉग किसी एक फिल्म में था कि ये जीना भी कोई जीना है. तो इतनी गंदी बदबू आती है बड़े बड़े नालों के पास कि एक दिन भी हमारा बार, हम जो खुले एरिया में रहते हैं, जैसलमेर बाड़मेर या मरुस्थल वाले उधर जाते हैं ना, तो मन नहीं होता कि घंटा आधा घंटा यहाँ रुके, लेकिन लगातार जब हम वहां रहते हैं तो हमारी भी नासिकाएं वो ऐसी स्वीकार कर लेती है गंदगी की, और हम गंदगी में रहने में मजबूर हो जाते हैं.
1: जी सर। सर हर घर अगर कोई संकल्प ले या छोटा छोटा प्रयास करे तो क्या हम अपने देश को परिवर्तन कर सकते हैं? अगर
0: बिल्कुल
1: कर
0: बिल्कुल
1: तो
0: मदर
1: सकते
0: टेरेसा
1: हैं,
0: ने
1: लेकिन
0: कहा,
1: क्या है?
0: बिल्कुल मदर टेरेसा ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि धरती को हम, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि धरती को तो साफ रख नहीं पाए और चांद की तरफ दौड़ रहे हैं. और गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास वो सब कुछ है जिससे हम अपन जीवन जी सकते हैं, लेकिन हमारी लालचा को पूरी कोई भी नहीं कर सकता. अब लालचा किसी भी चीज से पूरी नहीं होती. मेरे पास एक छोटी सी साइकिल थी और पुरानी साइकिल थी, मैंने नई साइकिल ले ली तो फिर उसका नया ब्रांड और नई वो उसकी और हाई वर्जन देख लिया, फिर साइकिल से मोटरसाइकिल आई, कार आई, कार का नया ब्रांड. तो आदमी कभी भी संसाधन से, मेटेरियलिज्म से, मतलब भौतिक चीजों से आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता. संतुष्ट आदमी होता है अपने विचारों से संतुष्ट होता है कि मेरे लिए बहुत है,
1: जी
0: मेरे लिए
1: सर,
0: बहुत है.
1: बिल्कुल।
0: ये बात है,
1: संतुष्ट रहना और विचारों से ही हम
0: संतुष्टि बाहर
1: संतुष्ट
0: नहीं है,
1: होते।
0: संतुष्टि बाहर कहीं भी नहीं है. साधनों में संतुष्ट नहीं है, जोधपुर में मेरा, मतलब मैं जहां भी जिस शहर में रह रहा हूँ, मेरा पूरी पोस्ट कॉलोनी में सबसे अच्छा बंगला है, लेकिन साथ वाला मेरे खाली जमीन पड़ी, उसने डिजाइन थोड़ी बदल के मेरी वाले से 21 डिजाइन लाके बना दिया, तो मेरे रात को नींद आनी बंद हो गई. अब जबकि बहुत बड़ा मेरा बंगला है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी उसने डिजाइन नहीं लिया तो मैं घर से बाहर निकलता हूँ, उसकी डिजाइन के सामने देखता हूँ तो मेरा पिछता होता है, यार क्या कर लिया, ये अपने पैसे तो खूब लगे लेकिन इसने तो सारे डिजाइन नहीं बना ली. तो कहने का मतलब है आदमी किसी भी चीज से, ऐश्वर्य से, धन से कभी संतुष्ट नहीं होता, और कुछ लोगों ने विकास की जो दौड़ में है वो कहते हैं आदमी को संतुष्ट होना भी नहीं।

0: चाहिए, लेकिन विकास की अंधी दौड़ ऐसी हो गई है कि अब मनुष्य का जीवन ही निकलने लग गई है। छोटे बच्चे भी मोबाइल के अंदर इतने घुस रहे हैं कि मोबाइल उनकी माँ से भी प्यारे लगने लगे, माँ का दूध पीना छोड़ देंगे और मोबाइल की तरफ देखने लग जाएंगे। हम जा किधर रहे हैं ये हमें भी सूझ नहीं रहा है, और हम इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। स्कूल में सिर्फ एक बंद डब्बा में स्कूल में पहले मैदान होते थे, पढ़ाते थे, अब मैदान गायब हो गए बंद डब्बों में बच्चों को। और कहीं कहीं तो मैं देखता हूँ, आपने भी देखा होगा मैडम, 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर से बच्चे को सुबह कलेक्ट करते हैं, स्कूल लाते हैं और 3-4 घंटे बैठाते हैं, वापस 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर बस में और घुमाते हैं। हम शाम को चाहते हैं कि बच्चा का दिमाग तेज हो रही है, इसकी मानसिकता सुधरे। कैसे सुधरे? वो थकान से ही मरा मरा हो जाता है, कैसे पढ़ाई करे, कैसा राष्ट्र उत्थान करे जब उसके है ही नहीं। और दूसरे ऐसी पहले हमें कविताएं और भजन और कीर्तन और राष्ट्रपति गीत गवाए जाते थे, जैसे हिंद के बहादुरों वक्त की पुकार है, बढ़ना है बढ़ना है आगे सबसे बढ़ना है, इस प्रकार के निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण ने भूले इतने जब नाव जल में छोड़ी, कितने प्रकार के राष्ट्रभक्ति के और आत्म उत्थान के गीत और कविताएं सुनाई जाती थी। तो हमारे मन में रहता था नहीं ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ होना भी नहीं है।
1: जी सर, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम आपसे बात कर रहे हैं, और आप इतने समय से ये कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं, जो युवा सुन रहे हैं, उनके लिए जरूरी प्रेरणादायी कार्यक्रम है ये।
0: युवा
1: जी
0: आज
1: सर,
0: नहीं जागा तो कल गंदगी में खड़ा रहेगा और पछताएगा, और अगली पीढ़ी जैसे आज जवान है उसके बच्चे हो रहे हैं, वो बच्चे जब वो जवान होंगे तो जो जिन्होंने जन्म दिया है उनको गालियां निकालेंगे 100% गया। तो खुद ने तो जन्म दे के हमको छोड़ दिया और धरती को गंदगी करके चला गया, अब हम जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते। मरे तो कैंसर होके मर रहे हैं या कोई और बीमारी लेके मर रहे हैं, हर चीज में जेर है। व्यापारी चाहता है मैं किसान को ठगूं, किसान चाहता है मैं केमिकल डाल के व्यापारी को ठगूं, और एक दूसरे से ठग रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जबकि ठगा आदमी आदमी को रहा है लेकिन फिर भी खुश हो रहा है। जो किसान ठग रहा है वो व्यापारी को केमिकल दे रहा है, और व्यापारी मिलावट करके किसान को दे रहा है या अदर कंज्यूमर को दे के पैसे इकट्ठे कर कर वो ठग रहा है, तो वो भी देख रहा है मैं मेरे पास पैसे हैं। अरे पैसे किसी काम के नहीं, मरने वाला एक सांस भी पैसे से खरीद नहीं सकते।
1: जी जी सर, बिल्कुल, पैसे से सांसें नहीं खरीदी जा सकती, हमने देखा कोरोना काल में भी। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को किस तरह से व्यवहारिक बनाया जाए, क्या कहना चाहिए?
0: बिल्कुल सही है। जब भी बच्चों का जन्मदिन हो टोपियां नहीं बांटी जाए, बच्चों के हाथ से पौधे लगाए जाए, पर्यावरण के संबंध में रैलियां गीत और उनको चित्रकला आयोजित की जाए कि पर्यावरण के बारे में बच्चा क्या जानता है, तुम अपने अपना एक बैठ जाओ और आपकी भावना को पर्यावरण के बारे में क्या जानते हो वो भावना होनी चाहिए। शनिवार को जो नो बैग डे होना चाहिए, नो बैग डे में पर्यावरण के बारे में उनसे विचार लेने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उनको बताना चाहिए कि जीना है तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा। उनको इस प्रकार की भावना ठूस ठूस के भरनी चाहिए। जैसे पहले हमारे स्कूल में हमें हम पढ़ाई करके नहीं आते थे, होमवर्क करके नहीं आते तो मुर्गा बनाते थे, छोटे बच्चों को कभी कभी बड़े बच्चों के ऊपर बैठा देते थे और इस प्रकार की हम देते थे ताकि हम लज्जित होते थे कि नहीं पढ़ाई तो हमें करनी पड़ेगी और ऐसा हमें करना पड़ेगा। लेकिन आजकल के बच्चों को तो बर्थडे होता टॉफी बांटते वो बांटते रहे ये चीजें, टॉफी क्या होती है कुछ नहीं, एक मीठा जेर है। लेकिन अब हमारे परिवार में और टिफिन में ही डालते हैं तो प्लास्टिक के डब्बे में टिफिन डालते हैं जो बदबू मारता है। एक तो पराठा बनाते हैं, पराठा खुद अपने आप बच्चों छोटे बच्चों के जो नर्वस सिस्टम है उसको खराब करता है कि छोटे बच्चे बढ़ती वाले तो पराठे में तेल होता है, वो कैसा ही तेल होता है वो खिलाते हैं। कभी भी बच्चों को वो इस प्रकार के तेल में तली हुई छोटी उम्र के बच्चों को नहीं देने चाहिए, लेकिन हम दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार जब तक हम सात्विकता पे ध्यान नहीं देंगे, बच्चों के बर्थडे पे भी पौधे लगाने की केक काटते हैं, पौधे लगावे, अगर एक बर्थडे पे एक पौधा होगा तो बच्चा अगर बड़ा होगा और 25 साल का होगा, शादी होगा तो अपनी वाइफ को कह सकता है कि मैं देख 25 साल का हूँ, मैंने मेरे 25 साल में इतने पौधे लगाए हैं, आज अपनी शादी के दिन भी हम 2 पौधे लगाएंगे, एक तेरा होगा एक मेरा होगा। इस प्रकार आगे आगे बढ़ेंगे और लोगों में भावना पैदा करेंगे कि हर फंक्शन को पौधे से जोड़ेंगे, हर फंक्शन को स्वच्छता से जोड़ेंगे, बाजार से कपड़े की थैली के लिए जाएंगे, घर एक अलग ही अलमारी का कोना रखेंगे जहां कपड़े की थैली रखेगा, सामान लाने की थैली है, वहां मेरे बैग में मैं मोटरसाइकिल बैग मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, कम से कम 5 कपड़े की थैलियां हर समय रखती है, मिसेज रखती है नहीं रखती है तो मैं उनको थोड़ा रौद्र रूप बताता हूँ तो वो झट से रख देती है, एक दिन नहीं रखती है, दूसरे दिन मेरे को मालूम चलता है, मैं जाके देखता हूँ तो तेलिया पड़ी रहती है। तो जब हम सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम से सब होता है, हम इग्नोर करेंगे। ऐसी ऐसी महीने हैं कि आलू ले रहे हैं, और टिंडी ले रहे हैं, आलू और टिंडी अगर हम साथ में ले ले तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो उसके लिए प्लास्टिक अलग थैली मांगती है, हर सब्जी और फिर एक बड़ी थैली, पांच तरह की सब्जी ली तो पांच प्लास्टिक छोटी थैली है फिर एक बड़ी थैली है, घर से कपड़े की थैली ले जाते ही शर्म आती है, जब हम शर्म करेंगे तो फूटेंगे कर्म, ये तय है, हम प्रकृति बचाने में शर्म करेंगे तो मरेंगे, हमारे आंखों के सामने हम अपने पूर्वजों को अपने बच्चों को या कोई कैंसर हो गया, कोई कैंसर से मरेगा, कोई किसी से मरेगा, कोई किसी से मरेगा, और हमें सहन करना पड़ेगा, जो हम देंगे वो हमें मिलेगा,
1: जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। सर आपकी जो अभियान है कितने स्वयं सेवक जुड़े हुए? जी जी सर,
0: पहले बताया था कि हम छोटा फंक्शन होता ना, हम क्या है वॉलंटियर है, हम किसी से कुछ लेते नहीं, तो जब हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं, जिसको जो समय मिलता है उस हिसाब से वो समय निकाल के अपना भाड़ा किराया खुद दे के आता है, तो शादी ब्याह होते हैं वहाँ हम 10-15 होते हैं, और मेले होते हैं धार्मिक मेले होते हैं तो वहाँ संख्या थोड़ी हमें बढ़ानी पड़ती है, उस समय हम कभी 50 हो जाते हैं, कभी 100-150 हो जाते हैं, वो मेले की और उनके लोगों के आने की आह्वान पर उनकी रुचि के अनुसार, दबाव कहीं नहीं होता, दबाव वाला काम भी नहीं करता।
1: जी जी सर, ओके,
0: जो बिना दबाव वाला एक आदमी 15 आदमी काम कर लेगा, और दबाव वाला 15 आदमी एक आदमी काम नहीं करेगा, कहीं पेड़ के नीचे जब बैठ जाएगा या कहीं 2 मिनट में कहेगा मेरी मासी आई हुई है 2 मिनट मिल के आता हूँ, मासी क्या आई हो, शाम तक ही वापस नहीं आएगा
1: जी,
0: ये होता है
1: जी,
0: काम सब संकल्प काम करता है, शरीर काम नहीं करता है, जुनून काम करता है, बॉडी काम नहीं करती, जुनून काम करता है, संकल्प मजबूत होता है, हमें करना होता है, हमारी भावनाएं होती है, हमें कुछ देने की इच्छा होती है, तब काम होता है, काम आदमी किसी आदमी का कोई शरीर काम नहीं करता, उसके अंदर संकल्प क्या है और क्या वो धरती को देना चाहता है, किस प्रकार का जीवन जी के दूसरों को देना चाहता है, वो काम करता है, कभी ये मत सोचना कि बॉडी काम करती है, बॉडी काम तो सिर्फ भार उठाना, वो मेरे से एकदम छोटा बच्चा हूँ मेरे 10 किलो भार उठाए, लेकिन एक बहुत मुस्टंडा है वो हो सकता है 50 किलो है 2 क्विंटल ही उठा ले, पहलवान है तो 2 क्विंटल उठा ले, वो अलग चीजें हैं, लेकिन आप किसी काम को अंजाम देने के लिए मेहनत करेंगे तो वो भावना से होगा, पहलवान ही बनेगा तो पहली उसकी भावना होगी शुरू से कि मैं बड़ा होकर पहलवान बनूंगा तो वो बन पाता है, तो बच्चों के अंदर ये भावना हम पैदा करेंगे शुरू से, बच्चा कि तू ऐसा काम कोई मत करना जिससे तेरी और तेरे खानदान की और हमारी इज्जत मिट्टिया मेट हो जाए, हम लज्जित हो जाए, ऐसा काम मत करना, ऐसा काम करना कि हमारा गांव भी नाज करे, शहर भी नाज करे, और हो सकता है तेरा नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच जाए और पूरा राष्ट्र तुझसे सुने, ऐसा बेटा बनना है तो ऐसा बन बेटा, बाकी शरीर लिए तो जानवर घने घूमते हैं, द मैन इज द मोस्ट नोटोरियस एनिमल ऑफ द प्लानिट, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ, धरती का सबसे गया बेटा जीव है तो मनुष्य है, धरती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जीव है तो मनुष्य है, किसी शेर ने अपना पेट भरने के बाद में दूसरे शेरों को या गंदगी को प्लास्टिक का उत्पादन नहीं किया या किसी प्रकार के दूसरा कोई चीज का उत्पादन नहीं किया, जो कर रहा है मनुष्य कर रहा है और जो नुकसान पहुंचा रहा है मनुष्य कर रहा है, मनुष्य कहता मैं बुद्धिमान हूं लेकिन वो है बुद्धिहीन, एयर केस में बुद्धिमान है, परसेंटेज बुद्धिमानों का बहुत ही कम है, सिर्फ दो पैरा वाला जानवर है, दो पैरा वाला जानवर, मनुष्य ये मत समझना कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यता लाने के लिए बहुत ज्यादा विचार करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, सवेरे उठ के सोचना पड़ता है व्हाट इज माय टारगेट ऑफ माय डे, व्हाट इज टारगेट ऑफ माय होल लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे किस प्रकार जीवन जी के आगे बढ़ना है, क्या हम सिर्फ एक जानवर बन के सुबह शाम भोजन करना और सो जाना, वो करना दाल रोटी लाना, बच्चों को जिमाना, सो जाना, ये मनुष्यता नहीं है, मनुष्यता यह है अपना परिवार पाल के और दूसरों को भी कुछ दें, प्रकृति को भी कुछ दें, तब तो है मनुष्यता, सिर्फ अपना ही पेट भराई करें तो मनुष्य नहीं है, वो तो जानवर भी करते हैं, एक जहरीला सांप भी करता है, एक कीड़ा मकोड़ा भी करता है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने कहा कि मनुष्य अपने अगर करते हुए को भूल जाए तो वो किसी जानवर के समान है, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि
0: जानवर समान नहीं है मैडम, जानवर से गया बीता है, जानवर से डाउनफॉल है, जानवर तो मतलब कोई गाय ने किसी ने धरती में कोई इतना गंदगी नहीं कही, आज हम जानवरों की कंटीली बाड़ियां लगा के हिरणों को खत्म कर दिया, अब हमारे जोधपुर की तरफ हिरण खूब सारे थे हमारे खेतों में, हमारे घर के जब हम रात को बाहर घर के आगे खाट बिछा के सोते थे ना तो पास में हमारे चारों तरफ हिरण बैठे रहते, अब क्या हुआ हर लोगों ने कंटीले तार लगा दिए तो हिरण को जो पालतू कुत्ते हैं और जो गलियों में के घरों में होते हैं वो 4-5 का झुंड बना के हिरणों को मार देते, क्यों वो जैसे वो हिरण दौड़ने की कोशिश करता सामने जाली आती थी, और कुछ लोग तो जाली भी इतनी बारीक लगाते हैं, सफेद जाली लगाते हैं वो प्लास्टिक वाली, उसमें और भी फंस जाता है, उसको दिखती भी नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, छलांग लगाता है लेकिन जाली फंस जाता है, कुत्ते आ जाते हैं, अब हिरणों की तो टोली खत्म हो गई, अब किसकी आई है जिसको अपन कहते हैं ना सूरों की, अब जहां भी देखो जैसलमेर देखो बाड़मेर देखो बीकानेर देखो हरे कहते हैं कि यार हमारे खेतों में सूअर बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो चीज सुंदर थी उसको गायब कर दिया तो अब सूअर ही आएंगे।
1: बिल्कुल, जानवरों के घर तक हम पहुंच गए, उनके लिए जगह ही नहीं बची है।
0: बिल्कुल सही है, जानवरों का घर तक पहुंच गए, जानवर जाए कहाँ, तो जानवर आपके घर में आएंगे। और जानवरों की अच्छी क्वालिटी को खत्म कर दिया तो गंदी क्वालिटी है जो सुअर है वो वही आएंगे, अच्छी क्वालिटी जो हिरण थे, जो लोमड़ियां थी, जो वन बिलाव थे, जो भी है, जो हमारे प्रकृति के लिए फायदेमंद थे, उनको हमने उनकी जगह ही नहीं छोड़ी। तो अब जो गलियों में गंदगी में बैठे रहते हैं वो हमारी तरफ बढ़ने लगे।
1: बिल्कुल,
0: वही अपने साथ होता है, हम आगे अच्छे संस्कारों को इग्नोर करेंगे तो बुरे संस्कार तो स्वतः ही आ जाएंगे। वो तो कहीं गाली तो बच्चा कहीं भी सीख जाएगा, लेकिन एक कीर्तन भजन सत्संग या एक अच्छी पोएम याद कराने में हमें कितने दिन लग जाएंगे, और गाली तो एक मिनट में आके बोल देगा। 1.5-2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा इतनी भद्दी गाली बोलेगा आप अचंभित हो जाओगे, ये कहाँ से सीख के आगे। तो बुरी चीज तो हर एक सीखता है। आज मैं इतना काम करता हूँ, मेरा इतना मैं वायरल नहीं हूँ, और एक दिन मैं किसी से झगड़ लूँ तो एक मिनट में मेरा वीडियो इतना वायरल होगा, इतना वायरल होगा, दुनिया देखती रह जाएगी यार ये आदमी ऐसे क्यों झगड़ रहा है। और जगह जगह देखो ये पर्यावरणविद खमुराम विष्णु, देखो इसका एक रूप, ये देखो यूं कर करके वीडियो वीडियो आएंगे।
1: जी सर, नेगेटिव चीज जल्दी वायरल होता है,
0: बिल्कुल वायरल होता है।
1: लेकिन आपने अपने हौसलों के साथ उड़ान अपने भरा है और अभी तक भी आप उड़ रहे हैं पर्यावरण के कार्य के क्षेत्र में पॉजिटिविटी के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैंने मेरा संकल्प ले रखा है, जब तक जिंदा रहूंगा धरती माँ को देता रहूंगा, और ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, क्यों धरती ने मुझे ऐसा जीवन दिया। मनुष्य मैं अपने आप को मनुष्य नहीं मानता, भगवान का रूप ही मानता हूँ, क्योंकि भगवान में मुझ में कोई फर्क नहीं है, भगवान में इतनी है कि भगवान दूसरों को देने का प्रयास करता है, मैं कभी कभी चूक जाता हूँ, इतनी कमी है। भगवान हमेशा हर एक को देता है और मैं कभी कभी देने में चूक जाता हूँ, लेकिन थोड़ा प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ देने का प्रयास करूँ। बाकी मनुष्य ही धरती का भगवान है, भगवान अपन कहते भी हैं कि एक मेरे को आज देवता मिला नहीं तो मैं आज पहुंच ही नहीं पाता, मैं बस चूक गया था, मैं फलन जगह ऐसे हो गया था, फंस गया था, लेकिन एक क्या मालूम देवता कहाँ से आया, मेरे को वहां से उसने बिठाया, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, हम कभी कभी वर्तमान सुनाते ही रहते हैं। तो मनुष्य में ही भगवान विराजमान होते हैं, मनुष्य में ही भगवान और देवता रहते हैं।
1: जी सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि विदेशों से भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में क्या सीखना चाहिए भारत को? आप विदेश भी देखे हैं, भारत भी आपने देखा।
0: इसी बात है मैडम, विदेशों में अपने देश के प्रति अटूट श्रद्धा है और अपने आप इग्नोरेंस है, अपने आप इग्नोरेंस है, क्योंकि अपन इतनी इतनी अलग अलग जाति प्रथा में बंट गए हैं और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और कुछ लोग दूसरे कम्युनिटी दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं, तो वो देखे हम यहाँ क्यों ऐसी क्यों हम भाव रख रहे हैं, हमें क्या करना वो क्या करना, समझाए तो समझे नहीं तो अपन समझाओ तो वो कहते क्या ठेका ले रखा है तुमने समझाने का। लेकिन वहाँ दूसरे विदेशों में ऐसा नहीं है, वो अपने देश के प्रति भावना है और अपने देश को साफ रखना चाहता है, और अपने ऐसी भावना नहीं है, क्योंकि एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है और एक अनपढ़ और इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है कि हाँ हमें हमारा क्या लेना हमारा क्या करना, सरकार अपना आप करेगी, हम तो पैसा हम हमारे ऊपर टैक्स लेती है वो लेती है वो लेती है, मतलब हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ नहीं करूं और दूसरा करे, अब दूसरा ऐसा कैसा, मेरा मुंह मैं ही नहीं दूंगा तो दूसरे को क्या पड़ी है, मेरा मुंह धो आए के धोएगा, हाँ छोटा हूँ मेरी माँ है, मैं छोटा हूँ मेरी माँ धो दी, लेकिन मैंने उम्र पा ली, मैं 25 का हूँ 15 का हूँ, माँ आके थोड़ी मेरा मुंह धोएगी। तो ये जब तक हम देश और अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, कर्तव्य को हम इग्नोर करेंगे, तभी हमारा राष्ट्र गंदा होगा और भी ज्यादा बीमारी आएगी, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनको कोई लेना देना नहीं है अपने यहाँ गंदगी हुए या गंदगी सफाई रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। बाहर का आदमी आके जब बांग्लादेश को क्या मतलब कि भारत की स्वच्छता रहे या नहीं रहे, या पाकिस्तानी क्यों आके अपने बारे में सोचेगा भारत साफ रहे, हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि वो अपने राष्ट्र को साफ रखे, अपने गांव को साफ रखे, अपने घर को साफ रखे, और यही होगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। हो सकता है किसी कुछ फोर्स कॉलोनी में कोई विकास समिति बना दी और पर्टिकुलर एरिया आदर्श एरिया बना के उस जगह विशेष को साफ रख लिया हो, लेकिन पूरे भारत को कोई साफ नहीं रख सकता जब तक प्रत्येक आदमी नहीं जागेगा, और प्रत्येक आदमी का कर्तव्य नहीं समझेगा जब तक हम साफ रखने में बड़े ही मुश्किल है। जरूर हम अब मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत की जगह जगह वो कचरा टैक्सी चला दी, लेकिन कचरा टैक्सी में नहीं डालते हैं लोग, कचरा डालते नहीं टैक्सी में, वो देखे 50 रुपए लग जाएंगे, 100 रुपए लग जाएंगे या 80 रुपए लग जाएंगे, अब ऐसे लोगों से हम कैसे सफाई कराएं? 80 रुपए का गुटखा खा लेगा, जर्दा खा लेगा, पान खा लेगा और कोई रात को ड्रिंक कर लेगा, लेकिन कचरा पात्र का महीने का 80 रुपए कचरा वाले गाड़ी को वो नहीं देगा और कचरा खुले में फेंक देगा, और खाता चलता जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लास्ट बात कहकर मेरी बात पूरी करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है पहले थूकता है कोने में और फिर चाहता है कि मेरा इलाज बहुत बढ़िया हो जाए, अरे कैसे हो जाए, मतलब अब मैं एक बात लास्ट में और कहता हूँ, मेरे को याद आ जाती है, क्या करूँ, आपने कहा ही कहा कि आप कुछ याद आए जरूर बताना। अब गिरगिटों की मीटिंग चल रही थी, आप समझ गए, गिरगिटों की मीटिंग चल रही थी, वो नाराज हो गए, आपस में झगड़ने लगे। एक गिरगिट ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या कि ये मानव मनुष्य आदमी बदले जैसे कैसे रंग बदल रहे हो। गिरगिटों ने कहा आदमी बदले जैसे क्यों रंग बदल रहे हो। मतलब गिरगिटों ने हमें उपाधि दे दी कि मनुष्य बहुत ज्यादा रंग बदल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता तो अलग तरह से बिहेव करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता तो अलग बिहेव करता है, और अगर वही एयरपोर्ट में जाता है तो अलग बिहेव करता है। मतलब जगह जगह बदल रहा है, जगह जगह विचार अपनी एक रूपता रखता ही नहीं है, बदलता जा रहा है। और वही देख लो कि कहीं यहाँ बहुत ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी, 100-200-300 रुपए लग जाएगी, तो बड़ी बड़ी होटलों में जाता है तो इतना सीधा हो जाता है, गांव का गंवार होता है भी, वो कहीं नहीं थूकता है, बीड़ी भी नहीं सुलगाता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पलंग के पास में मरीज बैठा सो रहा ऊपर और नीचे बैठा बीड़ी पी रहा है। समझता सब है लेकिन करना नहीं चाहता, वो रंग बदल लेता है। सब समझते हैं, छोटा बच्चा भी समझता है, मैंने आपको कहा था छोटा बच्चा भी समझता है कि क्या कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कौन सी कहाँ रखती है। अब ये जब तक हम राष्ट्र को बच्चे बच्चे को नहीं समझाने में सफल नहीं होंगे, छोटे बच्चे परिवार के लोगों को मानेंगे नहीं ये गंदगी ये सही है, बच्चा आगे बढ़ेगा, युवा आगे बढ़ेगा तभी होगा। बूढ़ों से हमें कोई उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने तो अपनी आदत बना ली है। जो 25-30-40 साल से सिगरेट पी रहा है उसको हम पैर पकड़े बैठे सिगरेट छोड़ दे, मरे नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो शुरू कर रहा है उसको रोक देंगे, कहाँ सिगरेट पी रहा है, तो वो हो सकता है वो हमारी बात मान ले, उसको हम प्रोत्साहित करें तो मान ले, ऐसा हो सकता है।
1: कुछ अंतिम क्षण में हम पहुंच चुके हैं, अंतिम पड़ाव है ये इस प्रोग्राम का, तो कुछ क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी पूछना चाहूंगी। तो एक शब्द में पर्यावरण आपके लिए क्या है, एक शब्द में?
0: एक शब्द में पर्यावरण यही है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो देना सीखना पड़ेगा, प्रकृति को हरा भरा और साफ सुथरा रखना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि हम तो कुमोती मरेंगे, हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं, तो फिर जैसा जियो वैसा जियो, मौत बहुत नजदीक आ रही है, मौत दौड़ती आपको झपट रही है, और मौत आपको कम उम्र में 25-30-35 और हमारी एज 50 से नीचे हो जाएगी, जो जीने की उम्र है ना वो बहुत कम हो आ जाते हैं, बीमारियां
1: है। पर्यावरण मतलब देना है, देना
0: पर्यावरण का मतलब लेना नहीं है, पर्यावरण मतलब देना, अगर आप जो दोगे वो लौट के आएगी। जैसे इको है, इको आप वैसे इको सिस्टम बोलते हैं, इको है पर्यावरण क्या, इको जैसे अपन बोलेंगे, जैसे कुएं में बोलते हैं तो वापस आती है आवाज आती है, वैसे ही ये पर्यावरण है, आप जो दोगे वो वापस मिलेगा। मैं घर के बाहर कचरा फेंकूंगा तो उड़ के घर के अंदर आएगा, नहीं आएगा तो बाहर जाऊंगा तब दिखेगा, और मैं घर के अंदर बाहर साफ रखूंगा तो बाहर जाऊंगा तो सफेद दिखेगी, अंदर भी हरियाली दिखेगी सफेद दिखेगी। वही मैं सफेद कपड़ा पहनूंगा तो मैं सुंदर लगूंगा, अच्छा लगूंगा, मन में शांति होगी। मैं गंदा कपड़ा पहनूंगा तो लगेगा यार आज क्या पहन लिया, लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोग तो दूसरों के लिए भी पहनते हैं। और दूसरी एक पर्यावरण की वो बढ़ती हुई, मैं एक बार लास्ट बात कर देता हूँ, जो फैशन है ना ये पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। ऐसी ऐसी बहने हैं जिनके, जैसे जयललिता जब वो सस्पेंड हुई थी मुख्यमंत्री पद से हटी थी तो अगर 1000 जूतों की जोड़ी है, वो अलमारियां भरी हुई थी कपड़ों से, वैसे हमारी बहनों की भी है, हर मिनट में नया कलर लेके आती है, पहनती है हर शादी, एक ड्रेस को दोबारा पहनने में शर्म महसूस करती है, जबकि हमारे पूर्वज उसकी राली बनाते थे और धोती पुरानी होती थी, धोती का ऊपर कवर चढ़ा के और धोती के अंदर कपड़े भर के रालियां बनाते थे, वो तो हम भूल गए। अब बूढ़े बड़े जावे ना तो उनके, जैसे मेरे दादी जी चले गए या मेरे पास नानी जी चले गए, तो नानी जी के जितने भी कपड़े हैं ना बाहर चौराहे में या कहीं जैसे भी हो कहीं ले जाकर फेंक देते हैं, उन कपड़ों को काम नहीं लेते, जबकि वो पुराने लोग थे, गर्व समझते थे, मेरे दादा की धोती है, मेरी नानी की साड़ी है, इस राली बनाएंगे या बैठने की वो बनाएंगे। तो जब तक हम इस प्रकार का सिस्टम नहीं लाएंगे, भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाएंगे, देखा देखी करेंगे तो देखा देखी करे तो मरे नहीं तो हुए रोग।
1: तो मिनिमलिज्म की बात अब कर रहे हैं और जो हमारे पुराने संस्कृति,
0: बिल्कुल सही है। एक आदमी ने कहा कि धरती के सबसे सुखी आदमी सभी, एक राजा बहुत था, वो बहुत ज्यादा दुखी था, कितने वेद बुला लिए सब कुछ बुला लिए लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ, तो किसी ने एक ने चलता रहा चलता कहा मैं ठीक कर सकता हूँ, ये कैसा, ये जो सबसे संतुष्ट आदमी है उसका शर्ट लाके इसको राजा को पहना दियो। तो राजा ने दूते छोड़े तो कोई संतुष्ट था ही नहीं, कोई अपनी पत्नी से दुखी था, कोई पति से दुखी थे, कोई माँ से, कोई भाई से, कोई पड़ोसी से, कोई सब लोग दुखी थे। एक आदमी नदी किनारे बैठा था, वो एकदम खुश था, एकदम मस्त था, उससे पूछा राजा के दूतों ने भाई तुम कैसे हो गए, मैं एकदम मस्त हो गए, एकदम मस्त, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, तो तुम्हारा शर्ट दो मुझे, तुम्हारा बुशर्ट दो, तुम्हारा पहना हुआ कमीज दो, कि मेरे पास कमीज है कहा, बगल कमीज बेटा मस्त मोला बेटा था। तो संसाधनों से, कपड़ों से और संपत्ति से आदमी कोई सुखी नहीं रह सकता
1: जी,
0: सुख है विचारों में।
1: विचारों में और पर्यावरण के प्रति आपके समर्पण भाव आपको सुख देता है। तो आपका पसंदीदा वृक्ष क्या है सर?

0: मेरा पसंदीदा वृक्ष तो ये खेजड़ी है जो राजस्थान की राज्य वृक्ष है, जिसकी अब सोलर प्लांट की वजह से निरंतर कटाई हो रही है। तो हम तो यही कहेंगे कि खेजड़ी बढ़ाओ, क्योंकि खेजड़ी की लूंग होता है तो वो भी खाद करता है। खेजड़ी के खोके होते हैं वो हिरणों के और पशुओं और जानवरों के लिए खाने, ओटा जहाँ ऊँट के लिए भी खाने के लिए काम आता है। और सांगरी से हम बहुत अच्छी तरह पंचकुटा की सब्जी बनाते हैं। वैसे वैसे जो अपने भारतीय संस्कृति में दूसरे जो पेड़ है, पीपल है, बरगद है, जो अपने अपने पेड़ है, वो सब विलुप्त
1: आपके
0: होते जा रहे हैं।
1: पसंदीदा
0: और नए नए पेड़ लगाए, कोनो कोर्पस नया पेड़ आया है जिसे सब जगह बैन कर रखा है, लेकिन राजस्थान में कुछ जगह लगाए जा रहे हैं जो 12 मास है, लेकिन वो प्रकृति का इतना शोषण कर रहा है। जैसे बबूल, बबूल पेड़ों का राक्षस है। पेड़ों
1: ओके
0: में मनुष्य में जो राक्षस होता है ना, वैसे पेड़ों का राक्षस बबूल है। किसी को नहीं छोड़ा है, हर धरती पहाड़ को नहीं छोड़ा, नदी को नहीं छोड़ा, सड़क किनारे को नहीं छोड़ा और घास को नहीं छोड़ा। जानवर आज अगर गौशाला में है तो बबूल की वजह से है। बबूल उगने नहीं देता घास को, तो
1: जी ओके। तो
0: ये
1: आपका
0: बातें हैं जो
1: खेती
0: मैंने
1: पसंदीदा
0: सुंदर।
1: वृक्ष है और बबूल को हमें जहाँ कम लगाना चाहिए अगर देख रहे हैं तो उसे
0: बबूल छोटे
1: उसके
0: बता,
1: बगैर
0: बदमाश है वो, राक्षस है। राक्षस तो अपने आप ही पनपते हैं मैडम, बबूल को लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप ही, कितनी ऊंची पहाड़ी हो, कैसे हो, कहीं हो, खेत हो, जमीन हो,
1: वहां पे
0: सड़क
1: लगा
0: किनारे
1: हुआ है
0: अपन,
1: उसे हटा के हम दूसरे वृक्ष लगा सकते, पेड़ पौधे लगा
0: लेकिन
1: सकते।
0: इतने इतने संसाधन अपने पास है ही नहीं, लोग रुचि भी नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट भी नहीं ले रही है, प्राइवेट वाले नहीं ले रहे हैं, अपने क्या करना। और बबूल फैलता जा रहा है, ऐसे फैलता जा रहा है कि पूरी सृष्टि को खत्म करेगा। अरे इतने बबूल हो गए, आपने देखा, आपसे क्या छिपा है, मैं आपको क्या बताऊं। कि हो सकता है पहाड़ी आया जो माउंट आबू में उस तरफ कम होंगे, लेकिन हमारे मरुस्थल में तो इधर बहुत है, सड़कों के किनारे
1: जी
0: और जहाँ खाली हो, या नाडी के किनारे हो, या तालाब के किनारे हो, बहुत सारे लगते जा रहे हैं। और पूरी जमीन को, घास की जमीन को बबूलों ने घेर रखा है।
1: जी सर, जी सर। सर, जल, जमीन, आसमान, सबसे पहले किसको बचाना चाहेंगे आप?
0: मैं तो कहूँ पांच तत्वों को बताना चाहिए, पांचों तत्व है, वही भगवान है। इन पांचों तत्वों जो जल, जमीन, आकाश, वायु,
1: लेकिन
0: अग्नि,
1: एक
0: इसमें
1: चूज
0: भी
1: करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले किसको बचाएंगे?
0: अब जल को बचाएंगे तो सब बच जाएंगे।
1: जल को
0: जल ही नहीं
1: बचाएंगे।
0: होगा तो पूरी संपत्ति, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जल से ही सब जीव पैदा हुए हैं, जल बच जाएगा तो बाकी सब बच जाएंगे।
1: ओके सर, जी सर, बढ़िया सर। एक चीज जो हर भारतीय को आज ही छोड़ देना चाहिए, आपको क्या लगता है?
0: प्रदूषण फैलाना,
1: प्रदूषण
0: और
1: फैलाना।
0: क्या।
1: ओके, तो
0: एक आदत,
1: प्रदूषण
0: ज्यादा से
1: फैलाना।
0: ज्यादा धरती को हरी भरी रखें, हरियाली में ही भगवान है। भगवान का दूसरा, हरियाली ही भगवान है, भगवान वही रहेंगे जहाँ हरियाली होगी। हरियाली का नाम ही भगवान है, भगवान, कोई भगवान
1: अरे
0: गंदगी पर जाके नहीं खड़ा रहेगा। जहाँ हरियाली होगी वहीं रहेंगे भगवान, तो
1: जी
0: हरियाली उसमें प्रभु है। हरि
1: बिल्कुल,
0: वाह जहाँ हरियाली।
1: हरी वहां है जहाँ हरियाली है सर। बहुत सुंदर बात है ये। और भारत को हरित बनाने का एक उपाय क्या है आपको लगता है?
0: सभी संकल्प लेंगे तब होगा, बाकी अकेले आदमी साहब सब संकल्प लेंगे कि हम हमारी धरती माँ को हरा भरा रखें, हो गया। बाकी कोई ऐसा उपाय नहीं है, किसी के पास कोई जादू टोना नहीं है, कोई ऐसा डंडा नहीं है कि भारत को हरा भरा बना दे। जब मनुष्य जागेंगे, सब जागेंगे, तभी होगा। ऐसा कोई ऐसा आदमी, एक देवदूत नहीं पैदा होगा, या पहुंच भी नहीं पाएगा कि हरे को हरा बना दे। मोदी जी खूब कहते हैं पेड़ लगाओ, लेकिन अब कितनी सरकारी मशीनरी है, वन विभाग है, कितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े अफसर है, जो IAS के कैडर वाले होते हैं, लेकिन हजारों पेड़ लगते हैं, लेकिन पेड़ों को बड़ा करने
1: जी
0: वाला कोई नहीं है, लगाने वाले खूब है। आत्मा पेड़ों को मारने वाले खूब है, वहां नर्सरी से लगाते हैं और मर जाते हैं बस।
1: जी सर, जी
0: मेरे
1: सर,
0: को कुछ
1: बिल्कुल।
0: कुछ लोग पूछते हैं कि आपने कितने पेड़ बड़े किए, वो ये क्वेश्चन आपने गलत ही पूछा है। वो कहे ऐसे कैसे बोल रहे हो। मैं, आप ये बोलो कितने पेड़ लगा के बड़े कर दिए, ऐसे पूछो। मैंने अगर 50 पेड़ बड़े कर दिए तो अपने आप में बहुत, मैं अपने आप को यूं गर्व गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और मैंने
1: मतलब
0: पांच
1: सिर्फ
0: हजार पेड़
1: लगाना
0: लगा
1: नहीं
0: दिए।
1: बट उनका देखभाल भी करना है सर, ऐसा बोल रहे हैं।
0: हाँ, लगा के देखभाल करके बड़ा करे, और बड़ा दिखना चाहिए, लगना चाहिए। 25 साल तक आप हो तो भी आपको आपका लगाया हुआ पेड़ नजर आना चाहिए, तब तो है। आप लगाया पेड़ है ही नहीं, और आपके तो, मैंने तो मेरे जीवन में 50,000 पेड़ लगा दिए। अरे भाई है कौन सी, जिंदा कितने हैं वो तो मालूम नहीं।
1: जी सर, आपके बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है एक और कार्यक्रम भी कम पड़ेगा। और इतने सारे उपलब्धियां हैं आपके पास, इतने सारे पुरस्कारों की सूची भी है मेरे पास,
0: मैं बिल्कुल
1: लेकिन
0: सही है,
1: वक्त
0: आपकी तरफ से मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। आई विल बी ऑनर्ड बाई गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुझे वहाँ का बहुत बड़ा पुरस्कार देने जा रही है, भारत गुरु जम्बेश्वर
1: आपको बहुत
0: प्रौद्योगिकी।
1: बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन सर,
0: धन्यवाद
1: शुभकामना।
0: मैडम। गुरु जम्बेश्वर प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा।
1: हिसार से। जी सर, जी सर, आपको तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है और फिर से आपको एक और पुरस्कार से नवाजा जाएगा।
0: ये सब प्रभु का खेल है, प्रभु ही है, मैं उनको ही समर्पित करता हूँ। जो भी मुझे धन्यवाद देते हैं तो मैं धन्यवाद भगवान को दो कि मुझे मनुष्य बनाया है, इसे ऐसी समझ दी है। तो एक्चुअल में काम भगवान कर रहा है, नाम मेरा हो रहा है, तो मैं तो हमेशा ऋणी रहता हूँ। मैं हमारा परमात्मा भगवान के साथ शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। वो आपने कहीं सुना होगा, एक कोई सेठ दान दे रहा था और आंखें नीचे हो रही थी, तो किसी ने पूछा कि दान दे रहे हो इतना अच्छा करो, फिर नीचे क्यों आंखें कर रहे हो, क्या देने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ एक बीच की माध्यम हूँ, इसलिए लोग मेरा समझ रहे, तब मेरे को शर्म आ रही है, इसलिए आंखें नीचे कर रहा हूँ। तो मैं भी अपने आप को, लोग मेरे को कहते हैं आप अच्छा करते हो, तो मेरे को लगता है कि करने वाला भगवान है, मैं नहीं हूँ। मुझे समझ दी, अकल दी है तो भगवान ने दी है, मेहनत मेरे, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। और आई एम डूइंग समथिंग ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जाम्बोजी एंड ऑलमाइटी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, और आपके समर्पण भाव को सलाम है और आपके कार्य क्षमता को सलाम है, देशभक्ति को भी सलाम करते हैं आज हम रेडियो मधुबन के माध्यम से। और दोस्तों वक्त हो गया है यहाँ से अलविदा कहने का, तो खम्बूराम जी आपका बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अनुभवों को, संघर्षों को और प्रेरणादायक विचारों को भी हम सलाम करते हैं।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, संपर्क किया, मुझसे बातचीत की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा मुझे शक्ति दे, समझ दे, ज्ञान दे, अकल दे, कि मैं मेरे जीवन के अंतिम क्षणों तक धरती माँ को कुछ न कुछ न कुछ न कुछ ऐसा दूँ कि मेरी माँ मुझ पर गौरवान्वित हुए कि वाह बेटा मैंने कुछ जन्म दिया है तो कुछ समझ के दिया, तुम उसके काबिल निकला।
1: जी बिल्कुल, आप सर काबिल है और धरती माता आप के लिए गौरवान्वित है ही।
0: मैं कहता भी रहता हूँ कि हमें तीन, मैं कभी कहता भी रहता हूँ कि हमारी तीन माँ, एक माँ जो हमें दूध पिला के बड़ा करती, दूसरी माँ गौ माता होती, तीसरी सब माओ की बड़ी माँ, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट मदर, वो कौन होती है, वो धरती माँ होती है जो सब माओ को दूध पिलाती है, सब माओ को भोजन देती है, वो होती धरती माँ। हम बड़ी वाली माँ नाराज हो जाएगी, छोटी वाली माँ जिंदगी नहीं रह पाएगी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही, अगर बड़ी वाले माँ को नाराज नहीं करना है हमको, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के लिए थोड़ा और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहीं पर रुकना चाहते
0: हैं, समय की मांग है, दिस इज द नीड ऑफ आवर, ये समय की मांग है, और समय के हिसाब हम काम नहीं करेंगे तो फिर बेहाल होना ही है। पानी पीना है, पानी नहीं पी रहे हैं तो कह रहे हैं वो डॉक्टर कहेंगे भी पानी की कमी होगी, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा।
1: सही सही बात है, तो समय की मांग को देखते हुए हमें पर्यावरण के लिए एक कदम जरूर उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी प्रेरणादायी बातों के लिए, और आपके बारे में जानकर के हमारे श्रोताओं को भी बहुत प्रेरणा मिली है, और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से।
0: मैं आपका ऋणी हूँ, और प्रभु ने चाहा तो आपने जो भी आशा की है उसका मैं पालन करूंगा मेरे जीवन में।
1: धन्यवाद सर, तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते
0: नमस्ते।
2: आवश्यक सूचना, 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबूराज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबूराज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: रन रन रन,
4: दौड़ो दौड़ो दौड़ो,
5: आओ दोस्तों दौड़ लगाते हैं 9 अगस्त को
4: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन।
5: जी हाँ, इसका थीम है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। संडे अगस्त 9 को ये मैराथन शुरू होने वाला है
4: सुबह 5 बजे,
5: तो आप सभी का इस मैराथन में भरपूर स्वागत है, और आप सभी इस मैराथन में भाग लेकर रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जरूर बढ़ाइए। जी हाँ, इस भाईचारे को दुनिया भर में जरूर फैलाइए, इस मैराथन में भाग लीजिए और खुशियाँ दुनिया भर में बांटिए।
4: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन।

0: ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, और आशा करूंगा आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है एवरी सैटरडे हम लोग इस प्रोग्राम में देते हैं, जीवन विकास इस प्रोग्राम में, जहां पर हम लोग अपने यूथ को टारगेट करते हैं कि वो अपने करियर को कैसे चूज करें, या फिर उनके हॉबीज है, या उनकी जो अलग तरह के आर्ट है उनके अंदर, तो उन सभी को कैसे शेप करें। तो एक्सपर्ट से जब हम लोग बात करते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी जीवन की कुछ अनुभव जो है हम सभी को मोटिवेशन देता है। वैसे मैं कहूँ कि आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईटी सेक्टर में कुछ काम करना है, तो इसके लिए इंटरनेट पे आपको भरपूर माहिती मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और इसके साथ में आपको स्कूल में भी करियर के फेयर लगते हैं, तो वहां से भी कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाता है। लेकिन जो रियल एक्सपीरियंस जब हम लोग शुरू करते हैं या किसी एक्सपर्ट से सुनते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिल जाता है, एक प्रॉपर जो है वे मिल जाता है कि इनके जीवन में ये चीजें आई तो इन्होंने क्या किया। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान बीके अर्चना जी हैं। तो बीके अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, कैसे हैं आप?
1: शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छे।
0: जी। बीके अर्चना जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और मैं चाहूंगा कि वर्तमान में आप कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं। जी
1: जी, नाम है बीके अर्चना। एक्चुअली हमारा बर्थ हुआ है हरियाणा में,
0: जी जी
1: और उसके बाद 2 इयर्स हम लोग दिल्ली में रुके, और उसके बाद 20 इयर्स आई वॉज इन दुबई। अभी हम 3 इयर्स से नोएडा में स्टे कर रहे हैं, और यहाँ पर अपने से पॉसिबल होता है हम लोग
0: जी
1: वो
0: जी
1: सेवा में रहते हैं, हॉबीज
0: ओके
1: हैं या जो भी शौक हमारा रहा है।
0: अच्छा, आपकी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए, बचपन की बातें, स्कूल लाइफ के बारे में।
1: जी, स्कूल लाइफ बहुत अच्छा वहीं हरियाणा में रहा है, तो बचपन से ही बिकॉज वी वर किड्स तो एंजॉय करते थे, लेकिन वहीं पर हमने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मैरिज हो गई तो उसमें बिजी हो गए बच्चों में,
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: कुछ समय के बाद जब अपने बच्चे बड़े हो गए उसके बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि हाँ, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के साथ कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, फिर अलग अलग एज ग्रुप के साथ जो सिचुएशंस आती हैं उनको कैसे हैंडल करना है, अपने अपने घर में तो बच्चों से सीखने को मिला, लेकिन हाँ, वो एक्सपीरियंस हमारा आगे फिर काम आता है कुछ भी अगर हम नया करना चाहते हैं तो उसमें
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: हेल्प मिला हमें, बहुत हेल्प मिला, और हमेशा हम बच्चों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। और
0: बिल्कुल
1: कुछ
0: बिल्कुल
1: 5 इयर्स बिफोर हम लोग कुछ स्पिरिचुअलिटी में आ गए, तो वो दैट इज एडिशनल बेनिफिट रहा उसका हमको ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: अच्छा अर्चना जी, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे स्कूल या कॉलेज में जब आप थे, तो आप किस तरह के करियर के बारे में, अगर आप कुछ बनना चाहते थे तो क्या सोचते थे, किस फील्ड में आप जाना चाहते थे?
1: एज सच उस समय भी एक ये रहता था कि कुछ टीचिंग लाइन में कुछ करना है, तो लेकिन कुछ डायरेक्शन क्लियर नहीं थे, लेकिन पता नहीं था कि इतने सालों के बाद अभी हमको ये सब मिलेगा चांस करने का, तो इट वाज फन, बहुत मतलब एंजॉय कर रहे हैं अभी तो हम इस समय को, और जो भी हम लोग बच्चों के साथ एक्टिविटीज करते हैं। कुछ टाइम हमें एक प्रैक्टिस भी रहा वहां पर जब हम बाहर थे दुबई में, तो कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे तो बच्चों को मैनेज करने का ड्यूटी मिलता था,
0: बिल्कुल
1: तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ में हुआ तो उसको हम करियर भी बना सकते हैं, तो उसमें ऐसा लगा हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, दुबई में कितना समय आप रहे?
1: 20-21 इयर्स।
0: जी। तो
1: जी
0: वहाँ का एजुकेशन सिस्टम या वहाँ पर किस तरह के जो है चीजें आपने देखी, थोड़ा सा बताइए वहाँ का।
1: इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ पर मतलब हर तरह से हम लोगों को सपोर्ट मिलता है, जैसा कि एक दुबई का पिक्चर माइंड में, दुबई सुनते ही आज से 10-20 साल पहले पीछे जाएं तो इमेज अच्छा नहीं था, दुबई का नाम सुनते ही लोग थोड़ा पीछे हो जाते थे,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लेकिन बहुत ही सपोर्टिव हैं वहाँ फैमिलीज भी, जो इंडियंस रहते हैं वो भी, इवन जो वहाँ के लोकल्स हैं वो भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं. एक
0: जी
1: सेल्फ
0: जी
1: रेस्पेक्ट है सबका, लेडीज के लिए, फैमिलीज के लिए, रोड्स पे, ट्रैफिक रूल्स में, मतलब सब जगह. और स्कूल्स में भी टीचर्स बहुत अच्छे से डील करते हैं, कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं है बट इजी वे में, मतलब इतना प्रेशर नहीं है वहां पर स्टूडेंट्स को लेकर भी.
0: जी। चलिए,
1: जी
0: बहुत अच्छी बात आपने बताया कि वर्तमान समय में वहाँ पर किस तरह का सिनारो है, ये आपने
1: जी
0: बताया। और एजुकेशन वगैरह जो भी है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो काम चल रहा है वहाँ पर भी। और आपने बताया कि भाई वहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष सम्मान भी है और सब चीज़ें जो है विधिवत चीज़ें चलती हैं और रिस्पेक्टफुली वो काम करते हैं, ये आपने
1: जी
0: बताया।
1: इवन
0: और
1: इवन जो अथॉरिटीज भी हैं ना, वो
0: हाँ
1: भी
0: हाँ
1: बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, फैमिलीज
0: बिल्कुल
1: को बहुत
0: बिल्कुल
1: ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, तो
0: सही बात है।
1: इट्स अ गुड थिंग.
0: जी। एक मैं बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि एक जैसे कि हम लोग दुबई की जब बात करते हैं तो एक टूरिज्म की तरह उसको देखा जाता है, टूरिज्म के लिए काफी मशहूर है दुबई। तो मैं चाहूंगा कि क्या एक टूरिज्म के हिसाब से किस तरह से कितने दिन में हम पूरा दुबई को देख सकते हैं? आप वहाँ की कुछ अच्छी चीजें जो टूरिज्म के हिसाब से हमें देखना है तो थोड़ा
1: ओके
0: सा बताइए वहाँ पे।
1: जी, एक्चुअली हम लोग 21 इयर्स रहे, और 21 इयर्स में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर चेंज हो गया. जो हमें जंगल लगता था कि ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो डेजर्ट है, इट्स लाइक अ हेवन, मतलब बोल सकते हैं उसको आज के टाइम में. बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, और वहां पर गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है फैमिलीज के लिए. कुछ भी एक्टिविटीज हैं, आपको हॉलीडे डिपेंड्स कि आपके पास कितना समय है, आप उतना समय वहां पर स्पेंड कर सकते हैं. 5 डेज में भी जाते हैं यहाँ से ट्रिप्स, और लेकिन थॉरली अगर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहें तो 15 डेज में भी, मतलब आप कवर कर सकते हैं उसको. बहुत सारी किड्स के लिए एक्टिविटीज भी हैं, और एल्डर्स के लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हैं, रिसॉर्ट्स हैं. अच्छा है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस.
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर अर्चना जी आपसे जुड़ेंगे और दुबई में जो खास चीजें हैं, बहुत ही फेमस जो चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, जो खास करके टूरिज्म के हिसाब से उन चीजों को डिजाइन किया गया है वो हम सुनना चाहेंगे आपसे। और अभी लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुरा।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और अर्चना जी से हमारी बातें हो रही हैं। बीके अर्चना जी हमारे साथ हैं और खास एजुकेशन का जो है इनका विशेष आकर्षण रहा है, और अगर इनको मौका मिलता तो एजुकेशन में ही ये बच्चों को पढ़ाने का काम करते। लेकिन शुरू शुरू में ये चीजें उनको नहीं मौका मिला, लेकिन वापस दिल्ली आने के बाद इनको ये मौका मिला और ब्रह्मा कुमारी के संस्थान से जुड़कर ये एज ए सेवा प्रोफेशनली नहीं बल्कि अपने हॉबी और अपने सेवा समझकर वो अभी बच्चों को पढ़ा रही है। और छोटे बच्चों के साथ इनका जो है बड़ा अच्छा रैपो बनता है, बच्चों के साथ इन्हें बड़ा अच्छा भी लगता है। तो इस हिसाब से कहते हैं कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो अगर हम बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर खुशी होती है। और खास करके अर्चना जी को इस कार्य में बड़ा रुचि होता है तो वो इस कार्य को कर रहे हैं। अगर आज के समय में हम लोग देखा जाए तो एजुकेशन में और खास बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष ट्रेनिंग भी दिया जाता है। आप देखते हैं कि बड़े शहरों में बच्चे जो है सीनियर जूनियर केजी चलते हैं, उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट में उनको एंट्री मिलती है। तो बच्चे जब 6-7 महीने या चलना फिरना शुरू कर देते हैं तो उसी समय से जो है उनको जो है खास स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। और बच्चों को जो है वहां पर खेलना, खाना पीना, कैसे रहना है, छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं। और फिर उनको जो है राइम पोएम्स वगैरह से उनको जो है ट्रेन किया जाता है। और बाद में फिर 2 साल के बाद उनकी फर्स्ट स्टैंडर्ड शुरू हो जाती है। तो निश्चित तौर पे बच्चों को खास इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बच्चे रेगुलर स्कूल या स्कूल के सिस्टम से फेमिलियर हो, इसके लिए जो है केजी और ये एलकेजी वगैरह शुरू हुआ है। और इसमें भी लोग जो है अच्छा करियर बना सकते हैं जिन लोगों को बच्चों के साथ प्यार है। तो एजुकेशन के लिए आप अगर सोच रहे हो तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और ये छोटे कोर्सेस होते हैं, आप जो है इस कोर्सेस को करके फिर आप बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मोंटेसरी कोर्स होता है या फिर एजुकेशन का कोई भी आप एक जो कोर्स है कर सकते हैं। और इसके बाद में मैं देखा हूँ कि कई बार जो है संस्थान जो रहते हैं एजुकेशन एनजीओ होते हैं जो खास बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं। और ये लोग ऐसे काम करते हैं जहां पर जो है कुछ बच्चे जो है जैसे गांव में है या गरीब है, वो क्या करते हैं, बच्चे तो एडमिशन लेके पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका फिर क्या हो जाता है, फैमिली का कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ उनके फैमिली में कुछ ऐसी चीजें आ गई तो वो बच्चों को जो है आगे की पढ़ाई पढ़ाते नहीं है। और फिर कई बार बच्चे खुद भी कुछ कारणवश छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट बच्चों का भी एजुकेशन के लिए एनजीओ काम करते हैं, बहुत सारे संस्थान हैं। और वो लोग सिर्फ बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए, एडमिशन करवाने के लिए काम करते हैं। तो इन एनजीओ को भी आप जैसे एजुकेशनिस्ट टीचर्स जो बच्चों से प्यार करते हैं उनके लिए बहुत सारे ये मौके आते हैं जहां पर वो एनजीओ से जुड़कर अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं, एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही अच्छा काम है। और ये खास जो लोग फैमिली में रहते हुए अगर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए मैं बीके अर्चना जी को फिर से जुड़ना चाहूंगा। और हम लोग बात कर रहे थे उनका जो है दुबई में 21 साल वो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दुबई का पूरा जो है सब चीजें जो है उनका जो है क्या कहते हैं जंगल से मंगल कैसे हुआ वो सारा जो इतिहास है उनके पास उन्होंने देखा होगा। तो आइए मैं चाहूंगा कि अभी जो खास टूरिस्ट प्लेस जो फेमस है दुबई में, खास टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए जो चीजें बनाई है उनके बारे में थोड़ा बताइए।
1: जी, वहां पर एक्चुअली जैसे कि सब लोग जानते ही हैं कि दुबई सी के अंदर पूरा का पूरा सिटी बना हुआ है। अभी वहां पर रिसेंटली कुछ समय पहले एक पाल्मा बीच एरिया बना है जो पाम की शेप में है, बिल्कुल सी के अंदर। वो घूमने के लिए बहुत अच्छा है। मिराकल गार्डन है, मतलब वहां पर वैरायटी ऑफ फ्लावर्स जितना भी हम सोच सकते हैं सब वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स हैं।
0: अच्छा।
1: और उनको इतने अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है कि मतलब वी कैन स्पेंड होल डे देयर। बटरफ्लाई गार्डन है, मतलब बच्चों के लिए तो बहुत बहुत सारा एक्टिविटीज है वहां पर। फिर एक दुबई फ्रेम है, आजकल उसमें मूवीज में बहुत आता है दुबई फ्रेम करके, और वहाँ दुबई के सब सब प्लेसेस जो क्रीक बोला जाता है, सी साइड पे थोड़ा एरिया डेवलप कर दिया जाता है, उसको वो लोग डेकोरेट करते हैं, और इट्स अ फन टाइम। मतलब वीकेंड्स में आप चले जाओ, बिकॉज अब रोड में और कोई तो एक्टिविटीज होती नहीं है, तो सब फैमिलीज कलेक्टिवली वहां पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स कर लेते हैं। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये
0: जी
1: बुर्ज
0: जी
1: खलीफा, सब मतलब घूमने के लिए ही, वो तो है ही टूरिस्ट प्लेस, तो कितने भी
0: जी
1: दिन आपके पास हो डिपेंड्स ऑन मनी एंड टाइम कि कितना हम स्पेंड कर
0: जी
1: सकते हैं वहां पर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेसेस हैं दुबई में, अगर आप एक बार चले जाते हो तो जितना आप खर्चा कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, उतना आपको जो है फन है वहां पर, उन चीजों को आप देख सकते हैं।
1: एक
0: तो
1: चीज
0: बेस्ट
1: इसमें
0: टूरिज्म
1: और
0: प्लेस।
1: ऐड करना चाहूंगी
0: जी
1: कि
0: जी
1: वहाँ की हॉस्पिटैलिटी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, क्योंकि
0: अच्छा।
1: हम लोग बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं, लेकिन
0: हाँ
1: 5 स्टार्स में भी वो फैसिलिटी यूएस में भी नहीं होती है, यूके में भी नहीं होती है, जितनी दुबई की हॉस्पिटैलिटी इज द बेस्ट।
0: जी।
1: जी
0: चलिए, मैं चाहूंगा कि वहाँ के जो, जैसे हॉस्पिटल की बात, हॉस्पिटलिटी की आप बात कर रहे थे,
1: जी
0: तो ये सभी जगह, माना जहाँ भी आप टूरिज्म में, टूरिज्म प्लेस में जाएंगे तो ये चीजें देखने को मिलती वहाँ पर।
1: जी
0: अर्चना जी, मैं एक और बात पूछना चाहूंगा। आप कितने प्लेसेस को देखा, सारी चीजों को देखे या कुछ रह गया
1: यस,
0: आपका?
1: टिल 3 इयर्स बिफोर एवरीथिंग आई हैव सीन।
0: अरे वाह।
1: मतलब 3 साल पहले जब हम लोग यहाँ आए तब तक जो भी बना था, उसके बाद माय डॉटर वाज देयर, तो वो बताते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये चीज भी नई आई है वहां पर ना।
0: जी। आपको उनमें से जो स्पेशल लगते हैं कि ये तो देखना ही चाहिए, ऐसा कुछ है?
1: सब सब चीजें ही बहुत अच्छी हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक बोल ही नहीं सकते क्योंकि जो भी मिस किया वो गया। बाकी मॉल्स हैं ना, तो मतलब दुबई मॉल है, और ये मिराकल गार्डन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ का वहाँ पर इवन इंडियन जो टेंपल्स बने हैं वो भी देखने के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे अमृतसर का यहाँ पर गोल्डन टेंपल बोला जाता है, वहाँ पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है,
0: अच्छा।
1: वो इंडियंस जाते हैं तो वो घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और अभी रिसेंटली एक टेंपल कृष्णा लक्ष्मी नारायण टेंपल वहां पर बना है, उसके वीडियोस देखो तो बहुत बहुत सुंदर बना हुआ है।

0: क्वालिटी है, तो मुझे अगर चांस मिलेगा तो मैं छोटे बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना चाहूंगी। और जो चीज हम लोग उनको बताते भी हैं, रिसेंटली हमने ऑब्जर्व किया कि
1: जी
0: जब हम छोटे बच्चों को कुछ बताते हैं ना, तो वो लोग बहुत इंटरेस्टिंगली सुनते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग फोन में हैं, क्योंकि आज के टाइम में देखो तो डिजिटल डिटॉक्स के इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं वो आदत ना उनमें खुद ही डाल देते हैं। लाइक बच्चे ने खाना नहीं खाया है तो 6 मंथ के बच्चे के हाथ में हम फोन दे देते हैं और वो खाना खा लेता है, और बाद में एक एज के बाद हम लोगों को ये चीजें प्रॉब्लम करने लगती हैं कि देखो फोन पे ही बैठा है। फिर हम टीचर्स से कंप्लेन करते हैं कि आप इनका फोन छुड़वा दो। तो ये एक रूटीन में होती हैं ये चीजें लाइफ में। तो अगर हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ एक्टिविटीज करेंगे, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, लर्निंग इज एवरीवेयर ना, तो मुझे लगता है कि वो चीज को चेंज किया जा सकता है। तो आई ऑलवेज प्रेफर स्मॉल किड्स।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आप अगर एजुकेशन में होते हैं तो छोटे बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं। और अभी आपको क्या मौका मिला है, अभी आप उन चीजों को, आपका जो ये पैशन रहा है एजुकेशन के साथ बच्चों को सिखाना या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो वर्तमान में आप जो है कैसे इन चीजों को कर रहे हैं? जी।
0: कुछ समय पहले से मैं स्टार्ट करूंगी कि कुछ 10 15 ईयर्स बिफोर कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी जो हम लोग अपनी फैमिली की पार्टीज में बच्चों के साथ और कोई जैसे डांस प्रोग्राम हो रहा है तो वहां करते
1: जी
0: थे।
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: वो चीज हमारे को यहाँ पर बहुत हेल्प की। यहाँ पर आए तो हमें कुछ ऐसी सर्विस करने का चांस मिला कि हम बच्चों को कुछ एंटरटेन करें, उनको कुछ स्लो लर्निंग प्ले वे मेथड में सिखाएं। तो वो चांस मिला तो कुछ 2 ईयर्स से हम लोग बच्चों के साथ वो प्रैक्टिस करते हैं। छोटी छोटी चीजें बोलते हैं करने को, लेकिन जब हम उस उनको साथ उनको दिखता है ना कि हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो लोग उस चीज को और ज्यादा इंटरेस्टिंगली करते हैं। शायद पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट हम बच्चों को उस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बीइंग अ टीचर मतलब जो हमारा टीचर का रोल होता है उसमें अगर हम किड्स को कोई बात समझाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनको लगता है कि हाँ हमारे लिए ये इम्पोर्ट हम मतलब उनके लिए हमारे लिए वो लोग इम्पोर्टेंट हैं, तो उसमें बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारे 2 3 बच्चों के तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, तो वो लोग शेयर करते हैं कि हाँ मतलब इतने हमें खुशी होती है कि अपने पेरेंट्स के को भी मतलब छोड़ के वो हम लोगों के साथ भी इतना इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ बच्चे हर चीज इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत मतलब बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इस चीज में, और फोन से वो लोग खुद ही डिटैच होते जा रहे हैं। मतलब उनको हमें फोर्स नहीं करना पड़ता है कि आप फोन नहीं यूज करो,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उन
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उनको अपने इंटरेस्ट की चीजें करने को मिलती हैं, तो वो लोग अपने आप ही डिटैच हो जाते हैं उन चीजों।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारा ही होता है कि हम लोग उनको टाइम नहीं देते हैं, चाहे लाइफ टाइम के हिसाब से बिजी लाइफ है जो भी है, जॉब कोई भी रीजन हो सकता है, बट हम लोगों को ही थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा।
1: जी अर्चना जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बच्चों के साथ आपको जो है बड़ा रुचि, अच्छा लगता है और आप उन चीजों को करके बेहद खुशी महसूस करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस कार्य को करके आपको खुशी मिलती है उसी में आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपका लाइफ जो है बहुत ही अच्छी तरह से सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो हर व्यक्ति चाहता है कि अपने लाइफ में सब कुछ हो। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए आप उन चीजों को करें जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो निश्चित तौर पे आप ऐसे ही करियर के बारे में तलाश कीजिए। और ये जो छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम जो है, ये आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस आपका बन सकता है, आपका हॉबी भी। तो देखना है कि आपको कैसे ही, आप जिस जगह पे रह रहे हो वहां पर क्या फैसिलिटीज है, क्या चीजें हैं, तो आप एक बार सोच के देखिएगा। और नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से छोटे छोटे कोर्सेस अवेलेबल हैं, 6 महीने के हैं, साल भर के हैं या 2 साल के हैं, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन करके आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे एनजीओस बने हुए हैं जो खास इस एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अर्चना जी, मैं चाहूंगा कि अब इस ब्रेक

0: आपका पसंदीदा एक गाना हम सुनाना चाहेंगे, तो आपका कौन सा गाना जो बहुत ही अच्छा लगता है आपको? वैसे बहुत सारे गाने होंगे, लेकिन इस वक्त आपको कौन सा गीत याद आ रहा है? दो लाइन उसकी गुनगुनाइए।
1: तार मन के तुम्ही से जुड़े ही रहे। आई लाइक दिस सॉन्ग, दिस इज द लेटेस्ट सॉन्ग बाय हरीश मोयल
0: जी
1: जी।
0: चलिए, इस
1: रियली इट
0: स्पिरिचुअल
1: टचेज
0: गीत
1: माई
0: को हम,
1: हार्ट। यस
0: जी, ये बहुत ही प्यारा सा आध्यात्मिक गीत आपने याद कराया है हरीश मोयल जी का, तो आइए इस गीत को सुनते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो 1 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। बीके अर्चना जिससे बात हो रही है और बहुत ही प्यारा सा सूदिंग आध्यात्मिक गीत आपने सुना हरीश मोहल की आवाज में। और मुझे लगता है कि अगर आपने पहली बार इस गीत को सुना है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप निश्चित तौर पे कनेक्ट भी हुए होंगे। तो आइए आपके मन को और खुशी प्रदान करते हैं। अगर आप करियर के बारे में मतलब पार्ट टाइम करियर के बारे में सोच रहे हो तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बच्चों को पढ़ाने का, एजुकेशन वाला। तो ये चीजें आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं और आप जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश संस्थाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज स्कूल है, एनजीओस है, उनसे जुड़कर भी आप जो है पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो आइए मैं फिर से आपको बीके अर्चना जी से जोड़ना चाहूंगा। बीके अर्चना जी, मैं अभी चाहूंगा कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला आपका कैसे जुड़ना हुआ और फिर आपको यहाँ ऐसी क्या चीजें मिली जो आप कनेक्ट अभी तक है?
2: मुझे 5 ईयर्स हो गए हैं, 2018 में मैंने स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन किया।
1: जी जी, जी.
2: और फ्रॉम द फर्स्ट डे इट चेंज्ड माय लाइफ। पहला दिन मतलब जैसे ही मैंने एंटर किया तो ऐसा लगा कि पीछे की लाइफ तो डिलीट हो गई। तो इट वॉज अ मैजिक फॉर मी। और मतलब जो भी रियलाइज नहीं होता था कि ये सब चीजें हमारी लाइफ में कमी है, मतलब कुछ और होना चाहिए, ऐसा कभी फील नहीं होता था। और सिर्फ जस्ट एक मेडिटेशन सीखने के पर्पज से जो हमने एंटर किया था, और ये मालूम ही नहीं था कि इतना सब कुछ मिल जाएगा कि मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि अब हम देना शुरू कर दें, मतलब सबको बताएं कि क्या क्या वंडर्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी में। और किसी भी फील्ड में ले लें, स्टडीज करना है, घर के कुछ भी सिचुएशंस है, मतलब हमारी पूरी वोकैबुलरी चेंज हो जाती है। हमें जो चीजें पहले प्रॉब्लम्स लगती हैं वो अब वो सिचुएशंस बन जाती हैं। जो चीज हमें शायद कभी लाइफ में लगती है कि बहुत बड़ी थी, इसको कैसे डील करें, उसमें लगता है कि ठीक है, एक पॉज देते हैं हम अपने को, एक मिनट साइलेंस, और कुछ सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते नहीं है और हम लाइफ में परेशान होते जाते हैं। तो उसको जब हम रुक कर सोचना शुरू करते हैं तो अपने आप वो चेंजेस आने लगते हैं। और ये पॉज लेना नॉर्मली लाइफ में इतना इजी नहीं होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हम लोगों का ये हैबिट बन जाता है। और हमें एकदम से रियलाइजेशन होने लगता है कि नहीं, ये गलत स्टेप है, इसको चेंज करना है और इसको राइट कैसे करना है। तो वो डायरेक्शंस अपने से मिलती जाती हैं, हमारे अंदर इनर पावर्स आती जाती हैं और मैजिक देखने को मिलता है, तो हमें अपनी लाइफ मूवी की तरह दिखने लगती है।
1: यस, चलिए, बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और अभी बच्चों के लिए वर्तमान में आप किन बच्चों के साथ जुड़कर उनको एजुकेट कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, जिन बच्चों से आप जॉइन वो जुड़कर काम कर रहे हैं। जी
2: जी, हमारे यहाँ पे ब्रह्म कुमारी संस्था के अंडर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो डेली क्लासेस अटेंड करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, उनके ही किड्स हैं और उनसे जुड़े और जिन जिनको पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, यहाँ जाकर कुछ लर्निंग है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो उनसे हमने स्टार्ट किया था, कुछ 5 और 6 स्टूडेंट्स थे। लेकिन वो धीरे धीरे ऑन एंड ऑफ, क्योंकि एग्जाम्स हैं, वेकेशंस हैं, तो वो लोग ऑन एंड ऑफ आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन मतलब वो जुड़े हुए हैं, ऑलवेज कहीं देखते हैं, तो उनको एक लाइवली फीलिंग होती है सबसे मिलके, उनसे मिलके दूसरे लोगों को इतना अच्छा लगता है। तो वो उनके जब पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो आगे होके पूछते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, हम वहां पर अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। रिसेंटली हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ समर कैंप, तो उसमें भी बच्चों के लिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि पेरेंट्स आर विलिंग टू सेंड देम। और उनको ये विश्वास है अंदर से कि जो अंदर हमारे संस्कार हैं, जो हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं, वो हम बच्चों की कैसे बाहर निकालें, उनकी लाइफ को कैसे, मतलब उनको श्योर है, पेरेंट्स को भी, कि यहाँ से ही बच्चे आगे अपने लिए अच्छी गाइडेंस पा सकते हैं।
1: जी जी, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और अब तक आप कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं?
2: एक्चुअली ऑन एंड ऑफ आते हैं, कभी 5 कभी 10। हमारा एक बहुत छोटा सा यहाँ पर सेंटर है, हम लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन हाँ, मतलब जो हमने अभी प्रोग्राम किया उसमें काफी बच्चे थे, मतलब सेंटर्स के
1: और
2: जो
1: समर
2: मिक्स
1: वेकेशन
2: सिस्टर्स
1: वगैरह आप
2: हैं।
1: करते हैं क्या?
2: द समर कैंप हुआ वहाँ पर ना,
1: जी जी
2: तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किया, सब लोग ने मिलके टीम वर्क। जी
1: चलिए अर्चना जी, काफी अच्छी बातें आपने बताया, और मैं चाहूंगा कि जाते जाते बच्चों के साथ आपका जो इंटरेक्शन होता है, तो एक दो एग्जांपल्स दीजिए क्या आपको लगा, और किस तरह से बच्चों को आपने उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा, वो थोड़ा सा एक दो एग्जांपल दो चार बच्चों का आप सुनाइए।
2: हमारे पास शुरू शुरू में एक बच्चा आया, तो
1: हाँ
2: जैसे ही वो एंटर किया तो हाँ, कभी भी वो बैठता नहीं था। मतलब वो, उसको 1 सेकंड भी, जैसे होता है ना बॉयज का थोड़ा
1: हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चे
2: चुलबुले रहते
1: बैठते ही
2: हैं
1: नहीं।
2: बहुत।
1: हाँ हाँ हाँ
2: यस, तो वो 1 सेकंड के लिए भी बैठते नहीं थे, लेकिन अभी वो उनको अच्छा लगता है। वो कभी मिस भी कर देते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हमें मिस नहीं करना है। एक बहुत अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो बच्चा आ, आ, कुछ क्लासेस ज्वाइन किया हुआ था, तो उसको उसने खुद अपना एक्सपीरियंस फोन करके बताया कि दीदी मैंने ऐसे ऐसे फॉलो किया जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, मेरा नेशनल लेवल में सिलेक्शन हो गया है। तो वी वर सो हैप्पी ना, क्योंकि जब वो बोलता था ना कि दीदी हम लोग भूल जाते हैं, तो हम उनको कॉल कर करके बीच में फोन करके कि ठीक है आप भूल जाते हो, लेकिन जिस टाइम आपकी क्लासेस होंगी उससे जस्ट 10 मिनट्स बिफोर वील मैसेज यू और वील कॉल यू। तो ऐसे ऐसे जैसे, मतलब उनको भी लगा कि हाँ हम लोग उनकी ग्रोथ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका इंक्लाइनमेंट इधर होने लगा, तो बहुत अच्छा। और कुछ चीजें जैसे हम लोग यहाँ क्लासेस में फॉलो करने को बोलते हैं कि आप ऐसा करो तो आपको ऐसा बेनिफिट होगा, तो दो तीन बच्चे और भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब आगे जाके उनको खुद आगे होके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जो लोग बिल्कुल बोलते नहीं थे, मुझसे कुछ बात नहीं निकलती थी, लेकिन आज आगे होके वो खुद बोलते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना है या हमें पार्टिसिपेट करना है, तो देख के अच्छा लगता है और हमें भी थोड़ा अंदर से मोटिवेशन होता है कि हाँ हमें भी कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि अगर वो करना चाहेंगे तभी ही हम लोग का एफर्ट्स दिखाई देंगे ना, नहीं तो कुछ बेनिफिट लगता नहीं है फिर। इसलिए जैसे जैसे वो डिमांड करते हैं वैसे वैसे सप्लाई बढ़ता जाता है। या तो ये टीम वर्क होता है, वो लोग मतलब दोनों का मिलके ही होता है जो भी काम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वीके अर्चना जी, बहुत ही अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुनकर, और बड़ा खुशी हुआ कि हमें जो पसंद है उन चीजों को जब हम करते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते कि वे पैकेज कितना मिल रहा है, कितना टाइम जा रहा है, या क्या चीजें, कितना पेशेंट हमें रखना पड़ रहा है, लेकिन आपका हॉबी है तो वो चीजें सारी जो है जीरो हो जाती हैं। आप उसे करके खुशी फील करते हैं, उस कार्य को कर उस जगह उपस्थित होकर आपको खुशी मिलती है, जो खुशी जैसी खुराक और कहीं नहीं मिल सकता। खुशी जैसी खुराक बोले जाता है कि भाई बहुत बड़ी जो चीज है वो है खुशी की खुराक, उसका आप अनुभव करते हैं, इसीलिए आपको जो है किसी भी तरह का तनाव या टेंशन नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी बात आपने शेयर किया कि बच्चों के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए आप टाइम निकालते हैं और बच्चों के साथ काम भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करूंगा कि वीके अर्चना जी को सुनकर आपको बच्चों के साथ कितना उनका लगाव है ये आप समझ गए होंगे, और छोटे बच्चों के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन जो हमने बीच बीच में आपको बता दिया है, फिर भी आप इंटरनेट के माध्यम से जो है बच्चों के साथ जुड़ने के कौन कौन से करियर है आप टाइप करेंगे तो बहुत सारी चीजें आएगी, और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो सिखाते भी हैं, तो आप उनसे सीख कर भी आप इसमें करियर बना सकते हैं। तो जरूर मैं चाहूंगा कि आपको अगर बच्चों के साथ अच्छा लगता है, और जो लोग घर पे हैं और जो लगता है कि उन्हें कुछ पार्ट टाइम करना है, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा जो है करियर का ऑप्शन बन सकता है और खुशी का भी टाइम हो सकता है। तो इसीलिए आप इस पर, अगर आप घर पे हैं और पार्ट टाइम जॉब की सोच रहे हैं, तो ये जो है बहुत ही अच्छा आपका करियर ऑप्शन हो सकता है, एक बहुत ही अच्छा टाइम खुशी वाला जो है टाइम हो सकता है आपका, तो आप इस पे जरूर काम कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जाते जाते बीके अर्चना जी को मैं कहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें सभी के लिए। जी
2: मैसेज तो यही है कि जो मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है कि जब हम खुद स्ट्रांग हैं तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सिचुएशंस में चेंज होके बहुत स्लोली ऐसे निकल जाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। तो अपनी अपनी जो स्थिति है स्वस्थिति अगर अच्छी है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं रहती है, बहुत कम रुई जैसा निकल जाता है वो ना।
1: बिल्कुल,
2: तो ये मैसेज देना चाहूंगी। तो हमें खुद को ही स्ट्रांग करना है और खुद को स्ट्रांग करने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आना एक बहुत बड़ा पार्ट होता है लाइफ का।
1: बिल्कुल,
2: मतलब अगर हमें 100% अंदर से हैप्पीनेस को फील करना है तो एक बार एक्सपीरियंस करके जरूर देखें।
1: बीके अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि जिस चीज को करने से हमें खुशी मिलती है उन चीजों को जरूर करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए और फिर उसके बाद उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हमने प्राइमरी एकदम किंडर गार्डन या फिर कहे LKG या फिर सीनियर जूनियर बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने की बात हमने की और ड्रॉप आउट बच्चों के भी स्कूल या उनको फिर से जो है एक चार चार महीने का, छः छः महीने का NGO जो है अपने संस्था में उनको रखकर उनको ट्रेन करते हैं और फिर वापस उनकी जो है टेस्ट करके उन्हें वापस मेन स्ट्रीम में स्कूल से जोड़ा जाता है। तो राजस्थान में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिन्हें मैं हम जानते हैं, प्रधान एक संस्थान है, दूसरा दशक एक संस्थान है और अजिम जी प्रेम जी का एक फाउंडेशन है। ये सारे लोग ड्रॉप आउट बच्चों के लिए काम करते हैं जिनका स्कूल छूटा हुआ है, तो वो ऐसे ही बच्चों को ढूंढते हैं और फिर उनका टारगेट रहता है कि हर चार महीने का एक एक ग्रुप बनाए, तो 50-100 बच्चों का वो लिस्टिंग करते हैं, जो बच्चे मिल जाते हैं उनके माता पिता से बकायदा लिखावट करके फिर वो बच्चों को अपने पास रखते हैं और फिर उन्हें कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको पूरा ही मना एजुकेशन देते हैं, ऑलराउंड एजुकेशन देते हैं कि समाज में कैसे काम होता है, आप क्यों पढ़ना है, आपको इस तरह की बातें समझा कर उन्हें फिर से उनका एग्जाम्स लेकर फिर उन्हें जो है उनकी जहां तक उनकी IQ है EQ है उस अनुसार जो है फिर उनको मेन स्ट्रीम में वापस जोड़ते हैं और 10th और 12th तक जो है वो फॉलो अप भी करते हैं ताकि बच्चों का लाइफ बन सके। तो ऐसे बहुत सारे NGOs है जहां पर आप जुड़ के अपने करियर को भी एक नया मुकाम दे सकते हैं और साथ ही साथ आप किसी को किसी का जीवन बदलने में, किसी का जीवन बनाने में आपको एक बहुत बड़ा जो है आपका सहयोग होता है। तो इस तरह का काम है ये। मैं चाहूंगा कि आपका अगर एजुकेशन में खास कुछ अलग करना है तो ऐसे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए काम जरूर कीजिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार अर्चना जी को ढेर सारी खुशियां। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, कुछ नई बातें, कुछ नए ट्रेड के बारे में, कुछ नई यात्रा के बारे में आपसे जरूर बात करेंगे और आशा करूंगा कि आज हमने एजुकेशन के साथ साथ दुबई की यात्रा भी अर्चना जी से किया है तो अच्छा लगा होगा आपको, है ना। तो चलिए मित्रों फिर मिलते हैं, सलाम नमस्ते हवा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आवश्यक सूचना 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबूराज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबूराज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

0: क्या आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है जो रातों की नींद उड़ा दे?
1: क्या आपका दिल भी किसी पैशन के लिए धड़कता है?
0: वो पैशन जो आपको भीड़ से अलग करता है, वो जुनून जो आपको हर मुश्किल पार करने में ताकत देता है।
1: चाहे वो गिटार के सुर हो, कठपुतलियों से कहानी हो, या फिर रूढ़ीवादी परंपरा को तोड़ा हो,
2: हम ला रहे हैं एक ऐसा शो जहां हम बात करेंगे उन जोशीले युवाओं से जिन्होंने अपने पैशन को ही अपना रास्ता बना लिया
3: और ये जुनून जबरदस्त था हम में। तो आज हम 70 साल के हो गए तो आज भी श्रमदान होता है और हमने हर गांव में 3-3 तालाब बना दिए आज भी।
4: तो सेवा को सर, ये वास्तव में आपने इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर नाम मधुबन रेडियो ने दिया है, जुनून। ये वास्तव में जुनून है, ये चस्का है।
5: सुनिए उनकी कहानी, जानिए उनका सफर और महसूस कीजिए उस जुनून की आग को उन्हीं की जुबानी। पेश है रेडियो मधुबन पर एक अनोखा कार्यक्रम जुनून, हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ आपके अपने रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
6: श्रोताओं, आज की शाम और शाम ढल चुकी है, अंधेरा हो चुका है, परंतु हमें मालूम है कि सूरज फिर उगेगा, उम्मीद फिर जगेगी और इस संसार में रोशनी फिर से आएगी, ये अंधेरा कायम नहीं रहेगा। मैं हूँ आपका होस्ट और आपका समय हमेशा का दोस्त शरद, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। हम इस बार लेकर आए हैं आपका फेवरेट शो जुनून। इस रेडियो फ्रीक्वेंसी 107.8 FM पर हम लेकर आते हैं फिर से जुनूनी को, जो समाज में बदलाव करना चाहता है, परिवर्तन की बात कर रहा है और एक नव चेतना की बात कर रहा है। वो युवा है, वो अधेड़ है, लेकिन फिर भी उसमें एक जुनून है और वो आगे बढ़ चुका है अपने जीवन को बदलने और दूसरे अपने आसपास के अपने भाई बहनों के जीवन को बदलने। तो ऐसे ही जुनूनी के साथ में आज राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर से है हमारे साथ कोमल। आइए जानते हैं कोमल की कहानी। कोमल, आप हमारे साथ हैं और फिर से हमने बात शुरू की है हमारे प्रोग्राम जुनून में। फिर से कुछ दिनों बाद हम जुड़े हैं और लेकर आए हैं हम सबका फेवरेट शो, जो हमें भर देता है चेतना से, उम्मीद से, नव जागरण की चेतना से, जीवन को बदलने और इस समाज को नई दिशा देने के रास्ते पे चलने की उम्मीद देता है हमारा कार्यक्रम जुनून। और जुनून में आप हैं हमारे साथ इस पर। तो कोमल, बताइए अपने बारे में कि क्या आपकी कहानी है और आप क्या करते हैं उदयपुर में।
7: सबसे पहले नमस्ते सबको और थैंक यू सो मच मुझे ये मंच पर आज मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सबको, मेरा नाम कोमल है और मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। और मुझे बचपन से ही बहुत शौक था कि मैं बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ काम करूं, और जब उनके साथ कोई हिंसा होते देखती थी तो दिल को बहुत दर्द होता था। और उस टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मैं इनका कैसे मदद करूं। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों से मिलती गई, अलग अलग एक्सपीरियंस आते गए कि किस तरीके से उनका सॉर्ट आउट करें। तो सबसे पहले तो मैं उनको एक ऐसा कम्फर्ट एरिया उनको प्रोवाइड करवाती थी जहाँ उनको लगे कि हाँ, यहाँ पे मैं अपनी दिल की बात, यहाँ मैं अपना दर्द शेयर कर सकती हूँ। और उनको मैं इतना स्पेस देती थी, इतना अच्छा एनवायरमेंट देती थी कि उनको ये नहीं लगता था कि मैं उनकी सीनियर हूँ। वो मुझे अपनी एक बड़ी बहन मानते थे और हर चीज शेयर करते थे, और मैं अपने लेवल तक जो उनको सजेशन दे सकती थी, सलाह दे सकती थी, वो मैं अपने लेवल पे देती। उसमें मैं कोई लीगल एडवाइस जैसे वकील का है, ये सजेशन पहले उनको नहीं देती। देन उसके बाद में मैं उदयपुर की एक विकल्प संस्थान है जो बहुत सालों से महिलाओं और बच्चियों के लिए काम कर रही है और उनका बहुत सपोर्ट करती है एजुकेशन में, उनके मेंटल हेल्थ में, या उनको कोई भी लीगल एडवाइस की जरूरत होती है वहाँ पे उनका बहुत सपोर्ट करती है। तो उसमें कुछ कुछ ऐसी स्टोरीज है जो मेरे लिए इंस्पायर भी हो सकती है, और जहाँ पे विकल्प ने मदद किया है वहाँ पे भी उनमें बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो मैं कुछ स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी इस मंच पे।
6: हम सुनेंगे उन कहानियों को और उन बातों को, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी क्या है, कोमल की कहानी क्या है।
7: मेरी कहानी तो यही है कि मैं अभी सेवा का काम करती हूँ। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेती हूँ, न मैं सरकार से कोई मदद लेती हूँ। मेरे कुछ वेल विशर्स हैं जो मेरे काम को देखते हैं और उनको अच्छा लगता है, वो मेरा सहयोग करते हैं और हम लोग जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में भी मदद करते हैं। कुछ गरीब ऐसी फैमिली होती है जिनको उनके बच्चे जो है बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देते हैं, उनके लिए हम राशन की व्यवस्था करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बारिश में आते हैं बिना स्लीपर्स के, गर्मी में आते हैं उनको हम लोग स्लीपर्स पहनाते हैं। सर्दी में, ठिठुरती सर्दी में बच्चे नंगे बदन स्कूल में आते हैं तो वहाँ पे भी हमने कुछ मुहिम चला के उनको स्वेटर वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि भारत में हम लोग गरीबी नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि जब तक वो सोच नहीं है कि मेरा पैसा मेरे तक, ये सोच नहीं बदलेगी तब तक भारत में गरीबी खत्म नहीं हो। लेकिन मैं मेरे लेवल पर, हमारे मुहिम के लेवल तक या हमारे टीम के द्वारा हम लोग जितना कर पाएंगे उतना हम लोग करेंगे, ये मेरा स्टोरी है।
6: नहीं, ये आपकी कहानी में तो बात है कि कोमल कैसे तैयारी, कोमल में ये बात चेतना कहाँ से आई, ये समाज परिवर्तन की बात करने की बात जो है ये आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई?
7: आज से 3-4 साल पहले मैं बस्ती में गई थी लड़कियों से बात करने के लिए कि कैसे मैं उनको कनेक्ट कर सकती हूँ। तो वहाँ पे एक दादी से मिली थी मैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, जिनके बेटे की डेथ हो गई, उनकी जो बहू थी वो अपने बच्चों को लेके पक्के मकान में रह रही थी। और उस टाइम पे मैं गई थी, बारिश का मौसम था, और वो जो दादी थी वो झोपड़ी में रह रही थी, उसके जो सामान जो था वो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ था। मैंने उस दादी से बात किया था, उस वक्त मुझे लगा था कि मुझे इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं फील्ड में उतरती गई, जैसे जैसे मैं बस्तियों में जाती गई, मुझे लगा कि मैं दुनिया में भेड़ चाल चलने के नहीं आई, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे मैं इन लोगों की मदद कर सकूं। और धीरे धीरे मेरे अंदर वो कल्पनाएं जागने लगी कि मैं अलग अलग जगह जाके लोगों की मदद करने लगी, लोगों से जुड़ने लगी, और धीरे धीरे मेरी मुहिम में लोग जुड़ने लगे, लोग मेरी मदद करने लगे कि आप ये काम कर रहे हैं तो आप मुझे सहयोग दीजिए। तो धीरे धीरे ये जो भावना, ये फीलिंग जो मेरे अंदर आई, उसको थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि पहले जब मैं लोगों से कपड़े कलेक्ट करके लाती थी, घर पे रखती थी, तो मम्मी वगैरह डांटते थे कि कहाँ से लेके आई, कहाँ इनको कलेक्ट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मेरा परिवार भी मेरे साथ जुड़ता गया। आज मेरे परिवार का एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आज मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बैक सपोर्ट बन चुका है कि वो मेरे हर समय मेरी मदद करता है, मेरा सहयोग करता है। आज कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले पापा मुझे व्हीकल की चाबी दे देते फोर व्हीलर की, ये गाड़ी लेके जाओ, कहाँ तुम्हें किसकी जरूरत है वो लेके जाओ। और मेरा पूरा परिवार मेरे पीछे खड़ा है, मेरा सपोर्ट करता है, और इस समाज ने भी, और बहुत सारे एनजीओ से जिन्होंने मुझे मंच पे सम्मानित भी किया है, बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो ये मुहिम मैंने स्टार्ट किया है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग मेरा सहयोग करें, ताकि मेरा जो ये मुहिम मैंने स्टार्ट किया है वो कभी स्टॉप नहीं हो पाए।
6: बहुत बढ़िया। दर्शकों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, और फ्रीक्वेंसी है 107.8 FM, जो कि है माउंट आबू की वादियों से। और आप सुन सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम जुनून को रेडियो मधुबन के एप्लीकेशन पर भी, तो जाएं और डाउनलोड करें रेडियो मधुबन। तो हमारे साथ हैं आज हमारी इस कहानी में जुड़ने वाली कोमल, और कोमल बता रहे हैं कि अपने एक जुनून को, कि वो कैसे हैं पुराने सामान, पुराने कपड़े लोग घरों से लेते हैं तो उनके काम में नहीं आ रहे हैं, और लेकिन वो किसी और व्यक्ति के लिए उनकी आवश्यकता को पूरी करने का साधन बन सकता है। तो ये जो शुरुआत है कोमल, इसमें आप अभी क्या कर रहे हैं और कैसे इसको करते हैं, क्या चुनौतियाँ आती हैं?
7: अभी चैरिटी वाला अच्छा चल रहा है। चुनौतियाँ पहले बहुत आई थी, क्योंकि उनको डीप एरिया में जाना, ले जाना, लोगों से कनेक्ट होना, और पहले लोग मेरे से बहुत कम कनेक्ट हो रहा था, क्योंकि मैं जहाँ पे बच्चे देखती थी वहाँ पे मुझे लगता था मुझे कपड़े देने, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मेरी फैमिली में इतने कोई छोटे बच्चे नहीं है, तो लोगों तक मैसेज पहुँचाना पड़ता था कि मुझे कुछ कपड़ों की जरूरत है, जूतों की जरूरत है। तो बहुत चुनौतियाँ भी आई थी, कुछ फाइनेंशियल भी चुनौतियाँ आई थी कि कैसे उस एरिया में पहुंचा जाए। उसके लिए हमें व्हीकल भी करना होता था, व्हीकल के लिए मैं उस टाइम पे जॉबलेस भी थी। तो उन चुनौतियों से मैंने डरकर अपने मुहिम को स्टॉप किया, मैंने कंटिन्यू किया, मैंने कहा मेरे से जितना हो पड़ेगा करूंगी। लेकिन अभी वो चुनौतियां सारी हट चुकी है, और अभी मेरे साथ बहुत सारा मजमा जुड़ चुका है, बहुत सारा टीम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और लोग मेरे से सामने से जुड़ना चाहते हैं कि आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ इस मुहिम में पार्ट लेना चाहें।
6: तो ये कैसे चलता है ये कार्यक्रम, इसमें कैसे आप जरूरतमंद की मदद करते हैं और कैसे उनको चिन्हित करते हैं, कैसे ढूंढते हैं?
7: पहले तो हमें बस्तियों में जाना पड़ता था, खुद से ढूंढना पड़ता था, एफर्ट मारना पड़ता था, बट अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स है जहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक ग्रीन सोल फाउंडेशन है, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। उन्होंने कम से कम मुझे 1000 स्कूल बैग, 1000 स्लीपर्स और 1000 मेट्स जो होते हैं वो मुझे डोनेट करने के लिए दिया। तो मैंने गोगुंदा, उदयपुर और सायरा स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे मैंने डोनेट किया। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल है, टीचर्स है, वो मेरे से कॉन्टेक्ट में आए हैं। तो अब वो सामने से बोलते हैं कि मैडम यहाँ जाइए, यहाँ डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे रियल में नीड है। तो अब मुझे बस्तियों की सर्च नहीं करना पड़ता, सामने से लोगों का कॉन्टेक्ट आ जाता है कि आप यहाँ जाके डोनेट कर सकते हैं।
6: जी, तो अभी तक आपकी यात्रा कैसी रही और क्या रिसोर्सेज आप इसमें लगा रहे हैं, आपके पास कितना स्पेस है या कैसे आप अपने घर से इसकी शुरुआत करी थी आपने, आप सामान कैसे इकट्ठा करते हैं, कहाँ रखते हैं सारे सामान?
7: पहले बहुत सारी चुनौतियां भी थी, बीच में मैंने सोचा भी था कि इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो पहले तो मैंने अपने घर पे ही स्टोर किया था, देन मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उनका उदयपुर में एक शॉप चलता है, तो फिर हमने कपड़ों को वहाँ कलेक्ट करना स्टार्ट किया, लोगों से सामान कलेक्ट करते हैं। और आज मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है कि पहले हमें हमारे पिताजी की वजह से जानते थे क्योंकि मेरे फादर सरपंच रह चुके हैं, तो उनकी वजह से हमारी पहचान थी। लेकिन आज हमें गांव में लोग पहचानते हैं कि अरे ये वो दीदी है, अरे ये दोनों बहन वो हैं जो गांव में जाके लोगों को कपड़े डोनेट करते हैं। तो अब घर पे ही हमारे यहाँ सामान आ जाता है, लोग हमारे घर पे ही आके डोनेट करके जाते हैं और हम लोग स्टोर करते हैं। और हमारे एक ही सोच रखा है कि हमारे पास जो टू व्हीलर है हमेशा उनमें एक बैग भरा रहता है, जहाँ पे हमें लग जाता है कि ये बच्चे हैं, नंगे पैर हैं, या इनके बदन पे कपड़े नहीं है, या फिर कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जिनके राशन नहीं है, तो हम लोग उनको उसी टाइम हम लोग देते थे। हम वेट नहीं करते कि हम घर जाएंगे वापस लेके आएंगे, ऑलवेज हमारे बैग में सामान रहता है, हम लोग वहाँ डोनेट करते रहते।
6: क्या कहानी है आपको बताइए, उदयपुर में कैसी कैसी कहानियाँ आपकी नजर में है जो आपने देखी और तो लगता है कि हमें कुछ काम करने की जरूरत है?
7: चैरिटी वाला तो कोई स्टोरी वही है, रैंडम मैंने आपको क्लियर किया था, लेकिन अभी जो मैं विकल्प संस्थान से जुड़ी हूँ तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मेरे सामने आई है जिसको मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे आज हमारा टॉपिक है नशा, इस नशे की वजह से इंसान हैवान बनता जा रहा है। कुछ कुछ ऐसे हमारे पास केसेस भी आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उस बच्ची का। बच्ची अपनी माँ के साथ आई थी, यानी माँ ने दूसरी शादी किया था, तब बच्ची अपने माँ के साथ आई थी अपने नए पिता के पास। वहाँ बच्ची की माँ की डेथ हो जाती है, बच्ची महज 8वीं क्लास में पढ़ती है और 13 साल की। उसके पिता 11 साल, जब बच्ची 11 साल से थी, उसके साथ गलत हरकतें करता था रात में। बच्ची ने अपने आस पड़ोस में बताया कि मुझे अपने पिता के साथ नहीं रहना है, मैं पिता बहुत परेशान करते हैं, मैं घर से निकालो, मुझे अपने पिता के साथ नहीं रहना है। तो हम लोग क्या स्कूलों में सेशन करते हैं बच्चों के साथ पॉक्सो पे, यौन हिंसा पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे। तो किसी बच्ची के पास हमारा टोल फ्री नंबर था, उस नंबर पे बच्ची का कॉल आया, फिर हमने बच्ची का सर्च किया, जहाँ बच्ची किराए रहती थी उसके पिता को भनक लगी, पिता ने वहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, फिर पिता ने वहां से बच्ची को तीसरी जगह शिफ्ट किया, फिर पिता ने बच्ची को चौथी जगह शिफ्ट की। हमने पीछा नहीं छोड़ा, हमने उसका पीछा किया, और जहाँ बच्ची को चौथी जगह शिफ्ट किया गया वहां पे, मतलब ये बात मुझे बताते हुए बहुत दर्द हो रहा है कि उस पिता ने पैसे के लिए अपनी बच्ची का सौदा किया। हर रात बच्ची को वो बेचता था पैसे के लिए, मज़ 1000 रुपए के लिए अलग अलग पर्सन को बेचता था। हमें सूचना मिली, हमने कुछ गुप्तचर भी रखे, कुछ एजेंट भी रखे, हमें सूचना मिली कि बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। हमने फिर उसका CWC में एप्लीकेशन लगाया, फिर हमने थाने में भी FIR दर्ज करवाई, पिता को पेश किया गया, बच्ची को पेश किया गया, बच्ची को काउंसलिंग करी गई और बच्ची ने हकीकत की जो बताई, और फिर बच्ची को शेल्टर मिला, पिता को जेल मिला। और इस तरीके से जो बच्ची थी, आज बच्ची को हमें देखते हुए बहुत खुशी होती है कि बच्ची के जो चेहरे की रौनक थी वो हम वापस ला सकते, और जो हमारा मेन मकसद था वो पूरा हो। आज बच्ची बहुत खुश है, जहाँ पे भी है वो शेल्टर में है, आज वो अपनी खुशी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है, और उसकी जो जीवन की जो जर्नी होती है, जीवन की जो रूटीन है वो चल रही है। आज बच्ची अगर हम फ्री मिल भी जाएगी तो हम ये चाहते हैं कि बच्ची हमेशा खुश रहे। ये मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था विकल्प संस्थान में आने के बाद। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो नशे की वजह से, क्योंकि उसका पिता जो था वो नशे का आदत था, उसको पैसा चाहिए होता था और वो पैसा कहाँ से लाए क्योंकि उससे कमाई होती नहीं। और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो नशे की वजह से बहुत सारे घर बर्बाद।
6: जी
7: सर,
6: तो इस पूरी बात में आपकी जो संस्था है जिसमें आप काम कर रहे हैं, आपका वहाँ जुनून है कि कुछ बदल दें, समाज में कुछ बदलाव कर दें और कुछ लोगों के जीवन में रोशनी लाएं। तो इस प्रयास में आपने एक बच्ची की कहानी बताई। अब वो बच्ची की उम्र कितनी है अभी वर्तमान में?
7: अभी बच्ची 14 साल की है।
6: जी, बढ़िया है। वो डेफिनेटली चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में अभी होगी और 18 साल तक वहाँ रहेगी। 18 के बाद आपके पास क्या योजना है उस बारे में भी हमें सोचना है। और सरकार की जो पॉलिसी है वो ये है कि 19 साल तक उसको एक मदद मिलेगी, एक साल तक कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी, तो 19 साल के बाद उसको समाज में छोड़ दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप क्यों ना उसकी अडॉप्शन की प्रक्रिया में आप सहयोग करें। अडॉप्शन क्या आपने उसके लिए अडॉप्शन के लिए आवेदन किया है?
7: अभी नहीं किया सर।
6: CWC ने अपने
7: आदेश
6: जी आखिर तो श्रोताओं मैं आपको बताऊं कि देश में चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर एक रेगुलेटरी एक्ट है और इसके तहत 0 से 18 साल तक के बच्चों का अडॉप्शन किया जा सकता है और कोई भी आर्थिक रूप से संपन्न और संपन्न पारिवारिक स्थिति से दंपति बच्चे का अडॉप्शन कर सकता है और उस पोर्टल पे आवेदन कर सकता है और CWC और जिले की DCP यूनिट के माध्यम से अडॉप्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो आप भी कोई बच्चा अगर आपको मिले तो आप उसको तुरंत PWC तक बच्चे को पहुंचाएं और यदि आपका भी बच्चा है और आप उसको नहीं रखना चाहते तो बच्चे को फेंके नहीं, हर जिले में अस्पताल में DCP यूनिट में पालना गृह है और पालना गृह में यदि आप बच्चे को छोड़ते हैं तो आप उसको किसी प्रकार की कानूनी उत्तरदायित्व आपके ऊपर नहीं होगा और किसी भी प्रकार का मुकदमा आपके विरुद्ध दर्ज नहीं किया जाएगा और आपकी गोपनीयता को भी रखा जाएगा। तो आप बच्चे को फेंके नहीं, जिले के अस्पताल में, जिले के DCP यूनिट में रखे हुए पालना गृह में आप बच्चे को छोड़ सकते हैं। तो ये थी बात हमारे जुनून की, जुनून में माता है कोमल। तो कोमल आप हमें कुछ और कहानियां बताना चाहें तो हमारे श्रोताओं को, जिससे कि उनमें जागरूकता का प्रसार हो।
7: इस स्टोरी में आपको बताऊंगी, हमारा मेन मकसद ये है कि महिला के अंदर समाज का डर, समाज का डर इस वजह से है कि आज महिलाएं समाज के डर की वजह से बहुत सारी हिंसा सहती है, बहुत सारी मार सहती है, लेकिन वो बाहर नहीं बोलते कि से मेरा घर टूटेगा या मेरे समाज में बदनामी हो। इस वजह से बहुत सारे ऐसे घर टूटे हैं, बहुत सारे घर हैं या बहुत सारी महिलाओं ने सुसाइड किया है। और इसका मेन वजह यह है, इसकी मेन रीजन ये है कि महिलाओं के अंदर डर है, समाज का डर। सबसे पहला डर उसके अंदर समाज का है कि समाज क्या बोलेगा, क्योंकि सबसे पहले उंगली उठती है औरत के ऊपर। मैं समाज के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, लेकिन समाज का आज मैं इतनी बड़ी हुई हूँ तो मैंने खुद ने ये देखा है कि आज अगर गलती अगर लड़की की है या लड़के की भी है, लेकिन उंगली हमेशा लड़की के ऊपर ही उठाई जाए कि लड़की की वजह होगी। अगर लड़की को बेवजह मारा भी जा रहा है तो समाज यही बोलेगा कि लड़की की ही गलती होगी, तो लड़के ने हाथ उठाया होगा। उसके पीछे का जो कारण है वो जानने की कोशिश नहीं की जाती। और हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान समाज की वजह से बहुत सारी ऐसी महिला है जो गुट गुट के जीने के लिए मजबूर है, जो कि उसको पता है कि शादी के बाद उसके बच्चे हैं, अगर वो सुसाइड कर लेगी तो उसके बच्चे हैं वो घर घर के भीख मांगने लायक हो जाए। अगर वो अपने मायके जाके बैठती है तो वहाँ पे भी वो अपने भाई भाभी की नौकरानी बनके जिएगी, उसके बच्चों का कोई भविष्य नहीं होगा। ये सारा चीज सोचने के बाद वो बहुत सारी ऐसी चीजें सहन करती रहती है, बहुत सारी मार है, बहुत सारे अत्याचार है सहन करती रहती है, लेकिन वो कभी बाहर नहीं बता। तो हमारा मेन मकसद ये है कि महिलाओं के अंदर जो डर छुपा हुआ है, जो डर बैठा हुआ, उसको बाहर निकालना। हम ये नहीं चाहते कि अगर आपका पुरुष आपके थप्पड़ मार रहा है तो आप उसके थप्पड़ मारो, बट एटलीस्ट आप ऐसा तो करते हैं कि अगर वो थप्पड़ मार रहा है तो आप आवाज उठाए कि मेरी गलती नहीं है, आप मुझसे बात कीजिए, आपको किससे तकलीफ है, आप ये जो मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। बस वो आवाज उठा सकते, और इसमें 50% नहीं, मैं 80% मानूंगी कि जो रीजन है वो या तो समाज का है या किसी भी प्रकार के नशे का है। क्योंकि आदमी के जब नशे का टाइम हो जाता है, किसी भी तरह का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का हो या फिर शराब का हो, अगर उसके नशे का टाइम हो जाता है और उसको उस टाइम पे नशा नहीं मिलता है, नशा करने का पैसा नहीं मिलता है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो मैंने इस नशे के ऊपर कुछ लाइन लिखी है, वो मैं आप श्रोताओं के सामने कुछ शेयर करना चाहूंगी। नशा वो चीज है पत्नी का सिंदूर छीन लेता है, नशा पत्नी का सिंदूर छीन लेता है, माँ की दवा और पिता का सम्मान छीन लेता है। नशा माँ की दवा और पिता का सम्मान छीन लेता है, बेटे की पढ़ाई बेटे की पढ़ाई और बेटी का बचपन छीन लेता है। नशा बहन का प्यार और भाई का अरमान छीन लेता है। बहन का प्यार और भाई का अरमान छीन लेता है और नशा अंत में व्यक्ति के शरीर से ताकत और ताकत से आत्मा छीन लेता है। और ये नशा नाश का द्वार होता है और जो द्वार है वो आपकी बर्बादी और मृत्यु की तरफ ले जाने वाला द्वार होता है। और एक बार नशे की तरफ आपने कदम बढ़ा दिया तो यही समझो कि आपको उसका अंत, उसकी मंजिल मृत्यु ही होती है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो किसी भी तरह का नशा करता है, आप एक बार सोचिए कि नशे से कितने लोगों का जीवन खराब हो रहा है। आपने देखा होगा नशा करने वाला झोपड़ी में रहता है और नशा करवाने वाला बंगले में रहता है। आपने कभी देखा होगा जो शराब पीता है वो झोपड़ी में रहता है और शराब पिलाने वाला बंगले में रहता है। शराब पीने वाला साइकिल पे जाता है और शराब पिलाने वाला मर्सिडीज में जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, नशा आपको बर्बाद ही करता है। कभी वो किसी का घर नहीं बनाता कि नशा करने वाला हमेशा सक्सेस होता है।
6: बहुत ही बढ़िया आपने कविता नशे को लेके पढ़ी है और विचार है आपके बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नशा है वो नशा करने वाले के लिए जीवन भी ले सकता है और उसको आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये बताइए कि कोमल जी, आपको क्या लगता है कि हम कैसे इसको नशे को दूर कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए?
7: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी सारे नशे की दुकानें खुली हुई है या फिर जो इंटरनल बेचते हैं उनकी

0: ऐसी पीपीटी दिखाई जाए, उनको डीपली ऐसे मैसेजेस दिए जाए, डीपली ऐसे वीडियोस शेयर किए जाए जो उनको बहुत दिल तक या बहुत इंटरनल उनको बहुत टच करे कि नशा करना बहुत खराब होता है। ऐसे इस मुहिम को चलाने के लिए हमें ऐसे इतने सारे यूथ को इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे 18 से 25 साल के यूथ है उनको ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनसे इंस्पायर होके बच्चे जो हैं या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, वो उनसे इंस्पायर होके अपना जो डिसीजन है नशा करना है उससे थोड़ा सा दूर हो पाए।
1: तो नशे को लेकर जो आपकी बात है वो विचार है निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है। अभी नशे को लेकर क्या हालात है ग्रामीण इलाके में, कैसे आप देखते हैं युवाओं को, वो क्या कर रहे हैं, नशा किस प्रकार का नशा बढ़ रहा है?
0: अभी नशे का ये है कि उदयपुर में नशा पहले कुछ कुछ जगह पे होता, लेकिन वो टूरिस्ट सिटी बनने के बाद में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट बाहर से आते हैं, वो खुद अपने साथ लेके भी आते और यहाँ पे भी सर्च करते हैं। तो युद्ध को लगा कि युद्ध बहुत ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको जहाँ मैं जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अगर टूरिस्ट आएंगे उनको पैस दे दे।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो जुनून, और जुनून में आपकी है फ्रीक्वेंसी 107.8 FM, बने रहिए और हमें सुनते रहिए। तो कोमल बता रहे हैं कि कैसे नशा जो है वो ग्रामीण इलाकों में टूरिज्म के माध्यम से पहुंच रहा है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो हम रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए भी बात करते रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैसे देश में आगे बढ़े, यानी कि टूरिज्म भी रहे और वो जिम्मेदार टूरिज्म, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, वहाँ के विकास को, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को, वहाँ के हेरिटेज को और वहाँ के समाज को ना खराब करें, ऐसे टूरिज्म की हम बात करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो, सस्टेनेबल हो। लेकिन हमें जानने को मिल रहा है कि उदयपुर का जो पर्यटन मंत्री है उसने कहने की नशे में कॉन्ट्रीब्यूट किया, वहाँ के स्थानीय कोमल हमें बता रहे हैं। कोमल बताएं कि कैसे पर्यटन ने टूरिज्म को बढ़ावा दिया है वहाँ के क्षेत्र में।
0: जी सर, तो उदयपुर सिटी बहुत फेमस है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे आपको नेचर देखने को मिलता है, बहुत सारी ऐसी हेरिटेज वॉक है या फिर ऐसी हिस्टोरिकल पैलेसेस है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। इसके लिए इंडिया ही नहीं इवन ऑल वर्ल्ड से बहुत सारे लोग आते हैं विजिट करने के लिए। बट क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट भी आते हैं जो किसी भी तरह के नशे के एडिक्टिव होते हैं। अब उनको जो एडिक्शन होता है उनको वो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फिर यहाँ आके वो केमिस्ट्री की शॉप से पूछते हैं या फिर किराना से पूछते हैं। और धीरे धीरे आप ये देखो ना कि अगर हम किसी शॉप पे जाके किसी चीज के लिए 10 बार बोलेंगे कि ये चीज है क्या, तो शॉप वाले को लगेगा कि यार ये चीज मुझे रखनी चाहिए क्योंकि इसका मार्केट है, और धीरे धीरे वो गुपचुप भी उस चीजों को रखते हैं। और फिर उनको जो होते हैं बीच के जो डीलर होते हैं उनको भी हायर किया जाता है, और धीरे धीरे एक बार उनको अगर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और एक बार वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते तो युवाओं को लगता है कि उस पर्सन को लगता है कि यार पुलिस वाले ने मुझे नहीं पकड़ा तो अब वो क्या ही पकड़े, और धीरे धीरे वो इस गिरफ्त में जाते हैं। और जब कोई लाके उसको सेल आउट कर रहा है तो वो कहता है कि एक बार मैं उसको ट्राई करूँ कि उसका टेस्ट कैसा है, और वही टेस्ट जो फर्स्ट टाइम का जो टेस्ट होता है वही आगे चल के उसके लिए एडिक्शन बन जाता है। और धीरे धीरे इस गिरफ्त में 18 से भी कम साल के, बहुत सोचने लायक बात है कि 18 साल से भी जो स्कूल गोइंग है 9th-10th के बच्चे हैं वो भी नशे के शिकार होते जा रहे हैं, जैसे स्मोकिंग जो है वो करते हैं, बियर पीते हैं, गांजा पीते हैं। इसका मेन कारण ये है कि उनको वो इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, और उनको पता है कि कहां से हमें ये चीज मिल सकती है, कहां से वो परचेस कर सकते हैं। तो सबसे मेन रीजन ये है कि वो इजीली अवेलेबल हो पा रहा है।
1: जी, और किस तरह के उदाहरण आपने देखे? मैंने पिछले दिनों एक शराब की दुकान है वहाँ से छोटे बच्चों को, मैंने 12-13 साल के बच्चों को बियर खरीदते हुए देखा, और मैंने वहीं पर दुकानदार को मैंने विरोध किया, दुकानदार ने उसको फिर शराब देने से मना किया, अन्यथा अगर मैं नहीं रोकता तो वो दुकानदार उसको शराब बेच रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हमारे सामने हैं जो हमारे दुकानदार हैं, जो शराब की दुकान पे काम करते हैं, उनको भी समझना है कि वो छोटे बच्चे के हाथ में शराब की बोतल ना दे। और इसके साथ ही अगर ग्राहक भी ये घटना देख रहा है तो ग्राहकों का भी फर्ज बनता है कि वो छोटे बच्चे को वहाँ से शराब ना खरीदने दें और दुकानदार को भी मना कर दें। तो कुछ ऐसी ही बात है जो ये हम सबको पहल लेने की जरूरत है कि ऐसा कुछ होते हुए अपने इलाके में देखते हैं, खासतौर पर सरकार के द्वारा चलाई गई दुकान पर यदि ऐसा हो रहा है तो उसका विरोध करना आवश्यक है। और अब तो सरकार के भी पंचायती राज के रूल्स में भी है, यदि किसी गाँव की 50% आबादी चाह ले तो वो अपने गाँव के ठेके को अपने गाँव से बाहर कर सकते हैं। जरूरत है कि पंचायत

0: ग्राम सभा में इसका प्रस्ताव लिया जाए, क्या आप जानते हैं? तो इसलिए हम लेकर आते हैं ऐसा ही शोर जुलूस जिसमें आप न केवल आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं, अपने गांव और अपने समाज के लिए बदलाव के लिए भी काम कर सकते हैं। तो आज हमारे हाथ में ऐसे ही क्रांतिकारी उदयपुर से कोमल। कोमल का नाम बड़ा कोमल है, लेकिन उनके जो काम है उनमें दृढ़ता है, उनमें एक आत्मविश्वास है और उनके अंदर आगे बढ़ने का जुनून। कोमल, आप बताइए कि आप उदयपुर के बारे में क्या सोचते हैं, उदयपुर को कैसे शहर बनाना चाहते हैं?
1: मेरा सपना ये कि मैं उदयपुर को क्लीन सिटी तो वो है, बट मैं ये चाहती हूँ कि उदयपुर में अभी बहुत ज्यादा नशा होने लग गया है और बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें युवा लोग भटक रहे हैं। युवा लोग भटकने का मतलब है कि आज जो बच्चे हैं स्कूल जो गोइंग बच्चे हैं, क्योंकि स्कूल में जाके हम लोग सेशंस लेते हैं, उनका माइंड बहुत डाइवर्ट हो चुका है। उनका जो माइंड है वो पढ़ाई से हटके वो जो अदर एक्टिविटीज होती है जैसे घूमना फिरना, दोस्त बनाना, होटलों में जाना, कैफेज में जाना, फैशनेबल कपड़े पहनना, इन चीजों की तरह उनका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे अगर जब तक अपना करियर न बना ले वो इन चीजों में न पड़े, क्योंकि अभी इस जमाने में आपके इतना हाई कंपटीशन हो चुका है। किसी भी फील्ड में आप जाए, किसी भी सेक्टर में जाए, हाई कंपटीशन की वजह से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने की एज में वो करियर बनाने की एज में वो भटक जाते हैं। होटलों में घूमना, यारे दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखना, उस टाइम पे उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, इस वजह से वो भटक जाते हैं और इस वजह से उनका करियर नहीं बनता है और करियर नहीं बनने की वजह से उनको जॉब नहीं मिलता है। मैं चाहती हूँ, मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है जो पाठ्य पुस्तकें हैं, क्योंकि मेरा थॉट ये है कि जो बच्चा फिफ्थ क्लास में जो बुक पढ़ेगा हिंदी की, वो चैप्टर उसके सिक्स क्लास में काम नहीं आने वाला, क्योंकि सिक्स क्लास में हिंदी का चैप्टर डिफरेंट होगा। लेकिन उनको जो अदर एक्टिविटीज जो कराई जाती है, जो मोटिवेशनल उनको जो स्पीकर के द्वारा जो बातें सिखाई जाती है, वो उनके लाइफ टाइम तक काम आती है। जैसे उनको करियर गाइडेंस का है, या फिर सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर उनका कोई सेशन होता है, या फिर सेल्फ डिफेंस वाला है, या कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट का है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, या फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है, या उनकी अदर एक्टिविटीज है, स्किल डेवलपमेंट वाला है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करवाए जाए, तो बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करे तो भी आगे चल के अपना करियर बना सके। अगर बच्चा टेंथ फेल भी हो जाता है, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है, अगर बच्चा टेंथ फेल हो जाता है तो उसको फैमिली से, समाज से, स्कूल से, अपने फ्रेंड सर्कल से इतना प्रेशराइज किया जाता है कि तू तो फेल हो गया, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए हम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना है, ऐसे उनको गाइडेंस दे, ऐसा उनका सेशन स्कूल में चलाए करियर गाइडेंस का, कि बच्चा अगर नहीं होना चाहिए लेकिन इन केस अगर वो फेल भी हो जाता है या उनके परसेंटेज डाउन भी होता है, तो वो अदर स्किल को अपनाकर अपना लाइफ या फिर अपनी चॉइस है या फिर अपने जो सपने है उसको पूरा कर पाए।
0: निश्चित रूप से युवाओं के सामने एक कंफ्यूजन होता है, वो एक ऐसी दौर है जब आदमी अपना है और अपने साथ साथ अपने मानसिक बदलावों से भी गुजर रहा होता है, तो और समाज के जो बदलाव है वो तो उसको प्रभावित कर ही रहे हैं, तो इन सारे अंतर्द्वंद के बीच वो बच्चा अपने आप को आगे बढ़ा रहा होता है, तो वो समय होता है कि उसको सही गाइडेंस मिले और उसको गाइडेंस के साथ साथ उसके हाथ को हुनर मिले और हाथ के हुनर के साथ साथ वो समाज और अपने देश के लिए कुछ कर पाए, और उसी समय यदि कोई नकारात्मक अनुभव उसको हो जाए तो वो जीवन भर उसे नहीं बुला पाता। और इसी तरह सब तरह की युवाओं के और बच्चों के जीवन को बदलने में लगी है हमारी आज की जीवनी कोमल, और कोमल के साथ हमें ढेर सारी बातें। कोमल, हम बातचीत तो करते रहेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि कुछ और ऐसी कहानियां जो मैं आपसे, आप चाहते हैं कि इस मंच पर रखी जाए और मैं आपसे नहीं सुन पाया और आप उसमें रुचि दिखाते हैं, थोड़ा बताएं इसके बारे में।
1: मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं उन पेरेंट्स से, अगर ये मेरा मैसेज किसी पेरेंट्स के पास जा रहा है, तो सबसे पहले मैं उस लड़की के माता पिता से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा शराबी है, किसी नशे का आदी है, तो उसको डॉक्टर को दिखाओ, उसकी शादी न करें। मेरा कहने का मतलब है कि आपका बच्चा अगर किसी तरह का नशा करता है तो आपके बच्चे को डॉक्टर को दिखाए, नशे से छुड़वाए, उसकी शादी न करें। आप सोचते हैं, मतलब लड़के के पिता माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चे की शादी कर देंगे तो ये सुधर जाएगा, नहीं, क्योंकि आने वाली लड़की डॉक्टर नहीं है। आप आने वाली बेटी का भविष्य मत बिगाड़े। अगर आपके बच्चे की किसी तरीके की कोई नशे की आदत है तो किसी बच्ची का भविष्य आप खतरे में न डाले और उसमें सारी हकीकत उसको बताएं। दूसरा ये बोलना चाहती हूँ मैं, ये बच्ची के माता पिता से कि आप आपकी बच्ची को धन दौलत ना दे, दहेज ना दे, लेकिन आप आपकी बच्ची को इतना संस्कार दे, इतना एजुकेशन दे कि बच्ची अपने पैरों पे खड़ा हो सके और शादी के बाद वो किसी के सामने हाथ न फैलाए और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, वो समय आने पर अपना खुद का और अपने परिवार का भी घर चला सके। ये मेरा निवेदन है। जी सर।
0: हाँ श्रोताओं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और ये संदेश सभी बेटियों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है कि वे भी जैसे ही अपनी उम्र में आगे बढ़े तो सिर्फ राजकुमार के साथ विवाह करने का सपना ना देखे, वो भी अपने जीवन में एक मकसद बनाए कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा काम करना है, मुझे देश के लिए उत्पादक नागरिक बनना है और मुझे देश के लिए कुछ अच्छा करना है। तो आपका सपना अगर राजकुमार को पाना होगा तो हो सकता है कई बार आपको राजकुमार ना मिले और राजकुमार के बदले में एक नशेखोर युवा के रूप में एक आपको पति मिल जाए, तो ये धोखा आपके साथ भी हो सकता है। तो आप अपने जीवन का मकसद जो है वो राजकुमार के संग विवाह करना ना छोड़कर अपने जीवन का मकसद खेलों में कुछ अच्छा करना बताए, किसी की महाविद्यालय विद्यालय में पढ़ाने का सपना देखें, आप देश के लिए किसी उत्पादक फैक्ट्री में काम करने का सपना देखें, आप इंजीनियर बनने का सपना देखें, आप नर्स बनने का सपना देखें, आप डॉक्टर बनने का सपना देखें और तो और आप देश की राजनीति में राजनेता बनने का सपना देखें। ये सपने तो कुछ काम के हैं। राजकुमार को आपके जीवन में आपका जब आप इस सफर पे चलेंगे तो उस सफर पे हम सफर तो आपके साथ आ ही जाएगा। तो और वैसे भी हर सफल व्यक्ति के पीछे के साथ कौन नहीं डूबना चाहेगा, तो कुछ ऐसा ही हम सफर आपके साथ अपने आप ही डूबने के लिए मिल जाएगा। पहली बात तो है कि आप एक मजबूत सफर पे निकले, एक सफर पे निकले जिससे आपका जीवन और आपके आसपास के समाज का जीवन बदले, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन हमारी बेटियां ये भूल कर बैठती हैं कि वो जैसे ही बड़ी होती हैं तो राजकुमार के साथ विवाह करने का सपना देख लेती और उन्हें कुछ नया सपना समाज के द्वारा बताया गया है। तो हमारे बीच में है कोमल जो इस तरह के गहरे विषयों पर हमारी बेटियों के साथ बात कर रही है और इस शो में तो हम पूरी दुनिया के साथ आज बात कर ही रहे हैं। ये ऐसे विषय हैं जिन पर सामान्यतः समाज में बात नहीं की जाती है, लेकिन आज हम इस रेडियो मधुबन के माध्यम से आपके बीच के सारे विषय लेकर आए हैं। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं डॉक्टर, तो चलते चलते मैं चाहूँगा कि कोमल आप ये बताएं कि नशे को लेकर राजस्थान सरकार भी जल्दी ही 26 जून को अपने अभियान का आगाज करने जा रही है और नशे को लेकर एक अत्यंत गंभीरता के साथ चलाए गए अभियान में पूरा राज्य भागीदारी करेगा, सभी नागरिक जुड़ेंगे, सभी संस्थाएं विभाग कॉर्पोरेट को भी इसमें जोड़ा जाए। आपको क्या लगता है, आप इस सरकार के साथ क्या नया किया जा सकता है नशा मुक्ति अभियान के अंदर? आप
1: मेरा मानना यह है कि सरकार बहुत सारे नियम बनाती है, बहुत सारे कायदे बनाती है, लेकिन उसी को सरकार ही तोड़ देती है। जैसे कभी ब्लैक डे होता है, उस दिन शराब नहीं बेचने का नियम बना रखा है, शटर डाउन होगा, लेकिन पीछे की विंडो से शराब बिक रही है। और आप देखिए कि पीछे की विंडो से अगर शराब लिया जा रहा है तो वो पुलिस वाला खुद ले रहा है, जबकि वो सरकार का ही आदमी है। नियम यहीं से तोड़ना स्टार्ट होता है कि नियम बनाते भी आप है और तोड़ते भी आप है। अगर आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाया है तो उसको फॉलो आप कीजिए पहले, क्योंकि जब तक अगर मिनिस्टर वगैरह या फिर गवर्नमेंट का कोई आदमी उसको फॉलो नहीं करेगा तो लोकल पब्लिक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर इस मुहिम में महिलाओं को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए तो आपको 100% तो नहीं मान सकती, लेकिन 90% रिजल्ट मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे पुरुष नशे के जो आती है वो उससे दूर हो सकते हैं। चांसेस है अगर उसमें इन्वॉल्व महिलाएं ज्यादा होगी 90% इस मुहिम में, तो 90% बच्चे या फिर 90% पुरुष है नशे से छुटकारा पा सकते, मेरा तो मानना ये है।
0: बहुत बढ़िया कोमल, आपने हमसे बात की, आप ऐसे ही काम करते रहे और अपने चैरिटी वाले काम में भी जुटे रहे और आपकी टीम को और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हमारे रेडियो मधुबन की तरफ से भी शुभकामनाएं और उदयपुर को सुंदर नगरी, झीलों की नगरी को और सुंदर बनाते रहे। वहाँ सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, समाज में आ रही विकृतियों और बदलावों पर भी अपनी सटीक नजर रखी जाए और तुरंत होने वाले बदलावों को नोटिस किया जाए और उसमें समाज को जागरूक कर बदलाव के लिए आह्वान किया जाए। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहें और हमारे साथ काम करते रहें। रेडियो मधुबन की पूरी टीम की तरफ से आपको सलाम और नमस्कार।
1: एक मैसेज मैं उन शराबी भाइयों को देना चाह रही थी कि 1000 की बियर की बोतल, 1000 की बियर की बोतल शराबी एक बार में खत्म कर देता हूँ, लेकिन वही 1000 रुपए का जो सिलेंडर आता है वो 2 महीने तक पूरे परिवार का खाना बन सकता है। तो शराबी भाई इस बात को सोचिएगा कि 1000 की बियर की बोतल एक बार में आपको काम में लेनी है या 1000 का सिलेंडर आपको अपने परिवार के लिए 2 महीने का खाना बनाने के लिए काम देना है, ये बात आप सोचिएगा जरूर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया और आपने मुझे मौका दिया, इसलिए पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू, और सबसे ज्यादा थैंक यू सो मच शरद भाई आपका, और कृष्णा बहन आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच। तो फिर से ऐसे ही हम एक जुनूनी के साथ आपको मिलवाएंगे आपके फेवरेट शो जुनून में, और जुनून में फिर से नई बात होगी, एक नया आयाम होगा और एक नए जीवन को हम छुएंगे। तो फिर से मिलेंगे, योर दोस्त एंड दोस्त सनी ऑफ केयर शरद, जय हिंद।

0: आवश्यक सूचना 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबूराज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबूराज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: रन रन रन,
2: दौड़ो दौड़ो दौड़ो।
3: आओ दोस्तों, दौड़ लगाते हैं 9 अगस्त को
2: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन।
3: जी हाँ, इसका थीम है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। संडे अगस्त 9 को ये मैराथन शुरू होने वाला है
2: सुबह 5 बजे।
3: तो आप सभी का इस मैराथन में भरपूर स्वागत है और आप सभी इस मैराथन में भाग लेकर रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जरूर बढ़ाइए। जी हाँ, इस भाईचारे को दुनिया भर में जरूर फैलाइए। इस मैराथन में भाग लीजिए और खुशियाँ दुनिया भर में बांटिए।
2: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

0: आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है। वैसे तो रोहन का गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए ज्यादा वर्क प्रेशर कभी महसूस नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से काम थोड़ा ज्यादा ही है। आज शाम तक उसे क्वार्टरली ऑडिट अपडेट करना है। काम काफी था और उसे खींच हो रही थी। लंच टाइम हो गया था और अब भी उसका काम काफी बचा हुआ था। वो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करना चाहता था। तभी उसका मोबाइल बजा, अननोन नंबर था। उसने पिक किया, सामने से आवाज आई,
1: मलिक साहब से बात हो जाएगी,
0: उसने खींचते हुए कहा।
2: जरा देख के नंबर डायल किया करें।

0: ये रॉन्ग नंबर है, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने अपने सामने पड़ी फाइल बंद की और कुर्सी पर सर टिकाकर आंखें मूंद ली। अभी अभी आए हुए उस रॉन्ग नंबर पर की हुई झल्लाहट पर उसे अफसोस हो रहा था। गलती से ही लग गया होगा यार, अब मेरा नंबर कोई जानबूझकर थोड़ी लगाएगा। आवाज से भी थोड़े बुजुर्ग ही मालूम हो रहे थे और शायद कुछ परेशान भी। मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। रॉन्ग नंबर, ये सोचते हुए वो कुछ साल पहले चला गया। रोहन का जॉब इस शहर में लग गया था, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। घर में सभी बहुत खुश थे। ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए सरकारी क्वार्टर्स थे, उन्हीं में से एक रोहन को भी अलॉट हो गया था। फर्नीचर के नाम पर दो फोल्डिंग कुर्सियां, एक छोटा टेबल और एक दीवान, और हां सबसे इंपॉर्टेंट, ऑफिस का टेलीफोन। उस समय टेलीफोन हर घर में नहीं होता था, यह उसका पर्सनल टेलीफोन था। अब उसे किसी से बात करने के लिए टेलीफोन बूथ पर नहीं जाना पड़ेगा। नया शहर, नए लोग। कुछ दिन तो ऐसे ही शहर को जानने और समझने में लग गए। सुबह 10 से 5 तक ऑफिस और 15 मिनट में घर। शुरू शुरू में तो रोहन हर शाम कभी ना कभी घूमने निकल जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसने आसपास के बाजार, दुकानें सब देख समझ ली थी। अब रोज रोज वो जाए भी कहां? वो टेलीफोन जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो भी उसे अब चढ़ाता सा लगता। उसके घर में फोन था नहीं, घर वालों से बात करने के लिए पास की किराने की दुकान में फोन करना पड़ता था। अब फिर वो उसके घर से किसी को बुलाएगा, रोहन फिर दोबारा फोन करता, तब उसकी बात होती। इसलिए रोहन अब रविवार की शाम को ही फोन करता। बाकी शहर में किसी को जानता नहीं था जिससे फोन पर बात करे, और ऑफिस में जो लोग थे उनसे ऑफिस में ही बात हो जाती थी। कुल मिलाकर रोहन का घर में समय काटे नहीं कटता था। ऐसे ही एक शाम को वो चाय का कप लेकर बैठा ही था कि फोन की घंटी बजी। आज बुधवार? घर से तो फोन हो नहीं सकता, तो फिर? सोचते हुए रोहन ने फोन उठाया। सामने से खनकती आवाज उसके कानों में पड़ी।
1: हेलो, राधिका से बात करा देंगे प्लीज?
0: राधिका? उसने कहा, जी यहां तो कोई राधिका नहीं है, ये मेरा नंबर है, रोहन वर्मा।
1: ओ, शायद गलती से रॉन्ग नंबर लग गया।
0: और इससे पहले रोहन कुछ कहता, फोन कट गया। रोहन बहुत देर तक उस आवाज में ही खोया रहा। अगले दिन ऑफिस से आने के बाद उसका मन ही नहीं लग रहा था। बार बार बेचैनी से फोन की तरफ देखता, शायद दोबारा फोन आ जाए, पर फोन की घंटी नहीं बजी। अगले कुछ दिनों तक रोज रोहन उस अनजान लड़की के फोन का इंतजार करता रहा। एक हफ्ता गुजर गया, अब तो उसने आज भी छोड़ दी। क्यों आएगा फोन? वो तो वैसे भी रॉन्ग नंबर था, गलती से ही तो लग गया था। उसे तो अपने किसी दोस्त से बात करनी थी, हो गई होगी, अब मुझे क्यों दोबारा फोन करेगी? लेकिन एक शाम फिर फोन बजा। रोहन ने लपक के फोन उठाया और वही खनकती आवाज।
1: जी, मैंने सॉरी बोलने के लिए फोन किया था, उस दिन जल्दी में बोल नहीं पाई थी, आपको डिस्टर्ब कर दिया था ना?
0: नहीं तो, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपकी दोस्त से बात हो गई थी?
1: हाँ, दरअसल जल्दबाजी में मैं उसका नंबर लिख नहीं पाई थी, और आपका उसका नंबर काफी एक जैसा था, इसलिए शायद गलती से आपका नंबर लगा दिया।
0: चलिए, इसी बहाने आपसे बात हो गई। वैसे भी मैं यहाँ अकेला हूँ, कोई खास दोस्त है नहीं, तो अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: अच्छा, क्या करते हैं आप?
0: जी मैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब में हूँ, गवर्नमेंट क्वार्टर में ही रहता हूँ, परिवार गांव में है। और आप?
1: मैं यही एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ और वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती हूँ। चलिए, हॉस्टल से ना ज्यादा बात नहीं कर सकते, अभी रखती हूँ, बाय।
0: अरे सुनिए तो, अगर आप बुरा ना माने तो आपका फोन नंबर तो दे दीजिए, कभी कभी बात हो जाया करेगी।
1: वो एक्चुअली हॉस्टल के नंबर पे ना कॉल करेंगे तो ठीक नहीं लगेगा, मैं कॉल कर लूंगी आपको।
0: करेंगी ना? रोहन ने पूछा।
1: हाँ हाँ पक्का करूंगी, अभी बाय।
0: फिर धीरे धीरे उन दोनों की बातें होने लगी। रोहन को उससे बात करके बहुत अच्छा लगता था। उसकी बातों में कभी बच्चों जैसी नादानी, कभी चंचलता, कभी सादगी तो कभी बहुत ही समझदारी उसे आकर्षित करने लगी थी। रोहन अब उसे देखना चाहता था, मिलना चाहता था। एक दिन रोहन ने उसे पूछ ही लिया, अब हमें मिल लेना चाहिए ना? उसने वही चहकते अंदाज में कहा।
1: अच्छा चलो ठीक है, कल शाम 6 बजे कॉफी हाउस, ठीक रहेगा ना?
0: हाँ, पर मैं आपको पहचानूंगा कैसे? आपने तो अपना नाम तक नहीं बताया अब तक।
1: आपने पूछा ही नहीं। चलिए अब कल मिलकर ही बताऊंगी, और मैं सफेद ड्रेस पहनकर आऊंगी। कॉफी हाउस के दरवाजे की दाईं तरफ की पहली टेबल पर मिलूंगी, ठीक है? चलिए कल मिलते हैं, बाय।
0: अगले दिन 6 बजे से कुछ पहले ही रोहन कॉफी हाउस पहुंच गया, गुलाबी फूलों का एक छोटा सा बुके लेकर। कभी बातों बातों में उसने रोहन को बताया था कि उसे पिंक रोजेस बहुत पसंद हैं। रोहन खुश भी था और थोड़ी घबराहट भी थी पहली मुलाकात की गुदगुदी। रोहन अंदर जाने को हुआ और तभी उसकी नजर कांच की दीवार से अंदर दरवाजे के ठीक दाएं टेबल पर बैठी एक युवती पर पड़ी। सफेद सलवार कमीज, लेकिन ये क्या? उसके कदम वहीं ठिठक गए। सामने एक साधारण रंग रूप वाली एक महिला बैठी थी। लड़की तो नहीं कहेंगे, उम्र तकरीबन 35 के आसपास। शायद रोहन की कल्पनाओं में तो 22-23 साल की अल्हड़, हिरनी से चंचल, बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की का अक्स था। रोहन ने एक पल सोचा, यही है वो अनजान लड़की, तो मेरी दोस्ती तो मैं उसके बारे में जानता ही कितना हूं, बस यही कि वो एक प्राइवेट जॉब करती है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती है, और उसकी कोई दोस्त है जिसका नाम है राधिका, बस। एक पल को उसने सोचा कि वापस चला जाऊं। फिर उसने सोचा कि उसने अपनी कल्पनाओं में जो भी रूप देखा उसमें इस लड़की का क्या दोष? उसने कभी कहा भी तो नहीं कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, और चाहे जो भी हो ये वही है जिससे मैं अपने दिल की हर बात कर सकता हूं, और मैंने ही तो इसे मिलने बुलाया है। इस ख्याल से उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। टेबल के करीब जाकर उसने शालीनता से कहा, एक्सक्यूज मी, आई एम रोहन वर्मा, शायद आप मेरा ही इंतजार कर रही थी। और रोहन ने उसे फूल थमा दिए।
2: जी? वो सकपका गई। नहीं तो मुझे तो एक लड़की ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं थोड़ी देर यहां बैठ जाऊं।
0: वही खिलखिलाती हंसी सुनाई थी। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने वही तो थी, बड़ी बड़ी आंखें, चमकता सांवला रंग, घुंघराले बाल और हर प्यारी सी हंसी। रोहन कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने कहा,
3: सॉरी रोहन, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आप इंसान कैसे हैं, और यह जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था। आप बहुत अच्छे इंसान हो रोहन, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने सोचा था, विनम्र, नेक दिल और समझदार।
0: हर दोनों हंस पड़े। उस महिला को उन्होंने थैंक्स कहा और रोहन ने फूल उन्हीं को दे दिए। अब तो अपना नाम बता दो, रोहन ने कहा।
3: राधिका।
0: क्या? रोहन चौंक गया।
3: हाँ, दरअसल उस दिन यूं ही मैं अकेली बोर हो रही थी तो फोन पर एक नंबर डायल कर दिया था, पर अब एक अनजान से बात क्या करूंगी यह सोचकर फोन ही काट दिया। लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे बात करने का दिल चाहता था, इसलिए दोबारा फोन किया। आई होप तुम नाराज नहीं होगे ना?
0: रॉन्ग नंबर। आज 15 साल हो गए इस बात को। रोहन और राधिका जीवन साथी हैं और अपने परिवार में बहुत खुश। तभी उसका मोबाइल बजा। रोहन अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आया और उसने स्क्रीन पर देखा वही अननोन नंबर जो कुछ देर पहले था। लेकिन रोहन ने इस बार बहुत शांति से फोन रिसीव किया और बहुत ही संयमित तरीके से कहा, रॉन्ग नंबर। आप सुन रहे थे रचना चौबे जी की लिखी कहानी रॉन्ग नंबर, उनके कॉलेज के टाइम की लिखी हुई एक कहानी।
2: आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, ताकि वो इस कहानी के नॉस्टैल्जिक फील का पूरा पूरा लुत्फ उठा सके। कहानी के अगले पड़ाव पर फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित को दीजिए इजाजत, बहुत बहुत नमस्कार।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गाँव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते तो आज हमें खुशी है, क्योंकि सरकार का जो मंच है आसपास गतिविधि को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देती है, और इस मंच का फायदा आज बच्चे लेंगे, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे महान होते हैं, और बच्चे शिकलद्ध होते हैं और मीठे होते हैं। आज राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा जो कि बॉर्डर में पहुंचे रेबर ब्लॉक और आबू रोड ब्लॉक का लास्ट ग्राम पंचायत, और हर साल इस स्कूल में आते हैं, तो आज बच्चों को एक मंच मिल रही, सभी बच्चे बच्चों का हिस्सा लेंगे, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचाने के लिए आज पहुंचे। सब हाथ हिलाओ, वेरी गुड, सभी बच्चे हाथ हिला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे परिया है, तो अपना नाम कौन सा क्लास और कौन सा फल से आते हैं बताएंगे।
1: मेरा नाम आरोही कुमारी है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी एज 14 साल की है।
0: वेरी गुड। और आपका मम्मी पापा क्या करते हैं?
1: मेरे मम्मी पापा घर पे ही रहते हैं।
0: खेती बाड़ी है?
1: नहीं सर।
0: पशुपालन?
1: नहीं।
0: क्या करते हैं पापा?
1: मेरे पापा मंदिर में रहते हैं।
0: मंदिर, अरे वाह, मंदिर मस्जिद गिरजा घर को हम कभी भूल नहीं पाते, वहाँ प्रार्थना होता है। और बड़े होकर क्या बनेगी?
1: बड़े होकर टीचर बनेंगे।
0: वेरी गुड, मैम बनेंगे, वाह वेरी गुड। नेक्स्ट, अपना नाम?
2: मेरा नाम मीना कुमारी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती।
0: हाँ, और
2: मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, मैं 14 साल की हूँ।
0: और बड़े होकर क्या बनेगी बहन?
2: टीचर बन।
0: टीचर, बट टीचर क्यों? क्योंकि टीचर में मजा आता है पढ़ाने, आज पढ़ रहे हैं और कल पढ़ाएंगे। नेक्स्ट,
3: मेरा नाम है सोनिया कुमारी, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरे माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं।
0: और कौन सा फल से आते, कौन सा गाँव, कहाँ से?
3: बहादुरपुरा।
0: ओके, नेक्स्ट।
4: मेरा नाम मीना कुमारी, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं और मेरे गांव का नाम भातेपुर।
0: वेरी गुड।
5: मेरा नाम दुष्की कुमारी है, मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं।
0: आपको आज क्या ज्ञान मिला?
1: मुझे आत्मा और शिक्षा और सभी का ज्ञान मिला आज।
0: तो इसको फायदा लेने से फायदा होगा?
1: जी।
0: फायदा होगा?
1: जी।
0: वाह, चलिए एक प्रस्तुति होगा, प्रार्थना के रूप में एक प्रस्तुति सुनाओ।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति। और हर स्कूल में हर विद्यालय में जो जाते हैं प्रार्थना सत्र में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और जब रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर पहुंचता है तो इस तरह कार्यक्रम में जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं बच्चे बहुत खुशी लगता है, क्योंकि उनको एक मंच जो आवश्यकता था आज मिल रहा, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, पहला बार आए और रेडियो में अपना आवाज को बुलंद से बता पा रहे। जब इन ये आवाज जब आकाशवाणी में सुनेंगे बच्चे का, मम्मी पापा भाई लोग बहन टीचर सुनेंगे, ये तो हमारा गुड़िया का आवाज है, ये हमारा दोस्त का आवाज है, तो कितना खुशी लगेगा, लगेगा ना सभी बच्चों को?
1: हाँ जी।
0: क्या धीरे से बोल रहे
1: हैं? हाँ जी।
0: हाँ यही हुई ना बात, हमेशा हाँ जी का पाठ पक्का करना है, कोई भी बात हो हाँ जी क्या बोलेंगे?
1: हाँ जी।
0: बड़े जो बोलेंगे आपका भलाई के लिए बोलते हैं, माँ बाप, बड़े में कौन कौन आता है? बड़े में कौन कौन आता है बता देखी बहन?
2: पिताजी, माता जी, चाचा जी, मामा जी, चाची जी, मामी जी,
0: और
2: दादा
0: बड़ा,
2: दादी, नाना नानी।
0: हाँ इसको कैसे बोलेंगे भाई, दादा दादी, नाना नानी, चाची, काकी, काका, बड़ा भैया,
2: भैया बहन,
0: बहन, और हमारा शिक्षकगण, टीचर्स गण, ये भी गुरुजन हमारा बड़े होते, तो उनका बात मानना
1: चाहिए,
0: मानना
1: चाहिए,
0: क्योंकि वो आपका भलाई के लिए हमेशा सोचते हैं, भलाई के लिए
1: सोचते हैं।
0: कौन कौन सोचते हैं भलाई के लिए आपका?
2: टीचर्स,
0: मम्मी पापा, बड़ा भाई, किसका किसका, छोटे भाई बहन भी सोचने लगते बड़ों के लिए, है ना? छोटे भाई बहन भी बहुत होशियार होते हैं, वो भी हमारा दीदी बड़ा भाई अच्छा बने ऐसे सोचते हैं ना
1: जी।
0: हाँ बहुत अच्छा लगा। और बड़ों का क्या बनेगी? टीचर
2: जी।
0: इसलिए मेहनत क्या करती तुम?
2: पढ़ाई करते।
0: कितना घंटा? दो घंटा से नहीं चलेगा, और
2: करते और स्कूल में छह घंटा
0: आठ घंटा हुआ, 24 घंटा से 8 घंटा का, और कितना समय कहाँ क्या करती तुम?
2: और खेलते
0: है, सोते हैं, खाते पीते खाते हैं खाना, दिन में खा खा कर दिन को गवा देते हैं, सो सो कर रात को, तो पढ़ते कब?
2: दोपहर को पढ़ते
0: हैं। हाँ होशियार बच्चे, बोला हम पढ़ते हैं सर, दोपहर को हम पढ़ते हैं, आप ऐसे कैसे बोल देंगे, दिन में हम खा खा कर सोते हैं, हम स्कूल जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और पढ़ाई भी अच्छा करते हैं। विद्यार्थी जीवन में 2 घंटा नहीं 4 घंटा मेहनत से पूरा लगाएंगे ना विद्यार्थी जीवन में, ये 5 साल, इसके बाद आपको तो 90 साल पूरा पैसा ही पैसा मिलेगा, क्योंकि नौकरी करेंगे, ये 5 साल थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, करेंगे बच्चे
1: जी?
0: जब तक कॉलेज है तब तक पढ़ाई करना करना करना, बस नंबर लाना है, मेहनत क्या करेंगे?
1: मेहनत।
0: जोर से बोलो
1: मेहनत।
0: मेहनत 20 नाखून लगाकर नीचे से ऊपर तक इतना मेहनत करेंगे तो हम जरूर क्या लेंगे, सर्विस, क्या लेंगे? सर्विस, नौकरी लेंगे, है ना? बहुत अच्छा लगा। अच्छा तुम क्या बोलेंगे? बड़े होकर टीचर तो बने, इसलिए मेहनत करती है तुम
3: जी?
0: फिर नाम बताओ।
3: हीना कुमारी।
0: हीना मेहनत करती है
3: जी।
0: वेरी गुड, ये तो जी जी बोल रहे, बहुत अच्छा, सभी को धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
4: नमस्ते, मैं हूं आरजे केवल। दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड्स से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखें 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते, कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी, आज बच्चों का साथ हम भी बच्चे बनकर उनका साथ रूबरू हो रहे थे और बच्चे प्रार्थना सत्र में ही महात्मा जैसे पूरा गीत गाए हैं और ऐसे हर स्कूल में होता है, परमात्मा का याद में खुद को आत्मा समझकर गीत गाए तो बहुत अच्छा हो गया। और इस कार्यक्रम को कॉम्पिटिशन जैसे बच्चियों का आवाज के बाद अभी बच्चे भी देंगे, छोकरियों का आवाज के बाद छोकरा भी कम नहीं, वो भी अपना आवाज को देंगे, अपना अपना नाम और कौन सा गांव में आते हैं और बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे उनसे भी सुनेंगे। जब उनका आवाज से लक्ष्य रहेगा तो लक्षण दिखाई देगा। और चलिए सभी को स्वागत करते हैं एक एक को। आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आए हैं तो हेलो, अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम प्रकाश कुमार है और मैं बादबुरा गाँव का हूँ।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी आवाज तो आप दे पा रहे, आपका आवाज कौन बोलता है, अभी आवाज नहीं है, आपका आवाज तो बहुत मिठास है, सुंदर है और हट्टा कट्टा है। और खेल खेलते हैं?
2: जी खेलते हैं।
1: कौन सा खेल खेलते हैं?
2: कबड्डी।
1: अरे वाह, कबड्डी खेलने से क्या फायदा होता है?
2: सर मजबूत बनता है।
1: हाँ, कौन बोलता भाई, ये पूरा होशियार बच्चा भाई। शारीरिक एक्सरसाइज करेंगे, हमारा स्वास्थ्य तंदुरुस्त होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा, शारीरिक का विकास होगा, बहुत अच्छा। इसे आगे बढ़कर क्या बनना चाहेंगे?
2: टीचर बनना।
1: टीचर ही नहीं तो एक्सरसाइज कर मीन्स पीटीआई सर बनेंगे, नहीं तो फौजी। हाँ। फौजी भी बन सकते हैं। वेरी गुड, खेल को अपना दोस्त मानना चाहिए। चलिए और एक दोस्त, हेलो, क्या नाम है?
3: मोतीराम।
1: मोतीराम, वाह, मोती तो आत्मा तो मोती है, आत्मा मोती। गांव का नाम पूरा बताओ।
3: बहादुरपुरा।
1: और तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है? दोस्त है
3: जी।
1: क्या नाम बताओ?
3: जगदीश।
1: जगदीश, कौन सा क्लास? 11th क्लास। चलिए, हेलो, नाम बताओ।
4: रमेश।
1: रमेश, रमेश हमारा श्रेष्ठ भाई है और अच्छा काम करता है, उनका दोस्त का साथ आज भी वो अपना बात बता रहे। और तुम्हारा अच्छा फूल, कोई फूल देखा है? फूल का नाम बताओ। देखी कमल फूल, वाह, कमल फूल सबसे विशेषता है, कमल फूल जैसे बनना है। कीचड़ में रहता है कमल फूल, खिलता है लेकिन कितना, उसका कीचड़ नहीं लगता है लेकिन आगे बढ़ता है, उसका पूरा खुशबू है पद्म जैसे, है ना? वेरी गुड, तुम्हारा नाम?
5: जी सर, मैं बादुरपुर में रहता हूँ।
1: और बड़े होकर क्या बनेगा?
5: पुलिस वाला।
1: पुलिस वाला, वेरी गुड, पुलिस, बहुत अच्छा। चलिए हमारा साथ और छोटा सा।
6: मैं विक्रम कुमार हूँ और मैं बादुरपुरा में रहता हूँ।
1: और अच्छा भोजन करते हैं ना, क्या खाते हैं? अच्छा, कौन सा अच्छा भोजन लगता है आपको?
6: दाल रोटी।
1: दाल रोटी।
7: मेरा नाम किशन कुमार, मैं बादुरपुरा में रहता हूँ।
8: मेरा नाम गमा राम है, मैं बादुरपुरा में रहता हूँ।
9: मेरा नाम प्रवीण कुमार है, 11th
1: क्लास में। देखो सभी अपना अपना आवाज को खोल दिए तो सबको धन्यवाद देते हैं। और तुम्हारे गांव का आसपास कौन सा गांव है बहादुरपुरा का आसपास गांव?
6: सरीफली।
1: हाँ।
6: चनार।
1: चनार, मुंगतला
6: जी।
1: फतेहपुरा।
6: फतेहपुरा।
1: डांगफली। साकोड़ा।
10: साकोड़ा,
1: बताते नहीं आप लोग, साकोड़ा और
6: मईखेड़ा।
1: मईखेड़ा, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर।

0: ये गाना गुजराती में जो गाया है, मुझे ऐसी लगने लगी है कि मैं कब प्रभु परमात्मा से मिलूं, और मैं जब तक प्रभु से नहीं मिलूंगी तब तक मुझे चैन नहीं।
1: आवश्यक सूचना। 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबू राज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: चलिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आज बच्चों का आवाज पारी पारी ले रहे, सभी को आज एक गुलदस्ता, जैसे सबका आवाज, जैसे सभी फूल मिलकर एक गुलदस्ता बनता है, सभी का आवाज, नाम, गांव और कौन सा क्लास और गांव का आसपास क्या है सुनने को जा रहे, तो रेडियो मधुबन आज इनको सभी बच्चों को आज चुप्पी तोड़ रहे हैं, सभी चुप्पी तोड़ के अपना बात को रख रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक छात्रा है, हेलो नाम बताइए।
1: मेरा नाम है सोनिया कुमारी, मैं बादीपुरा में रहती हूँ।
0: सोनिया बहुत अच्छा, सोनिया और सुरेश तो भरपूर है, हर स्कूल में सोनिया और सुरेश मिलता ही है ना। कौन नाम रखा है सोनिया तुम्हारा नाम?
1: बाप ने।
0: बाप ने, क्या नाम बाप का?
1: कानाराम।
0: कानाराम, अच्छा।
2: मेरा नाम गीता कुमारी, मैं बादीपुरा में रहती हूँ।
3: मेरा नाम पंकु कुमारी है, मैं 11 क्लास में पढ़ती हूँ, मैं बादरपुरा में रहती हूँ।
0: बादरपुरा के,
3: मैं बड़ी होकर पुलिस बनूँ।
0: पुलिस, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा है ना, मेहनत करते हैं। पुलिस वाले को देखा है कभी?
3: जी।
0: क्या करता पुलिस? चोर को
3: पकड़ता है,
0: जो बेईमान करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो दुर्नीति करेगा उसको जेल में
3: डालेंगे।
0: नेक्स्ट।
4: मेरा नाम

0: बुरा लगा क्या? अच्छा लगा रे बहन?
1: क्या
0: ज्ञान अच्छा लगा? ज्ञान माने समझ। समझ में आया
1: जी?
0: समझ में आया
1: जी?
0: तुमको समझ में आया
1: जी?
0: तुम कौन हो, सीता ना आत्मा?
1: मैं आत्मा, सीता मेरा नाम है।
0: वेरी गुड, ये पक्का उत्तर। तुम बोलो।
1: ना? मैं आत्मा, मेरा नाम पंकज।
0: मेरा नाम
2: मैं आत्मा, मेरा नाम गीता कुमारी।
0: समझ में, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए सभी बच्चों को एक मंच मिल रहा है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: घट।
1: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। बच्चे एक को देखकर दूसरे भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। 40-50 बच्चों को आज मौका मिल रहा है, क्योंकि वो सोचेगा भाई मेरा आवाज नहीं है, उसका आवाज आ गया, पंकु का आ गया, सीता का आ गई, किंतु मेरा आ गया। इसलिए वो भी बोलता भाई मेरा भी आवाज होना चाहिए, तब तो गुलदस्ता बनेगा बहादुरपुरा विद्यालय का। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा और छात्राएं उपस्थित होगी। सभी अपना क्लास कौन सा क्लास के और नाम और कहाँ से बताएंगे। वेरी गुड।
1: मेरा नाम सीमा कुमारी है और मैं फतेहपुरा से आती हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड।
2: मेरा नाम है इना कुमारी, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ।
3: मेरा नाम पूजा कुमारी, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ, 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: पूजा नाम बहुत सुंदर है, कौन रखा है पूजा नाम?
3: मेरे पिताजी।
0: घर में कौन कौन है?
3: पापा, मम्मी, बहन।
4: मेरा नाम है तेजल कुमारी।
0: क्या नाम?
4: तेजल।
0: तेजल बोलो।
4: 9th
0: क्लास में। और कौन सा गांव से?
4: सरीफली से।
0: सरीफली, अच्छा,
4: बहादुरपुरा
0: में आता है। और आपका गांव का सरपंच का नाम बता सकते हैं? क्या नाम है? मिश्री देवी। गलबा राम का क्या लगता है?
4: मम्मी,
0: माँ, आई लगता है। गलबा राम सरपंच से पहले, हाँ बता नाम।
5: मेरा नाम पप्पी कुमारी है, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ।
0: वेरी गुड।
6: मेरा नाम आरती कुमार, मैं बहादुरपुरा में रहती
0: हूँ। अच्छा, सबको अच्छा लगा? सभी को अच्छा लगा? आज कार्यक्रम कैसे लगा? सभी को अच्छा लगा होगा ना? बुरा लगा? अच्छा लगा कार्यक्रम। आपका आवाज जब जाएगा तो घर में सुनेंगे सभी बच्चे? हाँ जी सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? रेडियो पे सुनेंगे। मोबाइल में रेडियो आता है, लिंक आता है, उसमें सुनेंगे शाम को 7 से 8 बजे, ठीक है? और अच्छा, घर में कोई चीज आता है तो पहले किसको मिलता है? मम्मी पापा कुछ नया चीज लेकर, आम आया, खजूर आता है, तो किसको देते? भाई को देते ना बहन को देते?
4: भाई को।
0: भाई को,
4: बहन।
0: भाई और बहन दोनों को देते हैं। किसका घर में? भाई को देते हैं। किसका घर में? बहन को देते हैं। तुम्हारा घर में किसको देते हैं?
7: भाई को।
0: भाई को देते हैं। भाई भाई को क्यों, बहन को क्यों नहीं देते?
7: बहन को भी देते
0: हैं। बहन को भी देते हैं पीछे?
7: हाँ।
0: भाई और बहन में अंतर होना चाहिए?
7: नहीं नहीं,
0: नहीं होना चाहिए। भाई और बहन एक भगवान का दो फूल है, भगवान का दो फूल है, तो बराबर होना चाहिए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों बराबर अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? पढ़ाई में, खाने में, घूमने में, फिरने में, सब में बराबरी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लास्ट प्रस्तुति। हमारा ग्रुप इंतजार कर रहे, जो पहले ग्रुप आए थे वो ग्रुप करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
8: रन रन रन,
9: दौड़ो दौड़ो दौड़ो।
8: आओ दोस्तों, दौड़ लगाते हैं 9 अगस्त को
9: दादी प्रकाश मणि आबू हाफ मैराथन।
8: जी हाँ, इसका थीम है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। संडे अगस्त 9 को ये मैराथन शुरू होने वाला है
9: सुबह 5 बजे।
8: तो आप सभी का इस मैराथन में भरपूर स्वागत है, और आप सभी इस मैराथन में भाग लेकर रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जरूर बढ़ाइए। जी हाँ, इस भाईचारे को दुनिया भर में जरूर फैलाइए। इस मैराथन में भाग लीजिए और खुशियाँ दुनिया भर में बांटिए।
9: दादी प्रकाश मणि आबू हाफ मैराथन।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,
1: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और कह सकते हैं अपना लोक भाषा में मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गाँव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते, तो आज इस कार्यक्रम को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मईखड़ा में पहुंचे। आप सबको विदित है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय, ये दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए, विद्यार्थी विकास के लिए, बच्चों का हुनर, बच्चों का टैलेंट, बच्चों का प्रतिभा को, बच्चों का भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच एक स्टेज देती है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर इस स्कूल में विद्यालय में पहुंचे, बहुत खुशी लग रहा है। बच्चों का साथ हम भी बच्चे बनकर उनका साथ रूबरू हो रहे हैं, और सरकार का जो मंच है, आसपास स्कूल हो चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे नरेगा हो चाहे कहीं पर भी, चाहे प्रशासन गांव के संघ हो, सभी के साथ हम मिलकर उनका भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाते हैं। एक खुला मंच है जो इस मंच का माध्यम से अपना भाव को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो आज राजकीय विद्यालय में पहुंचे, हमारा सभी छात्राओं को धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम को सजाने के लिए। और इसका श्रेय तो संस्था का संस्था प्रधान श्रीमान प्रिंसिपल साहब को जाता है और सभी स्टाफ को जाता है। उनका परमिशन के चलते आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे और बारी बारी सभी का आवाज सुनने को मिलेगा। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ होनहार बच्चे, तो अपना परिचय देंगे और कहां से और कौन सा क्लास में और बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे सभी सुनेंगे। चलिए, हमारा पहला प्रस्तुति के लिए हमारा साथ छात्राएं अपना नाम बताएंगे।
2: मेरा नाम है अनिता कुमारी
1: जी। और कौन सा क्लास?
2: 10th
1: क्लास। और स्कूल का पूरा नाम बताएंगे अनिता? राजकीय
2: विद्यालय
1: मईखेड़ा, जो कि बादबुरा ग्राम पंचायत में आता है। ये एक प्रमोशन होकर आज बड़ी स्कूल हो गया, क्योंकि पहले 8वीं क्लास, इसके बाद 10वीं क्लास, इसके बाद 12वीं क्लास, है ना। तो अभी आप कौन सा क्लास में
2: हैं?
1: 10th में। अच्छा, फिर परीक्षा होगा इस बार, है परीक्षा में बहुत मेहनत करना है। और घर में कौन कौन है अनिता?
2: बाप, आई
1: और भाई बहन है। और आपको पढ़ाई अच्छा लगता है? कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है?
2: विज्ञान।
1: विज्ञान।
3: मेरा नाम दीपिका सोलंकी है।
1: हाँ,
3: मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ।
1: हाँ, अच्छा, आपका अच्छा दोस्त का नाम बताओ, सहेली, जो कि आपका मन का बात उसको बताते, क्या नाम है? सभी सभी बच्चे उनका दोस्त है। चलिए, सब शर्माते, शर्माने से नहीं होगा, क्योंकि सब आत्मा है ना, आत्मा शर्माते है क्या? देह को देखेंगे तो सर ये लड़का ये लड़की ऐसे सोचते हैं। चलिए, एक गीत प्रार्थना सत्र में प्रार्थना गाते ना, प्रार्थना कराओ।

पूजा और उनका साथी आए हैं, तो उनको भी स्वागत करते हैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से। नन्हे नन्हे सितारे आए हैं, तो इस कार्यक्रम में पूजा को भी स्वागत करते हैं। पूजा साथी।

0: साथ बैठो।
1: धन्यवाद लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लास्ट प्रस्तुति हमारा ग्रुप इंतजार कर रहे, जो पहले ग्रुप आए थे वो ग्रुप करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: नमस्ते। कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए अंतिम प्रस्तुति की हम चल रहे हैं और ये अंतिम पड़ाव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा बच्चों का जो भावना को लेकर एकल आए हैं हमारा परी, क्या नाम बताए थे फिर आपने?
3: आरोही कुमारी।
2: आरोही, बस आरोही, अवरोही नहीं। आरोही मीन्स ऊपर उठना है, अवरोही मैंने नीचे डाउन। इनका नाम है आरोही, क्या नाम है?
3: आरोही।
2: वाह, कितना सुना, मैंने पहला बार सुना आरोही, है ना? कौन नाम रखा है आरोही?
3: मेरी बहन।
2: आरोही का मतलब क्या जानते है ना? आरोही मतलब उठना, चढ़ना, उड़ना। आरोही मतलब चढ़ना। चलिए शुरू करिए।

0: आराम है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। अंतिम प्रस्तुति में पूरा चार चांद लगा दिए, और जिसका उमंग उत्साह रहता है और एक आध्यात्म जब बन जाता है और उसका घर में पूजा पाठ उनका पापा करते मंदिर में जाकर आरोही, और जिसका चलते वो भी अपना झिझक दूर करके अपना कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी हैप्पी बना दिए। और इस तरह कार्यक्रम में जब इस तरह बच्चियां आएंगे बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे पार्टिसिपेंट करेंगे तो गांव का नाम रोशन करेंगे, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और परिवार का नाम रोशन करेंगे और खासकर खुद का भी नाम रोशन करेंगे। और नाम भी पहला बार इसने नाम सुना आरोही, बहुत अच्छा नाम है। तो जाते जाते सभी को नाम का साथ एक एक बच्चे का जो नाम लिए सभी को धन्यवाद देते सुंदर प्रस्तुति के लिए, और सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिए। ऐसे पहला बार हुआ जो सभी बच्चे अपना आवाज को रेडियो में लिए। बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं, इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा के सभी बच्चों जो कि 9th, 10th, 11th, 12th का बच्चे मिक्स होकर आज बैठे थे, और आत्मसात के आत्म प्रबंधन सेल्फ रियलाइजेशन, बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन की आत्मा उन्नति किए, आत्मा अनुसंधान किए, मैंने सेल्फ रियलाइजेशन किए, खुद को महसूस किए। हाँ, ये खुद को महसूस किए। हम सब कौन है? हाँ, देखा समझ में, आत्मा अनुभूति की आत्मा अनुभूति हुआ ना, इसको कहते सेल्फ रियलाइजेशन। और गॉड रियलाइजेशन भी किए, परमात्मा का अनुभूति भी हुई ना। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं आप सबसे इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। अच्छा, धन्यवाद, आभार।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। मेरा नाम शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट शरद आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और आपको तो मालूम ही है ना, मन की आंखों से में हम लेकर आते हैं उन व्यक्तियों को जिनके जो शारीरिक चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है और लोगों को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं आज एक बेहतरीन आवाज और बेहतरीन नाम, देश के गुजरात के नर्मदा जिले से। नर्मदा आप जानते हैं ना, फेमस है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, हमारे देश के महान नेता सरदार पटेल की स्टैच्यू जहां पर स्थापित की गई है, उसके कुछ दूरी पर ही से ही एक गांव है। उस गांव का नाम आइए जानते हैं, और हमारे साथ हैं उस जगह से आने वाले जय पटेल। तो जय, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी नमस्ते।
0: जय, आपके गांव का नाम बताइए ना।
1: हाँ, मेरे गांव का नाम है धनपुर।
0: जी, धानपुर। जी,
1: यस
0: बहुत बढ़िया। और धानपुर के जय पटेल हमारे साथ हैं। तो जय, आपकी कहानी थोड़ी सी हमें शुरुआत से बताइए, और हमें मालूम चला बातचीत में कि आप विजुअली चैलेंज व्यक्ति हैं और आप स्वयं ही एक वॉलेंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक स्वयं सेवी संस्था के पदाधिकारी भी हैं, तो
1: बिल्कुल।
0: आपकी कहानी थोड़ी शुरुआत से बताइए ना, कैसे ये शुरुआत हुई वॉलेंटियरिज्म की।
1: तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरा नाम जय पटेल है। मैं गुजरात स्टेट के राजपीपला शहर से बिलोंग करता हूं और मैंने इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 2022 से की है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एनजीओ है जो डिसेबिलिटी के लिए कार्यरत है, और 2022 से पहले कोई भी डिसेबिलिटी के लिए एनजीओ वर्किंग में नहीं था, जो हमने स्टार्टअप किया है। और इस एनजीओ का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मैं खुद ही हूँ। मेरी
0: जी
1: एनजीओ का नेम है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजपिपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। इनका मुझे जहाँ जहाँ पे भी सपोर्ट की जरूरत रहती है, वहाँ वहाँ पे मुझे सपोर्ट मिलता रहता है। और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रही है, और मैंने टोटल एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में किया है, और मैं स्टैंडर्ड 10th में था तब से ये सेवा किए कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बट मेरी कॉलेज फिनिश होने के बाद मैंने ये लीगली एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया और एनजीओ को आगे बढ़ा रहा हूँ। और सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि ब्लाइंड लोगों में जो टैलेंट छिपा है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचे, और ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग समझे, जाने और पहचाने, जिसे ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग रिस्पॉन्स दे।
0: जी, तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM माउंट आबू की वादियों से, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपीपला से जय पटेल। मैं आपसे ये पूछ रहा था जय, कि आपने जीवन की शुरुआत के बारे में हमें बताया, लेकिन मैं
1: हाँ
0: जानना चाहूंगा आपको क्या और किस प्रकार की दिव्यांगता है।
1: देखो, मेरे को ब्लाइंडनेस तो बाय बॉर्न ही थी, पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद मुझे राइट आई में थोड़ा थोड़ा विजन था, और लेफ्ट आई तो टोटली ब्लाइंडनेस में ही थी, बाय बॉर्न ही। सो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाया, डॉक्टर हाड़िया के पास। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी आई, और मैंने एजुकेशन के लिए नॉर्मल लोगों के साथ में मैंने अभ्यास मेरा स्टार्टअप किया, और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में फिनिश किया। मैंने बीए ग्रेजुएशन किया है, और परेशानी तो बहुत आई, लेकिन इसका सामना करते करते मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचा। और अभी मेरी कोशिश ये है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जो प्रॉब्लम एजुकेशन में हुई है वो मेरे भाइयों एवं बहनों को आगे जाके ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहते हैं।
0: जी, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है, और आपने नॉर्मल स्कूलिंग की है, और ये तो आपको तो मालूम ही है कि ब्लाइंड व्यक्तियों के क्षेत्र में या डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए या नॉर्मल स्कूलिंग की जाए या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए या ब्लाइंड व्यक्तियों के विशेष स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की जाए, इस संबंध में
1: बिल्कुल
0: डिबेट बनी हुई है। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग अब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपने
1: बिल्कुल
0: कुछ बात पहले ही कर ली। तो राजपिपला की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की है, क्या राजपिपला के चैलेंजेस हैं या नर्मदा जिले में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं एज अ सोशल सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर वॉलंटियर?
1: देखो, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया पड़ता है, सो इधर जो डिसेबल लोग हैं वो बहुत ही गरीबी सीमा के भीतर जीते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें ये लाभ मिलता है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने जब से एनजीओ स्टार्टअप की है 2022 से, तब से लेके आज तक हमने 500 डिसेबल लोगों को बस पास, ट्रेन पास, पेंशन योजना, सभी सरकारी अलग अलग जो लाभ मिलते हैं वो सबको हमने घर घर जाके पहुंचाए। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम लोग 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का सेलिब्रेशन पिछले 3 सालों से कर रहे हैं और इस साल भी होने वाला है। बहुत बढ़िया।
0: आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने कुछ 500 जमा दिव्यांग व्यक्तियों को आपने मदद पहुंचाई है और आपकी
1: यस,
0: संस्था का विजन क्या है, थोड़ा साझा करेंगे जय पटेल जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल। हमारा संस्था का ये है कि सभी लोग एजुकेशन के दिशा में तो सभी लोग काम कर रहे हैं, पर मेरी जो एनजीओ है, मतलब हम सबकी जो ये एनजीओ बनाई गई है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, ये दिव्यांगों के भविष्य के लिए काम करेगा और खास तौर पे दिव्यांगों की रोजगारी के अनुसार ये संस्था काम करेगी। दिव्यांगों को रोजगार प्रॉपरली दिलाना, सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि दिव्यांग को एक प्रॉपरली प्लेटफॉर्म मिले और जिसमें ब्लाइंड कैटेगरी आगे जाए और इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और
0: जी
1: एक रेसिडेंसी ये एरिया बनाना चाहते हैं नर्मदा राजपिपला शहर में, जिसे कि सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को लाभ मिल सके और इधर रह के ही ये लोग रोजगारी पाए और एक ही जगह पे वो लोग रह के आनंद से उनका जीवन गुजार सके, इस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत ड्रीम है।
0: जी जी हाँ, इसे कम्युनिटी लिविंग कहते हैं और ये कम्युनिटी लिविंग के विचार को लेकर भी एक डिबेट है डेवलपमेंट सेक्टर में कि किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति समूह में रह सकते हैं और एक रेजिडेंशियल
1: बिल्कुल
0: टाउनशिप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। सरकार की मुझे कोई विशेष नीति इस बारे में दिखती नहीं है कम्युनिटी लिविंग फॉर डिसेबल्ड
1: हाँ,
0: पर्सन, तो आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि हमें एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी चाहिए जहां पर डिसेबल्ड व्यक्ति साथ में रहे?
1: इसके लिए हमें सरकार तो मदद करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट जो नॉर्मल लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको कनेक्ट करके ये अच्छा कार्य को हम स्टार्टअप जरूर कर सकते हैं।
0: जी
1: और ये हमारी बातचीत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी हमारी संस्थान, मतलब दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन की कार्य, सेवा किया कार्य से खुशी मिल रही है, तो ये लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और इस सेवा के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी आपने क्या प्लान किया है और इसके अतिरिक्त और क्या अभी तक संस्था के अचीवमेंट रहे हैं?
1: अभी तक संस्था के अचीवमेंट की बात की जाए तो हम लोग पिछले 3 सालों से जो टैलेंट शो कर रहे हैं, इसमें अलग अलग सिटीज से हम लोग ब्लाइंड को बुलाते हैं और उनका टैलेंट शो रखते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम हुआ था वडोदरा में ब्लाइंड टैलेंट शो, जिसमें हमने मध्य प्रदेश इंदौर से ब्लाइंड लोगों की 10 लोगों की टीम बुलाई थी और 400 नॉर्मल लोगों के सामने ब्लाइंड लोगों को प्रेजेंट किया था, जो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली हुआ था।
0: जी
1: और इससे पहले हमने किया था 19 जनवरी को इंदौर में किया था, वो भी बहुत सक्सेसफुली रहा था। वहाँ पे 75 टोटली ब्लाइंड लोगों को हमने मौका दिया था, सिंगिंग, मेमिक्री, कॉमेडी, डांस, सब कुछ इंक्लूड। और पिछले साल हमने किया था बॉम्बे मलाड में जो कार्यक्रम हमारा, वो भी सक्सेसफुली रहा था, जिसमें सिंगिंग कंपटीशन रखी गई थी। और अब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये कंपटीशन रखना जा रहे हैं और वो अभी डेट जब फाइनल होगी वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे।
0: आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ।
1: मेरे साथ अभी फिलहाल तो राजपिपला स्टेट के जो राजा है मानवेंद्र सिंह गोहिल, वो हमारे एनजीओ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं, और उनका अच्छा खासा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और डिसेबल के लिए वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है।
0: जी, बढ़िया है। रॉयल फैमिली तो हमें हमेशा सहयोग करती रही है, और हमें तो
1: बिल्कुल
0: लगता है कि हम भी कुछ इस दिशा में स्वयं भी कुछ कर पाए, तो सहयोग जो है, या जो किसे कहते हैं कि सिनर्जी जो है, वो साथ में बन जाती है। और
1: बिल्कुल, हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो सभी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना।
0: जी, तो आप किस प्रकार की प्रतिभाएं देख रहे हैं हमारे दिव्यांग साथियों में?
1: मुझे देख सभी सेक्टर से मेरे साथ में दिव्यांग मतलब ब्लाइंड लोग जुड़े हुए हैं। अभी बॉम्बे से बात कर ले तो बॉम्बे में मेरा एक मित्र है, का नाम है तुषार गोसर, जो कच्छी जैन है और टोटली ब्लाइंड है, और 21 प्रकार के मरी मसाला खुद बनाता है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है।
0: जी
1: और दो तीन लोग ऐसे हैं कि जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो खुद भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है।
0: जी
1: और ऐसे ऐसे मेरे साथ में अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से लोग विजुअली इम्पेयर्ड और हैंडीकैप जो भी हो गए वो लोग जुड़े हैं।
0: जी
1: बिल्कुल
0: और आपको लगता है ना, हमारे एक ये माना जाता है कि भाई, अगर आप ब्लाइंड व्यक्ति हैं तो मास्टर बन जाइए, लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं जिसमें हमारे दिव्यांग साथी झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या चाहे
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी
0: स्पोर्ट्स का
1: सेक्टर
0: क्षेत्र।
1: देख लो, अभी कोई भी सेक्टर देख लो, चाहे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, अस्पताल, कुछ भी हो गया, सभी जगह पे ब्लाइंड लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे।
0: जी, तो आपकी
1: बिल्कुल,
0: संस्था कैसे उन साथियों का सहयोग कर रही है टैलेंट शो के अतिरिक्त?
1: टैलेंट शो जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बजट फिक्स होता है, वो बजट के बारे में हम लोग सबको डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे साथ में जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, और इससे कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको भी रोजगारी प्रोवाइड हो, और एक प्रकार देखा जाए तो रोजगारी का ही ये लक्ष्य है। क्योंकि देखो, सिंगिंग करते करते कोई किसी को रोजगारी तो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कराता है ना। सो हमारे एक विजन है कि एक ब्लाइंड टैलेंट तो होगा ही होगा, साथ में उनका रोजगारी का भी आयोजन हो सकता है। हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम को डिजाइन

0: करते हैं।
1: नहीं, ये तो मानना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे नए बदलाव भी हुए हैं
0: बिल्कुल
1: और सभी समाज के अलग अलग वर्गों से लोग जो है वो भी दिव्यांगता के बारे में जान रहे हैं, लेकिन
0: जान
1: हमें
0: रहे हैं।
1: भी बहुत सारी चीजें उनसे साथ साझा करने की जरूरत है। खासतौर पर डॉक्टर्स के साथ भी एक प्रयास करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स जो है इलाज करते समय क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में भी मरीजों के साथ बात करें और उनको बता
0: बिल्कुल
1: दें कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, जितना हो सकता था उतना बेस्ट हो गया, अब आप भटकना छोड़िए और इस
0: बिल्कुल
1: बच्चे का पुनर्वास की तैयारी करिए। तो क्यों नहीं
0: बिल्कुल वही
1: अवेयरनेस
0: वही वही काम इधर इधर वही
1: अवेयरनेस
0: काम
1: कैंपेन प्लान किया जाए जय पटेल जी?
0: बिल्कुल हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग ही प्लान कर रहे हैं। और आपके दिमाग में भी अगर कुछ आता है तो हमें श्योरली बताना, हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे और डिसेबल को हम आगे ले जाने में। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरा संपूर्ण जीवन ये दिव्यांगों के लिए समर्पित कर रहा हूँ,
1: जी
0: क्योंकि देखो मेरे को जॉब भी मिल सकती है लेकिन मैंने जॉब को स्किप किया है, मुझे सिर्फ दूसरे की सेवा ही करनी है, बस ये मेरा मानना है।
1: जी सोचा हूँ जो
0: और
1: हमसे जी
0: नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया है, सो पेरेंट्स को भी पता नहीं है ना कि क्या हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं। तो हम लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रॉपरली रेडी करते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है, इसलिए हम काउंसलिंग करके उनको भी आगे ले जा रहे हैं।
1: आपके
0: और
1: काम जी
0: अधिकतर अधिकतर हमें सफलता भी मिली है।
1: आपके काम के दौरान कुछ ऐसी कहानियों को साझा करिए ना, जिन्होंने जो सफलता की कुछ कहानियां हों, दो या तीन कहानियां जो आप उनसे साझा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल दो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल है जो सूरत से बिलोंग करती है, एक का नाम है वृष्टि वेकरिया और एक है मनस्वी मकवाना, जो
1: जी
0: बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग करती है। इनको एक बार मैंने इधर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने उन लोगों को स्थान दिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, तब से लेके आज तक उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम दे दिए और आज ये दोनों लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है।
1: जी
0: बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया सिंगिंग भी कर रही है और इनका सूरत में आज जाना माना नाम बन चुका है।
1: जी हम लोग राजस्थान की धरती से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, माउंट आबू से, और राजस्थान से भी कुछ प्रतिभाओं से आपका परिचय हो तो बताइए ना।
0: राजस्थान में शायद मेरा एक एनजीओ से मेरा संपर्क हुआ था, बट अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। झालावाड़ के पास में है ना कोई एनजीओ एक?
1: जी खैर
0: हाँ बस
1: कोई बात नहीं, और आपकी जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव जो खट्टे मीठे अनुभव हों जो आप हमसे साझा करना चाहें मन की आंखों से कार्यक्रम में हमारे।
0: बिल्कुल। देखो मैं पढ़ाई करते समय मुझे स्टैंडर्ड 8 में आया ना, तब प्रिंसिपल की एक कंप्लेंट आई थी कि आपका बच्चा लिख नहीं रहा है, मौखिक जवाब दे रहा है लेकिन लिख नहीं रहा है। सो मेरे
1: जी
0: पेरेंट्स थोड़े अपसेट हो गए। सो मैंने मैंने पेरेंट्स को बोला कि भाई नहीं, ये मैं लिख नहीं सकता हूँ बट मैं मौखिक जवाब तो दे सकता हूँ, तो मैं मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने फिर मेरी पोजीशन को समझा और फिर मुझे फुल्ली सपोर्ट किया और मुझे स्कूलिंग से लेके कॉलेजेस तक बहुत ही, चाहे वो प्रिंसिपल हो प्रोफेसर हो, सबका मुझे बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। ये जो मैंने सेवा का कार्य आरंभ किया है ये मैंने मेरे नाना जी के पास से सीखा था।
1: जी
0: बिल्कुल, वो मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करते हैं।
1: हाँ, एक हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे आसपास के माहौल में ही हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है और
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हमारे
0: बिल्कुल, ऐसा
1: रास्ते।
0: ही
1: जी
0: मेरे साथ में हुआ है।
1: मैं वही जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना उस व्यक्ति के बारे में।
0: हाँ, उनका मेरे नाना जी का नाम है शिवलाल भाई पटेल, वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं। और मैं जब से, मतलब ये माना जाए कि मेरा बचपन जो है वो उनकी नजर के सामने ही गुजरा है, तो मेरे को ये को बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके गुण मेरे में आए और इनके विचारों को मैंने पकड़ के रखा तो आज इस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं,
1: जी
0: और उनके
1: निश्चित
0: पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी मेरा सीखने का जारी है। अभी मैंने सब कुछ नहीं हासिल किया है, अभी 0.1% ही हासिल किया है
1: आपकी
0: मैं।
1: संस्था जो है आपकी, और कौन से नए कार्यक्रम प्लान कर रही है जिससे कि हम दिव्यांग मित्रों की मदद कर सकें?
0: बिल्कुल, और हम लोग एक इवेंट एक प्लान कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से सभी ब्लाइंड भाइयों एवं बहनों को एक बढ़िया स्नेह मिलन कराने का एक कोशिश कर रहे हैं, स्नेह मिलन,
1: जी
0: क्योंकि हमें सभी ब्लाइंड लोगों से एक परिचय हो, ब्लाइंड लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये इनका परिचय हो, और 10 से 15 ऐसे ब्लाइंड लोगों को जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अच्छी पोजीशन पे है, उनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं देखने वाले वो लोग देख के थोड़े से इंस्पायरिंग हो और ब्लाइंड लोगों को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से करे, और ब्लाइंड लोग भी जो लोग लाइफ में हिम्मत हार गए हैं वो लोग फिर से दोबारा मैदान में दौड़ने की एक छोटी सी कोशिश करें। ये हमारा अभी का प्लान आउट चल रहा है, लेकिन ये कब होगा ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन करेंगे ये डेफिनेटली।
1: जी
0: और सभी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये सब कुछ प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल मेरे साथ में रहते हैं, हम दोनों मिलके एक अच्छी सी इवेंट प्लान करते हैं।
1: जी निश्चित रूप से प्रिंस मानवेंद्र का सहयोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
0: और मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स और ये सब का भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे फादर का नाम है नीलेश पटेल और मदर का नाम है माया पटेल।
1: जी इस पूरे कार्य योजना में सबसे ज्यादा सहयोग आपको कौन करता है? डेली आपकी जो दिनचर्या है या जो बहुत सारा जो काम है डे टू डे का, उसमें कौन आपको सहयोग करता है?
0: मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर्स
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: मेरी मदर,
1: जी, तो क्या
0: हाँ
1: वो भी आपके साथ एनजीओ में जुड़े हुए हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहेगा तब तक एनजीओ तो ओपन नहीं कर सकते ना, टफ लेवल की बात है ना एनजीओ ओपन करना भी।
1: जी जी
0: सो पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्टेबल है, मतलब पूरी तरह से कोऑपरेट करती है मेरी फैमिली।
1: आपने एक डिबेट चलता है आजकल की ब्रेल को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बारे में?
0: वैसे देखा जाए तो सीखना जरूरी तो है, पर आज टेक्नोलॉजी की इतनी बढ़ चुकी है ना टेक्नोलॉजी, सो किसी को ब्रेल नहीं भी आएगा ना तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मेरे को खुद ब्रेल नहीं आता है क्योंकि मैंने स्कूलिंग और कॉलेज साइटेड लोगों के साथ में किए, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरे को ब्रेल नहीं ही आता होगा, पर मेरा ब्रेल से कोई विरोध नहीं है। बधा मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देने वाली है टेक्नोलॉजी, सो हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
1: जी हाँ, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस पूरे भागम भाग भरी जिंदगी में अभी एक्सेसिबिलिटी भी एक चैलेंज है, और एक्सेसिबिलिटी को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं। आपके जिले नर्मदा में क्या परिस्थितियां हैं? आपने आपकी संस्था उस बारे में क्या कर रही है?
0: हमारी संस्था के द्वारा एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी बहुत सब कुछ अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्यक्रम होते रहते हैं, और सभी स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रम होते रहते हैं, ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ब्लाइंड लोग इस फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो लोग भी समझ पाए।
1: आप लोग भी जानते हैं, जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ हैं आज के गेस्ट जय पटेल। जय पटेल नर्मदा जिले से आते हैं और अपनी स्वयं की एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और साथ में उनका मकसद है कि डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक कम्युनिटी हाउसिंग डेवलप की जाए, और कम्युनिटी हाउसिंग के माध्यम से उनकी चुनौतियों को कम किया जाए। वे स्वयं भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, परंतु देखिए ना उनका हौसला कि उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को अपने आड़े नहीं आने दिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं अकेले ही, लेकिन उनके साथ हैं वहां के प्रिंस नर्मदा जिले से, उनके वहां के राज परिवार का सहयोग ले रहे हैं, और अपने पेरेंट्स की जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है जय पटेल जी?
0: आगे की प्लानिंग यही है कि इस एनजीओ को मैं बहुत

0: पीढ़ी संभव है हमारे देश में?
1: बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से 20 टोटली ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी हुई है, 20 लोगों को, और वो भी बहुत ही सक्सेसफुली रहा था। और क्यों हम नहीं कर सकते, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टेट में हम लोग कर सकते हैं, ताकि सभी विजुअली इम्पेयर को इनका फायदा हो और उनके ही जिले में उनको प्रॉपर शिक्षण मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए। ये करना चाहिए और ये हम लोग भी करेंगे।
0: हाँ, इसके लिए कुछ योजना तो बनानी होगी ना, लेकिन
1: हाँ बिल्कुल, योजना बनानी होगी। मैंने आपको बोला ना, पहले रेसिडेंसी हो जाएगा ना, इसके बाद में सभी प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, संगीत का हो गया, रोजगार के रिगार्डिंग हो गया, सब कुछ ट्रेनिंग एक ही जगह पे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ताकि सबको अलग अलग जगह पे ना जाना पड़े। और उनको
0: कम्युनिटी ऑफ
1: व्यवस्था व्यवस्था इस प्रकार से देंगे क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल की परेशानी ना आए। उनके पेरेंट्स भी हमारे रेसिडेंसी पे छोड़ने आए, ऐसे हम बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट करें, ऐसा हम डेवलप करना चाहते हैं।
0: हाँ, कम्युनिटी हाउसिंग आप कहाँ प्लान कर रहे हैं? नर्मदा में प्लान कर रहे हैं?
1: यस, नर्मदा राजपिपला।
0: कैसी दिखती होगी ये कम्युनिटी हाउसिंग? क्या होगा इसमें विशेष?
1: सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, हम लोग हॉस्टल नहीं बना रहे, हम लोग बोल रहे हैं सभी डिसेबल लोगों के लिए एक घर बना रहे हैं, हॉस्टल नहीं, इसे घर का दर्जा दिया जाएगा, और जिनका कोई नहीं है इनका हम एक आधार बनेंगे।
0: जी,
1: बिल्कुल,
0: कितने लोगों की आवास की व्यवस्था होगी यहाँ पर?
1: अभी वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि बड़ी बिल्डिंग बने और 70 to 80 रूम बने, जिसे बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल हो और सभी
0: ये आप
1: डिसेबल लोगों के लिए।
0: राजपीपला प्लान कर रहे हैं?
1: राजपिपला में प्लान कर रहे हैं हम लोग, राजपिपला और वडोदरा के बीच में, मतलब
0: जी, नर्मदा और वडोदरा लगते हुए जिले हैं दोनों।
1: बिल्कुल नजदीक है, मेरे घर से वडोदरा 70 किलोमीटर, सेवेंटी
0: जी,
1: सेवेंटी फाइव यस।
0: बेहतरीन बातचीत रही जय पटेल जी आपके साथ। और आप कुछ कहानियां हमसे साझा करना चाहें तो बताइए ना, कुछ सफलता की कहानियां, कुछ ऐसी बातें जो हम हमारे श्रोताओं तक ले जा सकते हैं।
1: हाँ देखो, मैंने बहुत सारे कार्य किए, मैं सेवा किए कार्य में बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मेरा सूरत में भी सम्मान हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, और रिसेंटली अभी मारुति सुजुकी शोरूम के बारे में आपने सुना होगा, सो नेक्सा शोरूम के यहाँ भी मेरा सम्मान हुआ, और उसमें मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया था, और रिबिंग कटिंग भी मेरे हाथ से ही उन लोगों ने करवाई थी, और मुझे सम्मानित भी किया, और कॉलेज कार के दरमियान भी मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है।
0: जी,
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता है ना कि हम लोग ये सारा जो प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया करने की आवश्यकता है
1: बिल्कुल,
0: और लोगों से जुड़ने की आवश्यकता है।
1: लोगों के कनेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हो, ऐसी हम एक आवश्यकता रखते हैं, और आप भी हमारे कार्य में शामिल हो गए तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपके साथ में आज बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और मन की आपको किसी टीम आपके साथ है हमेशा, और आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें। हम
1: बिल्कुल,
0: आपको हमेशा आपके साथ हैं और आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से।
1: खास तौर पे मैं मन की आंखों की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और खास तौर पे कृष्णा दीदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कृष्णा दीदी ने हमारे डिसेबल लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और ये बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, तो ये रेडियो स्टेशन का जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
0: बिल्कुल जय पटेल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। कोई ऐसी बात जो हम पूछना भूल गए हों और आपको लगता है कि नहीं, वो बात मन की आंखों से के कार्यक्रम में आनी चाहिए थी, तो आप हमें बताइए ना प्लीज।
1: वैसे तो मैंने आपको सब कुछ मेरा बता दिया है, और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ, और सिंगर एंड कीबोर्ड प्लेइंग भी खुद कर रहा हूँ,
0: जी
1: और मेरा जहाँ पे भी कार्यक्रम रहता है वो नॉर्मली साइटेड स्कूलिंग में ही होता है, कॉलेजेस में होता है, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ही हम लोग मोटिवेट

0: करते हैं और ब्लाइंड को भी मोटिवेट करते हैं। और मेरी इवेंट जो भी प्लान होती है ना, वो बहुत ही एक्साइटेड बात है। आप सुनना, मैं जहाँ पे भी इवेंट प्लान करता हूँ, वो आदमी से मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में ही मिलता हूँ। इससे पहले हम लोग फोन से कांटेक्ट करते हैं, मैं गूगल से कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट निकल के उनसे बात करता हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन करता हूँ, फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं और फिर हमारा कार्यक्रम होता है। उसी दिन हमारी मुलाकात उस आदमी से होती है जो हमें सहयोग कर रहा है। ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं किसी को कभी, मतलब मेरे से अनजान भी है तो इससे बात करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ और फिर जिस दिन प्रोग्राम रहता है उसी दिन हमारी उनसे आमने सामने मुलाकात होती है और हमें अच्छा खासा सहयोग भी प्राप्त होता है, भले ही हम लोग ना मिले हो। और अभी हमारी चंडीगढ़ में भी बातचीत चल रही है, उनसे भी मैं अभी मिला नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे एक इवेंट प्लान कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर।
1: तो मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं मन की आपको से टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देती है। और श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो प्रोग्राम मन की आंखों से, 107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मेरे प्यारे से श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आप पहचान रहे होंगे एक जानी पहचानी आवाज, इस शो का होस्ट शरद त्रिपाठी। और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मुझे किसी ने पूछा कि क्या आपने दुनिया को देखा है, तो मैंने उनको कहा हाँ देखा है, पर मेरी मन की आंखों से। और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.0 लाया है एक नया मेहमान। और हमारे मेहमान का नाम है सचिन सिंह जाधवन, जो आते हैं देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की पूर्वी सीमा से लगे हुए करौली जिले से। करौली एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और वहां से आने वाले हमारे एक आज के नेत्रहीन साथी हैं, दृष्टिबाधित साथी हैं, सचिन सिंह जाधवन। सचिन, स्वागत है आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
0: सचिन, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी भाषण प्रतियोगिता में और आप उस भाषण प्रतियोगिता के विनर थे, और मुझे मालूम भी नहीं चला कि आप दृष्टिबाधित हैं। लेकिन वो मेरे लिए एक नया अनुभव था। आप आए और चुपचाप आए, बिना किसी जद्दोजहद के आपने अपना एक शानदार भाषण दिया और आप उस प्रतियोगिता के विनर रहे, वो मुझे आज भी याद है। तो सचिन, इस समस्या और चुनौती के बावजूद, या मैं कहूं कि इस शारीरिक चुनौती के बावजूद, आप यहां तक कैसे पहुंचे उसको जानना है। तो पहले आते हैं आपके बचपन पर। तो ये चुनौती आपको कैसे प्राप्त हुई और कैसे आप इससे उभरे?
1: जी सर, धन्यवाद। जी सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी आप मेरे बारे में जो आपने बताया वो सिर्फ एक समस्या को बताया है कि जो मुझे आंखों की समस्या है उसके साथ में ही एक हड्डियों की गंभीर समस्या है जिसका नाम है ऑस्टियोपेट्रोसिस, जिसके कारण से अगर हम गलती से भी चेयर से भी यदि गिर जाते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं। और अब तक कम से कम 25 से 30 फ्रैक्चर मेरे बॉडी में हो चुके हैं, जिसके 4-5 तो मैं ऑपरेशन करवा चुका हूँ। ये एक गंभीर समस्या है जिससे पार पाना, मैं कहूंगा कि जो आंखों की समस्या है उससे भी कहीं कठिन समस्या है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि बचपन की मैं बात करूं तो जिस उम्र में, जो उम्र खिलौनों की होती है, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं, उस उम्र में मेरे फ्रैक्चर्स हो जाते थे और मैं प्लास्टर से ग्रसित रहता था। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बॉडी में सबसे जो पहला फ्रैक्चर था वो महज 3 साल की आयु में, जिस समय बच्चा सिर्फ खिलौने पकड़ना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, उस समय में किसी की गोद से गलती से गिर गया था। उस समय मेरे फ्रैक्चर हो गया था और मुझे प्लास्टर लग गया। कभी कभी तो ऐसा समय आया कि मैं साल में 8-8, 9-9 महीने फ्रैक्चर्स रहते थे, प्लास्टर्स रहते थे, ना कहीं खेलना ना कहीं जाना, क्योंकि कभी एक प्लास्टर कटा आप कहो कि वो दूसरा में लग जाती थी, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है सर वो बहुत ही चंचल दिमाग है। आज तो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ये करना है, यहाँ नहीं जाना है, किंतु जब बच्चा दूसरे बच्चे को देखेगा कि आम बच्चे खेल रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, तो उसका भी मन करेगा, वो इतना परिपक्व नहीं होता है। तो सर जो बचपन रहा है वो काफी चुनौतियां पूर्ण रहा है, लेकिन मेरी जो इच्छा शक्ति रही वो हमेशा यही रही कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी कि जब उद्देश्य बना लिए हैं जीवन में, अपन को एक जीवन को सार्थक जीवन बनाना है और देश और समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं यहाँ तक जो पहुंचा हूँ वो बहुत ही जद्दोजहद करके या बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ आया हूँ। और जो बचपन रहा है वो लोगों का बचपन सुखद रहता है, किंतु मेरे साथ में जो समस्याएं थी और जो बचपन मेरा था वो मैं नहीं कहूंगा कि इतना खुशहाल बचपन रहा जो कि एक आम बच्चे से उम्मीद की जाती है।
0: जी सचिन, आपकी बात सुन के तो मैं भी अभी भावुक हो रहा हूं, लेकिन भावनाओं से आगे निकल जाने की यात्रा ही इंसान की यात्रा है। तो इस डबल चुनौती, या कहें कि दोहरी चुनौती के साथ आप आ रहे हैं, और हम तो एक हड्डी के फ्रैक्चर को जब झेलते हैं तो हमें मालूम है कि वो कितना पेनफुल होता है। और आपने इस कम उम्र में, आप बता रहे हैं कि आपने दर्जनों फ्रैक्चर अब तक आप अपने जीवन में देख चुके हैं, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस दोहरी चुनौती के साथ में, जो आपकी डिसेबिलिटी है, जो आपकी दृष्टिबाधिता है, उसके साथ में आपके स्कूल का जीवन कैसा रहा और आप कैसे रिहैबिलिटेशन, मतलब पुनर्वास, एक महत्वपूर्ण है। शारीरिक चुनौती होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस व्यक्ति को पुनर्वास करने का अवसर मिला कि नहीं। तो आपको पुनर्वास करने के लिए किस प्रकार के लोगों के सहयोग मिला, परिवार का सहयोग कैसे मिला, आपके विद्यालय के अध्यापकों ने क्या इस बारे में चर्चा की, थोड़ा इस बारे में बताइए ना,
1: जी
0: खासतौर पर
1: सर,
0: प्राइमरी
1: मैं
0: एजुकेशन, खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन।
1: जी जी सर मैं प्रारंभ से प्रारंभ करता हूँ कि एक जो दृष्टिबाधित बच्चे से, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है, किंतु जब उस समय, और हम जो आते हैं वो एक छोटे शहर से आते हैं, यहाँ पर इतने अवसर नहीं मिल सकते क्योंकि इतने कंप्यूटर से या इतना टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है। तो तो हमें जब कोई शिक्षा के बारे में बोलता था तो कुछ लोग तो पहले ऐसे भी थे, मुझे ध्यान है, वो कहते थे तो भाई अब बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे कुछ ढोलक वगैरह सीख लो तो जीवन यापन हो जाएगा। मैंने उनसे भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, उनका कहना भी उनकी जगह सही है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती थी तो सिर्फ एक चीज थी कि आप ब्रेल लिपि सीख लो, उससे वो जो डॉट्स होती हैं उससे आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो कुछ जीवन यापन हो जाएगा, आपको कुछ बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी। लेकिन जब ब्रेल लिपि का सवाल आता था तो घर वालों के डर एक ही था कि यदि आंखों की समस्या हो तो छूट सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पे, जो स्कूल्स भी चल रहे हैं। किंतु हम एक बार गए एजुकेशन के लिए तो उन्होंने कहा कि यदि इनको आंखों की समस्या होती तो हम इनको हमारे यहाँ पर रखते और इनको प्राइमरी एजुकेशन देते। किंतु इनके साथ समस्याएं दूसरी भी है कि यदि गलती से भी किसी बच्चे को जो और रह रहे हैं उनको भी नहीं दिख रहा है, गलती से किसी बच्चे से ये टच हो गए या टकरा गया तो इनके तो फ्रैक्चर हो जाएंगे और घर वालों में लगेंगे 24 घंटे से ज्यादा। तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जितना भी होता है आप इनको घर पर ही रिहेबिलिटेट करें और इनको जो एजुकेशन दे सकते हैं वो घर पर ही दें, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। तो एक हमारी आशा खत्म हो चुकी थी बिल्कुल कि अब तो उन्होंने भी मना कर दिया एजुकेशन के नाम पे, तो हम तो जीरो हो गए थे उधर फ्रैक्चर्स के, तो घर वालों के भी दिमाग में नहीं था। फिर हमारे शहर में एक वीणा मेमोरियल जो संस्थान है उनके काफी कॉलेजेस स्कूल चलते हैं, तो वो पहले चलता था, उनमें एक प्रिंसिपल आई थी, श्री योगिता मैडम थी जयपुर से, वो एक दिन मुझसे मिलने आए। तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐसे ही बात की, तो उन्होंने हमारी फैमिली को कन्विंस किया कि देखो हम सब लोग इनका सपोर्ट करेंगे, हम सब लोग इनको अलग बैठाएंगे, आग हाथ पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन आप इनको घर से बाहर निकालो। उन्होंने कहा जब तक ये घर को नहीं छोड़ेंगे ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ कुछ नहीं पढ़ेंगे वहां पे बैठेंगे। तो घर वालों की तो मन में नहीं थी, लेकिन तब तक मैं भी समझने लगा था, और मुझे पढ़ाई की तो इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये था कि यार दुनिया के दोस्त होते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं, अपनी जिंदगी क्या है, खाया पिया और सो गई। तब तो फोन भी नहीं था जो दुनियादारी से पता चलता, तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा। तो मैं गया, पहले तो लगभग 15 दिन गया वहां पे बैठा, तो मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ समझ में, मेरी जो माताजी ने जो प्रारंभिक शिक्षा दी, जैसे गिनती सिखाना है, ANR 12 KD, ये ABCD ये सब सिखाना है, या कुछ मतलब जो वर्बल एजुकेशन वो दे सकते थे वो मुझे दी उनने, क्योंकि ब्रेल लिपि तो उनको नहीं आती थी जो मुझे सिखाएं, और टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे यहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी सीख सके, तो ओरल एजुकेशन उन्होंने मुझे दी। फिर मैं वहां पे गया तो कुछ दिनों तक तो मैं रोता था, क्योंकि वो बोल रहे हैं, एक टीचर जा रहे हैं दूसरे टीचर आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना मैं नोट्स बना रहा हूँ ना मैं बैठा हूँ। आप एक बच्चे जो सिर्फ घर पे खाने और सोने से फुर्सत नहीं है, वो बच्चा के कोई और उद्देश्य नहीं है जीवन में, वो बच्चा सिर्फ 8 घंटे बैठा है, तो उसकी यात्रा आप समझ सकते हैं। लेकिन
0: जी
1: मैंने कहा कि नहीं मैं बैठूंगा। मैं वहां पे 15 दिन बैठा, 20 दिन बैठा, फिर क्या है कि पहले वो मुझे ले गए थे कि अब मेरी क्या एज भी हो गई थी, मैं पढ़ने नहीं गया था। वो उनने कहा कि यार जब एजुकेशन देनी है अब इसको नर्सरी में बिठाएं तो भी कोई मतलब नहीं है, कि जाके ये 20 साल की उम्र पे जाके 10वीं करेगा, तो वो भी एक चुनौती थी। तो उन्होंने
0: जी
1: मुझे पहली बार बैठाया सेकंड क्लास में, एक मैडम थी बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे माँ की तरह ख्याल रखा मेरा। फिर मैं 2 दिन
0: जी
1: सेकंड क्लास में बैठा तो मुझे लगा कि यार बड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन दी हुई है और जो माताजी ने भी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम एक क्लास और आगे जाएं। तो फिर मैं गया थर्ड क्लास में, तो सर
0: जी
1: थर्ड क्लास में मेरा सिर्फ वही था कि जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, टिफिन खोला, लंच हो गए, टिफिन खाया, और एक आदमी बस में आके बैठा गया, घर पे आके लोगों ने उतार लिया, मेरा ऐसे ही चला, कुछ नहीं था, बस मैं जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। फिर मैं थर्ड क्लास
0: जी
1: में पढ़ा, लेकिन क्या है कि मुझे पढ़ने की, क्योंकि मैं पढ़ाई से वंचित रहा, तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा था कि कुछ तो करना है, बस पढ़ना तो है, मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं खेल सकता, ना मैं क्लब जा सकता, ना मैं कुछ कर सकता, करौली छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने कहा अब तो पढ़ना है। तो मैं सुनता था वो क्या बता रहे हैं, तो जितना सुन के मैं ले पाता था। फिर मैंने 12th के एग्जाम हुए, उसमें मेरी ठीक ठाक अंक आए जो औसत क्लास में आते हैं, जबकि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, और लिखने वाला दूसरा लिया एक बच्चे से और से लिखवाए थे। तो फिर घर वालों को टीचर्स को लगा कि यार थोड़ा बहुत कर सकता है, एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक क्लास और जंप करवाई जाए। तो मैंने 5th क्लास में पहुंचा डायरेक्ट में। अब वो
0: जी
1: सर मुझे दिखता नहीं है, पहले तो मैं 1 साल तो थर्ड क्लास के बच्चों के साथ एडजस्ट किया मैंने, अब मैं सर 5th क्लास में गया तो वहां तो मतलब पूरा सीन ही बदल गया। एक तो स्टैंडर्ड बढ़ गया पढ़ाई का, और उसमें बच्चे नहीं मिले, मैं तो कोई ना मेरे से बात करे ना कोई मुझे बिठाए, टीचर बैठा जाए, मैं वहीं बैठा हूँ अकेला, और बस टीचर चल रही है। लेकिन अब अपन मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पे समाज की भी जरूरत पड़ती है, तो हमने धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई, बच्चों से शुरुआत की, तो कुछ लोग मुझे समझ पाए, कुछ लोगों ने तो मुझे हमेशा नेग्लेक्ट किया कि यार ये तो ऐसा ही, अपना एडजस्ट नहीं होगा इसके साथ, लेकिन कुछ लोग समझ पाए, तो मेरी उनके साथ कंपनी बनी। फिर मैं वहां पे धीरे धीरे पढ़ा, फिर मैं 5th क्लास और जो 6th क्लास मैंने वहां पे 2 क्लास पढ़ी बच्चों के साथ, और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। सिक्स क्लास में हमने एक जब जैसे क्या है कि फिजिक्स के वो हिस्ट्री सोशल पॉलिटिकल साइंस और हमारे में सेंट्रल बोर्ड का था ही एजुकेशन जो मैंने ली है स्कूलिंग, सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हुई है। तो सर वहाँ पे सिक्स क्लास में मैं आया तो और सिलेबस ब्रॉड हो गया, वहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी ऐसी चीज़ें साइंस पढ़ाने लग गए, ईबीएस खत्म हो गई। तो हमको लगा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारे एक वेस्ट बंगाल से टीचर है मैं पंकज यादव सर, अभी नहीं है वो थे पहले, अभी यहाँ से जा चुके हैं, तो उनको हमने घर पे हायर किया। तो वो मुझे घर पे पढ़ाने आते थे, तो वो भी मुझे ओरल एजुकेशन दे रहे हैं, यदि वो लिखें तो मैं नहीं पढ़ पाऊं, और ब्रेल उनको आती नहीं ना कंप्यूटर, तो वो सिर्फ मुंह से बोल के सिखा रहे हैं वो। तो वो आए फिर सिक्स क्लास में, धीरे धीरे मुझे लगा, तो मैंने वहां पे और बेहतर अपने आप को किया थोड़ा सा। मैंने कहा आप समझ में आ रहा है सर से पूछना, यहाँ पे मेरे भैया भी हैं बड़े भैया, मैं उनसे भी पूछता था, जो घर में मिल रहा है उससे पूछ रहा हूँ। माता जी को इंग्लिश नहीं आती तो उनसे हिंदी की किताब पढ़वा रहा हूँ कि आप हिंदी सुना सकते हो, हिंदी तो सुनाओ। तो ऐसे चीजें चली मुझे, हालांकि इस दौरान मैथ्स में काफी दिक्कत आई, पर एक टीचर जो हमने हायर किए थे उनने मुझे काफी सहयोग किया। फिर ऐसा लगा कि यार अब फिफ्थ सिक्स पढ़ लिए तो क्यों ना एक क्लास और जंप करवाएं। तो सर मैंने सेवंथ क्लास जंप किया, अब मैं पहुंचा हूँ एट्थ में। अब मैं डायरेक्ट एट्थ में गया, तो एक तो सिलेबस बढ़ रहा है एक साल का, आप अंतर समझ सकते हैं कि जब स्कूलिंग में एक साल की जो सिलेबस है वो कैसे कवर करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो करना, क्योंकि पहले और वो भी मेरे कंडीशन में। तो सर वहां पे हमारे साथ एक तो वही समस्या पहले वाली कि वहां पे नई कंपनी, कोई बच्चा एक्सेप्ट ना करे, बच्चे को दिख नहीं रहा है कौन मुझे लेके जाएगा, कौन लेके आएगा, कौन वॉशरूम ले जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो एक दो महीने तो एडजस्ट करने में चली गई। फिर मैं एट्थ क्लास में गया, फिर एक उसी दौरान एक हमारे हुआ था, मैं बोलता अच्छा था, मुझे बोलने का शुरू से शौक था, चाहे मुझे छोटी जगह मिली। हमारे यहाँ पे लोक गायन शैली होती है होली पे, ख्याल वगैरह जो राजस्थानी की गायन शैली है, शायद आप उससे परिचित होंगे। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा गाता था, तो सब लोग मुझे गाने के लिए बुला लेते थे पहले, तो तब से मेरी झिझक निकल गई बिल्कुल बोलने की। तो एक हुआ सर यहाँ पे डिबेट कंपटीशन हुआ था हिंदी दिवस पे, कि अंग्रेजी और हिंदी कुछ इस तरीके की भाषाओं पे के उस पर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। तो एट्थ क्लास और नाइन्थ क्लास का हुआ था सर, उसमें मैं चला गया था, तैयारी तो कुछ नहीं थी क्योंकि नोट्स वगैरह बना नहीं सकता था। तो उसमें सर मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हमारी टीम ने नाइन्थ क्लास को हरा दिया। सर मेरी उस समय से स्कूल में एक इमेज बदली, बच्चों ने सोचा कि यार कुछ चीज नहीं है लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो किसी के पास नहीं है। तो फिर मुझसे उन्होंने दोस्ती बढ़ाई और हाथ बढ़ाया, तो सर मेरी दोस्ती सबसे बढ़ गई। फिर आती है नाइन्थ क्लास, एट्थ क्लास में बढ़िया उत्तीर्ण हो गया मैं। फिर नाइन्थ क्लास आई, तो सर नाइन्थ क्लास में ये होता है कि एसएसटी और ये सब तो थी, पर अब यहाँ पे साइंस के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब अलग कर दी इन्होंने, अलग अलग हो गई, बाइफरकेशन हो गया इनका। और फिजिक्स, और फिजिक्स में चले कैलकुलेशन और ये इक्वेशंस चलते हैं उसमें, डेरिवेशंस होते हैं। तो मैथ्स में मैं शुरू से ही इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैथ्स क्या है कि देख के करनी पड़ती है। तो फिर भी मैंने जद्दोजहद की, और सर मैं नाइन्थ निकला, थोड़ा थोड़ा मेरा फेमिलियर हुआ इनसे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। फिर मैंने टेंथ क्लास में पहुंचा मैं। तो सर हमारी तो क्या है कि कोई गिनती थी नहीं, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा क्लास जा रहे हैं, ट्यूशन चल रहे हैं, और नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लिए हुए हैं, लेकिन मैं अपने वो कछुए की गति से चलता रहा। सब लोगों का सहयोग मिला, टीचर से हमने प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट की थी, और हमारे स्कूल ने भी इतना अच्छा मुझे कोऑपरेट किया कि कभी किसी चीज की कमी, मतलब मैं खड़ा हो जाता था, मुझे हमेशा आगे बैठाया उन्होंने, कभी नहीं कहा। बच्चों का रोटेशन चलता था लेकिन मेरी सीट हमेशा फिक्स थी, हालांकि मैं कभी देख नहीं पाता था लेकिन जो बोर्ड पे पढ़ा रहे थे वो सुनता था मैं। तो हमने उनसे इतना सा निवेदन किया कि सर जब भी कोई टीचर जैसे फ्री हो तो इसको एक आधा पौना घंटा स्कूल में अलग दे दिया करे, टेंथ क्लास में जाके, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब क्या है क्लास में तो वो उनके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे वो उतना लिख नहीं रहे, ओरली बताए। तो थोड़ा थोड़ा पॉसिबल हुआ जितना हमने अलग अलग टीचर्स को, जो जो फ्री होते थे, तो उनने हमका व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। सर सेंट्रल बोर्ड ये सीबीएसई में जब रिजल्ट आता है टेंथ का, तो सर जो अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट थे उनकी परसेंट कम रहती है, और आश्चर्यजनक मेरी परसेंट बन जाती है 89%। अब सर धीरे धीरे मेरी स्कूलिंग, मेरी एक तरीके से इमेज और बन गई कि ना तो लड़के ने नोट्स, अब मैं, मुझे ये था कि यदि टीचर पढ़ा रहा है मैंने अभी नहीं सुना तो मुझे बाद में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जब तो यूट्यूब मेरे पास पर्सनल फोन भी नहीं था, मैं पढ़ूंगा कैसे। तो मैं उसको इतना ध्यान से पढ़ता था, और लिखने की यदि मैं अच्छा बोल लेता था तो विचारों का आदान प्रदान अच्छा था। और सीबीएसई का नियम है कि यहाँ पे फैक्ट पे बात कम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पे बात ज्यादा होती है। तो जो जितना भी मुझे आता था वो मैं उसको अच्छे से लिखना, अब राइटर किया हमने, वो भी नाइन्थ क्लास का था, तो उसने मेरी बातों को अच्छे से लिखा, तो सर मेरी बनती 89% फिक्स। अब सर जो मेरे से अच्छे थे पढ़ने वाले, उन बच्चों की भी इतनी अच्छी परसेंट नहीं बनी, मैं उस समय थर्ड रैंक पे रहा था पूरे स्कूल में। मैं कहूंगा कि सर कुछ बच्चे तो टीसी लेकर चले गए, कि स्कूल ने कुछ ना कुछ फेवर किया, इस बच्चे को दिखता नहीं इसकी इतनी परसेंट कैसे बनी, हमारी क्यों नहीं बनी।
0: जी
1: ऐसी भी फीलिंग आई उनकी फिर
0: आपने अपनी
1: से।
0: शारीरिक चुनौती से उनको मानसिक चुनौती
1: हाँ,
0: दे
1: मानसिक चुनौती दे दी मैंने, तो उनको इस चीज में मतलब एक तरीके से
0: दी।
1: डेरोगेटरी फील हुआ, तो उनने
0: जी,
1: टीसी भी ले ली दो तीन
0: जबकि
1: बच्चों की,
0: हमारा
1: किसी चक्कर
0: उद्देश्य
1: नहीं
0: नहीं
1: की।
0: था, जबकि हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था। जी
1: मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन सर वो दुनिया अलग तरह से ले जाती है, तो
0: हाँ,
1: अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें।
0: वो तो बचपन से ही लेती है ना। जी
1: हाँ, फिर सर हम आए 11th क्लास में, तो अब मैंने कहा साइंस लूँ तो वही दिक्कत कि उसमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर मुझे लोगों ने प्रोत्साहित किया कि यार आप अच्छा बोल लेते हो, विचार
0: जी
1: अच्छे आदान प्रदान करते हो, आपको अच्छी नॉलेज है, आप लो आर्ट्स। तो सर मैंने 11th में आर्ट्स ली, वहाँ पे हमारी मैडम थी अनीता मैडम, तो वो बहुत अच्छा बच्चों को रखती हूँ, एकदम माँ की तरह रखा था उन्होंने। मैंने ली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी।
0: जी
1: सर मैं अच्छे से पढ़ता, अब मेरी हालत ये हो गई कि 11th में हम कम ही बच्चे थे, अब उन बच्चों को कोई समस्या होती तो मैं इतना अच्छे से पढ़ लेता कि वो किताब पढ़ के मुझे सुनाते, उसका मैं उनको अर्थ समझाने लग गया, वो टीचर से नहीं समझते थे, और
0: जी
1: मुझे इसमें मजा आने लग गया।
0: जी
1: मुझे शुरू से जो जिस चीज को किसी को समझाने में, बताने में, बातों को, उसमें मजा आता है। तो अब होता क्या
0: जी
1: था कि मैं टीचर से पढ़ लेता था, वो भी पढ़ते थे, उनको कम समझ में आता था, वो किताब लाते थे, वो एक सेंटेंस पढ़ते थे, मैं उनको समझाता था, वो दूसरा पढ़ते थे। अब उनको फायदा हो रहा है कि बढ़िया फ्री में टीचर मिल गया, टीचर तो बार बार नहीं पढ़ाएगा ये, तो मतलब जब तक स्कूल में 8 घंटे फ्री मिल गया हमको, बढ़िया। और मुझे
0: जी
1: फायदा ये हुआ कि सर मेरी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो गई उससे।
0: जी
1: अब वो पढ़े, मुझे लगभग लगभग बुक याद हो गई। इस तरीके से मैंने 11th की, 11th में बहुत अच्छा रहा। फिर हम आ गए 12th में, तो 12th में भी सर यही सिलसिला चलता रहा। मॉडर्न हिस्ट्री आ गई इंडिया की, इंडियन हिस्ट्री आ गई, इधर अपने ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स आ गई, और यहाँ पे नई नई चीज सीखने को मिली मुझे, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी मिली, कोल्ड वॉर एरा, ये सारी चीजें, तो इसमें इंटरेस्ट आता था। इधर बच्चे मेरे से पूछते थे, वो पढ़ते थे, तो मुझे एनसीईआरटी याद सी हो गई। तो सर 12th में जाते जाते तो मुझे ऐसा हो गया कि मैंने प्रिंसिपल से, सर से कहा, सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आप लोगे नहीं, एनसीईआरटी इतने अच्छे तरीके से याद होंगे कि जो टीचर पढ़ा रहा है आपके, आप यदि मुझे मौका दो तो शायद बच्चों को उससे अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। उनने कहा कि आप तो बहुत अच्छी तरीके से, आप पढ़ो और आप हमको रिजल्ट दो पहले। सर मैंने पूरी श्रद्धा से तैयारी करी और मेरी बनी 90.20% क्लास 12th आर्ट्स में। सर मैंने तो दोबारा सरप्राइज कर दिया सबको, और उसके बाद क्या है कि सरप्राइज मैंने कर दिया, फिर मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई। फिर मैंने एक पीटीईटी का एग्जाम दिया, यहाँ पे BA+ BEd इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 ईयर का, उसमें सर मैंने कॉलेज टॉप किया, मतलब मेल में कॉलेज टॉप किया था मैंने, और वैसे पूरे कॉलेज में मैं आया था 2nd नंबर पे। उससे हमको बीड़ा मेमोरियल कॉलेज मिला, जिनका स्कूल चलता है उनका ही हायर स्टडीज के लिए कॉलेज है, तो वो घर से कॉलेज मिल गया मुझे। उसके बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, फिर आपके जो भी ये युवा दिवस के कंपटीशन हुए, उसमें आपका जो हुआ था विकसित भारत के लिए, उसमें मैं जिले में प्रथम आया, एक गहलोत सरकार के टाइम पे हुआ था अपना ये विकसित राजस्थान 2030, उसमें मैं गया था ऐसे, तो मैं उसमें आया 3rd रैंक पे डिस्ट्रिक्ट में। तो
0: जी
1: सर ऐसे जो भी दो तीन कार्यक्रम और हुए, एक युवा दिवस पे आपने मुझे सम्मानित करवाया था आपके माध्यम से, सांसद महोदय से, तत्कालीन सांसद महोदय से, तो इन
0: जी
1: चीजों ने ऐसा बूस्टअप किया। फिर मैं धीरे धीरे, ये प्रोग्राम है, आप सब लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इनमें ज्वाइन करो, तो मैं यहाँ पे जाने लगा। तो आज मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ कि मुझे प्रोग्राम में जाने में, भाषण देने में, इन सब में मजे आते हैं, मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, साथ ही में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और आगे भी मैं अपनी जो मेहनत की है उसको ऐसे ही बरकरार रखना चाहूंगा जैसे अभी रखी है। और यहाँ तक की जर्नी तो कुछ स्कूलिंग की इस प्रकार रही थी, संक्षेप में मैंने बताया है।

0: सचिन डेफिनेटली बचपन से लेकर एक हायर एजुकेशन तक आने में नेगलेक्ट या कहें कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कदम कदम पर फेस करते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपके सामने से उठ के चला जाए, और या फिर जैसा आपने बताया कि एक कोने में आप खड़े हैं तो खड़े ही रह जा रहे हैं 2 2 घंटे तक, कोई आपको अटेंड ही नहीं करने आ रहा, वो ये भी पूछने नहीं आ रहा कि तू तू भाई भूखा है कि तू
1: जी
0: कुछ खाएगा
1: जी
0: कि नहीं खाएगा। इन परिस्थितियों में हम लोग स्कूलों से निकलकर यहाँ तक पहुंचते हैं, तो ये एक
1: जी
0: लंबी कहानी है और ये तो हमने देखा है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने अपने दो टीचर्स को अपने जीवन में अप्रिशिएट किया और उन टीचर्स की बदौलत आप यहाँ पर हैं, और आंखें नहीं होते हुए भी आप मन की आंखों से आज आप काम कर रहे हैं और एक अच्छा मुकाम आपका जीवन में निश्चित रूप से बनेगा। तो सचिन ये
1: जी
0: तो डेफिनेटली आपने कहा, और लेकिन दो 9th 10th में एक एलजेब्रा और फिजिक्स की समस्या है, वो आपने कैसे फेस की वो बताइए थोड़ा सा।
1: जी सर, मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा। आपने सर इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमेशा दिल में दर्द रहा है इस चीज का कि
0: जी
1: इतनी मेहनत करने के बाद भी शायद मैं एक एरिया ऐसा है वहां पे उतना अपना 100% नहीं कर पा रहा हूँ।
0: जी
1: तो सर सीबीएसई में हमारे सिस्टम चालू हुआ था कि आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है, बेसिक मैथ्स लेनी है। वो कुछ
0: जी
1: भगवान की दया ऐसी थी कि शायद मेरे टाइम पे चालू हुआ था वो। तो सर
0: जी
1: अपन तो मैथ्स में कर नहीं पा रहे थे, तो मैंने तो बेसिक मैथ्स लिया। तो एक तो उसका स्टैंडर्ड जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह उनका डाउन हुआ था, और मैंने सर उनको टीचर लिख के मुझे मतलब टीचर बता रहा है ये लिख रहा हूँ, वो मुझे बता रहा है, मैं बता रहा हूँ सर फॉर्मूले वगैरह याद करके। और
0: जी
1: एक तरीके से उसमें मैंने उतना अच्छा नहीं किया, पर जितनी बराबर ले सकता था उतनी मैंने ली। फिर राइटर को बताया कि इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ लगेगा, इसकी
0: जी
1: इक्वेशन कैसे बनेगी। और इतना वो बढ़िया था, मतलब थोड़ा जो राइटर था वो भी, कि वो मेरी बात समझ पा रहा था कि फॉर्मूला लग गया, अब मैं उसको बता रहा हूँ इसको सॉल्व करो। तो वो हर चीज मेरे से ये नहीं पूछ रहा था कि इसमें प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, क्योंकि मैंने उसको फॉर्मूला बता दिया, उसको इक्वेशन बता दी, तो उससे वो सॉल्व कर ले जा रहा था। तो मेरे मैथ्स में एक मीडियम मार्क्स आए थे। तो
0: जी नहीं, निश्चित रूप से वो एक चुनौती है, वो एक
1: मैंने
0: चुनौती।
1: जो इसकी जो कमी पूर्ति थी वो मैंने इंग्लिश, हिंदी, साइंस जैसे, बायोलॉजी जैसे इन विषयों में पूरी की, तो वो परसेंट वहां पे अच्छी बनी थी।
0: तो आपकी कहानी से मालूम चलता है कि आपकी कहानी में आपको कोई जो शैक्षिक बदलाव किए गए हैं, करिकुलम में जो बदलाव किए जाते हैं नेत्रहीन व्यक्ति के लिए, या शैक्षिक उसका जो परिदृश्य है बिल्कुल अलग होता है, उसको सपोर्ट सिस्टम जिस तरह का मिलना चाहिए, जिस प्रकार की टेक्निकल बदलाव उसको मिलने चाहिए, वो आपको कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक मानवीय आपके एक शिक्षक का भावुक सहयोग और आपकी आगे जीवन जीने की जिज्ञासा जो है उसने आपको यहाँ तक पहुंचाया है मुझे लगता है। और करौली जैसे जिले में हम ये सब शैक्षिक बदलाव या कहें कि जो तो नई तकनीक आई है वो ना होते हुए भी आपने जो सफलता पाई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं कहूँ कि अब तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, विज्ञान फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई हमारे दिव्यांग बच्चे या हमारे दृष्टिबाधित बच्चे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, खासतौर पर गणित और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में तो उन्होंने झंडा काट दिया है नया। और लोगों के सामने जो जो समस्या आपने पैदा की ना अपने पीयर ग्रुप के सामने, वो कुछ वैसी वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटीज में कर रहे हैं। तो वो सारे बदलाव करने की आवश्यकता होती है, शायद आपको बदलाव मिले होते तो शायद आप गणित में से 100 में से 100 आप भी ला रहे होते हैं। लेकिन खैर वो जो भी आपके साथ हुआ के बारे में तो आप चर्चा ही की जा सकती है या कहें उस पर एक विचार ही किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में आप निश्चित रूप से सफल होंगे ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ। लेकिन चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, और विकसित भारत 2047 को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, तो आप कैसा विकसित भारत देखना चाहते हैं आपको मन की आंखों से?
1: जी सर, सर आप इस जो दो प्रश्न हैं इनका मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहला तो कि ये मेरे आगे क्या प्लान है। तो सर मैं अभी कर रहा हूँ आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ स्प्रिंग बोर्ड से। अब आपने कहा कि उस समय मुझे बदलाव नहीं मिले, किंतु जब मैं जैसे 12वीं क्लास में आया, फिर मैं थोड़ा थोड़ा फोन से फेमिलियर हुआ, तो वहां पे यूट्यूब वगैरह का हेल्प मुझे मिली थी 12th क्लास से। फिर ग्रेजुएशन में मिली। अब ग्रेजुएशन में भी समस्या ये आई कि मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम से, हमारे करौली में इंग्लिश मीडियम का कोई कोर्स वगैरह नहीं है, तो ये सारी चीजों से समस्या थी। अब हाल ही में क्या है कि जो यदि मैं वर्तमान की बात करूं, तो मैं ऑनलाइन स्प्रिंग बोर्ड से कोर्स ले रहा हूं और मेरी ग्रेजुएशन की वो चल रही है, मैं परीक्षा दे रहा हूं। अभी मेरा प्लान है कि मैं आरएएस जैसी सेवाओं में जाऊं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसी सेवाओं में जाऊं, उससे मैं कुछ एग्जाम्पल सेट करूं, मैं दिखाऊं कि मुझे क्या समस्याएं थी, उनका समाधान कैसे हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे किसी को बताऊंगा तो शायद मुझे कोई उतना सीरियसली लेगा नहीं, क्योंकि मेहनत से ज्यादा लोग परिणाम देखते हैं। मेहनत तो शायद कुछ ही लोग देख पाते हैं, छुपी हुआ है तो परिणाम देखते हैं। तो अभी मेरी ये है, और साथ ही में मेरा ये है कि ये तो एक जो जॉब लेनी है या जॉब लगना है, अपने आप को समाज सेवा के लिए तैयार करना है, उसके साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करूं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जाऊं, बड़ी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटीज से मिलूं, जिससे कि अपनी भी पर्सनैलिटी डेवलप हो और अपने और भी बौद्धिक विकास कर सकूं। दूसरा ये है कि 2047 में मैंने विकसित भारत में कई बार प्रोग्राम में मैंने सहयोग जो एक प्रतिभागी के रूप में सहयोग किया है। मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जो भारत किसी भी प्रकार की बंधनों से मुक्त हो, जो भारत रूढ़िवादी मानसिकता से मुक्त हो, जिसमें कि ये लड़की है इसकी ये मानसिकता है, ये बाहर जाएगी, ये तो दिव्यांग है, इसको ऐसा, ये काम उसके लिए थोड़ी बना है। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि साहब जितने आप ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रहे हैं उससे ज्यादा भारत पैरा ओलंपिक्स में ला रहा है मेडल। तो इस पे ये चीजें हमारे को सोचने वाली बात है कि हम ओलंपिक्स में जो नहीं कर पा रहे वो हमारे भाई पैरा ओलंपिक्स में कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है।
0: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हमारी
1: और मैं चाह रहा हूं कि हम
0: परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस उन सो कॉल्ड सकलांगों के मुकाबले 3 गुना है वो पैरालंपिक के अंदर।
1: आप
0: जी
1: देखिए सर पैरा ओलंपिक्स में मेडल देखिए, और हम जो नॉर्मल लेके आ रहे हैं ओलंपिक्स में उनके मेडल
0: जी
1: देखिए। तो
0: जी मुझे तो हंसी आ रही है
1: हाँ,
0: सकलांग लोगों पर आज।
1: तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा समा मतलब एक इंक्लूजन की फीलिंग आए, यहाँ पे एक्सक्लूजन ना हो, मैं सोसाइटी में इंक्लूजन की फीलिंग बनाए। सो एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड, नो बेस्ड, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर, नॉट इवन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, क्रीड, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज। आजकल ये लैंग्वेज का भी बड़ा चल रहा है। तो यदि इंडिया को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है तो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली तो काम करना पड़ेगा। हमको सोशली और एजुकेशनली भी बहुत कुछ अचीव करने की आवश्यकता है अभी, क्योंकि हमको यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बन रही है और हमको ऐसा सिस्टम लाएं कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट याद ना करें कि 1857 में क्या हुआ था। हम ये भी समझे कि 18 में हम पे लोगों ने राज क्यों किया था, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे और शायद हम आज भी उससे मुक्त नहीं हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस मानसिकता को छोड़ के आगे बढ़ें, सब लोग कंधे से कंधा मिलाएं, सबका साथ सबका विकास वाली मानसिकता पर काम करें। और अवश्य ही यदि हम वो कहते हैं कि शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में उड़ान होगा, दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा, और वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्वगुरु मेरा ये हिंदुस्तान होगा।
0: डेफिनेटली हमारा देश जो है विश्व गुरु फिर से हिंदुस्तान होगा। बहुत शानदार सचिन, लेकिन चलते चलते कुछ हल्की फुल्की बात भी आपसे करने का मन हो रहा है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे हास्यास्पद चीजें हमारे साथ हो जाती है, हमारी दृष्टि
1: जी
0: बाधित में चलते हुए। छोटा सा
1: जी
0: इंसिडेंस जो किसी के साथ हुआ, मतलब वो ऐसा था कि किसी ने उनको कहा कि भी मैं नीचे आ रहा हूँ आपकी बिल्डिंग पर
1: जी
0: और मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ऊपर आने में। तो उन
1: जी
0: सज्जन ने उनके लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड भेज दिए
1: जी
0: उनको लेके आने के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड आए और उन्होंने कुछ ना पूछा ना ताछा, सीधे दोनों कंधों से उठाया और उसको लिटरली हैंगिंग पोजीशन में ऊपर
1: यही
0: वापस
1: यही
0: गए।
1: चीज
0: तो बेसिकली क्या है कि भाई वो इंसान चल तो सकता है ना, या कई बार आप
1: जी
0: देखेंगे कि आपसे लोग पूछे, आपसे नहीं पूछेंगे कि आप खाओगे या ये चाय पियोगे क्या, आपके पड़ोस में जो खड़ा है आपके परिवार जन उससे पूछेंगे कि ये चाय
1: जी
0: पीते हैं क्या। अरे भाई साहब मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं
1: जी
0: लेकिन सुन सकता हूँ और आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ आज कि मैं चाय पीना पसंद करूंगा या नहीं। तो कोई ऐसी हास्यास्पद स्थिति आपके साथ पैदा हुई हो थोड़ा बताइए ना चलते
1: एक बार
0: चलते।
1: हुई थी सर, एक हमारे स्कूल में ही हुआ था ये कि एक हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के स्कूल में, उस समय मैं उस क्लास में नहीं था कि वो हमको क्लास नहीं लेते थे, मैं शायद थर्ड फोर्थ थर्ड की बात है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो एक ऐसे ही बाहर लोग बैठे थे, गर्मी लग रही थी तो वहां पे चेयर पड़ी थी, मैं भी चेयर पे बैठा हुआ था, किसी ने बैठा दिया। एक टीचर आते हैं, उनको मेरे बारे में पता नहीं था, पर उनको ऐसा पता था कि इसको देखता नहीं है। तो वो बोल रही थी किसी उन मतलब उनको कैसा है कि चेयर पे बैठा हुआ था, सामने एक बाउंड्री थी तो बच्चे बाउंड्री पे बैठ जाते थे। मैं वैसे ही चेयर पे बैठा था, मुझे इतना पता भी नहीं था, डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा मतलब भी पता नहीं था। तो उनको चेयर चाहिए थी, तो उनने कहा, एक लड़के को बुलाया दूर से कि इधर आना, फिर के इनको बोल के एक बार इनसे कहो कि ये चेयर पे से उठ जाए और ये थोड़ा बाउंड्री बैठ जाए तो मैं बैठ जाऊं। मैंने थोड़ी देर बाद कहा, मैंने कहा सर ये बात तो आप मुझे भी बोल सकते थे, उस लड़के को बुला के उससे बोलने क्या बात थी इसमें। तो वो कह रहे हैं नहीं हमको क्या पता नहीं था, थोड़ा डर लग रहा था। तो मैंने मुझे बड़ा हंसी आया, मैंने कहा क्या बात है आपको मेरे से डर लग रहा है। हाँ,
0: हाँ तो लोगों को बताना पड़ता है कि दिव्यांग इज नॉट डेविल्स, वी आर फ्रेंड्स।
1: तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ।
0: जी, हमें डेविल्स बताने की कोशिश लोग शुरू से ही करते हैं, तो हम उनको
1: जी
0: बताते हैं वी आर नॉट डेविल्स एंड वी आर नॉट ड्रेकुलास, वी आर योर
1: जी
0: फ्रेंड्स, लेस डायलॉग विद अस।
1: जी
0: आज हमारी अच्छी बातचीत हुई, एक अच्छा डायलॉग हमारे बीच में हुआ सचिन। और
1: जी
0: श्रोताओं
1: सर
0: आप जो हमसे लेट जुड़े वे जान लें, हमारे साथ थे सचिन सिंह जादौन जो करौली जिले से आते हैं। सचिन एक ग्रेजुएट हैं और दिव्यांग व्यक्ति हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, और आप हमें सुन रहे थे आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर। और जो लोग माउंट आबू की वादियों से जुड़े हुए हैं वे हमें सुन रहे थे हमारे FM बैंड 107.8 पर, और इसके साथ साथ आप हमें सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन। श्रोताओं, एक अच्छी बातचीत और एक शानदार प्रोग्राम मन की आंखों को से में हम फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही शानदार ताकतवर साहसी प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, नमस्कार।
2: नमस्ते, मैं हूं आरजे केवल। दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखें, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: आवश्यक सूचना। 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबू राज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
4: रन रन रन,
5: दौड़ो दौड़ो दौड़ो।
6: आओ दोस्तों, दौड़ लगाते हैं 9 अगस्त को
5: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन।
6: जी हाँ, इसका थीम है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। संडे अगस्त 9 को ये मैराथन शुरू होने वाला है
5: सुबह 5 बजे।
6: तो आप सभी का इस मैराथन में भरपूर स्वागत है और आप सभी इस मैराथन में भाग लेकर रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जरूर बढ़ाइए। जी हाँ, इस भाईचारे को दुनिया भर में जरूर फैलाइए। इस मैराथन में भाग लीजिए और खुशियाँ दुनिया भर में बांटिए।
5: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन।
7: अभी बजे हैं रात के 9। 1 मिनट का समय स्वयं को दे।

नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड्स से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: घर में सुबह शाम अच्छाई का आह्वान होता है, जहाँ पर नित भगवान को याद किया जाता है दिल से मन से, वहाँ पर कभी कोई बुराई आ नहीं सकती। इसी पॉजिटिव नोट के साथ दोबारा से हम सब मिलने वाले हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में, जिसे आप सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज दुनिया ढूंढ रही है, चाह रही है कि कैसे सुकून की जिंदगी मिले, कैसे शांति की जिंदगी मिले, कैसे सुख चैन से जिया जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए मन में हमें ज्ञान के घृत डालने हैं और भगवान की याद से अपने जीवन को, अपने घर को, समाज को, पूरे राष्ट्र को महकाना है। तभी हम किसी भी व्यसन से, किसी भी बुराई से मुक्त हो सकते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप हैं स्वर्ण लता के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में।
1: आवश्यक सूचना, 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबू राज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: सबके दिलों में यही तड़प है कि हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो। बुराई क्या है? असत्यता का हाथ पकड़ना, गलत मार्ग पर चलना। गलत मार्ग क्या है? गलत मार्ग वही है जो हमें भटकाए, जो हमें भारी करे, पथ भ्रष्ट करे, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाए, स्मूथ, आराम, सहज, सरल, कोमल जीवन की धारा में एक अवरोध है व्यसन। आइए हम सब व्यसन मुक्त जिंदगी जिए, और उसके लिए कदम हमें ही उठाना है। हम कदम उठाएंगे तो सारा जग हमारी कॉपी करेगा, है ना? कहते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग ब्रिंग्स फॉल इन लाइफ, अति सर्वत्र वर्जय। किसी द्रव्य पर आश्रित हो जाना, परवश हो जाना ही व्यसन है, चाहे वो कोई भी चीज हो। इवन कोई अच्छे से अच्छा व्यंजन भी जिसके प्रति आप आश्रित हो जाते हैं, वही किसी न किसी दिन अवरोध का कारण बन सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में, और इसीलिए इसी गीत में इसका सलूशन भी दिया गया है कि इस जमी पर ऐसा तेरा इंतजाम हो, तेरा नाम सबके लब पे सुबह शाम हो। यानी किसका नाम हो? परमात्मा का, भगवान का।
1: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

0: साथियों, यह बिल्कुल सही कहा गया है कि न सुन बुरा, न देख बुरा, न बोल बुरा। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। अगर कोई बुराई का शिकार है, कोई गलत कार्य कर रहा है, गलत मार्ग पर चल रहा है, हम उसका मार्गदर्शन करें, उसकी सहायता करें, उसको वापस अपनी उस जगह पर लाएं, उस स्थिति पर लाएं, जो उसके लिए सर्वाधिक सही है। हम उसकी चर्चा कर उसकी ग्लानी न करें, है ना? ऐसा करने पर वह बुराई हमारे में ही समा जाता है। तो हम इस पर पूरा अमल करेंगे हम सब मिलकर कि अब से हम इस भारत को ही नहीं पूरे विश्व को व्यसन मुक्त बनाने के लिए, बुराई रहित बनाने के लिए हम सब प्रतिज्ञा ले रहे हैं और इसके लिए हम सब जोर शोर से कदम बढ़ा रहे हैं। स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपने लक्ष्य पर अडिग रहें।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपके जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

व्यसन एक बुराई है, व्यसन एक अंधकार है। जीत की सुबह तक पहुंचने के लिए इस व्यसन रूपी रात्रि को हटाना है, दूर करना है। इसके लिए सामूहिक रूप से जब कदम उठाया जाता है तो सभी उसमें शामिल होते हैं जोर शोर से, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। स्वस्थ सुखद संसार में ही सर्वस्व सुख शांति समाहित होती है। तो इसके लिए एक और कदम भी उठाना है जो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन है? कॉस्मिक एनर्जी, खुदा, भगवान, ईश्वर। उसके साथ हम जब अपने दिल का तार एकदम मैच कर देते हैं, मिला देते हैं, तब उससे वो पॉजिटिविटी संचार होती है। और पॉजिटिव कदम उठाने के लिए उस पॉजिटिविटी के साथ भी दिल का तार हमें क्या करना है? मिलाकर चलना है। तो बने रहिएगा इस कार्यक्रम में और भी बातों को जानने के लिए और व्यसन मुक्त होने के लिए। हम आज सामूहिक तौर पर इस कार्यक्रम में भी प्रतिज्ञा लेंगे।

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे, शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का? हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

0: खेलती जिंदगी में यह व्यसन एक अवरोध है। यह हमारी जीने की जो गति है उसे रोक देता है, उन्नति को अवनति की ओर लेकर जाता है। तो ऐसे में इस बुराई को हमेशा के लिए हम अपने जीवन से निकाल दें और दूसरों को भी हम कहें कि आइए हम सब मिलकर इस बुराई को रोक दें, हमेशा के लिए खत्म कर दें। दोस्तों, यह बुराई कई बुराइयों का आह्वान करता है। अगर किसी को इसकी लत लग जाती है तो वह कई और पाप कर्म करने लगता है। तो एक बुराई कई बुराइयों को न्योता देता है। तो आइए ना हम सब मिलकर इसको हम अपने जीवन की डिक्शनरी से बिल्कुल हटा दें, है ना। ऐसा करने पर हम अपने राष्ट्र को, इस विश्व को एक सुखद मंजिल की ओर लेकर जाने में मदद कर सकते हैं, हम मददगार बन सकते हैं।
1: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8

0: जाग रे मनवा जाग, समय बड़ा बलवान है, इसलिए प्रभु का नाम लिए जा, प्रभु का नाम लिए जा। देखा, कोई भी व्यसन को दूर करने के लिए, कोई भी बुराई को दूर करने के लिए, उस एवर पॉजिटिव सोर्स के साथ हमें अपने दिल के तार को तो जोड़ना ही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। सामूहिक कदम तो उठाएंगे, एक दूसरे को मदद भी देंगे, पर जब तक हम उस सुप्रीम के साथ दिल का तार न जोड़ लें, तब तक यह एवर पॉजिटिविटी की जो किरणें हैं, वह कैसे फैलेंगी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, जहां हम आत्म ज्योति जगा रहे हैं, ताकि हमारा यह जीवन सुखद हो, समृद्ध हो, और हम अपने इस जीवन में हमेशा के लिए उजियारा लेकर आए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: भगवान के घर आ। जब भगवान हमारे साथ है तो डर काहे का। फ्रेंड्स, आजकल व्यसन को लोग एक स्टेटस सिंबल मानने लगे हैं, इसको एक फैशन का जरिया मानने लगे हैं। उनको लगता है कि अगर हम अपने संघ से बाहर आ जाएंगे तो हमें कोई भी मानेगा नहीं, इसलिए वो उस अशुद्ध संगठन में ही पड़े रहते हैं। पर उनको हम कहें नहीं, आप हमारे संगठन में आओ, यह सुरक्षित है, यह भरोसेमंद है। तो आइए आज हम सब एक बीड़ा उठाएं, संकल्प लें कि ऐसे लोगों का हम मार्गदर्शन करेंगे जो घबराए हुए हैं, जो बुराई को छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम उसको छोड़ेंगे तो हमें कोई अपनाएगा नहीं। उनको अपनाने के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। और भगवान का जो ये संगठन है, हमारा जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ब्रह्मा कुमारी का, तो वह आप सबको कह रहा है, आइए हम सब मिलकर इस व्यसन को दूर करें।
1: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूँ, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माखने खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अशांति के पिंजड़े से तन मन को आजाद करो। जब हम इन व्यसनों के शिकार हो जाते हैं, इनसे ग्रसित हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपनी आजादी को ही खुद खो बैठते हैं, इनके कैदी हो जाते हैं। कैदी होना माना पराधीन हो जाना, कहीं न कहीं हमारी शक्तियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो इसलिए तो अभी पूरे भारत में, विश्व में एक ही नारा है, व्यसन मुक्त हो भारत। वैसे नशा मुक्त भारत भी इसे कहा जा रहा है। पर साथियों, ये हमारा व्यक्तिगत एक पर्सनल फीलिंग है कि नशे शब्द में ही एक नशा है, तो इस नशे शब्द को ही हम अपने डिक्शनरी से दूर कर दें। और व्यसन शब्द बहुत सुखद है, इसमें एक सुंदरता है, तो इस सुंदर शब्द को लेकर अपने जीवन की डिक्शनरी को सुसज्जित करें और हमेशा के लिए उस शब्द को दूर रखें अपने जीवन से। तो बने रहिए स्वर्णलता के साथ, अगला गीत सुनेंगे। और अब जाने से पहले आपके लिए हम वही प्रतिज्ञा दोहराना चाहते हैं और हम सब मिलकर इस प्रतिज्ञा को लेंगे। ईमानदारी से यह प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि मैं स्वयं को सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रखूंगा। मैं स्वस्थ, मूल्यनिष्ठ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का निरंतर प्रयास करूंगा। मैं अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को व्यसन मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने समय, ऊर्जा, क्षमताओं एवं संसाधनों का सर्वोत्तम सदुपयोग करूंगा। मैं व्यसन मुक्त, स्वस्थ एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना सकारात्मक योगदान हमेशा दूंगा, सदा दूंगा। इन्हीं शुभ बोलों के साथ, शुभ प्रतिज्ञा के साथ और जीत के साथ हम आज विदा ले रहे हैं। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी इसी म्यूजिकल मंच पर, जिसको हम कहते हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: run, run, run.
1: दौड़ो दौड़ो दौड़ो.
2: आओ दोस्तों दौड़ लगाते हैं 9 अगस्त को
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन.
2: जी हाँ, इसका थीम है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड. संडे अगस्त 9 को ये मैराथन शुरू होने वाला है
1: सुबह 5 बजे.
2: तो आप सभी का इस मैराथन में भरपूर स्वागत है और आप सभी इस मैराथन में भाग लेकर रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जरूर बढ़ाइए. जी हाँ, इस भाईचारे को दुनिया भर में जरूर फैलाइए. इस मैराथन में भाग लीजिए और खुशियाँ दुनिया भर में बांटिए.
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. मैं हूँ आरजे शुभा. स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नई दुनिया नया जमाना, जहाँ हम बात करते हैं एक ऐसे भविष्य की जो हो स्वच्छ, हरित और सतत. धरती केवल हमारे रहने की जगह नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर भी है. तो पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या फिर संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है. तो जब एक व्यक्ति जागता है तो समाज बदलता है और जब समाज जागता है तो एक नई दुनिया का निर्माण होता है. तो आज हमारे साथ एक ऐसे पर्यावरण योद्धा है जिन्होंने वर्षों से स्वच्छता, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, जिनके कार्यों को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है. तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं श्री खमू राम विश्नोई जी का. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नई दुनिया इस कार्यक्रम में.
4: धन्यवाद.
3: तो खमू राम जी, सबसे पहले तो आपके अनुभवों और संघर्षों के बारे में हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपके बारे में थोड़ा अधिक हमारे श्रोताओं को बताइए.
4: मेरा नाम खमू राम विश्नोई है. मैं ओशिया तहसील के गांव एकलगोरी का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार के पद से सेवानिवृत्त 28 फरवरी 2026 को हुआ हूं. और पिछले लगभग 2.5 दशक से मैं सिंगल यूज प्लास्टिक और के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रहा हूं. बड़े बड़े मेले होते हैं, वहां हमारी टीम कचरा बीनती रहती है ताकि लोगों की मानसिकता में जो कचरा भरा हुआ है, जो लोगों की सोच में कचरा भरा हुआ है वो निकले. हमारी मकसद ये नहीं है कि हम जमीन से कचरा बीने, हमारा मकसद ये है कि जमीन पर कचरा आए उससे पहले ही मानसिकता ही बदल जाए कि मेरा धर्म नहीं बनता कि मैं जमीन पे कचरा फेंकूं. तो इस प्रकार लगभग 2.5 दशक हो गए हैं. और दूसरा हमारा काम है शादी ब्याह, वहाँ भी हम फ्री सेवा देते हैं. उसके पीछे हम 3-4 शर्तें होती है. वो पहली शर्त होती है पूरा कार्यक्रम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रहना चाहिए, डिस्पोजल मुक्त रहना चाहिए. और दूसरा हमारी होती है झूठन मुक्त रहना चाहिए. तीसरा हमारा होता है नशा मुक्त रहना चाहिए. और चौथा होता है हमारा फटाका मुक्त समारोह हो. तो हम ऐसे सेवाएं देते हैं जैसे मेरी बहन की शादी हो, मेरी भतीजी की हो, भांजी की हो. सारे दिन हम तांबे के लोटे ले जाके मेहमानों को जलपान कराते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक को दरकिनार करते हैं, नशे को दरकिनार करते हैं, फटाकों को दरकिनार करते हैं और झूठा भी नहीं छोड़ने के लिए मना करते हैं. क्योंकि धरती का, अगर मेरी भाषा में बोलूं तो धरती का सबसे बड़ा भगवान है वो भोजन है. भोजन से बड़ा भगवान मंदिरों में भी नहीं मिलता. मंदिर के भगवान को भी हमारे भोजन का, प्रसाद का ही भोग लगता है.
3: जी जी सर, बिल्कुल. तो सर, बहुत सारे कार्य आप कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में बीता, प्रकृति से जुड़ाव कैसे शुरू हुआ?
4: अब आपने बिल्कुल सुन रखा होगा कि विष्णुई समाज शुरू से ही, गुरु दम्बेश्वर भगवान 550 वर्ष पहले ही हमें विष्णुई समाज सभी कम्युनिटी में से चुन चुन के हमको अलग बैठा के और 29 नियमों की एक आचार संहिता दी, एक सिस्टम दिया कि प्रकृति के साथ समन्वय बैठा के तुम्हें जीना है. तो गुरु दम्बेश्वर भगवान ने 1485 ईस्वी में सभी कम्युनिटी, सभी समाज के लोगों में से विष्णुई समाज के लोगों को एक नियम देके, 29 नियम देके और एक नया पंथ चलाया या एक नया सिस्टम बनाया, एक नई जीवन जीने की एक नई कला दी जो प्रकृति के साथ में समन्वय बैठा के जी सके.
3: जी सर. सर, सहायक रजिस्टर पद से आपने रिटायरमेंट लिया है और मतलब पढ़ लिख करके आप अच्छा नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को आपने जीवन का मिशन क्यों बनाया? आप चाहते तो अकेला भी, जितना आपको प्रकृति से प्रेम है तो आप अपने प्रेम के साथ जीते, लेकिन इसको मिशन क्यों बनाया आपने?
4: ऐसी बात है कि पहली बात तो गुरु जम्बेश्वर भगवान जो 15वीं शताब्दी के सबसे पहले पर्यावरण वैज्ञानिक थे वो उनके अनुयायी हुआ। दूसरे मेरे माता पिता के जो रगों में भी पर्यावरण और संस्कृति बचाओ का खून था, प्रकृति प्रेमी का खून था, और दूसरा विष्णु कम्युनिटी का रंग भी तो मेरे साथ मेरे ऊपर शरीर में मेरे लगा हुआ था, चढ़ा हुआ था, मेरे खून में घुला हुआ था। तो जब ये इतनी सारी आबो हवा के बीच में मुझे जीने का मौका मिला तो स्वाभाविक है कि मैं प्रकृति की सेवा करूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जीवन ये बहुत ही कम समय के लिए मुझे भगवान ने दिया है और पर्टिकुलर एक टाइम बींग के लिए है, उसके बाद में भगवान मुझसे वापस छीन लेंगे और सांसें भी गिनी हुई है। अब मुझे रियलाइज नहीं है तो बात अलग है, लेकिन मुझे अगर रियलाइज है कि मेरे पास लिमिटेड सांसें हैं तो मैं बेहतरीन काम करने का प्रयास करता हूं। और हर आदमी को जब ये मालूम चल जाता है कि मैं जीवन पृथ्वी धरती पे कोई विशेष प्रयोजन से आया हूं तो वो कभी भी प्रकृति के खिलाफ काम नहीं करेगा, वो हमेशा प्रकृति की सेवा करने का ही प्रयास करेगा। मैंने ही वैसा ही किया।
3: जी सर, बिल्कुल। जैसे कि ये संस्कार आपको आपकी संस्कृति से, आपके समाज से, आपके माता पिता से आपको मिली है और इसको ही आप आगे लेकर के जा रहे हैं और एक आपने समाज में क्रांति लाए हैं आपने। तो जब आपने शुरुआत की 2005 में, वर्ष 2005 में, हम सभी, आई थिंक मेरे जनरेशन के जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त सभी स्कूल में होंगे, तो आपने अकेले स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो उस समय ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली 2005?
4: बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया और मैं इसकी रिप्लाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से देना चाहूंगा। मैंने एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें भारतीय संस्कृति की बहुत ही तारीफ की गई, जैसा कि हमारी 5000 पुरानी हमारी संस्कृति है और हमारे जो पर्यटन स्थल है, हमारे जो धार्मिक तो और प्रकृति से प्रतिष्ठित हम पीपल को पूजते हैं, हम गौ माता को माँ बोलते हैं और हम सभी अलग अलग देवताओं के अलग अलग जीव जंतु भी उनके सवारियों में, जीवों को भी उनकी सवारियां बनाई है। तो हम देवता को और जीवों को हमने समन्वय में बैठा के और उनको पोषण देने का प्रयास किया ताकि सभी जीव धरती पर रह सके और उनका सब अपने अधिकार पूर्वक रह सके, यही भारतीय संस्कृति थी। तो एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ अच्छा बताया है, सब कुछ गुणगान किया गया, लेकिन अंत में हमारे तीर्थ स्थान है, हमारे जो पूजा स्थली है, वहाँ अंदर तो आरतियाँ गा रही है, ओम जय जगदीश हरे या और भी देवी देवताओं की जो आरतियाँ हो रही है, और बाहर की तरफ कचरों का ढेर लगा हुआ बताया। तीर्थ स्थानों पर भी मेले में लोग इतने भीड़ कर देते हैं लेकिन भीड़ के बीच में पैरों में इतना कचरा पड़ा रहता है कि वो तीर्थ न होके कोई कचरा घर हो जाता है। तो मेरे को दर्द हुआ और मैंने तीर्थ स्थान को जाके देखा तो जैसी डॉक्यूमेंट्री में फोकस किया गया वैसा वैसा मैंने वहाँ तीर्थ स्थान पे देखा। तो फिर मेरे अंदर क्वेश्चन आया, पहले मैं हाईकोर्ट की सीक्रेसी में था, मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, मैंने छुट्टी मिली और मैं 2005 में कोई बड़े हमारे विष्णु समाज के बड़े तीर्थ स्थान पे गया तो मैंने विष्णु समाज के लोगों को बलिदान को याद कर 363 लोग 1730 में पेड़ों हरी पेड़ों के लिए अमृता देवी के तत्व में शहीद हो गए थे और वन्य जीवों के लिए भी शहीद हो गए थे। सलमान खान वाला भी उदाहरण हमारे सामने ही था कि काले हिरण का शिकार करने आए और फंस गए, अभी भी फंसे हुए हैं, कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है, फिर सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में इग्नोर क्यों कर रही है? तो समाज के लोगों ने मुझे थोड़ा कहा कि तेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हर चीज हमेशा अकेला करता ना वो आगे जरूर बढ़ता है।
3: जी, तो लोग जब आपका मजाक उड़ाते थे तो आपने हिम्मत कैसे बनाए रखी?
4: ऐसी बात है, शुरुआत में जब मैं गया तो वहाँ लोग कचरा फेंक रहे थे तो मैंने उनको समझाने का कोशिश किया तो कौन मानता है, एक आदमी की कोई नहीं सुनता है, बड़े बड़े आदमियों की नहीं सुनता, तो मैं एक साधारण आदमी था, मेरी कौन सुने? तो मैंने कहा अभी सुनने वाला तो है नहीं। तो मैंने वो जो मेलों में हमारे विष्णु समाज के लगभग अपनी आमदनी का 10% चुगा पक्षियों के लिए, गायों के लिए लाते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े चुगा घर बनते हैं, वहाँ वो चुगा घर के लिए बोरी कट्टा भर के लाते हैं बाजरा का या गेहूं का, जो भी धान उनके फसल होती है वो ला के वहाँ डालते हैं, तो वो उसका खाली कट्टा पड़ा था। मैंने देखा अभी इस कट्टे का उपयोग तो मुझे ही करना चाहिए, मैंने वो कट्टा उठाया और वहाँ जितना भी बिखरा हुआ कचरा था वो उठाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा विष्णु समाज के लोग थोड़े मानते कम है, कुछ अलग टाइप के हैं, मानेंगे नहीं, वो नहीं। मैं कचरा बींद रहा हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को धक्का नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रहा हूं। आई एम वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ माय मदर प्लैनेट, मैं धरती मां की स्वच्छता के लिए काम कर रहा हूं और इसमें भी मुझसे कोई धक्का मुक्की होगी तो मैं मेरे सहन करूंगा।
3: जी सर, सलाम है आपके कार्य को, और आज भी वो कारवा जारी है। और
4: बिल्कुल ये शुरुआत में ऐसा हुआ
3: जी,
4: फिर लोगों ने मेरे हंसी मजाक भी कौन चुके और फबतियां कसने में कौन चुके, किसने कहा पागल हो गया, किसी ने कहा इसकी नौकरी चली गई, किसी ने ये कहा गया अब ये फटीचर हो गया, जो उनके मन में आता था वो कह रहे थे। लेकिन मेरा टारगेट था, मैंने मेरा लक्ष्य निर्धारित किया, जैसे मैं जयपुर जा रहा हूँ और रोड से जा रहा हूँ तो कहीं गोलाई भी आती है, कहीं पुल भी आता है, कहीं बाईपास भी आते हैं, कोई कुछ भी आता है, लेकिन मेरा टारगेट जयपुर जाने का होता है तो मैं हर हाल में उसी रोड को चुनता हूँ जहाँ जो जयपुर जाती है, भले बीच में रास्ते में कोई एक्सीडेंट भी हो गया तो भी मैं उससे बच के आगे यहन कैन में पहुँचता हूँ। वैसे मेरा टारगेट था, मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं इस फील्ड में धरती माँ की सेवा करने में मेरे जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैंने वैसे किया। हालांकि मेरे पास खूब सारे ऐसे भी अवसर आए, परिवार के लोगों ने भी मुझे शुरू शुरू में कहा कि हमारे समाज मेरे परिवार का, हमारे खानदान का नाक कटा रहा है, गंदगी उठा रहा है। परिवार के श्रीमती जी भी थे वो शुरू शुरू में, उन्होंने उनकी सहेलियों ने और उनके लोगों ने, उनके परिवार जो उनकी बहनें हैं, उनके जो पीर की परिवार के लोग, उनको भी थोड़ा ऐसे महसूस हुआ तो उसने भी अपने आप में नाक में सर डाली और मेरे को भी कभी व्यंग्यात्मक रूप से कभी कभी बोल देती थी, लेकिन वो भी मैंने सहन किया क्योंकि मेरा लक्ष्य था, मुझे आगे बढ़ना था। लोग तो कहेंगे और लोगों का काम है कहना, लेकिन मेरा जीवन का लक्ष्य था तो मैंने भगवान की कृपा और प्रभु की कृपा से मैं मेरे उस रास्ते पे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मुझे समय मिलता मैं हाई कोर्ट से सर्विस से छुट्टी लेके परमिशन लेके मैं उस लक्ष्य पे काम करने लग गया।
3: जी सर, कभी ऐसा लगा नहीं कि अभियान छोड़ देना चाहिए?
4: नहीं, कई बार ऐसा लगा कि कभी कभी मैं अकेला जाता था, बिल्कुल अकेला, तो मेरा चेहरा भी उतरा हुआ था कि मैं अकेला जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ स्लोगन लिखी हुई तख्तियां होती थी, कुछ बैनर होते थे, कुछ पर्दे होते थे, कुछ अन्य सामग्रियां भी होती थी, मेरे खुद के कपड़े भी होते थे, तीन चार बैग हो जाते थे, चार बैगों को उठा के किसी साथ वाले राई को मैं निवेदन करता था कि थोड़ा मेरे हेल्प कर दो, तो उस समय लगता था कि तुम करने क्या जा रहा है, अकेला क्या कर लेगा, लेकिन फिर प्रभु कहते थे कि अरे भाई जो अकेला करता है ना उसको किसी का इंतजार करना नहीं पड़ता, तो जब अकेला चलता है ना उसको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो लेट नहीं होता है, वो हमेशा सही टाइम पे पहुंचता है। तो मैं अकेला था तो मुझे बड़ा ही खुशी हो रहा था कि मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ रहा, मैं स्वयं ही डिसीजन ले रहा हूँ और स्वयं ही फाइनल डिसीजन और स्वयं ही मन बंद कर रहा हूँ और स्वयं ही खोल रहा हूँ। मेरा काम शुरू भी मैं श्री गणेश भी मैं कर रहा था और वाइंड अप भी मैं कर रहा था, तो मुझे कोई दर्द नहीं था। और धीरे धीरे लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आने लगा, लोग कुछ लोग हेल्प के लिए, कुछ हेल्प नहीं होती थी तारीफ करने लगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे दो जुड़े चार जुड़े, और शुरू में जो आज मेरे साथ में थे शुरू में थे वो अब एक भी नहीं था, लेकिन मेरा कारोबार चल रहा है, नए लोग आते रहते हैं, पुराने छोड़ते रहते हैं, रोटेशन बन गए ये। तो अभी भी हमारी कब शादी ब्याह में जाते हैं तो 10-20-30 हो जाते हैं, मेलों में हम 50-100 हो जाते हैं और काम बेहद बेहतरीन तरीके से चल रहा है।
3: जी सर, तो सर धार्मिक मेलों में और जो पर्यटन स्थल है वहां पर प्लास्टिक रोकने के लिए विशेष प्रयास आप क्या कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो कैसे कर सकते?
4: बिल्कुल सही है, हर चीज शुरू से करना चाहिए। हम मैं एक मोस्टली मैं जहां भी जाता हूँ एग्जांपल देता हूँ, वॉशरूम और किचन का। अपने परिवार में बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं 70-80 साल के और उनकी मानसिकता थोड़ी सी या सोचने की शक्ति या यादगार शक्ति कम हो जाती है तो वो भूल जाते हैं, और छोटा बच्चा होता है 1.5-2-3 साल का तो वो भी नहीं समझता है वॉशरूम क्या होता है किचन क्या होता है, लेकिन उनकी इतनी मानसिकता विकसित हो जाती है कि किचन से भोजन लेके वॉशरूम में जाके कभी नहीं बैठता, चाहे बच्चा भी नहीं बैठता बूढ़े आदमी भी नहीं बैठते। और वॉशरूम का डब्बा या बाल्टी जो होती है जो विशेष रूप से हम वहाँ काम लेते हैं वो दूसरी जगह काम नहीं लेते, वो कभी लाके किचन में या दूसरी जगह नहीं रखते, या पानी के जो अपन जिसको परिंडा बोलते हैं वाला के कोई डब्बा या बाल्टी नहीं रखते, इतनी मानसिकता उनकी और बन जाती है। तो हम तो जागरूक है, इतनी मानसिकता तो हमारी होनी चाहिए कि जो चीज हम नहीं चाहते वो दूसरों को देंगे तो वापस हमें अच्छी कैसे मिलेगी। जैसे मैं आपको अभद्र भाषा में बोलूंगा तो आप क्यों मेरे को सभ्य भाषा का प्रयोग करेगी, कैसे करेगी, कैसे कर पाएगी, कर नहीं पाएगी, कौन से अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसे ही हम करते हैं, हम लोगों को बेहतरीन व्यवहार देते हैं तो लोग हमें शाबाशी देते हैं, ऐसे करते करते के लोगों को हम समझाते हैं कि तीर्थ स्थान ध्यान साधना तपस्या और पूजा की और आत्म बल को मजबूत करने की जगह है, ये कोई कचरा फेंकने की और मौज मस्ती करने की या पिकनिक स्पॉट नहीं है। तीर्थ स्थान तो संकल्प को मजबूत करने की, हे भगवान मैं आपके आया हूँ और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं मेरे मानवत्व को पहचानूं और अच्छा मानव जीवन जी के किस प्रकार मैं मेरी ये यात्रा पूरी करूँ। ये तीर्थ स्थान उसके लिए है, न कि कोई नगर पालिका मेला होता है जहाँ झूले लगते हैं, लोग आइसक्रीम खाते हैं, जो चीज जो मजा हो वैसी चीजें खाते हैं उसके लिए नहीं है, लेकिन लोग आजकल उसको तीर्थ स्थानों को भी सिर्फ एक वो कहानी में बेल घूमता ना, वैसे हर जो महीने एक फेरी दूंगा। अरे फेरी शरीर की नहीं लगानी है, फेरी विचार की लगानी है कि मैंने पिछले गुरु जो भी तीर्थ स्थान था वहां जाके आया, उसके बाद में मेरे भावना में, मेरे क्रियाक्रम में, मेरी सोच में क्या कुछ फर्क आया। अगर फर्क आया है तो मेरी यात्रा या मेरी जो वहां धोख देना या वहां साधना करना, वहां जाना सफल है, नहीं तो फालतू ही गोता है और भगवान को धोखा देना। भगवान तो क्यों धोखा खाएंगे, धोखा तो खुद को ही मिलता है, क्योंकि वो एक बिना मन के बिना कोई संकल्प के वहां जाके आता है तो तेल जलता है और खुद की एनर्जी वेस्ट होती है, मिलना कुछ नहीं है। भगवान तो आत्म अनुभूति है, अपने आप के अंदर विराजमान है, पहचानने की जरूरत है। क्योंकि जो चीज हमारे अंदर है, पर एक मैं एक छोटी सी बात करके आपको बताऊंगा कि जब भगवान एक बार क्या हुआ, सभी लोगों ने अपनी इच्छाएं जताई और भगवान से पूछा कि हे भगवान हमें दो वो दो वो दो वो दो, अपनी अपनी, मेरे परिवार में मेरी वाइफ नहीं मानती है, बेटा नहीं मानता है, सासू नहीं मानती रहो, तो भगवान परेशान हो गए कि जाऊं कहां, तो भगवान कहीं छिप गए, तो दूर पहाड़ में छिप गए। लेकिन मनुष्य एक जीव है, वहां भी जाके ढूंढ लिया, यहाँ आके छिप गए और हम तो दुखी है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं, तो हम मनुष्य के हृदय में आके बैठ गए। अब जिसको भी अगर भगवान को पहचानना है तो अपने हृदय के खुद को जानो, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ। तो खुद के अंदर जब हम सोच अपने आप को अंदर झांकेंगे, अपना अंदर आत्मा को देखेंगे, तभी हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। बाहर कहीं किसी भवन, किसी बिल्डिंग या किसी मंदिर में भगवान नहीं विराजमान है, भगवान अपने अंदर ही। मनुष्य के अंदर दो लोग रहते हैं, एक राक्षस एक एक भगवान। राक्षस इट मीन्स पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनर्जी, और भगवान इट मीन्स पॉजिटिव एनर्जी, देवत्व है, देवत्व और राक्षसत्व, ये दो चीज मनुष्य के अंदर रहती है। अगर मैं लगातार लगातार लगातार मैं अच्छे आदमियों के साथ रहूंगा, अच्छी संगति के साथ करूंगा, तो मेरे अंदर देवत्व का परसेंटेज बढ़ जाएगा और राक्षसी परसेंटेज कम हो जाएगा। और मैं अच्छे विचारों को इग्नोर करता जाऊंगा तो मेरे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आएगी, हर एक से झगड़ा कर लूंगा, पुलिस केस हो जाएंगे, जेल में भी जाऊंगा, वापस पेरोल पे आके भी मैं उल्टा काम करूंगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति बन जाती है। तो दो प्रवृत्तियों से ही मनुष्य का निर्माण होता है, और दूसरे एक प्रवृत्ति से निर्माण होता है, दूसरी प्रवृत्ति से मनुष्य का क्या विनाश होता है। ये मेरे विचार है, व्यक्तिगत विचार है।
3: बिल्कुल, तो अगर हम पॉजिटिव विचारों के साथ रहेंगे तो हम पर्यावरण के लिए भी सही काम कर सकते हैं।
4: बिल्कुल सही है। अगर हम प्रकृति का पेड़ है, पेड़ को काटेंगे फिर हमें छाया चाहिए, तो पेड़ को, जिस पेड़ को हमने काटा है वहाँ छाया कैसी रहेगी, वो तो जगह खाली हो जाएगी। अगर छाया है चाहिए तो पेड़ लगाएं। अब आजकल क्या करते हैं, अपन पाश्चात्य संस्कृति का फॉलो करते हैं, और बड़ी बड़ी शादियों में देखा होगा गरीब तो हाथ में कांदा रोटी लेके खा लेते हैं, बड़ी शादियों में चाउमीन के लिए अलग प्याला प्लास्टिक का, आइसक्रीम के भी अलग अलग फ्लेवर, वो और उसके अलग प्याले, कितने ही प्रकार के वो गोलगप्पे के लिए अलग प्याला। एक आदमी शादी ब्याह में, बड़ी शादी ब्याह में, रईस की शादी में 100 बर्तन काम में लेता है एक टाइम के भोजन के लिए। हम जा किधर रहे हैं, जा किधर रहे हैं, ये विचार भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो रईस होते हैं, वो देखा हमारा तो जन्म धरती को गंदा करने के लिए होता है, सफाई करने वाले तो कोई दूसरे हैं, हमारे लिए, हम कोई सफाई करने के लिए पैदा नहीं हुए। और चाहते हैं, हर आदमी चाहता है हमें अच्छा व्यवहार मिले, लेकिन हम देवे नहीं देवे, ये हमारी बात, तो ये कैसे हो सकता है, संभव हो सकता है? छोटा बच्चे को भी अगर हम थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलेंगे तो वो रूठ जाएगा या वापस ऐसा जवाब देगा तो हमारी बोलती बंद हो जाएगी।
3: जी जी, तो सर आपने हजारों मेलों में और धार्मिक आयोजनों में सफाई अभियान चलाया है, कोई यादगार अनुभव साझा करें हमारे साथ।
4: बिल्कुल, मैं मेरे खुद के ही जो विष्णु समाज के मेले, वहाँ हम कचरा बीन रहा था, तो पेरिस से एक मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र आया फ्रैंक, वो जेल, तो उसने वो विष्णु समाज के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखना चाह रहा था, तो वो 2-3 मेलों में मुझे फॉलो किया और मेरे को कचरा बीनते हुए देखा, तो उन्होंने व्हाट आर यू डूइंग, मैं आई एम पिकअपिंग गार्बेज हियर टू मेक माई मदर प्लानेट नीट एंड क्लीन एंड आई वॉन्ट टू अवेयर द पीपल इन दिस रिगार्ड। तो उसने कहा आप इंग्लिश भी जानते हो, मैं थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी ऐसे, मैंने कहा मैं इतनी जानता हूँ, तो कहा ठीक है इतनी, इट्स एनफ। उसने कहा इतनी बहुत है मेरे लिए, मैंने जो मुझे आदमी चाहिए था उसको मैंने सर्च कर लिया। फिर एक मेले में वो मिला, मुझे दूसरे मेले मिला, तीसरे मेले मिला, हर मेले में मैं वही काम करता हुआ उसको पाया गया, उसने फोटोग्राफ खींचे। फिर पेरिस फ्रांस का था, वो पेरिस में जाके आर्टिकल छापा। 2008 में उसने वहाँ एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही थी, तो उसमें मुझे इनवाइट कर लिया, तो मैंने मना कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल टू कम देयर, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करने में मैं असहज महसूस कर रहा था, मैंने मना कर दिया। तो उसने कहा खमू इट्स नॉट इजी टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर, सो यू डोंट से मी नो, after half an hour, one person called you or getting your consent. So don't say him, I don't want to come there. You should say him, I have no problem to come there. I wanna come there to participate in global conference organized by of you. तो ठीक है, उसने बात की और मैंने उसको कहा भाई ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूँ. आधे घंटे बाद मुझसे फोन किया, आर यू मिस्टर खमुराम बिश्नोई? मैंने कहा यस आई एम खमुराम बिश्नोई. वुड यू लाइक टू कम पेरिस टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एज ए कीनोट स्पीकर? मैंने उसने मना किया हुआ था कि मना मत करना. मैंने कहा यस आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल कम देयर, कम व्हाट मे. फिर उसने बुलाया, मैं 2008 में गया, 11 में गया, 12 में गया, 13 में गया, 14 में गया, 15 में मेरी फ्लाइट मिस हो गई, टाइम मिस रीड कर लिया. और 18-20 में भी मेरे को इनवाइट किया था उन्होंने, लेकिन वहाँ कोरोना काल आ गया तो उसमें वो मिस हो गई. अब 2028-27 का भी वो कह रहे हैं कि वी वांट टू इनवाइट यू. देखो प्रभु क्या, मैं वहाँ जाने के लिए मेरा टारगेट नहीं है. मेरा का टारगेट तो है मेरी धरती माँ को स्वच्छ रखूँ, लेकिन अगर वो बुला लेते हैं तो मैं उनके यहाँ भी मना नहीं कर पाता.
3: जी सर, तो कैसा अनुभव रहा? आप फ्रांस स्विट्जरलैंड में भी भारत का प्रतिनिधित्व आपने किया और आपकी कई डॉक्यूमेंट्रीज भी विदेश में प्रसारित.
4: 52 मिनट की 2011-11 में 52 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उन्होंने, फ्रेंच चैनल पे वो रिलीज हुई थी. और 2011 में ही पेरिस के मेट्रो रेलवे स्टेशन पे 100 फीट बाई 150 फीट की फोटो एग्जीबिशन भी मेरी रही. मैं उस समय 2011 में वहाँ गया था तो उस एग्जीबिशन लगी हुई थी, उसके साथ में मेरे फोटोग्राफ्स भी उसने लिए. देखो कमू, यू आर वेरी बिग पर्सन हियर, यू कैन सी दिस फोटोग्राफ्स. मैंने देखा तो वास्तव में बहुत लंबी चौड़ी, जैसे बड़े बड़े होल्डिंग पे विज्ञापन होते हैं ना, वैसे वैसे मेरी फोटो लगी हुई थी. तो मैं अपने आप को भगवान को बार बार धन्यवाद दे रहा था, ये भगवान में एक छोटे से कचरा बीनने वाले आदमी को आपने इस प्रकार प्रेजेंटेशन देने के लिए फोटोग्राफ्स में शामिल किया है, मैं आपका ऋणी हूँ. और वो ऋण उतारने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ. वास्तव में मैं धरती माँ का और प्रभु का ऋणी हूँ, क्योंकि एक मनुष्य होना, जन्म लेना ही अपने आप में कितने ही कर्मों के बाद में, कितने ही अच्छे कर्मों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है. मनुष्य जन्म इस यू आर नेक्स्ट गॉड, यू आर सेंडर ऑफ द गॉड, भगवान के ही रूप हो, भगवान ने ही आपको भेजा है. लेकिन हम आके यहाँ भूल जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हम तो सूर्य है. अरे तुम बहुत कुछ हो, कितने भी महान महान वैज्ञानिक हुए या नेता हुए, लोग हुए या स्वामी विवेकानंद जी क्या थे, बहुत छोटी उम्र में गए लेकिन इतना कुछ दे के चले गए कि कितनी शताब्दियों तक वो अमर रहेंगे और उनका संदेश कोई मिटा नहीं सकता. वैसे ही जांबोजी महाराज और भी घने ऐसे लोग हुए हैं, रामदेव जी हुए हैं और भी ऐसे खूब लोग हुए हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन समाज को भी चाहिए कि वो स्वीकार करे.
3: जी सर बिल्कुल बिल्कुल. तो युवाओं का क्या रोल है पर्यावरण संरक्षण में सर, आप क्या?
4: मैं इस संबंध में हमेशा कहता

0: युवा इग्नोर करेंगे तो धरती को कोई बचा नहीं सकता। और धरती पर इतना कचरा हो गया, बड़े बड़े शहरों में तो 500-500 फीट ऊंचे पहाड़ बन गए। मैंने दिल्ली में देखे, पहले देखा मैं इस पहाड़ी पे चढ़ूंगा, फिर मैं पहाड़ी के पानीपत की ओर जा रहा था, पहाड़ी के नजदीक गया तो ऊपर आग दिखी। मैं वो पहाड़ी पे आग खींचने लगे, आग ये है कि पहाड़ी की आग नहीं है क्या, ये कचरे के ऊपर आग लगाई हुई है। और फिर मैंने देखा एक बहुत बड़ा वो डंपर होता ना, वो ऊपर खाली होता, देखा माचिस की डिब्बी जितना दिख रहा था, इतने इतने कचरे के ढेर लग गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं समुद्र को, हमने सही नहीं छोड़ा समुद्र का। मैं अभी जू बीच पे गया था, वो तो जवार आता है ना, तब जो कचरा समुद्र का देता है ना, वो पूरा का पूरा वापस लुटा के और उनके घरों के आसपास किनारों पे लाके फेंक देता है। तो जब तक मनुष्य धरती को देना नहीं सीखेगा, तब तक धरती दे नहीं पाएगी। लंबे समय धरती नहीं दे पाएगी, धरती अब इग्नोर करना बंद कर देगी और हम मरेंगे। और अब हम वैसे दिल्ली में अपन बड़े शर्म, आपने भी कहीं सुना होगा देखा होगा, वहाँ वो जीना कोई जीना नहीं है। अमिताभ बच्चन वाला वो डायलॉग किसी एक फिल्म में था कि ये जीना भी कोई जीना है। तो इतनी गंदी बदबू आती है बड़े बड़े नालों के पास कि एक दिन भी हमारा बार, हम जो खुले एरिया में रहते हैं जैसलमेर बाड़मेर या मरुस्थल वाले उधर जाते हैं ना, तो मन नहीं होता कि घंटा आधा घंटा ही यहाँ रुके, लेकिन लगातार जब हम वहाँ रहते हैं तो हमारी भी नासिकाएं वो ऐसी स्वीकार कर लेती है गंदगी की, और हम गंदगी में रहने में मजबूर हो जाते हैं।
1: जी सर। सर, हर घर अगर कोई संकल्प ले या छोटा छोटा प्रयास करे तो क्या हम अपने देश को परिवर्तन कर सकते हैं? अगर
0: बिल्कुल बिल्कुल मदर टेरेसा ने कहा, बिल्कुल मदर टेरेसा ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि धरती को हम, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि धरती को तो साफ रख नहीं पाए और चांद की तरफ दौड़ रहे हैं। और गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास वो सब कुछ है जिससे हम अपन जीवन जी सकते हैं, लेकिन हमारी लालचा को पूरी कोई भी नहीं कर सकता। अब लालचा किसी भी चीज से पूरी नहीं होती। मेरे पास एक छोटी सी साइकिल थी और पुरानी साइकिल थी, मैंने नई साइकिल ले ली तो फिर उसका नया ब्रांड और नई वो उसकी और हाई वर्जन देख लिया, फिर साइकिल से मोटरसाइकिल आई, कार आई, कार का नया ब्रांड। तो आदमी कभी भी संसाधन से, मेटेरियलिज्म से, मतलब भौतिक चीजों से आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतुष्ट आदमी होता है अपने विचारों से संतुष्ट होता है कि मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है। संतुष्टि बाहर कहीं भी नहीं है, साधनों में संतुष्ट नहीं है, जोधपुर में मेरा, मतलब मैं जहां भी जिस शहर में रह रहा हूँ, मेरा पूरी पोस्ट कॉलोनी में सबसे अच्छा बंगला है, लेकिन साथ वाला मेरे खाली जमीन पड़ी, उसने डिजाइन थोड़ी बदल के मेरी वाले से 21 डिजाइन लाके बना दिया, तो मेरे रात को नींद आनी बंद हो गई। अब जबकि बहुत बड़ा मेरा बंगला है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी उसने डिजाइन नहीं लिया तो मैं घर से बाहर निकलता हूँ, उसकी डिजाइन के सामने देखता हूँ तो मेरा पिछता होता है, यार क्या कर लिया ये, अपने पैसे तो खूब लगे लेकिन इस तरह सारे डिजाइन नहीं बना ली। तो कहने का मतलब है आदमी किसी भी चीज से, ऐश्वर्य से, धन से कभी संतुष्ट नहीं होता। और कुछ लोगों ने विकास की जो दौड़ में है वो कहते हैं आदमी को संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, लेकिन विकास की अंधी दौड़ ऐसी हो गई है कि अब मनुष्य का जीवन ही निकलने लग गई है। छोटे बच्चे भी मोबाइल के अंदर इतने घुस रहे हैं कि मोबाइल उनकी माँ से भी प्यारे लगने लगे, माँ का दूध पीना छोड़ देंगे और मोबाइल की तरफ देखने लग जाएंगे। हम जा किधर रहे हैं ये हमें भी सूझ नहीं रहा है, और हम इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। स्कूल में सिर्फ एक बंद डब्बा में, स्कूल में पहले मैदान होते थे, पढ़ाते थे, अब मैदान गायब हो गए बंद डब्बों में बच्चों को। और कहीं कहीं तो मैं देखता हूँ, आपने भी देखा होगा मैडम, 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर से बच्चे को सुबह कलेक्ट करते हैं, स्कूल लाते हैं और 3-4 घंटे बैठाते हैं, वापस 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर बस में और घुमाते हैं। हम शाम को चाहते हैं कि बच्चा का दिमाग तेज हो रही है, इसकी मानसिकता सुधरे, कैसे सुधरे, वो थकान से मरा मरा हो जाता है, कैसे पढ़ाई करे, कैसा राष्ट्र उत्थान करे, जब उसके है ही नहीं। और दूसरे ऐसी पहले हमें कविताएं और भजन और कीर्तन और राष्ट्रपति गीत गवाए जाते थे, जैसे हिंद के बहादुरों वक्त की पुकार है, बढ़ना है बढ़ना है आगे सबसे बढ़ना है, इस प्रकार के निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण ने भूले इतने, जब नाव जल में छोटी, कितने प्रकार के राष्ट्रभक्ति के और आत्म उत्थान के गीत और कविताएं सुनाई जाती थी, तो हमारे मन में रहता था नहीं ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ होना भी नहीं है।
1: जी सर, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम आपसे बात कर रहे हैं, और आप इतने समय से ये कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं, जो युवा सुन रहे हैं, उनके लिए जरूरी प्रेरणादायी कार्यक्रम है ये।
0: युवा आज नहीं जागा तो कल गंदगी में खड़ा रहेगा और पछताएगा, और अगली पीढ़ी जैसे आज जवान है उसके बच्चे हो रहे हैं, वो बच्चे जब वो जवान होंगे तो जिन्होंने जन्म दिया है उनको गालियां निकालेंगे 100% के, खुद ने तो जन्म दे के हमको छोड़ दिया और धरती को गंदगी करके चला गया, अब हम जी भी नहीं सकते।

0: सकते और मर भी नहीं सकते। मरे तो कैंसर होके मर रहे हैं या कोई और बीमारी लेके मर रहे हैं, हर चीज में जेर है। व्यापारी चाहता है मैं किसान को ठगूं, किसान चाहता है मैं केमिकल डाल के व्यापारी को ठगूं, और एक दूसरे से ठग रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जबकि ठगा आदमी आदमी को रहा लेकिन फिर भी खुश हो रहा है। जो किसान ठग रहा है वो व्यापारी को केमिकल दे रहा है, और व्यापारी मिलावट करके किसान को दे रहा है या अदर कंज्यूमर को दे के पैसे इकट्ठे कर वो ठग रहा है, तो वो भी देख रहा मैं मेरे पास पैसे हैं। अरे पैसे किसी काम के नहीं, मरने वाला एक सांस भी पैसे से खरीद नहीं सकते।
1: जी जी सर, बिल्कुल पैसे से सांसें नहीं खरीदी जा सकती, हमने देखा कोरोना काल में भी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को किस तरह से व्यवहारिक बनाया जाए, क्या कहना चाहिए?
0: बिल्कुल सही है, जब भी बच्चों का जन्मदिन हो टोपियां नहीं बांटी जाए, बच्चों के हाथ से पौधे लगाए जाए, पर्यावरण के संबंध में रैलियां गीत और उनको चित्रकला आयोजित की जाए कि पर्यावरण के बारे में बच्चा क्या जानता है, तुम अपने अपना एक बैठ जाओ और आपकी भावनाओं को पर्यावरण के बारे में क्या जानते हो वो भावना होनी चाहिए। शनिवार को जो नो बैग डे होना चाहिए, नो बैग डे में पर्यावरण के बारे में उनसे विचार लेने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उनको बताना चाहिए कि जीना है तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा। उनको इस प्रकार की भावना ठूस ठूस के भरनी चाहिए। जैसे पहले हमारे स्कूल में हम पढ़ाई करके नहीं आते थे, होमवर्क करके नहीं आते तो मुर्गा बनाते थे, छोटे बच्चों को कभी कभी बड़े बच्चों के ऊपर बैठा देते थे और इस प्रकार की हम देते थे ताकि हम लज्जित होते थे कि नहीं पढ़ाई तो हमें करनी पड़ेगी और ऐसा हमें करना पड़ेगा। लेकिन आजकल के बच्चों को तो बर्थडे होता टॉफी बांटते वो बांटते रहे, ये चीजें टॉफी क्या होती है कुछ नहीं, एक मीठा जेर है। लेकिन अब हमारे परिवार में और टिफिन में ही डालते हैं तो प्लास्टिक के डब्बे में टिफिन डालते हैं जो बदबू मारता है। एक तो पराठा बनाते हैं, पराठा खुद अपने आप बच्चों छोटे बच्चों के जो नर्वस सिस्टम है उसको खराब करता है कि छोटे बच्चे बढ़ती वाले तो पराठे में तेल होता है, वो कैसा ही तेल होता है वो खिलाते हैं। कभी भी बच्चों को वो इस प्रकार के तेल में तली हुई छोटी उम्र के बच्चों को नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार जब तक हम सात्विकता पे ध्यान नहीं देंगे, बच्चों के बर्थडे पे भी पौधे लगाने की केक काटते हैं पौधे लगावे, अगर एक बर्थडे पे एक पौधा होगा तो बच्चा अगर बड़ा होगा और 25 साल का होगा शादी होगा तो अपनी वाइफ को कह सकता है कि मैं देख 25 साल का हूँ, मैंने मेरे 25 साल में इतने पौधे लगाए हैं, आज अपनी शादी के दिन भी हम 2 पौधे लगाएंगे, एक तेरा होगा एक मेरा होगा। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे और लोगों में भावना पैदा करेंगे कि हर फंक्शन को पौधे से जोड़ेंगे, हर फंक्शन को स्वच्छता से जोड़ेंगे, बाजार से कपड़े की थैली के ले जाएंगे, घर एक अलग ही अलमारी का कोना रखेंगे जहां कपड़े की थैली रखेगा, सामान लाने की थैली है, वहां मेरे बैग में मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, कम से कम 5 कपड़े की थैलियां हर समय रखती है, मिसेज रखती है, नहीं रखती है तो मैं उनको थोड़ा रौद्र रूप बताता हूँ तो वो झट से रख देती है, एक दिन नहीं रखती है, दूसरे दिन मेरे को मालूम नहीं चलता है, मैं जाके देखता हूँ तो थैलियां पड़ी रहती है। तो जब हम सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम से सब होता है, हम इग्नोर करेंगे। ऐसी ऐसी महीने हैं कि आलू ले रहे हैं और टिंडी ले रहे हैं, आलू और टिंडी अगर हम साथ में ले लें तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो उसके लिए प्लास्टिक अलग थैली मांगती है, हर सब्जी और फिर एक बड़ी थैली, 5 तरह की सब्जी ली तो 5 प्लास्टिक छोटी थैली है फिर एक बड़ी थैली है, घर से कपड़े की थैली ले जाते ही शर्म आती है। जब हम शर्म करेंगे तो फूटेंगे कर्म, ये तय है। हम प्रकृति बचाने में शर्म करेंगे तो मरेंगे, हमारे आंखों के सामने हम अपने पूर्वजों को अपने बच्चों को या कोई भी कैंसर हो गया, कोई कैंसर से मरेगा, कोई किसी से मरेगा, कोई किसी से मरेगा और हमें सहन करना पड़ेगा। जो हम देंगे वो हमें मिलेगा,
1: जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। सर आपकी जो अभियान है कितने स्वयंसेवक जुड़े हुए? जी जी सर,
0: पहले बताया था कि हम छोटा फंक्शन होता ना, हम क्या है वॉलंटियर है, हम किसी से कुछ लेते नहीं, तो जब हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं, जिसको जो समय मिलता है उस हिसाब से वो समय निकाल के अपना भाड़ा किराया खुद दे के आता है। तो शादी ब्याह होते हैं हम 10-15 होते हैं और मेले होते हैं, धार्मिक मेले होते हैं तो वहाँ संख्या थोड़ी हमें बढ़ानी पड़ती है, उस समय हम कभी 50 हो जाते हैं, कभी 100-150 हो जाते हैं, वो मेले की और उनके लोगों के आने की आह्वान पर उनकी रुचि के अनुसार, दबाव कहीं नहीं होता, दबाव वाला काम भी नहीं करता।
1: जी जी सर, ओके।
0: जो बिना दबाव वाला एक आदमी 15 आदमी का काम कर लेगा और दबाव वाला 15 आदमी एक आदमी काम नहीं करेगा, कहीं पेड़ के नीचे जब बैठ जाएगा या कहीं 2 मिनट में कहेगा मेरी मासी आई हुई है 2 मिनट मिल के आता हूँ, मासी क्या आई हो, शाम तक ही वापस नहीं आएगा।
1: जी,
0: ये होता है
1: जी।
0: काम सब संकल्प काम करता है, शरीर काम नहीं करता है, जुनून काम करता है, बॉडी काम नहीं करती, जुनून काम करता है, संकल्प मजबूत होता है, हमें करना होता है, हमारी भावनाएं होती है, हमें कुछ देने की इच्छा होती है, तब काम होता है। काम आदमी किसी आदमी का कोई शरीर काम नहीं करता, उसके अंदर संकल्प क्या है और क्या वो धरती को देना चाहता है, किस प्रकार का जीवन जी के दूसरों को देना चाहता है, वो काम करता है। कभी ये मत सोचना कि बॉडी काम करती है, बॉडी काम तो सिर्फ भार उठाना, वो मेरे से एकदम छोटा बच्चा हूँ मेरे 10 किलो भार उठाए, लेकिन एक बहुत मुस्टंडा है वो हो सकता है 50 किलो 2 कुंटल ही उठा ले, पहलवान है तो 2 कुंटल ही उठा ले, वो अलग चीजें हैं। लेकिन आप किसी काम को अंजाम देने के लिए मेहनत करेंगे तो वो भावना से होगा। पहलवान ही बनेगा तो पहले उसकी भावना होगी शुरू से कि मैं बड़ा होकर पहलवान बनूंगा, तो वो बन पाता है। तो बच्चों के अंदर ये भावना हम पैदा करेंगे शुरू से, बच्चा कि तू ऐसा काम कोई मत करना जिससे तेरी और तेरे खानदान की और हमारी इज्जत मिट्टिया मेट हो जाए, हम लज्जित हो जाए, ऐसा काम मत करना। ऐसा काम करना कि हमारा गांव भी नाज करे, शहर भी नाज करे, और हो सकता है तेरा नाम राष्ट्र स्तर पर भी पहुंच जाए और पूरा राष्ट्र तुझसे सुने। ऐसा बेटा बन, बनना है तो ऐसा बन बेटा। बाकी शरीर लिए तो जानवर घने घूमते हैं। द मैन इज द मोस्ट नोटोरियस एनिमल ऑफ द प्लानिट, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ। धरती का सबसे गया बेटा जीव है तो मनुष्य है, धरती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जीव है तो मनुष्य है। किसी शेर ने अपना पेट भरने के बाद में दूसरे शेरों को या गंदगी को प्लास्टिक का उत्पादन नहीं किया या किसी प्रकार के दूसरा कोई चीज का उत्पादन नहीं किया, जो कर रहा है मनुष्य कर रहा है और जो नुकसान पहुंचा रहा है मनुष्य कर रहा है। मनुष्य कहता मैं बुद्धिमान हूं लेकिन वो है बुद्धिहीन
1: जी।
0: एयर केस में बुद्धिमान है, परसेंटेज बुद्धिमानों का बहुत ही कम है, सिर्फ दो पैरा वाला जानवर है, दो पैरा वाला जानवर। मनुष्य ये मत समझना कि मैं मनुष्य हूँ। मनुष्यता लाने के लिए बहुत ज्यादा विचार करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, सवेरे उठ के सोचना पड़ता है व्हाट इज माय टारगेट ऑफ माय डे, व्हाट इज टारगेट ऑफ माय होल लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे किस प्रकार जीवन जी के आगे बढ़ना है। क्या हम सिर्फ एक जानवर बन के सुबह शाम भोजन करना और सो जाना, वो करना वो करना, दाल रोटी लाना, बच्चों को जिमाना, सो जाना, ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता यह है अपना परिवार पाल के और दूसरों को भी कुछ दें, प्रकृति को भी कुछ दें, तब तो है मनुष्यता। सिर्फ अपना अपना ही पेट भराई करें तो मनुष्य नहीं है, वो तो जानवर भी करते हैं। एक जहरीला सांप भी करता है, एक कीड़ा मकोड़ा भी करता है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने कहा कि मनुष्य अपने अगर करते हुए को भूल जाए तो वो किसी जानवर के समान है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे,
0: जानवर समान नहीं है मैडम, जानवर से गया बीता है, जानवर से डाउनफॉल है। जानवर तो मतलब कोई गाय ने किसी ने धरती में कोई इतना गंदगी नहीं कही। आज हम जानवरों की कंटीली बाड़ियां लगा के हिरणों को खत्म कर दिया। अब हमारे जोधपुर की तरफ हिरण खूब सारे थे हमारे खेतों में, हमारे घर के जब हम रात को बाहर घर के आगे खाट बिछा के सोते थे ना तो पास में हमारे चारों तरफ हिरण बैठे रहते। अब क्या हुआ, हर लोगों ने कंटीले तार लगा दिए तो हिरण को जो पालतू कुत्ते हैं और जो गलियों में के घरों में होते हैं वो चार पांच का झुंड बना के हिरणों को मार देते। क्यों, वो जैसे वो हिरण दौड़ने की कोशिश करता सामने जाली आती थी, और कुछ लोग तो जाली भी इतनी बारीक लगाते हैं, सफेद जाली लगाते हैं वो प्लास्टिक वाली, उसमें और भी फंस जाता है, उसको दिखती भी नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, छलांग लगाता है लेकिन जाली में फंस जाता है, कुत्ते आ जाते हैं। अब हिरणों की तो टोली खत्म हो गई, अब किसकी आई है, जिसको अपन कहते हैं ना सूरों की। अब जहां भी देखो, जैसलमेर देखो, बाढ़ में देखो, बीकानेर देखो, हर एक कहते हैं कि यार हमारे खेतों में सूअर बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो चीज सुंदर थी उसको गायब कर दिया, तो अब सूअर ही आएंगे।
1: बिल्कुल, जानवरों के घर तक हम पहुंच गए, उनके लिए जगह ही नहीं बची है।
0: अब बिल्कुल सही है, जानवरों का घर तक पहुंच गए, जानवर जाए कहां, तो जानवर आपके घर में आएंगे, और जानवरों की अच्छी क्वालिटी को खत्म कर दिया तो गंदी क्वालिटी है जो सूअर है वो वही आएंगे, अच्छी क्वालिटी जो हिरण थे, जो लोमड़ियां थी, जो वन बिलाव थे, जो भी है, जो हमारे प्रकृति के लिए फायदेमंद थे उनको हमने उनकी जगह ही नहीं छोड़ी, तो अब जो गलियों में गंदगी में बैठे रहते हैं वो हमारी तरफ बढ़ने लगे।
1: बिल्कुल,
0: वही अपने साथ होता है, हम आगे अच्छे संस्कारों को इग्नोर करेंगे तो बुरे संस्कार तो स्वतः ही आ जाएंगे। वो तो कहीं गाली तो बच्चा कहीं भी सीख जाएगा, लेकिन एक कीर्तन भजन सत्संग या एक अच्छी पोएम याद कराने में हमें कितने दिन लग जाएंगे, और गाली तो एक मिनट में आके बोल देगा। डेढ़ दो साल का बच्चा, तीन साल का बच्चा इतनी भद्दी गाली बोलेगा आप अचंभित हो जाओगे, ये कहाँ से सीख के आगे। तो बुरी चीज तो हरेक सीखता है। आज मैं इतना काम करता हूँ, मेरा इतना मैं वायरल नहीं हूँ, और एक दिन मैं किसी से झगड़ लूँ तो एक मिनट में मेरा वीडियो इतना वायरल होगा, इतना वायरल होगा, दुनिया देखती रह जाएगी, यार ये आदमी ऐसे क्यों झगड़ रहा है, और जगह जगह देखो ये पर्यावरणविद खमुराम विष्णु, देखो इसका एक रूप, ये देखो ये देखो, यूं कर करके वीडियो वीडियो आएंगे।
1: जी सर, नेगेटिव चीज जल्दी वायरल होता है,
0: बिल्कुल वायरल होता है,
1: लेकिन आपने अपने हौसलों के साथ उड़ान अपने भरा है और अभी तक भी आप उड़ रहे हैं पर्यावरण के कार्य के क्षेत्र में पॉजिटिविटी के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैंने मेरा संकल्प ले रखा है, जब तक जिंदा रहूंगा धरती माँ को देता रहूंगा, और ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, क्यों धरती ने मुझे ऐसा जीवन दिया। मनुष्य मैं अपने आप को मनुष्य नहीं मानता, भगवान का रूप ही मानता हूँ, क्योंकि भगवान में मुझ में कोई फर्क नहीं है, भगवान में इतनी है कि भगवान दूसरों को देने का प्रयास करता है, मैं कभी कभी चूक जाता हूँ, इतनी कमी है, भगवान हमेशा हर एक को देता है और मैं कभी कभी देने में चूक जाता हूँ, लेकिन थोड़ा प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ देने का प्रयास करूँ। बाकी मनुष्य ही धरती का भगवान है, भगवान अपन कहते भी हैं कि एक मेरे को आज देवता मिला नहीं तो मैं आज पहुंच ही नहीं पाता, मैं बस चूक गया था, मैं फलन जगह ऐसे हो गया था, फंस गया था, लेकिन एक क्या मालूम देवता कहाँ से आया, मेरे को वहां से उसने बिठाया, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। हम कभी भी वर्तमान सुनाते ही रहते हैं, तो मनुष्य में ही भगवान विराजमान होते हैं, मनुष्य में ही भगवान और देवता रहते हैं।
1: जी सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि विदेशों से भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में क्या सीखना चाहिए भारत को? आप विदेश भी देखे हैं, भारत भी आपने देखा।
0: ऐसी बात है मैडम, विदेशों में अपने देश के प्रति अटूट श्रद्धा है और अपने यहाँ इग्नोरेंस है, अपने यहाँ इग्नोरेंस है, क्योंकि अपन इतनी इतनी अलग अलग जाति प्रथा में बंट गए हैं और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और कुछ लोग दूसरे कम्युनिटी दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं, तो वो देखे हम यहाँ क्यों ऐसी क्यों हम भाव रख रहे हैं, हमें क्या करना वो क्या करना, समझाएं तो समझे नहीं तो अपन समझाओ तो वो कहते क्या ठेका ले रखा है तुमने समझाने का। लेकिन वहाँ दूसरे विदेशों में ऐसा नहीं है, वो अपने देश के प्रति भावनाएं और अपने देश को साफ रखना चाहता है, और अपने यहाँ ऐसी भावना नहीं है। एक तो आबादी बहुत ज्यादा है और एक अनपढ़ और इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है कि हमें हमारा क्या लेना हमारा क्या करना, सरकार अपना आप करेगी, हम तो पैसा हम हमारे ऊपर टैक्स लेती है वो लेती है वो लेती है, मतलब हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ नहीं करूं और दूसरा करे, अब दूसरा ऐसा कैसा, मेरा मुंह मैं ही नहीं धोऊं तो दूसरे को क्या पड़ी है मेरा मुंह धो आए के धोएगा, हाँ छोटा हूँ मेरी माँ है मैं छोटा हूँ मेरी माँ धो देगी, लेकिन मैंने उम्र पा ली, मैं 25 का हूँ 15 का हूँ, माँ आके थोड़ी मेरा मुंह धोएगी। तो ये जब तक हम देश और अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, कर्तव्य को हम इग्नोर करेंगे, तभी हमारा राष्ट्र गंदा होगा और भी ज्यादा बीमारी आएगी, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनको कोई लेना देना नहीं है अपने यहाँ गंदगी रहे या गंदगी सफाई रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। बाहर का आदमी आके जब बांग्लादेश को क्या मतलब कि भारत की स्वच्छता रहे या नहीं रहे, या पाकिस्तानी क्यों आके अपने बारे में सोचेगा भारत साफ रहे, हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि वो अपने राष्ट्र को साफ रखे, अपने गांव को साफ रखे, अपने घर को साफ रखे, और यही होगा तब होगा नहीं तो नहीं होगा। हो सकता है किसी कुछ फौज कॉलोनी में कोई विकास समिति बना दी और पर्टिकुलर एरिया आदर्श आदर्श एरिया बना के उस जगह विशेष को साफ रख लिया हो, लेकिन पूरे भारत को कोई साफ नहीं रख सकता जब तक प्रत्येक आदमी नहीं जागेगा और प्रत्येक आदमी का कर्तव्य नहीं समझेगा जब तक। हम साफ रखने में बड़े ही मुश्किल है, जरूर हम अब मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत की जगह जगह वो कचरा टैक्सी चला दी, लेकिन कचरा टैक्सी में नहीं डालते हैं लोग, कचरा डालते नहीं टैक्सी में, वो देखे दे 50 रुपये लग जाएंगे, 100 रुपये लग जाएंगे या 80 रुपये लग जाएंगे, अब ऐसे लोगों से हम कैसे सफाई कराएं?
1: जी
0: 80 रुपये का गुटखा खा लेगा, जर्दा खा लेगा, पान खा लेगा और कोई रात को ड्रिंक कर लेगा, लेकिन कचरा पात्र का महीने का 80 रुपये कचरा वाले गाड़ी को वो नहीं देगा और कचरा खुले में फेंक देगा, और खाता चलता जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लास्ट बात कह के मेरी बात पूरी करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है पहले थूकता है कोने में और फिर चाहता है कि मेरा इलाज बहुत बढ़िया हो जाए, अरे कैसे हो जाए, मतलब अब मैं एक बात लास्ट में और कहता हूँ, मेरे को याद आ जाती है क्या करूँ, आपने कहा ही कह रहा आप कुछ याद आए जरूर बताना। अब एक गिरगिटों की मीटिंग चल रही थी, आप समझ गए, गिरगिटों की मीटिंग चल रही थी, वो नाराज हो गए आपस में झगड़ने लगे, एक गिरगिट ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या कि ये मानव मनुष्य आदमी बदले जैसे कैसे रंग बदल रहे हो, गिरगिटों ने कहा आदमी बदले जैसे क्यों रंग बदल रहे हो, मतलब गिरगिटों ने हमें उपाधि दे दी कि मनुष्य बहुत ज्यादा रंग बदल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता तो अलग तरह से बिहेव करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता तो अलग बिहेव करता है, और अगर वही एयरपोर्ट पर जाता है तो अलग बिहेव करता है, मतलब जगह जगह बदल रहा है, जगह जगह विचार अपनी एक रूपता रखता ही नहीं है, बदलता जा रहा है, और वही देख लो भी कहीं यहाँ बहुत ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी, 100, 200, 300 रुपये लग जाएगी, तो बड़ी बड़ी होटलों में जाता है तो इतना सीधा हो जाता है, गांव का गंवार होता है भी वो कहीं नहीं थूकता है, बीड़ी भी नहीं सुलगाता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पलंग के पास में मरीज बैठा सो रहा ऊपर और नीचे बैठा बीड़ी पी रहा है, समझता सब है लेकिन करना नहीं चाहता, वो रंग बदल लेता है, सब समझते हैं, छोटा बच्चा भी समझता है, मैंने आपको कहा था छोटा बच्चा भी समझता है कि क्या कौन सी चीज कहाँ रखनी है कौन सी कहाँ रखती है। अब ये जब तक हम राष्ट्र को बच्चे बच्चे को नहीं समझाने में सफल नहीं होंगे, छोटे बच्चे परिवार के लोगों को मानेंगे नहीं ये गंदगी ये सही है, बच्चा आगे बढ़ेगा युवा आगे बढ़ेगा तभी होगा, बूढ़ों से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने तो अपनी आदत बना ली है, जो 25, 30, 40 साल से सिगरेट पी रहा है उसको हम पैर पकड़े भाई तू सिगरेट छोड़ दे मरे नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो शुरू कर रहा है उसको रोक देंगे कहाँ सिगरेट पी रहा है, तो वो हो सकता है वो हमारी बात मान ले, उसको हम प्रोत्साहित करें तो मान ले, ऐसा हो सकता है।
1: कुछ अंतिम क्षण में हम पहुंच चुके हैं, अंतिम पड़ाव है ये इस प्रोग्राम का, तो कुछ क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी पूछना चाहूंगी। तो एक शब्द में पर्यावरण आपके लिए क्या है? एक शब्द में
0: पर्यावरण यही है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो देना सीखना पड़ेगा, प्रकृति को हरा भरा और साफ सुथरा रखना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि हम तो कुमोती मरेंगे, हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं, तो फिर जैसा जियो वैसा जियो। मौत बहुत नजदीक आ रही है, मौत दौड़ती आपको झपट रही है, और मौत आपको कम उम्र में 25, 30, 35 और हमारी एज 50 से नीचे हो जाएगी। वो जो जीने की उम्र है ना वो बहुत कम हो आ जाती है, बीमारी है।
1: पर्यावरण मतलब देना है,
0: पर्यावरण का मतलब लेना नहीं है, पर्यावरण मतलब देना। अगर आप जो दोगे वो लौट के आएगी। जैसे इको है, इको आप वैसे ही इको सिस्टम बोलते हैं, इको है पर्यावरण का इको। जैसे अपन बोलेंगे, जैसे कुएं बोलते हैं तो वापस आती आवाज आती है, वैसे ही ये पर्यावरण है। आप जो दोगे वो वापस मिलेगा। मैं घर के बाहर कचरा फेंकूंगा तो उड़ के घर के अंदर आएगा, नहीं आएगा तो बाहर जाऊंगा तब दिखेगा। और मैं घर के अंदर बाहर साफ रखूंगा तो बाहर जाऊंगा तो सफेद दिखेगी, अंदर भी हरियाली दिखेगी, सफेद दिखेगी। वही मैं सफेद कपड़ा पहनूंगा तो मैं सुंदर लगूंगा, अच्छा लगूंगा, मन में शांति होगी। मैं गंदा कपड़ा पहनूंगा तो लगेगा यार आज क्या पहन लिया, लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोग तो दूसरों के लिए भी पहनते हैं। और दूसरी एक पर्यावरण की बहुत बढ़ती हुई, मैं एक बार लास्ट बात कर देता हूँ, जो फैशन है ना ये पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। ऐसी ऐसी बहने हैं जिनके, जैसे जयललिता जब वो सस्पेंड हुई थी मुख्यमंत्री पद से हटी थी तो अगर 1000 जूतों की जोड़ी है, वो अलमारियां भरी हुई थी कपड़ों से, वैसे हमारी बहनों की भी है। हर मिनट में नया कलर लेके आती है, पहनती है हर शादी। एक ड्रेस को दोबारा पहनने में शर्म महसूस करती है, जबकि हमारे पूर्वज उसकी राली बनाते थे और धोती पुरानी होती थी, धोती का ऊपर कवर चढ़ा के और धोती के अंदर कपड़े भर के रालियां बनाते थे। वो तो हम भूल गए। अब बूढ़े बड़े जावे ना तो उनके, जैसे मेरे दादी जी चले गए या मेरे पास नानी जी चले गए, तो नानी जी के जितने भी कपड़े हैं ना बाहर चौराहे में या कहीं जैसे भी कहीं लजा के फेंक देते हैं, उन कपड़ों को काम नहीं लेते, जबकि वो पुराने लोग थे, गर्व समझते थे मेरे दादा की धोती है, मेरी नानी की साड़ी है, राली बनाएंगे या बैठने की वो बनाएंगे। तो जब तक हम इस प्रकार का सिस्टम नहीं लाएंगे, भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाएंगे, देखा देखी करेंगे तो देखा देखी करे तो मरे नहीं तो हुए रोग।
1: तो मिनिमलिज्म की बात आप कर रहे हैं, वो जो हमारी पुरानी संस्कृति,
0: बिल्कुल सही है। एक आदमी ने कहा कि धरती के सबसे सुखी आदमी सभी एक राजा बहुत था, वो बहुत ज्यादा दुखी था, कितने वेट बुला लिए, सब कुछ बुला लिए, लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने, एक ने तो चलता रहा चलता कहा मैं ठीक कर सकता हूँ। ये कैसा, ये जो सबसे संतुष्ट आदमी है उसका शर्ट लाके इसको राजा को पहना दियो। तो राजा ने दूते छोड़े तो कोई संतुष्ट था ही नहीं, कोई अपनी पत्नी से दुखी था, कोई पति से दुखी थे, कोई माँ से, कोई भाई से, कोई पड़ोसी से, कोई सब लोग दुखी थे। एक आदमी नदी किनारे बैठा था, वो एकदम खुश था, एकदम मस्त था। उससे पूछा राजा के दूतों ने, भाई तुम कैसे हो गए? मैं एकदम मस्त हूँ, एकदम मस्त, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, चिंता कुछ भी नहीं। तो तुम्हारा शर्ट दो मुझे, तुम्हारा बुशर्ट दो, तुम्हारा पहना हुआ कमीज दो। कि मेरे पास तो कमीज है कहाँ, बगैर कमीज बेटा मस्त मोला बैठा था। तो संसाधनों से, कपड़ों से और संपत्ति से आदमी कोई सुखी नहीं रह सकता।
1: जी
0: सुख है विचारों में
1: और पर्यावरण के प्रति आपके समर्पण भाव आपको सुख देता है। तो आपका पसंदीदा वृक्ष क्या है सर?
0: मेरा पसंदीदा वृक्ष तो ये खेजड़ी है, जो राजस्थान की राज्य वृक्ष है, जिसकी अब सोलर प्लांट की वजह से निरंतर कटाई हो रही है। तो हम तो यही कहेंगे भी खेजड़ी बढ़ाओ, क्योंकि खेजड़ी की लूंग होता है तो वो भी खाद करता है। खेजड़ी के खोके होते हैं, वो हिरणों के और पशुओं और जानवरों के लिए खाने, ऊंट के लिए भी खाने के लिए काम आता है। और सांगरी से हम बहुत अच्छी तरह पंचकुटा की सब्जी बनाते हैं। वैसे जो अपने भारतीय संस्कृति में दूसरे जो पेड़ है, पीपल है, बरगद है, जो अपने अपने पेड़ है, वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं। और नए नए पेड़ लगाए, कोनोकॉर्पस नया पेड़ आया है जिसे सब जगह बैन कर रखा है, लेकिन राजस्थान में कुछ जगह लगाए जा रहे हैं, जो 12 मास है, लेकिन वो प्रकृति का इतना शोषण कर रहा है। जैसे बबूल पेड़ों का राक्षस है।
1: Okay.
0: पेड़ों में मनुष्य में जो राक्षस होता है ना, वैसे पेड़ों का राक्षस बबूल है। किसी को नहीं छोड़ा है, हर धरती पहाड़ को नहीं छोड़ा, नदी को नहीं छोड़ा, सड़क किनारे को नहीं छोड़ा और घास को नहीं छोड़ा। जानवर आज अगर गौशाला में है तो बबूल की वजह से है। बबूल उगने नहीं देता घास को।
1: जी ओके
0: okay. तो ये बात है जो मैंने
1: सुना है। और बबूल को हमें जहाँ कम लगाना चाहिए, अगर देख रहे हैं तो उसे,
0: बबूल तो छोटे बदमाश है, वो राक्षस है, राक्षस तो अपने आप ही पनपते हैं मैडम। बबूल को लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही, कितनी ऊंची पहाड़ी हो, कैसे हो, कहीं हो, खेत हो, जमीन हो,
1: वहाँ पे लगा हुआ है, उसे हटा के हम दूसरे वृक्ष लगा सकते, पेड़ पौधे लगा सकते।
0: इतने इतने संसाधन अपने पास है ही नहीं, लोग रुचि भी नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट भी नहीं ले रही है, प्राइवेट वाले नहीं ले रहे हैं, अपने क्या करना। और बबूल फैलता जा रहा है, ऐसे फैलता जा रहा है कि पूरी सृष्टि को खत्म करेगा। अरे इतने बबूल हो गए, आपने देखा, आपसे क्या छिपा है, मैं आपको क्या बताऊं कि हो सकता है पहाड़ी आया जो माउंट आबू में उस तरफ कम होंगे, लेकिन हमारे मरुस्थल में तो इधर बहुत है, सड़कों के किनारे
1: जी
0: और जहाँ खाली हो या नाडी के किनारे हो या तालाब के किनारे हो, बहुत सारे लगते जा रहे हैं और पूरी जमीन को, घास की जमीन को बबूलों ने घेर रखा है।
1: जी सर, जी सर, सर जल जमीन आस

0: सबसे पहले किसको बचाना चाहेंगे आप?
1: मैं तो कहूँ पांच तत्वों को बचाना चाहिए, पांचों तत्व है वही भगवान है, इन पांचों तत्वों जो जल जमीन आकाश वायु अग्नि,
0: लेकिन एक चूज करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले किसको बचाएंगे?
1: अब जल को बचाएंगे तो सब बच जाएंगे,
0: जल को
1: जल ही नहीं
0: बचाएंगे,
1: होगा तो पूरी संपत्ति पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, जल से ही सब जीव पैदा हुए हैं, जल बच जाएगा तो बाकी सब बच जाएंगे।
0: ओके सर, जी सर, बढ़िया सर। एक चीज जो हर भारतीय को आज ही छोड़ देना चाहिए, आपको क्या लगता है?
1: प्रदूषण फैलाना,
0: प्रदूषण फैलाना,
1: और क्या?
0: ओके,
1: एक आदत ज्यादा ज्यादा धरती को हरी भरी रखें, हरियाली में ही भगवान है, भगवान का दूसरा हरियाली ही भगवान है, भगवान वही रहेंगे जहाँ हरियाली होगी, हरियाली का नाम ही भगवान है, भगवान कोई भगवान गंदगी पे जाके नहीं खड़ा रहेगा, जहाँ हरियाली होगी वहीं रहेंगे भगवान, तो हरियाली मीन्स प्रभु है,
0: बिल्कुल
1: हरी वहाँ जहाँ हरियाली,
0: हरी वहाँ है जहाँ हरियाली है सर, बहुत सुंदर बात है ये। और भारत को हरित बनाने का एक उपाय क्या है आपको लगता है?
1: सभी संकल्प लेंगे तब होगा, बाकी अकेले आदमी सब संकल्प लेंगे कि हम हमारी धरती माँ को हरा भरा रखें, हो गया, बाकी कोई ऐसा उपाय नहीं है, किसी के पास जादू टोना नहीं है, कोई ऐसा डंडा नहीं है कि भारत को हरा भरा बना दे, जब मनुष्य जागेंगे सब जागेंगे तभी होगा, ऐसा कोई ऐसा आदमी एक देवदूत नहीं पैदा होगा या पहुंच भी नहीं पाएगा कि हरे को हरा बना दे। मोदी जी खूब कहते हैं पेड़ लगाओ, लेकिन अब कितनी सरकारी मशीनरी है, वन विभाग है, कितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े अफसर है, जो IAS के कैडर वाले होते हैं, लेकिन हजारों पेड़ लगते हैं, लेकिन पेड़ों को बड़ा करने वाला कोई नहीं है, लगाने वाले खूब है, आत्मा पेड़ों को मारने वाले खूब है, नर्सरी से लगाते हैं और मर जाते हैं बस।
0: जी सर,
1: मेरे को कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि आपने कितने पेड़ बड़े किए, ये क्वेश्चन आपने गलत ही पूछा है, वो कहे ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं आप ये बोलो कितने पेड़ लगा के बड़े कर दिए, ऐसे पूछो, मैंने अगर 50 पेड़ बड़े कर दिए तो अपने आप में बहुत, मैं अपने आप को यूं गर्व गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और मैंने 5,000
0: लगाना
1: पेड़
0: नहीं बट उनका देखभाल भी करना है सर, ऐसा बोल रहे हैं।
1: हाँ, लगा के देखभाल करके बड़ा करे और बड़ा दिखना चाहिए, लगना चाहिए, 25 साल तक आप हो तो भी आपको आपके लगाया हुआ पेड़ नजर आना चाहिए, तब तो है, आप लगाया पेड़ है ही नहीं, और आपके तो मैंने तो मेरे जीवन में 50,000 पेड़ लगा दिए, अरे भाई है कौन सी जिंदा कितने है वो तो मालूम नहीं।
0: जी सर, आपके बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है एक और कार्यक्रम भी कम पड़ेगा, और इतने सारे उपलब्धियां हैं आपके पास, इतने सारे पुरस्कारों की सूची भी है मेरे पास,
1: बिल्कुल सही है, आपकी तरफ से मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, आई विल बी ऑनर्ड बाई गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुझे वहाँ का बहुत बड़ा पुरस्कार देने जा रही है, गुरु जम्बेश्वर
0: बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन सर,
1: धन्यवाद मैडम, गुरु जम्बेश्वर प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा,
0: हिसार से। जी सर, जी सर, आपको तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, और फिर से आपको एक और पुरस्कार से नवाजा जाएगा,
1: ये सब प्रभु का खेल है, प्रभु ही है, मैं उनको ही समर्पित करता हूँ, जो भी मुझे धन्यवाद देते हैं तो मैं धन्यवाद भगवान को दो कि मुझे मनुष्य बनाया है, इसे ऐसी समझ दी है, तो एक्चुअल में काम भगवान कर रहा है, नाम मेरा हो रहा है, तो मैं तो हमेशा ऋणी रहता हूँ, मैं परमात्म भगवान के साथ शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, वो आपने कहीं सुना होगा एक कोई सेठ दान दे रहा था और आंखें नीचे हो रही थी, तो किसी ने पूछा कि दान दे रहे हो इतना अच्छा करो, फिर नीचे क्यों आंखें कर रहे हो, क्या देने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ एक बीच की माध्यम हूँ, इसलिए लोग मेरा समझ रहे, तब मेरे को शर्म आ रही है, इसलिए आंखें नीचे कर रहा हूँ, तो मैं भी अपने आप को, लोग मेरे को कहते हैं आप अच्छा करते हो, तो मेरे को लगता है कि करने वाला भगवान है, मैं नहीं हूँ, मुझे समझ दी है, अकल दी है तो भगवान ने दी है, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, और आई एम डूइंग समथिंग ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जाम्बोजी एंड ऑलमाइटी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, और आपके समर्पण भाव को सलाम है, और आपके कार्य क्षमता को सलाम है, देशभक्ति को भी सलाम करते हैं आज हम रेडियो मधुबन के माध्यम से। और दोस्तों, वक्त हो गया है यहाँ से अलविदा कहने का, तो खम्मू राम जी आपका बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अनुभवों को, संघर्षों को, प्रेरणादायक विचारों को भी हम सलाम करते हैं।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, मुझे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए संपर्क किया, मुझसे बातचीत की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा मुझे शक्ति दे, समझ दे, ज्ञान दे, अकल दे, कि मैं मेरे जीवन के अंतिम क्षणों तक धरती माँ को कुछ न कुछ न कुछ न कुछ ऐसा दूँ कि मेरी माँ मुझ पर गौरवान्वित तो हुए कि वाह बेटा मैंने कुछ जन्म दिया है तो कुछ समझ के दिया, तो उसके काबिल निकला।
0: जी बिल्कुल, आप सर काबिल है, और धरती माता आप के लिए गौरवान्वित है ही।
1: मैं कभी कहता भी रहता हूँ कि हमारी तीन माँ, एक माँ जो हमें दूध पिला के बड़ा करती है, दूसरी माँ गौ माता होती है, तीसरी सब माओं की बड़ी माँ, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट मदर, वो कौन होती है, वो धरती माँ होती है, जो सब माओं को दूध पिलाती है, सब माओं को भोजन देती है, वो होती धरती माँ। हम बड़ी वाली माँ नाराज हो जाएगी, छोटी वाली माँ जिंदगी नहीं रह पाएगी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर बड़ी वाले माँ को नाराज नहीं करना है हमको, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, थोड़ा और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहीं पर रुकना
1: और
0: चाहते
1: समय
0: हैं।
1: की मांग है, दिस इज द नीड ऑफ आर, ये समय की मांग है। और समय के हिसाब हम काम नहीं करेंगे तो फिर बेहाल होना ही है। पानी पीना है, पानी नहीं पी रहे हैं तो कह रहे हैं वो डॉक्टर कहेंगे भी पानी की कमी होगी, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा।
0: सही सही बात है। तो समय की मांग को देखते हुए हमें पर्यावरण के लिए एक कदम जरूर उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी प्रेरणादायी बातों के लिए, और आपके बारे में जानकर के हमारे श्रोताओं को भी बहुत प्रेरणा मिली है, और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से।
1: मैं आपका ऋणी हूँ, और प्रभु ने चाहा तो आपने जो भी आशा की है उसका मैं पालन करूंगा मेरे जीवन में।
0: धन्यवाद सर। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: आवश्यक सूचना। 9 अगस्त 2026 रविवार को आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन के कारण सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक तलहटी आबू रोड से आबू राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि किसी को इस दौरान आबूराज से बाहर जाना हो तो कृपया सुबह 5 बजे से पहले ही जाएं। सुबह 9 बजे के बाद सभी मार्ग पुनः यातायात के लिए खोल दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना इसी अनुसार बनाएं और इस सूचना को अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, कैसे हैं? सब ठीक ठाक तो हैं? घर में बाल बच्चे? बहुत अच्छी बात है, बस कुशल मंगल रहे। चलिए, आपकी प्रभा पंडितायन आपका प्रोग्राम पंडितायन में पेश कर रहे हैं आज का प्रोग्राम, और शुरू करते हैं सकारात्मकता से। सकारात्मक सोच न केवल सबसे अच्छा होने की उम्मीद रखता है, लेकिन ये स्वीकार करने के बारे में भी है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। विश्व नाटक कल्याणकारी है, तो हमेशा का सोचिएगा, गुजर जाएगा ये दौर भी दोस्त, गुजर जाएगा ये दौर भी दोस्त, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वो कीड़े मकोड़े को खाती है, लेकिन वही चिड़िया जब मर जाती है तब कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं। इसलिए ये बात का ध्यान रखें कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आंको। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय तुमसे भी शक्तिशाली है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती है, पर माचिस की एक तीली लाखों पेड़ जला सकती है। कोई चाहे कितना भी महान काहे ना हो जाए, पर कुदरत कभी भी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। वर्तमान का कटु सत्य आपके समय का, जरा इस पर आप गौर जरूर करना, और ऐसी स्थिति से जरूर बचना जिस घर में बड़ों को छोटों से डर लगने लग जाए, उस घर में समझ लेना कि कलयुग प्रवेश कर चुका है। आपसे करबद्ध प्रभा पंडिताएं निवेदन करती है कि कभी भी अपने घर में ऐसी छवि मत बनाना जिससे कि तुम्हारे ही घर का पूज्य पुरुष तुमसे ही डरने लगे और वो तुमसे अपने मन की बात न कह सके। यदि ऐसी छवि तुमने बना ली है तो खुद का ही विश्लेषण कर समझ लेना कि तुम कितना ही धर्म करना, एक दिन तुम्हारा पता निश्चित है। ईश्वर न्यायाधीश है खुद का विश्लेषण करने का तरीका। अगर आपकी ओर एक उंगली उठे तो समझना कि आपका अपमान, अगर अंगूठा का इजहार हो तो समझना आप कामयाबी की ओर है, अंगूठे से उंगली मिले तो समझना आपके कार्य लाजवाब है। यह तो हमारी जिंदगी का हिसाब है कि नहीं? अगर वाकई में आप अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, बेशक पांव फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। काहे कि ठोकर खाकर जो इंसान गिर जाए वो उठ जाता है, लेकिन नजरों से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठ पाता। चिंता कभी ना करो, चाहे सारा जमाना आपके खिलाफ हो, लेकिन चलो उही मार्ग पर जो सत्य और मानवता का मार्ग हो। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं खुद है। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है कि नहीं? और एक बात जरूर याद रखें, माफ करें, दिल साफ करें। हम सभी से जाने अनजाने में न जाना कितना गलतियां होती है, किंतु गलती का एहसास होना अर्थात अपने गलत कर्म का भान होना और गलती के लिए माफ़ी मांग लेना उस गलती के बोझ को समाप्त कर देता है। गलती होना वास्तव में गलती तो है पर इतनी बड़ी नहीं, परंतु अपनी गलती को महसूस न करना ये उससे भी भारी गलती है। महसूस नहीं किया तो स्वयं के बदलने के द्वार बंद हो जाते हैं और वही गलती बार बार दोहराई जाती है, तो क्या करिएगा? समझ गए तो सच्चे दिल से माफी मांगने का अर्थ है कि हम उस गलती को इतनी गहराई से महसूस करें कि दोबारा कभी भी किसी के भी साथ वो गलती ना दोहराए। अगर एक व्यक्ति बदला लेकर दूसरे को नीचे दिखाना चाहता है तो इस प्रयास में वो खुद भी नीचे उतर जाता है, और दूसरी ओर क्षमा करके व्यक्ति स्वयं भी ऊंचा उठता है और सामने वाले को भी ऊंचा उठने की प्रेरणा देता है। यदि चित्त में ईर्ष्या घृणा द्वेष की अग्नि धधक रही है तो चित्त को भारी कर देती है, तो सदा याद रखिएगा, ऐसा बोझिल मन भगवान के किस काम का जो पहले से ही भरा है।
भगवान उसमें और का भरेंगे। इसलिए प्रतिदिन अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर और दूसरों की गलती के लिए क्षमा देकर मन को खाली अबस कर लीजिए, तभी शांति के सागर परमात्मा की शांति की किरणें अंदर प्रवेश करेगी। अपने शरणागत जीव को प्रभु हर प्रकार के अनिष्ट से बचा लेते हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि प्रभु आश्रित जीव के जीवन में कभी कौरव कष्ट ही नहीं आता हो। सच बात तो यह है कि प्रभु आश्रित जीव धर्म पथ का अनुगमन करता है, और जो धर्म पथ का अनुगमन करता है उसकी राह कभी भी आसान नहीं होती। ये प्रभु शरणागति की महिमा ही तो है कि दुर्गम परिस्थितियों में भी शरणागत के मन में एक विश्वास और एक सकारात्मकता सदैव बनी रहती है, और वो ये कि मेरे प्रभु मेरे साथ ही हैं, फिर मैं चिंता काहे करूं। और उनका ये विश्वास ही उन्हें पांडवों की तरफ बड़े से बड़े विघ्न से भी लड़ने का आत्मबल प्रदान कर देता है। जौन प्रकार एक अबोध बालक निर्भय होकर सर्प के संग खेलने लग जाता, सांप के संग, और अग्नि में भी हाथ डालने लग जाता है, वो नहीं जानता कि इसमें मेरा तनिक भी अहित होने वाला है। मगर उसके माता पिता अच्छे से जानते हैं कि किसमें उनके बालक का हित है और किसमें अहित। इसी प्रकार हम जीव को भले ही नहीं पता हो कि किसमें उसका हित है और किसमें अहित, फिर भी वो प्रभु को सब कुछ पता है। और माता पिता की भांति ही माँ जानकी और प्रभु राम अपने शरणागत की रक्षा करते हैं और उसको हर प्रकार के अनिष्ट से भी बचा लेते हैं। प्रभु शरणागति अथवा धर्म के मार्ग पर आपको कष्ट जरूर हो सकता है, मगर आपका अहित कभी नहीं हो सकता। ये बात गांठ में बांध लीजिए। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य है, लेकिन ये असंभव को भी संभव कर देते हैं। एक तस्वीर देखी हम, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है और एक छोटा सा बच्चा उसको माथे पे चूम रहा है। एक अपने आने वाले कल को और एक अपने गुजरे हुए कल को, यही जीवन का चक्र है तो क्या समझे। ये आसमान में उड़ने वाले परिंदो, ए आसमान में उड़ने वाली परिंदो, कुछ तो दुआ करो खुले आसमान की, कुछ तो दुआ करो खुले आसमान की। इस पिंजरे का दर्द क्या होता है अब समझ चुका है आज का इंसान भी। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो ये दुनिया का रिवाज है। कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरे की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं, दूरी हो जाती है। ध्यान रहे कि चुभ जाती हैं बातें कभी कभी, चुभ जाती हैं बातें कभी कभी, और लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ गैरों से ज़्यादा हम अपनों से ही हार जाते हैं। आप सब तो दुनिया में रहते हैं, बहुत कटु अनुभव से जिंदगी के इस पड़ाव तक पहुँचे होंगे, फिर भी कई बार मन में आता है कि बात भी कह दें तो कहीं लगी हो चोट तो उस पर थोड़ा सा मरहम का काम हो जाएगा। कई बार आप अपने जीवन से असंतुष्ट होते हैं, पर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके जैसा जीवन जीने की चाह रखते हैं। तो आज से क्या करिएगा, अपने जीवन से संतुष्ट रहें। हमारे पास परमात्मा जी ने जो दिया है लाखों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छा दिया है। ये दुनिया नहीं चलती अगर पांच स्त्रियां हर पुरुष के जीवन में नहीं होती। कौन कौन सी? माँ, बहन, बहू, बेटी या पत्नी। चालाक बनकर तो किसी को केवल कुछ देर तक ही मोहित किया जा सकता है, परंतु जहाँ दिल जीतने की बात आती है वहाँ तो केवल सरल और सहज होना ही जरूरी होता है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कई बार एक चुप्पी कई भ्रमित दूषित वातावरण को सुगम कर सही दिशा प्रदान कर देती है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास किसी दूसरे की चुगली करता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी भी किसी और के सामने चुगली करता होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान अपनी भूल में से भी बहुत कुछ सीख सकता है।
सबको शुभभावना शुभकामना के गिफ्ट देने वाली अपने आप को भाग्य विधाता मास्टर भाग्य विधाता समझे, देखिए आपका जीवन कितना खुश मिजाज होगा। माटी का संसार है खेल सके तो खेल, माटी का संसार है खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ में है पूरा विज्ञान उसके आगे है फेल। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और उसका सिमरन दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। तो आज से क्या करिएगा, समझ गए होंगे ना, अरे कहा नहीं समझेंगे। परमा पंडित आइन के साथ 12 साल सुन सुन सुन के तो अब हमसे भी ज़्यादा समझदार हो गए हैं। चलिए यही बात पर एक गीत व सुन लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, सुनिएगा मीठा सा गीतों के बाद फिर आपसे बतियाते हैं।

देखिए भाई, एक पते की बात बताए रहे हैं। हमेशा दूसरे से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखें, काहे कि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती है, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर रहें और स्वयं पर विश्वास रखें तो आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। जीवन का सत्य ही है, मनुष्य जैसे सोचता है वैसे ही गुण कर्म स्वभाव वाला बनता जाता है। यदि मनुष्य श्वास श्वास परमात्मा का गुण, उनका दिव्य कर्म तथा उनकी संपत्ति की याद में रहे तो वो भी दिव्य मन दिव्य बुद्धि वाला बन जाता है। एक राजपूत कोई निश्चय और याद होने के कारण कि वो राजकुमार है, स्वभावतः खुशी साहस धन खुमारी रहती ही है। इस प्रकार यदि कोई मनुष्यात्मा निश्चय पूर्वक मनन करती है, मैं तो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं तो त्रिलोकीनाथ परमात्मा का बच्चा हूँ, सारा ब्रह्मांड का स्वामी का बालक हूँ, तो ऊ की मस्ती आनंद अतीन्द्रिय सुख और शक्ति के अनुभव का पारावार नहीं रहता। परमात्मा हर वक्त आपके साथ है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो आपको कब कहाँ और कैसे कैसे बचाता है, लेकिन आप फिर भी उसको कोई मौका मिलता है तो गिला शिकवा करने से नहीं चूकते। एक बात मन में बैठा लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है और जिसमें निश्चित आपकी ही कोई भलाई छिपी हुई है। इसलिए हर तरह का अभिमान और जिद छोड़कर जो भी कुछ हो रहा है उसे खुशी खुशी से स्वीकार करें। दया और कृपा इका सागर होने के नाते वो कभी भी आपको दुख नहीं देता। कौन? परमात्मा जी, गॉड जी। अभी तो दुखों से छुटकारा पाने का राह जरूर दिखाता है। प्रभु ही हमारे सच्चे हितैषी हैं। प्रभु को पाने का एक ही लक्ष्य बनाए, जीवन की सार्थकता यही में है। आप बरसों से अपने आप को कोसते आ रहे हैं पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब आप खुद का समर्थन करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। अब केवल समाधान होंगे, समस्या नहीं। सदा स्मृति रहे कि आप कौन हैं, एक शांत स्वरूप और वरदानी आत्मा है। जीवन का सत्य ये भी है कि मिनट घंटे दिन माह वर्ष बदल सकते हैं, लेकिन हमारे किए अच्छे बुरे नहीं बदलते। का कर्म बुरे काम पीछा करते ही रहते हैं, अच्छे काम बचाते ही रहते हैं। आज मनुष्य जीवन के बुनियादी व नैतिक सत्यों से अवगत है परंतु इन पर अमल नहीं ना करता। इनमें जीवन में सरलता नहीं आ पाती और जो सरल नहीं होगा उसमें परमात्मा की साधना नहीं कर सकता। राजयोग सहज राजयोग की साधना के लिए मन बुद्धि का सरल और सहज होना जरूरी है, जो कि सत्य आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति व इसका मनन करने से ही संभव है। तो क्या करिएगा, संतुष्टता दिलाता है योग, जो कि कई जन्मों तक संस्कारों में समाई रहती है। मानव जीवन पुण्य और पाप का मिश्रण है। अज्ञान और दुर्ज्ञान से पाप उत्पन्न होता है और सद्ज्ञान से पुण्य उत्पन्न होता है। कर्मों से संस्कार बनते हैं, संस्कार ही से ही गुण बनते हैं, गुण से प्रकृति बनती है, प्रकृति से सृष्टि बनती है, और सृष्टि ही शरीर है। भला या बुरा, रुग्ण या स्वस्थ, सुंदर या कुरूप, स्पष्ट है कि मनुष्य का जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका शरीर बनता है। जन्मों जन्मों से संचित कर्मों का प्रतिफल ही शरीर है। शरीर ही वो फल है जो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। सत्कर्म से सुफल और दुष्कर्म से कुफल प्राप्त होता है। वर्तमान शरीर पुराने सांस्कृतिक परिवेश का फल है। कर्मों के फल भोग सुनिश्चित होते हैं, उनसे कोई बच नहीं ना सकता। कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है, देव मानव दैत्य सभी को। जीवन में सब कुछ एक निवेश की तरह ही होता है। प्रेम, समय, साथ, खुशी, सम्मान और अपमान, जितना जितना हम दूसरों को देते जाएंगे, समय आने पर एक दिन वो ब्याज सहित हमें अवश्य वापस मिलने वाला है। कभी दुख के क्षणों में अपने को अलग थलग पाओ तो एक बार आत्मनिरीक्षण अवश्य कर लीजिएगा कि क्या जब अब
जब मेरे अपनों को अथवा समाज को मेरी जरूरत थी तो मैं उन्हें अपना समय दे पाया था। कहा है कि हम दूसरे से तो बहुत अपेक्षा रखते हैं, लेकिन कहा हम दूसरों को कुछ दे पाए थे? कहा किसी के दुख में मैं कभी सहभागी बन पाया था? आपको अपने प्रति दूसरों के उदासीन व्यवहार का कारण स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। कभी जीवन में अकेलापन महसूस होए लगे और आपको अपने आसपास कोई दिखाई न दे जिससे मन की दो चार बात करके मन को हल्का किया जा सके, तो आपको एक बार पुनः आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। क्या आपकी उपस्थिति कभी किसी के अकेलेपन को दूर करने का कारण बन पाई थी अथवा नहीं? अपने आप चिंतन कीजिएगा, आपको अपने एकाकी जीवन का कारण स्वयं समझ आ जाएगा। श्रीमद् भागवत जी की कथा में हम लोग गाते हैं कि देवी द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण को एक बार एक छोटे से चीर का दान किया था और समय आए पर आवश्यकता पड़ने पर विधि द्वारा वही चीर देवी द्रौपदी को साड़ियों के भंडार के रूप में लौटाया गया। सुना है ना आप सबने? तो अच्छा बुरा, मान अपमान, समय साथ, दुख सुख के जो कुछ भी आपके द्वारा बांटा जाएगा देर से सही, मगर एक दिन आपको दोगुना होकर मिलेगा जरूर, ये तय है। तो आपको डिसाइड करे का है, का दे का है, वही लौट के आने वाला है। सूर्योदय के लिए सूर्य को अंधेरे से, हरियाली के लिए वसंत को पतझड़ से, और गंगा स्वरूप होने के लिए एक नाले को कंकर पत्थरों से टकराना अथवा लड़ना ही होता है। ठीक इसी प्रकार बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए मनुष्य को बुरे दिनों से अवश्य लड़ना पड़ता है, अथवा तो बुरे दिनों का सामना करना ही पड़ता है। प्रभु श्री राम ने लंका को जीता, मगर जीतने से पहले कितनी कितनी विषमताओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आप सब तो जानते हैं ना। पांडवों ने महाभारत युद्ध जीता अवश्य, मगर उसके मूल में भी अनगिनत कठिनाइयां और विपत्तियां ही छुपी हुई हैं। निसंदेह जीवन यात्रा ऐसी ही है। यहाँ पर किसी चीज को वृक्ष बनने के लिए एक लंबी अवधि तक सर्वप्रथम जमीन में मिट्टी के नीचे दबना होता है। समय आने पर वो बीज अंकुरित तो हो जाता है, मगर उसके बाद भी कभी तीखी धूप तो कभी कड़ाके की सर्दी का सामना करते हुए न जाने का क्या विषमताएं अपने ऊपर झेलनी पड़ती है। यही तो जीवन है, यही तो प्रकृति है। धीरे धीरे वो बढ़ने जरूर लगता है, मगर यहाँ भी पग पग पर उसकी डगर आसान नहीं होती है। कभी आंधे, कभी तूफान, कभी ओलावृष्टि, तो कभी अतिवृष्टि का सामना करते हुए वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष का रूप ले चुका होता है। अब कभी अपने पत्तों द्वारा, कभी अपनी टहनियों द्वारा, कभी अपनी लकड़ियों द्वारा, कभी अपनी शीतल छांव द्वारा, तो कभी अपने मधुर फलों द्वारा परोपकार और परमार्थ करके एक वंदनीय और सम्मानित जीवन जी पाता है। याद रखिएगा, दिन बुरे हो सकते हैं मगर जीवन नहीं। धैर्य, साहस, सावधानी और प्रसन्नता का कवच परिस्थितियों को भी आपका दास बना सकता है। जो डटेगा वही टिकेगा और वही बढ़ेगा। समझ गए? तो तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। हमारा पहला मंदिर ये कोई और नहीं बल्कि हमारा शरीर है। हम इंसानों को भगवान की अवधारणा सिखाई जाती है, सही या गलत। हम गायों के घर आने तक बहस कर सकते हैं, ये हमारी दुनिया का एक सच है। कुछ लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, दूसरों को विश्वास करना सिखाया गया है और वे इसका धार्मिक रूप से पालन करते हैं। इस मुद्दे पर हमारा मत अलग है। हमारा पहला मंदिर हमारा शरीर है, हमारी आत्मा हमारा देवता है, ईश्वर का अंश है। हम प्रार्थना करने के लिए अपनी आत्मा के साथ संरेखित करते हैं। जो लोग इस प्रक्रिया से, कर्मकांड से गुजरते हैं, वो मुझसे सहमत नहीं हो सकते। हमें पृथ्वी पर अपनी यात्रा के दौरान अपनी आत्मा को अपने शरीर में रखना है। इस मंदिर के रख रखाव के लिए केवल श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे महान आकार में

सुंदरता पंखुड़ियों से होती है, परंतु यदि फूल की धुरी ही खराब हो जाए तो पंखुड़ियां टिक नहीं पाएगी। इसी प्रकार हमारा जीवन का विभिन्न संबंध संपर्क जीवन रूपी पुष्प की सुंदर पंखुड़ियां हैं, परंतु ये सब आपके जुड़ी है। यदि आप संपूर्ण संतुष्ट व स्वस्थ नहीं तो ये सब भी मुरझा जाएगी। अतः जीवन से सब अंगों को संवारने से पहले स्वयं का वास्तविक रूप संवारना बहुत आवश्यक है। ये सही है कि जरूरतें इंसान को एक दूसरे से जोड़ के रखती है, लेकिन जब तक आपस में व्यवहारिक सरलता सहजता नहीं होती, जरूरतें भी संबंध की पकड़ को ढीली कर देती है। लाइफ में हर समस्या के अंदर उपहार अवश्य होता है, इसलिए कभी समस्या का सामना भी करना पड़े तो निराश नहीं होना चाहिए। का पता जो अंत हम अपेक्षित कर रहे हों अंत उससे भी अधिक सुंदर हो। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने के गुण का अनुभव करें और सदैव आशावादी रहें। हमें नेकी करने के बदले में कुछ पाने की आस नहीं रखना चाहिए, इससे आपका किया पुण्य घट जाता है। नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात नेक कर्म करके दरिया में बहा देना, उसे किसी को पता ना चले। एक हाथ से दे तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। कहे कि जितना चुपचाप दिया जाए उतना ही अच्छा है, जिसे पता चलना होगा उसे खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा दान ही वास्तव में शुद्ध होता है, इससे ही दानी व्यक्ति प्रसन्नचित होता है। उसके अंदर एक फैलाव आता है, प्रेम से भरपूर हो जाता है, वास्तविक आनंद की महसूसता होती है। जबकि अधिकांशतः लोग कुछ देते हैं तो उसके पीछे सोचते हैं कि हमें प्रशंसा मिलेगी, नाम मनसान बढ़ेगा, प्रसिद्ध होंगे, लेकिन ये दान नहीं ना है। ये भाव हमें बोझ उत्पन्न करता है, अहंकार बढ़ाता है। परमात्मा पर पूर्ण भरोसा, अपने कर्मों पर विश्वास, सकारात्मक सोच के साथ सदैव खुश रहना, ये सारी बातें आपकी आंतरिक ऊर्जा को निरंतर गतिशील और बढ़ावा देती है। तो क्या करिएगा, जान गए ना। चलिए ही बात पर एक गीत और सुन लेते हैं, के बाद फिर आपसे बताती है। सुनिएगा गीत, छोटा सा विराम ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं।

0: जल शक्ति है, जल जीवन है, जल है तो कल है। आइए सुनते हैं रेडियो मधुबन पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्या कहते हैं।
1: सामान्यतः हमारे परिवारों में क्या होता है, कोई बच्चा अगर एक्सट्रावेगेंट हो जाता है तो बहुत सारा खर्चा करने लगता है, तो क्या कहते हैं कि जो है पैसे को पानी की तरह बाहर है, मतलब पानी को हमने ऐसा मान लिया है कि इसका कोई मोल नहीं है। अब हमको इस मिथक को तोड़ करके समाज के मन में इस बात को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि पानी को पैसे की तरह बचा करके काम में लेना है। और अगर हम इसके लिए कामयाब हो जाएंगे तो हमारे देश में जितने प्रकृति ने संसाधन दिए हैं, आने वाले कई शताब्दियों तक हम देश को जल समृद्ध बनाए रख सकें।
0: रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे थे जल है तो जीवन है, जल बचाएं जीवन बचाएं।
2: देखिए भाई, जिंदगी के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो, चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो, कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। और जब ऐसा आप करिएगा तो देखिएगा अपने आप रास्ते खुलते हैं कि नहीं। ये एक ऐसा युग चल रहा है जिसमें धर्म के नाम पर लड़ने को सभी तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कौनो तैयार नहीं है। हमें ये बात पर ध्यान देकर पड़ेगा। हसरत पूरी ना हो तो ना सही, ख्वाहिश करना कोई गुना तो नहीं है। चिंता ने चिता से मुस्कराते हुए ये कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को। कितनी अच्छी बात है ना, चिंता इंसान को जीते जी जलाती है और चिता तो कहती है कि मैं मुर्दों को जलाती हूँ और तू जिंदों को। किरदार शिद्दत से निभाइए जिंदगी में, कहानी तो एक दिन सभी को बनना ही है। जब चले जाएंगे तो कहानी ही ना बन जाएगी, और कहाँ याद करेंगे लोग, जैसे कहानी में कोई पात्र को याद करते हैं ऐसे कभी कभार आपको याद करेंगे। आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। बड़ा हुआ तो का हुआ, जैसे पेन खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा पर काहे में है, आपकी लंबाई चौड़ाई में नहीं, विनम्रता में। समय बहरा है, कभी किसी को नहीं सुनता, समय बहरा है कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। ये बात को भी ध्यान रखिएगा। दिल से साफ रहोगे तो बहुत लोगों के खास रहोगे, ये बात भी बहुत पते की है। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियाँ भी जरूरी है। कई बार बहुत सच्चाई से भी का हो जाता है, मन उदास हो जाता है। कभी कभी गलत फहमी भी जी लिया करिएगा भाई, वो भी बहुत सुख देती है। सूर्योदय की हर्षित बेला पर आपको सभी को हम बहुत याद करते हैं और कहते हैं, गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन में कुछ ऐसा ही है, समझ गए ना। एक उम्र होती है जब सिर्फ रूप रंग महत्वपूर्ण होता है, एक उम्र होती है जब विचार महत्वपूर्ण होते हैं, और एक उम्र के बाद सिर्फ साथ महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। ये बात को भी याद रख लीजिएगा, नहीं तो छोटी छोटी बात में उबलते पानी की तरह भाप बन के उड़ गए। बस जिंदगी तो और चाहेंगे ही, लोग भी चाहेंगे कि ऐसी आप बलबला जाएं और हवा बन के भाप बन के उड़ जाएं। धैर्यता, शांति, विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। कहे कि उसके बगैर ना तो प्रेम संभव है ना तो प्रार्थना। हमेशा खुश रहा करिए, कहे कि खुशियों का संबंध दौलत से नहीं दिल से होता है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं जीवन का दस्तूर है और हर कोई इसका मुक्त भोगी है। बात करूं तो बहस, चुप रहूं तो घमंड, बात करूं तो बहस, चुप रहूं तो घमंड। आजकल हमारी जिंदगी कुछ ऐसी ही चल रही है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके हर तकलीफों का ब्रह्मास्त्र है। जीवन एक विद्यालय है, इसमें कठिनाइयां, परीक्षा और समय शिक्षक का काम करते हैं। तो भैया परीक्षा में पास होए का है तो समझ के जीना होगा। अच्छे जरूर बनिए लेकिन साबित करने में अपना समय मत गवाइए। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए कि नहीं? कहे कि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाए के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग पूछ ही लेते हैं, है कि नहीं? दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो। कहे कि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अभी उत्तम लोग संकट आए तो भी शुरू किया हुआ काम नहीं छोड़ते। आपका जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए परीक्षाएं आएगी, लेकिन आप उन परीक्षाओं को देखकर अपना काम, अपना लक्ष्य मत छोड़िए। और हमेशा याद रखिए, क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। इससे बचिएगा और जितना बचिएगा उतना अच्छा रहेगा। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या फिर रिश्ता। ये कौन कह रहा है पता है? अब्दुल कलाम जी कह रहे। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। आपको तय करना है क्या करे का है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ के लाता है जो बेवजह है। खुपरिया में कोनो बात हो गई होगी छोटी मोटी, लेकिन बार बार वही याद कर करके आपका सामने समस्या बना लेता है। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। इच्छाओं को कम कर दीजिए, जिंदगी वैसे ही हल्की है। इच्छा ही तो इंसान को अच्छा नहीं बनने देता। और ही चाहिए, और ही चाहिए, और ही चाहिए। अरे चुपचाप बैठ जाइए ना, भगवान जौन दिया उसमें संतुष्ट रहिए, अपने आप जीवन में शांति रहेगी। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, देखिएगा भाई अपने आप आपकी जिंदगी में हर कुछ वैसा ही घटित होगा जैसे आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए फिर जो कहा कि इन बातों को जरूर याद रखिएगा। छोटी छोटी बात कहते हैं लेकिन आप सब तो समझते हैं ना इन छोटी बातों में कितना गहरा अर्थ होता है। और जो इस बात को समझ ले तो उसने सब कुछ समझ लिया, और जिसने सब कुछ समझ लिया तो अपने आप जीवन उसका तो बेहतर हुई भी करेगा ना। और यही तो पर्व पंडितान आप सबके लिए दुआएं करती है। तो देखिए भाई, जब भी कोई समस्या आए तो ये तीन काम करें। समस्या का सामना करें, उससे लड़ो और समस्या को समाप्त करो। आत्मशक्ति पर विश्वास करें और आप ये कर सकते हैं। मन कमजोर तो परिस्थिति समस्या, मन कमजोर तो परिस्थिति समस्या, मन स्थिर तो परिस्थिति चुनौती, और मन मजबूत तो परिस्थिति अवसर। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोनो बाहर से खूबसूरत आता है तो कोई भीतर से। इस तरह मुस्कुराने की आदत डालिए कि परिस्थिति भी आपको परेशान कर करके थक जाए और जाते जाते जिंदगी भी मुस्कुरा कर बोले आपसे मिलकर खुशी हुई, है कि नहीं? यदि फूल को भगवान के गले की माला बनना है तो उसे अपने पेट में सुई की नोक से छेद करवाना ही पड़ेगा। सोने के टुकड़े को यदि भगवान के गले का हार बनना है तो उसे भट्टी में गलना ही पड़ेगा, और चंदन को भगवान के माथे पर लगना है तो उसे पत्थर पर घिसना ही पड़ेगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य को धर्म पर चलना है तो उसे कठिनाइयां सहते हुए त्याग के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। अर्थात हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना या सहन भी करना पड़ेगा। ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हर पल उनको याद करें, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये वही कमाई है बंदे जो काम तेरे आएगी, जन्म जन्म की भटकन से तुमको मुक्त कराएगी। मुश्किल हो हालात तो याद तुम आते हो, मुश्किल हो हालात तो याद तुम आते हो, मन हो उदास तो याद तुम आते हो। यूं तो जिंदगी में अपनों की बहुत भीड़ है बाबा, पर जब जरूरत पड़ती है तो साथ तुम ही निभाते हो। ऐसा परमात्मा जी को बोलिए मन की बात, जब कहीं अब ऐसी बात आए तो, भावना आए तो प्रकट करिए, परमात्मा को अच्छा लगता है। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ऐसा अनुभव कहता है। अच्छे जीवन का आकलन ना ही अंग्रेजी बोलने से, ना ही अच्छे कपड़े पहनने से, और ना ही ठाट बाट वाली जीवन शैली से होता है, बल्कि अच्छे जीवन का आकलन तो ये है कि कितने लोगों के चेहरे खिलते हैं जब वो आपका नाम सुनते हैं। तो देखिए, छोटी छोटी बात है लेकिन ही जीवन को हमारे श्रेष्ठ बनाती है। त्याग और नाश ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वयं की इच्छा से किसी वस्तु अथवा पदार्थ को छोड़ना त्याग, तथा स्वयं की इच्छा ना होते हुए किसी वस्तु अथवा पदार्थ का छूट जाना नाश कहलाता है। प्रकृति का अपना एक शाश्वत नियम है, और वो यही कि मान पद प्रतिष्ठा वैभव कुछ भी और कहीं भी यहाँ शाश्वत नहीं रहता। ये दुनिया प्रकृति का नियम है, हर चीज परिवर्तन होती है। सूर्य सुबह अपने पूर्ण प्रकाश के साथ उदय होता है और शाम होते होते उसका प्रकाश क्षीण होने लगता है, और दिन में प्रचंड प्रकाश फैलाने वाला वही सूर्य अस्तांचल में कहीं अपनी रश्मियों को छुपा लेता है। रात्रि को चंद्रमा अपनी शीतलता बिखेरता है, मगर वो भी सुबह होते होते कहीं प्रकृति के उस विराट आंचल में छुप सा जाता है, सदा कुछ भी नहीं रहने वाला। इसलिए बांटना सीखिए, चाहे प्रेम हो, सम्मान हो, समय हो, खुशी हो, धन हो, अथवा कोई अन्य वस्तु। जिन फलों को वृक्ष मारा बांटा नहीं जाता, जिन फलों को वृक्ष द्वारा बांटा नहीं जाता, एक समय उन फलों में अपने आप सड़न आने लगती है, और उस सड़कर वृक्ष को भी दुर्गंध युक्त कर देते हैं। यही प्रकार समय आने पर प्रकृति द्वारा सब कुछ स्वतः ले लिया जाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप बांटकर अपने यश और कीर्ति की सुगंधि को बिखेरना चाहते हैं, या संभाल कर संग्रह और आसक्ति की दुर्गंध को रखना चाहता है। आपकी अपनी इच्छा है, आप जैसा चाहे। दो हाथ से हम 10 लोगों को भी नहीं हरा सकते, परंतु दो हाथ जोड़कर करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। शांति एवं स्थिर दिमाग जीवन की प्रत्येक लड़ाई का ब्रह्मास्त्र है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल। अगर वो साफ नहीं तो चमकता चेहरा कौन काम का। होड़ करनी है तो संस्कारों की करो, फैशन का कहा है वो तो आती है जाती है। जो स्नेह हमें दूसरों से मिलता है वो हमारे चरित्र का ही एक तोहफा है। ज्ञान का मनन, चिंतन और ईश्वरीय सेवाएं ही हमारे पुण्य का खाता बढ़ाती हैं, जिससे संस्कारों में परिवर्तन के लिए हमें हिम्मत और उल्लास मिल जाता है और परिवर्तन संभव हो जाता है। कहते हैं कि जीवन में जो कुछ करो, जितना मर्जी धन खर्च करो, सबसे सहयोग लो वो, पर जीवन से मुसीबतें तब तक समाप्त नहीं होती जब तक हमारा स्वयं का अंदर व्यवस्थित नहीं है। काहे कि ध्यान रहे कि हमारे अंदर का अस्त व्यस्त होना ही इस जीवन की हर समस्या का मूल कारण है। इसलिए हमें सर्वप्रथम स्वयं को ही भीतर से व्यवस्थित करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। पीड़ा सारी मिट गई, लिया जो प्रभु का नाम, गजब कृपा है आपकी परम परमेश्वर भगवान। हर नई सुबह नए जीवन के समान होती है, इसलिए बच्चा बनकर हर सुबह का मजा ले। दिन में एक ईमानदार नौजवान की तरह पूरी मेहनत से काम करें और सायंकाल में एक समझदार बुजुर्ग और शांत चित संत की भांति पूरे दिन में किए कर्मों का मनन करें। कहते हैं कि जन्म के समय मात्र सांसें होती हैं, नाम नहीं, और मृत्यु के समय केवल नाम होता है, सांसें नहीं। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ध्यान रहे कि अपनी सोच को ऊंचा करने मात्र से ही हर बड़ी चीज छोटी दिखने लग जाती है। काहे की ऊंचाई से हर चीज छोटी लगती है। तो आइए हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाए, ये बात पर चलिए गीत सुन लेते, फिर और समय बचा तो बतियाएंगे।
3: धर्म का मूल पाप मूल है अभिमान, तुलसी दे आमत सोड़िए।

0: कितना मजबूत होगा वो इंसान जो अंदर से टूटकर भी दुनिया के सामने हंसता है ना बात। फिर से कहते हैं, मेहनत उसकी लाठी है, मजबूत उसकी काठी है। मेहनत उसकी लाठी है, मजबूती उसकी काठी है, विकास की वो नींव है, उसका जीवन सीख है। जिनकी गैर मौजूदगी में हर मंजिल दूर है, जो आपके ख्वाबों को पूरा करता वो मजदूर है। क्यों ना आज से हम भी कड़ी मेहनत कर अपने और दूसरों के ख्वाबों को पूरा करें। भाषा मानव का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। त्याग और प्रेम के पथ पर चलकर मूल न कोई हारी, हिम्मत से पतवार संभालो फिर कैसे रहेगा दूर किनारा। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा, हम रोए ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। कहते हैं कि हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ये भी सत्य है कि हर सफलता का कारण भी निर्विघ्न कोशिश ही होती है। ध्यान रहे कि दूसरों पर भरोसा करते समय होशियार रहिएगा, क्योंकि देखने में फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसको महत्व आप दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोनो महत्व ही ना हो। कैसा है जिंदगी का तेरा ये फलसफा, एक इंसान के इस दुनिया में आने की खबर तो सबको पहले से ही हो जाती है, मगर जाने की खबर उसके चले जाने के बाद ही पता चलती है। इसलिए धन्यवाद करें उस सृष्टि रूपी रचनाकार परमात्मा का, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना ऐसे अद्भुत तरीके से की है कि हर इंसान अंतिम समय तक जीने की राह पर अग्रसर रहता है। कहते हैं कि एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले ही आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। ध्यान रहे कि बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है ये जिंदगी, ध्यान रहे कि बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है ये जिंदगी भी, पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। इसलिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। चिंता संत के जीवन में भी होती है और चिंता संसारी के जीवन में भी होती है, मगर दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क भी होता है, और वो ये कि संत परमार्थ के लिए चिंतित रहता है और संसारी स्वार्थ के लिए। संसारी स्वयं के लिए चिंतित रहता है तो संत समष्टि के लिए चिंतित रहता है। संत और संसारी के बीच का जो भेद होता है वो कर्मगत नहीं अपितु भावगत होता है। दोनों में बाह्य स्थिति का नहीं अपितु अंतः स्थिति का भेद होता है। संसारी भी क्रोध करता है और संत भी क्रोध करता है। संसारी लोभ करता है और संत में भी लोभ देखने को मिल जाता है। संसारी भी अर्जन करता है और संत भी अर्जन करता है, और तो और संसारी अगर संग्रह करता है तो संत भी संग्रह करता है, मगर दोनों में क्रिया भेद शून्य होने के बावजूद भी भावों में जमीन और आसमान जैसा अंतर निहित होता है। प्रकृति का नियम है कि खाना जो हम खाते हैं एक आध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही बाहर वापस निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। लेकिन कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि आदि, जिनको हम अपने अंदर दिनों, हफ्तों, महीने और सालों तक रखे रहते हैं, यदि नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। मनमानियां तो बचपन में होती थी जनाब, अब तो हर बात पर मन को ही मारना पड़ता है कि नहीं। अब अंत में यही कहेंगे, मीठा झूठ बोलने से लाख गुना बेहतर है कि कड़वा सच बोल दिया जाए। ऐसा करने पर हमें सच्चे दुश्मन भले ही मिल जाएंगे, परंतु झूठे दोस्तों से मुक्ति मिल जाएगी। पुरानी कहावत है कि जाहिल के साथ तख्त पर बैठने से बेहतर है किसी ज्ञानी के साथ फर्श पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि क्रोध, पछतावे, चिंता और कुरन में अपना समय बर्बाद ना करें। ये जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है, परंतु यदि खुश और मस्त रहें तो इस जीवन में सुख भी अपार मिलते हैं। ये कड़वा सत्य है लेकिन सही भी है। जीवन में आजमा कर देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन की यात्रा आरामदायक हो तो अपेक्षाओं के सामान को कम करें, संतुष्ट मणि बन संतुष्टता का अनुभव करें। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं न ही उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। इतनी इस बात याद रख लीजिए, बाकी तो सब कुछ ठीक है। रिश्ता चाहे कोई हो, एक बात पक्की है, जिनसे हम आशा करते हैं वही जिंदगी का तमाशा करते हैं। और जब ये बात समझ आ जाएगी तो आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाहकर भी आपको आपके लक्ष्य से दूर ना कर पाए। दवा सिर्फ दवा की बोतलों और गोलियों में नहीं होती। व्यायाम दवा है, सुबह की सैर दवा है, उपवास दवा है, चिकित्सा दवा है, परिवार के साथ भोजन करना दवा है, हंसी और हास्य भी दवा है, गहरी नींद भी एक दवा है, एक दोस्त का साथ मिल जाना दवा है, हमेशा खुश रहना ही दवा है, सकारात्मकता ही दवा है, नियमित योग करना भी दवा है, कुछ मामलों में मौन और एकांत दवा है, और एक अच्छा दोस्त एक अचूक दवा की दुकान है। चलिए ही के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।
1: ओम शांति। मैं हूँ शान और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गाँव और अंचल में जाते, सभी वर्गों से मिलते, तो आज हमें खुशी है क्योंकि सरकार का जो मंशा है आसपास गतिविधि को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देती है, और इस मंच का फायदा आज बच्चे लेंगे क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे महान होते हैं और बच्चे शिकलियत होते हैं और मीठे होते हैं। आज राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा जो कि बॉर्डर में पहुंचे रेबर ब्लॉक और अबरोड ब्लॉक का लास्ट ग्राम पंचायत, और हर साल इस स्कूल में आते हैं, तो आज बच्चों को एक मंच मिल रही। सभी बच्चे बच्चों के हिस्सा लेंगे क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचाने के लिए आज पहुंचे। सब हाथ हिलाओ, वेरी गुड। सभी बच्चे हाथ हिला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं क्योंकि हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे परिया है, तो अपना नाम कौन सा क्लास और कौन सा फल से आते हैं बताएंगे।
1: मेरा नाम आरोही कुमारी है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी एज 14 साल की है।
0: वेरी गुड। और आपका मम्मी पापा क्या करते हैं?
1: मेरे मम्मी पापा घर पे ही रहते।
0: खेती बाड़ी है?
1: नहीं सर।
0: पशुपालन?
1: नहीं।
0: क्या करते हैं पापा?
1: मेरे पापा मंदिर में रहते हैं।
0: मंदिर, अरे वाह, मंदिर मस्जिद गिरजा घर को हम कभी भूल नहीं पाते, वहाँ प्रार्थना होता है। और बड़े होकर क्या बनेगी?
1: बड़े होकर टीचर बनूंगी।
0: वेरी गुड, मैम बनेंगे, वाह वेरी गुड। नेक्स्ट, अपना नाम?
2: मेरा नाम मीना कुमारी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती।
0: हाँ, और
2: मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, मैं 14 साल की हूँ।
0: और बड़े होकर क्या बनेगी बहन?
2: टीचर बन।
0: टीचर, बट टीचर क्यों? क्योंकि टीचर में मजा आता है पढ़ाने। आज पढ़ रहे हैं और कल पढ़ाएंगे। नेक्स्ट,
3: मेरा नाम है सोनिया कुमारी, मैं 9 क्लास में पढ़ती हूँ, मेरे माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं।
0: और कौन सा फल से आते, कौन सा गाँव, कहाँ से?
3: बहादुरपुरा।
0: ओके, नेक्स्ट।
4: मेरा नाम मीना कुमारी, मैं 11 क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं और मेरे गांव का नाम भातेपुर।
0: वेरी गुड।
5: मेरा नाम दुष्की कुमारी है, मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं।
0: आपको आज क्या ज्ञान मिला?
1: मुझे आत्मा और शिक्षा और सभी का ज्ञान मिला आज।
0: तो इसको फायदा लेने से फायदा होगा?
1: जी।
0: फायदा होगा?
1: जी।
0: वाह, चलिए एक प्रस्तुति होगा, प्रार्थना के रूप में एक प्रस्तुति सुनाओ।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति। और हर स्कूल में, हर विद्यालय में जो जाते हैं प्रार्थना सत्र में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और जब रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर पहुंचता है तो इस तरह कार्यक्रम में जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते बच्चे बहुत खुशी लगता है, क्योंकि उनको एक मंच जो आवश्यकता था आज मिल रहा, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, पहला बार आए और रेडियो में अपना आवाज को बुलंद से बता पा रहे। जब इनकी आवाज जब आकाशवाणी में सुनेंगे बच्चे का, मम्मी पापा भाई लोग बहन टीचर सुनेंगे, ये तो हमारा गुड़िया का आवाज है, ये हमारा दोस्त का आवाज है, तो कितना खुशी लगेगा, लगेगा ना सभी बच्चों को?
1: हाँ जी।
0: क्या धीरे से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी।
0: हाँ, यही हुई ना बात, हमेशा हाँ जी का पार्ट पक्का करना है, कोई भी बात हो हाँ जी क्या बोलेंगे?
1: हाँ जी।
0: बड़े जो बोलेंगे आपका भलाई के लिए बोलते हैं माँ बाप। बड़े में कौन कौन आता है? बड़े में कौन कौन आता है बता देखिए बहन।
2: पिताजी, माता जी, चाचा जी, मामा जी, चाची जी, मामी जी,
0: और
2: दादा दादी, नाना नानी।
0: हाँ, इसको कैसे बोलेंगे भाई? दादा दादी, नाना नानी, चाची, काकी, काका, बड़ा भैया,
2: भैया, बहन,
0: बहन, और हमारा शिक्षकगण, टीचर्स गण, ये भी गुरुजन हमारा बड़े होते, तो उनका बात मानना
1: चाहिए,
0: मानना
1: चाहिए,
0: क्योंकि वो आपका भलाई के लिए हमेशा सोचते हैं, भलाई के लिए
1: सोचते हैं।
0: कौन कौन सोचते हैं भलाई के लिए आपका?
2: टीचर्स, मम्मी पापा,
0: मम्मी पापा, बड़ा भाई, किसका किसका, छोटे भाई बहन भी सोचते हैं बड़ों के लिए, है ना? छोटे भाई बहन भी बहुत होशियार होते हैं, वो भी हमारा दीदी बड़ा भाई अच्छा बने ऐसे सोचते हैं ना
1: जी।
0: हाँ, बहुत अच्छा लगा। और बड़ों के क्या बनेगी? टीचर
2: जी।
0: इसलिए मेहनत क्या करती तुम?
2: पढ़ाई करते।
0: कितना घंटा?
2: दो
0: घंटा से नहीं चलेगा, और
2: करते और स्कूल में 6 घंटा,
0: 6 घंटा, 8 घंटा हुआ, 24 घंटा से 8 घंटा का। और कितना समय कहाँ क्या करती तुम?
2: और खेलते,
0: सोते, खाते, पीते, खाते हैं खाना, दिन में खा कर दिन को गवा देते हैं, सो सो कर रात को, तो पढ़ते कब?
2: दोपहर को पढ़ते।
0: हाँ, होशियार बच्चे, बोला हम पढ़ते हैं सर, दोपहर को हम पढ़ते हैं, आप ऐसे कैसे बोल देंगे? दिन में हम खा कर सोते हैं, हम स्कूल जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और पढ़ाई भी अच्छा करते हैं। विद्यार्थी जीवन में 2 घंटा नहीं, 4 घंटा मेहनत से पूरा लगाएंगे ना विद्यार्थी जीवन में, ये 5 साल, इसके बाद आपको तो 90 साल पैसा ही पैसा मिलेगा, क्योंकि नौकरी करेंगे, ये 5 साल थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, करेंगे बच्चे
1: जी?
0: जब तक कॉलेज है तब तक तो पढ़ाई करना करना करना, बस नंबर लाना है, मेहनत क्या करेंगे?
1: मेहनत।
0: जोर से बोलो,
1: मेहनत,
0: मेहनत, 20 नाखून लगाकर नीचे से ऊपर तक इतना मेहनत करेंगे तो हम जरूर क्या लेंगे? सर्विस। क्या लेंगे?
1: सर्विस,
0: नौकरी लेंगे, है ना? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तुम क्या बोलेंगे? बड़ा होकर टीचर तो बने, इसलिए मेहनत करती है तुम
3: जी।
0: फिर नाम बताओ।
3: हीना कुमारी।
0: हीना, मेहनत करती
3: जी।
0: वेरी गुड, ये तो जी जी बोल रहे, बहुत अच्छा, सभी को धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते। कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी, आज बच्चों का साथ, हम भी बच्चे बनकर उनका साथ रूबरू हो रहे थे और बच्चे प्रार्थना सत्र में ही महात्मा जैसे पूरा गीत गाए हैं। और ऐसे हर स्कूल में होता है, परमात्मा का याद में खुद को आत्मा समझ कर गीत गाए तो बहुत अच्छा हो गया। और इस कार्यक्रम को कॉम्पिटिशन जैसे बच्चियों का आवाज के बाद अभी बच्चे भी देंगे, छोकरियों का आवाज के बाद छोकरा भी कम नहीं, वो भी अपना आवाज को देंगे, अपना अपना नाम और कौन सा गांव में आते हैं और बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे उनसे भी सुनेंगे। जब उनका आवाज से लक्ष्य रहेगा तो लक्षण दिखाई देगा। और चलिए सभी को स्वागत करते हैं एक एक को। आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो हेलो, अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम प्रकाश कुमार है और मैं बादबुरा गांव का हूँ।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी आवाज तो आप दे पा रहे, आपका आवाज कौन बोलता है, अभी आवाज नहीं है, आपका आवाज तो बहुत मिठास है, सुंदर है और हट्टा कट्टा है। और खेल खेलते हैं?
2: जी खेलते हैं।
1: कौन सा खेल खेलते हैं?
2: कबड्डी।
1: अरे वाह, कबड्डी खेलने से क्या फायदा होता है?
2: सर मजबूत बनता है।
1: हाँ, कौन बोलता भाई, ये पूरा होशियार बच्चा भाई। शारीरिक एक्सरसाइज करेंगे, हमारा स्वास्थ्य तंदुरुस्त होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, बहुत अच्छा। इसे आगे बढ़कर क्या बनना चाहेंगे?
2: टीचर बनना।
1: टीचर ही नहीं तो एक्सरसाइज कर मीन्स पीटीआई साहब बनेंगे, नहीं तो फौजी। हाँ। फौजी भी बन सकते हैं। वेरी गुड, खेल को अपना दोस्त मानना चाहिए। चलिए और एक दोस्त, हेलो, क्या नाम है?
3: मोतीराम।
1: मोतीराम, वाह, मोती तो आत्मा तो मोती है, आत्मा मोती। गांव का नाम पूरा बताओ।
3: बहादुरपुरा।
1: और तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है? दोस्त है
3: जी।
1: क्या नाम बताओ?
3: जगदीश।
1: जगदीश, कौन सा क्लास? 11th क्लास। चलिए, हेलो, नाम बताओ।
4: रमेश।
1: रमेश, रमेश हमारा श्रेष्ठ भाई है और अच्छा काम करता है, उनका दोस्त का साथ आज भी वो अपना बात बता रहे। और तुम्हारा अच्छा फूल, कोई फूल देखा है? फूल का नाम बताओ। देखी
4: कमल।
1: कमल फूल, वाह, कमल फूल सबसे विशेषता है, कमल फूल जैसे बनना है। कीचड़ में रहता है कमल फूल, खिलता है लेकिन कितना उसका कीचड़ नहीं लगता है, लेकिन आगे बढ़ता है, उसका पूरा खुशबू है पद्म जैसे, है ना? वेरी गुड। तुम्हारा नाम?
5: जी सर, मैं बादुरपुर में रहता हूँ।
1: और बड़े होकर क्या बनेगा?
5: पुलिस वाला।
1: पुलिस वाला, वेरी गुड, पुलिस बहुत अच्छा। चलिए हमारे साथ और छोटा सा।
6: मैं विक्रम कुमार हूँ और मैं बादुरपुरा में रहता हूँ।
1: और अच्छा भोजन करते हैं ना? क्या खाते हैं? अच्छा, कौन सा अच्छा भोजन लगता है आपको?
6: दाल रोटी।
1: दाल रोटी।
7: मेरा नाम किशन कुमार, मैं बादुरपुरा में रहता हूँ।
8: मेरा नाम गमा राम है, मैं बादुरपुरा में रहता हूँ।
9: मेरा नाम प्रवीण कुमार है, 11th
1: क्लास में। देखो सभी अपना अपना आवाज को खोल दिए, तो सबको धन्यवाद देते हैं। और तुम्हारे गांव का आसपास कौन सा गांव है? बादुरपुरा का आसपास गांव?
6: सरीफली।
1: हाँ।
6: चनार।
1: चनार। मुंगथला
6: जी।
1: फतेहपुरा।
6: फतेहपुरा।
1: डामपली। साकोड़ा।
10: साकोड़ा,
1: बताते नहीं आप लोग, साकोड़ा और
6: मईखेड़ा।
1: वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

ये गाना गुजराती में जो गाया है, मुझे ऐसी लगने लगी है कि मैं कब प्रभु परमात्मा से मिलूं, और मैं जब तक प्रभु से नहीं मिलूंगी तब तक मुझे चैन नहीं है।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: चलिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आज बच्चों का आवाज पारी पारी ले रहे हैं। सभी को आज एक गुलदस्ता, जैसे सबका आवाज, जैसे सभी फूल मिलकर एक गुलदस्ता बनता है, सभी का आवाज, नाम, गांव और कौन सा क्लास और काम का आसपास क्या है सुनने को जा रहे। तो रेडियो मधुबन आज इनको सभी बच्चों को आज चुप्पी तोड़ रहे हैं, सभी चुप्पी तोड़ के अपना बात को रख रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम में हमारा साथ एक छात्रा है, हेलो नाम बताइए।
2: मेरा नाम है सोनिया कुमारी, मैं बादीपुरा में रहती हूँ।
1: सोनिया बहुत अच्छा। सोनिया और सुरेश तो भरपूर है, हर स्कूल में सोनिया और सुरेश मिलता ही है ना। कौन नाम रखा है सोनिया तुम्हारा नाम?
2: बाप ने।
1: बाप ने क्या नाम बाप का?
2: कानाराम।
1: कानाराम अच्छा।
3: मेरा नाम गीता कुमारी, मैं बादीपुरा में रहती हूँ।
4: मेरा नाम पंकु कुमारी है, मैं 11 क्लास में पढ़ती हूँ, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ।
1: बहादुरपुरा के?
4: मैं बड़ी होकर पुलिस बनूँ।
1: पुलिस, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा है ना। मेहनत करते हैं। पुलिस वाले को देखा है कभी?
4: जी।
1: क्या करता पुलिस? चोर को
4: पकड़ता है।
1: जो बेईमान करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो दुर्नीति करेगा उसको जेल में
4: डालेंगे।
1: नेक्स्ट।
5: मेरा नाम सीता कुमारी है, गाँव का नाम बहादुरपुरा है, मेरा पिता का नाम कानाराम है, माता का नाम अंजा देवी है। मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ।
1: और बड़े होकर क्या बनेगी?
5: डॉक्टर।
1: सीता है ना नाम? वाह। सीता रामायण में है ना महाभारत में? सीता किस में है? सीता
5: रामायण में।
1: रामायण में सीता और राम और सीता, श्री राम और श्री सीता कहते हैं। और महाभारत में द्रौपदी क्या बोलते हैं? सबको अच्छा लगा
6: जी?
1: क्या अच्छा लगा? एक बात बताओ, ज्ञान अच्छा लगा ना, रेडियो अच्छा लगा ना, खुद अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा बोलो? तो अच्छा लगा ना, सब बुरा लगा, क्या अच्छा लगा रे बहन?
6: क्या?
1: ज्ञान अच्छा लगा। ज्ञान माने समझ। समझ में आया
6: जी?
1: समझ में आया
6: जी?
1: तुमको समझ में आया
6: जी?
1: तुम कौन हो, सीता ना आत्मा?
6: मैं आत्मा, सीता मेरा नाम है।
1: वेरी गुड, ये पक्का उत्तर। तुम बोलो।
4: मैं आत्मा, मेरा नाम पंकु।
1: मेरा नाम?
3: मैं आत्मा, मेरा नाम गीता कुमारी।
1: समझ में? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए सभी बच्चों को एक मंच मिल रहा है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: खट।
1: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। बच्चे एक को देखकर दूसरे भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। 40-50 बच्चों को आज मौका मिल रहा है क्योंकि वो सोचेगा भाई मेरा आवाज नहीं है, उसका आवाज आ गया, पंकु का आ गया, सीता का आ गई, किंतु मेरा आवाज, इसलिए वो भी बोलता भाई मेरा भी आवाज होना चाहिए, तब तो गुलदस्ता बनेगा बहादुरपुरा विद्यालय का। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा और छात्राएं उपस्थित होगी। सभी अपना क्लास कौन सा क्लास के और नाम और कहां से बताएंगे। वेरी गुड।
1: मेरा नाम सीमा कुमारी और मैं फतेहपुरा से आती हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: वेरी गुड।
2: मेरा नाम है इनाम कुमारी, मैं बहादुरपुरा में रहती
3: हूँ। मेरा नाम पूजा कुमारी, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ, 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: पूजा नाम बहुत सुंदर है, कौन रखा है पूजा नाम?
3: मेरे पिताजी।
0: घर में कौन कौन है?
3: पापा, मम्मी, बहन।
4: मेरा नाम है तेजल कुमारी।
0: क्या नाम?
4: तेजल।
0: तेजल बोलो। 9th क्लास में। और कौन सा गांव से?
4: सरीफली से।
0: सरीफली, अच्छा,
4: बहादुरपुरा
0: में आता है। और आपका गांव का सरपंच का नाम बता सकते हैं? क्या नाम है? मिश्री देवी। गलबा राम का क्या लगता है?
4: मम्मी,
0: माँ, आई लगता है। गलबा राम सरपंच से पहले, हाँ बता नाम।
5: मेरा नाम पप्पी कुमारी है, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ।
0: वेरी गुड।
6: मेरा नाम आरती कुमार, मैं बहादुरपुरा में रहती हूँ।
0: अच्छा, सबको अच्छा लगा? सभी को अच्छा लगा आज कार्यक्रम? कैसे लगा? सभी को अच्छा लगा होगा ना, बुरा लगा? अच्छा लगा कार्यक्रम। आपका आवाज जब जाएगा तो घर में सुनेंगे सभी बच्चे?
7: हाँ जी,
0: हाँ जी सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? रेडियो पे सुनेंगे, मोबाइल में रेडियो आता है, लिंक आता है, उसमें सुनेंगे शाम को 7 से 8 बजे, ठीक है। और अच्छा, घर में कोई चीज आता है तो पहले किसको मिलता है? मम्मी पापा कुछ नया चीज लेकर, आम आया, खजूर आता है, तो किसको देते? भाई को देते ना, बहन को देते?
4: भाई को।
0: भाई को,
4: बहन को।
0: वाह, भाई और बहन दोनों को देते हैं। किसका घर में? भाई को देते हैं। किसका घर में? बहन को देते हैं। तुम्हारा घर में किसको देते हैं?
8: भाई को।
0: भाई को देते हैं। भाई भाई को क्यों, बहन को क्यों नहीं देते हैं?
8: बहन को भी देते हैं।
0: बहन को भी देते हैं पीछे?
8: हाँ।
0: भाई और बहन में अंतर होना चाहिए?
8: नहीं नहीं
0: होना चाहिए। भाई और बहन एक भगवान का दो फूल है, भगवान का दो फूल है तो बराबर होना चाहिए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों बराबर अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? पढ़ाई में, खाने में, घूमने में, फिरने में, सब में बराबरी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लास्ट प्रस्तुति। हमारा ग्रुप इंतजार कर रहे, जो पहले ग्रुप आए थे वो ग्रुप करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,
1: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और कह सकते हैं अपना लोक भाषा में मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गाँव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते, तो आज इस कार्यक्रम को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मईखड़ा में पहुंचे। आप सबको विदित है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय, ये दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए, विद्यार्थी विकास के लिए, बच्चों का हुनर, बच्चों का टैलेंट, बच्चों का प्रतिभा को, बच्चों का भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच एक स्टेज देती है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर इस स्कूल में विद्यालय में पहुंचे, बहुत खुशी लग रहा है। बच्चों का साथ हम भी बच्चे बनकर उनका साथ रूबरू हो रहे हैं, और सरकार का जो मंच है, आसपास स्कूल हो चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे नरेगा हो चाहे कहीं पर भी, चाहे प्रशासन गांव के संघ हो, सभी के साथ हम मिलकर उनका भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाते हैं। एक खुला मंच है जिस मंच का माध्यम से अपना भाव को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो आज राजकीय विद्यालय में पहुंचे, हमारा सभी छात्राओं को धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, और इसका श्रेय तो संस्था का संस्था प्रधान श्रीमान प्रिंसिपल साहब को जाता है और सभी स्टाफ को जाता है। उनका परमिशन के चलते आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे और बारी बारी सभी का आवाज सुनने को मिलेगा। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ होनहार बच्चे, तो अपना परिचय देंगे और कहां से और कौन सा क्लास में और बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे सभी सुनेंगे। चलिए, हमारा पहला प्रस्तुति के लिए हमारा साथ छात्राएं अपना नाम बताएंगे।
2: मेरा नाम है अनिता कुमारी
1: जी। और कौन सा क्लास?
2: 10th
1: क्लास। और स्कूल का पूरा नाम बताएंगे अनिता? राजकीय
2: माध्यमिक विद्यालय
1: मईखेड़ा, जो कि बादबुरा ग्राम पंचायत में आता है। एक प्रमोशन होकर आज बड़ी स्कूल हो गया, क्योंकि पहले 8वीं क्लास, इसके बाद 10वीं क्लास, इसके बाद 12वीं क्लास, है ना। तो अभी आप कौन सा क्लास में
2: है?
1: 10th में। अच्छा, बोर्ड परीक्षा होगा इस बार, है परीक्षा में बहुत मेहनत करना है। और घर में कौन कौन है अनिता?
2: बाप, आई
1: और भाई बहन है। और आपको पढ़ाई अच्छा लगता है? कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है?
2: विज्ञान।
1: विज्ञान।
3: मेरा नाम दीपिका सोलंकी है।
1: हाँ,
3: मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ।
1: हाँ, अच्छा, आपका अच्छा दोस्त का नाम बताओ, सहेली, जो कि आपका मन का बात उसको बताते, क्या नाम है? सभी सभी बच्चे उनका दोस्त है। चलिए, सब शर्माते, शर्माने से नहीं होगा, क्योंकि सब आत्मा है ना, आत्मा शर्माते है क्या? देह को देखेंगे तो सर ये लड़का ये लड़की ऐसे सोचते हैं। चलिए, एक गीत प्रार्थना सत्र में प्रार्थना गाते ना, प्रार्थना कराओ।

0: मत बैठो।
1: धन्यवाद। लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लास्ट प्रस्तुति। हमारा ग्रुप इंतजार कर रहे, जो पहले ग्रुप आए थे वो ग्रुप करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे रेडियो मनोवन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: नमस्ते। कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए अंतिम प्रस्तुति की हम चल रहे हैं और ये अंतिम पड़ाव में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा बच्चों का जो भावना को लेकर एकल आए हैं हमारा परी, क्या नाम बताए थे फिर आपने?
3: आरोही कुमारी।
2: आरोही, बस आरोही, अवरोही नहीं। आरोही मीन्स ऊपर उठना है, अवरोही मैंने नीचे डाउन। इनका नाम है आरोही, क्या नाम है?
3: आरोही।
2: वाह, कितना सुन, मैंने पहला बार सुना आरोही, है ना? कौन नाम रखा है आरोही?
3: मेरी बहन।
2: आरोही का मतलब क्या जानते हैं ना? आरोही मतलब उठना, चढ़ना, उड़ना। आरोही मतलब चढ़ना। चलिए शुरू करिए।

0: राम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। अंतिम प्रस्तुति में पूरा चार चांद लगा दिए, और जिसका उमंग उत्साह रहता है और एक आध्यात्म जब बन जाता है और उसका घर में पूजा पाठ उनका पापा करते मंदिर में जाकर आरोही, और जिसका चलते वो भी अपना झिझक दूर करके अपना कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी हैप्पी बना दिए, और इस तरह कार्यक्रम में जब इस तरह बच्चिया आएंगे बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे पार्टिसिपेंट करेंगे तो गांव का नाम रोशन करेंगे, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और परिवार का नाम रोशन करेंगे और खासकर खुद का भी नाम रोशन करेंगे। और नाम भी पहला बार इसने नाम सुना आरोही, बहुत अच्छा नाम है। तो जाते जाते सभी को नाम का साथ एक एक बच्चे का जो नाम लिए सभी को धन्यवाद देते सुंदर प्रस्तुति के लिए, और सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिए। ऐसे पहला बार हुआ जो सभी बच्चे अपना आवाज को रेडियो में लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुरा के सभी बच्चों जो कि 9th 10th 11th 12th का बच्चे मिक्स होकर आज बैठे थे, और आत्मसात के आत्म प्रबंधन सेल्फ रियलाइजेशन बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन की आत्मा उन्नति किए, आत्मा अनुसंधान किए, मैंने सेल्फ रियलाइजेशन किए, खुद को महसूस किए। हाँ, ये खुद को महसूस किए। हम सब कौन है? हाँ, देखा समझ में, आत्मा अनुभूति की आत्मा अनुभूति हुआ ना, इसको कहते सेल्फ रियलाइजेशन, और गॉड रियलाइजेशन भी किए, परमात्मा का अनुभूति भी हुई ना। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं आप सबसे इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। अच्छा धन्यवाद, आभार।

0: गाले।
1: वाह भाई नाश्तो केड़ो लाग्यो कंचन।
2: मस्त मस्त रतन मस्त रतारो हमेशा नाश्तो तो बढ़िया ही पे।
1: तो गावरी बाता कार्यक्रम में पाछा अपना सगला श्रोता बंधुओं को स्वागत करा हा। और आपा बात कर रहा हा गेम्स की। मैंने तो आज देख भाई गीत भी याद आयो तो मैंने गेम्स भी याद आ रहा। मैंने स्कूल लाइफ याद आ गई।
2: हाँ वह तो है स्कूल टाइम बहुत अच्छो तो पहला रा समय रा गेम वगैरह स्कूल जानो आनो पूरा दिन यू शाम बैठी ने ओपे देखता के ओपरी सहेली बारे आई है तो बस खेलवा भाग जाता। हमें तो बच्चा डर पे लेट अंधारो बे नोपे तो लेट लेट तक खेलता डरता ही नहीं था।
1: अरे कोई आपने तो आवाज भी नहीं देता कि भाई मोड़ो घर में आओ।
2: पहला रो समय अच्छो तो हमें समय अड़ो हुआ है कि माँ बाप 6 बजे बच्चों ने कहे घर में घुस जाओ।
1: अरे मैं तो क्यों 6 बजे 7 बजे तक बच्चा खेले तो भी बढ़िया ही है। और देख मैंने तो बचपन की बात याद आ रही कि रेत का मंदिर इतना बना था
2: रेत में पाँव गाले बनना मंदिर पसे पाल बना फूलों ती सजाता है।
1: फूलों ती सजाता अंदर आपा बल्ब लगाता अगर बड़ो बनाता तो
2: खूब बच्चों
1: और कोई बिगाड़ देता मंदिर ने
2: तो वन्नी आई बनी है
1: रोन आपा परेशान हो जाता।
2: पर ज्यादा तक है ना मोरे तो मोरे टाइम में है ना मैं लड़का लड़कियों साथ में खेलता मोने तो लड़का खूब परेशान करता। छोरा आता मोरा मंदिर यू पगती तोड़न चले जाता घर बनावता पगती तोड़न चले जाता। पसे मैं चिल्लाता थारे मम्मी ने आवेन कहनो पड़ी तुम्हारा मंदिर तोड़े दी दो पसे पास ही में छोरिया इकट्ठो में मंदिर बनाती।
1: हाँ।
2: पर खूब आनंद आवतो। हाँ खूब अच्छो टाइम तो वो
1: टाइम भी बढ़िया हो और आपने कहीं कहीं नया करवा की इच्छा रहती। अच्छा आज मंदिर यू बनाए तो काले क्या बना
2: तो सीढ़िया बनाता। सीढ़िया
1: मंदिर में चढ़वा की सीढ़िया बनाता बाउंड्री बनाता गार्डन बनाता आजू बाजू पूरी रेत ने फैलान रख
2: देता।
1: रेत वेते वे चिल्लाता रहता और आप रेत में खेला करता और ऊपर कुद का कतरा मारता
2: तो पहला कहतो ही नहीं तो कहता टाबर है खेलवा दो
1: खेलवा दो बस यूज कहता छोरा छोरी रेत मत बिगाड़ो।
2: हाँ बस रेत मत बिगाड़ो। हाँ वही कहता
1: यू कैन परा जाता पर यू स्ट्रिक्ट नहीं औरत था क्यों बिगाड़ो भागो टूंग असन क्या वाला कोई नहीं
2: कोई नहीं तो वनन खुद ने ठाए बच्चा है खेले रिया बस रेत मत बिगाड़ जो बस रेत मत बिगाड़ जो वो डायलॉग बोलता।
1: और मजा भी आता सब मिलन क्योंकि आखिर रेत ने आप चोरी चोरी कर देता सब खेला करता कतरा जना मिलन खेलता कोई केड़ो मंदिर बना रहा कोई केड़ो मंदिर बना रहा पछे एक दूसरा का देखता ने एक दूसरा ने खिजोता
2: खिजोता मारो अच्छो बणियो है मारो अच्छो बणियो। हां पहला रो समय
1: ऊपर रेत का आपा आखा ऊंचा ऊंचा चूनन पछे ऊपर कुदका भी मारता।
2: ऊपर ती कूदता।
1: हां ऊपर कूदता के भाई देखा कौन कतरा नीचे जा सके।
2: हाँ।
1: और कौन कूद सके कूदन बताओ तो बताता अपन मजो भी आता कोई लागती नहीं करती
2: कोई रेती में का लागती गिरता तो ही हाल तो के। हाँ कपड़ा थोड़ा गंदा वेता मिट्टी में भराता घरे जाए मम्मी डांटती है रेती रा वेन आया हो।
1: वो सही है पर अब मम्मी भी डांटती पर जाने नहीं खेली तो झाई कटे है बच्चा बच्ची है तो की करे। जो अपना टाइम का मैंने खेल याद आ रहा के देखो कटा आपा तो मौसम बाबा मौसम आपा खेलता जिन्हें कई बोलता मैं तो भूल गई। या मैंने याद एक पोला जी की पोल खोलो पीछे देखे तो मार खाइयो ऐसा बोलता। हाँ लाइन बना इंजन की ना आता पचे माने पकड़ता हंसकीने पकड़नो सामने ही सामने वाला ने पकड़नो सामने तीसरा नंबर वाला ने पकड़नो
2: जोरती पकड़ता है
1: और पकड़ में नहीं आता तो एक मुक्को मारता
2: खूब अच्छा अच्छा गेम था।
1: जो मने याद आवे कि देखो आपा केड़ा केड़ा खेलता हा अन खेल खेल में आपा ने कतरो सीखो मिल जातो। अपना टाइम में बड़ा ने रिस्पेक्ट करवो धोग लाग कटे भी जाता तो बड़ा बुजुर्ग का आपा धोग लाग जाता
2: लोग लगा में जाता। सही बात है।
1: अब आज बालक कटे भी जाओ तो मोबाइल की बात ही वहां का दिमाग में बस उड़ी। अरे मैं देखे एक जगह पे वे वहां का बच्चा ने माँ बाप को कोई दोस्त को नहीं माँ बाप कह रहा बच्चा आपा बहाने जा रहा तो दादा दादी के धोग लाग तो बच्चा तो बस धोग ही नहीं लागे
2: वो मोबाइल में मस्त।
1: हाँ माँ बाप धोग लाग रहा गले मिल रहा टाबर ने क्यों बेटा धोग लागो दादा के दादी जी के तो कटी झुकवा की जरूरत ही कोई ना बाय बाय दादू
2: मोबाइल रिसी के वा।
1: हाँ अब मोबाइल बोले माँ बाप संस्कार डालो छावे पर बच्चा पे हावी भी हो सको कहिए
2: मोबाइल
1: तो वे सीखो ही नहीं चाहे
2: सीखवा ही नहीं चाहे। सही बात है।
1: माँ पराने अगर डांट डपटाई माता पिता माने झुकाओ छाए तो आधा झुकन लाग गया धो गया चल गया
2: अधूरा। हाँ? तो पूरा झुके ही नहीं
1: पूरा झुके ही कोनी वो भी मजबूरी
2: मजबूरी में वो मम्मी पापा मारी नहीं झुकिया तो।
1: हाँ हाँ बाकी मोबाइल तो निकल ही जत रहे वो गेम। अरे एक मिनट, बेचारा माँ बाप कह, अरे भाई आपने टाइम हो रहा था रखो, एक मिनट कारण 10 मिनट ऐसा खींचे,
2: 10 मिनट ऐसा खींचे, सही बात कह रही है।
1: और तो मैं एक बार देखियो, मैं ध्यान रखियो ये टाबर कई खेले देखू तो सही, एडो कई हमें इंटरेस्ट है जो ये फोन का सिवा यानी दूसरा कोई जीवन ही नहीं दिखे।
2: गेम एक तो मैं हॉबलियो है रतन, पबजी, एक तो बच्चा पबजी खेले। आज तू अगर पाड़ला घर में बैठी है मुंह हटाती और एक बिजोरी आवाज हबलाए, एड़ा एड़ा गेम खेले, मुंह विचार करू कि एड़ा एड़ा फोन में बात करे के कई करे है, तो गेम खेले रही है, एड़ा एड़ा गेम
1: खेले। और मैं तो 4 साल की बच्ची ने देखे क्या कई कर रही, अरे वो तो शॉर्ट्स देख रही, धमाधम शॉर्ट्स में कई आ रहा है, मैंने वो कई ठाको नहीं और बस वो शॉर्ट्स देख रही, मैं क्यों इसमें क्या है मुझे नहीं पता और शॉर्ट्स देख रही। अब बालक ने मतलब वाने कवरी कोई नहीं कि मैं कई वेरो कई नहीं वेरो, पर बस वो देख रही है कि मोबाइल में कहीं कहीं चालनो चाल है।
2: ओ ले देखो
1: वे हंसे जदी वही हंसे
2: और
1: और वाको हंसो बंद तो विको भी हंसो बंद तो मन आश्चर्य हो हो अनि मैं तो कई है ही कोई नहीं, शॉर्ट्स में तो कई का कई बताता रहे, आपने कई मतलब है
2: सही है,
1: पर अब बच्चा समझी कोई नहीं, शॉर्ट देख देख कर खुश है का कि माने 3 साल का 4 साल का बच्चा ने गेम्स कतरे तो ये खुद ही ओपन कर करे, इनका तरह यान डाउनलोड नहीं करता हुए तो बच्चे शॉर्ट्स दे क्या करे।
2: सही बात है, पहला टाइम अच्छो तो पहला तो बच्चों ने फोन रो उठाई नहीं तो कोई लेना ना देना कोई मतलब नहीं,
1: फोन छोड़न टीवी कटे,
2: टीवी कटे में हाँ, टीवी बाद में भी थी पर टीवी देखवारो टाइम इच्छा ही नहीं रहती थी, बस बाहर जाए गेम खेलना अच्छा अच्छा वन में पूरा दिन निकल जातो।
1: अरे मैंने याद आवेगा अपना पड़ोस में दादी जी को पियर बॉम्बे, तो वे बॉम्बे की बात आन करता छुट्टिया में तो जाता, और वे दादी जी कहता और बॉम्बे में तो एडी चीज चाली जिन्हें 100 जना बैठन भी देख सको, तो आश्चर्य वे तो केडी कई चीज है, अरे टीवी
2: टीवी
1: ने कतरा भी बैठन देख सको ना तो वे यू कहता तो मानो आश्चर्य है तो एडी कई चीज है, एडी कई चीज है 100 जना देख सके, अरे अक्कल तो ही कोई ना, तो पांचवी छठी में बना वाला कई अक्कल हो, आश्चर्य हो तो एडी कई चीज है, एडी कई चीज है, टीवी आई तो ठा बड़ी ओ इन्हें तो 100 देखो 50 देखो कतरा भी देखो
2: कतरा भी देखो
1: देख सको, तो आश्चर्य वे तो हो
2: सही
1: का बावजूद भी यदि टीवी घर में आई तो आपने हर चीज थोड़ देखवा देता
2: नहीं नहीं देखवा देता जिन्ने हाथ में रिमोट है वन्नो इक्को हाल है
1: और रिमोट देखो भाई पहले तो बड़ा बुजुर्ग भी कंट्रोल रखता
2: हाँ।
1: समाचार चालू कर देता पचे कटे पहले तो रामायण महाभारत ये सीरियल
2: हाँ, हाँ, चलता
1: ये चालू और बस पचे बंद
2: बस यही
1: पुरानी पिक्चर आती तो कनिक टाइम पे पुरानी पिक्चर
2: मैं तो एडू देखी है रतन, मैं तो बीजो रे घरे जान टीवी देखता,
1: अरे तो घर में नहीं ही जदी आप यूज करता ना आका मोला बच्चा खबर है अपने बाजू वाले मोहल्ला में आई ही टीवी सब जान माँ को दरवाजा खकड़ा खकड़ा माने परेशान कर देता
2: तो पहला मने गुस्सा भी नहीं रहता था ना, हमें करने घरे जानो विचार करनो पड़े वो भी दंदरा जानो वो नींद आराम करतो वेन वरना हाँ। दरवाजो खटखटावनो
1: और अबे तो एक सुई मांगता भी यूं लागे अरे कौन मांगे
2: हाँ।
1: और पहला तो कतरी चीजा भी मांग लेता टीवी देखवा तो आगे घर पहुंच जाता बानू साकल ने बजा बजा करता कतरी बार तुम्हारी सहेली है वेका दादी जी अतरा वे चिल्लाता सका आता ये छोरा छोरी माने तो नेम काम ही नहीं करवा देवे
2: टीवी आरू आई है
1: कहता वो पिक्चर के लिए जाता बच्चे कदी बजे 6 बजे के बजे 5 बजे ही जान
2: वो अनाउंस वेतन आज ये पिक्चर 6 बजे आने वाली है तो टावर तो के आज पिक्चर शाम रे 6 बजे आवी
1: तो 5 बजे वाका घर का बाने सब उबा भेजाता माने याद आवे यार आज अपना घर का बाने से उबर है तो अपन अजीब लागे
2: अजीब लागे अब मैं ओपे विचार करो तो याद आवे ओपे 6 बजे जैन बना दे दरवाजा में खड़ा रहता
1: 5 बजे लाइन लाग जाता
2: तो
1: और वे परेशान भी जाता
2: तो
1: क्योंकि अब 18 जना उबर रहता तो दरवाजा खोलन बैठा देता पचे एडवर्टाइजमेंट जो आती टीवी में आप देखता
2: उठे नहीं कोई नहीं जाता तो
1: कोई नहीं जाता कबनु चालू हुई
2: चालू हुई जितने पिक्चर खत्म नहीं रहती 3 घंटा बैठे रहता बटे
1: 8 दिन में 1 दिन पिक्चर देखवा जाता हुई मैं भी अपने अच्छा खुश हो जाता भाई देखी पिक्चर
2: देखी
1: पर तो ही अपना माँ बाप कहता बस अनी अठवाड़े देख ले अबे अगली बार नहीं देखना
2: हाँ।
1: तो भी आपने मना करता क्योंकि अनी बात ने माँ बाप समझता हाँ ये टीवी देखी तो टीवी में रुचि जाए या कोई शारीरिक मानसिक विकास रुक जाए घर का काम में फर्क
2: पड़ जाए
1: तो आदत नहीं बगाड़ता
2: सही बात है
1: भाई औलाद किन्ने प्यारी को सब प्यारी पर एको मतलब यो थोड़े बच्चा ने जनी रस्ते जावे जावा देवे
2: सही बात है
1: तो समय का साथ में परिवर्तन आयो कंचन, कि आज बच्चा भी नहीं दर पे और माता पिता नहीं दरप लागेगा, अरे ये तो रोई, अरे ये तो
2: रोई, सही बात है।
1: बच्चा खानो नहीं खावे तो वहां मोबाइल बतावे, तो ऐसी आदत पड़ जावे, घना बच्चा मोबाइल देखता जावे खानो खावे,
2: खानो खावे, सही बात कह रही है, फोन बंद तो खानो बंद,
1: फोन
2: बंद खानो ही बंद। ने मैं तो उदो सिस्टम देखियो, मैं तो मोर पास में एडो देखियो मोबाइल वे जितने बच्चों खानो नहीं मांगे, ने मोबाइल बंद दुआ मम्मी भूख लगी है, ओ कैडो सिस्टम है, मैं क्यूँ कोई तो बच्चों खानो खाए जर मोबाइल चालू है, अन बच्चा रो एडो सिस्टम है के मोबाइल चालतो रही जितरे बने भूख प्यास कोई लेना देना नहीं।
1: वे केड़ा बच्चा जो 2-3 साल का वे न वाके खानो खाते जानो और मोबाइल देखते जानो, बड़ा बच्चा के खानो कई लेनो देनो, वाके तो मोबाइल मिल गयो तो वो कहो
2: सब
1: को एहसास ही नहीं वे,
2: भूख को एहसास नहीं,
1: मोबाइल बंद वे इन बच्चे तो भले रात के 11 भी बजे तो हाँ भूख लागी।
2: हाँ
1: सही है, या तो सही कह रही है। तो खैर जो भी है, पर मैं तो यही कहो छाऊ आप आपका टाबर ने फोन कम देवो, और नहीं वह तो समय निकालन आप थोड़ा खेलो, आसपास का बच्चा ने भी भेला करो और वाने सीखो पहला का गेम एड़ा खेलता
2: खेलता
1: भाई, थोड़े आप 8 दिन मेहनत करा ना कंचन
2: तो वे रेगुलर तो खेलता
1: वे रेगुलर खेलता वे जाए भाई। आप सेरा की बात करा, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट में भी नीचे तो खेल के मैदान
2: हो गए,
1: तो एक दूसरा माता पिता हूँ मिलनो बच्चा बच्ची का माता पिता हूँ कि देखो भाई अपना बच्चा एक घर की बात कोई ना कंचन, घर घर में बच्चा सब एड़ा ही हो गया,
2: सब रे एड़ा ऐसे,
1: तो कहते भाई अपना बच्चा ने थोड़ा आपस में मिलन टाइम देवा, या ने थोड़ा गेम सिखावा और या के मोबाइल की आदत छुड़ावा
2: छुड़ावा,
1: तो शायद इको कई निष्कर्ष आ सके। तो आप तो अपनी उम्मीद में ही राम राम करा।
2: सही बात है,
1: क्योंकि टाइम भी हो गया है और बात तो वो करो जितनी ओछी है
2: अंत ही नहीं है।
1: तो बस अपना श्रोता बंधु अबानो तो राम राम करा, अगली बार मैला तो आप जब कंचन थोड़ी
2: ठीक है, राम राम, राम।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस प्रोग्राम को लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक विषय लेकर अपने और दूसरों के संस्कारों को समझना, तो आज हम लोग संस्कारों के साथ साथ अब देखते हैं कि संस्कार में एक चीज आती है कि भाई आपके अगर संस्कार कुछ नेगेटिव है या फिर आपके स्वभाव के अनुसार या समाज सोसाइटी के अनुसार नहीं मेल खाता है तो वहाँ पर परिवर्तन करने की आपकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब इस चीज़ को देखते हुए आज का जो हमारा विषय है संस्कार परिवर्तन की विधि, जिसका कारण हम दूसरों को मानते हैं, तो चलिए इस विषय को लेकर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ हमेशा की तरह राजेश सर हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं। पिछले कुछ एपिसोड में काफ़ी अच्छी बातें आपको एज ए विद्यार्थी आप अगर सुनते हैं तो काफ़ी कुछ आपको इनसाइट मिल रहे हैं। हर एपिसोड में हर विषय हमारा अलग होता जा रहा है, तो आज हम लोग संस्कार परिवर्तन की विधि नंबर 1 समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हम अपना तो जीवन का जो है स्टेटस बढ़ा ही लेते हैं लेकिन दूसरों के प्रति भी हमारा सम्मान बढ़ जाता है। तो आइए राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी जी। और आज हम लोग जो विषय लिया है जैसे संस्कार परिवर्तन की विधि, पिछली बार भी हमने थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि संस्कार परिवर्तन कैसे हो सकता है, तो क्या इसके लिए ये इतना आसान है कि हम लोग हमारे पुराने स्वभाव को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो इसकी क्या विधि है? और ये विधि तो हम लोग समझेंगे लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर गहराई से बताइए कि एक्चुअली में संस्कार परिवर्तन ये क्या है।
1: जी, संस्कार परिवर्तन जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, व्यक्ति अपने संस्कारों से पहचाना जाता है। लेकिन कई बार अनकॉन्शियसली हम में कुछ ऐसे संस्कार बन जाते हैं जिसके कारण हमारा व्यक्तित्व नेगेटिव बन जाता है। लेकिन जैसे हमने पहले भी जाना कि संस्कार बनते कैसे हैं, बार बार हम किसी कर्म को बार बार करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में चला जाता है और वो फिर जब वातावरण ऐसा बनता है तो अपने आप ही वो संस्कार जो है वो प्ले हो जाता है या हमसे कर्म हो जाता है और हमें पता ही नहीं लगता कि ये जो है वो मैंने किया है, क्या ये मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जब वो वातावरण ऐसा बनता है तब आप कर लेते हैं, जब आराम से शांति से बैठे होते हैं तो अगर आपको अपनी ही वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाए तो आप हैरान होंगे कि क्या ये मैं हूँ। तो जैसे हमने अपने कर्म, अपने संस्कार, अपनी आदत बनाई है नेगेटिव, तो उस विधि से अगर हम अपने ऊपर ध्यान दें, एकाग्र करें अपने ऊपर, तो उस विधि से हम अपने आप को बदल भी सकते हैं। तो जैसे हमने बार बार नेगेटिव कर्म को किया, भले वो खुद से किया या बाहरी वातावरण से किया या दूसरों के संग के कारण या दूसरों के प्रभाव में आकर के किया, वैसे ही अगर हम ध्यान दें कि मुझे इसको बदलना है तो अपने ऊपर एकाग्र करके, अटेंशन दे करके, ध्यान दे करके, एक उसका प्रोसीजर है, एक उसकी एक विधि है, अगर हम उस विधि को अपनाएं तो हम उसको बदल भी सकते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि एक विधि के अनुसार हम लोग बदल सकते हैं। क्या एक ही विधि है या बहुत सारे विधि भी है?
1: इसमें बहुत सारी विधियां हैं लेकिन आज हम ऐसे संस्कारों की बात करेंगे
0: जी
1: जिसका कारण हम दूसरों को समझते हैं। जैसे कई बार कोई व्यक्ति कहता है मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा तब आता है जब सामने वाला कुछ बुरा काम करता है या सामने वाला गुस्सा करता है, तब मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा मेरे कारण नहीं है, मतलब अगर हम में कुछ बुरे गुण हैं, कुछ बुराई है, अगर मैं रूठता हूँ या मैं कुछ ऐसा बुरा काम करता हूँ, किसी की बुराई करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ ये मैंने शुरू नहीं किया, ये मेरे को वातावरण ऐसा मिला या दूसरे लोग ऐसे हैं, उनका स्वभाव ऐसा, अगर वो बदल जाएं तो फिर मेरे को करने की जरूरत नहीं है। तो माना कि हम जो है दोष या कारण या उंगली जो है वो दूसरों के ऊपर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संस्कार हो सकते हैं, बहुत सारी आदतें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम गुस्से को भी ले सकते हैं, है ना, तो हम ये कहते पहले मैंने गुस्सा नहीं किया क्योंकि पहले वो वाला व्यक्ति मेरे से जोर से बोला या उसने मुझे उकसाया गुस्सा करने के लिए, या उसने काम ही ऐसा किया कि मेरे को क्या हो गया, गुस्सा जो है वो आ गया। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, उसकी विधि के ऊपर बात करेंगे।
0: जी जी जी।
1: तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर हम ये रियलाइज करें, भले उसका कारण दूसरे ही हैं, लेकिन आप ये रियलाइज करते हैं, दूसरे आपको ये कहते हैं, क्योंकि कई बार खुद को तो रियलाइजेशन होती नहीं कि मैंने ये किया है, लेकिन कई बार दूसरे हमारे इर्द गिर्द बैठते हैं, हमारे घर वाले, परिवार में, ऑफिस में, या हमारी वर्क प्लेस पे, या हमारे दोस्त हमको बताते हैं कि ये भाई ये थोड़ा गलत है, तो हमको लगता है कि अच्छा इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने नोट किया है। तो पहले तो रियलाइज करें कि हाँ भाई मुझे बदलना है। और कई बार हम खुद को नहीं बदलना चाहते।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जैसे अगर हम कारण दूसरों को मानते हैं, हम कहते हैं दूसरा बदले, लेकिन प्रॉब्लम वहां आ जाती है। जैसे मान लीजिए ऑफिस में दो लोग हैं, तो वो कहता है कि ये व्यक्ति बदल जाए ना तो मेरा जीवन सुखी, इसने मुझे बहुत तंग किया, इसने मुझे बहुत दुख दिया, हम चाहते हैं कि वो बदले तो मैं बदलूं, पर वो तो बदल नहीं रहा ना, और उसके ना बदलने से दुखी मैं हो रहा हूं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें दो नियम आएंगे।
0: जी जी जी।
1: दो नियमों के आधार के ऊपर हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहला नियम है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विल ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन अदर्स, कि अगर मैं स्वयं को बदलता हूं तो मेरे बदलने से दूसरे भी बदलते हैं, क्योंकि हम चाहते खुद को नहीं बदलना चाहते, लेकिन बदलना चाहते हैं दूसरे को।
0: बिल्कुल।
1: तो दूसरा नियम है के देना ही लेना है, माना मदद करना, हेल्प करना। एक व्यक्ति जो होता है ना, बाय नेचर दूसरे की मदद करने का उसको दिल करता है, क्योंकि एक लॉ है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें एक नेचुरल जो है ना वो खुशी सी मिलती है, शांति सी मिलती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हमें सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं, और खासकर वो की हुई मदद जिसमें हमें कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ हम मदद करें। तो दूसरा नियम ये है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें बाद में हमारी एक्सपेक्टेशन रहती कि मैंने उसकी मदद की, जो मैंने काम किया कल को वो भी मेरा काम करेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर समय के ऊपर, जब हम मान लीजिए एक बच्चा ही है, वो किसी अंधे व्यक्ति को जो है वो सड़क पार कराता है, तो उसको बड़ा सुकून सा मिलता है कि आज मैंने किसी की मदद की। वो कल को वो व्यक्ति उसकी रिटर्न में मदद करता है नहीं करता, वो बाद की बात है। तो दूसरा नियम यह है कि हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं। तो आज हम ये थ्योरी लेके चलेंगे, इसके पीछे ये नियम काम करेगा कि हम उस व्यक्ति की मदद करें जिसका हमें पता है कि वो संस्कार बुरा है, या उसके बुरे संस्कार से मेरे में वो संस्कार आ रहा है, या वो गुण मेरे में ट्रांसफर हो रहा है, तो मैं अपनी मदद ना करके दूसरे व्यक्ति की मदद करूंगा, लेकिन मदद ऐसे करूंगा कि उस व्यक्ति को पता ना लगे कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं। फिर हम देखेंगे कि क्या वो बदल रहा है या क्या मैं बदल रहा हूं, क्या हम दोनों ही बदल रहे हैं। तो आज हम उसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। उसके कुछ स्टेप्स हैं,
0: बिल्कुल,
1: उसके 7 या 8 स्टेप हैं, तो हम वन बाय वन जाएंगे। आज थ्योरी पे बात करेंगे, फिर प्रैक्टिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके ऊपर भी हम आगे अपने आने वाले जो एपिसोड्स हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहला कदम तो ये है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, आपके मन में उसके प्रति भाव बना है कि ये व्यक्ति तो है ही ऐसा, तो जैसे ही वो आएगा वो गुस्सा करेगा, या वो ऐसे बात करेगा, या उसका ऐसा संस्कार है, तो मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव भाव बना हुआ है। जैसे आम घरों में होता है कि मियां बीवी दोनों बहुत देर से रह रहे हैं, लेकिन पहले तो उनमें प्यार होता है, लेकिन जब 7-8 साल बीत जाते हैं तो फिर वो एक दूसरे की बुराइयां ही देखते हैं। तो एक दूसरे के प्रति जो इम्प्रेशन बन जाता है वो अच्छाइयां ना देखकर उसकी बुराइयां देखते हैं। ऐसे बॉस और सुबर्डिनेट में होता है, ऐसे सास और बहू में भी होता है, है ना। तो जैसे व्यक्ति वो सामने आएगा तो आपका मन जो है ना वो पहले उसको देखते ही नेगेटिव हो जाएगा। आपने उसको कोई शब्द बोला भी नहीं, या उसके बारे में सुनते हैं या उसको देखते हैं, तो मन क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो एक बार ये नियम है कि एक बार आपने नेगेटिव सोचा तो हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी नेगेटिव फाइल्स हैं उस व्यक्ति के प्रति वो खुल जाती हैं। भले आप उसको कुछ बोल नहीं रहे, जैसे वो सामने आया आपने उसके बारे में नेगेटिव बोलना सोचना मन में शुरू कर दिया, और जैसे ही मान लीजिए वो व्यक्ति गुस्सा करेगा तो हम इमीडिएटली क्या कर लेंगे, उसी व्यक्ति हमें पता नहीं लगता कि हम रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। तो पहले तो हम कोशिश करते हैं अपने आप को रोकने की, लेकिन मान लो 5-6 बार हो गया तो 7वीं बार क्या हो जाता है, रिएक्शन जो है वो हो जाता है। तो सामने वाला जैसे ही व्यक्ति आया वो एक तरह का हमारे लिए ट्रिगर का काम करता है,
0: बिल्कुल,
1: वो हमें उकसाने का काम कर रहा है, ट्रिगर का काम कर रहा है, या कहेंगे वो स्टिमुलस करता है। तो हमारा वो जैसे उसने एक्शन किया इमीडिएटली हमारा क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। तो पहला हमें कदम क्या अपनाना है, पहले हमने उस रिएक्शन को रोकना है। उस रिएक्शन को रोकने का तरीका क्या है? पहला कदम ये है कि हम जो है वो साइलेंट हो जाएं, कोशिश करें कि जब भी वो ऐसा वातावरण आता है तो हम मुख से कुछ नहीं बोलें। जब आप मुख से कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन मन तो आपका सोच रहा है,
0: बिल्कुल
1: मन तो आपका बोल रहा है, जैसे हमने बात की मन में तो नेगेटिव चल रहा है, लेकिन उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलें? जैसे हमने नेगेटिव टॉक की बात की थी और पॉजिटिव सेल्फ टॉक की, तो मन तो नेगेटिव जो सेल्फ टॉक वो कर रहा है, लेकिन उसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कैसे बदलें? उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के कारण मेरे संस्कार हैं। तो एक अभ्यास कर लें, पहले अभ्यास ये करें कि उस व्यक्ति में गुण देखें, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण ना हो। दुनिया में हर व्यक्ति जो है उसमें कुछ गुण भी होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं। हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है क्योंकि हम उसके गुण देखते हैं, हमने उसके अवगुण देखे नहीं, या उन अवगुणों से उसने हमसे कभी व्यवहार ही नहीं किया लेकिन दूसरे व्यक्ति से करता होगा, इसलिए वो व्यक्ति दूसरों को बुरा लगता है, लेकिन वही व्यक्ति आपको अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसीलिए आपको प्रयास करके, थोड़ी सी मेहनत करके आप देखें, जैसे घर में भी अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों में कोई सारे अवगुण ही हैं, कोई ना कोई तो गुण है ही है। ऐसे सास बहू का रिश्ता है, ऐसे टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, हर रिश्ते में गुण भी होते हैं अवगुण भी होते हैं। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा जो ध्यान है उसके गुणों पे जाना चाहिए। तो विशेष ध्यान दे करके आप उसमें दो या तीन गुण, अगर एक गुण भी है तो भी उसको लिखें और मन में ये रखें कि जैसे वो व्यक्ति सामने आएगा मुझे उसके गुणों को क्या करना है, वो
0: एक्टिवेट करना है,
1: एक्टिवेट कर देना और मन में उसके गुण के बारे में सोचना है। तो जैसे ही आपका मन नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो मन में जो नेगेटिव फाइलें बहुत ज्यादा खुलती थी वो बंद हो जाएंगी।
0: बिल्कुल।
1: और जैसे ही आप पॉजिटिव हुए तो पॉजिटिव मन जो है अच्छे विचार कर सकता है। पॉजिटिविटी जो है हमें, हमारे मन में क्या करेगी, पॉजिटिव जो थॉट्स हैं उनको और एक्टिवेट करेगी। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको इंट्यूशंस भी पॉजिटिव मिलते हैं, आपके डिसीजन भी पॉजिटिव होते हैं। तो ये सबसे पहला कदम है कि पहले शांत रहें, शांत रह के उसके थोड़ा सा साइलेंस में जाकर के, अपने अंतर में जाकर के उसके गुणों को देखें, उसके गुणों का चिंतन करें। जब आपने ये कर लिया फिर उसके नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप अपने आप को एक अच्छा सा सम्मान दे दें।
0: बिल्कुल।
1: जैसे आपने पहले निर्णय कर लिया कि मुझे इस व्यक्ति की मदद करनी है ताकि ये बदले, तो मेरे मन में अच्छा भाव है, पॉजिटिव भाव, मैं पॉजिटिव भाव लेके जा रहा हूँ, ईगो से नहीं जा रहा हूँ। कई बार हम में ईगो होती है कि ये व्यक्ति मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझे भी इसकी नहीं करनी है, ऐसे ही भाव आता है जैसे ही वो सामने आएगा। लेकिन इस वक्त आप जो है भाव, नम्र भाव से जा रहे हैं कि मुझे जो है इस व्यक्ति की मदद करनी है। या ये भी ले सकते हैं कि मैं महान व्यक्ति हूँ, मेरा जन्म जो है वो महान कार्य करने के लिए हुआ है, ये भी आप संकल्प ले सकते हैं। और ये भी ले सकते हैं कि मुझे जो है इस, जो भी हम दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म करना है ताकि इस व्यक्ति को भी सुख मिले और मुझे भी सुख मिले, ताकि हम दोनों में जो परेशानी है, जो कलह क्लेश है वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे आप मन में पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर आपके मन में आ जाएगा कि मुझे पॉजिटिव निर्णय लेना है।
0: बिल्कुल। तो
1: तीसरा कदम ये है कि आपको पॉजिटिव डिसीजन लेना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब मुझे कर्म करना है, एक्शन में आना है, लेकिन वो मेरा एक्शन क्या, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव माना जैसे मैं पहले करता था, अगर आप जैसे पहले करते थे वैसा ही अभी करेंगे तो नतीजा वैसा मिलेगा। अभी मुझे कुछ डिफरेंट करना है। अभी मुझे जो डिसीजन, अभी एक्शन करना है। अभी आपका क्या आ गया, एक्शन प्लान आ गया।
0: बिल्कुल।
1: अभी मन पे आप पॉजिटिव हो गए, अभी आपको उसको शो करना है कि आई एम पॉजिटिव अबाउट यू, सामने वाले को ये विश्वास हो जाए, नहीं तो सामने वाले को भी ये होता है।
0: बिल्कुल।
1: कि अगर वो नेगेटिव है तो मैं भी नेगेटिव, तो भाव जो है एक दूसरे को हम कैच कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। तो जैसे आप क्या आगे जाएंगे, उससे बात करेंगे, तो तीन लेवल पे काम कर सकते हैं आप। एक तो कर्म के ऊपर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे कर्म करें जैसे कि आप उस व्यक्ति की मदद करें, उसको कुछ करना नहीं आता, आप उसको सिखाएं, जहां वो आपको जो कहता है, पहले आप वो करते नहीं थे, उसको निग्लेक्ट करते थे, उसको इग्नोर करते थे, अभी जो उसने आपको कहा है आप उसको करके दिखाएं। या अपने शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे शब्द बोलें, उसको मोटिवेट करने वाले शब्द बोलें, ऐसे शब्द बोलें जिससे कि उसको लगे कि हाँ ये व्यक्ति मेरी बात मान रहा है, ये मेरे को रिस्पेक्ट दे रहा है, है ना, ये मेरी बात को समझ रहा है, अटेंटिव होकर के सुन रहा है। तीसरा, हम मन के ऊपर भी काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मन के ऊपर कैसे काम करेंगे? अपने वाइब्रेशंस उसको दे सकते हैं, विजुअलाइजेशन मॉर्निंग या इवनिंग खास बैठे, इसके इस टेक्निक के बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है, मॉर्निंग में या इवनिंग में आप 10 मिनट के लिए बैठें और देखें कि उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं, आप उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं और उस व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो गया है। तो जैसे जैसे आप उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं और विजुअलाइजेशन करते हैं, क्योंकि ये देखा गया है, साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि जैसे प्लेयर्स खेलते हैं और जब वो विजुअलाइज करते हैं कि हमारा खेल बहुत अच्छा हो रहा है, तो प्रैक्टिस करने से भी उनमें 25% इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन विजुअलाइजेशन करने से भी 20% इम्प्रूवमेंट होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उससे क्या होगा, हमारे संस्कारों में धीरे धीरे परिवर्तन। फिर आपने एक्शन कर लिया। अब एक्शन करने के बाद चौथी बात है कि उस एक्शन के लिए आपको निस्वार्थ काम करना है। जो आपने उसकी मदद की या अच्छे शब्द बोले या मन से किया, आगे वाले व्यक्ति को ये नहीं महसूस होना चाहिए कि ये व्यक्ति अगर मुझसे आज बदल गया है तो ज़रूर इसको मुझसे कोई ना कोई स्वार्थ होगा, इसको मुझसे कोई ना कोई काम लेना है, इसलिए मेरे से अच्छा व्यवहार कर रहा है या मेरी मदद कर रहा है। तो निस्वार्थ भाव से आपने जो है वो कार्य करना है। फिर लास्ट बात ये आती, जैसे हमने पहले भी समझा था कि एक संस्कार को लाने के लिए हमें उसको बार बार कम से कम 9 बार करना पड़ता है। जब हम 9 बार करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, हमारी आदत बनना शुरू हो जाता है। तो वो जो आपने कर्म किया, चाहे मन के लेवल के ऊपर, चाहे शब्दों के द्वारा, चाहे कर्म के द्वारा, उसको आपने कम से कम 9 बार दोहराना है। क्योंकि एक बार करेंगे अगले वाले व्यक्ति के मन में आएगा कि ये व्यक्ति आज मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, जरूर इसको मेरे से स्वार्थ होगा। आप दूसरी बार करेंगे फिर उसको थोड़ा सा विश्वास होना शुरू होगा, पहली बार तो बिल्कुल नहीं होगा,
0: बिल्कुल
1: दूसरी बार 2-3% होगा, तीसरी बार आप दोबारा करेंगे उसी बिहेवियर को रिपीट करेंगे फिर उसका ध्यान जाएगा कि ये व्यक्ति थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, चौथी बार उसके मन में आएगा हाँ थोड़ा विश्वास पैदा होगा, पांचवी बार अगर आप बदल रहे हैं तो उसके मन में आएगा कि हाँ मुझे भी। तो कम से कम आपको 9 बार करना है और छोड़ना नहीं,
0: बिल्कुल
1: हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि कहते हैं कि व्यक्ति असफल वो होता है जो किसी काम को करना
0: छोड़ देता है।
1: वास्तविकता में असफलता नाम का कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि असफलता दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस। असफलता जो है कहते हैं कि सफलता की पहली
0: सीढ़ी है।
1: अगर आपने पहली बार किया, व्यक्ति नहीं बदला या उसने आपके ऊपर उल्टा शूट आउट कर दिया, आप तो मन बना के गए थे कि भाई मैं तो अच्छा, आपने अच्छा किया, लेकिन वो व्यक्ति उसी मूड में है, वो फिर आपके ऊपर वो बरस गया, गुस्सा कर दिया। दूसरी बार गए थोड़ा सा उसको फील तो हुआ होगा, फिर बरस गया, तीसरी बार वो बदल जाएगा। हो सकता है आप 5 बार ट्राई करें कोई परिवर्तन ना आए, लेकिन 6ठे बार आपको सफलता मिल जाए, 7वीं बार मिल जाए। तो कहने का मतलब ये, कम से कम 9 बार आप ट्राई करो, तो अगर 9 बार में अगर आपको 1 बार भी सफलता मिल गई तो आप समझिए कि मैंने सफलता की पहली सीढ़ी को पा लिया है और मैं सफलता को प्राप्त
0: करूंगा। चलिए राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को आज जैसे कि संस्कार परिवर्तन करने की एक विधि आपने बताया, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बताया कि हम लोग हर बार जैसे कि सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को हम लोग समझाने जाते हैं अगर वो नहीं मानता, बरस पड़ता है, तो हम लोग सोचते हैं कि जाने दो इसको क्या समझाना, ऐसा लगता है। लेकिन आप अगर कोशिश करते रहेंगे लगातार, क्योंकि ये जो है ना सफलता और असफलता की एक जो है एक दूसरे के पूरक है। अगर आप सफल नहीं हो तो फिर आप अपने आप को असफल समझ रहे हो, लेकिन असफलता भी सफलता के नज़दीक की एक सीढ़ी है, जैसे अभी राजेश जी ने बताया। और आप देखिए कितने भी रिसर्च हो गए हैं, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, आइंस्टाइन को ले लीजिए या फिर थॉमस को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार में तो सफलता नहीं पाई है, है ना। तो हर चीज़ जो भी उन्होंने उस दिशा में कदम रखा तो बहुत बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस टेंडेंसिटी को, असफल होने की चीज़ों लोगों को उन्होंने सीखा कि इस तरीके से ये व्यक्ति नहीं मानेगा, ये चीज़ नहीं बनेगी। तो सीखना हुआ ना, लर्निंग हुआ। तो इस तरह से और एक विधि उन्होंने अपनाई, फिर धीरे धीरे करके कई प्रयोगों के बाद उनको सफलता हासिल हुई और फिर कहानी बनी, है ना। तो ये चीज़ें हमेशा होती रहती हैं। तो इसीलिए आप एक रिसर्चर के रूप में, एक अनुसंधान के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में इन चीज़ों को करते जाए और असफलता से सीखते हुए सफलता के नज़दीक पहुँचे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ चलिए राजेश जी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस एपिसोड में इतनी अच्छी बातें सुनाने के लिए। और मैं जरूर चाहूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा प्रयोग करते जाइए और उसमें आप लिखते जाइए कि किस विधि से मैं असफल हुआ और किस विधि से मैं सफल हुआ, ताकि आने वाले दूसरे लोगों को जब हम लोग इस विषय को लेकर बात करेंगे या आप अपना अनुभव जब सुनाने जाएंगे तो आपकी ये बातें, ये डायरीज काम आएंगे दूसरों को पथ प्रदर्शन करने के लिए। तो आप छोटा काम मत समझिए, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: run, run, run.
1: दौड़ो दौड़ो दौड़ो.
0: आओ दोस्तों दौड़ लगाते हैं 9 अगस्त को.
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन.
0: जी हाँ, इसका थीम है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड. संडे अगस्त 9 को ये मैराथन शुरू होने वाला है
1: सुबह 5 बजे.
0: तो आप सभी का इस मैराथन में भरपूर स्वागत है और आप सभी इस मैराथन में भाग लेकर रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जरूर बढ़ाइए. जी हाँ, इस भाईचारे को दुनिया भर में जरूर फैलाइए. इस मैराथन में भाग लीजिए और खुशियाँ दुनिया भर में बांटिए.
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन.

0: run, run, run.
1: दौड़ो दौड़ो दौड़ो.
2: आओ दोस्तों दौड़ लगाते हैं 9 अगस्त को
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन.
2: जी हाँ, इसका थीम है रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड. संडे अगस्त 9 को ये मैराथन शुरू होने वाला है
1: सुबह 5 बजे.
2: तो आप सभी का इस मैराथन में भरपूर स्वागत है और आप सभी इस मैराथन में भाग लेकर रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जरूर बढ़ाइए. जी हाँ, इस भाईचारे को दुनिया भर में जरूर फैलाइए. इस मैराथन में भाग लीजिए और खुशियाँ दुनिया भर में बांटिए.
1: दादी प्रकाशमणि आबू हाफ मैराथन.

0: राम राम, सुप्रभात, खम्मा घणी, गुड मॉर्निंग आबू। मैं हूँ आरजे शुभा और 5:04 रेडियो मधुबन की घड़ी पर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह शुभा जी कैसे। बिल्कुल, आप लगातार सुन रहे हैं कि हम दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन के दौरान मन से दौड़ेंगे, है ना। तो सभी श्रोता मन से दौड़ेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ हैं इसकी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब हमारे साथ हमारे श्रोता कहे, मैराथन के वॉलंटियर कहे, समाज सेवी कहे, संजय सिंगल जी मौजूद हैं माउंट आबू से। आइए उनसे बात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, जानते हैं हाल चाल नज़ारा माउंट के वादियों का। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी।
1: ओम शांति दीदी।
0: ओम शांति। ये कैसे हैं सबसे पहले तो आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, बिल्कुल। मैं मैराथन दौड़ में जो हमारे प्रतियोगी भाग ले रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि इस मैराथन में आप लोगों ने भाग लिया। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है। अभी यहाँ लाइट नहीं थी, लाइट आ चुकी है। पूरा वादी अपने कोहरे के आगोश में छाई हुई है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, जैसे कोई फूलों की बारिश करता है। इस हिसाब से दादी जी के हम आज इस स्मृति दिवस पर जो दौड़ होने जाती है उसमें सभी धावक जो पसीने में नहा के उनका हम स्वागत बारिश और कोहरे से करेंगे। बहुत सुहावना मौसम है
0: जी।
1: मतलब मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है। मैं हर साल सिर्फ दादी प्रकाशमणि जी की जो दौड़ होती है उसी में सुबह उठता हूँ। जैसे मेरी सुबह होती है दोपहर में 1 बजे, पर क्या पता 4 बजे दादी जी से उठा दियो, बेटा उठ काम पे लगना है। तो मैं लग चुका हूँ काम पे, नहा धो के फ्रेश मूड में मैं अभी चल रहा हूँ। पैरों से पैदल आ गया हूँ। मेरी ड्यूटी ओल्ड नाके तक की है। ओल्ड नाके से जो जो धावक आएंगे उनको मुझे ओम शांति भवन तक उनको
0: गाइड करना है।
1: जी
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया जी।
1: और सचिन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि जो हमारे आबू की हमारी टीम में वो हमको जोड़ते हैं। एक नदी बहती है, उसमें एक छोटी सी प्रवाह होती है धारा, उस धारा के अंदर मुझे भी जोड़ दिया। और 8 साल से हम लोग निरंतर ये सेवा करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये 8th दादी प्रकाशमणि हाफ इंटरनेशनल मैराथन है और जिसमें आप लगातार सेवाएं कर रहे हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद सवेरे सवेरे जुड़ने के लिए। सबसे पहला कॉल आपका है और आपने हमें
1: नगर पालिका के हमारे जो सफाई कर्मी है
0: जी,
1: मुझसे देते इतनी अच्छी रोड की सफाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आबू का रोड को घिरा दिया उन लोगों ने
0: जी।
1: इस बारिश में वो लोग काम कर रहे हैं सुबह 4:30 बजे से।
0: बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा लगा कि सब हम लोग एक छोटी सी दौड़ के लिए, ये छोटी दौड़ नहीं है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल हाफ मैराथन दौड़ है, मैं गलती बोल गया। नगर पालिका कर्मचारी इस कदर लगे हुए हैं कि वो लोग हमें दौड़ और हमको धन्यवाद दे रहे हैं कि हर दौड़ में हर आदमी का एक यज्ञ आहुति है ये।
0: बिल्कुल,
1: सफाई कर्मी हो, पुलिस वाले हो, या हम स्वयं सेवी संस्थाएं हो, एनजीओ हो माउंट आबू की, सभी इस कदर अभी अभी आपको एक घंटे बाद में जब भी समय मिलेगा और मेरे को रेडियो मधुबन से जुड़ने का मौका दिया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रभात, ओम शांति, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। आपने आबू की ताजी खबर हम तक पहुंचाई, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। और मैं ऑलवेज फोन पे तैयार हुआ, जब आप मेरे से पूछेंगे मैं आपको पूरी आंखों देखा हाल बताता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे संजय सिंगल जी फ्रॉम माउंट आबू से, और जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वहाँ पे वॉलेंटियर्स हो, वर्कर्स हो, सब कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं 94-14-15-14-15। और इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज़ हो चुका है। वर्तमान समय मनमोहिनी वन आबू रोड में क्या कुछ नज़ारा है वहाँ हम चलेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी वार्म अप एक्सरसाइज से शुरू हुआ है ये। 5:20 पर वेलकम किया जाएगा गेस्ट को, उसके बाद वेलकम स्पीच गुड विशेस रहेगा आदरणीय उषा दीदी जी का, और इसके साथ साथ जगदीश भाई जी वेलकम स्पीच करेंगे जो यहाँ के सीनियर फैकल्टी मेंबर है शांतिवन के। फिर सेक्रेटरी जनरल ब्रह्म कुमारीज वो भी अपने शुभ भावनाएँ शुभकामनाएँ रखेंगे। फिर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्म कुमारीज मृत्युंजय भाई जी भी अपने शुभ भावनाएँ रखेंगे। फिर नशा मुक्ति के ऊपर प्लेज किया जाएगा 1 मिनट तक, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, खेलने वाले, बहुत अच्छा करियर में करने वाले, लेकिन कई बार नशे के आदि हो जाते हैं तो उनके सारे जो किया धरा है, उनकी जो मेहनत है, वो फिर पानी फिर जाता है। इस मोड़ पर एक और साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते।
2: हेलो नमस्ते
0: जी, हम सभी के साथ आरजे पवित्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और हमारे शुरुआत कर रहे हैं पॉइंट से ही।
0: जी
2: सुनाई दे रहा है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। आप आंखों देखा हाल बताइए कि क्या कुछ नजारा है वहाँ पे, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या मंजर है, कितना अच्छा लग रहा है।
2: वार्म अप के लिए रेडी है और हमारा भाग में
0: जी
2: अभी
0: आपको कैसा लग रहा है आरजे पवित्र जी? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सभी धावकों को देखते हुए, वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, उसे देखते हुए आपके दिल में क्या उजागर हो रहा है, मतलब क्या उमंग उत्साह उमड़ रहा है?
2: ऐसे हो रहा है और हमारा
3: हमारे
2: अब सभी रनर उनको हमें लेंगे क्योंकि आप सीधा प्रसारण सुन पा रहे रेडियो कार्यक्रम में, और हमारा वार्म अप के लिए सभी धावक पहुंच रहे क्योंकि ये आठवां इंटरनेशनल हाफ मैराथन दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति में, तो हमारा साथ एक धावक है तो अपना नाम देंगे। सर आपका नाम बताइए।
4: कैप्टन अमृत कोइजम। I am from Manipur, but I came from Ahmedabad.
2: Yes, very good. What do you feel now?
4: I love it. One of the toughest road half marathon in India, in Asia also. I did it last year also, but I just love it. This time I came with my community. We are more than 15 people from Ahmedabad distance runner, Ahmedabad.
0: थैंक यू कैप्टन जी, आपको ऑल द बेस्ट फ्रॉम रेडियो मधुबन।
2: जी जी, और हमारा ग्रुप है कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, प्लीज इंस्ट्रक्ट योर वाइस कैप्टन। और एक धावक है वाइस कैप्टन पूरा अहमदाबाद से, तो रेडियो कार्यक्रम में आज का वार्म अप के लिए क्या करा रहे हैं, प्लीज लाइव।
5: माय नेम इज भाग्यश्री, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद एरिया शिलांग।
0: जी भाग्यश्री जी, कैसा लग रहा है आपको वहाँ पर वार्म अप देख करके और सभी धावकों को देख करके, कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
5: I'm very excited, quite nervous. तेरा माउंट अबू रन है तो I'm happy I'm here.
0: Okay, best wishes आपको। और आप हर साल दौड़ते हैं या जहाँ पर भी हाफ मैराथन मैराथन का आयोजन किया जाता है आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं?
5: काफी हाफ मैराथन और रन करे हैं मैंने, बट आबू का ये मेरा पहला है तो आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट।
0: ओके, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और बेस्ट विशेस।
5: थैंक यू
0: जी।
2: थैंक यू सुभाश्री बहन, आप लाइव कवरेज सीधा स्टूडियो से दे रहे हैं इंटरनेशनल हाफ मैराथन दादी प्रकाश मणि की स्मृति में। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी एंड वार्म अप सभी धावक कर रहे हैं। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा भी है, तो अपना नाम बताएंगे प्लीज। अपना नाम बताओ और कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से?
6: अहमदाबाद।
2: किसके साथ आए?
6: मम्मा पापा।
2: मम्मा पापा, अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक छोटा सा लड़का है लेकिन पौरी भी उनका साथ है। आप अपना नाम बताएंगे?
6: मेरा नाम सनक आनंद है और मैं अहमदाबाद से श्याम खेड़ा
2: खड़का। तो एक अहमदाबाद से एक स्टूडेंट आई, तो उनसे थोड़ा हालत करिए।
0: हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
6: गुड मॉर्निंग
0: सूचे, कैसे हैं आप?
6: अच्छी हूँ।
0: और कैसा लग रहा है आपको, सभी बड़े वार्म अप कर रहे हैं, नजारा क्या है वहाँ पर? क्योंकि मैं स्टूडियो में बैठी हूँ तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको सबके साथ वहाँ पर। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे? फिल वक्त मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ ही देर में फिर से कनेक्ट करेंगे हम हमारे फील्ड में जो आरजेज हैं, कह सकते हैं आज मैराथन में रनर्स तो दौड़ रहे हैं लेकिन हमारे सभी आरजेज भी दौड़ रहे हैं, अपडेट्स देने के लिए, आप तक सारे नज़ारे पहुंचाने के लिए। जुड़े रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर और सबका उमंग उत्साह बढ़ाते रहिए, क्योंकि दादी प्रकाश मणि जी के को समर्पित ये मैराथन है। और आज की ये मैराथन केवल दौड़ नहीं है, ये एक ऐसी दौड़ है जो हमें स्वयं से जोड़ते हुए एक दूसरे से जोड़ती है। आइए इस मोड़ पर एक और साथी हमारे हैं। हेलो
3: ओम शांति
0: जी। ओम शांति नमस्ते,
3: सुरेश सिंगर बोल रहा हूँ माउंट आबू से।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, कैसे हैं आप?
3: हम लोग ड्यूटी पे तैनात है, संजय भाई और हम
0: जी,
3: फिर विश्राम संजय विश्राम
0: जी जी जी
3: ड्यूटी पे तैनात है
0: जी जी।
3: और नगर पालिका टीम रात को 3 बजे से सफाई कर रही है।
0: रात को तीन बजे से
3: नगर पालिका टीम सफाई कर रही है
0: जी जी जी।
3: और पुलिस विभाग 4 बजे से लगा हुआ ड्यूटी पे,
0: पुलिस विभाग 4 बजे से ड्यूटी पे, और आप सभी भी ड्यूटी पे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप से सुन के जी।
3: पेट्रोल पंप पर विश्राम होटल पर पेट्रोल पंप पर ड्यूटी पे तैनात है।
0: ओके जी जी जी सर, बेस्ट विशेस है। और आप तो मतलब बहुत यंग एज से ही सेवा मार्ग पर चले हैं, एंड थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपडेट्स देने के लिए, ऑल द बेस्ट। और क्या कहना चाहेंगे जो रनर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, जो रेडियो मधुबन इस वक्त सुन रहे हैं?
3: मैं सुरेश सिंगर माउंट आबू नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष, मैं सभी को धावकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मौसम बहुत सुहावना है, बहुत ही सुहावने मौसम में ये मैराथन दौड़ होने जा रही है और इसकी हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, और बेस्ट विशेष आपको भी, इतने उमंग उत्साह के साथ आप वॉलंटियर कर रहे हैं और सबको गाइड कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू।
0: तो ये थे हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुरेश सिंगर जी और उनके साथ साथ संजय सिंगल जी, और उन्होंने के अपडेट्स दिया हमको कि नगर पालिका के साथ साथ सब वॉलंटियर्स कैसे रात को यानी कि अमृत वेला से ब्रह्म मुहूर्त से उठ कर के कार्य पे लगे हुए हैं। लेते हैं यहाँ पर एक गानों वाला ब्रेक और मिलते हैं गाने के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ये भजन उन सभी के लिए जो इस मैराथन को सफल बनाना चाहते हैं प्रभु की याद से। तो ये आप प्रभु की स्मृति में इस गाने को सुनिए, इस भजन को सुनिए।

0: वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन. और मैराथन की दौड़ कुछ ही पलों में, कुछ ही समय के बाद शुरू होने तो जा ही रहा है, लेकिन हमारे आरजेस फील्ड पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है, फ्लैग ऑफ के पहले जो सेशंस चल रहे हैं वहाँ पे वार्म अप सेशंस उसमें भी मौजूद है. और दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे, दादी जी की स्मृति में ये दौड़ का आयोजन किया जाता है. लगभग 8 साल से किया जा रहा है. 8th इंटरनेशनल हैप आबू राज मैराथन है ये, और दादी प्रकाशमणि जी को समर्पित है ये. और ये मैराथन समर्पित है परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के पावन स्मृति को, जिन्होंने अपने जीवन से प्रेम, शांति, करुणा और विश्व बंधुत्व का संदेश दिया. दादी जी का संदेश, हम सभी एक परिवार है. और आज माउंट आबू यानी कि आबू राज के इन वादियों में जब अलग अलग स्थानों से, अलग अलग उम्र और अलग अलग पृष्ठभूमि से आए लोग एक साथ दौड़ रहे हैं, तो ये दृश्य अपने आप में विश्व बंधुत्व की एक सुंदर तस्वीर बन जाता है. तो हमारे साथ हमारे आरजे मोना, आरजे कृष्णा, आरजे पवित्र जी सभी मौजूद हैं, आरजे अनु, सबसे हम बात करेंगे. लेकिन अभी सुनते हैं कि हमारे आरजे मोना जी क्या कहना चाहते हैं.
1: बाबू, आप सभी का स्वागत है आज के इस 9th अगस्त में होने वाले मैराथन में. जी हाँ, ये ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा आयोजित रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड है. जी हाँ, और आप सभी का आज के इस पूरे लाइव ब्रॉडकास्टिंग में हम आपका सहयोग देंगे. आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा. हम अभी मौजूद हैं अपने रिफ्रेशमेंट के तीसरे पॉइंट पर, और जो करीबन 4 किलोमीटर पर है. और यहाँ पर सभी उमंग उत्साह से ब्रह्मा कुमारीज के सभी कार्यकर्ता जो इस पूरी रन को ऑर्गेनाइज़ किए हैं, उसमें सभी लोग अपने अपने टीम लेकर मौजूद हैं. और जहाँ यहाँ पर सामने एक बोर्ड है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दिलवाड़ा यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर है और माउंट आबू करीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और रनर्स अभी तक नहीं आना शुरू हुए. हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं. आपको पूरा लाइव अपडेट मिलेगा. मौसम बिल्कुल खुला हुआ है और जहाँ पर बारिश के बादल सिर्फ दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं, इसीलिए हमारे रनर्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि वो लोग दौड़ते हुए अलग थकावट महसूस नहीं करेंगे. हाँ, हल्की फुहार होती तो शायद उनके लिए और अच्छा होता, पर फिर भी अच्छा मौसम है, हवा भी बह रही है और ऐसे में हमारे रनर्स को बहुत सुख मिलेगा. तो चलिए, हम थोड़ी देर में पुनः लौटेंगे. तब तक रेडियो मधुबन के साथ आप सभी जुड़े रहिए.
0: थैंक यू आरजे मोना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अभी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं आरजे पवित्र जी. आइए चलते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट की ओर और देखते हैं क्या कुछ नज़ारा है, क्या कुछ लेकर के आए हैं आरजे पवित्र जी हमारे पास. नमस्ते, फिर से स्वागत है आपका.
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुबह श्री बहन.
0: गुड मॉर्निंग जी,
2: फ्रॉम लाइव स्टूडियो. और अच्छा से वार्म अप हो रहे हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से हम कवरेज दे रहे हैं. और मैं हूं आरजे पवित्र और मेरा साथ एक अध्यापक बहुत सुदूर दूर से आए हैं उड़ीसा से, तो उनसे भी हल करते हैं, हमारा श्रोता मित्र से. और इस तरह मैंने उमंग उत्साह से लेकर आया, सीधा प्रसारण आप सुन पा रहे रेडियो कार्यक्रम में. तो हेलो सर, आप अपना परिचय देंगे हमारा श्रोता मित्र को, हमारा स्टूडियो से आप सीधा प्रसारण सुन पा रहे हैं अभी.
3: हेलो, मेरा नाम डॉक्टर कमलेश सोनी है और मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से आया हूँ. और मैंने आपके इस रन के बारे में काफी कुछ सुना था और मुझे काफी उत्साह था कि मैं दीदी के इस मैराथन में एक बार जरूर ज्वाइन करूं, क्योंकि मैंने दीदी का एक सेशन वहाँ भुवनेश्वर में अटेंड किया था, मुझे काफी अच्छा लगा था. और इस जब मैराथन के बारे में सुना तो मैंने सोचा कि आबू रोड भी देखना हो जाएगा और दीदी का ये पूरा सेंटर भी मुझे देखने का बड़ा मन था, इसलिए मैं आया हूँ. और यहाँ पर जिस तरह की सुविधाएं और सब चीजें हैं, मैं देख के बहुत ही उत्साहित हूँ और आने वाले समय में मैं रेगुलर यहाँ पर आता रहूँगा. और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के, और अब मैराथन भी मैं करने के बाद और भी अच्छा लगेगा मुझे पता है.
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेस आपको. और जैसे आपने सुना था, क्या वैसा ही है ये नज़ारा और ये सारा जो आप एनवायरमेंट देख रहे हैं, या उससे बेहतर है, कैसा लग रहा है आपको?
3: एकोमोडेशन और बाकी खाना वगैरह बहुत सुंदर है और जिस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट किए गए हैं, वेल इन टाइम जैसे हम आए हमें सब कुछ दिया गया और खाना भी बहुत अच्छा है, सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं। मतलब जिस तरह से प्रोफेशनल मैं है, काफी रनिंग इवेंट अटेंड करता हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि आप लोग भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कल के मेडिटेशन सेंटर भी सेशन भी बहुत अच्छे लगे मुझे।
0: जी डॉक्टर साहब, तो क्या मन में लेकर के दौड़ेंगे आज आप?
3: आज बस यही है कि मन में लेके ये दौड़ना है कि आज काफी मन में शांति मिले, सुंदरता इस मनमोहक जगह पर मुझे जो मिल रही है वो शायद और कहीं नहीं मिलती, बस यही रहेगा मेरा।
0: जी जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपको भी।
2: 6165 धावक कहाँ से आया और क्या करना है वो हल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको देखकर उनका आवाज भी रोक नहीं पा रहे, क्योंकि एक धावक को देखकर दूसरा धावक आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपको उमंग उत्साह देने के लिए हमारे उत्तराखंड से आए हैं। तो सुनते सर, आप कहाँ से और किस पर्पज से आए, हमारा श्रोता मित्र को सुनाइए।
0: नमस्ते,
4: कोटद्वार डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल से आया हूँ, मेरा नाम है सतीश चंद्र और मैं ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय के ये मैराथन के लिए आया हूँ। और हमारा ये दौड़ का पर्पज है विश्व बंधुत्व के लिए। मैं पहली बार ये हिल की रनिंग कर रहा हूँ और मेरे लिए ये बड़ा एक्साइटमेंट रहेगा पहाड़ी के एरिया में दौड़ने के लिए।
2: आपका उम्र बताइए।
4: मेरी उम्र इस समय 63 चल रही है।
2: और क्या करते हैं आप?
4: मैं अभी CRPF से रिटायर्ड हूँ।
2: अरे वाह।
0: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेस, उत्तराखंड से यहाँ पधारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उत्तराखंड से यहाँ पधारे हैं इसलिए बेस्ट विशेस।
4: थैंक यू
0: जी।
4: ओम शांति।
0: बिल्कुल आप दौड़ पाएंगे क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से आए हैं आप यहाँ पर। जी आरजे पवित्र जी बताइए।
2: साथ एक यूथ भी एक पूरा कन्या है, तो अपना नाम बताएं और कहाँ से आए?
5: नेपाल
2: से। भाई नेपाल इंटरनेशनल मैराथन और नेपाल नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। नेपाल से कौन सा जगह का नाम बताओ, काठमांडू चाहे कहाँ?
5: हाँ जी नेपाल से जाए।
2: और दौड़ेंगे? हाँ बोले हम दौड़ेंगे भाई। चलिए बहुत
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, नेपाल वालों को भी स्वागत है आपका। जी
6: हाँ, मेरा नाम सरोज है और मैं उदयपुर से आई हूँ।
2: राजस्थान से?
6: हाँ राजस्थान से ही हूँ।
2: और क्या कहना चाहेंगे आज का मैराथन के बारे में?
6: काफी जोश लग रहा है, काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पर और मजा आएगा, एलिवेशन अच्छा है।
2: क्या करते हैं?
6: मैं होम्योपैथी इंटर्न हूँ।
2: तो श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे हैं और सभी धावक में बारी बारी